0: क्या है वायरल दावे की सच्चाई आगे आपको बताएंगे। एक और वीडियो जो लगातार वायरल हो रहा है और उसमें दावा यह किया जा रहा है कि मुस्लिम लड़की ने दूसरे समुदाय के एक लड़के का विवाह प्रस्ताव ठुकरा दिया तो कुछ लोग दिन दिहाड़े उसका अपहरण करने पहुंच गए, उसका अपहरण कर लिया। क्या है इस वायरल दावे की सच्चाई, इसकी भी करेंगे पड़ताल, लेकिन शुरुआत करते हैं।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़। और
0: बंगाल में बीजेपी की सरकार है, शुभेंदु अधिकारी बतौर मुख्यमंत्री राज्य के बेहतरी के लिए ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं और इन सब के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि बंगाल में बस में बैठाकर अवैध घुसपैठियों को वापस बांग्लादेश भेजा जा रहा है। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती हमारी रिपोर्टर।

0: रोते हुए कुछ लोगों का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोगों को बस में बैठाकर ले जाया जा रहा है और उनके परिजन रो रहे हैं। इस वीडियो को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि ये पश्चिम बंगाल का है। वहाँ अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों को बीजेपी सरकार ने वापस भेजना शुरू कर दिया है। एक फेसबुक यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि कितना दुखद है, विपक्ष के वोटर को भर भर कर बांग्लादेश के बॉर्डर पर बंगाल असम से भेजना शुरू हो गया, अब ये कभी भी कैसे जीतेंगे, फीलिंग सैड फॉर ममता दीदी। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
1: दरअसल पश्चिम बंगाल में जब से बीजेपी की सरकार बनी तब से सोशल मीडिया पर फर्जी वीडियोस और तस्वीरों की बाढ़ सी आ गई है। गुड न्यूज टुडे की फैक्ट चेक टीम ने ऐसे ही कई वीडियोस, पोस्ट और तस्वीरों की पड़ताल की। हमारी पड़ताल में कई वायरल दावे गलत साबित हुए। अब इसी कड़ी में एक और वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ लोगों को बस में बैठाकर ले जाया जा रहा है और उनके परिजन रो रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा यह किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल का ये वीडियो है और वहां अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों को बीजेपी सरकार ने वापस भेजना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रही वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा और सुना भी। इस दौरान हमारा ध्यान बैकग्राउंड से आ रही कुछ आवाजों पर गया। जब हमने इसे ध्यान से सुना तो ये असमिया जैसी भाषा लग रही थी, ये बांग्ला नहीं थी। और इसके अलावा वीडियो के बैकग्राउंड में कुछ बोर्ड भी नजर आ रहे थे और इस पर भी जो शब्द लिखे हुए थे वो बांग्ला भाषा में नहीं थे। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके, क्योंकि अगर ये सच होता तो कहीं ना कहीं ये खबर जरूर सुर्खियां बनती किसी मीडिया आउटलेट्स या फिर किसी टीवी चैनल पर, ये सुर्खियों में रहती। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल यही कि अगर दावा सच्चा है तो फिर हाल फिलहाल में वायरल हो रहे इस वीडियो को लेकर कोई प्रमाणिक जानकारी क्यों नहीं मिली। दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर पुराने वीडियो को नया एंगल देकर लोगों को गुमराह तो नहीं किया जा रहा। देखिए सच और झूठ क्या है।
0: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की तहकीकात में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे इंटरनेट पर खंगाला। सर्च के दौरान हमें वायरल वीडियो एक आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर मिला। वीडियो को 3 सितंबर 2024 को अपलोड किया गया था। यहां दी गई जानकारी के अनुसार असम के बरपेटा स्थित विदेशी न्यायाधिकरण ने विदेशी घोषित किए गए 28 लोगों को गोलपाड़ा के नजरबंदी शिविर में भेजने का आदेश दिया था। इसमें 9 महिलाएं और 19 पुरुष शामिल थे। इस समूह को भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नजरबंदी शिविर में ले जाया गया था। एक वेबसाइट पर 4 सितंबर 2024 को प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक असम पुलिस का कहना था कि बरपेटा जिले में विदेशी न्यायाधिकरणों की ओर से गैर नागरिक घोषित किए गए 28 लोगों को गोलपाड़ा जिले के मटिया स्थित एक ट्रांजिट कैंप में भेजा गया था। ये सभी लोग बंगाली मुस्लिम समुदाय से थे। साफ है लोगों को बस में लेकर जाने के नाम पर वायरल वीडियो को लेकर किया जा रहा दावा गलत है। ये वीडियो बंगाल का नहीं बल्कि असम का है। दरअसल साल 2024 में असम के बरपेटा में विदेशी न्यायाधिकरण ने 28 लोगों को गैर नागरिक घोषित किया था। इसके बाद उन्हें ट्रांजिट कैंप भेजा गया था। ये वीडियो उसी घटना का है। पुराने और असंबंधित वीडियो को बंगाल का बताकर वायरल किया जा रहा है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में कुछ लोग एक लड़की को जबरन कार में बिठाते हुए नजर आ रहे हैं। लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा ये कर रहे हैं कि मुस्लिम लड़की ने दूसरे समुदाय के एक लड़के से विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया, जिसके बाद उसका अपहरण कर लिया गया। क्या है इसकी सच्चाई, पड़ताल करती हमारी रिपोर्ट।
2: एक लड़की को पकड़कर कार में लेकर जाने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को धार्मिक एंगल के साथ शेयर किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि मुस्लिम लड़की ने दूसरे समुदाय के लड़के का विवाह प्रस्ताव ठुकरा दिया था, इसी वजह से दिन दहाड़े उसका अपहरण कर लिया गया। एक फेसबुक यूजर ने वायरल वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि एक भारतीय मुस्लिम लड़की ने एक हिंदू युवक के विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जिसके बाद कथित तौर पर हिंदुत्व भीड़ और पुलिस द्वारा दिन दहाड़े उसका अपहरण कर अमानवीय तरीके से घसीटा गया। अगर ये सच है तो यह सिर्फ एक लड़की पर हमला नहीं बल्कि इंसानियत, महिलाओं की आज़ादी और कानून के शासन पर हमला है। किसी भी महिला को उसकी मर्जी के खिलाफ डराना, उठाना या प्रताड़ित करना घोर अपराध है। दोषियों के खिलाफ निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में देखा जा रहा है कि एक लड़की को पकड़कर जबरन कार में बिठाया जा रहा है और इस दौरान कुछ पुलिस कर्मियों को भी देखा जा सकता है, लेकिन कोई इस हरकत को रोकते हुए नजर नहीं आ रहा है। वीडियो को शेयर करते हुए दावा यह किया जा रहा है कि मुस्लिम लड़की ने दूसरे समुदाय के लड़के के साथ विवाह प्रस्ताव ठुकरा दिया और इसी वजह से दिन दहाड़े उसका अपहरण कर लिया गया। वायरल वीडियो कब का है, कहां का है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ऐसे में वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान ऐसा प्रतीत हो रहा है कि युवती को जबरन कहीं ले जाया जा रहा है और युवती जाना नहीं चाह रही है। वीडियो में कुछ पुलिसकर्मी भी नजर आते हैं और वीडियो के दावे पर यही शक हुआ हमें कि आखिर पुलिस की मौजूदगी में कोई इस तरह की हरकत क्यों करेगा, जबरन लड़की को उठाकर क्यों ले जाया जाएगा। इसके अलावा वीडियो में एक गाड़ी भी नजर आ रही है। जब हमारा ध्यान उसके नंबर प्लेट पर गया तो फिर ये गाड़ी राजस्थान के नंबर की निकली, मतलब वायरल वीडियो राजस्थान का हो सकता है, लेकिन सर्च के दौरान हाल फिलहाल में वायरल दावे की पुष्टि करती कोई प्रमाणिक रिपोर्ट हमें नहीं मिली, लिहाजा हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें हमारा सबसे पहला सवाल ये कि अगर दावा सच्चा है तो फिर वायरल हो रहा वीडियो कब का है और कहां का है। हमारा दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो को धार्मिक एंगल देकर वायरल तो नहीं किया जा रहा। अब देखिए सच और झूठ क्या है।
2: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने वायरल हो रही वीडियो की जांच शुरू की। फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे इंटरनेट पर खंगाला। इस दौरान हमें वायरल वीडियो से जुड़ी न्यूज रिपोर्ट एक वेबसाइट पर मिली। इस रिपोर्ट को 2 महीने पहले प्रकाशित किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार वायरल वीडियो मैनपुरी में हुई घटना का है। लड़की अपने प्रेमी से मिलने के लिए राजस्थान से आई थी और उसके साथ ही रहना चाहती थी, लेकिन उसके परिवार वाले उसे वापस लेकर जा रहे थे। रिपोर्ट में वीडियो भी मौजूद है। हमें दावे से जुड़ी एक रिपोर्ट एक वेबसाइट पर मिली। रिपोर्ट को 9 मार्च 2026 को प्रकाशित किया गया था। इसके अनुसार मामला मैनपुरी के कुर्रा थाना परिसर का था। पाए गांव के रहने वाले 25 साल के ऋतिक यादव राजस्थान के भीलवाड़ा में नौकरी करता था। वहीं उसकी मुलाकात 22 साल की एक लड़की से हुई थी। दोनों का 2 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। लड़की के घर वालों को पता चला तो उन्होंने ऋतिक के खिलाफ भीलवाड़ा थाने में शिकायत दर्ज करा दी। पुलिस ने ऋतिक को थाने बुलाया और घंटों बिठाए रखने के बाद लड़की से दूर रहने की हिदायत दी। इस घटना के बाद ऋतिक डर गया और वह वापस अपने गांव लौट गया। इस बीच प्रेमिका ने उससे फोन पर बात की तो ऋतिक ने पूरी घटना बताई। इसके बाद लड़की घर पर बिना बताए ऋतिक के गांव आ गई और वहां रहने लगी। लड़की के घर वाले भी कुछ दिन बाद पुलिस लेकर मैनपुरी पहुंचे। एक आधिकारिक YouTube चैनल पर भी हमें दावे से जुड़ी रिपोर्ट मिली। इस वीडियो रिपोर्ट को 10 मार्च 2026 को अपलोड किया गया था। यहाँ भी घटना को प्रेम प्रसंग का मामला बताया गया है। साथ ही यह भी जानकारी दी गई है कि लड़की को वापस ले जाने वाले उसके अपने घर वाले ही थे। पड़ताल के दौरान हमें दावे से जुड़ी एक पोस्ट मैनपुरी पुलिस के आधिकारिक एक्स अकाउंट पर भी मिली। पोस्ट को 9 मार्च 2026 को शेयर किया गया था। मौजूद जानकारी के मुताबिक मामला प्रेम प्रसंग का था। लड़की के माता पिता ने लड़की के लापता होने की शिकायत दर्ज करवाई थी। इसके बाद उसके घर वाले पुलिस के साथ उसे वापस लाने के लिए मैनपुरी पहुंचे थे। इस तरह हमारी पड़ताल से साफ हो गया कि लड़की को जबरन ले जाने के वायरल वीडियो को लेकर किया जा रहा दावा गलत है।
3: देखिए, कल एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक लड़की को अगवा करने वाली बात सबने बताई गई थी, लेकिन जब इसमें आगे जांच की गई तो ये संज्ञान में आया है कि राजस्थान पुलिस यहाँ आई थी और उस ये भी हमको समझ सूचना मिली है कि लड़की की राजस्थान के अंदर मिसिंग दर्ज की गई थी, जिसके कारण पुलिस मौके पर यहाँ पर आई थी और लड़की को लेके गई। देखिए, ऐसा है कि क्योंकि इसमें मिसिंग लिखी गई थी तो जो राजस्थान की जो पुलिस आई थी उसने नियमानुसार कार्रवाई करते हुए लेके गई।
2: असल में वायरल वीडियो उत्तर प्रदेश के मैनपुरी का है और प्रेम प्रसंग से संबंधित मामला है। इस मामले में कोई सांप्रदायिक एंगल नहीं है, लड़की को लेकर जाने वाले उसी के घर वाले हैं। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: फैक्ट चेक में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद है।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
5: Are you wondering how he can fit a teaching degree into a busy lifestyle? WGU's Bachelor of Arts in Elementary Education degree program is designed for working adults. With our competency-based curriculum model, you can progress through courses as soon as you prove mastery of the material. No rigid seat or class times. No endless waiting for your teaching dream to begin. Just a degree that fits your schedule. Get classroom ready on your time. Learn more at wgu.edu.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़।
1: और वक्त हो चला है फैक्ट चेक की आखिरी सफर का, जहां हम पेश करने वाले कुछ ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं।
6: सोशल मीडिया पर एक भावुक कर देने वाला वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग इंसानियत और मासूमियत दोनों की तारीफ कर रहे हैं। वीडियो में एक बच्चा सड़क किनारे महात्मा गांधी की तरह शांत और स्थिर खड़ा नजर आता है। इसका पूरा शरीर सिल्वर पेंट से ढका हुआ है। वो एक स्टैचू की तरह खड़ा रहता है, लेकिन भीड़ में मौजूद लोग उसे नजरअंदाज कर आगे बढ़ते जाते हैं। तभी एक छोटी बच्ची वहां आती है और बच्चे को ध्यान से देखकर समझ जाती है कि वो भूखा है। बिना किसी हिचकिचाहट के वो अपने हाथ में रखा खाना उसके साथ साझा कर देती है। इसके बाद दोनों बच्चे मिलकर सादगी और प्यार के साथ खाना खाते नजर आते हैं, जो देखने वालों का दिल छू लेता है।
7: 42 डिग्री गर्मी में, कड़कती धूप में, पसीने से लथपथ हम बच्चे रोज स्कूल जाते हैं। अरे यार, हम बच्चों में दया करो, हम बच्चों की तबीयत खराब हो जाएगी।
6: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक छोटे बच्चे का मजेदार और बेहद रिलेटेबल वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसे देखकर लोग मुस्कुरा भी रहे हैं और उसकी बात से सहमत भी हो रहे हैं। वीडियो में बच्चा भीषण गर्मी में स्कूल जाने को लेकर अपनी नाराजगी मजाकिया अंदाज में जाहिर करता नजर आता है। वो मासूमियत से कहता है कि अगर वो कभी प्रधानमंत्री बना तो पूरी गर्मी के दौरान स्कूल बंद कर देगा और बच्चों पर थोड़ी दया करेगा। उसकी ये बेबाक बात और कॉन्फिडेंस लोगों को खूब पसंद आ रहा है। बच्चा जिस ईमानदारी और सादगी से अपनी बात रखता है, वो इंटरनेट यूजर्स को काफी क्यूट लग रही है।
7: जब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा ना, गर्मियों में स्कूल जाना बैन कर दूंगा। यू आर बेटर अंडरस्टैंड।
6: सोशल मीडिया पर लंदन का एक दिलचस्प वीडियो इन दिनों खूब चर्चा में है, जिसमें एक विदेशी शख्स देसी स्टाइल में झालमुड़ी बेचता नजर आ रहा है। ये शख्स भारतीय स्ट्रीट फूड झालमुड़ी को उसी पारंपरिक अंदाज में तैयार कर लोगों को परोस रहा है, जिससे विदेश में भी भारतीय स्वाद की झलक देखने को मिल रही है। हाल ही में पीएम मोदी भी झारग्राम में एक दुकान पर झालमुड़ी का स्वाद लेते नजर आए थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था और लोगों ने उसे खूब पसंद किया था। अब लंदन के इस वीडियो को उसी ट्रेंड से जोड़कर देखा जा रहा है, जहां भारतीय फूड कल्चर की लोकप्रियता दुनिया भर में फैलती दिख रही है। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक दिल छू लेने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग भावुक भी हो रहे हैं और कार मालिक की जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। वीडियो में एक छोटा बच्चा फरारी के पास खड़ा होकर फोटो खिंचवाने की कोशिश करता नजर आता है। उसी दौरान कार का मालिक वहां आता है और जो करता है उसने सभी का दिल जीत लिया। कार मालिक बच्चे को न सिर्फ फरारी के पास बैठने देता है, बल्कि उसे ड्राइविंग सीट पर भी बैठा देता है, जिससे बच्चे की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। यह अनोखा और भावुक पल कैमरे में कैद हो जाता है और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग इस वीडियो को इंसानियत की असली मिसाल बता रहे हैं। चलती ट्रेन के अंदर एक महिला के वट सावित्री व्रत की पूजा का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि महिला ट्रेन कोच के फर्श पर एक बोतल में बरगद का पौधा रखकर पूरी श्रद्धा और विधि विधान के साथ पूजा कर रही है। वो जल, दूध, रोली, अक्षत, फूल और दीप अर्पित करते हुए परिक्रमा भी करती दिखाई देती है। इस दौरान उसके परिवार के सदस्य भी उसकी मदद करते नजर आते हैं। ये दृश्य देखकर यात्रियों के साथ साथ सोशल मीडिया यूजर्स भी हैरान रह गए हैं और महिला की आस्था और समर्पण की जमकर तारीफ कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि ये वीडियो सच्ची भक्ति और परंपरा के प्रति गहरे विश्वास को दर्शाता है। सोशल मीडिया पर इन दिनों यूके से सामने आया एक वीडियो लोगों के बीच जमकर चर्चा में है, जिसे देखकर हर कोई थोड़ा कंफ्यूज भी हो रहा है और हैरान भी। वीडियो में सड़क, माहौल और आसपास का नजारा पूरी तरह भारतीय, खासकर पंजाब जैसा दिखाई देता है, जिससे लोग इसे देखकर समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये ब्रिटेन है या भारत। हर तरफ देसी झलक, पंजाबी टच और वही माहौल देखकर कई यूजर्स इसे मिनी पंजाब तक कह रहे हैं। कुछ लोगों का तो कहना है कि ये लुधियाना जैसा लग रहा है। हालांकि बताया जा रहा है कि ये वीडियो यूके का है, जहां भारतीय समुदाय की मौजूदगी ने पूरे माहौल को देसी रंग दे दिया है। इंटरनेट पर इन दिनों एक मजेदार वीडियो ने जमकर बवाल मचा रखा है, जिसमें लोग मजाक में धोनी, कोहली और रोहित को एक साथ ऑटो में घूमते हुए दिखा रहे हैं। वीडियो में तीन लोग अलग अलग टीमों की जर्सी पहनकर ऑटो में बैठे नजर आते हैं, जिससे पहली नजर में ऐसा लगता है जैसे सच में तीन बड़े क्रिकेट स्टार्स साथ में घूम रहे हों। लेकिन बाद में साफ होता है कि ये फैंस का मजेदार कॉपी और क्रिएटिव वीडियो है। आईपीएल के सीजन में फैंस का क्रेज भी चरम पर है और लोग अपने पसंदीदा खिलाड़ियों की तरह कपड़े पहनकर, स्टाइल अपनाकर और एक्टिंग करके उन्हें ट्रिब्यूट दे रहे हैं। इंटरनेट पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो छाया हुआ है जिसने देखने वालों के होश उड़ा दिए हैं और लोग इसे बार बार देखकर भी यकीन नहीं कर पा रहे हैं। इस वीडियो में एक शख्स अपनी गर्दन से करीब 9000 किलो वजन की बस को खींचता नजर आता है, जिसे देखकर लोग उसे ह्यूमन क्रेन कह रहे हैं। ये कारनामा अरुबा के रहने वाले एगमंड मौलाना ने किया है, जिन्होंने करीब 20 मीटर तक इस भारी बस को अपनी गर्दन के सहारे खींचकर एक अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। उनके इस हैरान कर देने वाले स्टंट ने पुराने रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है और अब उनका नाम दुनिया के सबसे ताकतवर इंसानों में गिना जा रहा है। लखनऊ से सामने आया एक मजेदार वीडियो इन दिनों जमकर सुर्खियां बटोर रहा है, जिसे देखकर लोग ठहाके लगाने पर मजबूर हो जा रहे हैं। वीडियो में एक शख्स अपने डॉगी को टहलाने निकला है, लेकिन खास बात यह है कि वह खुद पैदल नहीं बल्कि स्कूटी पर बैठा हुआ नजर आता है। वहीं डॉगी सड़क पर दौड़ता हुआ और उसके साथ साथ वॉक कर रहा है और मालिक स्कूटी चलाते हुए उसकी रस्सी पकड़े हुए हैं। ये अनोखा नजारा देखकर लोग हैरान भी हैं और खूब एंटरटेन भी हो रहे हैं। वीडियो रिकॉर्ड करने वाला शख्स भी मजेदार कॉमेंट्री करता सुनाई देता है।
8: स्कूटी से कुत्ता टहला रहे हैं।
6: देखो अंकल, स्कूटी से डॉगी घुमा रहे हैं, खुद नहीं चल रहे लेकिन डॉगी को जरूर टहला रहे हैं।
8: चलो कम से कम कुत्ता तो टहला रहे हैं, खुद नहीं टहल ले।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
9: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn. Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम
1: अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात सुप्रीम कोर्ट की, जिसने आज आवारा कुत्तों से जुड़े मामले में दायर की गई सभी याचिकाएं खारिज करते हुए कहा कि साल 2025 में दिया गया आदेश ही लागू रहेगा, यानी आवारा कुत्तों को सड़कों से हटाने का आदेश नहीं बदला जाएगा। तीन जजों की बेंच ने अपने फैसले में साफ कहा कि लोगों की जान की रक्षा और सुरक्षा ज्यादा जरूरी है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश भी दिया कि भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के नियमों को मजबूत करके और उन्हें राज्य सरकारें सही तरीके से लागू करें।

0: देश भर में आवारा कुत्तों के काटने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, हर कोई इनका शिकार बन रहा है। गली हो या मोहल्ला, सड़क हो या बाजार, पार्क हो या फिर दूसरी सार्वजनिक जगह, आए दिन लोग आवारा कुत्तों के हमलों का शिकार हो रहे हैं। ये मामला देश में इतना गंभीर हो चुका है कि इस पर देश की सबसे बड़ी अदालत को फिर से सख्ती दिखानी पड़ी है। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने डॉग लवर्स को बड़ा झटका दिया और आवारा कुत्तों से जुड़े मामले में दायर सभी याचिकाएं खारिज करते हुए कहा कि नवंबर 2025 में आवारा कुत्तों के पुनर्वास और नसबंदी पर दिए गए निर्देश ही लागू होंगे और जो सरकार और अधिकारी इनका पालन नहीं करेंगे उन पर अवमानना का केस चलेगा।
1: कुत्ते के काटने की, उसके शिकार लोगों की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं। ऐसे में कोर्ट ने साफ किया है कि जो राज्य सरकारें कोर्ट के आदेश की अवमानना कर रही हैं, उन राज्य सरकारों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने ये स्पष्ट कर दिया है कि 22 अगस्त और 7 नवंबर 2025 को दिए गए फैसले लागू रहेंगे।
0: आपको बता दें कि नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों, अस्पतालों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, हाईवे जैसे पब्लिक प्लेस से आवारा कुत्तों को हटाने के निर्देश जारी किए थे। साथ में कोर्ट ने कहा था कि आवारा कुत्तों को जहां से पकड़े नसबंदी और टीकाकरण के बाद वहीं ना छोड़े, ऐसे कुत्तों को शेल्टर होम में रखे। इसके अलावा अदालत ने सड़कों पर कुत्तों को खाना खिलाने पर भी बैन लगाया था। इसके बाद कई डॉग लवर्स और एनजीओ ने निर्देशों को रद्द कराने के लिए याचिकाएं दाखिल की, जिन पर सुनवाई करते हुए 3 जजों की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि लोगों की जान की रक्षा और सुरक्षा ज्यादा जरूरी है।
1: सार्वजनिक जगहों पर, पार्क, स्कूल, सड़कें, इन पर आवारा कुत्तों को रहने नहीं दिया जाएगा और इसको वहां से उठाया जाए। कुत्तों को सार्वजनिक जगहों पर खाने पीने की चीजें ना दी जाएं और ये साफ किया है कि उनके लिए शेल्टर होम बनाए जाएं, उनका स्टरलाइजेशन किया जाए और साथ ही उनको पब्लिक प्लेस पर आने की इजाजत ना दी जाए। साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो राज्य सरकारों ने दावे तो किए हैं लेकिन इसके बावजूद राजस्थान देखें, बिहार देखें और बाकी लगभग सभी राज्यों में कुत्ते काटने की घटनाएं बढ़ी हैं।
0: इतना ही नहीं, 3 जजों की बेंच ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश जारी करते हुए कहा कि राज्य सरकारें AWBI यानी एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के नियमों को मजबूत करें और सही तरीके से लागू करें और हर जिले में पूरी तरह काम करने वाला एक ABC यानी एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर बनाया जाए। साथ ही आवारा कुत्तों की आबादी के हिसाब से ABC सेंटरों की संख्या बढ़ाई जाए, एंटी रेबीज दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, NHAI नेशनल हाईवे पर आवारा पशुओं की समस्या से निपटने के लिए जरूरी कदम उठाए, अदालत के आदेश को लागू करने वाले नगर निगम और सरकारी अधिकारियों को कानूनी सुरक्षा दी जाए। इसके अलावा रेबीज से संक्रमित या बेहद खतरनाक कुत्तों के लिए कानून के तहत जरूरत पड़ने पर यूथेनेशिया यानी दया मृत्यु का इस्तेमाल भी किया जा सकता है।
2: मेनली जजमेंट को 3 पार्ट्स में बांटा गया है। फर्स्ट जो पार्ट है वो रिगार्डिंग मॉडिफिकेशन, जो एप्लीकेशन थी जजमेंट के रिगार्डिंग, जो पहला था उसके रिगार्डिंग दी हुई थी उसमें है। सेकंड पार्ट में जो SOP है, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, उसके रिगार्डिंग है। और जो थर्ड पार्ट है वो स्पेसिफिकली थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट कहूंगा क्योंकि उसमें कंप्लायंस बाय स्टेट्स एंड यूटीज की बात की गई है। मेन बिंदु ये है, तो आर्टिकल 21 के अंतर्गत ये चीज बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट मानी गई है कि जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, उन सबको एक राइट टू लाइफ है और वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है ताकि वो बिना किसी फियर के सोसाइटी में, समाज में कहीं भी आ जा सके, चाहे वो एयरपोर्ट्स हो, स्कूल्स हो, कॉलेज हो, सड़कें हो, रोड हो, पब्लिक प्लेसेज हो। तो एक तो ये है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स है और यूटीज हैं, जो पिछले ऑर्डर्स थे कोर्ट के उनको भी और जो आज का ऑर्डर है उसका जो कॉम्प्लायंस है उसे एंश्योर करेंगी। और साथ में आज के जजमेंट में एक इम्पोर्टेंट चीज और है, जो म्यूनिसिपल अथॉरिटीज के ऑफिसर्स हैं और जो उनके कर्मचारी हैं उन्हें एक प्रोटेक्शन की बात भी की गई है कि अगर वो अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करते हैं, जो डॉग बाइट के केसेज को स्टॉप करने के लिए जो ABC प्रोग्राम है उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी और मेजर्स हैं उन्हें

0: राज्य का कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन इसको अमल नहीं कर सकता है। एक तो एक रुपए सरकार ने नहीं डाला है, दूसरा कोई भी शेल्टर्स इन 7 महीनों में बनाने हैं, तीसरा जो आप कह रहे हो कि रेलवे स्टेशन से कुत्ते हटाओ, आप जाकर के देखिए कैसे हटा सकते हैं हम लोग। लोग आते खाने के साथ, दरवाजे हर वक्त खुले हैं, तो फिर आप मुझे बताइए कि कुत्ते नहीं आएंगे तो कौन आएगा? बंदर आएंगे, कुत्ते आएंगे, जहाँ खाना मिलता है वहीं जानवर आता है। उसके बाद आपने कहा है कि बस स्टॉप से हटाओ, अब बस स्टॉप से कैसे हटाओ, झाड़ू लेकर के हटाऊँ, क्या करूँ मैं? इस देश में 1 लाख बस स्टॉप्स हैं, 1 लाख बस स्टॉप्स में कभी 4 लोग खड़े हैं, कभी 1 लोग खड़ा है, कभी कुत्ता मिलता है, कभी नहीं भी मिलता है, तो कैसे हटाओ और किधर डालो?
1: ये उम्मीद की जाती है कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद अब स्टेट्स इसको सीरियसली लेंगे, बजट का प्रावधान करेंगे, मैन पावर का प्रावधान करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रावधान करेंगे और एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स को सकुशल किया जा सके।
2: हटाने के जो कर्मचारी जाते हैं तो टकराव ना हो तो उनको संरक्षण भी कोर्ट ने यहाँ पर दिया है,
1: क्योंकि बहुत झगड़े इस प्रकार के केसेस में हो जाते थे, कभी कभी आपसी टकराव भी हो जाते थे, तो उसके संबंध में भी कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए हैं कि यदि कुछ छोटी मोटी बात हो तो उसमें FIRs ना दर्ज हो, लेकिन अगर कोई वेक्सेशियस या कोई खराब काम कोई करता है, कोई इस तरह गलत इरादे से जानवर को नुकसान पहुंचाता है तो उसके लिए कोई छूट नहीं है।
3: आवारा कुत्तों से जुड़ा मामला जुलाई 2025 से शुरू हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में आवारा कुत्तों के हमलों के मामले पर स्वतः संज्ञान लिया था, जिसके बाद इसको लेकर अदालत में लंबी लड़ाई एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट ने लड़ी, लेकिन कोर्ट ने अपने आदेश में बदलाव करने से इनकार कर दिया। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे,

0: एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
2: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
3: कौन से ग्रह का मंत्र दोपहर में जपने पे ज्यादा फायदा होता है? किस ग्रह का मंत्र भोर में जपने पे लाभ होता है? और कौन सी माला से हर तरह का मंत्र जपा जा सकता है? कौन से हैं नौ ग्रह, कैसे हैं उनके मंत्र और क्या है मंत्र जपने का विधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
5: इटली पहुंचे पीएम मोदी, एयरपोर्ट से होटल तक जबरदस्त स्वागत। जॉर्जिया मेल्ली ने सेल्फी पोस्ट कर कहा, रोम में आपका स्वागत है मेरे दोस्त, आज द्विपक्षीय मुलाकात। डीआरडीओ के नाम एक और बड़ी कामयाबी, आंध्र प्रदेश के कुरनूल में यूएलपीजीएम V3 मिसाइल का सफल ट्रायल, अब ड्रोन से ही ढेर होंगे दुश्मन के टैंक। भीषण गर्मी से जूझ रहा है पूरा उत्तर भारत, हीट वेव का अलर्ट, कई शहरों में पारा 47 डिग्री के पार, लोगों से सावधानी बरतने की अपील। देवभूमि में धूमधाम से जारी है चारधाम यात्रा, अब तक करीब 16.5 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, खराब मौसम के चलते केदारनाथ में हेली सेवा रोकी गई। गंगा दशहरे के पावन दिन उत्सव के रंग में रंगेगी अयोध्या, धूमधाम से मनाई जाएगी राम दरबार स्थापना की पहली वर्षगांठ, 26 मई को होंगे कई विशेष अनुष्ठान।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों।
1: नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे में और मैं हूँ आपके साथ गीतिका पंत। और चलिए अब देख लेते हैं अच्छी बात पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के साथ।
2: आपने कभी विचार किया ये सब सुख क्या है? कभी तुमने सोचा? हम आपको संसार के आज सात सुख बताएंगे। कितने? सात। सब सुख कौन कौन? उनमें सात सुख हमने निकाले। शायद गलत हो, एक आध दो तुम अपनी तरफ से जोड़ लेना। हमारे साथ सुनो, संसार के सात सुख कौन से हैं? पहला सुख निरोगी काया। कौन सा पहला सुख है? खूब अमीर आदमी हो, बढ़िया बढ़िया बंगले बने हो, आहा फाइटर जेट हो, फ्लाइट हो, चील गाड़ी, हेलीकॉप्टर, लेकिन आगे लगी सुगर हो गई हो, का काम का रुपया ढले रहा हूं भैया, खूब पैसे वाले हो, अरबपति खरबपति, खूब आप हॉस्पिटल बना लीजिएगा, पर भैया रोग पर कुछ भी काम नहीं करता। तो पहला सुख क्या है? पहला सुख निरोगी काया। तो क्या ये हनुमान जी से मिलेगा? हाँ मिलेगा, प्रमाण दीजिए, लीजिए। कहां से? हनुमान चालीसा से। कहां लिखा? सुनिए, पढ़िए, गाइए ना।

तो पहला सुख निरोगी काया है वो कहां से मिल पाएगा भैया? हनुमान जी की कृपा रही, आहार शुद्ध रखोगे, व्यवहार शुद्ध रहेगा। हनुमान जी खाते क्या है? फलाहार, बढ़िया पेट रहता, नो फैट नो वेट, कोई वजन वजन नहीं भैया, कोई फैट वेट नहीं। अमीर आदमी बनने के बाद साइकिल छूट जाती, मोटरसाइकिल खरीदता और ज्यादा पैसा बढ़ता, कार खरीदता, आहा, पर ऐसा मकान बनाता कि बगल में ही सब कुछ करेंगे, बाथरूम का गेट खोला वही नहाया वही खाली हो गए, सब कुछ बगल में, क्यों अमीर है। कितना उल्टा जमाना आ गया। हम एक दिन बैठे बैठे बड़ा हंस रहे थे, पहले के जमाने में आदमी पेट खाली करने के लिए बाहर जाता था, पैसा घर पे गाड़ता था, आजकल के जमाने में पेट खाली घर पे कर रहा है और पैसा बाहर लॉकर में धर रहा है। बताइए तो क्या गजब जमाना आ गया। हनुमान जी बोलो सीताराम, जोर से बोलो, जोर से बोलो। तो भैया निरोगी काया, आहार शुद्धि, व्यवहार शुद्धि, भोजन बढ़िया कीजिए, भजन भी बढ़िया कीजिए। भोजन से शरीर पुष्ट होता है, भगवान के भजन से आत्मा तुष्ट होती है। तो भोजन बढ़िया कीजिए, आहार शुद्ध रखिए, ये हनुमान जी पहला सुख देते। अच्छा संसार का दूसरा सुख क्या है? कोई बहुत अमीर आदमी हो जाए या बहुत निरोगी हो जाए, कोई रोग नहीं, पर मूढ़ हो। मूढ़ जानते हो ना, मूर्ख, अज्ञानी, ना खुद का ज्ञान, ना जगत का, ना परमात्मा का, तो क्या उसका जीवन किसी काम का है? जरा बोलिए, किसी काम का नहीं। जिसने खुद को नहीं जाना, ब्रह्म को नहीं जाना, वह किसी काम का नहीं, उसका जीवन निरर्थक है, बेकार है। अभी हम पटकी डाल रहे थे तब कोई एक महाशय हमारे पास आए, अभी अभी की बात, बिल्कुल आज की। अब वो हमारे आकर बोले हमको आत्म साक्षात्कार करना है। हमको बड़ा अच्छा लगा सुनकर, बहुत प्रियता लगी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उन्होंने तो समझ लिया आलू भटा, आत्म साक्षात्कार खुद को जानना है। अंग्रेजी में कहें तो हु आई एम, मैं कौन हूं, इसे आत्म साक्षात्कार कहते हैं। तो क्या यह संभव है? बिल्कुल संभव है। कैसे? ये ज्ञान से संभव नहीं है, ध्यान से संभव है। तो महाराज जी, कोई मूढ़ हो, अज्ञानी हो, तो क्या उसकी विपदा को तुम्हारे हनुमान जी मिटा सकते हैं? बिल्कुल मिटा सकते हैं। इस श्लोक का वर्णन है, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। हनुमान जी ज्ञानियों में अग्रगण्य है, और इसी की चौपाई बना करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दी है हनुमान चालीसा में, जय

पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख ज्ञान प्राप्त हो जाना, बुद्धत्व को पा जाना, ब्रह्म को बारे में जान लेना। अरे तुम्हें ब्रह्म का ज्ञान हो या ना हो, ज्ञानी वो नहीं है जिसने पीएचडी या डीएड बीएड कर ली। मेरे प्रियजनों, ज्ञानी वो है जिसने खुद को जान लिया। रावण ने दुनिया का तो ज्ञान रखा था, चार वेद छह शास्त्र, दस सिर जो हैं रावण के वो चार वेद और छह शास्त्र के प्रतीक हैं, लेकिन रावण को सब ज्ञान था पर ना तो आत्मज्ञान था ना ब्रह्म ज्ञान था। ब्रह्म वेत्ता नहीं होता, विद्वान था विद्यावान नहीं था। हनुमान जी विद्वान नहीं है, विद्यावान है। रावण विद्वान है, हनुमान जी क्या है? विद्यावान। हनुमान चालीसा में उत्तर भी है, विद्यावान गुणी अति चातुर। तो रावण विद्वान है, हनुमान जी विद्यावान है। मेरे प्रियजनों, मेरी आत्माओं, खुद को जान लेना, खुद को समझना, यह आत्मज्ञान है। यह कैसे प्राप्त होगा? हनुमान जी के ध्यान से, हनुमान जी की पूजा से आत्मज्ञान भी प्राप्त हो जाएगा। ये दूसरा सुख भी तुम्हें मिलेगा। ये हम सब सुख पर आपको बता रहे हैं, उसमें सात सुख। अच्छा, तीसरा सुख क्या है संसार का? मान सम्मान पा लेना। क्या पा लेना? सब लोग मरे जा रहे हैं, बहुत अमीर लोग कुछ इसलिए कथा करवाते हैं कि दानी या धर्मात्मा है, इसलिए नहीं, हमारा नाम हो जाए कि हम बागेश्वर बाबा जी को बुलाए थे। अब आप लोग यजमान जी के ऊपर मत देखना कि इन्होंने भी यही किया है, आप लोग गलत मत ले जाना। हम एक बहुत तर्क वाली बात बता रहे हैं। यजमान जी आप बुरा मत मानना कि तुम हमारी दक्षिणा बंद कर दो, आफत हो जाएगी भैया। राम राम राम राम राम, सीताराम कहो सीताराम कहो सीताराम कहो, पर सत्य बोले बिना हम रुक नहीं सकते। सुनिए, बहुत लोग इसलिए कथा नहीं करवाते कि वो कथा के जिज्ञासु होते हैं या पिपासु होते हैं या कथा के रसिक होते। बहुत लोग क्या, 98% लोग कथा वो करवाते हैं जिनको नाम कमाना होता है। लेकिन एक बात बोले भैया, कह दो बोलो। अरे कहो तो, जिनके नाम में ही पीछे मान लगा हो उसे क्यों सम्मान प्राप्त नहीं होगा? हनुमान जी के नाम के पीछे क्या लगा? मान। हनु हनु, जिनके नाम के पीछे लगा मान, इनकी जो पूजा करेगा वो पा जाएगा सम्मान। तो यह तीसरा सुख भी, अब यजमान जी को सम्मान मिल जाए तो इसमें इनकी कोई महिमा नहीं है, हनुमान जी के नाम की महिमा है। और मिलना भी चाहिए, कोई ऐसा दिलेर हो तो जिसने नीम करोली वाले बाबा को भी मुरादाबाद में विराजमान करवा दिया हो। धन्य है इनका ट्रस्ट, चाहे वो अनिल कुमार जी हो, चाहे विनीत गुप्ता जी हो, चाहे शैलेंद्र गुप्ता जी भी हो और चाहे प्रदीप गुप्ता जी भी हो, धन्य है ये लोग जिन्होंने मिलकर के एक ऐसा आयोजन यहां पर करवाया है। 18, 19 और 20 तारीख का इतिहास में लिखा जाएगा, मुरादाबाद भी भगवा नजर आएगा। बोलो जय सियाराम। अब किसी की पेट में दर्द हो जाएगा तो कम खाएगा, हमारा क्या बिगाड़ पाएगा? हम तो परदेसी हैं, 3 दिन बाद अपने घर जाएगा, बागेश्वर धाम जाएगा, फिर अगली बार जहां जाएगा वहां फिर कथा गाएगा, फिर धर्म विरोधियों को हिलाएगा, उनकी ठटरी बार कर फिर वापस बागेश्वर धाम आएगा। बोलो जय सियाराम, जय सियाराम। तो हनुमान जी सब सुख देने, हनुमान जी सब सुख देने वाले हैं। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख ज्ञान प्राप्त हो, तीजा सुख मान प्राप्त हो, चौथा सुख कौन सा? धर्म कर्म पर चलना। किस पर चलना? बोलो बोलो बोलो, सतमार्ग पर चलना। ये तो हनुमान जी से ही सीख सकते, ये काम भी हनुमान जी का है। ये हनुमान जी की शरण में जाने से स्वभावता आदमी सावधान हो जाता। दुनिया में और किसी देवता को लोग डरे या ना डरे,
पर हनुमान जी को जरूर डरते हैं भैया, बजरंग बड़ी बड़े खतरनाक हैं। क्यों? क्योंकि इनकी मुक्का इनकी पूंछ की कथा सबने सुन रखी है कि लंका में क्या पूंछ का चमत्कार दिखलाया, रावण का भी दिमाग हिलकर बाहर आ गया था, ऐसे खतरनाक श्री हनुमान जी महाराज हैं। तो हनुमान जी को मानने वाला सत्कर्म पर सुतः चलता है, धर्म कर्म का पालन सुता करने लगता है, उसको यह सुता ही सुख प्राप्त हो जाता। बोलो जय सियाराम। अब पांचवा सुख क्या है? संपत्ति से भरपूर। घर में माया। तो क्या ये हनुमान जी से मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। किसको मिली?

लाया था जब पहली बार विभीषण जी लंका में मिले, प्रणाम हुआ, परिचय हुआ। विभीषण जी बोले, अब आप हमें बताओ हम करें क्या, आपको राम जी के दर्शन हो गए, हमको नहीं भय। हनुमान जी बोले, हमें राम जी के हो गए पर हमें जानकी जी के नहीं भय। तो विभीषण जी बोले, करें क्या? हनुमान जी बोले, अदला बदली कर लो। क्या? तुम हमें जानकी जी का पता बता दो, हम जानकी जी से दर्शन कर ले, जानकी माता के, और हम तुम्हें राम जी से मिलने का पता बता देंगे, तुम राम जी के दर्शन कर लेना। विभीषण जी बोले, जय हो आपकी। हनुमान जी धीरे से बोले, पार्टी बदल लो। आजकल पार्टी बदलने का खेल बड़ा चलता है। हनुमान जी ने पहले ही एक चौका मार दिया था लंका में। विभीषण जी बोले, कौन सी पार्टी? हनुमान जी बोले, जावा लो, झंडा लगा लो, जय श्री राम। विभीषण जी बोले, होगा क्या? हनुमान जी बोले, हम अभी वचन नहीं दे रहे पर बहुत बड़े पद पे पहुंचोगे, बहुत लंबे जाओगे, भविष्य तुम्हारा इसी पार्टी में है। विभीषण जी बोले, तुम चलो, हम पीछे से आ रहे दुपट्टा लेकर। हनुमान जी गए, राम जी के पास आए, जानकी जी की खबर दी, विभीषण जी आए। राम जी बोले, मिलना चाहिए या नहीं? हनुमान जी बोले, मिल लो, नेता खतरनाक है, यही मुख्यमंत्री को गिरा सकता है, यही मुख्यमंत्री की सरकार को गिरा सकता है। राम जी भी कम जादूगर नहीं, कम दार्शनिक नहीं, कम राजनेता नहीं। राम जी ने जैसे ही देखा, बोले, आओ लंकेश्वर, आओ लंकेश्वर। विभीषण पीछे देखने लगा कि कहीं हमारा भाई तो नहीं आ गया है, पीछे से कहीं हमारा भाई तो नहीं आ, क्योंकि लंकेश्वर तो भाई है, हम तो हैं ही नहीं। विभीषण ने पीछे देखा, राम जी से बोला, किसे बुला रहे? राम जी बोले, तुम्हें बुला रहे। विभीषण बोले, हम तो पार्षद नहीं बन पाए, आप सीधा लंकेश्वर बुला रहे। राम जी बोले, तुम कह रहे पार, हम देख रहे तुम्हें कि तुम लंकेश्वर बन रहे। अब विभीषण जी मन ही मन बोले, भार में गो, अब भैया कलई तप जाए ताकि हम लंका के। तो जो बची खुची कसर थी सपोर्ट देने की, वो राम जी ने ऐसी राजनीति का पंच फेंका, बोले तुम लंकेश्वर। मन में लड्डू फूटा। विभीषण ने सोचा, भाई कैसे तपेगा, जल्दी मर जाए ताकि ये लंकेश्वर का वचन पूरा हो जाए। तो जो पहले कम पिटवाना था, बिल्कुल सत्यानाश करने का ठान लिया, क्योंकि लंका का राजा बनना है और लंका के राजा विभीषण जी बन गए तो उनके पास में माल मटेरियल भी आ गया। और भैया पांचवा सुख पूरा हो गया। क्या? हनुमान जी से जुड़ने मात्र से छोटा सा, अच्छा देखो ऐसे समझो, कोई मुरादाबाद का पार्षद सीधा जाए किसी के पास, हो उसको कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष सीधा कहने लगे, आओ मंत्री जी, तब पार्षद का तो दिमाग खराब हो जाएगा, सीधा दिमाग। जैसे अभी ये मेयर आए थे यहाँ के, बैठे हैं अब ये बैठे, देखो क्या दांत खीसा निकाल रहे, जरा कैमरा करो इन पे, ये देखो यहाँ के मेयर क्या खीसा निकाल। अच्छा जे जाए दिल्ली और कोई पार्टी का अध्यक्ष कहे, आइए मंत्री जी, इनका तो दिमाग ऊपर लेवल पे, राष्ट्रीय अध्यक्ष मंत्री बुला रहा, मतलब हम मंत्री बन रहे, फिर तो इन्हें चाहे गृहस्थी बेचने पड़े, झंडा वही लगेगा। ऐसे ही विभीषण जी के साथ हुआ जैसा हमने अभी इनके साथ किया। फिर क्या, विभीषण जी ने रावण में रावण के अत्याचार को खत्म करवा दिया। और जो हनुमान जी से जुड़ने का पांचवा सुख है, सब सुख में कौन सा, धन संपत्ति पा जाना, मान सम्मान पा जाना, वह विभीषण ने पा लिया हनुमान जी से जुड़ने मात्र से। मेरे पागलो तुम भी सुन लो, नेताजी तुम भी सुन लो, तुमको भी अगर कुछ और बनना है तो पकड़ लो,

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. Thank God I get to wake. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
2: Hop on board. We're going for a cruise with some easy listening. Feel the wind in your hair and bounce to the beat of the waves with Yacht Rock Classics from artists like Hall & Oates, Steely Dan, Loggins & Messina, and more. Only smooth sailing ahead with songs that help you get away. Just search Sailing or tell your device to play Sailing on TuneIn.
3: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोर धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को। गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोर धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
2: Hop on board. We're going for a cruise with some easy listening. Feel the wind in your hair and bounce to the beat of the waves with Yacht Rock Classics from artists like Hall & Oates, Steely Dan, Loggins & Messina, and more. Only smooth sailing ahead with songs that help you get away. Just search sailing or tell your device to play sailing on TuneIn.
3: पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: Good news today.
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोर धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोर धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
10: ज्वाइन SRM ISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
11: इटली पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, एयरपोर्ट से होटल तक जबरदस्त स्वागत। जॉर्जिया मेलनी ने सेल्फी पोस्ट कर कहा, रोम में आपका स्वागत है मेरे दोस्त, आज द्विपक्षीय मुलाकात। डीआरडीओ के नाम एक और बड़ी कामयाबी, आंध्र प्रदेश के कुरनूल में ULPGM-B3 मिसाइल का सफल ट्रायल, अब ड्रोन से ही ढेर होंगे दुश्मन के टैंक। भीषण गर्मी से जूझ रहा है पूरा उत्तर भारत, हीट वेव का अलर्ट, कई शहरों में पारा 47 डिग्री के पार, लोगों से सावधानी बरतने की अपील।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोर धौड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
11: नॉर्वे के कामयाब दौरे के बाद इटली पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, इटली के विदेश मंत्री ने किया गर्मजोशी से स्वागत। इटली में होटल के बाहर लगे मोदी मोदी के नारे, प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने के लिए उमड़ा भारतीय समुदाय। पीएम ने लोगों से हाथ मिलाकर किया अभिनंदन स्वीकार, बच्चों ने प्रधानमंत्री मोदी की ड्राइंग पर लिए ऑटोग्राफ। पीएम मोदी के आगमन पर इटली की धरती पर दिखी भारतीय सभ्यता की झलक, स्वागत में कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। विदेशी कथक डांसर्स ने पेश किए कई तरह के नृत्य, पीएम ने भी ताली बजाकर बढ़ाया कलाकारों का उत्साह।
12: वलीरिया वेस्पाजी,
11: विदेशी कलाकारों ने पेश किया शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम, सुरीले वाद्य यंत्रों से गूंजा वातावरण। तबले की थाप, सितार और बांसुरी वादन का लुत्फ लेते नजर आए प्रधानमंत्री, कलाकारों का अभिनंदन स्वीकार किया। इटली में देखी काशी की भी झलक, इटालियन पेंटर ने काशी की तस्वीर पीएम को भेंट की। आज पीएम जॉर्जिया मेलनी के साथ विपक्षीय बैठक करेंगे, कई अहम समझौतों पर लगेगी मोहर। प्रधानमंत्री मोदी के यूरोप दौरे का ये आखिरी पड़ाव, आज रात ही दिल्ली के लिए रवाना होंगे पीएम मोदी। डीआरडीओ ने हासिल की एक और उपलब्धि, एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर मोड में अनमैन्ड एरियल व्हीकल में लॉन्च होने वाली प्रिसीजन गार्डन मिसाइल V3 के डेवलपमेंट ट्रायल के पूरे। आंध्र प्रदेश के कुंडूल के पास से डीआरडीओ टेस्ट रेंज में ULPGM V3 मिसाइल के सफल ट्रायल के पूरे, हल्के वजन वाली यह स्वदेशी मिसाइल बिना मानव रहित ड्रोन से लक्ष्य भेदने में सक्षम। परीक्षणों के दौरान अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड ग्राउंडेड कंट्रोल सिस्टम का किया गया इस्तेमाल, जो संभालता है मिसाइल सिस्टम की कमांड और कंट्रोल क्षमता। ULPGM V3 मिसाइल को वायुसेना और सेना के बेड़े में शामिल लड़ाकू ड्रोनों से किया जा सकेगा इंटीग्रेट, इससे बिना किसी मानवीय जोखिम के दुश्मन की हर हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने में मिलेगी बड़ी मदद। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की छवि हुई और मजबूत, पूरी तरह भारतीय तकनीक से तैयार है ULPGM V3, जिसमें बड़ी संख्या में MES और घरेलू उद्योगों की भागीदारी। पूरे धूमधाम से चल रही है बाबा महेश्वर बाबा के कपाट खुलने की प्रक्रिया, आज गोंडार गांव पहुंचेगी बाबा मद महेश्वर की उत्सव डोली। ओमकारेश्वर मंदिर से उत्सव डोली रवाना होने पर महिलाओं ने भजन गाकर दी अपने आराध्य को विदाई, डोली के साथ साथ चल रहे हैं भक्तों ने लगाया महादेव के जयकारे। कल सुबह वैदिक पूजा अर्चना और कर्क लग्न में खोले जाएंगे बाबा मद महेश्वर के पवित्र कपाट, तैयारियां हो चुकी हैं पूरी। अगले 6 महीने तक यही होंगे बाबा मद महेश्वर के नियमित दर्शन पूजन, सर्दियों में बर्फबारी के कारण मुख्य मंदिर के कपाट बंद होने पर ऊखी मठ लाई जाती है भगवान की उत्सव डोली। पंच केदार में दूसरे केदार के रूप में पूजे जाते हैं मद महेश्वर, मंदिर में भगवान शिव के नाभि के आकार के स्वयंभू शिवलिंग की होती है पूजा। चारधाम यात्रा का कुल आंकड़ा 16 लाख के पार, लगातार बढ़ रहे हैं श्रद्धालुओं की संख्या। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का सैलाब, एक दिन में 79,000 से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए। यात्रियों की संख्या के मामले में केदारनाथ धाम सबसे आगे, एक दिन में 30,000 से अधिक श्रद्धालु बाबा के दर पहुंचे। बद्रीनाथ में भी जारी है भीड़, एक दिन में 21,000 से ज्यादा यात्रियों ने दर्शन किए। यात्रा मार्गों पर वाहनों का दबाव बढ़ा, अब तक 1.5 लाख से ज्यादा गाड़ियां पहुंची। चारधाम यात्रा के दौरान रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक यात्रा मार्गों पर सभी प्रकार के वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और सड़क हादसों को देखते हुए लिया गया फैसला। सभी प्राइवेट और कमर्शियल वाहनों पर लागू होगा ये नियम। ड्राइवर्स के लिए पहाड़ी रास्तों का अनुभव होना जरूरी। गंगा दशहरे के पावन दिन उत्सव के रंग में रंगेगी अयोध्या। धूमधाम से मनाई जाएगी राम दरबार स्थापना की पहली वर्षगांठ। 26 मई को विशेष अनुष्ठान। इस मौके पर अयोध्या में सरयू स्नान के लिए सुबह से ही उमड़ेगी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। पिछले साल इसी पावन तिथि पर राम दरबार सहित 6 उपमंदिरों में की थी विधिवत स्थापना। दिल्ली में अब इधर उधर नहीं फेंकी जाएंगी खंडित मूर्तियां। राजधानी में बनेंगे कलेक्शन सेंटर। वैज्ञानिक तरीकों से किया जाएगा रिसाइकल। गर्मी से तप रही राजधानी दिल्ली। कई इलाकों में 45 डिग्री के पार पहुंचा पारा। 25 मई तक लू का अलर्ट। साल 2024 के बाद 19 मई को दर्ज हुआ दिल्ली का इस महीने का सबसे गर्म दिन। दिल्ली के रिज इलाके में रहा सबसे अधिक 46.5 डिग्री तापमान। गंभीर हीटवेव की स्थिति का संकेत। उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं बढ़ा रही हैं दिल्ली की गर्मी। अगले एक हफ्ते तक दिल्ली एनसीआर में लू की स्थिति बनी रहने के आसार। हिमाचल में भी गर्मी ने तोड़े रिकॉर्ड। मौसम विभाग ने कांगड़ा, किन्नौर और सोलन में 3 दिन के लिए हीट वेव का जारी किया येलो अलर्ट। भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग ने हिमाचल के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश की जताई उम्मीद। 22 मई को कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान। पंजाब हरियाणा में भी बढ़ा गर्मी का सितम। फरीदकोट में पारा 47.3 डिग्री के पार। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बढ़ी सूरज की तपिश। 22 जिलों में पारा 40 डिग्री के पार। बांदा में 48.2 डिग्री तापमान दर्ज। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में रहा सबसे गर्म दिन और गर्म इलाके। 46.3 डिग्री पहुंचा पारा। मैदानों में बढ़ती गर्मी के बीच लोग पहाड़ों का कर रहे हैं रुख। झीलों के शहर नैनीताल में बड़ी सैलानियों की संख्या। लोग बोटिंग का उठा रहे हैं जमकर मजा। पर्यटकों से गुलजार नजर आई बॉल रोड। जूनियर एनटीआर की फिल्म ड्रैगन का धमाकेदार टीजर रिलीज। धमाकेदार झलक ने कई गुना बढ़ा दी है फैंस की एक्साइटमेंट। 21 मई को रिलीज होगा बॉबी देओल स्टारर बंदर का धमाकेदार ट्रेलर। अनुराग कश्यप के निर्देशन में बनी फिल्म का जबरदस्त बस। ओटीटी पर डेब्यू करने जा रहे हैं राजकुमार हिरानी। 3 जुलाई को ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर रिलीज होगी उनकी वेब सीरीज प्रीतम और पेड्रो। स्वतंत्रता दिवस पर रिलीज हो सकती है सुपरस्टार यश की टॉक्सिक। ऐसा होने पर सनी देओल की बंटवारा 1947 और इमरान हाशमी की आवारापन 2 से होगा महाक्लैश। जल्द ही निर्देशक कुशांड मुखर्जी की आने वाली फिल्म में दिखाई देंगी कृतिका कामरा। अभी डम्बेल रखा गया है फिल्म का वर्किंग टाइटल। जून में भी शुरू हो जाएगी शूटिंग। इम्तियाज अली निर्देशित और दिलजीत दोसांझ स्टारर फिल्म मैं वापस आऊंगा का ट्रेलर रिलीज। 12 जून को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। एआर रहमान ने दिया है फिल्म का संगीत। दिग्गज फिल्म डायरेक्टर इंद्र कुमार के बेटे अमन फिल्म तैयार तेरा यार हूं मैं से करने जा रहे हैं एक्टिंग डेब्यू। 31 जुलाई को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। प्रीति जिंटा 8 साल बाद फिल्म वाइब से बड़े पर्दे पर कर रही है वापसी। 18 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी ये फिल्म। 19 साल बाद फिर साथ आएंगे अजय देवगन और अनुभव सिन्हा। एक्शन थ्रिलर फिल्म को लेकर चर्चाएं तेज। 5 फिल्मों में नजर आएंगे नवाजुद्दीन सिद्दीकी। फिल्म सेक्शन 108, नूरानी चेहरा, संगीन, तुम्बा 2, द ग्रेट इसके फरार में करेंगे अहम रोल।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
1: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
13: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
14: TuneIn is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
4: Good news today पर
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: Owning a home is full of surprises. Some wonderful, some not so much. And when something breaks, it can feel like the whole day unravels. That's why HomeServe exists. For as little as $4.99 a month, you'll always have someone to call. A trusted professional ready to help, bringing peace of mind to 4.5 million homeowners nationwide. For plans starting at just $4.99 a month, go to HomeServe.com. That's HomeServe.com. Not available everywhere. Most plans range between $4.99 to $11.99 a month your first year. Terms apply on covered repairs.
2: Feel the good vibes with Roots Reggae. TuneIn is bringing positivity to your ears with the best reggae hits. Stir it up with Bob Marley, Jimmy Cliff, Protégé, and much more. Let Roots Reggae lift your spirits and fill your ears with rhythms and beats of the best. Just search Roots Reggae or tell your device to play Roots Reggae on TuneIn.
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
0: शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे नौ ग्रहों की, उनके मंत्रों की और मंत्र जपने के नियम की और तरीके की। देखिए, आज हम नौ ग्रहों के चमत्कारी मंत्र की बात कर रहे हैं। किस ग्रह के लिए कौन सा मंत्र पढ़ें, कब पढ़ें, ये जानने का प्रयास कर रहे हैं। पहला ग्रह है सूर्य। सूर्य जो हैं, ये ग्रहों के राजा हैं और सूर्य का मतलब ये व्यक्ति की आत्मा है। अगर सूर्य कुंडली में गड़बड़ हो, कमजोर हो, तो जीवन में अपयश, हृदय रोग और हड्डियों की बीमारी हो जाती है। सूर्य को मजबूत बनाए रखने के लिए और सूर्य की कृपा पाने के लिए सुबह के समय में या दोपहर के समय में सूर्य देव के मंत्र का एक माला जप करिएगा। खास तौर से अगर आप हड्डियों की या हृदय की समस्या से परेशान हैं, मंत्र होगा ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। और मंत्र का जप करेंगे रुद्राक्ष की माला से या लाल चंदन की माला से, तो इसके प्रभाव शुभ रहेंगे। देखिए, चंद्रमा की अगर बात करें तो ये ग्रहों का दूसरा राजा है और कहीं कहीं पर चंद्रमा को रानी भी कहा गया है। तो चंद्रमा दूसरा राजा है या रानी है। चंद्रमा अगर गड़बड़ है, कमजोर है, तो मानसिक बीमारियां होती हैं, मानसिक रोग होते हैं, अस्थमा की शिकायत, रक्त की समस्या, मेंटल प्रॉब्लम, डिप्रेशन, साइकोलॉजिकल दिक्कतें, ये जीवन में काफी ज्यादा होती हैं। तो चंद्रमा को अगर बेहतर करना चाहते हैं, चंद्रमा को अगर मजबूत करना चाहते हैं, तो रात के समय में चंद्रमा निकल जाने के बाद मोती या शंख की माला से चंद्रमा के मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र होगा ओम सोम सोमाय नमः और मंत्र जप मोती की माला से या शंख की माला से अगर आप करें तो उसके प्रभाव, उसके परिणाम ज्यादा बेहतर होंगे। देखिए, अगर मंगल की बात करें, मंगल के मंत्र की बात करें, तो मंगल जो है ये ग्रहों का सेनापति है और किसी व्यक्ति का साहस है, किसी व्यक्ति के अंदर कितना साहस है ये मंगल बताता है। मंगल के कमजोर होने पर भय की समस्या, संपत्ति की समस्या, दुर्घटना, जेल जाना और रिश्तों की समस्या होती है। मुकदमेबाजी, जेल यात्रा, भाई भाई में विवाद, ऑपरेशन, सर्जरी जैसी नौबत जीवन में आएगी अगर मंगल गड़बड़ होगा। मंगल को बेहतर करने के लिए दोपहर के समय में या सुबह के समय में मंगल के मंत्र का जप करिएगा। मंगल का मंत्र होगा ओम
अंगारकाय नमः, ओम अंगारकाय नमः। मंत्र का जप मूंगे की माला से या लाल चंदन की माला से करेंगे तो शुभ रहेगा। अब बात करते हैं बुध की। देखिए, बुध ग्रहों का राजकुमार है। किसी भी व्यक्ति की जो वाणी है और किसी भी व्यक्ति की जो बुद्धि है, उसके पीछे जो ग्रह है वो है बुध। बुध के कमजोर होने पर बुद्धि काम नहीं करती, आदमी का दिमाग तेज नहीं होता, कान नाक गले की समस्या, त्वचा की समस्या और वाणी की समस्या हो जाती है। बुध को बेहतर करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए सुबह के समय बुध के मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र होगा ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः। इस मंत्र का सुबह के समय जप करना काफी बेहतर होगा। और मंत्र जप किया जाएगा हरे हकीक की माला से या रुद्राक्ष की माला से। देखिए, अगर हम शुक्र की बात करें तो शुक्र को भी गुरु का दर्जा प्राप्त है और शुक्र को भी ग्रहों में मंत्री कहा जाता है। किसी व्यक्ति के जीवन में कितना सुख है, कितना आनंद है, कितना चैन है, उसके पीछे शुक्र ही होता है। अगर शुक्र गड़बड़ हो तो पारिवारिक और किसी भी प्रकार का सुख जीवन में नहीं मिलता। सब कुछ होने के बावजूद आप चैन से, आनंद से, सुख से नहीं रह पाएंगे। शुक्र को बेहतर करने के लिए भोर के समय में या रात के समय में शुक्र देव के मंत्र का जप करना चाहिए। और शुक्र देव का मंत्र है ओम शुं शुक्राय नमः, ओम शुं शुक्राय नमः। इस मंत्र का जप करें। मंत्र का जप कर सकते हैं सफेद स्फटिक की माला से या सफेद चंदन की माला से। अगर मंत्र का जप करें तो लाभ होगा। अब बात करते हैं राहु की। जैसा कहा इन्होंने कि राहु एक शैडो प्लेनेट है, एक छाया ग्रह है। व्यक्ति के जीवन के रहस्यों से संबंध रखता है। पूर्व जन्म में क्या थे, कौन सा क्या रिश्ता था, क्या साधना है, क्या पूजा है, क्या प्रारब्ध है, ये जो रहस्य हैं जीवन के, ये राहु से जुड़े होते हैं। अगर राहु का प्रभाव जीवन में बुरा हो तो जीवन की समस्याओं का कारण पता नहीं चलता। सब कुछ जीवन में रहस्य बना रहता है। तो राहु को कंट्रोल करने के लिए राहु के मंत्र का जप करना चाहिए रात के समय में। और राहु का मंत्र होगा ओम रांग राहवे नमः। और राहु के मंत्र का जप करेंगे रुद्राक्ष की माला से तो इसके परिणाम शुभ होंगे।

0: केतु का मंत्र है ओम किं केतवे नमः। इस मंत्र का रोज रात में जप करें और मंत्र का जप करेंगे रुद्राक्ष की माला से तो परिणाम बेहतर होंगे। अगर संपत्ति संबंधी कोई भी समस्या आपकी जीवन में चल रही है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप सिर्फ इतना करिए कि हर मंगलवार को हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाइएगा। अगर आप ऐसा हर मंगलवार को करने लगें और प्रार्थना करें तो संपत्ति संबंधी समस्या हल हो जाएगी। कि अगर आपके जीवन में बार बार उतार चढ़ाव बना रहता हो तो क्या उपाय करेंगे? रोज सवेरे सूर्य देव को जल अर्पित करें, सुबह और शाम 108 बार राहु के मंत्र का जप करें ओम रांग राहवे नमः। हर शनिवार को खाने पीने की वस्तु का दान करें। अगर ऐसा निरंतर करते रहें तो जीवन के उतार चढ़ाव से बचे रहेंगे। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
4: इटली पहुंचे पीएम मोदी, एयरपोर्ट से होटल तक जबरदस्त स्वागत। जॉर्जिया मेल्ली ने सेल्फी पोस्ट कर कहा रोम में आपका स्वागत है मेरे दोस्त, आज द्विपक्षीय मुलाकात। डीआरडीओ के नाम एक और बड़ी कामयाबी, आंध्र प्रदेश के कुरनूल में यूएलपीजीएम V3 मिसाइल का सफल ट्रायल, अब ड्रोन से ही ढेर होंगे दुश्मन के टैंक। भीषण गर्मी से जूझ रहा है पूरा उत्तर भारत, हीट वेव का अलर्ट, कई शहरों में पारा 47 डिग्री के पार, लोगों से सावधानी बरतने की अपील। देवभूमि में धूमधाम से जारी है चारधाम यात्रा, अब तक करीब 16.5 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। खराब मौसम के चलते केदारनाथ में हेली सेवा रोकी गई। गंगा दशहरे के पावन दिन उत्सव के रंग में रंगेगी अयोध्या, धूमधाम से मनाई जाएगी राम दरबार स्थापना की पहली वर्षगांठ, 26 मई को होंगे कई विशेष अनुष्ठान।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे अच्छी खबर।
5: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में।
6: नमस्कार।
5: तो देखिए, ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रह होते हैं।

0: और ये जो नौ ग्रह होते हैं इनकी अपनी महत्ता होती है, काफी महत्वपूर्ण इन्हें माना जाता है और हमारे जीवन पर भी खास तौर पर इनका प्रभाव पड़ता है। तो आज के कार्यक्रम में हम पंडित जी से जानेंगे नौ ग्रहों के नौ चमत्कारी मंत्रों के बारे में, वो कौन से मंत्र है जिनका उच्चारण करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, इसके बारे में जानेंगे। लेकिन फिलहाल उनसे जान लेते हैं आज का गुड लक मंत्र क्या है।
1: अगर संपत्ति संबंधी कोई भी समस्या आपकी जीवन में चल रही है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप सिर्फ इतना करिए कि हर मंगलवार को हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाइएगा। अगर आप ऐसा हर मंगलवार को करने लगें और प्रार्थना करें तो संपत्ति संबंधी समस्या हल हो जाएगी।
0: तो बातचीत का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं 20 मई 2026 यानी कि दिन बुधवार का पंचांग क्या है।
1: दिनांक 20 मई 2026 दिन बुधवार, तिथि है अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, प्रातः 11:06 तक। नक्षत्र है आर्द्रा नक्षत्र, प्रातः 6:12 तक। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं रात के 10:38 तक। राहु काल का समय दोपहर 12:00 से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
0: तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज हम बात कर रहे हैं तमाम ग्रहों के कौन से मंत्रों का उच्चारण करें। शुरुआत करते हैं सूर्य के साथ। अगर हम सूर्य की बात करें तो कौन से मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या कुछ सावधानियां हैं जो बरतनी चाहिए, उसके बारे में हमारे दर्शकों को।
1: जी देखिए, आज हम नौ ग्रहों के चमत्कारी मंत्र की बात कर रहे हैं। किस ग्रह के लिए कौन सा मंत्र पढ़ें, कब पढ़ें, ये जानने का प्रयास कर रहे हैं। पहला ग्रह है सूर्य। सूर्य जो हैं ये ग्रहों के राजा हैं और सूर्य का मतलब ये व्यक्ति की आत्मा है। अगर सूर्य कुंडली में गड़बड़ हो, कमजोर हो, तो जीवन में अपयश, हृदय रोग और हड्डियों की बीमारी हो जाती है। सूर्य को मजबूत बनाए रखने के लिए और सूर्य की कृपा पाने के लिए सुबह के समय में या दोपहर के समय में सूर्य देव के मंत्र का एक माला जप करिएगा। खास तौर से अगर आप हड्डियों की या हृदय की समस्या से परेशान हैं, मंत्र होगा ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, और मंत्र का जप करेंगे रुद्राक्ष की माला से या लाल चंदन की माला से, तो इसके प्रभाव शुभ रहेंगे।
0: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं चंद्रमा के बारे में, जो कि मन का कारक माना जाता है। चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में कमजोर हो, कौन से मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए ताकि आपका भाग्य बदले, आइए पंडित जी से जानते हैं।
1: देखिए, चंद्रमा की अगर बात करें तो ये ग्रहों का दूसरा राजा है और कहीं कहीं पर चंद्रमा को रानी भी कहा गया है। तो चंद्रमा दूसरा राजा है या रानी है? चंद्रमा अगर गड़बड़ है, कमजोर है, तो मानसिक बीमारियां होती हैं, मानसिक रोग होते हैं, अस्थमा की शिकायत, रक्त की समस्या, मेंटल प्रॉब्लम, डिप्रेशन, साइकोलॉजिकल दिक्कतें, ये जीवन में काफी ज्यादा होती हैं। तो चंद्रमा को अगर बेहतर करना चाहते हैं, चंद्रमा को अगर मजबूत करना चाहते हैं, तो रात के समय में चंद्रमा निकल जाने के बाद मोती या शंख की माला से चंद्रमा के मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र होगा ओम सोम सोमाय नमः, और मंत्र जप मोती की माला से या शंख की माला से अगर आप करें तो उसके प्रभाव, उसके परिणाम ज्यादा बेहतर होंगे।
0: बातचीत का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल पंडित जी से जान लेते हैं मेष वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
1: मेष राशि, मानसिक तनाव कम होगा, करियर में सफलता मिलेगी, काम की अधिकता रहेगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, जीवन में खुशहाली आएगी, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं मंगल ग्रह के बारे में। मार्स मंगल ग्रह, इसको किस तरीके से शांत किया जा सकता है, कुंडली में बलवान किया जा सकता है, कौन से वो मंत्र हैं जिनका उच्चारण करना आपके लिए फलदायी साबित होगा, आइए जानते हैं।
1: देखिए, अगर मंगल की बात करें, मंगल के मंत्र की बात करें, तो मंगल जो है ये ग्रहों का सेनापति है, और किसी व्यक्ति का साहस है, किसी व्यक्ति के अंदर कितना साहस है ये मंगल बताता है। मंगल के कमजोर होने पर भय की समस्या, संपत्ति की समस्या, दुर्घटना, जेल जाना और रिश्तों की समस्या होती है। मुकदमेबाजी, जेल यात्रा, भाई भाई में विवाद, ऑपरेशन, सर्जरी जैसी नौबत जीवन में आएगी अगर मंगल गड़बड़ होगा। मंगल को बेहतर करने के लिए दोपहर के समय में या सुबह के समय में मंगल के मंत्र का जप करिएगा। मंगल का मंत्र होगा ओम अंग अंगारकाय नमः, ओम अंग अंगारकाय नमः। मंत्र का जप मूंगे की माला से या लाल चंदन की माला से करेंगे तो शुभ रहेगा।
0: तो चलिए अब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं बुध ग्रह के लिए कौन से मंत्रों का उच्चारण करना आपके लिए फलदायी साबित होगा।
1: अब बात करते हैं बुध की। देखिए, बुध ग्रहों का राजकुमार है। किसी भी व्यक्ति की जो वाणी है और किसी भी व्यक्ति की जो बुद्धि है उसके पीछे जो ग्रह है वो है बुध। बुध के कमजोर होने पर बुद्धि काम नहीं करती, आदमी का दिमाग तेज नहीं होता, कान नाक गले की समस्या, त्वचा की समस्या और वाणी की समस्या हो जाती है। बुध को बेहतर करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए सुबह के समय बुध के मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र होगा ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः। इस मंत्र का सुबह के समय जप करना काफी बेहतर होगा और मंत्र जप किया जाएगा हरे हकीक की माला से या रुद्राक्ष की माला से।
0: तो बातचीत का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल पंडित जी से जान लेते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल क्या है।
1: कर्क राशि, स्वास्थ्य पर अपने ध्यान बनाए रखें, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें, परिवार में शांति रखें, हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा, परिवार में व्यस्तता रहेगी। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, कारोबार की स्थिति ठीक रहेगी, करियर में लाभ होगा, यात्रा के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80% बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब समय हो गया है आपका सवाल लेने का, तो पंडित जी से बिना देर किए पूछ लेते हैं कि आज का पहला सवाल वो किस व्यूअर का ले रहे हैं।
1: जी आज का पहला प्रश्न अस्मिता शर्मा ने हमें लिखा है, जयपुर राजस्थान से मेल लिखती हैं, 11 मार्च 1994 का जन्म है, सुबह के 8:45 जन्म स्थान है जयपुर राजस्थान। ये पूछ रही हैं कि मेरा विवाह कब होगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। अस्मिता आपकी कुंडली के हिसाब से आपका विवाह साल 2027 में होने की संभावना बनती है। साल 2027 के मध्य में एक अच्छा समय है, उस समय ऐसा लग रहा है कि आपका विवाह होगा। वैवाहिक जीवन आपका कुल मिला जुला के अच्छा रहेगा, लेकिन आपको अपने जिद और क्रोध की आदत पर थोड़ा नियंत्रण करना होगा। आपका विवाह शीघ्र हो, बेहतर हो, इसके लिए एक ओपल बनवा करके पहन लें, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करें, रोज सुबह जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
0: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आज का दूसरा सवाल भी ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को हमेशा की तरह याद दिला दूं कि अगर आप हमारे ये कार्यक्रम रोज देखते हैं, इसे पसंद करते हैं और पंडित जी से सवाल पूछना चाहते हैं तो ये बिल्कुल संभव है। टीवी स्क्रीन पर आप देखेंगे कि इस वक्त हमारी ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है, इसी ईमेल आईडी पर आपको हमें अपने प्रश्न लिख करके भेजना है, आपके सवालों का जवाब आपको जरूर मिलेगा। तो फिलहाल बिना देर किए पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का दूसरा सवाल वो किस व्यूअर का ले रहे हैं।
1: जी अगला प्रश्न अभिषेक जी ने हमें लिखा है और अभिषेक जी हमें पटना बिहार से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 17 दिसंबर सन 2000, जन्म का समय सुबह के 9:45, जन्म स्थान है पटना बिहार। ये कह रहे हैं कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूं, बीपीएससी की तैयारी कर रहा हूं, क्या मुझे उसमें सफलता मिलेगी और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। अभिषेक देखिए, आपको थोड़ी मेहनत की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी एकाग्रता और मेहनत में थोड़ी कमी है। मेहनत बढ़ाएं, एकाग्रता बढ़ाएं तो आपको लाभ जरूर होगा। साल 2027-28 अच्छा समय है और अगर आप ठीक से प्रयत्न करें तो आपका सिलेक्शन अवश्य होगा। एक मूंगा बनवा करके पहन लें, 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार को प्रातः मूंगा धारण करें और सुबह के समय आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी।
0: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अभी फिलहाल पंडित जी से जान लेते हैं बृहस्पति यानी जुपिटर ग्रह, इसके लिए कौन से मंत्रों का उच्चारण करना आपके जीवन के लिए फलदायी साबित होगा।
1: अब बात करते हैं बृहस्पति देव के मंत्र के बारे में। बृहस्पति को ग्रहों का गुरु मानते हैं, ग्रहों में मंत्री पद भी है इनके पास। किसी व्यक्ति के अंदर धर्म कितना है, सात्विकता, पवित्रता और पॉजिटिविटी कितनी है, ये बृहस्पति से पता चलता है। बृहस्पति अगर गड़बड़ है तो मोटापे की समस्या, अहंकार की समस्या, पेट के रोग और गलत रास्ते पर चलना, अधर्म के मार्ग पर चलना ऐसा हो जाता है। बृहस्पति को अनुकूल करने के लिए या बृहस्पति को फेवरेबल बनाने के लिए सुबह के समय बृहस्पति देव के मंत्र का जप करिएगा। बृहस्पति देव का मंत्र होगा ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः, और बृहस्पति देव का मंत्र पढ़िएगा हल्दी की माला से या रुद्राक्ष की माला से। अगर इनके मंत्र का जप करेंगे तो बहुत बेहतर होगा।
0: शुक्र खूबसूरती का कारक है, वीनस की यहाँ पर बात हो रही है, कौन से वो मंत्र हैं जो कि आपके भाग्य को बदल सकता है, आइए जानते हैं।
1: देखिए अगर हम शुक्र की बात करें तो शुक्र को भी गुरु का दर्जा प्राप्त है और शुक्र को भी ग्रहों में मंत्री कहा जाता है। किसी व्यक्ति के जीवन में कितना सुख है, कितना आनंद है, कितना चैन है, उसके पीछे शुक्र ही होता है। अगर शुक्र गड़बड़ हो तो पारिवारिक और किसी भी प्रकार का सुख जीवन में नहीं मिलता। सब कुछ होने के बावजूद आप चैन से, आनंद से, सुख से नहीं रह पाएंगे। शुक्र को बेहतर करने के लिए भोर के समय में या रात के समय में शुक्र देव के मंत्र का जप करना चाहिए, और शुक्र देव का मंत्र है ओम शुं शुक्राय नमः, ओम शुं शुक्राय नमः। इस मंत्र का जप करें। मंत्र का जप कर सकते हैं सफेद स्फटिक की माला से या सफेद चंदन की माला से। अगर मंत्र का जप करें तो लाभ होगा।
0: फिलहाल आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं तुला वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल क्या कुछ कहता है।
1: तुला राशि, स्वास्थ्य की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी, लाभकारी यात्रा आपकी हो सकती है, चोट चपेट से इस समय बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। करियर में समस्या हो सकती है, ऑफिस में विवादों से बचाव करें। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, करियर में नए अवसर मिलेंगे, मानसिक तनाव समाप्त होगा, स्वास्थ्य में सुधार होता जाएगा। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं शनि ग्रह के बारे में। कर्म प्रदान ग्रह है, कौन से वो मंत्र है जिनका उच्चारण करना आपके लिए फलदायी साबित होगा, आइए जानते हैं।
1: अब अगर शनि के मंत्रों की बात करें तो देखिए, शनि को ग्रहों का सेवक माना जाता है और ये किसी भी व्यक्ति के कर्म का फल प्रदान करता है। अगर शनि कुंडली में गड़बड़ हो, स्थिति अच्छी ना हो, तो व्यक्ति को रोजगार की समस्या परेशान करती है और छोटी छोटी चीजों को पाने में हर कदम पर जीवन में संघर्ष का सामना करना पड़ता है। शनि की समस्याओं से निपटना चाहते हैं, शनि की समस्याओं को दूर करना चाहते हैं तो शाम के समय शनिदेव के मंत्र का रोज जप करिए। मंत्र होगा ओम शं शनैश्चराय नमः। मंत्र का जप करेंगे रुद्राक्ष की माला से, संध्या काल में रोज करेंगे तो जीवन का संघर्ष कम होगा।
0: तो चलिए अब बात कर लेते हैं राहु के बारे में। ये एक शैडो प्लैनेट है। राहु ग्रह को कुंडली में किस तरीके से मजबूत किया जाए, कौन से वो मंत्र हैं जिनका उच्चारण करना चाहिए, आइए पंडित जी से जानते हैं।
1: अब बात करते हैं राहु की। जैसा कहा इन्होंने कि राहु एक शैडो प्लैनेट है, एक छाया ग्रह है। व्यक्ति के जीवन के रहस्यों से संबंध रखता है। पूर्व जन्म में क्या थे, कौन सा क्या रिश्ता था, क्या साधना है, क्या पूजा है, क्या प्रारब्ध है, ये जो रहस्य हैं जीवन के, ये राहु से जुड़े होते हैं। अगर राहु का प्रभाव जीवन में बुरा हो तो जीवन की समस्याओं का कारण पता नहीं चलता, सब कुछ जीवन में रहस्य बना रहता है। तो राहु को कंट्रोल करने के लिए राहु के मंत्र का जप करना चाहिए रात के समय में, और राहु का मंत्र होगा ओम रांग राहवे नमः। और राहु के मंत्र का जप करेंगे रुद्राक्ष की माला से तो इसके परिणाम शुभ होंगे।
0: तो चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे शैडो प्लैनेट यानी कि केतु के बारे में। केतु ग्रह अगर आपकी कुंडली में कमजोर है, आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, कौन से वो मंत्र हैं जिनका उच्चारण आपको कर लेना चाहिए, आइए जानते हैं।
1: केतु की बात करें, देखिए केतु भी छाया ग्रह है, शैडो प्लैनेट है, किसी व्यक्ति की गोपनीय समस्याओं से संबंध रखता है और किसी व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिक क्षमता कितनी है उससे संबंध रखता है। अगर केतु खराब हो तो व्यक्ति को गोपनीय समस्याएं या गोपनीय बीमारियां परेशान करती हैं, और जब केतु गड़बड़ होता है तो व्यक्ति तंत्र मंत्र के गलत मार्ग पर चलता है। केतु को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए केतु के मंत्र का जप रात के समय में करना चाहिए। और केतु का मंत्र है ओम ओं केतवे नमः। इस मंत्र का रोज रात में जप करें और मंत्र का जप करेंगे रुद्राक्ष की माला से तो परिणाम बेहतर होंगे।
0: फिलहाल आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं मकर कुंभ और मीन राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
1: मकर राशि, आकस्मिक धन का लाभ होता हुआ आपके लिए दिखाई दे रहा है। करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। परिवार में मंगल कार्य होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य और तनाव में सुधार होगा। धन की समस्याएं दूर होंगी। चोट चपेट से बचाव करें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, बेवजह की चिंता हो सकती है। लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। निर्णयों में सावधानी बनाए रखें। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
0: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आज का तीसरा सवाल भी ले लेते हैं। पंडित जी, हमारे दर्शकों को बताएं कि अगला सवाल आप किसका ले रहे हैं।
1: जी, अगला प्रश्न हमें रचना जी ने लिखा है और रचना जी हमें गुजरात से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 5 सितंबर 1980। जन्म का समय रात में 9:42। जन्म स्थान है गांधी धाम, भुज, कच्छ, गुजरात। रचना जी कह रही हैं कि पिछले कुछ दिनों से मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा है और थोड़ी थोड़ी बहुत सारी समस्याएं हो गई हैं मुझे, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा स्वास्थ्य और मेरा जीवन बेहतर रहे। रचना जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको ज्यादातर ध्यान अपने हड्डियों का देना है। विटामिन डी की, कैल्शियम की कमी वगैरह हो सकती है जिसकी वजह से आपको हड्डियों में तकलीफ हो रही है। इसके अलावा बाकी कोई बहुत कठिन बात आपकी कुंडली में नहीं है। आपका स्वास्थ्य मुझे लगता है अक्टूबर 2026 के बाद से धीरे धीरे बेहतर होना शुरू हो जाएगा। एक पन्ना बनवा करके पहन लें, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सुबह के समय सूर्य देव के मंत्र का 108 बार जप करें। मंत्र होगा ओम आदित्याय नमः।
0: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का अंतिम सवाल यानी कि चौथा सवाल ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपको एक बार फिर से रिमाइंड कर दूं, याद दिला दूं कि अगर आप पंडित जी से कुछ भी पूछना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हमारी ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है, इसी ईमेल आईडी पर आपको हमें अपने प्रश्न लिख करके भेज देना है। तो चलिए बिना देर किए पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का अंतिम यानी कि चौथा सवाल वो किस व्यूअर का ले रहे हैं।
1: जी अगला प्रश्न मुकेश जी ने हमें लिखा है और मुकेश जी हमें मुजफ्फरनगर से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 9 फरवरी 1988, जन्म का समय शाम के 6:41, जन्म स्थान है मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मेरी एक शादी होकर के टूट चुकी है और अब मेरे दूसरे विवाह की क्या संभावना है। मुकेश जी आपकी कुंडली में दूसरे विवाह का समय चल रहा है और ज्योतिष के हिसाब से साल 2026 के अंत तक आते आते आपकी सेकेंड मैरिज हो जाएगी, लेकिन दूसरा विवाह करने में भी अगर आप कुंडली मिला करके निर्णय लें तो मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर होगा। एक ओपल बनवा के पहन लीजिए, 12-14 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करें और रोज सुबह शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो बहुत बेहतर होगा।
0: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और जिनका जन्मदिन, जिनका बर्थडे 20 मई को है, आप सभी को हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। पंडित जी से जान लेते हैं कि आप सभी का जो आने वाला साल है वो कैसा रहने वाला है।
1: जिन लोगों का जन्मदिन 20 मई को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, संपत्ति लाभ के और स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, धन की स्थिति ठीक रहेगी, कर्ज चुकाने का प्रयास आपको करना चाहिए। अगर आप अविवाहित हैं तो अविवाहितों का विवाह हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर शिव जी की अगर उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
0: तो चलिए अब कार्यक्रम को यहाँ से आगे बढ़ाते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है और उस जिज्ञासा का समाधान आखिर क्या है।
1: आज की जिज्ञासा है कि वो कौन सी माला है जिससे किसी भी देवी देवता के, किसी भी ग्रह के कोई भी मंत्र का जप किया जा सकता है। देखिए वैसे तो हर तरह के मंत्र के लिए अलग अलग मालाओं का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जब माला ना मिले, उपयुक्त माला ना मिल पाए, तब रुद्राक्ष का प्रयोग करना चाहिए। रुद्राक्ष की माला से हर तरह के मंत्र का जप किया जा सकता है।
0: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं 20 मई 2026 यानी कि दिन बुधवार का शुभ पहर कौन सा है।
1: दिनांक 20 मई 2026 दिन बुधवार, शुभ पहर का समय है शाम के 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से आपके वैवाहिक जीवन की समस्या हल हो जाएगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 20 मई बुधवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में।
0: तो चलिए कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं जहाँ हम पंडित जी से जानते हैं कि आज की भाग्यशाली राशि यानी आज की गुड लक राशि कौन सी है।
1: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों का इस समय स्वास्थ्य कैसा चल रहा है। आज की गुड लक राशि है कुंभ। इस समय अपनी मानसिक स्थिति और अपने तनाव का ध्यान रखें। नियमित रूप से गरीबों को दान करते रहें, ईश्वर का ध्यान करते रहें, अच्छा रहेगा।
0: तो चलिए कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर अब हम पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का महा उपाय आखिर क्या है।
1: जी, देखिए आज के महा उपाय में आपको बताते हैं कि अगर आपके जीवन में बार बार उतार चढ़ाव बना रहता हो तो क्या उपाय करेंगे। रोज सवेरे सूर्य देव को जल अर्पित करें, सुबह और शाम 108 बार राहु के मंत्र का जप करें, ओम रां राहवे नमः। हर शनिवार को खाने पीने की वस्तु का दान करें। अगर ऐसा निरंतर करते रहें तो जीवन के उतार चढ़ाव से बचे रहेंगे।
0: पंडित जी हमें तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: धन्यवाद।
0: तो गुड लक टुडे में आज के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।

0: हर किस्म के आम के स्वाद का अपना ही मजा होता है, पर क्या हो जब आपको एक ही पेड़ पर 14 किस्मों के आम मिल जाए, या यूं कहें ये पेड़ नहीं आम के किस्मों की पाठशाला है। एक ही पेड़ पर 14 किस्मों के आमों का ये करिश्मा उमरेली के उकाभाई भट्टी ने कर दिखाया है। उकाभाई पूरे अमरेली जिले में एक सफल किसान के रूप में मशहूर है। देसी आम के पेड़ पर ग्राफ्टिंग से उन्होंने ये कमाल किया है। इनके आंगन पर उगे इस पेड़ पर आम्रपाली, नीलम, दशहरी, केसर समेत 14 किस्म के आम हैं। आम का ये खास पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं है, ये पहल है आम की खत्म होती किस्मों से लोगों को जोड़े रखने का। पुराने वक्त में 200 किस्म के आम हुआ करते थे, जो धीरे धीरे खत्म होने के कगार पर है। ऐसे में उक्का भाई ने एक पेड़ पर 14 किस्में उगाकर लोगों को आम की खेती से जोड़ने की कोशिश की है। अब आसपास के किसान उक्का भाई से ग्राफ्टिंग की कला सीख रहे हैं। उम्मीद है आम की ये खेती यूं ही फलती फूलती रहेगी और लोगों को अलग अलग किस्मों के रसीले आम का स्वाद मिल सकेगा। अमरेली से फारूक भाई दादा मियां सैयद कादरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल है। इनमें से कुछ वीडियो ऐसे हैं जो आपको हंसाएंगे, कुछ गुदगुदाएंगे तो कुछ आपको भावुक भी कर जाएंगे।
2: चलती ट्रेन के अंदर एक महिला के वट सावित्री व्रत की पूजा का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसपे देखा जा सकता है कि महिला ट्रेन कोच के फर्श पर एक बोतल में बरगद का पौधा रखकर पूरी श्रद्धा और विधि विधान के साथ उसकी पूजा कर रही है। वो जल, दूध, रोली, अक्षत, फूल और दीप अर्पित करते हुए परिक्रमा भी करती दिखाई देती है। इस दौरान उसके परिवार के सदस्य भी उसकी मदद करते नजर आते हैं। ये दृश्य देखकर यात्रियों के साथ साथ सोशल मीडिया यूजर्स भी हैरान रह गए और महिला की आस्था और समर्पण की जमकर तारीफ कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि ये वीडियो सच्ची भक्ति और परंपरा के प्रति गहरे विश्वास को दर्शाता है। सोशल मीडिया पर लंदन का एक दिलचस्प वीडियो इन दिनों खूब चर्चा में है, जिसमें एक विदेशी शख्स देसी स्टाइल में झालमुड़ी बेचता नजर आ रहा है। ये शख्स भारतीय स्ट्रीट फूड झालमुड़ी को उसी पारंपरिक अंदाज में तैयार कर लोगों को परोस रहा है, जिससे विदेश में भारतीय स्वाद की झलक देखने को मिल रही है। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी भी झारग्राम में एक दुकान पर झालमुड़ी का स्वाद लेते नजर आए थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था और लोगों ने उसे खूब पसंद भी किया था। अब लंदन के इस वीडियो को उसी ट्रेंड से जोड़कर देखा जा रहा है, जहां भारतीय फूड कल्चर की लोकप्रियता दुनिया भर में फैलती दिख रही है। सोशल मीडिया पर एक भावुक कर देने वाला वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग इंसानियत और मासूमियत दोनों की तारीफ कर रहे हैं। वीडियो में एक बच्चा सड़क किनारे महात्मा गांधी की तरह शांत और स्थिर खड़ा नजर आता है, जिसका पूरा शरीर सिल्वर पेंट से ढका हुआ है। वो एक स्टैचू की तरह खड़ा दिखाई देता है, लेकिन भीड़ में मौजूद लोग उसे नजरअंदाज कर आगे बढ़ जाते हैं। तभी एक छोटी बच्ची वहां आती है और बच्चे को ध्यान से देखकर समझ जाती है कि वो भूखा है। बिना किसी हिचकिचाहट के वो अपने हाथ में रखा खाना उसके साथ साझा कर देती है। इसके बाद दोनों बच्चे मिलकर सादगी और प्यार के साथ खाना खाते नजर आते हैं, जो देखने वालों का दिल छू लेता है। लखनऊ से सामने आया एक मजेदार वीडियो इन दिनों जमकर सुर्खियां बटोर रहा है, जिसे देखकर लोग ठहाके लगाने पर मजबूर हो जा रहे हैं। वीडियो में एक शख्स अपनी डॉगी को टहलाने निकला है, लेकिन खास बात यह है कि वो खुद पैदल नहीं बल्कि स्कूटी पर बैठा हुआ नजर आता है। वही डॉगी सड़क पर दौड़ता हुआ उसके साथ साथ वॉक कर रहा है और मालिक स्कूटी चलाते हुए उसकी रस्सी पकड़े हुए है। ये अनोखा नजारा देखकर लोग हैरान भी हैं और खूब एंटरटेन भी हो रहे हैं। वीडियो रिकॉर्ड करने वाला शख्स भी मजेदार कमेंट्री करता सुनाई देता है। देखो अंकल स्कूटी से डॉगी घुमा रहे हैं, खुद नहीं चल रहे हैं लेकिन डॉगी को जरूर टहला रहे हैं।
3: स्कूटी से कुत्ता टहला रहे हैं, तभी ऐसी हालत है। अब देख लो मैं इसकी स्कूटी से कुत्ता टहला रहे हैं। चलो कम से कम कुत्ता तो टहला रहे हैं, खुद नहीं टहला।
4: Some people think that Talk Sport's just a clever name, that we just talk sport. But that's absolute balderdash. We breathe it, dream it, think it, play it, and eat it for breakfast, wrapped up in an English muffin. So, if you want to get seriously sauteed by soccer, poached by the Premier League, and marinated by monster news and reaction, listen to Talk Sport. It's not just a clever name, dude. Listen live from London on TuneIn and munch it down for free. Mmm, delicious. A bit salty. Warning, Talk Sport definitely contains nuts.
5: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. and on

0: Punian's classic rock hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
2: सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
2: इटली पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एयरपोर्ट से होटल तक जबरदस्त स्वागत। जॉर्जिया मेलोनी ने सेल्फी पोस्ट करके कहा, रोम में आपका स्वागत है मेरे दोस्त। आज द्विपक्षीय मुलाकात।

0: झांसी में धूमधाम से मनाई गई रानी झांसी की 184वीं विवाह वर्षगांठ। निकाली गई शोभा यात्रा, देखने को मिली ढोल नगाड़ों की गूंज, पारंपरिक मराठी वेशभूषा और ऐतिहासिक पात्रों की झलक।
1: भीषण गर्मी से जूझ रहा पूरा उत्तर भारत, हीटवेव का अलर्ट, कई शहरों में पारा 47 डिग्री पार, लोगों से सावधानी बरतने की अपील।
0: देवभूमि में धूमधाम से जारी है चारधाम यात्रा, अब तक करीब 16.5 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। खराब मौसम के बावजूद केदारनाथ में हेली सेवा रोकी गई।
1: गंगा दशहरा के पावन दिन उत्सव के रंग में रंगेगी अयोध्या, धूमधाम से मनाई जाएगी राम दरबार स्थापना की पहली वर्षगांठ, 26 मई को होंगे कई विशेष अनुष्ठान।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
0: उम्मीदों भरे पहर की खुशियों भरी शुरुआत, नमस्कार सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला, नई सुबह नई आशा और गुड न्यूज का मॉर्निंग डोज लेकर।
1: गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। तो बिना रुके बिना थमे अगले एक घंटे में गुड न्यूज की मैराथन दौड़ होगी, लेकिन सबसे पहले नजर आज की 5 उन खबरों पर जिनमें है इंडिया के लिए शुभ समाचार।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
0: शुभ समाचार की शुरुआत मौसम के साथ करेंगे। मैदानों पर जहां पर लोगों को तपिश का सामना लगातार करना पड़ रहा है, वहीं पर पहाड़ सैलानियों से पूरी तरीके से गुलजार हैं। गर्मी से राहत पाने के लिए लोग बड़ी संख्या में जम्मू कश्मीर के श्रीनगर और कुरेज का रुख कर रहे हैं, तो कैसा है वहां नजारा आगे आपको दिखाएंगे।
1: तो उधर पंच केदारों में से द्वितीय केदार भगवान मद महेश्वर के कपाट खोलने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। भगवान मद महेश्वर के कपाट कल खुलेंगे, ऐसे में भगवान की डोली अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ से धाम के लिए रवाना हो गई है। यात्रा मार्ग पर डोली का भव्य तरीके से स्वागत हो रहा है, तो इसकी तस्वीरें भी आगे आपको दिखाएंगे।
0: जी हां गीतिका, देखिए वहीं पर कान फिल्म फेस्टिवल में भारतीय संस्कृति के रंग भी तमाम देखने को मिल रहे हैं। वहां पर नामचीन चेहरों के बीच भारतीय सितारे सुर्खियां लगातार बटोर रहे हैं, इस बार ऐसा क्या हुआ दिखाएंगे आपको आगे।
1: तो जूनियर एनटीआर ने अपने 43वें जन्मदिन पर फैंस को तोहफा दिया, उन्होंने अपनी फिल्म ड्रैगन का टीजर रिलीज कर दिया है। टीजर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर ये टीजर छा गया है, अगर इसे आपने नहीं देखा तो हम बताएंगे कि आखिर इसमें ऐसा क्या है, तो आगे आगे मूवी देखेंगे।
0: जी हां देखिए, इसके अलावा आईपीएल के मैदान में भी आपको लेकर चलेंगे। आज कोलकाता का सामना मुंबई से होने जा रहा है, ये मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 7:30 बजे से खेला जाएगा, तो कैसी है दोनों टीमों की तैयारियां बताएंगे आपको आगे, लेकिन फटाफट अंदाज में उससे पहले 9 बजे की 9 बड़ी गुड न्यूज।
1: उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का आज 32वां दिन है, अभी तक चारधाम के दर्शन के लिए पहुंचने वालों की संख्या 16,60,000 तक पहुंच चुकी है, जिसमें सबसे ज्यादा केदारनाथ में करीब 7 लाख भक्तों ने हाजिरी लगाई।
0: बाबा मधमहेश्वर बाबा के कपाट खुलने की प्रक्रिया पूरे धूमधाम से चल रही है। बाबा मधमहेश्वर के उत्सव टोली आज गोंडार गांव पहुंचेगी, जहां पर ओंकारेश्वर मंदिर से उत्सव डोली रवाना होने पर महिलाओं ने भजन गाकर अपने आराध्य को विदाई देंगी, और वहीं डोली के साथ साथ चल रहे भक्तों ने महादेव का जयकारी लगाई।
1: उज्जैन में बाबा महाकाल की सुबह भस्म आरती के दौरान मंदिर के कपाट खोले गए, जहां महाकाल का हरिओम जल से अभिषेक करने के बाद दूध दही शक्कर शहद और फलों के रस से बने पंचामृत से पूजन किया गया। वहीं महाकाल को रंजन चंद्र त्रिशूल और ड्राई फ्रूट से राजा स्वरूप में सजाया गया, श्रृंगार किया गया।
0: गंगा दशहरा के पावन दिन अयोध्या उत्सव के रंग में पूरी तरीके से रंगेगी, जहां पर राम दरबार स्थापना की पहली वर्षगांठ धूमधाम से मनाई जाएगी। 26 मई को विशेष अनुष्ठान होने जा रहा है। इस मौके पर अयोध्या में सरयू स्नान के लिए सुबह से ही उमड़ेगी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। पिछले साल इसी पावन तिथि पर राम दरबार सहित 6 उपमंदिरों की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना हुई।
1: बढ़ती गर्मी को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है, जहां श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह ठंडे पानी और ओआरएस की व्यवस्था की गई। हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए कई जगहों पर डॉक्टर्स की तैनाती भी की गई है। वहीं भीड़भाड़ वाले इलाकों में शेड और मिस सिस्टम लगाए जा रहे हैं।
0: भारत रक्षा तकनीक के क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल कर ली है। डीआरडीओ ने स्वदेशी ड्रोन, अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च, प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल के अंतिम टेस्ट को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। आंध्र प्रदेश के कुरनूल स्थित डीआरडीओ टेस्ट रेंज में हुई इस टेस्टिंग ने भारत की आधुनिक सैन्य ताकत और आत्मनिर्भर भारत अभियान को नया बल दिया है। खास बात इसमें यह है कि मिसाइल का परीक्षण हवा से जमीन और हवा से हवा दोनों मोड में सफल रहा।
1: ब्रिटेन के किंग चार्ल्स और क्वीन कैमिला ने नॉर्दर्न आयरलैंड का दौरा किया। बेलफास्ट में पारंपरिक संगीत और नृत्य का आनंद लिया। शाही जोड़े ने फ्लीड फेस्टिवल से जुड़े कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जहां ड्रम बजाकर आयरिश संस्कृति को करीब से महसूस किया। बेलफास्ट में पारंपरिक डांस परफॉर्मेंस देखकर शाही जोड़ा उत्साहित दिखा।
0: आईपीएल 2026 के 65वें मैच में कोलकाता का सामना मुंबई से होने जा रहा है। प्लेऑफ से बाहर हो चुकी मुंबई इंडियंस के लिए इस मैच को जीतना बहुत जरूरी है।
1: जूनियर एनटीआर और प्रशांत नील की अपकमिंग फिल्म ड्रैगन की फर्स्ट क्लिप्स रिलीज हो गई है। एनटीआर इसमें खास रूप नजर आए। फिल्म की कहानी अफीम और इससे बनने वाली हीरोइन के व्यापारियों के साम्राज्य से जुड़ी है।

तो शुभ समाचार की शुभ शुरुआत राहत वाली गुड न्यूज के साथ करेंगे। उत्तर भारत में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच लोगों को जल्द राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार मॉनसून सामान्य समय से पहले भारत में दस्तक दे सकता है। अनुमान ये है कि 22 से 26 मई के बीच मॉनसून केरलम तक पहुंच सकता है। दक्षिण भारत के कई हिस्सों में तो प्री मॉनसून बारिश शुरू हो चुकी है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। वहीं पर पहाड़ी राज्यों में हल्की बारिश और ठंडी हवाओं ने लोगों को गर्मी से कुछ हद तक राहत जरूर दी है। अगर मॉनसून तय समय से पहले आगे बढ़ता है तो उत्तर भारत में भी जून के शुरुआती दिनों में ही मौसम बदलने की उम्मीद बढ़ सकती है। फिलहाल अगर हम देखें तो दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा समेत कई राज्यों में तेज गर्मी और लू का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। पिछले कई दिनों से हीट वेव चल रही है, जिससे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब समेत कई राज्यों में तापमान लगातार 45 डिग्री के आसपास बना हुआ है। हालात ये हैं कि दोपहर के वक्त सड़कें बिल्कुल सूनी हो जाती हैं। घाट किनारे अगर देखें तो लोग नहीं जा रहे हैं और लू के थपेड़े लोगों को लगातार परेशान कर रहे हैं। कूलर और एसी की बदौलत लोग अब जीवन यापन कर रहे हैं।

0: इस बार मॉनसून तय वक्त से पहले दस्तक दे सकता है। कम से कम मौसम विभाग का पूर्वानुमान तो इसी तरफ इशारा कर रहा है। अगर आकलन सही रहा तो अगले रविवार तक मॉनसून के बादल केरलम के आसमान में नजर आएंगे, यानी मॉनसून के आने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक मॉनसून समय से पहले आगे बढ़ रहा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी सिरे से लेकर उत्तरी सिरे तक फैल चुका है, साथ ही अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी और मध्य भागों में आगे बढ़ चुका है।
1: मुख्य रूप से जो केरल में हमारा अनुमान है कि 26 मई के आसपास जो है मॉनसून दस्तक दे सकता है, जिसमें 4 दिनों की मॉडल त्रुटि होती है। तो अभी आप देखेंगे केरल में भी तो हमारा बहुत भारी वर्षा चेतावनी जो है जारी की गई है। तापमान इस पर्टिकुलर क्षेत्र में जो दक्षिण भारत क्षेत्र है यहाँ पर जो है अमूमन थोड़े से अभी सामान्य के करीब है और इतने ज्यादा बढ़े हुए नहीं दिख रहे हैं।
0: मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि परिस्थितियां अनुकूल बनती गई तो मॉनसून 22 से 30 मई को केरल में दस्तक दे सकता है। इसके बाद मई आखिर या जून के पहले सप्ताह में मॉनसून के तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा और आंध्र प्रदेश पहुंचने का अनुमान है। फिर 5 से 15 जून तक ये महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ पहुंच सकता है। जून के आखिरी हफ्ते में दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में मॉनसून के बादल बरस सकते हैं। अनुमान है कि 15 जुलाई तक मॉनसून पूरे देश को कवर कर सकता है। केरल से होते हुए मॉनसून देश भर के अन्य हिस्सों में पहुंचेगा। ऐसे में आप जरूर जानना चाहेंगे कि मॉनसून आपके शहर या राज्य में कब दस्तक देगा। अगर यूपी बिहार की बात करें तो यूपी में 15 जून को मॉनसून दस्तक दे सकता है। इसके अलावा बिहार में 20 जून को मॉनसून के आने की संभावना है। वहीं दिल्ली एनसीआर में इस बार मॉनसून 25 जून तक दस्तक दे सकता है। वक्त से पहले मॉनसून की दस्तक का मतलब गर्मी और हीट वेव का अंत, साथ ही फसल की बुआई में मदद और पानी की किल्लत खात्मा। मनीष वल्लडा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: अगर मैदानों में गर्मी है तो पहाड़ों पर मौसम कूल बना हुआ है। चमोली के जोशीमठ में मूसलाधार बारिश के साथ ओले गिरे। इस बारिश और ओले गिरने से लोगों ने गर्मी से थोड़ी राहत की सांस ली। जी हां, आप देखिए किस तरह से जहां मैदानी इलाकों में गर्मी से लोग बेहाल हैं तो वहीं पहाड़ी इलाकों में जोरदार बारिश हो रही है और सिर्फ बारिश ही नहीं ओले भी पड़ रहे हैं। ये नजारा है जोशीमठ का, आप देखिए लगातार मूसलाधार बारिश है और साथ ही साथ ओले भी वहां पड़ रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गढ़वाल के जोशीमठ से, जहां लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और कहीं ना कहीं इसे मॉनसून की पहली फुहार की तरह भी हम देख सकते हैं। अभी मॉनसून भले ही दूर है लेकिन ये बारिश जो है वो कहीं ना कहीं मॉनसून की पहली फुहार का इशारा कर रही है और बारिश से मौसम जो है पहाड़ों पर वो बेहद सुहाना हो गया है।
3: तो देखिए शहरों में तपन और झुलसती गर्मी सताने लगी तो लोग पहाड़ों का रुख लगातार कर रहे हैं। जैसा कि हमने जिक्र किया, सरोवर नगरी नैनीताल में बड़ी संख्या में सैलानी लगातार पहुंच रहे हैं। आम दिनों के मुकाबले काफी ज्यादा भीड़ अभी देखने को मिल रही है। दिन के वक्त तो नैनीताल में अच्छी खासी धूप है मगर सुबह और शाम के वक्त ठंडी हवा चलती है। शाम के वक्त वॉक करने का अलग ही आनंद होता है। ऐसे में बड़ी संख्या में जो तमाम सैलानी हैं वो पहाड़ों का भी रुख कर रहे हैं और ऐसे में देखिए नैनीताल में किस प्रकार से बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे हैं, ये नजारा अपने आप में सब कुछ बयां कर रहा है।
2: तो पहाड़ों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, अब आपको लेकर चलते हैं ओडिशा। ओडिशा के मयूरभंज में भी भीषण गर्मी के बीच बारिश की फुहार से मौसम सुहाना हो गया है। तपती गर्मी में बारिश की ये बूंदें वरदान की तरह साबित हुई हैं। पेड़ पौधों की धूल झड़ गई है जबकि तप रही जमीन भी ठंडी हो गई है। आप देखिए इस बारिश से सब कुछ कितना हरा भरा लग रहा है। पेड़ों के जो पत्ते हैं वो धुल गए हैं और जमीन की गर्मी भी कम हो गई है इस बारिश की फुहार से।
3: तो देखिए चलचलाती धूप और हीट वेव ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। कई इलाकों में तापमान 40 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है और आने वाले दिनों में गर्मी और ज्यादा परेशान कर सकती है। कई राज्यों में चलचलाती धूप और हीट वेव के चलते पारा 40 से 45 डिग्री पहुंच चुका है।

0: समझ लीजिए इस वक्त बाबा की नगरी तपस्या में लीन है। मई के इन दिनों में काशी जिस तरह की अग्नि परीक्षा से गुजर रही है उसमें जीवन किसी साधना से कम नहीं है। वाराणसी का पारा भले ही 45 डिग्री की सीमा रेखा लांग चुका हो लेकिन काशी विश्वनाथ मंदिर के पास न तो जीवन का आनंद भंग हुआ है और न ही भक्तिभाव कम हुआ है।
1: नगर निगम और वाराणसी प्रशासन की तरफ से तमाम इंतजाम किए गए हैं, वाटर स्प्रिंकलर लगाए गए हैं उन लोगों के लिए जो इन रास्तों से गुजर रहे हैं, उनको गर्मी से निजात मिले, परेशानी से निजात मिले, क्योंकि बनारस में तापमान 44 डिग्री के पार पहुंच चुका है और अंदाजा लगाया जा रहा है कि 47 डिग्री के पार वाराणसी का तापमान जा सकता है अगले कुछ दिनों में। अधिकतम तापमान सामान्य से लगभग 3 डिग्री तो न्यूनतम तापमान लगभग 1 डिग्री तक ज़्यादा दर्ज किया जा रहा है। लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से, तो ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है।
0: गर्मी को लेकर मौसम विभाग की भले ही अपनी गणनाएं हो लेकिन काशी के पास इस गर्मी को पढ़ने और समझने का एक अलग ही आध्यात्मिक ज्ञान है। काशी वालों को पता है कि जीवन का ऋतुओं से समन्वय कैसे बनाना है और इस तपती गर्मी में अपने शरीर को कैसे साधना है।
2: इस समय गुरु राजा हैं, आप समझिए कि सबसे पहले राजा गुरु मंत्री भौम सबसे शुक्र धान्येश बुध, धान्येश बुध होने के कारण धान अन्न में कुछ कमी और बेसी डिप्रिशिएशन मोड़ यहाँ लगता है। मेघे सोम है और जब गर्मी बढ़ेगी तब ओला पानी और बर्फ ये बराबर गिरते रहेंगे, जैसे कि अभी कुछ दिन पूर्व भी यहाँ का टेम्परेचर डाउन हो गया था। इसी तरह रात्रि में भी आप देखिए कि ठंडा हो जाता है और दिन में गर्म हो जाता है।
0: आसमान से बरसती आग की चपेट में प्रयागराज भी है। संगम की जो रेती अक्सर आस्था के सैलाब से सराबोर नजर आती है उस रेती पर गर्मी का गुबार नजर आ रहा है। राहगीरों को पेड़ की छांव का सहारा है। लोग गर्मी से युद्ध के लिए पूरे शरीर को ढककर चल रहे हैं। फिलहाल तो गर्मी की वजह से पूरे प्रयागराज में मानो कर्फ्यू सा लग गया है।
3: प्रयागराज की सड़कों पर सन्नाटा है क्योंकि गर्मी इसके पीछे वजह है। वैसे ही प्रयागराज का सबसे आस्था का केंद्र संगम तट होता है लेकिन इस संगम तट पर भी थोड़ा सा सन्नाटा है, वजह गर्मी है।
0: पंजाब भी मौसम की अग्नि परीक्षा दे रहा है। राज्य के करीब करीब सभी शहरों में पारा 42 डिग्री क्रॉस कर चुका है। मौसम पर नजर रखने वालों का कहना है कि गर्मी से भीषण युद्ध की अभी तो फिलहाल शुरुआत है, नौतपा के दिन आने वाले हैं। ये वो 9 दिन होते हैं जब गर्मी अपने प्रचंड रूप में होती है। उत्तर भारत में 25 मई से 2 जून तक नौतपा रहने वाला है। इन 9 दिनों में सूरज इतना तेज चमकता है कि दिन के समय सड़कें भट्टी की तरह तपती हैं। रात में भी उमस से नींद नहीं आती। फिलहाल तो आगे एक एक दिन जीवन की अग्नि परीक्षा है।
4: गर्मी तो है अभी एक सप्ताह के दौरान जो है वो जारी रह सकती है। अगर हम इसको तापमान के माध्यम समझें तो आप देखेंगे कल शाम को जो अधिकतम तापमान है वो 42 से 43 यानी 42 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किए गए थे दिल्ली में। हमारा अनुमान ये है कि अगले 3 दिनों के दौरान जो है ये 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी पहुंच सकते हैं, तो आइसोलेटेड प्लेसेस पर हीट वेव कंडीशंस भी देखने को मिल सकती हैं। इसके बाद में 3 दिन के बाद में भी इसमें थोड़ा सा जरूर बदलाव आ सकता है लेकिन 42 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में अधिकतम तापमान पूरे सप्ताह भर देखने को मिल सकता है।
0: जाहिर है अगले कुछ दिन सूरज के ताप में जीवन के तप के होने वाले हैं। नौतपा भले ही 25 मई से शुरू हो रहा है लेकिन आसमान से आग अभी से बरस रही है। ऐसे में गर्मी से बचना चुनौती से कम नहीं है। फिलहाल तो सलाह यही है कि जलते दिनों में छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें, धूप में तैयारी के साथ ही बाहर जाएं, पानी लगातार पिएं, क्योंकि इस मौसम में हमारे आपके लिए पानी अमृत से कम नहीं है। चंडीगढ़ से कमलजीत, वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: मैदानों पर जहां लोगों को तपिश का सामना करना पड़ रहा है तो वहीं जम्मू कश्मीर की श्रीनगर और गुरेज घाटी सैलानियों से गुलजार है। गर्मी से राहत पाने के लिए लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं।
6: महीना मई का है, सूरज का पारा चढ़ा हुआ है, चुपती जलती गर्मी से लोग परेशान हैं, तमाम इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं, सड़क पर बिना मुंह ढके चलना मुहाल है, ऐसे में जिसे मौका मिल रहा है पहाड़ों का रुख कर रहा है, खासकर जम्मू कश्मीर का, जहां हर मौसम कुछ कहता है। इस साल उत्तरी कश्मीर की गुरेज घाटी सैर के लिए लोगों की पहली पसंद है। ऐसे में यहां पर्यटन कारोबार में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। अपनी मनमोहक पर्वत श्रृंखलाओं, हरे भरे मैदानों, कलकल बहती नदियों और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध ये घाटी सैलानियों को खूब लुभा रही है।
7: उत्तरी कश्मीर की गुरेज घाटी नियंत्रण रेखा से सटी हुई है। कुछ ही साल पहले गुरेज घाटी को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया था, लेकिन पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नियंत्रण रेखा से सटे होने के कारण पर्यटकों पर पूरी तरह से साल भर पाबंदी रही। लेकिन अब की बार कश्मीर में जिस अंदाज से पर्यटकों की तादाद बढ़ रही है और गर्मी से बचने के लिए जिस अंदाज से पर्यटक पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, गुरेज घाटी भी पर्यटकों से गुलजार है। गुरेज में कुदरती खूबसूरती के साथ साथ पर्यटकों को ट्रैकिंग के लिए कई सारे इलाके यहाँ पर मिलते हैं। यही कारण है कि कश्मीर आने वाले अधिकतर पर्यटक अब गुरेज घाटी जा रहे हैं।
6: गुरेज में भारतीय सेना का श्रीना सांस्कृतिक केंद्र भी सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। यहाँ गुरेज की समृद्ध श्रीना संस्कृति और परंपराओं को खूबसूरती से प्रदर्शित किया गया है।
8: गुरेज वैली इज अमेजिंग, बहुत अच्छी लग रही है यहाँ पे। यहाँ की वादियाँ बहुत सुंदर है। आज तक हमने ऐसे कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था, इतना खूबसूरत लग रहा है यहाँ। राजनाथ टॉप वॉज अमेजिंग, ऐसी बर्फ और ऐसी जगह हमने आज तक नहीं देखी थी। इट वॉज अमेजिंग, बहुत ही सुंदर लगा। बहुत सारे देश विदेश हम घूमे हैं, बट यहाँ की बात ही कुछ और है। बहुत ही अच्छा लगा।
6: श्रीना संस्कृति केंद्र में न सिर्फ श्रीना भाषी समुदाय की अनूठी विरासत को संभाल कर रखा गया है, बल्कि उनकी परंपराओं और जीवन शैली को दिखाने वाली डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई जा रही है। वहीं सैर के लिए जम्मू कश्मीर आए लोग डल झील में शिकारा की सवारी का भी खूब आनंद ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर से अशरफ वानी, गुड न्यूज टुडे।
9: देखिए, ऐसा देखा गया है कि जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से देश के हित में कुछ कदम उठाने की अपील की, तब तक देश ने साथ दिया। अब देश में पर्यटन को बढ़ाने की मुहिम को ही ले लीजिए, जिसका असर लक्षद्वीप पर्यटन के रिकॉर्ड आंकड़े के रूप में साफ तौर पर नजर आता है। इस बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रवाद को आर्थिक अपील से जोड़ा, तो मालदीव्स का पर्यटन बाजार धीमा पड़ा और लक्षद्वीप का जैसा भागी बदल गया।
10: साल 2024 में प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीरें जब सामने आई, तो 32 द्वीपों के समूह लक्षद्वीप की मानो किस्मत ही पलट गई। महज 10 से 11 द्वीपों पर आबादी वाला ये खूबसूरत स्थल पर्यटन के नक्शे पर हिट साबित हो रहा है। पीएम मोदी ने लक्षद्वीप की सीनिक ब्यूटी को देशवासियों के साथ साझा करते हुए कहा था कि जो लोग एडवेंचर पसंद हैं, तो उनकी लिस्ट में लक्षद्वीप होना चाहिए। बस इसके बाद तो सोशल मीडिया पर हैशटैग मालदीव्स ट्रेंड करने लगा, यानी मालदीव्स की बजाय देशवासियों को लक्षद्वीप को अपना पर्यटन डेस्टिनेशन बनाना चाहिए। वहीं देश की जनता प्रधानमंत्री के सुझावों, उनकी बातों पर कितना भरोसा करती है। साल 2024 से लेकर आज तक लक्षद्वीप के पर्यटन में जबरदस्त उछाल की तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं। बस ये मानकर चलिए कि आज पर्यटन के प्रमुख डेस्टिनेशन मालदीव की खूबसूरती लक्षद्वीप के आगे फीकी पड़ रही है। अब आजकल क्योंकि ईरान अमेरिका संकट के बीच इकोनॉमिक क्राइसिस का माहौल है, ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीयों से गैर जरूरी विदेशी यात्राओं की बजाय घरेलू यात्रा करने, ईंधन बचाने और फिजूल खर्ची कम करने की अपील की, तो लक्षद्वीप में और बढ़ रहा पर्यटन इसकी एक हालिया मिसाल है। ये बढ़ता पर्यटन संकेत दे रहा है कि पीएम मोदी की सार्वजनिक अपीलों और संदेशों को देश काफी गंभीरता से लेता है। दरअसल इंडिया टुडे ने आरटीआई के तहत कुछ आंकड़े जुटाए हैं, जिससे पता चलता है कि लक्षद्वीप में पर्यटकों की संख्या साल 2020 में महज 3,875 थी, जो 2024 में बढ़कर रिकॉर्ड 68,328 पर पहुंच गई। पर्यटकों की संख्या में ये सबसे बड़ा उछाल जनवरी 2024 में प्रधानमंत्री मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद ही आया। जाहिर है लक्षद्वीप के रेतीले समंदर तट, नेचुरल सीन्स, वनस्पतियां और जीव की प्रजातियों को नजदीक से निहारने के लिए ही देश के कोने कोने से लोग यहां आ रहे हैं। यही वजह है कि आज इस खूबसूरत द्वीपों के समूह पर पर्यटन काफी तेजी के साथ पंख फैला रहा है। लक्षद्वीप में पर्यटकों की संख्या साल 2023 के 46,551 से बढ़कर 2024 में 68,328 हो गई, जो एक साल के भीतर लगभग 47% का उछाल है। ठीक इसी समय मालदीव जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट देखी गई थी। मालदीव के पर्यटन मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि मालदीव पहुंचने वाले भारतीयों की संख्या साल 2023 के 2,09,193 से घटकर 2024 में 1,30,805 रह गई, जो कि 37.5% की गिरावट है। भारत, जो कभी मालदीव के टॉप टूरिज्म मार्केट में से एक था, विजिटर्स की हिस्सेदारी के मामले में खिसक कर छठे स्थान पर आ गया। मालदीव से हटकर जब साल 2024 में पीएम मोदी ने देश के अंदर पर्यटन को बढ़ाने की अपील की, तो उसके बाद से कई मशहूर हस्तियां, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और ट्रेवल प्लेटफॉर्म्स ने भी उनकी इस सोच का साथ दिया। सोशल मीडिया पर फॉरेन ट्रिप की जगह डोमेस्टिक टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को एक्सप्लोर करने की मानो बाढ़ सी आ गई। कहना गलत नहीं कि मालदीव जैसी खूबसूरती के बावजूद लंबे समय तक अपेक्षाकृत अविकसित रहा लक्षद्वीप आज नेशनल टूरिज्म सिंबल बना हुआ है। लक्षद्वीप में बढ़ रहा पर्यटन आज इस बात की भी मिसाल है कि जब प्रधानमंत्री मोदी देश हित से जुड़ी कोई अपील करते हैं, तो देशवासियों की सोच और आदतों में प्रधानमंत्री की अपील का सकारात्मक रूप में असर भी नजर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: और इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए कान के देसी लुक।
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
12: म्यूजिक फॉर एवरी मूड लिव्स ऑन ट्यून इन। Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations, like today's hits. Classic rock, coffee house, and more. Stream non-stop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
13: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
14: धीमे धीमे पक रही होती है खबरें, कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें, किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
15: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
16: और दुर्भाग्य कहता है
17: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
14: अविश्वास में विश्वास बसता है,
15: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
18: गुड न्यूज टुडे।
15: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
19: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
15: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
14: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
15: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
16: और दुर्भाग्य कहता है
17: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
14: अविश्वास में विश्वास बसता है,
15: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
15: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
19: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRM ISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
2: इटली दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी से हुई मुलाकात, आज ही होगी द्विपक्षीय वार्ता, कई समझौते होने की उम्मीद।
3: झांसी में धूमधाम से मनाई गई रानी झांसी की 184वीं विवाह वर्षगांठ, निकाली गई शोभा यात्रा, देखने को मिली ढोल नगाड़ों की गूंज, पारंपरिक मराठी वेशभूषा और ऐतिहासिक पात्रों की झलक।
2: भीषण गर्मी से जूझ रहा पूरा उत्तर भारत, हीट वेव का अलर्ट, कई शहरों में पारा 47 डिग्री के पार, लोगों से सावधानी बरतने की अपील।
3: देवभूमि में धूमधाम से जारी है चारधाम यात्रा, अब तक करीब 16.5 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, खराब मौसम के चलते केदारनाथ में हेली सेवा रोकी गई।
2: दशहरे के पावन दिन उत्सव के रंग में रंगेगी अयोध्या, धूमधाम से मनाई जाएगी राम दरबार स्थापना की पहली वर्षगांठ, 26 मई को होंगे कई विशेष अनुष्ठान।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: देखिए, 5 देशों की यात्रा के आखिरी पड़ाव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली की राजधानी रोम पहुंच चुके हैं, और इस दौरान वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री यानी जॉर्जिया मेलोनी ने मुलाकात की। साथ ही साथ मेलोनी ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ सेल्फी साझा करते हुए एक्स पर लिखा, वेलकम टू द रोम माई फ्रेंड। ये तस्वीर भारत इटली के बीच लगातार मजबूत होते रिश्तों का सबूत है। भारत और इटली की रणनीतिक साझेदारी नई ऊंचाइयों पर है। इटली यात्रा के दौरान चुनिंदा भारतीय और तालवी सीईओ से भी मुलाकात होने का प्लान है। हम आपको ये भी बता दें कि ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरा इटली दौरा है। खास बात यह है कि इटली यूरोपीय संघ में भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बनकर उभर रहा है। 2025 के आंकड़ों पर अगर हम नजर डालें तो दोनों देशों का आपसी व्यापार 14.25 अरब यूरो तक पहुंच चुका है। अब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात जॉर्जिया मेलोनी से ऐतिहासिक विला डोरिया पैम्फली में होने जा रही है, और उम्मीद जाहिर तौर पर यही है कि दोनों नेता भारत इटली रणनीतिक साझेदारी को और ज्यादा मजबूत करने के लिए एक संयुक्त घोषणा पत्र भी जारी कर सकते हैं। देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात जॉर्जिया मेलोनी से किस प्रकार से हुई, उन्होंने उनका स्वागत किया, साथ ही साथ सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी डाला, उन्होंने लिखा कि वेलकम माय फ्रेंड, और तमाम द्विपक्षीय मुलाकात के साथ कई मुद्दों को लेकर चर्चा भी होगी, साथ ही साथ ये तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बयां कर रही हैं।
3: और चलिए अब बात कर लेते हैं कान फिल्म फेस्टिवल की।

0: और चलिए आपको लेकर चलते हैं सीधे कान फेस्टिवल में, जहां हर दिन फैशन और संस्कृति एक अनोखा संगम आपको वहां देखने को मिल रहा है, या यूं कहें कि फ्रांस के कान शहर में इन दिनों सितारों का मेला लगा है। रेड कार्पेट पर ग्लैमर की चमक है, फैशन की दुनिया के सबसे बड़े नाम अपनी मौजूदगी वहां दर्ज करा रहे हैं और हर दिन एक नया अंदाज, एक नया फैशन लुक दुनिया के सामने पेश हो रहा है। रेड कार्पेट पर हर सितारा अपने अंदाज से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं, तो कहीं ट्रेडिशनल लुक में संस्कृति की झलक भी यहां दिखाई दे रही है, तो वहीं मॉडर्न फैशन का बोल्ड और ग्लैमरस अंदाज सुर्खियां बटोर रहा है। हर आउटफिट अपने साथ एक अलग कहानी लेकर आया है और भारतीय सितारों की तो बात ही कुछ और है। हर सितारे का लुक भारत की संस्कृति को बेहद खूबसूरती से पेश कर रहा है। हाल ही में कई सितारे यहां पहुंचे, जहां उन्होंने महाराष्ट्र से लेकर पंजाब की संस्कृति को कान के मंच पर पेश किया। और अब रेड कार्पेट पर जयपुर की बेटी और बॉलीवुड अभिनेत्री रुचि गुर्जर पहुंची, जहां उन्होंने अपने लुक के जरिए राजस्थान की समृद्ध परंपरा और संस्कृति को दुनिया के सामने बेहद खूबसूरती से पेश किया। उनकी ड्रेस में राजस्थानी कला, रंग और विरासत की साफ झलक दिखाई दी। वहीं कान के मंच पर कानपुर की बेटी और पूर्व मिसेज यूनिवर्स कल्पना शुक्ला ने फिल्म फेस्टिवल में अपने शानदार अंदाज से भारत का मान बढ़ाया। उन्होंने मनीष मल्होत्रा और जॉली पॉली के डिजाइनर गाउन पहनकर रेड कार्पेट पर अपना जलवा बिखेरा।
1: कान फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर हर साल फैशन के नए रंग देखने को मिलते हैं, लेकिन इस बार जयपुर की बेटी और बॉलीवुड अभिनेत्री रुचि गुर्जर ने अपने अंदाज से सिर्फ फैशन ही नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति को दुनिया के सामने पेश किया। 79वें कान फिल्म फेस्टिवल में रुचि जब पारंपरिक राजस्थानी घूंघट ओढ़कर रेड कार्पेट पर पहुंची तो हर किसी की निगाहें उन्हीं पर टिक गईं। पारंपरिक गहने और शाही अंदाज, रुचि का पूरा लुक भारतीय संस्कृति और राजस्थान की विरासत को बयां कर रहा है। देखिए, रुचि गुर्जर इससे पहले भी कान फिल्म फेस्टिवल में अपने अलग अंदाज को लेकर सुर्खियों में रही हैं और पिछले साल उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरित एक खास नेकलेस पहनकर सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था। ये तस्वीरें देखिए कितने प्रकार शानदार राजस्थानी लुक में नजर आई।

तो वहीं कानपुर की बेटी ने भी दुनिया के सबसे बड़े रेड कार्पेट पर अपना परचम लहराया। पूर्व वाइस मिसेज यूनिवर्स कल्पना शुक्ला ने अपने शानदार अंदाज और दमदार मौजूदगी से कान फिल्म फेस्टिवल में भारत का मान बढ़ाया। डिजाइनर मनीष मल्होत्रा और ज्वेली पॉली के खूबसूरत गाउन में कल्पना ने रेड कार्पेट पर ऐसा जलवा बिखेरा कि हर किसी की निगाहें उन्हीं पर टिक गई। कानपुर की बेटी कल्पना शुक्ला ने इस ग्लोबल मंच पर अपनी खास पहचान बनाकर शहर और देश दोनों का नाम रोशन किया।

0: चलिए कुछ और खबरों पर रुख करते हैं। बीती रात सिनेमा प्रेमियों के लिए खास तोहफा उनको मिला। दरअसल जूनियर एनटीआर ने अपने 43वें बर्थडे पर फैंस को तोहफा देते हुए अपनी फिल्म ड्रैगन का जबरदस्त टीजर रिलीज कर दिया। टीजर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर ये छा गया। प्रशांत नील की डायरेक्शन में बनी इस फिल्म ने फैंस का जोश बढ़ा दिया।
1: ये पौधा अफीम ज्यादा उगाता है या विलन? इस कहानी में तो सभी विलन है।
2: शानदार डायलॉग्स, जबरदस्त स्टार कास्ट और साउथ के सुपरस्टार जूनियर एनटीआर का एक्शन अवतार। जूनियर एनटीआर के जिस पिक्चर का बेसब्री से इंतजार हो रहा था उसका टीजर आ गया है। फिल्म की ये धमाकेदार झलक सामने आई है उनके 43वें जन्मदिन पर। 19 मई की रात मेकर्स ने टीजर रिलीज किया जो अब सोशल मीडिया पर छा चुका है। अब फैंस इस फिल्म के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गए। इस टीजर वीडियो में जूनियर एनटीआर का लुक काफी दमदार लग रहा है। पहली झलक से ही साफ है कि फिल्म बड़े पैमाने पर बनाई जा रही है। फिल्म में जूनियर एनटीआर के किरदार का नाम लूगर है। 4 मिनट 28 सेकंड की इस पहली झलक में न सिर्फ फिल्म की कहानी को लेकर उत्सुकता जगती है बल्कि मैन ऑफ द मासेस जूनियर एनटीआर के रोल को लेकर भी माहौल सेट कर देती है। फिल्म में बॉलीवुड के फॉरएवर यंग एक्टर अनिल कपूर भी अहम किरदार में नजर आ रहे हैं। इस फिल्म को मैत्री मूवी मेकर्स और एनटीआर आर्ट्स के बैनर तले प्रोड्यूस किया जा रहा है। ये फिल्म 11 जून 2027 को कुल 5 भाषाओं में पैन इंडिया रिलीज होगी, लेकिन फिल्म के फर्स्ट लुक ने अभी से ही इस फिल्म के लिए फैंस के बीच माहौल बनाने का काम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज ट्विटर।
1: सोते वक्त सपने में उनकी शक्ल नहीं आती जिनको मारा है, सिर्फ उनकी आती है जो अभी तक बचे। भटकते हुए भी मेरे सपनों में मत आ जाना।
3: और चलिए अब बात आईपीएल की कर लेते हैं। आपको आईपीएल के मैदान ही सीधे लेकर चलते हैं। आईपीएल में आज कोलकाता का सामना मुंबई से होगा। प्लेऑफ से बाहर हो चुकी मुंबई इंडियंस के लिए मैच महज औपचारिकता भर है। वो यहां से सम्मानजनक विदाई चाहेगी। वहीं केकेआर के लिए ये करो या मरो वाला मैच होगा। केकेआर अगर इस मैच में जीत हासिल करती है तो वो प्लेऑफ की रेस में बनी रहेगी। टीम 12 मैच में से 11 पॉइंट्स के साथ 8वें स्थान पर है। वहीं टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी मुंबई 12 मैच में 8 पॉइंट्स के साथ 9वें स्थान पर है। दोनों टीमों के बीच अब तक 36 मैच हुए हैं। कोलकाता ने 11 और मुंबई ने 25 मैच जीते हैं। साथ ही दोनों टीमों के बीच इस सीजन में हुए पहले मुकाबले में मुंबई ने जीत दर्ज की थी।

0: पंच केदारों में से द्वितीय केदार भगवान मदमहेश्वर के कपाट खोलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। भगवान की डोली अपने शीतकालीन गद्दीस्थल ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ से धाम के लिए रवाना हो गई है। 21 मई को डोली के धाम पहुंचने पर मंदिर के कपाट खोले जाएंगे।
1: संस्कृति, परंपरा और आस्था का अनूठा संगम। आगे आगे भगवान की डोली, पीछे पीछे भक्तों की डोली। ढोल दमाव की थाप है, रंग है, राग है, आस्था परंपरा है। भगवान मध्य महेश्वर अपने धाम चले हैं। अपने धाम यानी मध्य महेश्वर मंदिर। महिलाओं ने भजन गाकर अपने आराध्य को विदाई दी तो वहीं डोली के साथ साथ चल रहे भक्त महादेव का जयकारा लगाते पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ते रहे। ओंकारेश्वर मंदिर में भगवान शीतकालीन प्रवास पर थे। प्रवास पूरा होते ही मध्य महेश्वर की चल उत्सव विग्रह डोली अपने धाम के लिए रवाना हो गई। मंगलवार को ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर से रवाना हुई डोली आज गोंडार गाँव पहुँचेगी और 21 मई को मध्य महेश्वर मंदिर। डोली के धाम पहुंचने पर वैदिक मंत्रोच्चार और पूरे विधि विधान के साथ मंदिर के कपाट खोल दिए जाएंगे और अगले 6 महीने तक भगवान अपने भक्तों को यहीं दर्शन देंगे।
2: रांसी गांव से रुद्रप्रयाग जनपद के सीमांत गांव गोंडार में भगवान मदमहेश्वर की डोली द्वितीय रात्रि प्रवास करेगी। 21 मई सुबह डोली गोंडार गाँव से धाम के लिए प्रस्थान करेगी और धाम पहुंचने पर लगभग 11 बजे द्वितीय केदार भगवान मध्यस्वर के कपाट आगामी 6 माह के लिए खुलेंगे। आपको बता दें कि भगवान मध्यस्वर की मध्यस्वर धाम में मध्य भाग की पूजा होती है और इसके अलावा केदार घाटी में भगवान मध्यस्वर को न्याय के देवता के रूप में भी पूजा जाता है।
1: उत्तराखंड के पंच केदार में भगवान शिव के 5 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। केदारनाथ में बैल रूपी शिव के कुबड़ की, तुंगनाथ में भुजाओं की, रुद्रनाथ में मस्तक की, मध्य महेश्वर में नाभि की और कल्पेश्वर में जटाओं की पूजा होती है। पंच केदार में मध्य महेश्वर को दूसरे केदार के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि इस मंदिर को महाभारत काल में पांडवों द्वारा बनवाया गया था। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सिंहवाल, गुड न्यूज टुडे।
0: आप में आपका शहर बसता है, आप में आपकी माटी की महक बसी है। बुलाएंगे तो देश भर से आएंगे मेहमान, तो आप भी गुड न्यूज टुडे संग कीजिए अपने शहर में देश का स्वागत और व्हाट्सएप नंबर 7303409922 पर भेजिए अपने शहर का वीडियो।
3: बिल्कुल गीतिका, देखिए कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपील की थी कि लगेगा लोग जो है विदेश यात्रा से बचें और अपने देश में घूमें। उसके बाद हमने अपने दर्शकों से अपील की कि वो अपने आसपास की खूबसूरत जगहों की तस्वीरें भेजें, अपना वीडियो बनाकर भेजें, जिसके बाद हमें लगातार आपके वीडियोस मिल रहे हैं।
0: तो ऐसा एक वीडियो हमारे दर्शक आशीष कपूर ने उत्तराखंड के कौसानी से भेजा है। उनका गाँव कितना खूबसूरत है और आप वहाँ कैसे जा सकते हैं, ये सब उन्हीं की जुबानी सुनिए।

गुड न्यूज टुडे के लिए मैं त्रिश कपूर आज आपसे बात कर रहा हूँ। आज कौसानी और पूरा हिमालय जो है हमारे यहाँ बहुत सुंदर चमक रहा है। गुड न्यूज में आप सबका स्वागत है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी कहा कि पर्यटक विदेशों में न जाएं और अपने देश में आएं, कौसानी आएं, उत्तराखंड आएं, बागेश्वर आएं। मैं आप सबको बागेश्वर में इनवाइट करता हूं। बागेश्वर अपने आप में एक बहुत सुंदर स्थान है, एक वैली है और जिसको गोल्डन वैली ऑफ कुमाऊं एटकिंसन ने कहा था। बागेश्वर दो नदियों का संगम है, गोमती और सरयू। वहां पर उस संगम पर बागनाथ जी के दर्शन होते हैं। कहा जाता है, मान्यता यह है, शिव भगवान वहां पर बाघ के रूप में प्रकट हुए थे और दूसरी कहानी ये भी है कि शिव भगवान वहां पर वाघ के रूप में, आवाज के रूप में प्रकट हुए थे, जिसको बागेश्वर या बागेश्वर कहते हैं। ये सरयू नदी वही है जो यहां से निकलकर, बागेश्वर से निकलकर और ये जाती है अयोध्या और वहां से उस पर आजीपुर जाके गंगा मिल जाती है। बागेश्वर अपने आप में एक सुंदरतम स्थल है। यहाँ पर ट्रैकिंग की बहुत फैसिलिटीज हैं, यहाँ पर माउंटेनिंग की, ट्रैकिंग की, वाइल्ड लाइफ की, बर्ड वॉचिंग की। मैं इस कौसानी की बात कर रहा हूँ, इस कौसानी में लगभग 200 प्रकार के पक्षी आपको मिलते हैं। अगर आप पिनाक के जंगल में चले जाएं तो आपको मालूम पड़ता है कि लेपर्ड भी आपसे मिलने चला आता है और एंटीलोप बहुत है, हमारे यहाँ हिरन बहुत है, हमारे यहाँ मस्क डियर बहुत है, हमारे यहाँ लेपर्ड बहुत है और बर्ड्स तो भरी पड़ी है हमारे पास। हमारे सुंदर मंदिर है बैजनाथ का और बागेश्वर का और सत्यनारायण का, पिंडारी ग्लेशियर, कफनी ग्लेशियर, सुंदरमा ग्लेशियर, इन सबके रास्ते यहीं से जाते हैं। अगर आप बागेश्वर आना चाहते हैं तो आप दिल्ली से हल्द्वानी तक आ सकते हैं ट्रेन से और हल्द्वानी से किसी भी हेली सर्विस से आप बैजनाथ उतर सकते हैं। हमारे हमारा हेलीपैड हेलीपोर्ट यहाँ पर है, वहां पर उतर के अपनी आप जर्नी 20 मिनट पूरी कर सकते हैं। अन्यथा बस से भी, अपनी कार से भी आ सकते हैं, बस से भी आ सकते हैं, बहुत ट्रांसपोर्ट यहाँ पर उपलब्ध है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप अधिक से अधिक संख्या में बागेश्वर आइए, कौसानी आइए और यहाँ की हर चीज को एंजॉय करिए। देखिए चिड़िया कितनी बोलती है हमारे यहाँ, आपको हर जगह बर्ड मिलती है। इन बर्ड्स की आवाज को सुनकर आप देखिए क्या हरियाली भरी पड़ी है यहाँ पर। यहाँ पर बुरांस के जंगल, यहाँ पर काफल पके हैं आज कल जंगलों में, यहाँ पर नाशपाती और फलों की बड़ी है, बहुत बढ़ गए हैं। हमने यहाँ पर कौसानी में कई हमारे सेब के बगीचे लगाए हैं, दूसरे फलों के बगीचे हैं। कीवी हमारा बागेश्वर का एक प्रोडक्ट है जिसको हम लोग खूब इंजॉय करते हैं और हमारे साथ जो लोग आते हैं उनको कीवी के बारे में बताते हैं, बुरांस के फूलों के बारे में, बटर ब्रश के बारे में बताते हैं। अब हमारे यहाँ फल पकने लग गए हैं। आप सोचिए कि आजकल हमारे यहाँ खुमानी पक गई है, आड़ू पक गया है। ये देखिए हमारे सेब के बगीचों में सेब लगने शुरू हो गए हैं। हमारे पास आड़ू का बगीचा भी है, इसमें देखिए कितने सुंदर सुंदर नैपकिन के आड़ू की वैरायटी है जिसका रंग लाल होता है बिल्कुल, और इसमें सेब से भी बाहर से सेब की तरह लगता है ये, और अंदर जब इसके जाएंगे तो हमको बिल्कुल आड़ू खाने को मिलता है। जिस तरह से कैसा मिलता है आपको सेब से बगीचे भरे पड़े हमारे हर जगह सेब। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये सब चारों इधर देखिए। आइए आप मेरे इस आड़ू के बगीचे में देखिए, आड़ू के फल किस तरह पक चुके हैं। साथ में सेब भी हैं, साथ में चेरी भी है, साथ में प्लम भी हैं, साथ में खुमानी भी है और सारे फल हमारे भरे पड़े हैं। सारी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सब गुड न्यूज टुडे के माध्यम से दिखा रहा हूँ। कौसानी की बड़ी खासियत है, यहाँ से लगभग 340 किलोमीटर लंबा हिमालय आपको देखने को मिलता है और उसी तरह यहाँ पर कौसानी की खासियत यह है, यहाँ बैजनाथ की वैली 3000 फीट पर है और जो नंदा देवी है 26000 फीट पर है। तो 3000 से 26000 फीट ऊंचा हिमालय और 340 किलोमीटर लंबा हिमालय, आपी रंपा से लेकर बंदरपुर तक सारे पहाड़ यहाँ से दिखते हैं और त्रिशूल की तो महिमा ही कुछ और है। यहाँ से त्रिशूल, नंदा खुंटी और बैजनाथ की वैली, कतियो की वैली, बागेश्वर की वैली, ये आपका दिल बहुल लेते हैं यहाँ पर। लेकिन जो सुंदरता हमारे कौसानी में है वो कहीं नहीं है। शायद यही कारण था कि महात्मा गांधी ने अपने मित्रों की तरफ चिट्ठी लिखी, उन्होंने लिखा था मैं समझ नहीं पाता हूँ कि लोग स्विट्जरलैंड या यूरोप क्यों जाते हैं जबकि कौसानी यहाँ पर है। कौसानी और बागेश्वर की महिमा ही कुछ और है। आप आइए, हम आपका स्वागत करते हैं।

0: Grab some friends and an ice-cold Mountain Dew today.
1: Mountain Dew!
2: Music for every mood lives on TuneIn. Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations, like today's hits. Classic rock. Coffee house. And more. Stream non-stop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
4: जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: Good news today.
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
11: इटली दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इटली की प्रधानमंत्री मेलानी से हुई मुलाकात, आज ही होगी द्विपक्षीय वार्ता, कई समझौते होने की उम्मीद। झांसी में धूमधाम से मनाई गई रानी झांसी की

184वीं विवाह वर्षगांठ निकाली गई शोभा यात्रा, देखने को मिली ढोल नगाड़ों की गूंज, पारंपरिक मराठी वेशभूषा और ऐतिहासिक पात्रों की झलक। भीषण गर्मी से जूझ रहा पूरा उत्तर भारत, हीट वेव का अलर्ट, कई शहरों में पारा 47 डिग्री के पार, लोगों से सावधानी बरतने की अपील। देवभूमि में धूमधाम से जारी है चारधाम यात्रा, अब तक करीब 16.5 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। खराब मौसम के चलते केदारनाथ में हेली सेवा रोकी गई। गंगा दशहरे के पावन दिन उत्सव के रंग में रंगेगी अयोध्या, धूमधाम से मनाई जाएगी राम दरबार स्थापना की पहली वर्षगांठ। 26 मई को होंगे कई विशेष अनुष्ठान।

0: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे नौ ग्रहों की, उनके मंत्रों की और मंत्र जपने के नियम की और तरीके की। इसके अलावा बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक विशेष उपाय के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 20 मई 2026, दिन बुधवार, तिथि है अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, प्रातः 11:06 तक। नक्षत्र है आर्द्रा नक्षत्र, प्रातः 6:12 तक। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं रात के 10:38 तक। राहु काल का समय दोपहर 12 से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम नौ ग्रहों के चमत्कारी मंत्र की बात कर रहे हैं। किस ग्रह के लिए कौन सा मंत्र पढ़ें, कब पढ़ें, ये जानने का प्रयास कर रहे हैं। पहला ग्रह है सूर्य। सूर्य जो हैं ये ग्रहों के राजा हैं और सूर्य का मतलब ये व्यक्ति की आत्मा है। अगर सूर्य कुंडली में गड़बड़ हो, कमजोर हो, तो जीवन में अपयश, हृदय रोग और हड्डियों की बीमारी हो जाती है। सूर्य को मजबूत बनाए रखने के लिए और सूर्य की कृपा पाने के लिए सुबह के समय में या दोपहर के समय में सूर्य देव के मंत्र का एक माला जप करिएगा। खास तौर से अगर आप हड्डियों की या हृदय की समस्या से परेशान हैं, मंत्र होगा ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। और मंत्र का जप करेंगे रुद्राक्ष की माला से या लाल चंदन की माला से तो इसके प्रभाव शुभ रहेंगे। देखिए, चंद्रमा की अगर बात करें तो ये ग्रहों का दूसरा राजा है और कहीं कहीं पर चंद्रमा को रानी भी कहा गया है। तो चंद्रमा दूसरा राजा है या रानी है। चंद्रमा अगर गड़बड़ है, कमजोर है, तो मानसिक बीमारियां होती हैं, मानसिक रोग होते हैं, अस्थमा की शिकायत, रक्त की समस्या, मेंटल प्रॉब्लम, डिप्रेशन, साइकोलॉजिकल दिक्कतें ये जीवन में काफी ज्यादा होती हैं। तो चंद्रमा को अगर बेहतर करना चाहते हैं, चंद्रमा को अगर मजबूत करना चाहते हैं, तो रात के समय में चंद्रमा निकल जाने के बाद मोती या शंख की माला से चंद्रमा के मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र होगा ओम सोम सोमाय नमः, और मंत्र जप मोती की माला से या शंख की माला से अगर आप करें तो उसके प्रभाव, उसके परिणाम ज्यादा बेहतर होंगे। मेष राशि, मानसिक तनाव कम होगा, करियर में सफलता मिलेगी, काम की अधिकता रहेगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, जीवन में खुशहाली आएगी, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, स्वास्थ्य पर अपने ध्यान बनाए रखें, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें, परिवार में शांति रखें, हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। देखिए, अगर मंगल की बात करें, मंगल के मंत्र की बात करें, तो मंगल जो है ये ग्रहों का सेनापति है और किसी व्यक्ति का साहस है, किसी व्यक्ति के अंदर कितना साहस है ये मंगल बताता है। मंगल के कमजोर होने पर भय की समस्या, संपत्ति की समस्या, दुर्घटना, जेल जाना और रिश्तों की समस्या होती है। मुकदमेबाजी, जेल यात्रा, भाई भाई में विवाद, ऑपरेशन, सर्जरी जैसी नौबत जीवन में आएगी अगर मंगल गड़बड़ होगा। मंगल को बेहतर करने के लिए दोपहर के समय में या सुबह के समय में मंगल के मंत्र का जप करिएगा। मंगल का मंत्र होगा ओम अंग अंगारकाय नमः, ओम अंग अंगारकाय नमः। मंत्र का जप मूंगे की माला से या लाल चंदन की माला से करेंगे तो शुभ रहेगा। अब बात करते हैं बुध की। देखिए, बुध ग्रहों का राजकुमार है। किसी भी व्यक्ति की जो वाणी है और किसी भी व्यक्ति की जो बुद्धि है उसके पीछे जो ग्रह है वो है बुध। बुध के कमजोर होने पर बुद्धि काम नहीं करती, आदमी का दिमाग तेज नहीं होता, कान नाक गले की समस्या, त्वचा की समस्या और वाणी की समस्या हो जाती है। बुध को बेहतर करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए सुबह के समय बुध के मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र होगा ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः। इस मंत्र का सुबह के समय जप करना काफी बेहतर होगा। और मंत्र जप किया जाएगा हरे हकीक की माला से या रुद्राक्ष की माला से। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा, परिवार में व्यस्तता रहेगी। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, कारोबार की स्थिति ठीक रहेगी, करियर में लाभ होगा, यात्रा के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी, लाभकारी यात्रा आपकी हो सकती है, चोट चपेट से इस समय बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में समस्या हो सकती है, ऑफिस में विवादों से बचाव करें। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, अगर हम शुक्र की बात करें तो शुक्र को भी गुरु का दर्जा प्राप्त है और शुक्र को भी ग्रहों में मंत्री कहा जाता है। किसी व्यक्ति के जीवन में कितना सुख है, कितना आनंद है, कितना चैन है, उसके पीछे शुक्र ही होता है। अगर शुक्र गड़बड़ हो तो पारिवारिक और किसी भी प्रकार का सुख जीवन में नहीं मिलता। सब कुछ होने के बावजूद आप चैन से, आनंद से, सुख से नहीं रह पाएंगे। शुक्र को बेहतर करने के लिए भोर के समय में या रात के समय में शुक्र देव के मंत्र का जप करना चाहिए। और शुक्र देव का मंत्र है ओम शुं शुक्राय नमः, ओम शुं शुक्राय नमः। इस मंत्र का जप करें। मंत्र का जप कर सकते हैं सफेद स्फटिक की माला से या सफेद चंदन की माला से। अगर मंत्र का जप करें तो लाभ होगा। धनु राशि, करियर में नए अवसर मिलेंगे, मानसिक तनाव समाप्त होगा, स्वास्थ्य में सुधार होता जाएगा। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, आकस्मिक धन का लाभ होता हुआ आपके लिए दिखाई दे रहा है, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं, परिवार में मंगल कार्य होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य और तनाव में सुधार होगा, धन की समस्याएं दूर होंगी, चोट चपेट से बचाव करें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, बेवजह की चिंता हो सकती है, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, निर्णयों में सावधानी बनाए रखें। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। अब बात करते हैं राहु की। जैसा कहा इन्होंने कि राहु एक शैडो प्लेनेट है, एक छाया ग्रह है, व्यक्ति के जीवन के रहस्यों से संबंध रखता है। पूर्व जन्म में क्या थे, कौन सा क्या रिश्ता था, क्या साधना है, क्या पूजा है, क्या प्रारब्ध है, ये जो रहस्य हैं जीवन के, ये राहु से जुड़े होते हैं। अगर राहु का प्रभाव जीवन में बुरा हो तो जीवन की समस्याओं का कारण पता नहीं चलता, सब कुछ जीवन में रहस्य बना रहता है। तो राहु को कंट्रोल करने के लिए राहु के मंत्र का जप करना चाहिए रात के समय में, और राहु का मंत्र होगा ओम रांग राहवे नमः। और राहु के मंत्र का जप करेंगे रुद्राक्ष की माला से तो इसके परिणाम शुभ होंगे। केतु की बात करें, देखिए केतु भी छाया ग्रह है, शैडो प्लेनेट है, किसी व्यक्ति की गोपनीय समस्याओं से संबंध रखता है और किसी व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिक क्षमता कितनी है उससे संबंध रखता है। अगर केतु खराब हो तो व्यक्ति को गोपनीय समस्याएं या गोपनीय बीमारियां परेशान करती हैं, और जब केतु गड़बड़ होता है तो व्यक्ति तंत्र मंत्र के गलत मार्ग पर चलता है। केतु को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए केतु के मंत्र का जप रात के समय में करना चाहिए, और केतु का मंत्र है ओम कें केतवे नमः। इस मंत्र का रोज रात में जप करें, और मंत्र का जप करेंगे रुद्राक्ष की माला से तो परिणाम बेहतर होंगे। अगर संपत्ति संबंधी कोई भी समस्या आपकी जीवन में चल रही है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप सिर्फ इतना करिए कि हर मंगलवार को हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाइएगा। अगर आप ऐसा हर मंगलवार को करने लगें और प्रार्थना करें तो संपत्ति संबंधी समस्या हल हो जाएगी। कि अगर आपके जीवन में बार बार उतार चढ़ाव बना रहता हो तो क्या उपाय करेंगे, रोज सवेरे सूर्य देव को जल अर्पित करें, सुबह और शाम 108 बार राहु के मंत्र का जप करें ओम रांग राहवे नमः। हर शनिवार को खाने पीने की वस्तु का दान करें। अगर ऐसा निरंतर करते रहें तो जीवन के उतार चढ़ाव से बचे रहेंगे। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
1: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive Soul Groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
2: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all of your favorite music, news, sports, and more all in one place. Hear all of the audio you love, whether you're a music lover, interested in what's going on around the world?
3: We know that Hamas has agreed to a deal at some point, and
2: or want to catch your team's live play-by-play. It's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
5: खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।

आपने कभी विचार किया ये सब सुख क्या है? कभी तुमने सोचा? हम आपको संसार के आज सात सुख बताएंगे। कितने? सात। सब सुख कौन कौन? उनमें सात सुख हमने निकाले। शायद गलत हो, एक आध दो तुम अपनी तरफ से जोड़ लेना। हमारे साथ सुनो, संसार के सात सुख कौन से हैं? पहला सुख निरोगी काया। कौन सा पहला सुख है? खूब अमीर आदमी हो, बढ़िया बढ़िया बंगले बने हो, आहा फाइटर जेट हो, फ्लाइट हो, चील गाड़ी, हेलीकॉप्टर, लेकिन आगे लगी सुगर हो गई हो, का काम का रुपया ढले रहा हो भैया, खूब पैसे वाले हो, अरबपति खरबपति, खूब आप हॉस्पिटल बना लीजिएगा, पर भैया रोग पर कुछ भी काम नहीं करता। तो पहला सुख क्या है? पहला सुख निरोगी काया। तो क्या ये हनुमान जी से मिलेगा? हाँ मिलेगा, प्रमाण दीजिए, लीजिए। कहां से? हनुमान चालीसा से। कहां लिखा? सुनिए, पढ़िए, गाइए ना।

हाँ हाँ, तो पहला सुख निरोगी काया है वो कहाँ से मिल पाएगा भैया? हनुमान जी की कृपा रही, आहार शुद्ध रखोगे व्यवहार शुद्ध रहेगा। हनुमान जी खाते क्या है? फलाहार, बढ़िया पेट रहता, नो फैट नो वेट, कोई वजन वजन नहीं भैया, कोई फैट वेट नहीं। अमीर आदमी बनने के बाद साइकिल छूट जाती, मोटरसाइकिल खरीदता और ज्यादा पैसा बढ़ता, कार खरीदता, आहा, पर ऐसा मकान बनाता कि बगल में ही सब कुछ करेंगे, बाथरूम का गेट खोला वही नहाया वही खाली हो गए, सब कुछ बगल में, क्यों अमीर है। कितना उल्टा जमाना आ गया। हम एक दिन बैठे बैठे बड़ा हंस रहे थे, पहले के जमाने में आदमी पेट खाली करने के लिए बाहर जाता था, पैसा घर पे गाड़ता था, आजकल के जमाने में पेट खाली घर पे कर रहा है और पैसा बाहर लॉकर में धर रहा है। बताइए तो क्या गजब जमाना आ गया। हनुमान जी बोलो सीताराम, जोर से बोलो, जोर से बोलो। तो भैया निरोगी काया, आहार शुद्धि व्यवहार शुद्धि, भोजन बढ़िया कीजिए, भजन भी बढ़िया कीजिए। भोजन से शरीर पुष्ट होता है, भगवान के भजन से आत्मा तुष्ट होती है। तो भोजन बढ़िया कीजिए, आहार शुद्ध रखिए, ये हनुमान जी पहला सुख देते। अच्छा, संसार का दूसरा सुख क्या है? कोई बहुत अमीर आदमी हो जाए या बहुत निरोगी हो जाए, कोई रोग नहीं पर मूड हो। मूड जानते हो ना, मूर्ख अज्ञानी, ना खुद का ज्ञान, ना जगत का, ना परमात्मा का, तो क्या उसका जीवन किसी काम का है? जरा बोलिए, किसी काम का नहीं। जिसने खुद को नहीं जाना, ब्रह्म को नहीं जाना, वह किसी काम का नहीं, उसका जीवन निरर्थक है, बेकार है। अभी हम पटकी डाल रहे थे तब कोई एक महाशय हमारे पास आए, अभी अभी की बात, बिल्कुल आज की। अब वो हमारे आकर बोले, हमको आत्म साक्षात्कार करना है। हमको बड़ा अच्छा लगा सुनकर, बहुत प्रियता लगी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उन्होंने तो समझ लिया आलू भटा। आत्म साक्षात्कार खुद को जानना है, अंग्रेजी में कहें तो हु आई एम, मैं कौन हूं, इसे आत्म साक्षात्कार कहते हैं। तो क्या यह संभव है? बिल्कुल संभव है। कैसे? ये ज्ञान से संभव नहीं है, ध्यान से संभव है। तो महाराज जी, कोई मूड हो, अज्ञानी हो, तो क्या उसकी विपदा को तुम्हारे हनुमान जी मिटा सकते हैं? बिल्कुल मिटा सकते हैं। इस श्लोक का वर्णन है, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, हनुमान जी ज्ञानियों में अग्रगण्य है। और इसी की चौपाई बना करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दी है हनुमान चालीसा में, जय

पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख ज्ञान प्राप्त हो जाना, बुद्धत्व को पा जाना, ब्रह्म को बारे में जान लेना। अरे तुम्हें ब्रह्म का ज्ञान हो या ना हो, ज्ञानी वो नहीं है जिसने पीएचडी या डीएड बीएड कर ली। मेरे प्रियजनों, ज्ञानी वो है जिसने खुद को जान लिया। रावण ने दुनिया का तो ज्ञान रखा था, चार वेद छह शास्त्र, दस सिर जो है रावण के, वो चार वेद और छह शास्त्र के प्रतीक हैं। लेकिन रावण को सब ज्ञान था, पर ना तो आत्मज्ञान था ना ब्रह्म ज्ञान था। ब्रह्म वेत्ता नहीं होता, विद्वान था, विद्यावान नहीं था। हनुमान जी विद्वान नहीं है, विद्यावान है। रावण विद्वान है, हनुमान जी क्या है? विद्यावान। हनुमान चालीसा में उत्तर भी है, विद्यावान गुनी अति चातुर। तो रावण विद्वान है, हनुमान जी विद्यावान है। मेरे प्रियजनों, मेरी आत्माओं, खुद को जान लेना, खुद को समझना, यह आत्मज्ञान है। ये कैसे प्राप्त होगा? हनुमान जी के ध्यान से, हनुमान जी की पूजा से आत्मज्ञान भी प्राप्त हो जाएगा। ये दूसरा सुख भी तुम्हें मिलेगा। ये हम सब सुख पर आपको बता रहे हैं, उसमें सात सुख। अच्छा, तीसरा सुख क्या है संसार का? मान सम्मान पा लेना। क्या पा लेना? सब लोग मरे जा रहे हैं, बहुत अमीर लोग कुछ इसलिए कथा करवाते हैं कि दानी या धर्मात्मा है, इसलिए नहीं, हमारा नाम हो जाए कि हम बागेश्वर बाबा जी को बुलाए थे। अब आप लोग यजमान जी के ऊपर मत देखना कि इन्होंने भी यही किया है, आप लोग गलत मत ले जाना। हम एक बहुत तर्क वाली बात बता रहे हैं। यजमान जी आप बुरा मत मानना कि तुम हमारी दक्षिणा बंद कर दो, आफत हो जाएगी भैया। राम राम राम राम राम, सीताराम कहो सीताराम कहो सीताराम कहो, पर सत्य बोले बिना हम रुक नहीं सकते। सुनिए, बहुत लोग इसलिए कथा नहीं करवाते कि वो कथा के जिज्ञासु होते हैं या पिपासु होते हैं या कथा के रसिक होते। बहुत लोग क्या, 98% लोग कथा वो करवाते हैं जिनको नाम कमाना होता है। लेकिन एक बात बोले भैया, कह दो बोलो। अरे कहो तो, जिनके नाम में ही पीछे मान लगा हो उसे क्यों सम्मान प्राप्त नहीं होगा? हनुमान जी के नाम के पीछे क्या लगा? मान, हनु हनु। जिनके नाम के पीछे लगा मान, इनकी जो पूजा करेगा वो पा जाएगा सम्मान। तो यह तीसरा सुख भी, अब यजमान जी को सम्मान मिल जाए तो इसमें इनकी कोई महिमा नहीं है, हनुमान जी के नाम की महिमा है। और मिलना भी चाहिए, कोई ऐसा दिलेर हो तो जिसने नीम करोली वाले बाबा को भी मुरादाबाद में विराजमान करवा दिया हो। धन्य है इनका ट्रस्ट, चाहे वो अनिल कुमार जी हो, चाहे विनीत गुप्ता जी हो, चाहे शैलेंद्र गुप्ता जी भी हो, और चाहे प्रदीप गुप्ता जी भी हो। धन्य है ये लोग जिन्होंने मिलकर के एक ऐसा आयोजन यहां पर करवाया है। 18, 19 और 20 तारीख का इतिहास में लिखा जाएगा, मुरादाबाद भी भगवा नजर आएगा। बोलो जय सियाराम। अब किसी की पेट में दर्द हो जाएगा तो कम खाएगा, हमारा क्या बिगाड़ पाएगा? हम तो परदेसी हैं, 3 दिन बाद अपने घर जाएगा, बागेश्वर धाम जाएगा, फिर अगली बार जहां जाएगा वहां फिर कथा गाएगा, फिर धर्म विरोधियों को हिलाएगा, उनकी ठटरी बार कर फिर वापस बागेश्वर धाम आएगा। बोलो जय सियाराम, जय सियाराम। तो हनुमान जी सब सुख देने, हनुमान जी सब सुख देने वाले हैं। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख ज्ञान प्राप्त हो, तीजा सुख मान प्राप्त हो, चौथा सुख कौन सा? धर्म कर्म पर चलना। किस पर चलना? बोलो बोलो बोलो, सतमार्ग पर चलना। ये तो हनुमान जी से ही सीख सकते, ये काम भी हनुमान जी का है। ये हनुमान जी की शरण में जाने से स्वभावता आदमी सावधान हो जाता। दुनिया में और किसी देवता को लोग डरे या ना डरे,
पर हनुमान जी को जरूर डरते हैं, भैया बजरंग बड़ी बड़े खतरनाक हैं। क्यों? क्योंकि इनकी मुक्का इनकी पूंछ की कथा सबने सुन रखी है कि लंका में क्या पूंछ का चमत्कार दिखलाया, रावण का भी दिमाग हिलकर बाहर आ गया था, ऐसे खतरनाक श्री हनुमान जी महाराज हैं। तो हनुमान जी को मानने वाला सत्कर्म पर सुतः चलता है, धर्म कर्म का पालन सुतः करने लगता है, उसको यह सुतः ही सुख प्राप्त हो जाता। बोलो जय सियाराम। अब पांचवा सुख क्या है? संपत्ति से भरपूर। घर में माया तो क्या ये हनुमान जी से मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। किसको मिले?

ये हनुमान जी ने ही तीर चलाया था जब पहली बार विभीषण जी लंका में मिले, प्रणाम हुआ, परिचय हुआ। विभीषण जी बोले अब आप हमें बताओ हम करें क्या, आपको राम जी के दर्शन हो गए हमको नहीं भय। हनुमान जी बोले हमें राम जी के हो गए पर हमें जानकी जी के नहीं भय। तो विभीषण जी बोले करें क्या, हनुमान जी बोले अदला बदली कर लो, क्या तुम हमें जानकी जी का पता बता दो, हम जानकी जी से दर्शन कर ले जानकी माता के, और हम तुम्हें राम जी से मिलने का पता बता देंगे, तुम राम जी के दर्शन कर लेना। विभीषण जी बोले जय हो आपकी। हनुमान जी धीरे से बोले पार्टी बदल लो, आजकल पार्टी बदलने का खेल बड़ा चलता है। हनुमान जी ने पहले ही एक चौका मार दिया था लंका में। विभीषण जी बोले कौन सी पार्टी, हनुमान जी बोले जा वालो झंडा लगा लो, जय श्री राम। विभीषण जी बोले होगा क्या, हनुमान जी बोले हम अभी वचन नहीं दे रहे पर बहुत बड़े पद पे पहुंचोगे, बहुत लंबे जाओगे, भविष्य तुम्हारा इसी पार्टी में है। विभीषण जी बोले तुम चलो हम पीछे से आ रहे दुपट्टा लेकर। हनुमान जी गए राम जी के पास, आए जानकी जी की खबर दी, विभीषण जी आए, राम जी बोले मिलना चाहिए या नहीं, हनुमान जी बोले मिल लो, नेता खतरनाक है, यही मुख्यमंत्री को गिरा सकता है, यही मुख्यमंत्री की सरकार को गिरा सकता है। राम जी भी कम जादूगर नहीं, कम दार्शनिक नहीं, कम राजनेता नहीं। राम जी ने जैसे ही देखा बोले आओ लंकेश्वर, आओ लंकेश्वर। विभीषण पीछे देखने लगा कि कहीं हमारा भाई तो नहीं आ गया है, पीछे से कहीं हमारा भाई तो नहीं आ, क्योंकि लंकेश्वर तो भाई है, हम तो हैं ही नहीं। विभीषण ने पीछे देखा, राम जी से बोला किसे बुला रहे, राम जी बोले तुम्हें बुला रहे। विभीषण बोले हम तो पार्षद नहीं बन पाए, आप सीधा लंकेश्वर बुला रहे। राम जी बोले तुम कह रहे पार, हम देख रहे तुम्हें कि तुम लंकेश्वर बन रहे। अब विभीषण जी मन ही मन बोले भार में गाओ, अब भैया कलई तप जाए ताकि हम लंका के। तो जो बची खुची कसर थी सपोर्ट देने की, वो राम जी ने ऐसी राजनीति का पंच फेंका, बोले तुम लंकेश्वर। मन में लड्डू फूटा। विभीषण ने सोचा भाई कैसे तपेगा, जल्दी मर जाए ताकि ये लंकेश्वर का वचन पूरा हो जाए। तो जो पहले कम पिटवाना था बिल्कुल सत्यानाश करने का ठान लिया, क्योंकि लंका का राजा बनना है और लंका के राजा विभीषण जी बन गए तो उनके पास में माल मटेरियल भी आ गया। और भैया पांचवा सुख पूरा हो गया क्या, हनुमान जी से जुड़ने मात्र से छोटा सा, अच्छा देखो ऐसे समझो कोई मुरादाबाद का पार्षद सीधा जाए किसी के पास हो, उसको कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष सीधा कहने लगे आओ मंत्री जी, तब पार्षद का तो दिमाग खराब हो जाएगा, सीधा दिमाग। जैसे अभी ये मेयर आए थे यहाँ के बैठे हैं, अब ये बैठे देखो क्या दांत खीसा निकाल रहे हैं, जरा कैमरा करो इन पे, ये देखो यहाँ के मेयर क्या खीसा निकाल। अच्छा जे जाए दिल्ली और कोई पार्टी का अध्यक्ष कहे आइए मंत्री जी, इनका तो दिमाग ऊपर लेवल पे, राष्ट्रीय अध्यक्ष मंत्री बुला रहा मतलब हम मंत्री बन रहे, फिर तो इन्हें चाहे गृहस्थी बेचने पड़े झंडा वही लगेगा। ऐसे ही विभीषण जी के साथ हुआ जैसा हमने अभी इनके साथ किया। फिर क्या, विभीषण जी ने रावण में रावण के अत्याचार को खत्म करवा दिया। और जो हनुमान जी से जुड़ने का पांचवा सुख है, सब सुख में कौन सा, धन संपत्ति पा जाना, मान सम्मान पा जाना, वह विभीषण ने पा लिया हनुमान जी से जुड़ने मात्र से। मेरे पागलो तुम भी सुन लो, नेताजी तुम भी सुन लो, तुमको भी अगर कुछ और बनना है तो पकड़ लो,

संसार के सात सुख प्रमुख हैं। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, तीजा सुख सुलक्षण नारी नारी और सुत, चौथा सुख सुत आज्ञाकारी। मेरे प्रियजनों, हमने आपको कुछ सुख बता दिए। इन सात सुखों में हमने आपको माया का बता दिया। धन प्राप्त होता है, मान प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त होता है। अब हम आपको छठवां सुख बता लाते हैं। छठवां सुख संसार का, पत्नी और सुत आज्ञाकारी होने चाहिए। नारी सुलक्षण होनी चाहिए, सुत आज्ञाकारी होना चाहिए। कई लोगों के पति तो बड़े धर्मपरायण होते हैं, पत्नी बड़ी खतरनाक होती हैं। बोलो सीताराम, हम ज्यादा बुराई नहीं करेंगे क्योंकि हमको 3 दिन अभी यहां रुकना भी है। लेकिन बहुत से लोग हमें ऐसे मिलते हैं, हम उनसे कहते हैं कि एक बात बताओ, पहले तो तुम्हारी मति ठीक थी, अब खराब हो गई, तुम्हें शर्म नहीं आती? बोले गुरुजी क्या बताएं, जब से श्रीमती आई तब से अपनी मति चली गई है। बोलो जय सियाराम। लेकिन हनुमान जी को मानने के बाद क्या श्रीमती की मति ठीक हो जाएगी? बिल्कुल ठीक हो जाएगी, क्योंकि हनुमान जी बीच बीच में ठिकाने लगाए रहते हैं। हनुमान जी की भक्ति करने वाले का घर प्रसन्न रहता है। क्यों प्रसन्न रहता है? हनुमान जी महाराज कलयुग के राजा हैं, ये सब सुख देने की सामर्थ्यता रखते हैं। तो श्रीमती की भी, किसी की भी पत्नी बहुत खतरनाक हो, हमारी कथा सुन लो, हमारी कथा ये सुन लो। क्या आप हनुमान जी के भक्त बन जाओ? महाराज जी बैराग धारण तो नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, सन्यासी तो नहीं बन जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, गृहस्थ ही रहेंगे। तो करें क्या? तुम हनुमान जी की उपासना करोगे, पूजा करोगे, नित्य नियम करोगे, हनुमान जी के चरित्र को अपने जीवन में धारण करोगे, और जब तुम्हारे अंदर पवित्रता, शुद्धता, सात्विकता भर जाएगी, तो तुम्हारी पत्नी तुमको देख करके दंग रह जाएगी कि ये कितने पवित्र हैं। हम अगर कुछ गलत करेंगे तो परमात्मा हमको दंड देगा। अब वो डरने लगेगी, डरने लगेगी, तो वो भी

आज्ञाकारी, ये छठवें सुखमय पत्नी और पुत्र हमने दोनों को लिया है क्योंकि सातवां हमें अलग बताना है। तो सुत आज्ञाकारी क्या होगा, ये सुख है भैया। कोई धनवान हो, बुद्धिमान हो, बलवान हो, बहुत बड़ा मंत्री मिनिस्टर बन गया हो, मुख्यमंत्री बन गया हो, पर धर्म पत्नी खतरनाक हो तो क्या उसका बड़ा बनना किसी काम का है? या पत्नी बढ़िया हो, नाम बहुत बढ़िया हो, बड़े आदमी हो, पर बेटा खतरनाक हो, जुआ खेलता हो, बात ना मानता हो, तो क्या उसका जीवन किसी काम का है? जीते जी नरक बन जाएगा। महाराज, हम अपने बच्चे की मति को, बुद्धि को कैसे सुधारें? एक ही उपाय है, हनुमान जी की

करके चोला चढ़ा करके हनुमान जी के चरणों का चरणों तक अपने पुत्र को पिलाता है, उसकी बुद्धि सुबुद्धि हो जाती है, सुंदर मति हो जाती है और बालक निश्चित रूप से संस्कार देने पर पिता का आज्ञाकारी बन जाता है। यह आपको छठवां सुख बता दिया। अब सातवां संसार का सुख क्या है? सुख के ऊपर के बाप का नाम है आनंद। सुख का बाप है महासुख, महासुख के बाप का नाम है आनंद और आनंद के ऊपर है परमानंद। तो आनंद कहां मिलेगा? परमानंद के पास। परमानंद कहां मिलेंगे? परमानंद कौन है? परमानंद है राम जी। पर राम जी कहां मिलेंगे? राम जी तो सर्वत्र हैं, यत्र रामा तत्र रामा, सर्वत्र राम ही राम है। मिलेंगे कैसे? हनुमान जी के कारण। हनुमान जी के कारण क्यों?

0: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. Thank God I get to wake and everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
1: Some people think that Talk Sport's just a clever name, that we just talk sport. But that's absolute balderdash. We breathe it, dream it, think it, play it and eat it for breakfast wrapped up in an English muffin. So, if you want to get seriously sauteed by soccer, poached by the Premier League and marinated by monster news and reaction, listen to Talk Sport. It's not just a clever name, dude. Listen live from London on TuneIn and munch it down for free. Mmm, delicious. A bit salty. Warning, Talk Sport definitely contains nuts.
2: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
3: किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
1: पांच देशों की यात्रा के आखिरी पड़ाव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली की राजधानी रोम में पहुंच चुके हैं और इस दौरान वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने मुलाकात की। साथ ही साथ मेलोनी ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ सेल्फी साझा करते हुए एक्स पर लिखा कि वेलकम टू रोम माई फ्रेंड। ये तस्वीर जो है भारत इटली के बीच लगातार मजबूत होते रिश्तों का सबूत पेश करती है और भारत और इटली की रणनीतिक साझेदारी की नई ऊंचाइयों पर यह नजर आती है। इटली यात्रा के दौरान चुनिंदा भारतीय और इटालियन सीईओ से भी मुलाकात का प्लान है। हम आपको यह भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरा ये इटली दौरा है। खास बात देखिए इसमें यह है कि इटली यूरोपीय संघ में भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बनकर उभर रहा है। 2025 के आंकड़ों पर अगर हम नजर डालें तो दोनों देशों का आपसी व्यापार 14.25 अरब यूरो तक पहुंच चुका है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात जॉर्जिया मेलोनी से ऐतिहासिक विला डोरिया पैम्फिली में होने जा रही है और उम्मीद जाहिर तौर पर यही है कि दोनों नेता जो हैं भारत इटली रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए एक संयुक्त घोषणा पत्र जारी करेंगे। आप में आपका शहर बसता है, आप में आपकी माटी की महक बसी है, बुलाएंगे तो देश भर से आएंगे मेहमान। तो आप भी गुड न्यूज टुडे संग कीजिए अपने शहर में देश का स्वागत और व्हाट्सएप नंबर 7303409922 पर भेजिए अपने शहर का वीडियो। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपील की थी कि लोग विदेश यात्रा से बचें और अपने देश घूमें। उसके बाद हमने अपने दर्शकों से अपील की कि वो अपने आसपास की खूबसूरत जगहों की तस्वीरें भेजें। आपने वीडियो बनाकर भेजे भी जिसके बाद हमें लगातार आपके वीडियो मिल रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो हमारे दर्शक आशीष कपूर ने उत्तराखंड के कौसानी से वीडियो ये भेजा है। उनका गांव कितना खूबसूरत है और आप वहां कैसे जा सकते हैं ये सब उन्हीं की जुबानी सुनिए।

गुड न्यूज टुडे के लिए मैं त्रिश कपूर आज आपसे बात कर रहा हूँ। आज कौसानी और पूरा हिमालय जो है हमारे यहाँ बहुत सुंदर चमक रहा है। गुड न्यूज में आप सबका स्वागत है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी कहा कि पर्यटक विदेशों में न जाएं और अपने देश में आएं, कौसानी आएं, उत्तराखंड आएं, बागेश्वर आएं। मैं आप सबको बागेश्वर में इनवाइट करता हूं। बागेश्वर अपने आप में एक बहुत सुंदर स्थान है, एक वैली है और जिसको गोल्डन वैली ऑफ कुमाऊं एटकिंसन ने कहा था। बागेश्वर दो नदियों का संगम है, गोमती और सरयू। वहां पर उस संगम पर बागनाथ जी के दर्शन होते हैं। कहा जाता है, मान्यता यह है, शिव भगवान वहां पर बाघ के रूप में प्रकट हुए थे और दूसरी कहानी ये भी है कि शिव भगवान वहां पर वाघ के रूप में, आवाज के रूप में प्रकट हुए थे, जिसको बागेश्वर या बागेश्वर कहते हैं। ये सरयू नदी वही है जो यहां से निकलकर, बागेश्वर से निकलकर और ये जाती है अयोध्या और वहां से उस पर आजीपुरा जाके गंगा मिल जाती है। बागेश्वर अपने आप में एक सुंदरतम स्थल है। यहाँ पर ट्रैकिंग की बहुत फैसिलिटीज हैं, यहाँ पर माउंटेनिंग की, ट्रैकिंग की, वाइल्ड लाइफ की, बर्ड वॉचिंग की

0: बहुत बढ़ गए हैं।
1: हमने यहाँ पर कौसानी में कई हमारे सेब के बगीचे लगाए हैं, दूसरे फल के बगीचे हैं। कीवी हमारा बागेश्वर का एक प्रोडक्ट है जिसको हम लोग खूब इंजॉय करते हैं, और हमारे साथ जो लोग आते हैं उनको कीवी के बारे में बताते हैं, ब्रांच के फूलों के बारे में, बटर ब्रश के बारे में बताते हैं। अब हमारे यहाँ फल पकने लग गए हैं। आप सोचिए कि आजकल हमारे यहाँ खुमानी पक गई है, आड़ू पक गया है। ये देखिए हमारे सेब के बगीचों में सेब लगने शुरू हो गए हैं। हमारे पास आड़ू का बगीचा भी है, इसमें देखिए कितने सुंदर सुंदर नैपकिन के आड़ू की वैरायटी है जिसका रंग लाल होता है बिल्कुल, और इसमें सेब से भी बाहर से सेब की तरह लगता है ये, और अंदर जब इसके जाएंगे तो हमको बिल्कुल आड़ू खाने को मिलता है जिस तरह से, कैसा मिलता है। सेब से बगीचे भरे पड़े हमारे, हर जगह सेब। ये देखिए ये सब चारों इधर देखिए। आइए आप मेरे इस आड़ू के बगीचे में देखिए, आड़ू के फल किस तरह पक चुके हैं। साथ में सेब भी हैं, साथ में चेरी भी है, साथ में प्लम्स भी हैं, साथ में खुमानी भी है, और सारे फल हमारे भरे पड़े हैं। सारी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सब गुड न्यूज टुडे के माध्यम से दिखा रहा हूँ। कौसानी की बड़ी खासियत है, यहाँ से लगभग 340 किलोमीटर लंबा हिमालय आपको देखने को मिलता है, और उसी तरह यहाँ पर कौसानी की खासियत यह है, यहाँ बैजनाथ की वैली 3000 फीट पर है और जो नंदा देवी है 26000 फीट पर है। तो 3000 से 26000 फीट ऊंचा हिमालय और 340 किलोमीटर लंबा हिमालय, आपी रंपा से लेकर बंदरपुर तक सारे पहाड़ यहाँ से दिखते हैं, और त्रिशूल की तो महिमा ही कुछ और है। यहाँ से त्रिशूल, नंदा खुंटी और बैजनाथ की वैली, कतियो की वैली, बागेश्वर की वैली, ये आपका दिल बहुल लेते हैं यहाँ पर। लेकिन जो सुंदरता हमारे कौसानी में है वो कहीं नहीं है। शायद यही कारण था कि महात्मा गांधी ने अपने मित्रों की तरफ चिट्ठी लिखी, उनने लिखा था मैं समझ नहीं पाता हूँ कि लोग स्विट्जरलैंड या यूरोप क्यों जाते हैं जबकि कौसानी यहाँ पर है। कौसानी और बागेश्वर की महिमा ही कुछ और है। आप आइए, हम आपका स्वागत करते हैं।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में कहीं है नट। तो कहीं ड्रामा। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: Jack FM, now playing what we want, commercial-free, on TuneIn Premium.
1: What about me, Jack? What about me?
0: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
2: Well played, Jack. Well played.
0: Jack FM, playing what we want.
3: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
4: कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा।

0: के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
7: इटली दौरे पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इटली की पीएम मेलोनी से हुई मुलाकात, आज ही होगी द्विपक्षीय वार्ता, कई समझौते होने की उम्मीद। झांसी में धूमधाम से मनाई गई रानी झांसी की 184वीं विवाह वर्षगांठ, निकाली गई शोभा यात्रा, देखने को मिली ढोल नगाड़ों की गूंज, पारंपरिक मराठी वेशभूषा और ऐतिहासिक पात्रों की झलक। किसी भी तरह की आपदा से बचने के लिए केरल में मॉनसून की तैयारी, अधिक जोखिम वाले क्षेत्रों में तैनात किए गए एनडीआरएफ के 240 जवान, 26 मई को केरल पहुंच रहा मॉनसून। तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में बड़ी संख्या में पहुंचे विदेशी मेहमान फ्लेमिंगो, अद्भुत नजारा देख सैलानी भी खुश, तस्वीरें कैमरे में कर रहे हैं कैद। भीषण गर्मी से जूझ रहा पूरा उत्तर भारत, हीट वेव का अलर्ट, कई शहरों में पारा 47 डिग्री पार, यूपी के 11 जिलों में आज से रेड अलर्ट जारी, लोगों से सावधानी बरतने की अपील। खराब मौसम के बावजूद उत्साह से जारी है चारधाम यात्रा, केदारनाथ में अब तक सबसे ज्यादा 6,98,000 भक्तों ने किए दर्शन।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
7: इटली की राजधानी रोम में प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मेलोनी ने पीएम मोदी को दिया डिनर। आज मोदी मेलोनी के बीच होगी द्विपक्षीय बैठक। नॉर्वे के दौरे के बाद इटली पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत। इटली के विदेश मंत्री ने गर्मजोशी से किया प्रधानमंत्री का स्वागत। इटली के होटल में लगे मोदी मोदी के नारे। प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने को उमड़े भारतीय समुदाय के लोग। पीएम ने लोगों से हाथ मिलाकर किया अभिनंदन स्वीकार। बच्चों ने पीएम मोदी की ड्राइंग पर लिया ऑटोग्राफ। पीएम मोदी के आगमन पर इटली की धरती पर देखी भारतीय सभ्यता की झलक। स्वागत में कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। विदेशी कथक डांसर्स ने पेश किए कई तरह के नृत्य। प्रधानमंत्री ने भी ताली बजा के बढ़ाया कलाकारों का उत्साह। विदेशी कलाकारों ने पेश किया शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। सुरीले वाद्य यंत्रों से गूंजा वातावरण। तबले की थाप सितार और बांसुरी वादन का लुत्फ लेते नजर आए प्रधानमंत्री। कलाकारों का अभिनंदन किया स्पीकर। इटली में दिखी काशी की भी झलक। इटालियन पेंटर ने काशी की तस्वीर पीएम को की भेंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूरोप दौरे का यह आखिरी पड़ाव। आज रात दिल्ली के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली समेत उत्तर भारत में जल्द ही गर्मी से मिलेगी राहत। केरल में 22 मई से 30 मई तक मानसून की एंट्री की संभावना। मई के आखिरी या जून के पहले सप्ताह में तमिलनाडु कर्नाटक गोवा और आंध्र प्रदेश मानसून पहुंचने का अनुमान। 5 से 15 जून तक महाराष्ट्र उड़ीसा छत्तीसगढ़ पहुंच सकता है मानसून। जून के आखिरी हफ्ते में दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में मानसून की संभावना। उत्तर प्रदेश में 15 जून को मानसून देगा दस्तक। बिहार में 20 जून तक मानसून आने की संभावना। तमिलनाडु के रानीपेट में मानसून की तैयारी को लेकर जुटा प्रशासन। केरल में 240 एनडीआरएफ कर्मियों की हुई तैनाती। गर्मी से तप रही है राजधानी दिल्ली। कई इलाकों में 45 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। 25 मई तक लू का अलर्ट। 7/24 के बाद 19 मई को दर्ज हुआ दिल्ली का इस महीने का सबसे गर्म दिन। दिल्ली के रिज इलाके में रहा सबसे अधिक 46.5 डिग्री तापमान। गंभीर हीट वेव की स्थिति का संकेत। उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं बढ़ा रही हैं दिल्ली की गर्मी। अगले एक हफ्ते तक दिल्ली एनसीआर में लू की स्थिति बने रहने के आसार। हिमाचल में भी गर्मी ने तोड़े सभी रिकॉर्ड। मौसम विभाग ने कांगड़ा किन्नौर और सोलन में 3 दिन के लिए हीट वेव का जारी किया येलो अलर्ट। भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग ने हिमाचल के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश की जताई उम्मीद। 22 मई को कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान। पाली में बेजुबानों को गर्मी से बचाने के लिए अच्छी पहल। लोगों ने ओजला जल कुंड में भरा पानी। पानी में भीषण गर्मी। छत पर महिला ने बिना चूल्हे के बनाया चीला। झांसी में 46 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। सड़कों पर पसरा सन्नाटा। झांसी में भगवान को गर्मी से बचाने के लिए लगाए गए एसी। खान पान में भी किए गए हैं विशेष बदलाव। उधमपुर में भीषण गर्मी से संकर फूलों को पहुंचा नुकसान। फूलों को बचाने में जुटे लोग। पंजाब हरियाणा में भी बड़ा गर्मी का सितम। फरीदकोट में पारा 47.3 डिग्री के पार। यूपी के कई जिलों में बड़ी सूरज की तपिश। 22 जिलों में पारा 40 डिग्री के पार। बांदा में 48.2 डिग्री दर्ज किया गया तापमान। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ रहा सबसे गर्म इलाका। 46.3 डिग्री पहुंचा तापमान। मैदानों में बढ़ती गर्मी के बीच लोग पहाड़ों का कर रहे लगातार रुख। झीलों के शहर नैनीताल में बड़ी सैलानियों की संख्या। लोग बोटिंग का उठा रहे जमकर मजा। पर्यटकों से गुलजार नजर आई मॉल रोड। चारधाम यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब। 32 दिनों में करीब 17 लाख श्रद्धालुओं ने की चारधाम यात्रा। केदारनाथ में कल 30,000 से अधिक भक्तों ने किए दर्शन पूजन। अब तक करीब 7 लाख के पार श्रद्धालुओं ने केदारनाथ धाम में लगाई अपनी हाजिरी। बद्रीनाथ धाम में 21,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने किया पूजा पाठ। अब तक करीब 4.5 लाख से अधिक भक्तों ने किए बाबा बद्रीनाथ के दर्शन। यमुनोत्री और गंगोत्री में उमड़ा आस्था का सैलाब, दोनों जगह पर 5.5 लाख से अधिक भक्तों ने किए दर्शन पूजन। चार धाम यात्रा के दौरान अब तक 1,56,041 वाहनों की आवाजाही की गई दर्ज, सबसे अधिक 54,832 वाहन पहुंचे बद्रीनाथ धाम। पूरे धूमधाम से चल रही बाबा मध्य महेश्वर बाबा के कपाट खुलने की प्रक्रिया, आज गोंडार गांव पहुंचे की बाबा मध्य महेश्वर की उत्सव डोली। ओंकारेश्वर मंदिर से उत्सव डोली रवाना होने पर महिलाओं ने भजन गाकर दी अपने आराध्य को विदाई, डोली के साथ साथ चल रहे भक्तों ने लगाया महादेव का जयकारा। कल सुबह वैदिक पूजा अर्चना और कर्क लग्न में खोले जाएंगे बाबा मध्य महेश्वर के पवित्र कपाट, तैयारी पूरी। अगले 6 महीने तक यही होंगे बाबा मध्य महेश्वर के नियमित दर्शन पूजन। सर्दियों में बर्फबारी के कारण मुख्य मंदिर के कपाट बंद होने पर उखी मठ लाई जाती है भगवान की उत्सव डोली। पंच केदार में दूसरे केदार के रूप में पूजे जाते हैं मध्य महेश्वर। मंदिर में भगवान शिव के नाभि के आकार के स्वयंभू शिवलिंग की होती है पूजा। उज्जैन में बाबा महाकाल की उतारी गई भस्म आरती, श्रद्धालुओं ने लगाए हर हर महादेव के जयकारे। भगवान महाकाल के अभिषेक के बाद किया गया भव्य दिव्य श्रृंगार, बड़ी संख्या में भक्त बने इस पल के साथ। महाकाल को शेषनाग का रजत मुकुट, रजत मुंडमाला, रुद्राक्ष की माला और पुष्पों की मालाएं धारण कराई गई, ड्राई फ्रूट फल मिठाई का लगाया गया भोग। भस्म आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल, महानिर्वाणी अखाड़े ने अर्पित की भस्म आरती। गंगा दशहरे के पावन दिन उत्सव के रंग में रंगेगी अयोध्या, धूमधाम से मनाई जाएगी राम दरबार स्थापना की पहली वर्षगांठ, 26 मई को विशेष अनुष्ठान। झांसी में नरेश महाराज श्रीमंत गंगाधर राव और वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की 184वीं वैवाहिक वर्षगांठ पर जश्न। 184वीं वर्षगांठ पर शहर में निकाली गई शाही बारात और भव्य शोभा यात्रा, बड़ी संख्या में लोग हुए इसमें शामिल। पारंपरिक मराठी वेशभूषा में दिखे कलाकार, ढोल नगाड़ों की गूंज से बदला शहर का माहौल। गाजीपुर पुलिस की अच्छी पहल, 4 महीने में 1,323 परिवारों को टूटने से बचाया। 1 जनवरी 2026 से 15 मई 2026 तक गाजीपुर पुलिस ने पति पत्नी विवाद के 1,323 मामलों का कराया समझौता, एसपी सिटी बोले महिला सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता। प्रवासी फ्लेमिंगो से गुलजार हुआ थूथुकुड़ी, बड़ी संख्या में पक्षियों को देखने के लिए पहुंच रहे लोग। अफ्रीका, दक्षिण एशिया, मध्य पूर्व और दक्षिणी यूरोप के विभिन्न हिस्सों से थूथुकुड़ी में पहुंचे फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो के गुलाबी पंख बने आकर्षण का केंद्र, हर साल सर्दियों में भारत आते हैं ये फ्लेमिंगो। वडोदरा की समाज सेविका की अच्छी पहल, वंचित लड़कियों की स्कूल फीस का करती है भुगतान। वंचित लड़कियों को फीस के साथ स्कूल से संबंधित जरूरत के सामान भी कराते हैं उपलब्ध, हर साल सैकड़ों बच्चों की सहायता करते हैं। डीआरडीओ ने हासिल की एक और उपलब्धि, एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर मोड में अनमैन्ड एरियल व्हीकल से लॉन्च होने वाली प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल V3 के डेवलपमेंट ट्रायल किए पूरे। आंध्र प्रदेश के कुरनूल के पास से डीआरडीओ टेस्ट रेंज में ULPGM V3 मिसाइल के सफल ट्रायल किए पूरे, हल्के वजन वाली स्वदेशी मिसाइल बिना मानव रहित ड्रोन से लक्ष्य भेदने में है सक्षम।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
8: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में कहीं है नट। तो कहीं ड्रामा। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
1: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रवि गिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रवि गिरी है, मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूं, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाइयों और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है, और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है। और सबसे ज्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है, बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए, और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूं गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयां खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रवि गिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी, और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था, और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ, और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस, इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर, और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है बादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है? तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना, जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है, उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो दो तीन बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती, और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है, रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा। ये कोई मामूल, लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाई और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाई और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूर्यकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हरड़ है, औषधीय गुणों से भरपूर है। हड़के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणुरोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हरड़। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा, जो छोंक में यूज करते हैं, ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो, इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लेटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च, जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली, आंतों में जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक, चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है। यह एक नेचुरल लैक्सेटिव है जो लेटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूरन कंद, यह है सूरन कंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और ये है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये। इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास, अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में, और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालू, लज्जालू पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो, सब पर ये काम करता है। इसके बाद में है कचनार, कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है, वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में। ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में यह है इंद्रायन, यह है इंद्रायन की जड़, इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हैं वो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
3: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive Soul Groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
4: All sports, all the time, right here on TuneIn. Catch live sports talk, expert analysis, and nonstop discussion from your favorite stations, like ESPN Radio.
5: Not missed out on one player that the Yankees wanted.
4: Big 12 Radio.
6: Today is Big 12 Insiders game day. We're breaking
4: and
6: down.
4: Talk sports.
7: I just can't see a turnaround in the way that we're going to perform and result.
4: And much more. Get your head in the game and never miss a minute of the action. Just search sports or ask your device to play your favorite sports talk station on TuneIn.
8: क्या करते हैं खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे अच्छी खबर सच्ची खबर
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
11: और दुर्भाग्य कहता है
12: कि भाग्य कहीं दूर नहीं
10: अविश्वास में विश्वास बसता है
8: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है
9: गुड न्यूज टुडे
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा
14: ज्वाइन SRM ISC गाजियाबाद कैंपस विजिट SRMUP.in
15: ओडिशा के चांदीपुर में सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम का एनआईबी ने किया सफल परीक्षण, पिन पॉइंट स्ट्राइक और ड्रोन से हमला करने में भी है सक्षम। इटली दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी, इटली की पीएम मेलोनी से हुई मुलाकात, आज भी होगी द्विपक्षीय वार्ता, कई समझौते होने की उम्मीद। झांसी में धूमधाम से मनाई गई रानी झांसी की 184वीं विवाह वर्षगांठ, निकाली गई शोभा यात्रा, देखने को मिली ढोल नगाड़ों की गूंज, पारंपरिक मराठी वेशभूषा और ऐतिहासिक पात्रों की झलक। किसी भी तरह की आपदा से बचने के लिए केरल में मॉनसून की तैयारी, अधिक जोखिम वाले क्षेत्रों में तैनात किए गए एनडीआरएफ के 240 जवान, 26 मई को केरल पहुंच रहा है मॉनसून। भीषण गर्मी से जूझ रहा पूरा उत्तर भारत, हीट वेव का अलर्ट, कई शहरों में पारा 47 डिग्री पार, यूपी के 11 जिलों में आज से रेड अलर्ट जारी, लोगों से भी सावधानी बरतने की अपील। तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में बड़ी संख्या में पहुंचे विदेशी मेहमान फ्लेमिंगो, अद्भुत नजारा देख सैलानी भी खुश, तस्वीरें कैमरे में कर रहे कैद।

0: नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूँ आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव और हमारे इस खास शो में आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े फिल्म फेस्टिवल यानी कि कान फिल्म फेस्टिवल की। देखिए, फ्रांस के इस खूबसूरत शहर में सिनेमा, ग्लैमर और टैलेंट का ऐसा मेला सजा कि हर कोई बस देखता ही रह गया। लेकिन फ्रांस के रेड कार्पेट पर जब भारतीय सितारे उतरे तो सबकी नजरें जैसे थम सी गईं। आलिया भट्ट से लेकर उर्वशी रौतेला तक भारत की चमक इस बार कान में हर तरफ नजर आई। वैसे रेड कार्पेट पर ग्लैमर की चमक तो है ही, साथ ही यहाँ हर दिन एक नया अंदाज, एक नया फैशन लुक दुनिया के सामने आ रहा है। रेड कार्पेट पर हर सितारा अपने अंदाज से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। ट्रेडिशनल लुक में संस्कृति की झलक दिखाई दे रही है तो कहीं मॉडर्न फैशन का बोल्ड और ग्लैमरस अंदाज सुर्खियां बटोर रहा है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जब भारतीय सितारे रेड कार्पेट पर उतरे तो लोग बस देखते ही रह गए। हर आउटफिट अपने साथ एक अलग कहानी लेकर आया है और भारतीय सितारों की तो देखिए बात ही अलग है। हर सितारे का लुक भारत की संस्कृति को बेहद खूबसूरती से पेश कर रहा है। हाल ही में कई सितारे यहाँ पर पहुंचे जहां उन्होंने महाराष्ट्र से लेकर पंजाब की संस्कृति को कान के मंच पर पेश किया। और अब रेड कार्पेट पर जयपुर की बेटी और बॉलीवुड एक्ट्रेस रुचि गुर्जर पहुंची जहां उन्होंने अपने लुक के जरिए राजस्थान की समृद्ध परंपरा और संस्कृति को दुनिया के सामने बेहद खूबसूरती से पेश किया। उनकी ड्रेस में राजस्थानी कला, रंगों और विरासत की झलक साफ नजर आ रही थी। देखिए, कान फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर हर साल फैशन के नए रंग देखने को तो मिलते ही हैं, लेकिन इस बार जयपुर की बेटी और बॉलीवुड एक्ट्रेस रुचि गुर्जर ने अपने अंदाज से सिर्फ देखिए फैशन ही नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति को दुनिया के सामने रखा। 79वें कान फिल्म फेस्टिवल में रुचि जब पारंपरिक राजस्थानी घूंघट ओढ़कर रेड कार्पेट पर पहुंची तो जैसे हर किसी की निगाहें बस उन्हीं पर टिक गई। पारंपरिक गहने और शाही अंदाज, रुचि का पूरा लुक भारतीय संस्कृति और राजस्थान की विरासत को जैसे बयां कर रहा था। रुचि गुर्जर इससे पहले भी कान फिल्म फेस्टिवल में अपने अलग अंदाज को लेकर सुर्खियों में छाई हुई थी। पिछले साल उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरित एक खास नेकलेस पहनकर सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा था और काफी वो हेडलाइंस में भी रही थी और इस बार तो जैसे उनको देखकर हर किसी की निगाहें उन्हीं पर टिक गई। कानपुर की बेटी ने भी दुनिया के सबसे बड़े रेड कार्पेट पर अपना परचम लहराया है। देखिए, पूर्व वाइस मिसेस यूनिवर्स कल्पना शुक्ला ने अपने शानदार अंदाज और दमदार मौजूदगी से कान फिल्म फेस्टिवल में भारत का मान बढ़ाया है। डिजाइनर मनीष मल्होत्रा और जोली पोली के खूबसूरत गाउन में कल्पना ने रेड कार्पेट पर ऐसा जलवा बिखेरा कि हर किसी की निगाहें बस उन्हीं पर टिक गईं। कानपुर की बेटी कल्पना शुक्ला ने भी इस ग्लोबल मंच पर अपनी खास पहचान बनाकर शहर और देश दोनों का ही नाम रोशन कर दिया है। दुनिया भर के सिनेमा हस्तियों की चमक और कला का उत्सव अपने चरम पर है। देखिए, रेड कार्पेट पर सितारों की जगमगाहट के बीच सिनेमा, फैशन और संस्कृति का अनोखा संगम कान में देखने को मिल रहा है। इस साल भारत की एक अलग ही तस्वीर कान फिल्म फेस्टिवल में देखने को मिल रही है। बड़ी बड़ी हस्तियों से लेकर छोटे बड़े कलाकार भी इस फेस्टिवल का हिस्सा बन रहे हैं और भारतीय संस्कृति को इस महामंच से दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं।
1: जिसकी रंगत से बॉलीवुड सितारों के चेहरे निखर उठे हैं। 12 मई से शुरू हुए इस वर्ल्ड क्लास फिल्म फेस्टिवल में अब तक कई बॉलीवुड सितारों ने अपनी चमक बिखेरी है। इस लिस्ट में नया नाम है मौनी रॉय, आलिया भट्ट, हुमा कुरैशी, अदिति राव हैदरी और डायना पेंटी के बाद अब मौनी रॉय ने कान फिल्म फेस्टिवल में जलवा बिखेरा है। मौनी रॉय ब्लैक ड्रेस में बेहद खूबसूरत नजर आई। इस ड्रेस की खास बात इसका व्हाइट कॉलर डिटेल है जिसने उनके लुक को और शार्प और हाई फैशन टच दिया। अपने इस लुक के साथ मौनी ने ब्लैक ओवरकोट कैरी किया जिसने उनके स्टाइल को और ज्यादा ग्लैमरस बना दिया। कान फिल्म फेस्टिवल में भारत की मिसेस यूनिवर्स शेरी सिंह ने भी जलवा बिखेरा रेड कार्पेट पर। लहंगे में शेरी ने एंट्री ली तो उनका स्टाइल काफी इम्प्रेसिव लगा। शेरी के देसी लुक में मॉडर्न वाइब्स का परफेक्ट मिक्स नजर आ रहा था जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। 2025 में शेरी सिंह ने भारत को पहला मिसेस यूनिवर्स का ताज दिलाया था और अब उन्होंने कांस में अपना डेब्यू किया जो ट्रेडिशन और मॉडर्न एलिगेंस का परफेक्ट मिक्स है। शेरी ने क्लासी लहंगे के साथ ज्वेलरी को रॉयल टच लुक दिया जिसने उनकी वाइब्स को काफी इंटरेस्टिंग बना दिया। कांस के मंच पर भारत से कई इन्फ्लुएंसर्स ने भी हिस्सा लिया। मराठी एक्ट्रेस और कंटेंट क्रिएटर प्राजक्ता माली ने रेड कार्पेट पर महाराष्ट्रीयन संस्कृति का रंग बिखेरा। इस खास मौके पर प्राजक्ता ने इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेस को चुना। प्राजक्ता ने अपनी परंपरा का रंग दिखाते हुए पारंपरिक नीली नववारी साड़ी पहनी जिसके साथ उन्होंने एक क्लासिक नथ भी कैरी की जिसने उनके पूरे अंदाज को और भी आकर्षक और शाही बना दिया। प्राजक्ता के ट्रेडिशनल अंदाज ने फैशन प्रेमियों का दिल जीत लिया। प्राजक्ता का ये अंदाज सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: कान फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर इस बार सिर्फ ग्लैमर और इंटरनेशनल फैशन की चमक ही नहीं देखने को नहीं मिल रही है बल्कि भारतीय संस्कृति और पारंपरिक सौंदर्य की खूबसूरत झलक भी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही है। देखिए इस बार हिंदुस्तानी अभिनेत्रियों, कलाकारों और डिजिटल क्रिएटर्स ने अपने ट्रेडिशनल आउटफिट्स, शाही ज्वेलरी और खास भारतीय अंदाज से इस इंटरनेशनल मंच पर अलग पहचान बनाई है।

0: फैशन फेस्टिवल का रेड कार्पेट हमेशा से ग्लैमरस और हाई फैशन के लिए जाना जाता है, लेकिन अब ये फेस्टिवल संस्कृति और विरासत को वैश्विक मंच देने वाला भी बन गया है। कान फिल्म फेस्टिवल के मंच से भारतीय अभिनेत्रियों ने सिर्फ स्टाइल नहीं बल्कि अपनी परंपरा, हस्तकला और भारतीय शिल्प की खूबसूरती को भी दुनिया के सामने बेहद शानदार तरीके से पेश किया। कहीं बनारसी और बारीक कढ़ाईदार साड़ियों की शान नजर आई, तो कहीं इंडो वेस्टर्न आउटफिट्स ने भारतीय फैशन की समृद्ध विरासत को बेहद खूबसूरती से दुनिया के सामने पेश किया। बनारसी साड़ी में सजी हुमा कुरैशी शनिवार को कान्स में ट्रेडिशनल भारतीय लुक में नजर आई। गोल्डन कलर के ब्लाउज के साथ लैवेंडर बनारसी साड़ी में हुमा की ये तस्वीरें लाजवाब हैं, जो उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। हुमा ने इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीर के साथ पोस्ट भी लिखा है। इसमें वो कहती हैं, बनारस के घाटों से लेकर कान फिल्म फेस्टिवल तक एक ऐसा बुना हुआ परिधान पहनने में कुछ बेहद खास बात है, जिसे पहनकर ऐसा महसूस होता है मानो उसने सदियों का सफर तय किया हो। कांस में जहां चारों ओर सिनेमा और कहानियों का ही बोलबाला है, वहां ऐसा कुछ पहनना जो खुद अपनी एक कहानी बयां करता हो, ये अनुभव किसी सपने जैसा लगता है। और केवल हुमा कुरैशी ही नहीं बल्कि बॉलीवुड की ग्लैमरस और बेहद स्टाइलिश दीवा अदिति राव हैदरी ने भी कान फिल्म फेस्टिवल 2026 के मंच पर भारतीय पहनावे साड़ी को खास अहमियत देकर हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा। अदिति ने अपने कान लुक की खूबसूरत झलक सोशल मीडिया पर फैंस के साथ साझा की, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। पारंपरिक साड़ी में अदिति का अंदाज बेहद शाही, आकर्षक और एलिगेंट नजर आया। अदिति के अलावा साउथ फिल्मों में अपने दमदार अभिनय से पहचान बनाने वाली अभिनेत्री और सोशल मीडिया स्टार दिशा मदान ने कान फिल्म फेस्टिवल में इस बार भारतीय संस्कृति और परंपरा की खूबसूरत छटा बिखेरी। रेड कार्पेट पर दिशा मदान ने करीब 80 साल पुरानी दो विंटेज भारतीय साड़ियों से बने आधुनिक कॉर्सेट गाउन में एंट्री ली। वैसे भारतीय संस्कृति और विरासत की झलक गुजरात से पहुंची भूमिका सजवानी ने भी दिखाई। भूमिका ने गुजराती विरासत को बेहद खूबसूरत संगम के साथ पेश किया। रेड कार्पेट पर उन्होंने सफेद रंग की आकर्षक पोशाक पहनी, जिसने अपनी पारंपरिक कारीगरी और शाही अंदाज से हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा। इस खास आउटफिट में गुजरात की प्रसिद्ध कच्छी कढ़ाई की बारीक कला को बेहद खूबसूरती से उकेरा गया था। साथ ही इसमें करीब 100 साल पुरानी अहमदाबाद की पारंपरिक सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट तकनीक का इस्तेमाल भी किया गया, जिसने इस पोशाक को विरासत और इतिहास से जोड़ दिया। रंगों, हस्तकला और पारंपरिक डिजाइनों से सजे इन परिधानों ने यह साबित कर दिया कि भारतीय फैशन केवल ट्रेंड नहीं बल्कि सदियों पुरानी संस्कृति और कला की पहचान भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: देखिए, इस साल कान फेस्टिवल में एक तरफ आलिया ने अपने दिलकश लुक से महफिल लूटी और तो दूसरी तरफ उर्वशी की मिलियन डॉलर ड्रेस चर्चा का विषय बन गई। कान में अब तक क्या क्या खास रहा, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में।

0: फ्रांस के फ्रेंच रिवेरा पर जब भारतीय सितारे कदम रखते हैं तो पूरी दुनिया की नजरें ठहर जाती हैं। कान का रेड कार्पेट एक ग्लोबल रनवे जैसा लगता है, जहां भारतीय सितारे अपनी ड्रेसेस, अपने स्टाइल और अपने ग्लैमर का तड़का लगाते हैं। सबसे पहले बात उस सितारे की जिसकी चमक से कांस का हर कोना रोशन हो गया, आलिया भट्ट, जिन्होंने इस बार रेड कार्पेट पर इंडियन ग्रेस और मॉडर्न लुक का ऐसा कॉकटेल पेश किया कि सबकी सांसें थम गई। आलिया ने जहां एक और तामरा रॉल्फ के पीच गाउन में मॉडर्न लुक दिया, तो वहीं तरुण तहलियानी की साड़ी ने भारतीय परंपरा को वैश्विक मंच पर नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। भारत पेविलियन के उद्घाटन समारोह में बॉलीवुड की इस दीवा ने अपने अनोखे इंडो वेस्टर्न अवतार से भी सभी को हैरान कर दिया। माथे पर बिंदी, नाक में नथ और साड़ी गाउन। कान में आलिया भट्ट के इस देसी अंदाज ने फैंस का दिल जीत लिया। डिजाइनर तरुण तहलियानी की कस्टम आइवरी चंदेरी कॉन्सेप्ट साड़ी में विक्टोरियन कॉर्सेट स्टाइल और इंडियन ड्रेपिंग का फ्यूजन था। ये कान फिल्म फेस्टिवल में आलिया की दूसरी मौजूदगी है। पिछले साल यानी कि 2025 में उन्होंने अपने डेब्यू के दौरान पुराने हॉलीवुड ग्लैमर और मॉडर्न फैशन का शानदार मिश्रण पेश कर पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा था। उर्वशी रौतेला जब रेड कार्पेट पर शाही अंदाज में उतरी तो जितनी चर्चा उनके लुक और खूबसूरती की हुई, उससे कहीं ज्यादा उनके डिजाइनर आउटफिट की। माथे पर मांग टीका, गले में खूबसूरत हार और शाही गाउन में उर्वशी बेहद ग्लैमरस लग रही थी। रेड कार्पेट पर उर्वशी रौतेला ने बेहद हैवी और चमकदार सिल्वर गाउन पहनकर एंट्री की। इसे कान फिल्म फेस्टिवल के अब तक के इतिहास का सबसे महंगा आउटफिट और लुक माना जा रहा है, और इतना ज्यादा महंगा कि अब तक किसी हस्ती ने कान के रेड कार्पेट पर इतनी महंगी ड्रेस नहीं पहनी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उर्वशी के इस आउटफिट की कीमत $155.87 मिलियन यानी करीब 1,500 करोड़ रुपए है। ये एक कस्टम बॉडी फिटेड मोमेड स्टाइल गाउन है, जिसका बेस लैवेंडर टोन के शियर फैब्रिक से बना हुआ था। उर्वशी का ये लुक वियतनाम के फैशन डिजाइनर हाउस ज्वेलिपोली काउजर ने तैयार किया था। गाउन के ऊपरी हिस्से पर कॉर्सेट स्टाइल फिटिंग है और पूरे आउटफिट पर चांदी की क्रिस्टल मोतियों और सीक्वेंस और पत्थरों की भारी कढ़ाई की गई है, जो इसे कवच जैसा लुक देती है। उर्वशी के इस गाउन में कंधों से जुड़ी लंबी पारदर्शी केप स्लीव्स भी हैं, जो पीछे पंखों की तरह लहराती हैं। इस आउटफिट के साथ उर्वशी ने सर पर चिड़िया की आकृति वाला एक चमचमाता मांग टीका भी कैरी किया, जिसे मैचिंग झुमकों और ब्रेसलेट के साथ स्टाइल किया गया था। इसके साथ ही हाथ में करीब 6 लाख की कैरोसर यानी बच्चों के झूले के डिजाइन का मिनी बैग भी कैरी किया। कुल मिलाकर इस आउटफिट को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि जब इन पर रोशनी पड़े तो वो हीरे की चमक की तरह दिखाई दे। रेड कार्पेट पर एक इंटरव्यू के दौरान उर्वशी ने अपने लुक और आउटफिट के बारे में बताते हुए कहा कि जब मैं अपने देश का प्रतिनिधित्व करती हूँ तो मैं उर्वशी नहीं बल्कि इंडिया बन जाती हूँ। उर्वशी रौतेला ने कान फिल्म फेस्टिवल में अब तक कुल 5 बार शिरकत की है। कान में उनके सफर का आगाज 2022 में हुआ था। तब से लेकर 2026 तक बोल्ड एंड ब्यूटीफुल उर्वशी रौतेला कान की रेड कार्पेट पर अपने बेहद ड्रामेटिक लुक से चर्चा में रही है। 2023 में उर्वशी ने पिंक हैवी गाउन पहना था, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उनके मगरमच्छ की आकृति वाले नेकलेस की हुई थी, जिसे लेकर इंटरनेट पर असली बनाम नकली की एक लंबी बहस भी छिड़ गई थी। 2024 में उर्वशी रेड कार्पेट की थीम से मेल खाते हुए कस्टम मेड रेड एंड पिंक कॉटियोर में नजर आई थी। इसे ट्यूनिशिया के डिजाइनर सुहेर एल गब्सी ने तैयार किया था। उनके साथ ही दारा सुतारिया का डेब्यू और ह्यूमा कुरैशी की मौजूदगी ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज।
1: देखिए, कान फिल्म फेस्टिवल की चकाचौंध और ग्लैमर से भरपूर शाम के पीछे एक ऐसी कहानी दबी हुई है जो वर्ल्ड वॉर, हिटलर और एक अटूट जिद से जुड़ी है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा फैशन और सिनेमा का इवेंट कहा जाता है, जहां रेड कार्पेट पर चलना दुनिया के कई सितारों का सपना होता है। उस इवेंट का जन्म एक युद्ध के साए में हुआ था। देखिए, कान की इस हसीन चकाचौंध के पीछे एक ऐसा इतिहास छुपा हुआ है, ऐसी हिस्ट्री है जो आप सभी को हैरान कर देगा।
2: मई की सुनहरी शाम, फ्रेंच रिवेरा की ठंडी हवाएं, 2 किलोमीटर लंबा सुर्ख लाल काली यानी रेड कार्पेट और उस पर दुनिया भर के सितारों की चमक। यह है कान, जहाँ की हवाओं में समंदर की लहरों के साथ साथ सिनेमा का जादू भी खुलता है। जहाँ रेड कार्पेट पर सितारों का वो शाही अंदाज देखने को मिलता है जिसकी चकाचौंध पूरी दुनिया में बिखरती है। जहाँ होता है दुनिया की सबसे बेहतरीन फिल्मों का मेल। कान सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं, बल्कि स्टाइल, स्टेटमेंट और स्टेटस का अल्टीमेट कॉकटेल है, जहाँ समंदर का नीला पानी और रेड कार्पेट का सुर्ख रंग मिलकर एक ऐसा जादू बुनते हैं कि पूरी दुनिया मदहोश हो जाती है। लेकिन ग्लैमर का ये जो केंद्र आज आप देख रहे हैं, इसकी शुरुआत किसी उत्सव के लिए नहीं बल्कि एक विरोध के तौर पर हुई थी। बात 1938 की है। उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म मेला वेनिस मोस्टर फिल्म फेस्टिवल हुआ करता था। उस समय यह दुनिया का इकलौता बड़ा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल था, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध की आहट के बीच वहाँ की ज्यूरी पर हिटलर का दबाव बढ़ने लगा। उस साल की ज्यूरी ने एक अमेरिकी फिल्म को पुरस्कार के लिए चुना था, लेकिन हिटलर और नाजी दबाव के कारण ये फैसला बदल दिया गया। अवार्ड एक जर्मन फिल्म और एक इटालियन फिल्म को दे दिया गया। इस फैसले से अमेरिका और फ्रांस जैसे देश नाराज हो गए, दुनिया के फिल्मकारों का दम घुटने लगा। नतीजा ये हुआ कि अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों ने वेनिस मोस्टर फिल्म फेस्टिवल छोड़ दिया। लेकिन कहते हैं ना कि अंत की कोख से ही एक नई शुरुआत जन्म लेती है। बस कुछ ऐसा ही कान फिल्म फेस्टिवल के साथ भी हुआ। वेनिस मोस्टर के बहिष्कार के बाद फ्रांस ने एक ऐसे फिल्म फेस्टिवल का सपना देखा जहाँ कला पर किसी तरह के राजनीतिक दबाव का साया न हो। इसकी जिम्मेदारी फ्रांस के मंत्री जीनजे और इतिहासकार फिलिप एरलेंगर ने ली, जिन्होंने इसकी नींव रखी। 1939 में आधिकारिक तौर पर फ्रांस में एक नए फिल्म फेस्टिवल की घोषणा की गई। शुरुआत में फेस्टिवल के लिए फ्रांस के बियारिट्ज़ शहर को चुना गया, लेकिन बाद में कान में आयोजित करने का फैसला हुआ। इसके अध्यक्ष के तौर पर सिनेमा के जनक माने जाने वाले ल्यूई ल्यूमियर को चुना गया। 1 सितंबर 1939 को फेस्टिवल का आगाज होना था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसी दिन जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया और वर्ल्ड वॉर छिड़ गई। फिल्म फेस्टिवल का सपना युद्ध के शोर में दब गया। आखिरकार युद्ध खत्म हुआ, हालात फिर से बेहतर हुए और एक बार फिर से फिल्म फेस्टिवल का ख्वाब जो सालों साल पहले देखा गया था, उसे परवान चढ़ाने की कोशिश शुरू हुई और 1946 में आखिरकार इस फिल्म फेस्टिवल ने अपनी असली उड़ान भरी। 20 सितंबर 1946 को पहली बार पूरी भव्यता के साथ

0: Attention, please.
1: AI is changing what tech jobs look like and what employers expect. Moving forward requires more than just knowing about AI. You need to know how to use it. At WGU, our online technology master's programs are built to help you gain job-ready skills for an AI-driven world. You'll focus on what actually matters in today's tech roles and learn in a way that fits around your life. If you're ready to build skills that keep pace with what's next, learn more at wgu.edu.
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
3: Listening to your favorite station just got even easier with Google Assistant and TuneIn. Your go-to station is just a voice away. Just tell Google to play your favorite station on TuneIn and you're instantly connected.
4: This is 80s hits exclusively on TuneIn.
3: You're listening to Fox News Radio. Classic rock hits.
5: You're listening to MSNBC.
3: No scrolling, no typing. Just the shows, music, and news you love. Anytime you want. Try it now and thank us later.
2: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX. There's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
7: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं
8: अविश्वास में विश्वास बसता है
6: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है
9: गुड न्यूज टुडे
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे अच्छी खबर सच्ची खबर
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को खबरें

0: Sit back and relax with the smoothest hits with Coffee House Station. Enjoy a carefully brewed mix of soft acoustic sounds
1: with artists like James Bay,
2: Come on, let it go.
0: Nora Jones,
3: My heart is drained.
0: Daniel Caesar,
4: we both know how
0: and much more as you sink into a good book or get lost in your work. Just search Coffee House. Or ask your device to play Coffee House on TuneIn.
5: You can stream all the podcasts you already love right on TuneIn. Available on your smartphone, on your tablet, and even on your connected devices. There's so much to explore, like mind-blowing facts about your world.
6: So they were disallowed from speaking their language.
5: In-depth conversations with A-list celebrities.
7: No, I was ready to go. You know, after I wanted to fulfill my contract.
5: True crime podcasts you just can't stop listening to.
8: Others escape justice to live and die in infamy. These
5: Plus, the news and sports content you crave in podcast form.
9: Couldn't run in a straight line very quickly and didn't have much of an arm. His arm is stronger now.
5: So whether you want to save your go-to shows for later by subscribing and listening offline, or you want to discover a whole slate of new podcasts to be obsessed with, TuneIn is your destination. True crime, sports, lifestyle, culture, news, and so much more. TuneIn is Podcast Central. Hear them all here.
10: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। Sage University, transforming your passion into profession.
13: इटली दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ने जॉर्जिया मेलोनी को गिफ्ट में दिया टॉफी का पैकेट। मेलोनी ने कहा थैंक यू, कल प्रधानमंत्री ने मेलोनी के साथ किया था डिनर। कोची के नौसैनिक अड्डे पर INS सुनियाना का ध्वजारोहण के साथ स्वागत। इंडियन ओशन शिप सागर पहल के तहत तैनाती के दूसरे संस्करण सफलतापूर्वक संपन्न कर लौटा शिप। ओडिशा के चांदीपुर में सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम का नाइब ने किया सफल परीक्षण। पिन पॉइंट स्ट्राइक और ड्रोन से हमला करने में भी है ये सक्षम। भीषण गर्मी से जूझ रहा पूरा उत्तर भारत, हीटवेव का अलर्ट, कई शहरों में पारा 47 डिग्री पार। यूपी के 11 जिलों में आज से रेड अलर्ट, लोगों से सावधानी बरतने की अपील।
14: किसी भी तरह की आपदा से बचने के लिए केरल में मॉनसून की तैयारी। अधिक जोखिम वाले क्षेत्रों में तैनात किए गए NDRF के 240 जवान। 26 मई को केरल पहुंच रहा मॉनसून।
13: तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में बड़ी संख्या में पहुंचे विदेशी मेहमान फ्लेमिंगो। अद्भुत नजारा देख सैलानी भी खुश हुए, तस्वीरें कैमरे में कैद।

सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में कहीं है नट। तो कहीं ड्रामा। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: NECC, संडे हो या मंडे, रोज खावंडे।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम
2: सर गए हैं खबरों की प्लेट तैयार है। गुड न्यूज के मेन्यू, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल।
3: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों की रफ्तार वही है, बस परिभाषा नहीं। हम आपको ट्रेंडिंग न्यूज से लेकर हर अहम खबर दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे 5 मिनट 25 अच्छी खबरों के साथ।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
2: चारधाम यात्रा में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, 32 दिनों में करीब 17 लाख श्रद्धालुओं ने की चारधाम की यात्रा। केदारनाथ में कल 30,000 से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन पूजन, अब तक करीब 7 लाख के पार श्रद्धालुओं ने केदारनाथ धाम में लगाई हाजिरी। बद्रीनाथ धाम में 21,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किया पूजा पाठ, अब तक करीब 4.5 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए बाबा बद्रीनाथ के दर्शन। पूरे धूमधाम के साथ चल रही बाबा मध्य महेश्वर बाबा के कपाट खुलने की प्रक्रिया, आज गोंडार गांव पहुंचेगी बाबा मध्य महेश्वर की उत्सव टोली। कल सुबह वैदिक पूजा अर्चना और कर्क लग्न में खोले जाएंगे बाबा मध्य महेश्वर के पवित्र कपाट, तैयारी पूरी।
3: झांसी में नरेश महाराज, श्रीमंत गंगाधर राव और वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की 184वीं वैवाहिक वर्षगांठ पर जश्न मना। 184वीं वर्षगांठ पर शहर में निकाली गई शाही बारात और भव्य शोभा यात्रा, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। प्रवासी फ्लेमिंगो से गुलजार हुआ थूथुकुड़ी, बड़ी संख्या में पक्षियों को देखने के लिए पहुंच रहे हैं लोग। गाजीपुर पुलिस की अच्छी पहल, 4 महीने में 1323 परिवारों को टूटने से बचाया। वडोदरा की समाज सेविका की अच्छी पहल, वंचित लड़कियों की स्कूल फीस का करती थी भुगतान। इटली की राजधानी रोम में प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलनी से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मेलनी ने प्रधानमंत्री को दिया डिनर, आज मोदी मेलनी के बीच में द्विपक्षीय बैठक। पाली में बेजुबानों को गर्मी से बचाने के लिए अच्छी पहल, लोगों ने ओजना जल कुंड में भरा पानी। झांसी में 46 डिग्री के पार पहुंचा तापमान, सड़कों पर पसरा सन्नाटा। झांसी में भगवान को गर्मी से बचाने के लिए लगाए गए एसी, खानपान में भी बदलाव किया गया। उधमपुर में भीषण गर्मी से फूलों को पहुंचा नुकसान, फूलों को बचाने में जुटे हैं लोग। आईपीएल के 64वें मैच में राजस्थान रॉयल्स की शानदार जीत, राजस्थान ने लखनऊ को 7 विकेट से रौंदा। लखनऊ ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर दिया 220 रनों का लक्ष्य, राजस्थान की टीम ने 19.1 ओवर में हासिल कर ली जीत। आईपीएल में आज कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम मुंबई इंडियंस का मैच ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा मुकाबला। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स और क्वीन कैमिला ने मंगलवार को नॉर्दर्न आयरलैंड का किया दौरा, बेलफास्ट में पारंपरिक संगीत और नृत्य का आनंद लिया। महंगे पेट्रोल से बचने के लिए बच्चों वाली बारबी गाड़ी को एक युवक ने असली छोटी कार में बदला, सिर्फ $3 में भर जाता है गाड़ी का पेट्रोल टैंक।
2: जूनियर एनटीआर की फिल्म ड्रैगन का धमाकेदार टीजर रिलीज हो गया है, धमाकेदार झलक ने कई गुना बढ़ा दी है फैंस की एक्साइटमेंट। किस मई को रिलीज होगा बॉबी देओल स्टार बंदर का धमाकेदार ट्रेलर, अनुराग कश्यप के निर्देशन में बनी फिल्म का जबरदस्त बज़ बना हुआ है।
3: ओटीटी पर डेब्यू करने जा रहे राजकुमार हिरानी 3 जुलाई को ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर रिलीज होगी उनकी वेब सीरीज प्रीतम और पेड्रो। स्वतंत्रता दिवस पर रिलीज हो सकते हैं सुपरस्टार यश की टॉक्सिक, ऐसा होने पर सनी देओल की बंटवारा 1947 और इमरान हाशमी की आवारापन 2 से होगा महाक्लैश। जल्द ही निर्देशक कुशाण मुखर्जी की आने वाली फिल्म में दिखाई देंगी कृतिका कामरा, अभी डम्बेल रखा गया है फिल्म का वर्किंग टाइटल, जून में शुरू हो जाएगी इसकी शूटिंग।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
3: सच्ची खबरों के बाद खबरें विस्तार से, आपके लिए खबरों की प्लेट तैयार है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की तमाम ट्रेंडिंग न्यूज के साथ। इटली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत, जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम के साथ ली सेल्फी, सोशल मीडिया पर लिखा वेलकम माय फ्रेंड। चारधाम यात्रा में आस्था रोज बना रही नया कीर्तिमान, 16 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए भगवान के दर्शन। गंगा दशहरा के पावन उत्सव के रंग बिरंगी प्रभु श्रीराम की नगरी अयोध्या, राम दरबार स्थापना की पहली वर्षगांठ पर विशेष अनुष्ठान की तैयारी। पैपराजी की हरकतों से नाराज हुए सलमान खान, आधी रात को इंस्टा पर ताबड़तोड़ पोस्ट कर दी नसीहत। जूनियर एनटीआर की नई फिल्म ड्रैगन का ट्रेलर रिलीज, दर्शकों को खूब पसंद आया साउथ सुपरस्टार का एक्शन अवतार। और चलिए शुरुआत करते हैं लंच टाइम की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों इटली के दौरे पर हैं, जहां उनकी मुलाकात इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ हुई। पीएम ने मेलोनी को एक गिफ्ट भी दिया है, गिफ्ट में मेलोनी को प्रधानमंत्री मोदी ने टॉफी का एक पैकेट दिया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हैं और ये तस्वीरें उन्होंने साझा भी की हैं।
2: इससे पहले कल पीएम मोदी ने मेलोनी के साथ डिनर भी किया था और एयरपोर्ट से लेकर होटल तक भव्य स्वागत किया गया। साथ ही मेलोनी ने पीएम मोदी के साथ सेल्फी साझा करते हुए एक्स पर लिखा वेलकम टू रोम माय फ्रेंड। ये तस्वीर भारत इटली के बीच लगातार मजबूत होते रिश्तों का सबूत है। भारत और इटली की रणनीतिक साझेदारी नई ऊंचाइयों पर है। इटली यात्रा के दौरान चुनिंदा भारतीय और इतालवी सीईओ से भी मुलाकात का पीएम का प्लान है।
4: Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee.
3: चलिए आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी का तीसरा इटली का दौरा है और खास बात यह है कि इटली यूरोपीय संघ में भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बनकर उभरा है। 2025 के आंकड़ों पर गौर करें तो दोनों देशों का आपसी व्यापार करीब करीब 15 अरब यूरो तक पहुंच गया। आज प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात जॉर्जिया मेलोनी से ऐतिहासिक विला डोरिया पैम्फली में होगी। उम्मीद है कि दोनों नेता भारत इटली रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए एक संयुक्त घोषणा पत्र भी जारी करने वाले हैं।
4: Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee.
5: Mallet.
4: Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee.

0: जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की पीएम मेलोनी की मुलाकात होती है, सुर्खियां बन जाती है। इस बार भी पीएम मोदी जब मेलोनी से मिले तो वही गर्मजोशी एक बार फिर देखने को मिली, जैसे दो जिगरी दोस्त लंबे अरसे बाद मिल रहे हो। दोस्ती और गर्मजोशी की कहानी खुद तस्वीरें बयां कर रही है। देशों की विदेश यात्रा के आखिरी पड़ाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार की शाम इटली की राजधानी रोम पहुंचे, जहां पीएम मोदी ने इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की। मेलोनी ने मोदी से मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा करते हुए लिखा, वेलकम टू रोम माय फ्रेंड। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि दोनों नेताओं ने साथ में डिनर भी किया। इस दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत की। डिनर के बाद पीएम मोदी और मेलोनी ने रोम के ऐतिहासिक कोलोसियम का दौरा भी किया। मोदी ने इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के साथ एक ही कार में यात्रा की और पीएम ने रोम के ऐतिहासिक कोलोसियम दौरे की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर भी की।
1: प्राइम मिनिस्टर मोदी ब्रॉट अस अ गिफ्ट, अ वेरी वेरी गुड टॉफी।
0: रोम की धरती पर कदम रखते ही रिश्तों की गर्मजोशी दिखाई देनी शुरू हो गई थी। एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया तो होटल में भारतीय समुदाय के लोगों ने जबरदस्त स्वागत किया। एक शख्स तो पीएम का उनकी मां के साथ तस्वीर लेकर पहुंचा था। पीएम मोदी की यात्रा के दौरान दोस्ती की गर्म जोशी के साथ संस्कृति के रंग भी देखने को मिले। रोम में काशी की झलक देखने को मिली जब पीएम ने एक इटालियन कलाकार की उकेरी तस्वीर देखी, जिसने अपनी कलाकारी से वाराणसी को कैनवस पर उकेरा। इटली की पीएम के साथ पीएम मोदी की द्विपक्षीय बैठक भी होने वाली है और दोनों देशों के संबंधों की पार्टनरशिप को एक नई ऊंचाई देने की कोशिश भी की जाएगी। पीएम आज रात वापस दिल्ली के लिए रवाना होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: बात सलमान खान की कर लेते हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से सलमान खान लगातार चर्चा में बने हुए हैं। पहले सलमान की एक शर्टलेस तस्वीर के साथ उनकी तन्हाई की खबरें सुर्खियां बनी, जिसके लिए सलमान को खुद सफाई देनी पड़ी और अब आधी रात को सलमान के एंग्री यंग मैन बनने की वजह चर्चा में है।
3: देखिए आखिर क्यों सलमान खान को गुस्सा आया और क्यों आधी रात को उन्होंने दनादन पोस्ट कर पेपराजी को नसीहत दे डाली, चलिए आपको दिखाते हैं।
4: इस वीडियो को गौर से देखिए। सलमान खान का चेहरा और एक्सप्रेशन साफ बता रहा है कि वो गुस्से में है। वीडियो में कुछ आवाजें भी सुनाई दे रही हैं, एक तो सलमान खान की जो गुस्से से भरी है। दूसरी जो उनके सामने खड़े हैं लेकिन वीडियो में दिखाई नहीं दे रहे, ये पेपराजी है जो भाई भाई सॉरी भाई कहकर सलमान से माफी मांग रहे हैं। वीडियो से साफ पता चल रहा है कि पेपराजी की किसी बात ने सलमान खान को गुस्सा कर दिया है, जिससे सलमान को उन्हें डांटने फटकारने पर मजबूर होना पड़ा। इन तस्वीरों से यहाँ तक की बात तो समझ में आती है, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्या कि सलमान को उन्हें डांटने फटकारने की नौबत आई। तो चलिए आपको बताते हैं आखिर माजरा है क्या। बीती रात सलमान खान अपने किसी करीबी को देखने मुंबई के हिंदुजा अस्पताल पहुंचे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पेपराजी ने सलमान को तब देखा जब उनकी गाड़ी एक ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी और बाद में अस्पताल तक उनका पीछा किया। जैसे ही सलमान अस्पताल से बाहर निकले, कुछ फोटोग्राफर्स ने उनका ध्यान खींचने के लिए भाई भाई चिल्लाना शुरू कर दिया। सलमान खान ने तब उन्हें अस्पताल के पास चुप रहने को कहा और उनसे पूछा कि अगर उनके परिवार का कोई अस्पताल में भर्ती होता तो क्या वो ऐसे ही रिएक्ट करते। सलमान खान की नाराजगी यही खत्म नहीं हुई। पेपराजी के इस गैर जिम्मेदाराना व्यवहार ने उन्हें जहनी तौर पर इतना व्यथित किया कि अस्पताल से घर पहुंचने के बाद रात के करीब 3 बजे उनका गुस्सा एक बार फिर फूट पड़ा। सलमान ने इंस्टाग्राम पर कई सेल्फी पोस्ट की, साथ ही पेपराजी को एक बार फिर नसीहत दे डाली। जिस प्रेस के लिए मैं खड़ा हूँ, जिनसे बातचीत की है, जिनकी देखभाल की है, ये सुनिश्चित किया कि वे भी अपनी रोजी रोटी कमा सके, लेकिन अगर वो मेरे नुकसान से पैसा कमाना चाहते हैं तो चुप रहे, मजा ना ले। सलमान ने इशारों इशारों में ये भी कहा कि अगर कोई उनकी निजी जिंदगी या मुश्किल वक्त का मजाक बनाने की कोशिश करेगा तो वो चुप नहीं बैठेंगे। सलमान ने आगे लिखा, 60 साल का हो गया हूँ लेकिन लड़ना नहीं भूला, ये याद रख लेना, जेल में डालोगे, हा हा हा। बेशक सलमान ने अपने गुस्से को जब्त करते हुए कुछ बातें मजाक में कही होंगी, लेकिन पेपराजी के व्यवहार से आहत सलमान के शब्दों में तलखी साफ झलक रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: देखिए, बीती रात सलमान खान मुंबई में थे, लेकिन बहुत जल्द वो मनाली के लिए कूच करेंगे। दरअसल सलमान खान ने इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म SVC 63 की शूटिंग में वो बिजी हैं, जिसके लिए उन्होंने टोन्ड ऑफ फिट बॉडी बनाई है। मुंबई में इस फिल्म के पहले स्केड्यूल की शूटिंग पूरी हो चुकी है और अब सलमान खान दूसरे और फिल्म के अहम हिस्से की शूटिंग के लिए मनाली जाने वाले हैं और फिर हैदराबाद की बारी आएगी। ये रिपोर्ट देखिए।
5: हाल ही में सलमान खान की ये शर्टलेस तस्वीर वायरल हुई, जिसके बाद सलमान खान की तन्हाई को लेकर इंटरनेट से लेकर सलमान खान के घर काफी हंगामा भी मचा। मां सलमा के चिंतित होने के बाद सलमान को सफाई देनी पड़ गई कि उन्होंने तो ये बातें यूं ही कह दी थी। खैर, ये बात तो आई गई हो गई, लेकिन सलमान की इस शर्टलेस तस्वीर ने उनकी अपकमिंग फिल्म में उनके लुक और टोन बॉडी का खुलासा जरूर कर दिया है। बताया जा रहा है कि सलमान खान अपकमिंग एक्शन फिल्म SVC 63 के लिए भारी वर्कआउट के साथ साथ कलारी पैर 2 और कैलिस्थेनिक्स की ट्रेनिंग ले रहे हैं। अपने शानदार ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए सलमान पर्दे पर अधिक फुर्तीले और दमदार एक्शन अवतार में नजर आने की तैयारी कर रहे हैं। इस फिल्म में सलमान खान लीन, स्लीक और मस्कुलर अवतार में नजर आएंगे। इस लुक को पाने के लिए सलमान ने करीब 7 से 8 किलो वजन कम किया है। SVC 63 में सलमान खान का किरदार उनके करियर का सबसे खतरनाक, अनोखा और हाई ऑक्टेन रोल बताया जा रहा है। फिल्म में सलमान के कुल 5 अलग अलग लुक्स होंगे, जिन्हें मशहूर प्रोस्थेटिक्स और मेकअप डिजाइनर प्रीति शील सिंह डिजाइन कर रही हैं। वो वही मेकअप डिजाइनर हैं जिन्होंने स्पाई थ्रिलर धुरंधर में रणवीर सिंह समेत फिल्म के कलाकारों को बेहद दमदार और वास्तविक लुक्स दिए हैं। फिल्म की शूटिंग इसी साल 18 अप्रैल को मुंबई के गोरेगांव में एक बड़े अर्बन सेट पर शुरू हुई थी, जिसका पहला शेड्यूल पूरा हो चुका है। बताया जा रहा है कि अब अगली शूटिंग मनाली में होगी। फिल्म के सबसे इमोशनल सीन्स शूट किए जाएंगे, इंटेंस फाइट सीक्वेंस के साथ वो ड्रामा सीन भी फिल्माए जाएंगे जिस पर पूरी कहानी बेस्ड है। इसके लिए मनाली में एक घर का सेट तैयार किया जा रहा है। मई एंड से लेकर जून तक शूट यही होगा। मनाली में फिल्म के उस चंक की शूटिंग होगी जो सलमान के ब्रूटल रिवेंज की वजह बनता है। सोशल मीडिया पर चर्चा है कि मनाली के बाद हैदराबाद और केरल में भी इसका शूट होगा और हर लोकेशन पर सलमान अलग लुक में दिखेंगे। बताया जा रहा है कि हैदराबाद में फिल्म के सबसे इंटेंस एक्शन सीन फिल्माए जाएंगे, ये फिल्म के विलेन के साथ शूट होंगे। रिपोर्ट बता रही है कि एनिमल के एक्शन कोरियोग्राफर सुप्रीम सुंदर ने SVC 63 के फाइट सीन कोरियोग्राफ किए हैं। इनमें सलमान को एक्सट्रीम एक्शन मोड में दिखाया जाएगा। ब्रूटल एक्शन सीन्स के लिए खास वेपन्स तैयार कराए जा रहे हैं। मेकर्स ने देखी दिखाई गन फाइट की बजाय देसी और रॉ कॉम्बैट प्लान किए हैं, जिनमें सलमान का खूंखार बेरहम अवतार देखने को मिलेगा। विलन के रोल के लिए अक्षय खन्ना को लिए जाने की चर्चा है, हालांकि अभी ये कंफर्म नहीं है। कंफर्म फिल्म का ऑफिशियल नाम भी होना है, जिसका खुलासा करने के लिए एक हाई ऑक्टेन विशेष प्रोमो शूट किया है जो जल्द ही रिलीज होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: चलिए अब बात कर लेते हैं इम्तियाज अली की अपकमिंग फिल्म के बारे में, मैं वापस आऊंगा की। दरअसल मंगलवार को इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया और फिल्म में दिलजीत दोसांझ ने एक लोकप्रिय यूट्यूबर की भूमिका निभाई है।
3: देखिए साथ ही नसीरुद्दीन शाह भी अहम रोल में आपको इस फिल्म नजर आएंगे। फिल्म 2 जून को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।
6: अडॉल्फ हिटलर, हाँ जी,
7: वो भी मार्स का है, मार्शल।
8: बेहतरीन डायलॉग्स।
9: एक्चुअली दादाजी डेथ बेड पे, पता नहीं बार बार उठ जाते हैं और कहते हैं मुझे सरगोधा जाना, और आप सबको पता है कि सरगोधा तो है
10: मॉडर्न के उस साइड।
8: शानदार डायरेक्शन, और दर्शकों को बांधे रखने वाली फिल्म की दिलचस्प कहानी।
11: मैच है, अच्छा मून पे है, ठीक है।
7: गैरों कबे मून,
11: मैं नहीं, वो जेफ बेजोस और एलन मस्क कर रहे हैं ट्राई, बेचारों को एंट्री नहीं दे रहे।
8: कुछ ऐसे ही कंप्लीट पैकेज के साथ आने वाली है इम्तियाज अली की फिल्म मैं वापस आऊंगा।
12: हार्ट अटैक तो नहीं हो रहा था।
8: मंगलवार को इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। ट्रेलर देखकर फिल्म के लिए दर्शकों की बेसब्री और भी बढ़ गई है।
12: फिर भी नहीं करेंगे ऐसा? हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी
11: क्या, हमन जब साथ रहे। मैं नहीं जाऊंगा, वादा है मेरा।
8: इस फिल्म में पंजाबी फिल्मों के सुपरस्टार और बॉलीवुड में अपनी धमाकेदार एक्टिंग से पहचान बना चुके दिलजीत दोसांझ ने एक लोकप्रिय यूट्यूबर की भूमिका निभाई है। भीड़
11: काम है, जा यहां से, मैं नहीं जा रहा, कर लो जो करना है, मैंने कहा था बंटवारा करो, और ये जगह हिंदुस्तान में है, नए मुल्क में, कैसे बता।
8: फिल्म 1947 के विभाजन के पृष्ठभूमि पर आधारित है और पूरी फिल्म की कहानी इसी ऐतिहासिक घटना के इर्द गिर्द घूमती है।
11: पुरानी बात फंसी है उनके दिल में, वो बता भी रहे हैं हमें, लेकिन हमें उनकी बातें समझ नहीं आ रही।
13: समझ में कैसे आएंगी, ये उनकी तकलीफ है और उनके साथ।
8: फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के मौके पर नसीरुद्दीन शाह ने इम्तियाज अली के बेहतरीन डायरेक्शन की जमकर तारीफ की है।
11: ये हो सकता है, अपने दिल के अंदर एक लड़की को रखना जिसे 78 ईयर से देखा तक नहीं।
14: किसी एक्टर की कामयाबी का पूरा सहरा जो है वो लेखक और निर्देशक के सर जाता है। अगर लिखाई सही ना हो तो दुनिया का सबसे बेहतरीन एक्टर भी कुछ नहीं कर सकता, और मतलब मैं उसकी जिंदा मिसाल हूं। मैं कई फिल्मों में बहुत बुरा काम भी किया है, जो मेरे बेटे रात के 3 बजे YouTube पर देख के मुझे जगाते हैं कि बाबा आपकी एक फिल्म चल रही है। And I would rather sleep। तो यही हुआ इस फिल्म में कि इम्तियाज ने बहुत ही बेहतरीन स्क्रिप्ट लिखी है, जिसमें डायलॉग बहुत खूबसूरत है, सिचुएशंस बहुत ही पावरफुल है, और उनकी पिछली बनाई हुई फिल्में मैंने देखी हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगी, और बहुत ही मोहब्बत के साथ और एहतियात के साथ उन्होंने एक्टरों के साथ काम किया है। कम ही डायरेक्टर्स ऐसे मिले हैं जो एक्टर की परफॉर्मेंस की वजह से रीटेक लेते हैं।
11: ये प्यार जहर की तरह होता है, पता है, इसकी एक भी बूंद अंदर रह गई ना तो ये आखिरी समय में चैन से बढ़ने भी नहीं
7: देता।
8: बरसों बाद इस फिल्म के साथ नसीरुद्दीन शाह भी बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं। नसीर दिलजीत दोसांझ के दादाजी की भूमिका में है। ट्रेलर देखकर अंदाजा लग रहा है कि फिल्म में बंटवारे के दर्द को प्रेम के गहरे एहसास के साथ बुनकर सजाया गया है। फिल्म में बुजुर्ग नसीरुद्दीन शाह अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर है। बंटवारे की वजह से वो अपनी प्रेमिका से 78 साल से नहीं मिल पाए।
11: चांद पे मैच है, अच्छा मून पे है, ठीक है।
7: मून,
11: मैं नहीं, वो जेफ बेजोस और एलन मस्क कर रहे हैं ट्राई, बेचारों को एंट्री नहीं दे रहे।
8: जिंदगी के आखिरी दिनों में वो अपनी प्रेमिका से एक बार फिर मिलने की चाह रखते हैं। ट्रेलर देखकर ऐसा लग रहा है कि उनकी अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए दिलजीत उस लड़की को तलाश करने पाकिस्तान जाते हैं।
11: कर लो जो करना है। मैंने कहा था बंटवारा करो।
8: क्या दिलजीत की कोशिश से नसीर अपनी प्रेमिका से मिल पाते हैं? वो प्रेमिका जीवित है भी या नहीं? अगर वो प्रेमिका जीवित है तो नसीर के प्रेम पर उसका क्या रिएक्शन आता है? इसी के इर्द गिर्द पूरी कहानी का ताना बाना बुना गया है। फिल्म में इम्तियाज अली के बेहतरीन डायरेक्शन की झलक मिल रही है।
13: ये उनकी तकलीफ है और उनके साथ चिता में जाएगी।
8: ए.आर. रहमान ने फिल्म को अपने संगीत से सजाया है। इरशाद कामिल ने इसके गाने लिखे हैं। फिल्म में शर्वरी वाग वेदांग नारंग भी अहम भूमिका में है। ये खूबसूरत रोमांटिक ड्रामा 12 जून को सिनेमा घर में दस्तक देने को तैयार है।
3: और देखिए, बीती रात सिनेमा प्रेमियों को एक खास तोहफा मिला है। दरअसल जूनियर एनटीआर ने अपने 43वें जन्मदिन पर फैंस को तोहफा देते हुए अपनी फिल्म ड्रैगन का जबरदस्त टीजर रिलीज कर दिया। टीजर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर भी छा गया है।
2: प्रशांत नील की डायरेक्शन में बनी इस फिल्म ने फैंस का जोश काफी बढ़ा दिया है।
10: शानदार डायलॉग्स, जबरदस्त स्टार कास्ट और साउथ के सुपरस्टार जूनियर एनटीआर का एक्शन अवतार। जूनियर एनटीआर के जिस पिक्चर का बेसब्री से इंतजार हो रहा था, उसका टीजर आ गया है। फिल्म की ये धमाकेदार झलक सामने आई है उनके 43वें जन्मदिन पर। 19 मई की रात मेकर्स ने टीजर रिलीज किया, जो अब सोशल मीडिया पर छा चुका है। अब फैंस इस फिल्म के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गए। इस टीजर वीडियो में जूनियर एनटीआर का लुक काफी दमदार लग रहा है। पहली झलक से ही साफ है कि फिल्म बड़े पैमाने पर बनाई जा रही है। फिल्म में जूनियर एनटीआर के किरदार का नाम लूगर है। 4 मिनट 28 सेकंड की इस पहली झलक में न सिर्फ फिल्म की कहानी को लेकर उत्सुकता जगती है, बल्कि मैन ऑफ द मासेस जूनियर एनटीआर के रोल को लेकर भी माहौल सच कर देती है। फिल्म में बॉलीवुड के फॉरएवर यंग एक्टर अनिल कपूर भी अहम किरदार में नजर आ रहे हैं। इस फिल्म को मैत्री मूवी मेकर्स और एनटीआर आर्ट्स के बैनर तले प्रोड्यूस किया जा रहा है। ये फिल्म 11 जून 2027 को कुल 5 भाषाओं में पैन इंडिया रिलीज होगी, लेकिन फिल्म के फर्स्ट लुक ने अभी से ही इस फिल्म के लिए फैंस के बीच माहौल बनाने का काम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज ट्विटर।
15: सोते वक्त सपने में उनकी शक्ल नहीं आती जिनको मारा है, सिर्फ उनकी आती है जो अभी तक बचे। भटकते हुए भी मेरे सपनों में मत आ जाना।
2: अब बात करते हैं मौसम की। उत्तर भारत में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच लोगों को जल्द राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार मॉनसून सामान्य समय से पहले भारत में दस्तक दे सकता है। अनुमान है कि 22 से 26 मई के बीच मॉनसून केरल पहुंच सकता है। दक्षिण भारत के कई हिस्सों में तो प्री मॉनसून बारिश शुरू हो चुकी है, जिससे कि तापमान में गिरावट दर्ज की गई। वहीं पहाड़ी राज्यों में हल्की बारिश और ठंडी हवाओं ने लोगों को गर्मी से राहत दी है।

0: इस बार मॉनसून तय वक्त से पहले दस्तक दे सकता है। कम से कम मौसम विभाग का पूर्वानुमान तो इसी तरफ इशारा कर रहा है। अगर आकलन सही रहा तो अगले रविवार तक मॉनसून के बादल केरलम के आसमान में नजर आएंगे, यानी मॉनसून के आने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक मॉनसून समय से पहले आगे बढ़ रहा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी सिरे से लेकर उत्तरी सिरे तक फैल चुका है, साथ ही अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी और मध्य भागों में आगे बढ़ चुका है।
1: मुख्य रूप से जो केरल में हमारा अनुमान है कि 26 मई के आसपास जो है मॉनसून दस्तक दे सकता है, जिसमें 4 दिनों की मॉडल त्रुटि होती है। तो अभी आप देखेंगे केरल में भी तो हमारा बहुत भारी वर्षा चेतावनी जो है जारी की गई है। तापमान इस पर्टिकुलर क्षेत्र में जो दक्षिण भारत क्षेत्र है यहाँ पर जो है अमूमन थोड़े से अभी सामान्य के करीब है और इतने ज्यादा बढ़े हुए नहीं दिख रहे हैं।
0: मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि परिस्थितियां अनुकूल बनती गईं तो मॉनसून 22 से 30 मई को केरल में दस्तक दे सकता है। इसके बाद मई आखिर या जून के पहले सप्ताह में मॉनसून के तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा और आंध्र प्रदेश पहुंचने का अनुमान है। फिर 5 से 15 जून तक ये महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ पहुँच सकता है। जून के आखिरी हफ्ते में दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत में मॉनसून के बादल बरस सकते हैं। अनुमान है कि 15 जुलाई तक मॉनसून पूरे देश को कवर कर सकता है। केरल से होते हुए मॉनसून देश भर के अन्य हिस्सों में पहुंचेगा। ऐसे में आप जरूर जानना चाहेंगे कि मॉनसून आपके शहर या राज्य में कब दस्तक देगा। अगर यूपी बिहार की बात करें तो यूपी में 15 जून को मॉनसून दस्तक दे सकता है। इसके अलावा बिहार में 20 जून को मॉनसून के आने की संभावना है। वहीं दिल्ली NCR में इस बार मॉनसून 25 जून तक दस्तक दे सकता है। वक्त से पहले मॉनसून की दस्तक का मतलब गर्मी और हीट वेव का अंत, साथ ही फसल की बुआई में मदद और पानी की किल्लत खात्मा। मनीष लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: मैदानों में गर्मी है तो पहाड़ों पर मौसम कूल बना है। चमोली के जोशीमठ में मूसलाधार बारिश के साथ ओले गिरे। इस बारिश और ओले गिरने से लोगों ने गर्मी में भी राहत की सांस ली है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पहाड़ों पर बारिश की वजह से मौसम सुहाना बना हुआ है, लेकिन मैदानों में अभी भी लोगों को इंतजार है कि इस गर्मी से कब उनको राहत मिलेगी। वहीं शहरों में तपन और झुलसती गर्मी सताने लगी तो लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। सरोवर नगरी नैनीताल में बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। आम दिनों के मुकाबले काफी ज्यादा भीड़ भी है। दिन के वक्त तो नैनीताल में अच्छी खासी धूप है, मगर सुबह और शाम के वक्त ठंडी हवा चलती है। शाम के वक्त वॉक करने का एक अलग ही आनंद वहां पर लोग ले रहे हैं। और चलिए इसके साथ लंच टाइम में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे सैलानियों से गुलजार पहाड़।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में कहीं है नट। तो कहीं ड्रामा। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
5: Owning a home is full of surprises. Some wonderful, some not so much. And when something breaks, it can feel like the whole day unravels. That's why HomeServe exists. For as little as $4.99 a month, you'll always have someone to call. A trusted professional ready to help, bringing peace of mind to 4.5 million homeowners nationwide. For plans starting at just $4.99 a month, go to HomeServe.com. That's HomeServe.com. Not available everywhere. Most plans range between $4.99 to $11.99 a month your first year. Terms apply on covered repairs.
6: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
7: Shack FM, now playing what we want, commercial free on TuneIn Premium.
8: What you got for me, Jack?
7: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
9: You can stream all the podcasts you already love right on TuneIn. Available on your smartphone, on your tablet, and even on your connected devices. There's so much to explore, like mind-blowing facts about your world.
10: So they were disallowed from speaking their language.
9: In-depth conversations with A-list celebrities.
11: No, I was ready to go. You know, after I wanted to fulfill my contract.
9: True crime podcasts you just can't stop listening to.
12: Others escape justice to live and die in infamy. These
9: plus the news and sports content you crave in podcast form.
13: Couldn't run in a straight line very quickly and didn't have much of an arm. His arm is stronger now.
9: So whether you want to save your go-to shows for later by subscribing and listening offline, or you want to discover a whole slate of new podcasts to be obsessed with, TuneIn is your destination. True crime, sports, lifestyle, culture, news, and so much more. TuneIn is podcast central. Hear them all here.

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
2: इटली दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ने जॉर्जिया मेलोनी को गिफ्ट में दिया टॉफी का पैकेट। मेलोनी ने कहा धन्यवाद, कल प्रधानमंत्री ने मेलोनी के साथ किया था डिनर। कोची के नौसैनिक अड्डे पर INS सुनियाना का ध्वजारोहण के साथ स्वागत। इंडियन ओशन शिप सागर पहल के तहत तैनाती के दूसरे संस्करण सफलतापूर्वक संपन्न कर लौटा शिप। ओडिशा के चांदीपुर में सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम का नाइब ने किया सफल परीक्षण। पिन पॉइंट स्ट्राइक और ड्रोन से हमला करने में भी है ये सक्षम। तकनीकी खराबी के चलते बद्रीनाथ से लौट रहे हेलीकॉप्टर की चंबा आराकोट क्षेत्र में इमरजेंसी लैंडिंग। पायलट समेत हेलीकॉप्टर में सवार सभी 6 यात्री पूरी तरह से सुरक्षित।

0: भीषण गर्मी से जूझ रहा पूरा उत्तर भारत, हीटवेव का अलर्ट, कई शहरों में पारा 47 डिग्री के पार। यूपी के 11 जिलों में आज से रेड अलर्ट, लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई। किसी भी तरह की आपदा से बचने के लिए केरल में मॉनसून की तैयारी, अधिक जोखिम वाले क्षेत्रों में तैनात किए गए एनडीआरएफ के 240 जवान, 26 मई को केरल पहुंच रहे हैं मॉनसून।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम।
0: चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैदानों पर जहां लोगों को तपिश का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं जम्मू कश्मीर की श्रीनगर और गुरेज घाटी सैलानियों से गुलजार है। दरअसल गर्मी से राहत पाने के लिए लोग अब पहाड़ों का रुख कर रहे हैं।
2: महीना मई का है, सूरज का पारा चढ़ा हुआ है, चुभती जलती गर्मी से लोग परेशान हैं। तमाम इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं, सड़क पर बिना मुंह ढके चलना मुहाल है। ऐसे में जिसे मौका मिल रहा है पहाड़ों का रुख कर रहा है, खासकर जम्मू कश्मीर का, जहां हर मौसम कुछ कहता है। इस साल उत्तरी कश्मीर की गुरेज घाटी सैर के लिए लोगों की पहली पसंद है, ऐसे में यहां पर्यटन कारोबार में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। अपनी मनमोहक पर्वत श्रृंखलाओं, हरे भरे मैदानों, कलकल बहती नदियों और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध ये घाटी सैलानियों को खूब लुभा रही है।
3: उत्तरी कश्मीर की गुरेज घाटी नियंत्रण रेखा से सटी हुई है। कुछ ही साल पहले गुरेज घाटी को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया था, लेकिन पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नियंत्रण रेखा से सटे होने के कारण पर्यटकों पर पूरी तरह से साल भर पाबंदी रही। लेकिन अब की बार कश्मीर में जिस अंदाज से पर्यटकों की तादाद बढ़ रही है और गर्मी से बचने के लिए जिस अंदाज से पर्यटक पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, गुरेज घाटी भी पर्यटकों से गुलजार है। गुरेज में कुदरती खूबसूरती के साथ साथ पर्यटकों को ट्रैकिंग के लिए कई सारे इलाके यहां पर मिलते हैं। यही कारण है कि कश्मीर आने वाले अधिकतर पर्यटक अब गुरेज घाटी जा रहे हैं।
2: गुरेज में भारतीय सेना का श्रीना सांस्कृतिक केंद्र भी सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। यहाँ गुरेज की समृद्ध श्रीना संस्कृति और परंपराओं को खूबसूरती से प्रदर्शित किया गया है।
4: गुरेज वैली इज अमेजिंग, बहुत अच्छी लग रही है यहाँ पे। यहाँ की वादियाँ बहुत सुंदर है, आज तक हमने ऐसे कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था, इतना खूबसूरत लग रहा है यहाँ। राजनाथ टॉप वॉज अमेजिंग, ऐसी बर्फ और ऐसी जगह हमने आज तक नहीं देखी थी, इट वॉज अमेजिंग, बहुत ही सुंदर लगा। बहुत सारे देश विदेश हम घूमे हैं, बट यहाँ की बात ही कुछ और है, बहुत ही अच्छा लगा।
2: श्रीना संस्कृति केंद्र में न सिर्फ श्रीना भाषी समुदाय की अनूठी विरासत को संभाल कर रखा गया है, बल्कि उनकी परंपराओं और जीवन शैली को दिखाने वाली डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई जा रही है। वहीं सैर के लिए जम्मू कश्मीर आए लोग डल झील में शिकारा की सवारी का भी खूब आनंद ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर से अशरफ वाने, गुड न्यूज टुडे।
0: ऐसा देखा गया है कि जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से देश हित में कुछ कदम उठाने की अपील की, तब तब देश ने साथ दिया। अब देश में पर्यटन को बढ़ाने की मुहिम को ही ले लीजिए, जिसका असर लक्षद्वीप पर्यटन के रिकॉर्ड आंकड़े के रूप में दिखाई दे रहा है। इस बार जब प्रधानमंत्री ने राष्ट्रवाद को आर्थिक अपील से जोड़ा, तो मालदीव का पर्यटन बाजार धीमा पड़ गया और लक्षद्वीप का जैसे भाग्य ही बदल गया।
5: साल 2024 में प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीरें जब सामने आईं, तो 32 द्वीपों के समूह लक्षद्वीप की मानो किस्मत ही पलट गई। महज 10 से 11 द्वीपों पर आबादी वाला ये खूबसूरत स्थल पर्यटन के नक्शे पर हिट साबित हो रहा है। पीएम मोदी ने लक्षद्वीप की सीनिक ब्यूटी को देशवासियों के साथ साझा करते हुए कहा था कि जो लोग एडवेंचर पसंद हैं, तो उनकी लिस्ट में लक्षद्वीप होना चाहिए। बस इसके बाद तो सोशल मीडिया पर हैशटैग मालदीव्स ट्रेंड करने लगा, यानी मालदीव्स की बजाय देशवासियों को लक्षद्वीप को अपना पर्यटन डेस्टिनेशन बनाना चाहिए। वहीं देश की जनता प्रधानमंत्री के सुझावों, उनकी बातों पर कितना भरोसा करती है। साल 2024 से लेकर आज तक लक्षद्वीप के पर्यटन में जबरदस्त उछाल की तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं। बस ये मानकर चलिए कि आज पर्यटन के प्रमुख डेस्टिनेशन मालदीव की खूबसूरती लक्षद्वीप के आगे फीकी पड़ रही है। अब आजकल क्योंकि ईरान अमेरिका संकट के बीच इकोनॉमिक क्राइसिस का माहौल है, ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीयों से गैर जरूरी विदेशी यात्राओं की बजाय घरेलू यात्रा करने, ईंधन बचाने और फिजूल खर्ची कम करने की अपील की। तो लक्षद्वीप में और बढ़ रहा पर्यटन इसकी एक हालिया मिसाल है। ये बढ़ता पर्यटन संकेत दे रहा है कि पीएम मोदी की सार्वजनिक अपीलों और संदेशों को देश काफी गंभीरता से लेता है। दरअसल इंडिया टुडे ने आरटीआई के तहत कुछ आंकड़े जुटाए हैं, जिससे पता चलता है कि लक्षद्वीप में पर्यटकों की संख्या साल 2020 में महज 3,875 थी, जो 2024 में बढ़कर रिकॉर्ड 68,328 पर पहुंच गई। पर्यटकों की संख्या में ये सबसे बड़ा उछाल जनवरी 2024 में प्रधानमंत्री मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद ही आया। जाहिर है लक्षद्वीप के रेतीले समंदर तट, नेचुरल सीन्स, वनस्पतियां और जीव की प्रजातियों को नजदीक से निहारने के लिए ही देश के कोने कोने से लोग यहां आ रहे हैं। यही वजह है कि आज इस खूबसूरत द्वीपों के समूह पर पर्यटन काफी तेजी के साथ पंख फैला रहा है। लक्षद्वीप में पर्यटकों की संख्या साल 2023 के 46,551 से बढ़कर 2024 में 68,328 हो गई, जो एक साल के भीतर लगभग 47% का उछाल है। ठीक इसी समय मालदीव जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट देखी गई थी। मालदीव के पर्यटन मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि मालदीव पहुंचने वाले भारतीयों की संख्या साल 2023 के 2,09,193 से घटकर 2024 में 1,30,805 रह गई, जो कि 37.5% की गिरावट है। भारत, जो कभी मालदीव के टॉप टूरिज्म मार्केट में से एक था, विजिटर्स की हिस्सेदारी के मामले में खिसक कर छठे स्थान पर आ गया। मालदीव से हटकर जब साल 2024 में पीएम मोदी ने देश के अंदर पर्यटन को बढ़ाने की अपील की, तो उसके बाद से कई मशहूर हस्तियां, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और ट्रेवल प्लेटफॉर्म्स ने भी उनकी इस सोच का साथ दिया। सोशल मीडिया पर फॉरेन ट्रिप की जगह डोमेस्टिक टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को एक्सप्लोर करने की मानो बाढ़ सी आ गई। कहना गलत नहीं कि मालदीव जैसी खूबसूरती के बावजूद लंबे समय तक अपेक्षाकृत अविकसित रहा लक्षद्वीप आज नेशनल टूरिज्म सिंबल बना हुआ है। लक्षद्वीप में बढ़ रहा पर्यटन आज इस बात की भी मिसाल है कि जब प्रधानमंत्री मोदी देश हित से जुड़ी कोई अपील करते हैं, तो देशवासियों की सोच और आदतों में प्रधानमंत्री की अपील का सकारात्मक रूप में असर भी नजर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: आप में आपका शहर बसता है, आप में आपकी माटी की महक बसी है। बुलाएंगे तो देश भर से आएंगे मेहमान, तो आप भी जीएनटी संग कीजिए अपने शहर में देश का स्वागत। और व्हाट्सएप नंबर 7307340992 पर भेजिए अपने शहर का वीडियो। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने भी अपील की थी कि लोग विदेश यात्रा से बचें और अपने देश घूमें। उसके बाद हमने अपने दर्शकों से अपील की कि वो अपने आसपास की खूबसूरत जगहों की तस्वीरें भेजें, अपना वीडियो बनाकर भेजें, जिसके बाद हमें लगातार आपके वीडियो भी मिल रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो हमारे दर्शक आशीष कपूर ने उत्तराखंड के कौसानी से वीडियो भेजा है। उनका गांव कितना खूबसूरत है, आप वहां कैसे जा सकते हैं, ये सब उन्हीं की जुबानी सुनिए।

0: गुड न्यूज टुडे के लिए मैं त्रिश कपूर आज आपसे बात कर रहा हूँ। आज कौसानी और पूरा हिमालय जो है हमारे यहाँ बहुत सुंदर चमक रहा है। गुड न्यूज में आप सबका स्वागत है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी कहा कि पर्यटक विदेशों में न जाएं और अपने देश में आएं, कौसानी आएं, उत्तराखंड आएं, बागेश्वर आएं। मैं आप सबको बागेश्वर में इनवाइट करता हूं। बागेश्वर अपने आप में एक बहुत सुंदर स्थान है, एक वैली है और जिसको गोल्डन वैली ऑफ कुमाऊं एटकिंसन ने कहा था। बागेश्वर दो नदियों का संगम है, गोमती और सरयू। वहां पर उस संगम पर बागनाथ जी के दर्शन होते हैं। कहा जाता है, मान्यता यह है, शिव भगवान वहां पर बाघ के रूप में प्रकट हुए थे और दूसरी एक कहानी ये भी है कि शिव भगवान वहां पर वाघ के रूप में, आवाज के रूप में प्रकट हुए थे, जिसको बागेश्वर या बागेश्वर कहते हैं। ये सरयू नदी वही है जो यहां से निकलकर, बागेश्वर से निकलकर और ये जाती है अयोध्या और वहां से उस पर आजीपुरा जाके गंगा मिल जाती है। बागेश्वर अपने आप में एक सुंदरतम स्थल है। यहाँ पर ट्रैकिंग की बहुत फैसिलिटीज हैं, यहाँ पर माउंटेनिंग की, ट्रैकिंग की, वाइल्ड लाइफ की, बर्ड वॉचिंग की। मैं इस कौसानी की बात कर रहा हूँ, इस कौसानी में लगभग 200 प्रकार के पक्षी आपको मिलते हैं। अगर आप पिनाक के जंगल में चले जाएं तो आपको मालूम पड़ता है कि लेपर्ड भी आपसे मिलने चला आता है और एंटीलोप बहुत है हमारे यहाँ, हिरण बहुत है हमारे यहाँ, मस्क डियर बहुत है हमारे यहाँ, लेपर्ड बहुत है और बर्ड्स तो भरी पड़ी है हमारे पास। हमारे सुंदर मंदिर है बैजनाथ का और बागेश्वर का और सत्यनारायण का, पिंडारी ग्लेशियर, कफनी ग्लेशियर, सुंदरमा ग्लेशियर, इन सब के रास्ते यहीं से जाते हैं। अगर आप बागेश्वर आना चाहते हैं तो आप दिल्ली से हल्द्वानी तक आ सकते हैं ट्रेन से और हल्द्वानी से किसी भी हेली सर्विस से आप बैजनाथ उतर सकते हैं। हमारे हमारा हेलीपोर्ट यहाँ पर है, वहाँ पर उतर के अपनी आप जर्नी 20 मिनट पूरी कर सकते हैं। अन्यथा बस से भी, अपनी कार से भी आ सकते हैं, बस से भी आ सकते हैं, बहुत ट्रांसपोर्ट यहाँ पर उपलब्ध है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप अधिक से अधिक संख्या में बागेश्वर आइए, कौसानी आइए और यहाँ की हर चीज को एंजॉय करिए। देखिए चिड़िया कितनी बोलती है हमारे यहाँ, आपको हर जगह बर्ड मिलती है। इन बर्ड्स की आवाज को सुनकर आप देखिए क्या हरियाली भरी पड़ी है यहाँ पर। यहाँ पर बुरांस के जंगल, यहाँ पर काफल पके हैं आज के जंगलों में, यहाँ पर नाशपाती और फलों की बड़ी है, बहुत बढ़ गए हैं। हमने यहाँ पर कौसानी में कई हमारे सेब के बगीचे लगाए हैं, दूसरे फल के बगीचे हैं। कीवी हमारा बागेश्वर का एक प्रोडक्ट है जिसको हम लोग खूब इंजॉय करते हैं और हमारे साथ जो लोग आते हैं उनको हम कीवी के बारे में बताते हैं, बुरांस के फूलों के बारे में, बटर ब्रश के बारे में बताते हैं। अब हमारे यहाँ फल पकने लग गए हैं। आप सोचिए कि आजकल हमारे यहाँ खुमानी पक गई है, आड़ू पक गया है। ये देखिए हमारे सेब के बगीचों में सेब लगने शुरू हो गए हैं। हमारे पास आड़ू का बगीचा भी है, इसमें देखिए कितने सुंदर सुंदर नैपकिन के आड़ू की वैरायटी है जिसका रंग लाल होता है बिल्कुल, और इसमें सेब से भी बाहर से सेब की तरह लगता है और अंदर जब इसके जाएंगे तो हमको बिल्कुल आड़ू खाने को मिलता है। जिस तरह से कैसा मिलता है आपको सेब से बगीचे भरे पड़े हमारे हर जगह सेब। ये देखिए ये सब चारों इधर देखिए, आइए आप मेरे इस आड़ू के बगीचे में देखिए आड़ू के फल किस तरह पक चुके हैं। साथ में सेब भी हैं, साथ में चेरी भी है, साथ में प्लम भी हैं, साथ में खुमानी भी है और सारे फल हमारे भरे पड़े हैं। सारी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सब गुड न्यूज टुडे के माध्यम से दिखा रहा हूँ। कौसानी की बड़ी खासियत है, यहाँ से लगभग 340 किलोमीटर लंबा हिमालय आपको देखने को मिलता है और उसी तरह यहाँ पर कौसानी की खासियत यह है, यहाँ बैजनाथ की वैली 3000 फीट पर है और जो नंदा देवी है 26000 फीट पर है। तो 3000 से 26000 फीट ऊंचा हिमालय और 340 किलोमीटर लंबा हिमालय, आपी रंपा से लेकर बंदरपुर तक सारे पहाड़ यहाँ से दिखते हैं और त्रिशूल की तो महिमा ही कुछ और है। यहाँ से त्रिशूल, नंदा खुंटी और बैजनाथ की वैली, कतियों की वैली, बागेश्वर की वैली, ये आपका दिल बोल लेते हैं यहाँ पर। लेकिन जो सुंदरता हमारे कौसानी में है वो कहीं नहीं है। शायद यही कारण था कि महात्मा गांधी ने अपने मित्रों की तरफ चिट्ठी लिखी, उनने लिखा था मैं समझ नहीं पाता हूँ कि लोग स्विट्जरलैंड या यूरोप क्यों जाते हैं जबकि कौसानी यहाँ पर है। कौसानी और बागेश्वर की महिमा ही कुछ और है। आप आइए, हम आपका स्वागत करते हैं।
1: पंच केदारों में से द्वितीय केदार भगवान मध्य महेश्वर के कपाट खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। भगवान की डोली अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर उखीमठ से धाम के लिए रवाना हो गई है। 21 मई को डोली के धाम पहुंचने पर मंदिर के कपाट खोल दिए जाएंगे।
2: संस्कृति, परंपरा और आस्था का अनूठा संगम, आगे आगे भगवान की डोली, पीछे पीछे भक्तों की डोली। ढोल दमाव की थाप है, रंग है, राग है, आस्था परंपरा है। भगवान मध्य महेश्वर अपने धाम चले हैं। अपने धाम यानी मध्य महेश्वर मंदिर। महिलाओं ने भजन गाकर अपने आराध्य को विदाई दी तो वहीं डोली के साथ साथ चल रहे भक्त महादेव का जयकारा लगाते पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ते रहे। ओंकारेश्वर मंदिर में भगवान शीतकालीन प्रवास पर थे। प्रवास पूरा होते ही मध्य महेश्वर की चल उत्सव विग्रह डोली अपने धाम के लिए रवाना हो गई। मंगलवार को खीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर से रवाना हुई डोली आज गोंडार गांव पहुंचेगी और 21 मई को मध्य महेश्वर मंदिर। डोली के धाम पहुंचने पर वैदिक मंत्रोच्चार और पूरे विधि विधान के साथ मंदिर के कपाट खोल दिए जाएंगे और अगले 6 महीने तक भगवान अपने भक्तों को यहीं दर्शन देंगे।
3: रांसी गांव से रुद्रप्रयाग जनपद के सीमांत गांव गोंडार में भगवान मध्यमेश्वर की डोली द्वितीय रात्रि प्रवास करेगी। 21 मई सुबह डोली गोंडार गांव से धाम के लिए प्रस्थान करेगी और धाम पहुंचने पर लगभग 11 बजे द्वितीय केदार भगवान मध्यमेश्वर के कपाट आगामी 6 माह के लिए खुलेंगे। आपको बता दें कि भगवान मध्यमेश्वर की मध्यमेश्वर धाम में मध्य भाग की पूजा होती है और इसके अलावा केदार घाटी में भगवान मध्यमेश्वर को न्याय के देवता के रूप में भी पूजा जाता है।
2: उत्तराखंड के पंच केदार में भगवान शिव के 5 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। केदारनाथ में बैल रूपी शिव के कुबड़ की, तुंगनाथ में भुजाओं की, रुद्रनाथ में मस्तक की, मध्य महेश्वर में नाभि की और कल्पेश्वर में जटाओं की पूजा होती है। पंच केदार में मध्य महेश्वर को दूसरे केदार के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि इस मंदिर को महाभारत काल में पांडवों द्वारा बनवाया

0: के साथ इन तमाम खबरों के बाद लंच टाइम में आज के लिए बस इतना ही। और चलिए इसी के साथ हम दोनों को इजाजत दीजिए। अच्छी और पॉजिटिव खबरें दिन भर जारी हैं, आप देखते रहिए।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
3: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you nonstop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
1: अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर।

0: राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
3: इटली दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ने जॉर्जिया मेलनी को गिफ्ट में दिया टॉफी का पैकेट। मेलनी ने कहा धन्यवाद। कल पीएम ने मेलनी के साथ किया था डिनर, आज द्विपक्षीय वार्ता। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर लैंडस्लाइड, तेज बारिश में रात भर चला रेस्क्यू अभियान। एसडीआरएफ ने बचाई 10,450 यात्रियों की जान, सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया।

पूर्वक संपन्न कर लौटा शिल्प। ओडिशा के चांदीपुर में सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम का एनआईबी ने किया सफल परीक्षण, पिन पॉइंट स्ट्राइक और ड्रोन से हमला करने में भी सक्षम। तकनीकी खराबी के चलते बद्रीनाथ से लौट रहे हेलीकॉप्टर की चंबा आराकोट क्षेत्र में इमरजेंसी लैंडिंग, पायलट समेत हेलीकॉप्टर में सवार सभी 6 यात्री पूरी तरह से सुरक्षित। राजस्थान के अलवर में भीषण गर्मी के चलते ट्रैफिक सिग्नल पर लगाए गए टेंट, राज्य में पारा 46 डिग्री के पार, रात में भी चलती है गर्म हवाएं।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम।
1: इटली की राजधानी रोम में पीएम जॉर्जिया मेलनी से मिले प्रधानमंत्री मोदी, मेलोनी ने पीएम मोदी को दिया डिनर। इटली दौरे पर पीएम मोदी ने जॉर्जिया मेलोनी को गिफ्ट में दिया टॉफी का पैकेट, मेलोनी ने कहा धन्यवाद।
2: प्राइम मिनिस्टर मोदी ब्रॉट अस अ गिफ्ट, अ वेरी वेरी गुड टॉफी।
1: इटली के होटल में लगे मोदी मोदी के नारे, प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने को उमड़े भारतीय समुदाय के लोग। पीएम ने लोगों से हाथ मिलाकर किया अभिनंदन स्वीकार, बच्चों ने प्रधानमंत्री मोदी की ड्राइंग पर लिए ऑटोग्राफ। के आगमन पर इटली की धरती पर देखी भारतीय सभ्यता की झलक, स्वागत में कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन। विदेशी कथक डांसर्स ने पेश किए कई तरह के नृत्य, पीएम ने भी ताली बजाकर बढ़ाया कलाकारों का उत्साह।
3: स्कूटी और बलीडिया,
1: विदेशी कलाकारों ने पेश किया शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम, सुरीले वाद्य यंत्रों से गूंजा वातावरण।

तबले की थाप, सितार और बांसुरी वादन का लुत्फ लेते नजर आए प्रधानमंत्री मोदी। कलाकारों का अभिनंदन किया स्वीकार। इटली में देखिए काशी की भी झलक। इटालियन पेंटर ने काशी की तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी को भेंट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूरोप दौरे का ये आखिरी पड़ाव। आज रात दिल्ली के लिए रवाना होंगे पीएम मोदी। दिल्ली समेत उत्तर भारत में जल्द गर्मी से मिलेगी राहत। केरल में 22 मई से 30 मई तक मॉनसून की एंट्री की संभावना। मई के आखिरी या जून के पहले सप्ताह में तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा और आंध्र प्रदेश मॉनसून पहुंचने के अनुमान। 5 जून से 15 जून तक महाराष्ट्र, ओडिशा, छत्तीसगढ़ पहुंच सकता है मॉनसून। जून के आखिरी हफ्ते में दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में मॉनसून की संभावना। उत्तर प्रदेश में 15 जून को मॉनसून देगा दस्तक। बिहार में 20 जून तक मॉनसून आने की संभावना। तमिलनाडु के रानीपेट में मॉनसून की तैयारी को लेकर जुटा प्रशासन। केरल में 240 एनडीआरएफ कर्मियों की हुई तैनाती। गर्मी से तप रही राजधानी दिल्ली। कई इलाकों में 45 डिग्री के पार पहुंचा पारा। 25 मई तक लू का अलर्ट। साल 2024 के बाद 19 मई को दर्ज हुआ दिल्ली का इस महीने का सबसे गर्म दिन। दिल्ली के रिज इलाके में रहा सबसे अधिक 46.5 डिग्री तापमान। गंभीर हीटवेव की स्थिति का संकेत। उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं बढ़ा रही है दिल्ली की गर्मी। अगले एक हफ्ते तक दिल्ली एनसीआर में लू की स्थिति बने रहने के आसार। हिमाचल में भी गर्मी ने तोड़े रिकॉर्ड। मौसम विभाग ने कांगड़ा, किन्नौर और सोलन में 3 दिन के लिए हीट वेव जारी किया। भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग ने हिमाचल के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश की जताई उम्मीद। 22 मई को कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान। पाली में बेजुबानों को गर्मी से बचाने के लिए अच्छी पहल। लोगों ने ओजना जल कुंड में भरा पानी। पाली में भीषण गर्मी। छत पर महिला ने बिना चूल्हे के बनाया चीला। झांसी में 46 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। सड़कों पर पसरा सन्नाटा। झांसी में भगवान को गर्मी से बचाने के लिए लगाए गए एसी। खान पान में भी किया गया बदलाव। उधमपुर में भीषण गर्मी से संकर फूलों को पहुंचा नुकसान। फूलों को बचाने में जुटे लोग। पंजाब, हरियाणा में भी बढ़ा गर्मी का सितम। फरीदकोट में पारा 47.3 डिग्री के पार। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बढ़ी सूरज की तपिश। 22 जिलों में पारा 40 डिग्री के पार। बांदा में 48.2 डिग्री तापमान दर्ज। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में रहा सबसे गर्म दिन और इलाका 46.3 डिग्री पहुंचा पारा। मैदानों में बढ़ती गर्मी के बीच लोग पहाड़ों का कर रहे हैं रुख। झीलों के शहर नैनीताल में बढ़ी सैलानियों की संख्या। लोग बोटिंग का उठा रहे हैं जमकर मजा। पर्यटकों से गुलजार नजर आई मॉल रोड। मैदानों में बढ़ती गर्मी के बीच सैलानियों से गुलजार हुआ श्रीनगर। बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं सैलानी। श्रीनगर में शिकारा का आनंद ले रहे हैं सैलानी। भीड़ को देखते हुए बढ़ाई गई सुरक्षा। यूपी के चंदौली में 44 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। सड़कों पर पसरा सन्नाटा। भीषण गर्मी को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से अपील की। कहा बिना वजह घर से बाहर ना निकले। तकनीकी खराबी के चलते बद्रीनाथ से लौट रहे हेलीकॉप्टर की चंबा आराकोट क्षेत्र में इमरजेंसी लैंडिंग। पायलट समेत हेलीकॉप्टर में सवार सभी 6 यात्री पूरी तरह से सुरक्षित।
गांवों में बेजुबानों को गर्मी से बचाने के लिए शानदार पहल, चिड़ियाघर प्रशासन ने वन्य जीवों के लिए की विशेष व्यवस्था। जानवरों के बाड़े में लगाए गए वाटर स्प्रिंकलर, तालाब, ग्रीन मैट और छांव के लिए किए गए इंतजाम। इसके अलावा हर बाड़े में पानी की पर्याप्त की गई व्यवस्था, खान पान पर भी रखा जा रहा है विशेष ध्यान। रुद्रप्रयाग में जमकर हुई बारिश से सोनप्रयाग गौरीकुंड हाईवे पर टूटा पड़ा, कई श्रद्धालु फंसे। एसडीआरएफ की टीम ने सभी फंसे श्रद्धालुओं का किया रेस्क्यू, सड़क से हटाया जा रहा है मलबा। चारधाम यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब, 32 दिनों में करीब 17 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने की चारधाम की यात्रा। केदारनाथ में कल 30,000 से अधिक भक्तों ने दर्शन पूजन किए, अब तक 7 लाख के पार श्रद्धालुओं ने केदारनाथ धाम में लगाई हाजिरी। बद्रीनाथ धाम में 21,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने की पूजा पाठ, अब तक करीब 4.5 लाख से अधिक भक्तों ने किए बाबा बद्री के दर्शन। यमुनोत्री और गंगोत्री में उमड़ा आस्था का सैलाब, दोनों जगहों पर 5.5 लाख से अधिक भक्तों ने दर्शन पूजन किए। चारधाम यात्रा के दौरान अब तक 1,56,041 वाहनों की आवाजाही की गई, दर सबसे अधिक 54,832 वाहन पहुंचे बद्रीनाथ धाम। पूरे धूमधाम से चल रही बाबा मदमहेश्वर के कपाट खुलने की प्रक्रिया, आज गोंडार गांव पहुंचेगी बाबा मदमहेश्वर की उत्सव डोली। ओंकारेश्वर मंदिर से उत्सव डोली रवाना होने पर महिलाओं ने भजन गाकर दी अपने आराध्य को विदाई, डोली के साथ साथ चल रहे भक्तों ने लगाया महादेव के जयकारे। कल सुबह वैदिक पूजा अर्चना और कर्क लग्न में खोले जाएंगे बाबा मदमहेश्वर के पवित्र कपाट, तैयारियां हो चुकी हैं पूरी। अगले 6 महीने तक यही होंगे बाबा मदमहेश्वर के नियमित दर्शन पूजन। सर्दियों में बर्फबारी के कारण मुख्यमंत्री के कपाट बंद होने पर ऊखी मठ लाई जाती है भगवान के उत्सव डोली। पंच केदार में दूसरे केदार के रूप में पूजे जाते हैं मदमहेश्वर, मंदिर में भगवान शिव के नाभि के आकार के स्वयंभू शिवलिंग की होती है पूजा। उज्जैन में बाबा महाकाल की उतारी गई भस्म आरती, श्रद्धालुओं ने लगाए हर हर महादेव के जयकारे।

0: भगवान महाकाल का अभिषेक के बाद किया गया भव्य दिव्य श्रृंगार, बड़ी संख्या में भक्त बने साक्षी। महाकाल को शेषनाग का रजत मुकुट, रजत मुंडमाल, रुद्राक्ष की माला और पुष्पों की माला धारण कराई गई। ड्राई फ्रूट, फल, मिठाई का लगाया गया भोग। भस्म आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। महानिर्वाणी अखाड़े ने अर्पित की भस्म आरती। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर पहुंचे क्रिकेटर कुलदीप यादव, पत्नी के साथ के ठाकुर जी के दर्शन।
1: एक बार प्रेम से बोलो।
0: डीआरडीओ ने हासिल की एक और उपलब्धि, एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर मोड में अनमैन एरियल व्हीकल से लॉन्च होने वाली प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल V3 के डेवलपमेंट ट्रायल पूरे किए। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल के पास से डीआरडीओ टेस्ट रेंज में ULPGM V3 मिसाइल के सफल ट्रायल हुए पूरे। हल्के वजन वाली यह स्वदेशी मिसाइल बिना मानव रहित ड्रोन से लक्ष्य भेदने में सक्षम। परीक्षणों के दौरान अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम का किया गया इस्तेमाल, जो संभावना संभालता है मिसाइल सिस्टम की कमांड और कंट्रोल क्षमता। ULPGM V3 मिसाइल को वायुसेना और सेना के बेड़े में शामिल लड़ाकू ड्रोनों से किया जा सकेगा इंटीग्रेट, इससे बिना किसी मानवीय जोखिम के दुश्मन की हर हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने में बड़ी मिलेगी मदद। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की छवि हुई और मजबूत, पूरी तरह भारतीय तकनीक से तैयार है ULPGM V3, जिसमें बड़ी संख्या में MES और घरेलू उद्योगों की भागीदारी। भारतीय रक्षा बलों के लिए एक बड़ी उपलब्धि, सूर्यास्त रॉकेट सिस्टम का NIBE ने किया सफल निरीक्षण। ओडिशा के चांदीपुर स्थित ITR में 150 किलोमीटर और 300 किलोमीटर मारक क्षमता वाले सूर्यास्त रॉकेट्स का किया गया सफल परीक्षण। रॉकेट की सबसे बड़ी खासियत इसकी अचूक मारक क्षमता। ये रॉकेट दुश्मन के बंकर्स, कमांडर सेंटर्स और सैन्य ठिकानों को पिन पॉइंट सटीकता के साथ पूरी तरह कर सकता है नष्ट। सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम सिर्फ रॉकेट ही नहीं बल्कि ड्रोन से भी हमला करने में सक्षम। सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर, जो अलग अलग रेंज और क्षमता के रॉकेट दाग सकता है। हिंद महासागर में भारत की बड़ी ताकत, इंडियन ओशन शिप सागर 26 मिशन पूरा कर स्वदेश लौटा। मिशन की सफलता पर कोच्चि में ध्वजारोहण समारोह का आयोजन, नौसेना के अधिकारियों और जवानों का किया गया स्वागत। IOS सागर 26 मिशन के सफल समापन पर अधिकारियों और नौसैनिक कर्मियों का किया गया सम्मानित। 17 देशों के नौसैनिक कर्मी मिशन में हुए थे शामिल। अकोला में अनोखी शादी, दूल्हा दुल्हन ने ट्रैक्टर से की एंट्री। किसानों को समर्थन देने के लिए दूल्हा दुल्हन खेती संस्कृति को उन्होंने सम्मान देते हुए ये किया। गांव के लोगों ने भव्य तरीके से उनका स्वागत किया।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
3: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में कहीं है नट। तो कहीं ड्रामा। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
5: सोशल मीडिया पर एक भावुक कर देने वाला वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग इंसानियत और मासूमियत दोनों की तारीफ कर रहे हैं। वीडियो में एक बच्चा सड़क किनारे महात्मा गांधी की तरह शांत और स्थिर खड़ा नजर आता है, जिसका पूरा शरीर सिल्वर पेंट से ढका हुआ है। वो एक स्टैचू की तरह खड़ा दिखाई देता है, लेकिन भीड़ में मौजूद लोग उसे नजरअंदाज कर आगे बढ़ जाते हैं। तभी एक छोटी बच्ची वहां आती है और बच्चे को ध्यान से देखकर समझ जाती है कि वो भूखा है। बिना किसी हिचकिचाहट के वो अपने हाथ में रखा खाना उसके साथ साझा कर देती है। इसके बाद दोनों बच्चे मिलकर सादगी और प्यार के साथ खाना खाते नजर आते हैं, जो देखने वालों का दिल छू लेता है। लखनऊ से सामने आया एक मजेदार वीडियो इन दिनों जमकर सुर्खियां बटोर रहा है, जिसे देखकर लोग ठहाके लगाने पर मजबूर हो जा रहे हैं। वीडियो में एक शख्स अपनी डॉगी को टहलाने निकला है, लेकिन खास बात यह है कि वो खुद पैदल नहीं बल्कि स्कूटी पर बैठा हुआ नजर आता है। वही डॉगी सड़क पर दौड़ता हुआ उसके साथ साथ वॉक कर रहा है और मालिक स्कूटी चलाते हुए उसकी रस्सी पकड़े हुए है। ये अनोखा नजारा देखकर लोग हैरान भी हैं और खूब एंटरटेन भी हो रहे हैं। वीडियो रिकॉर्ड करने वाला शख्स भी मजेदार कमेंट्री करता सुनाई देता है। देखो अंकल, स्कूटी से डॉगी घुमा रहे हैं, खुद नहीं चल रहे हैं, लेकिन डॉगी को जरूर टहला रहे हैं।
6: स्कूटी से कुत्ता टहला रहे हैं, तभी ऐसी हालत है। अब देखो इसकी स्कूटी से कुत्ता टहला रहे हैं। चलो कम से कम कुत्ता तो टहला रहे हैं, खुद नहीं टहला।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों।

0: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive Soul Groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
1: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
2: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn, and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
4: और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे अच्छी खबर सच्ची खबर
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा
8: ज्वाइन SRM ISC गाजियाबाद कैंपस विजिट SRMUP.in
9: इटली दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ने जॉर्जिया मेलोनी को गिफ्ट में दिया टॉफी का पैकेट मेलोनी ने कहा धन्यवाद कल पीएम ने मेलोनी के साथ किया था डिनर आज द्विपक्षीय वार्ता
10: प्राइम मिनिस्टर मोदी ब्रॉट अस अ गिफ्ट अ वेरी वेरी गुड टॉफी
9: केदारनाथ यात्रा मार्ग पर लैंडस्लाइड तेज बारिश में रात भर चला रेस्क्यू अभियान SDRF ने बचाई 10,450 यात्रियों की जान सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया कोची के नौसैनिक अड्डे पर INS सुनैना का ध्वजारोहण के साथ स्वागत इंडियन ओशन शिप सागर पहल के तहत तैनाती के दूसरे संस्करण सफलतापूर्वक संपन्न कर लौटा शिप ओडिशा के चांदीपुर में सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम का NIBE ने किया सफल परीक्षण पिन पॉइंट स्ट्राइक और ड्रोन से हमला करने में भी सक्षम तकनीकी खराबी के चलते बद्रीनाथ से लौट रहे हेलीकॉप्टर की चंबा आराकोट क्षेत्र में इमरजेंसी लैंडिंग पायलट समेत हेलीकॉप्टर में सवार सभी 6 यात्री पूरी तरह सुरक्षित राजस्थान के अलवर में भीषण गर्मी के चलते ट्रैफिक सिग्नल पर लगाए गए टेंट राज्य में पारा 46 डिग्री के पार रात में भी चलती है गर्म हवाएं
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए
11: कभी सोचा है आपने, अगर सूरज ना होता हमारी जिंदगी में तो क्या होता? फिर तो होता सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा, दिन तो होते ही नहीं, सिर्फ रातें ही रातें। तो बस हमारा तो यही कहना है सूर्यदेव से कि हमें छोड़कर कभी मत जाना। वैसे हम भी आपको छोड़कर कभी नहीं जाएंगे, इसी तरह लेकर आएंगे आपकी जिंदगी में एंटरटेनमेंट की रोशनी। तो चलिए फिर फटाफट शुरू करते हैं एंटरटेनमेंट का ये सफर। आज तो है हमारे पास आपके लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया का हर अपडेट। शुरू करते हैं हमारे एपिसोड हेडलाइंस के साथ।
12: सास बहू और बेटियां की एंटरटेनमेंट से भरी गुड न्यूज में आज देखिए, पार्टी में एक दूसरे की ताल से ताल मिलाएंगे प्रथा और प्रथम। शुरू होगा नच बलिए। जगधात्री और शिवाय में शुरू होगी नोक झोंक, रिश्तों पर उठेंगे सवाल।
13: कब तक तुम ये सब टॉलरेट करती रहोगी? जब जिसका मन चाहा आया, अपनी बात सुना के चला गया, जिसका जो मन किया उसने वो किया और चला गया।
14: तुम्हें तो रिलेशनशिप काउंसलर होना चाहिए।
13: तुम हर बार की तरह फिर से बात को घुमा।
12: होगी पति अनाड़ी यानी लाला और किशोरी की दोस्ती की शुरुआत।
15: चुप तो रहना, मुझे है पता तेरे प्यार का।
12: गुरु की चोट पर मरहम लगाएगी रूहानी। उन्नति और ध्रुव की होगी शादी, खुशियों पर विक्रम लगाएगा ट्विस्ट का ब्रेक।

0: गर्भवती ब्रह्मचारी में होगी शुरू बहसबाजी, ईशा देगी करारा जवाब। शेखर सुमन से खास मुलाकात, करेंगे उनके एकेडमी की सैर सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
1: हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ।
2: अरे इस कहानी के तो किरदार का नाम ही है सूरज, और सूरज देखिए आज तो सूरज के आसपास ही हम कर रहे हैं एंटरटेनमेंट की बातें। वैसे देखिए सूरज से जरा बचकर अगर ज्यादा पास जाओगे तो जल जाओगे, क्या ऐसी ही बात है यहाँ पर सूरज? तो चलिए लेकर चलते हैं आपको सूरज और ईशा के पास और पता करते हैं ऐसा क्या हो रहा है इनकी कहानी में। आज लेकर चलते हैं आप सबको पति ब्रह्मचारी के सेट पर।
0: घर में लगी अदालत, फैसला सही और गलत का।
3: अगर बेटा घर चलाता है तो बेटिया भी दो घरों को स्वर्ग बना के देता है।
0: ईशा ने उठाई आवाज, दंगल टीवी के सीरियल पति ब्रह्मचारी में आज घर में ही कोर्ट रूम ड्रामा चल रहा है। जी हाँ, घर में सभी लोग मौजूद हैं। असल में यहाँ बात हो रही है खुशबू के बच्चे की, जिसे उसने मोनिका और पूरन को सौंपा था। ऐसे में आज ताई जी भड़की हुई है क्योंकि खुशबू और मोनिका ने मिलकर ये सारा प्लान रचाया था, जिसके बाद अब खुशबू अपनी सफाई दे रही है। लेकिन ताई जी बात सुनने को तैयार ही नहीं, वो तो इसी बात पर अड़ी है कि खुशबू और मोनिका को घर से बाहर निकाल दिया जाए। ईशा अपनी बात पर अड़ी हुई है और उसने स्टैंड लिया, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है लड़का वर्सेस लड़की की, यानी कि घर के चिराग की। जिस बात पर ईशा भी ये बताना चाहती है कि लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों की ही अपनी जिम्मेदारियाँ होती है।
4: होंगे खुशबू बहू के पास हजारों कारण बच्चे बदलने के लिए, उनके घर का दीपक जलाने के लिए मैं अपने घर का चिराग नहीं दे सकती। ये गलत है और ये गलती दोनों ने की है, इसलिए खुशबू बहू और मोनिका इस घर में नहीं रह सकते।
5: हाँ सर, गलती तो सिर्फ मोनिका बहू की और खुशबू बहू से, पूरन भैया की भी उतनी ही गलती।
6: ईशा जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, पिता होने के नाते पूरन भाई बच्चों के सौदे में शामिल, पिता है वो पूरन भाई बच्चे के पिता है। इन्हें इस मामले से अलग कैसे कर सकते हैं?
4: सौ बातों की एक बात, खुशबू हो के घर वालों को बेटा चाहिए, ये इनके घर की परेशानी है। लेकिन इनके घर की परेशानी में चलते हम बेटी का बोझ नहीं उठा सकते। बेटा हमारा है, हमारे घर का वंशज है।
0: भाई ताई जी तो बात सुनने को तैयार ही नहीं और वो तो अपने वारिस पर ही अड़ी हुई है। ऐसे में ईशा फिर एक बार आवाज उठाती है और ताई जी को समझाने की कोशिश करती है, जिस बात से सूरज हो गए हैं काफी इम्प्रेस और घर वालों के सामने वो ईशा की बातों पर ताली बजाने लगते हैं।
4: हमारे बुढ़ापे का आश्रय होते हैं, वंश आगे बढ़ाते हैं, घर की परवरिश करते हैं, जिम्मेदारियां उठाते हैं। बेटों को जब माँ के कपड़े आने लगते हैं ना, तो बाप की चिंता बढ़ जाती है। जबकि बेटे के पैर में जब बाप के जूते आ जाते हैं, तो बाप की मेहनत वाले दो हाथों के बदले चार हाथ हो जाते हैं।
5: शादी के बाद एक नहीं दोनों घर वो ससुराल और मायके के बीच तालमेल बिठाते हैं। वो अपना सारा काम करती है, बच्चों की परवरिश करती है, फिर भी उसके सारे कामों को फर्ज का नाम देकर अनदेखा कर दिया जाता है। माँ बेटा पैसे कमा कर आता है और घर तो खुद ही बन जाता है। पैसा जरूरी है मानती हूँ, पर परिवार और रिश्तों को जोड़ के रखने के लिए बेटियों की दी गई मेहनत प्यार और मदद भी उतनी ज्यादा जरूरी है। अगर बेटा घर चलाता है तो बेटियां भी दो घरों को स्वर्ग बनाती लेता है।
7: बेसिकली जो पहले का वो जो छुपा के रखा था कि बेटा बेटी एक्सचेंज हुई है मोनिका भाभी और खुशबू भाभी के, तो वो राज अभी जाके खुलता है और बहुत सी बातें होती है कि ये बच्चों के लिए, क्योंकि खुशबू भाभी इमोशनल हो जाती है जब उनकी बच्ची घूम जाती है और उनका पहला रिएक्शन यही जाता है कि मेरी बच्ची मेरे पास दो। तो उसी से सबको राज पता चलता है कि ये खुशबू भाभी की बच्ची है और मोनिका भाभी का बेटा है। तो अब मोनिका भाभी को बेटा चाहिए और ताइमा फिर बेटी को नकारती है कि बेटी कुछ नहीं होती है, बेटी बोझ होती है, बेटा घर का वारिस होता है। तो वही ईशा भी कहती है कि एक बार इन दोनों की बातें सुन लेते हैं कि इन्होंने ये क्यों किया रीज़न, क्योंकि ताइमा उन्हें घर से बाहर निकालने वाली होती है। तो फिर एक कोर्ट जैसा छोटा सा सेटअप होता है कि मैं बैठी हूँ और ताइमा आमने सामने हम बैठे हैं एंड खुशबू भाभी और मोनिका भाभी खड़ी है वो अपनी अपनी बात रखने के लिए। तो ताइमा वही सारी बातें करिए कि बेटियाँ बोझ होती है, बेटा वारिस होता है, बेटा ये काम करके घर का चिराग होता है, कुलदीप बन जाता है। और मैं बेटियों का स्टैंड ले रही हूँ कि बेटियाँ भी कम नहीं होती है, बेटियों को आप ऐसे नकार नहीं सकते, क्योंकि कितनी बेटियाँ इसलिए पैदा होने से पहले ही मार दी जाती है। तो वो दोनों अपने अपने राइट्स की बात कर रहे हैं, ताइमा अपने ज़माने से जो चलते आ रहा है और ईशा अभी जो ज़माने के लिए स्टैंड लेती हुई। तो ये सारी बातें हो रही थी।
0: अब इन सब के बाद घर में एक और बवाल शुरू हो जाता है जहाँ पर मोनिका करती है सुसाइड ड्रामा। उसने उठा लिया है चाकू और वो अपने हाथ की नस काटने को तैयार है। ऐसे में पूरन के साथ साथ सभी घर वाले काफी घबरा गए हैं।
7: हाँ हाँ, तो वो बच्चों को लेकर ताना मारती है कि आप दोनों क्या समझा रहे हैं, आप तो ब्रह्मचारी है, आपको बच्चे होने का क्या ही वो फील है, क्या ही महसूस करेंगे, आपके एक अपना बच्चा क्या होता है। तो यही सारी चीजें और ईशा सूरज सैड में लुक एक्सचेंज करते हैं।
0: तो भाई ईशा और सूरज मिलकर कैसे इस सिचुएशन को संभालेंगे और कैसे रिश्तों को सुधारेंगे, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। मुंबई से कैमरामैन अजय उग्रेजा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
2: अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, सुबह तो उसे छुपना ही है, यही कह रहे हैं आज हमसे हमारी मंगल। ऐसे मंगल बात तो सही है, क्योंकि अल्टीमेटली तो होती ही है बुराई पर अच्छाई की जीत। तो क्या कुछ हो रहा है मंगल की इस कहानी में, क्या यहाँ भी हो रही है बुराई और अच्छाई की लड़ाई? ऑफकोर्स यस, लेट्स चेक इट आउट।
0: शुरू हुआ खेल क्रिकेट का, मंगल की बल्लेबाजी,

मंगल और जयराज ने बदला भेस। कलर्स टीवी के सीरियल मंगल लक्ष्मी में आज हो रहा है क्रिकेट कंपटीशन, जिसमें हिस्सा लिया है जयराज, मंगल और सामने है अदित। वह यहाँ पर मंगल कर रही है बैटिंग, तो वहीं बॉलिंग कर रहे हैं अदित, जो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मंगल ये खेल हार जाए। इसीलिए तो वो मंगल की बैटिंग पर मुश्किल बॉलिंग कर रहे हैं। लेकिन मंगल भी कहाँ हार मानने वाली है, उसने तो ठान लिया है कि वो जीत कर ही रहेगी, क्योंकि सवाल उसकी बेटी का जो है।

तेरे लिए एक मौका है, मेरा यहाँ रहना इशाना को बचा सकता है। ये सब उनकी बेटी के लिए ही कर रहे।

वही बात जब इन सब से भी नहीं बनी तो देखिए कैसे अदित पहुंच गया है मंगल को खरी खोटी सुनाने के लिए। लेकिन अदित को ये नहीं पता मंगल पर अब इन सब का कोई भी असर नहीं होने वाला है, क्योंकि उसके साथ जयराज जो है

0: सभी ही मंगल ने जीत हासिल कर भी ली।
1: अचानक से कोई इमरजेंसी आ जाए तो फिर वो लास्ट बॉल पर तुक्का मारने जैसा ही क्यों ना हो, वो की पूरी ताकत लगा देती है। मैंने भी वही किया। मैं आभारी हूँ जयराज जी, इन्होंने मुझे हर पल बढ़ावा दिया। जयराज जी ये चौकी की देरी है।
0: वहीं दूसरी तरफ आ गया है एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर एक बार खेल शुरू होने वाला है, लेकिन यहाँ पर मंगल और जयराज अपना भेष बदल रहे हैं। जयराज मंगल को पगड़ी बांध रहा है, दाढ़ी मूछ लगा रहा है

0: और ऐसे में ये दोनों ही बन गए हैं पंजाबी। तो भाई अब ये क्या कहानी में नया मोड़ लाएंगे और क्या बहरूपिया बनकर सच का खुलासा करेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
1: का जुनून सर चढ़ के बोलता है ना, तो इंसान इंसान नहीं, वो तो आशिक बन जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है यहाँ पर भी एंटरटेनमेंट का जुनून। चलिए लेकर चलते हैं आपको गुरु और रूहानी के पास, क्योंकि इनकी कहानी भी लेकर आती है हमारे लिए एंटरटेनमेंट की सनशाइन। लेट्स चेक इट आउट।
2: इश्क बुलावा
0: को लगी चोट,

0: गुरु और रूहानी के हसीन पल। दंगल टीवी के सीरियल इश्क जुनूनी में गुरु हो गया है घायल और देखिए कैसे अपनी इस चोट को लेकर वो अपने कमरे में आया है और खुद ही अपने पैर की मरहम पट्टी कर रहा है। लेकिन तभी वहाँ पहुँच जाती है रूहानी जो गुरु से फर्स्ट एड बॉक्स छीन कर उसकी मरहम पट्टी करने लगती है।
1: हमारी चोट हमारा
2: जमा,
1: हम देख लेंगे।
2: क्या हुआ? लाओ पट्टी को दर्द हो रहा है?
3: हुआ जो दर्द

दोनों के रिश्ते में काफी गलतफहमियां हैं, लेकिन दिल में प्यार बेहद है। तभी तो देखिए कैसे चोट तो गुरु को लगी है, लेकिन दर्द रूहानी को हो रहा है। कैसे वो गुरु की चोट पर मरहम पट्टी कर रही है और बड़े ही प्यार से उसे कोई तकलीफ ना हो इसका पूरा ध्यान भी रख रही है। ऐसे में गुरु भी चुपचाप रूहानी से मरहम पट्टी करवा रहा है।

0: लेकिन ये प्यारे मोमेंट्स जल्द ही झगड़े में बदल गए जब रूहानी गुरु से सवाल करने लगी और फिर उसके परिवार पर करने लगी शक, जिस बात पर गुरु भड़क गया है और फिर एक बार इनके रिश्ते में दरार पड़ गई है।
1: जब से हमारे घर वालों ने तुम्हें स्वीकारने से मना कर दिया ना, तो मैं अपने दुश्मन नजर आ रहे, तुम्हें तुम्हारी माँ तक को नहीं छोड़ा, तो तुम्हारे साथ हर जगह खड़ी।
2: बोलो
0: भाई, गुरु को तो अपने परिवार पर पूरा विश्वास है, उसे ये नहीं पता कि रूहानी सच कह रही है। वहीं दूसरी तरफ गुरु की असली माँ इस कमरे में बंद है और उसे कुछ बुरा होने का एहसास भी हो रहा है। तो भाई अब देखना होगा कब और कैसे रूहानी सच का खुलासा करेगी, तब जाकर गुरु को उस पर विश्वास होगा। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
3: मुझे पता ही ना लगा, पर वो चलता रहा, मैं देखता रहा और वो ढलता रहा। जी हाँ, ऐसे ही होते हैं हमारे सूर्यदेव, यूं मिनटों में ढल जाते हैं और हमें रियलाइज भी नहीं होता। और यहाँ है आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट की सनशाइन, लेकर हाजिर हैं हम आपके लिए ये अगली कहानी, जिसमें फिर से कहानी का लेखक लेकर आया है एक इंटरेस्टिंग ड्रामा। यानी यहाँ तो होगा 100% एंटरटेनमेंट। लेकर चलते हैं आप सबको हमारी इस अगली कहानी की ओर।
0: और किशोरी की नोकझोंक।
4: चाहे कुछ न कहना,
0: पति अनाड़ी की नाराजगी ना।

केबल टीवी के सीरियल पतिया नाड़ी में आज लाला और किशोरी की खट्टी मीठी नोक जोक देखने को मिल रही है, जहां पर किशोरी से लाला नाराज है और किशोरी उसे मनाने की कोशिश कर रही है और इसी बीच दोनों में नजदीकियां भी बढ़ रही है।

0: वाला तो अनाड़ी है, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आता, लेकिन लगता है कि किशोरी अब धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रही है कि लाला ही उसकी जिंदगी है और उसका पति। ऐसे में देखिए कैसे यहाँ पर हो सकता है कि इनकी दोस्ती की शुरुआत हो जाए।
1: ये अजीब बात है, हाथ हाथ खींचो अलग, उसके बाद मुझे बोल रहे कि मैं रोमांस कर रही हूं।
2: लाला तो भोला है, उसको तो दोस्त चाहिए थी, अब ये रोमांस कर रही हूं तो मैं क्या करूं।
1: अरे पर वो एक फीलिंग आ जाती है ना, कोई लड़का अगर ऐसे टच करे तो।
2: मुझे थोड़ी कोई लड़का टच कर रहा है, मुझे क्या
1: पता। मैं बता रही हूं ना, मैं लड़की हूं ना। तो बस यही है, मतलब मस्ती चल रही है, मजा, मतलब ऐसे मजा आ रहा है।
2: अच्छा, एक बहुत अच्छा है, हाँ,
1: सुंदर सा,
2: आप देखोगे तो मजा आएगा।
1: हाँ, बहुत मजा आएगा। अभी जैसे हमने एपिसोड में भी देखा होगा कि फाइनली किशोरी एक्सेप्ट कर चुकी है कि अब लाला ही मेरा पति है, तो मुझे ये निभाना होगा और आगे बढ़ना होगा। बट लाला,
2: लाला का तो एक ही पीओवी है कि लाला को इसने बोला था कि नदी में कूद जा, लाला जाके कूद गया और उसके बाद लाला इससे गुस्सा हो चुका है और कट्टी हो चुका है। अब लाला का नया एजेंडा है लाला की नो लाली, और ये एक्स लाली हो चुकी है अब, तो लाला इससे बात नहीं करेगा।
1: और मैं चाहती हूँ कि मैं कैसे भी करके इनको मनाऊँ ताकि मैं इस घर में रह सकूँ, और क्योंकि यशोदा जी ने बोला है कि अगर तुम इसके कमरे तक नहीं पहुँच पाए तो तुम इस घर में भी नहीं रह सकोगी। तो मेरा एजेंडा यही है कि मैं बस कैसे भी करके मना लूँ लाला को,
2: और लाला को मनाने के लिए जितने एफर्ट ये करेगी वो देखने में आपको मजा आएगा,
1: बहुत मजा आएगा।
0: वहीं दूसरी तरफ किशोरी के खिलाफ प्लानिंग शुरू हो चुकी है। असल में घर में होने वाली है पूजा, और निशांत ने कान्हा की मूर्ति और कुछ जेवर चुराए थे, लेकिन बुआ जी ने वो जेवर और मूर्ति कबाड़ी वाले को बेच दी है, जिस वजह से अब निशांत हो गया है काफी परेशान। और इनकी ये सारी बातें सुन लेती है मंजरी, जिसके माइंड में आ जाता है ख्याल इसी बहाने किशोरी को फंसाने का।
3: चलो, लेट हो रहा है।
4: बस आप चलिए, हम आ रहे हैं।
5: अपना पहले सामान चेक करना, उसके बाद रद्दी के रद्दी वाले को पहले चेक करना ध्यान से। आज करना असली सोना यही तो है ना मंजू दी, रद्दी ही सोना है आजकल तो चेक करना फिर देना।
3: हाँ, है कि नहीं पापा? चल अब अपना काम दे, हमें सिखा रहे हो देखिए मंजू। अरे जब से तू पैदा भी ना था उसके पहले से रद्दी बेच रहे हैं।
5: अरे भैया फिर भी चेक करना, आंखें चार रखना फिर देना।
3: चलो

0: ना इसी विशुद्ध सी बातें हमको हार्ट अटैक आ जाएगा कारण
1: यानी कि अब मंजरी किशोरी के खिलाफ चाल चलेगी और उसे चोरी के इल्जाम में फंसाएगी।
2: इनका पूछना है कि कहीं ना कहीं आप मुसीबत में फंस चुके हैं अब, क्योंकि जवाहरात बेचने थे हमें किसी बड़े सुनार को और ले गया कबाड़ी वाला
3: है। तो इसे कहते हैं कि एक लोहार की और 100 सुनार की पता नहीं मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, बट आने वाले एपिसोड में आपको पता चलेगा कि किस तरह से हमारे हाथ से चिड़िया चुग गई खेत, है ना, मूर्ति मतलब भी चली गई।
2: कोशिश थी कि हमारे हाथों में सोना लग जाए और बस अब तो जिंदगी के सारे रास्ते खुल गए।
3: आइए देखिए, ये सबसे आसान स्केप गोट है हमारे लिए। हमारे घर में कुछ भी गड़बड़ होती है तो किसने
4: मेरे
3: किया? नहीं, बहुरानी ने किया है ना।
2: सब में रास्ता यही निकालती है।
4: सो मैं भी ऐसी करूँ, ऐसी करूँगी मैं, 1, 2, 3 को।
2: हाँ देखिए, बकरा तो कौन बनने वाला है तो कैसे बताएं, ऑडियंस को मालूम चलेगा, लेकिन बच जाती हूँ ना बकरा बनते बनते। हाँ, बकरा बनाना चाहती है मंजरी किशोरी को, लेकिन अब बनती है कि नहीं बनती है वो थोड़ा क्रिस्प वाली बात है।
3: ये हम अपने चलाई हुई चालों में हम खुद ही फंसते हैं, ये तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। सो इस बार ये फंसेगी कि हम फंसेंगे।
2: बस कर यार।
1: जी हाँ, ये तो देखना होगा कि क्या किशोरी वाकई फंस जाएगी या फिर वो खुद सच का खुलासा कर देगी। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
5: लेकर हाजिर हैं हम आपके लिए एंटरटेनमेंट से भरपूर हमारी ये अगली खबर, जिसमें है आपके लिए एंटरटेनमेंट की सनशाइन, क्योंकि अब तो लेकर चल रहे हैं हम आपको दी वेरी टैलेंटेड एक्टर, एंकर एंड होस्ट शेखर सुवन जी के पास। वैसे शेयर कर रहे हैं वो हम सबके साथ एक बहुत बड़ी गुड न्यूज, खोली है उन्होंने अपनी फिल्म अकेडमी जिसका नाम है शेखर सुमन फिल्म अकेडमी, जहां पर ट्रेन करेंगे वो एस्पायरिंग एक्टर्स को। तो चलिए करते हैं शेखर जी से खास मुलाकात।

0: गिरा दिया ना, अब क्या भाई जमीन से उठा उठा के हलवा खाएंगे?
1: सॉरी
0: सॉरी, भाई को सॉरी बोलो।
1: सॉरी भैया।
2: और शानदार होस्टिंग से टीवी का ओरिजिनल सेलिब्रिटी शो मूवर्स एंड शेकर्स बनाया।
3: मेरा एक मित्र है, उनकी पत्नी एक बड़े हॉस्पिटल में नर्स है, लेकिन बेचारे जब भी बीमार पड़ते हैं अपनी बीवी के हॉस्पिटल में नहीं जाते। मैंने पूछा, भाई क्या बात है, वहां क्यों नहीं जाते? वो बोले, जाऊं कैसे यार, वहां अपनी बीवी को भी सिस्टर बोलना पड़ता है।
2: और अब उन्होंने अपने सालों का एक्सपीरियंस नई जनरेशन को देने के लिए शुरू की है शेखर सुमन फिल्म एकेडमी, जहां बड़े बड़े एक्टिंग स्टूडियोस, कैमरा प्रैक्टिस रूम, डायलॉग ट्रेनिंग एरिया, डांस सिंगिंग प्रैक्टिस रूम, एडिटिंग स्टूडियोस, और वो सब कुछ है। और वो सब कुछ होगा जो एक स्ट्रगलर को चाहिए, यानी यहाँ एक्टिंग नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा। तो आइए करते हैं मुलाकात शेखर सुमन से और जानते हैं इनकी फिल्म एकेडमी के बारे में और करते हैं सैर उनके इस सपनों की दुनिया की।
4: हमने देखा है कि कितनी वैरायटी लगती है जब आपका नाम आता है, शेखर सुमन, एक्टर, प्रोड्यूसर, तो इतनी सारी चीजें आ जाती है। तो आई थिंक उसी का एक एसेंस इस वक्त हम देखने भी वाले हैं, उसी का एक सारांश जो यहाँ पर है, जो लोगों तक पहुँचने वाला है। किस चीज की नई शुरुआत हो रही है?
5: और हमारी शेखर सुमन फिल्म एकेडमी SSFA की शुरुआत हो रही है, जो एक हाँ बहुत दिनों से था, ये मेरे दिमाग में बहुत दिनों से था कि एक लंबे सफ़र के बाद, जब 3.5 दशक से ऊपर आप काम कर लेते हैं, 4 दशक तक फिल्मों में, तो जो आपका तजुर्बा रहता है, क्योंकि आपने स्टेज पे भी काम किया है, प्रोफेशनल स्टेज एक्टर रहे हैं, हमने डिप्लोमा लिया एक्टिंग में, हमने फिर फिल्मों में काम किया, टेलीविजन में काम किया, OTT में कर रहे हैं, तमाम टॉक शोज, गेम शोज, जो जो जितना कुछ हो सकता था किया, लिखना, डायरेक्शन, सब कुछ, जो जो हासिल हुआ, जो तजुर्बात जो भी हुए, वो अब एक वक्त आता है जब लोगों कहता है कि अब ये मेरा सरमाया है, मुझे इसको वापस करना है लोगों को। तो वो वक्त आया और वो दिमाग में ये था कि जो मैंने सीखा है, और बहुत सारे जो लोग तमाम न्यू कमर जो छोटे शहरों से बड़े बड़े ख्वाब लेके आते हैं और कभी कभी भटक जाते हैं क्योंकि उनको सही रास्ता नहीं मिलता, सही जगह जाना बहुत ज़रूरी है। सही, जिस तरह से सही पढ़ाई के लिए हमें सही स्कूल भेजा जाता था, सही पढ़ाई के लिए सही कॉलेज जाते थे, सही यूनिवर्सिटी, उसी तरह से एक्टिंग को सीखने के लिए या एक्टिंग को और बेहतर बनाने के लिए, मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि एक्टिंग सीखी नहीं जा सकती, लेकिन जो क्वालिटीज़ हैं उनको बेहतर बनाई जा सकती है, उसके लिए एक ख़ास किसी एकेडमी में या इंस्टीट्यूट में जाना बहुत ज़रूरी है, जहाँ आपको पढ़े लिखे लोग और जो लोगों ने अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस हासिल किया वो आपको वो सिखा सकें या बता सकें या बेहतर आपको बना सकें। तो उसी को लेकर, और उसमें हमने कहा कि जब एक छत्रछाया में ये सब आएंगे, जहाँ एक्टिंग है, स्पीच है, स्पीच पे ख़ास तौर पे बहुत तवज्जो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं फिसलते जा रही है, लोगों की पकड़ उस पर कमज़ोर होती जा रही है, हिंदी ख़राब होती जा रही है, ख़राब क्या हो चुकी है और बद से बदतर हो रही है वहाँ, और साथ में और जो विधाएं हैं उसमें, जैसे सिनेमाटोग्राफी है, VFX है, DI है, जैसे रिकॉर्डिंग है, डबिंग है, ये तमाम चीज़ें जो हमारे स्टूडियो में हम मुहैया कराएंगे कि आप जो एक एक्टर बनने आया है वो ये भी जान सके और सीख सके कि डबिंग कैसे की जाती है, वो भी उसका हिस्सा है, और ये भी जाने कि VFX कैसे होता है, वो भी जाने कि इसमें, इस कैमरे में कौन सा लेंस लगा है, मुझे इस कैमरे के आगे कैसे खड़ा होना, वगैरह वगैरह, लाइटिंग, जो भी चीज़ें हैं इससे जुड़ी हुई हैं, इस क्राफ्ट से, उनको जानने और पहचानने की बहुत ज़रूरत है। तो इस लिहाज से एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स जिसमें फैकल्टीज हैं, जिसमें अलग अलग प्रोफेशनल्स, ट्रेन प्रोफेशनल्स आपको ये सिखाएंगे, उसको लेके ये एकेडमी की स्थापना हुई है, और उम्मीद करते हैं कि पहले बैच के बाद एक लोगों को एक दिशा मिलेगी और मेरा भी ख्वाब पूरा होगा जो मैं करना चाहता था।
4: बिल्कुल, और ये सारी तमाम जानकारी जो हमने इनसे अभी हासिल की है वो अब हम देखेंगे भी कि किस तरह से इस एकेडमी को सजाया गया है, बनाया गया है। तो आइए शुरुआत करते हैं यहाँ पर, क्योंकि आई थिंक जिस तरह से गणपति बप्पा विराजमान है यहाँ पर,
5: आशीर्वाद देते हैं। आप दाखिल होते हैं यहाँ, और दिस इज वेयर आप ये देखेंगे सबसे पहले, एक CEO हैं जो एकांत बबनी साहब, वो यहाँ बैठते हैं और अभी सब चीज की शुरुआत होने वाली है। दिस इज दी एकेडमी, अभी सब हम समझ आ रहा है?

सो दिस इज ये यहाँ पर ही ये पूरी एकेडमी है जहाँ पर लोग बैठेंगे सीखेंगे. ये मेरे लिए छोटी सी जगह है. ये कुछ मेरे कुछ ख्यालात कुछ कोट्स हैं जो दीवारों पे लगे हैं. विच इज़ एसेंशियल फॉर एन एक्टर टू नो लाइक बी कॉन्फिडेंट नॉट एरोगेंट. मतलब इतना विश्वास अपने पे रखिए पर वो अहंकार नहीं होना चाहिए. मुझे सब मालूम है, मुझे अब सब आता है, मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है. मैं भी एक दिन स्टूडेंट बन के ही क्लास में गया था, बैठा था, वहाँ भी टीचर्स आए थे और फिर एक्टिंग की एक नई परिभाषा शुरू हुई थी. वो सब कुछ है. मैंने कहा कि उसी जर्नी से मैं उनको, उस सफ़र से मैं उनको ले जाना चाहता हूँ. ये कुछ पसंदीदा फिल्में हैं मेरी जो मेरी ज़िंदगी में और हर एक्टर की ज़िंदगी का हिस्सा होना चाहिए. और ये मेरी पहली फिल्म उत्सव जहाँ आप देख सकते हैं मैं हूँ. ग्रीस, गॉडफादर, पल्प फिक्शन, रेन मैन, दीवार, रोप, मदर इंडिया, गॉन विद द विंड, कासाब्लांका, शशांक रिडेम्पशन. अपने नॉस्टैल्जिया तो इन फिल्मों को देखने का है जब हम फिल्में देखा करते थे और हर फिल्म से इतने मुतासिर होते थे, देखते थे और लोगों के परफॉर्मेंस हमें देख के ही लगता था कि भाई एक दिन हम भी इसी तरह से पर्दे पे होंगे, हमें भी एक किरदार दिया जाएगा. और वो हुआ उत्सव के साथ. मतलब वो हमने तो कभी नहीं सोचा था ख्वाब में कि मुझे रेखा जी के साथ काम करने का मौका मिलेगा. ये एक इम्पॉसिबल सी बात थी, एक नामुमकिन सी बात थी जो हुई. और बम्बई आने के कोई 15-20 दिन के बाद ये ब्रेक मिला. एक दो महीने में मैं इनके साथ शूटिंग कर रहा था और उनको तमाम फिल्मों में देखता आया था, बड़ा मुरीद हूँ उनका. और ये मौका मिला तो किस्मत जो है वो आपको हैरत अंगेज कारनामे दिखाती रहती है. तो ख्वाब देख के आइए और ये तय करके आइए कि बहुत मेहनत करने वाले हैं हम. मुझे सिर्फ स्टार नहीं बनना है, मुझे एक होनहार फनकार, एक कलाकार बनना है, अभिनेता बनना है या अभिनेत्री बनना है. और चीज़ें अपने आप देखिएगा अपने अपनी जगहों पे आके वो फिट हो जाएंगी वो सब चीज़ें. तो बस ये एक सोचिए एक मंदिर की तरह है जहाँ आप इबादत करेंगे अपने क्राफ्ट की, अभिनय की. और बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों से, अलग अलग दिशाओं से, अलग अलग डिपार्टमेंट से यहाँ आएंगे. डायरेक्टर्स आएंगे, दूसरे फेलो एक्टर्स आएंगे, सिनेमाटोग्राफर आएंगे, थिएटर डायरेक्टर्स आएंगे, एक्टर्स आएंगे जो यहाँ पर हमारे साथ, जब मेरे साथ भी और अलग से भी, उन लोगों को बताएंगे अपना तजुर्बा, उनको कुछ सिखा के जाएंगे. तो एक बहुत ही काबिल लोगों के बीच में ये लोग रहने वाले हैं जो लोगों ने ज़िंदगी में जो जिन्होंने बड़ा मकाम हासिल किया हुआ है अपनी मेहनत से, अपनी सोच से और अपनी विधा से. और मिरर तो ये तो सबसे बड़ा और सबसे सच्चा साथी है ये एक एक्टर का, एक्टर का. क्योंकि आईना कभी झूठ नहीं कहता. यहाँ खड़े होके अगर आप अपने खुद से बात कर सकते हैं और अपने जज्बात का इजहार कर सकते हैं तो बिल्कुल सही है. समझ लीजिए कैमरा है, यही कैमरा है और आप बात कर रहे हैं. इस मिरर में जो अक्स दिखाई दे रहा है वो आपका भी है और हजारों करोड़ों दर्शक जो आपको उस तरफ से आपको देख रहे हैं. तो आप देख सकते हैं कि जब वो आपको देखेंगे तो आप कैसे दिख रहे हैं. तो ये एक आपका सच्चा साथी जो आपका साथ कभी नहीं छोड़ता है, इसे कभी मत भूलिएगा. यहाँ वो जगह है जहाँ लोग बैठ के बातें करेंगे और हम उनसे मुखातिब होंगे और ये एक रिश्ता जो है बड़ा खूबसूरत बनने वाला है. हम समझेंगे कि हर रोज़ ये एक छोटा सा मंच भी बन जाएगा जहाँ वो परफॉर्म किया करेंगे. बहुत सारे सीन्स, बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस उनको दिए जाएंगे, कल्पना से परे भी जो किए जा चुके हैं, जो हो चुके हैं, जो होने वाले हैं, जो हो सकते हैं, जो नहीं हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें, तमाम चीज़ें यहाँ पर की जाएंगी. इनैक्टमेंट जहाँ आपके सोलो परफॉर्मेंसेज रहेंगे, साथ में होंगे, ग्रुप परफॉर्मेंसेज होंगे. तो एक सिनर्जी बिल्ड होगी जहाँ एक जब माहौल बन जाता है ना उस तरह का, तो वातावरण बड़ा, उसको कहते हैं कि एटमोसफियर बहुत इलेक्ट्रीफाइंग हो जाता है. फिर हर चीज़ जो आप करते हैं वो आपके आपके क्राफ्ट से जुड़ जाती है, आपके एक्टिंग से. फिर आप वही सोचते हैं. 3 महीने तक का ये जो कोर्स है वो बहुत इंटेंसिव और बहुत इंटेंस कोर्स है ना. और इसको करने के लिए इतने लंबे अवधि की ज़रूरत नहीं है कि आप 3 साल तक एक ही चीज़ सीख रहे. आपको सिखा दिया वो विधा, बस आप नाउ यू गो फ्लाइंग. आइए आपको और आगे की चीज़ें भी दिखाते हैं. यहाँ से हम निकलते हैं तो बाकी एक, ये मेरा एक छोटा सा कैबिन है, ये अभी तैयार नहीं हुआ है, जहाँ मैं बैठा करूँगा. ये एक पूरा VFX, पूरा आप अंदर जाके देखें VFX का काम हो रहा है. एडिटिंग रूम्स हैं वहाँ, पूरे अलग अलग स्वीट्स हैं. एक एडिटिंग रूम यहाँ भी है
जहां हमारे शो का जो अभी फिलहाल चल रहा है, तो ये वहां एडिटिंग चल रही है। ये तो कैफेटेरिया जहां पर लोग आते हैं खाली वक्त पे बैठ के काफी खाना। ये रितिका जी हैं, इनका बड़ा हाथ है जो हम शो कर रहे हैं शेखर टुनाइट। ये अर्जुन साहब हैं, ये प्रोडक्शन हेड हैं। एक एक चीज, एक एक चावल का दाना, दाल, खाना पीना, बम्बू तंबू खम्बू जो भी है सब इनकी वजह से होता है। एक एक एसी की जो हवा हमारे चेहरे पे आती है, जहां हम सुकून महसूस कर सकते हैं, गर्मी नहीं लगती, आराम से काम कर सकते हैं, इट्स ऑल थैंक्स टू हिम। आई आई हम डबिंग की बात कर रहे हैं। एक तो यहाँ बड़ा अभी बन रहा है, यहाँ बिग स्क्रीन पे ये जैसे फिल्मों की डबिंग वगैरह के लिए, ये अभी स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो ये बन रहा है। ये बड़ा है, काफ़ी बड़ा, इतना बड़ा किसी स्टूडियो में नहीं होता। छोटे छोटे टीवी पे आजकल डब करना होता है कि बड़े स्क्रीन पे है। और ये हमारा डबिंग का और म्यूजिक का रिकॉर्डिंग का रूम बड़ा सा। हाय, यहाँ पूरी रिकॉर्डिंग होती है गानों की। वहाँ देखे खड़े होके कोई भी सिंगर गाता है या वहाँ डबिंग होती है, सारी मिक्सिंग वगैरह सारा सारा कुछ यहाँ होता है। तो एक बड़ा स्पेस जो है, और ये बड़ी एक जटिल सी चीज़ है वही जाने, लेकिन वो एक्टरों को यहाँ पर लाया जाएगा, बताया जाएगा, उस सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कैसे होता है, कैसे गानों को मिक्स किया जाता है, कैसे रिकॉर्डिंग होती है, कहाँ सिंगर खड़ा होता है, माइक कितनी दूर होता है, लिप सिंक कैसे करते हैं जब डबिंग करते हैं। तो वहाँ आप अपने आप को देख पाएंगे और डब कर पाएंगे वो स्क्रीन पे जो पीछे आपको दिखाई दे रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ संगीत को लेके, मुझे और वो भी एक एक्टर का एक बहुत अहम हिस्सा है। बल्कि पुराने जो बहुत पुराने अभिनेता थे, वो एक कंडीशन थी कि जो एक्टर सिंगर थे उन्हीं को एक्टिंग का रोल मिलता था। जो अगर आप गा नहीं सकते तो आप एक्टर नहीं बनते। तो पुराने अशोक कुमार, केएल सहगल वगैरह जब थे तो वो सब सिंगर्स थे और उन्हीं को ये मौका मिलता था। और बाद में प्लेबैक आ गया, लेकिन जब आप फिल्मों में भी गाते हैं तो आप गायकी से अगर वाकिफ नहीं है, अगर संगीत, तो वो आप वो ना एक्सप्रेशन डाल सकते हैं ना उस किस्म का लिप सिंक कर सकते हैं। तो वो सब जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं आज भी रियाज करता हूँ, दो दो घंटे रियाज करता हूँ संगीत से जुड़ा। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये जानना समझना कैसे ये सब अभी भी होता है।

0: इसी का दूसरा हिस्सा जो आप बाहर अंदर से देख रहे थे। हर जगह ये सब लोग जो हैं, बताइए इनको सब चीज के बारे में बताइए।
1: यहाँ पर हमारे सारे गाने बनते हैं, यहाँ पर शेकर्स टुनाइट के सारे मेजर गाने बनेंगे, और जो अभी तक आपने नोटिस नहीं किया वो सब भी बनने वाले।
0: और आगे क्या होगा?
1: आगे हमारे बहुत सारे नए जो इंडस्ट्री के म्यूजिशियंस हैं, सिंगर्स हैं, उन सब वो लोग सब इधर आएंगे, उनके साथ स्पेसिफिक हमारे गाने बनेंगे, और वो सब अभी आप सब सुनेंगे।
0: डबिंग सब
1: शेखर सर यहाँ पर डब करते हैं, यहीं पर खड़े होते हैं।
0: तमाम जो एक्टर्स आएंगे वो डब करेंगे, और जो सीखने आएंगे उनको।
1: और जस्ट टू टेल यू सर, वन टेक आर्टिस्ट है सर, एक बारी लेते हैं उसके बाद चले जाते हैं बस। तो एक बारी में जो सर से हम ले सकते हैं हम वो लेते हैं।
0: ये हमारा एक कॉन्फ्रेंस रूम है, दैट्स इट, इसमें अभी तो लोग बैठे हैं, पर ये कॉन्फ्रेंस है तो बहुत सारी बातें और बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट्स हम लोगों को डिस्कस करने होते हैं या प्रोग्राम्स के बारे में डिस्कस करना होता है, ये बहुत सारी बातें।
2: भाई मानना पड़ेगा, शेखर सुमन फिल्म अकेडमी का हर कोना यही कहता है कि हीरो बनना है तो मेहनत यहीं से शुरू होगी। स्टूडेंट्स को सिर्फ डायलॉग्स बोलना नहीं बल्कि इमोशंस फील करना सिखाया जाएगा, क्योंकि शेखर सुमन ने अपने करियर में साबित किया है कि रियल परफॉर्मेंस वही है जो सीधा दिल तक पहुंचे। तभी तो ये सिर्फ एक एक्टिंग एकेडमी नहीं बल्कि ड्रीम फैक्ट्री है, जहां टैलेंट को सिर्फ मौका नहीं बल्कि सही दिशा मिलेगी।
0: उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और आप अगर सोच रहे हैं एक्टर बनना चाहते हैं, किसी एकेडमी में जाना चाहते हैं, तो ये खास जगह है जहाँ एक छत के नीचे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं खुद व्यक्तिगत तौर पे हर रोज़ वो क्लास अटेंड कर सकूं, आप लोगों को पढ़ा सकूं, जिस मकसद से मैं आगे बढ़ाऊं। और ये गाइडेड टूर जो मुझसे करवाया गया, जो दिखाया गया, वो हमारी एक जगह है जहाँ मैंने कहा कि वो तमाम चीज़ें, जैसे VFX है, जैसे डायरेक्शन का कोर्स है, सिनेमाटोग्राफी है, DI है, रिकॉर्डिंग है, डबिंग है, जो भी है वो सब आप देख सकेंगे, सीख सकेंगे। एक एक्टर के लिए भले ही ये आप करें ना करें, पर इसकी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों से SSFA में बहुत जल्दी मुलाकात होगी और एक नए सफ़र का आगाज़ होगा।
2: वैसे इस नई इनिंग के साथ बता दें कि शेखर सुमन 14 साल बाद फिर से अपना सेलिब्रिटी टॉक शो शेखर टुनाइट लेकर आ रहे हैं, वो भी YouTube पर, जिसमें ढेर सारी बातें होंगी, हंसी मजाक होगा, पोल भी खुलेगी और तंज भी कसे जाएंगे, और उसके लिए शेखर सुमन बहुत एक्साइटेड है।
0: जी जी, ये तो मेरा सबसे ही खूबसूरत अभी प्रोजेक्ट है इस वक्त, शेखर टुनाइट, और बहुत सालों से लोगों ने इंतज़ार किया, मैंने इसका इंतज़ार किया, और फाइनली वो वक्त आ गया है। और इसका टीज़र इतना लोगों ने पसंद किया, आज 100 बेस्ट प्रोमोज में वो शुमार हो गया है, और बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन उम्मीदों के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियाँ हैं, और जिम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं, और हमारी मेहनत अभी बरकरार है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरे, और बस आपका प्यार चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए, आपकी हौसला अफजाई चाहिए, और हम आपको वादा करते हैं कि हम आपको निराश नहीं करेंगे। अटल जी ने कहा था कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ।
2: मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
3: हमारी सास बहू और पेटिया की एयरलाइन भी आज बिखेरेगी आपकी जिंदगी में एंटरटेनमेंट की सनशाइन। ये तो लेकर हाजिर है आपके लिए एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज। यहाँ तो आपके फेवरेट शोज के सारे हाइलाइट्स और हाई पॉइंट्स भर रहे हैं एंटरटेनमेंट की उड़ान। सो गेट सेट गो।
4: कलर्स टीवी के सीरियल मन्नत में धैर्य ने फैसला ले लिया है कि वो अपना जॉब छोड़कर कहीं दूर चला जाएगा, इसीलिए उसने रिजाइन भी दे दिया है और अपनी पुलिस की वर्दी वो सौंप रहा है। हालांकि धैर्य को ये करते हुए काफी दुख हो रहा है, लेकिन ये अहम फैसला उसने मन्नत, दुआ और सबसे दूर जाने के लिए लिया है, क्योंकि वो नहीं देख सकता कि मन्नत और विक्रांत की शादी हो रही है।

हालांकि धैर्य ने मन्नत और रोनी को ये नहीं बताया है कि उसने रिजाइन दे दिया है, बल्कि उसने बताया है कि वो छुट्टी पर कहीं दूर जा रहा है। इसी के साथ कहानी में तो ट्विस्ट तब आएगा जब धैर्य लौट कर आएगा शादी बर्बाद करने के लिए।

0: ने डिसाइड किया है कि वो जाएंगे, हालांकि अभी जो हमने सीन किया वो उससे पहले, अभी जो सीन होगा वो उससे पहले होगा कि वो रिज़ाइन कर देते हैं, और अभी जो हमने सीन किया वो अपनी यूनिफॉर्म दे रहे हैं, एंड उस बीच हम आते हैं यू नो पुलिस स्टेशन, एंड ही इज़ वेरी इमोशनल क्योंकि एक पर्पस के लिए उन्होंने ज्वाइन करी थी और अपने ब्रदर को ढूंढने के लिए ज्वाइन करी थी, एंड ही इज़ एन ऑनेस्ट ऑफिसर. बहुत ज़रूरत होती है भाई ऑनेस्ट ऑफिसर्स की. तो अभी ही इज़ गिविंग बैक दैट यूनिफॉर्म, और उन्होंने कभी कुछ गलत नहीं किया है ना. एंड जब वो दे रहे थे वो यूनिफॉर्म, तो मन्नत को भी लग, मन्नत सॉ दैट एंड शी इज़ लाइक व्हाट, क्या कर रहे हैं आप एंड क्या चल रहा है. वो झूठ बोलते हैं हमें कि एक लंबी छुट्टी पे जा रहा हूँ. तो अभी हमें नहीं पता कि उन्होंने एक्चुअली रिज़ाइन किया है, बट द होल समथिंग इज़ गोइंग ऑन विथ हिम. वो किसी चीज़ से गुजर रहे हैं जो हमें नहीं पता, एंड वो कुछ डिसीजंस ले रहे हैं जो हमें नहीं पता, बट दैट वॉज द सीन अबाउट.
1: तो भाई अब देखना होगा कि मन्नत और विक्रांत कैसे धैर्य को रोक पाते हैं ये सब कुछ करने से. दंगल टीवी के सीरियल मन सुंदर में घर में एक और नया तमाशा हो गया है, क्योंकि आ गया है असली नाहर, और यहाँ पर घर वाले हो गए हैं कंफ्यूज कि असली नाहर कौन है, क्योंकि युवराज भी पूरा पूरा नाटक कर रहा है नाहर होने का.
2: मेरे घर में आके मुझे पूछ लो तुम्हें, तुम कौन और तुम्हारी
1: तो वही रूही भी कंफ्यूज है. हालांकि उसे तो कुछ याद ही नहीं है कि कैसे वो नाहर को मंदिर में मिली थी. ऐसे में नाहर और युवराज दोनों ही अपना अपना सच बताने की सबको कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं है.
2: मेरी
3: समझ में नहीं आ रहा

0: ऐसे में नाहर भी युवराज को धक्का दे रहा है और युवराज भी नाहर पर भड़क रहा है। अब ऐसे में कौन बताएगा कि असली नाहर कौन है, क्योंकि यहाँ तो कन्फ्यूजन भरपूर है।
1: जैसा पहले बताया गया कि नहर खाई में गिर गया और मर गया, लेकिन बच गया है तो हमारे सामने है, तो हमने तो युवराज को ही अब नहर मान लिया है। अब जब नहर सामने आ रहा है तो इस कदर हम युवराज पे बिलीव कर रहे हैं कि नहर सामने है, फिर भी हमें यकीन नहीं हो रहा है कि वो नहर है। अब युवराज बता रहा है कि मैं नहर हूँ, नहर कह रहा है मैं नहर हूँ, दोनों अपने अपने मुद्दे रख रहे हैं सामने, बचपन की यादें और जो किस्से हुए हैं, जो हादसे हुए हैं, पर तय करना मुश्किल है कि सच में नहर कौन है दोनों में से। और एक पल के लिए यकीन हो गया जब रूहान ने पापा कह के पुकारा नहर को, पर दूसरे ही पल फिर युवराज ने रूहान को ले लिया था, तो फिर दोबारा कंफ्यूज हो गए। अब हम खुद सोच रहे हैं कि कैसे पता लगाया जाए कि असली नहर कौन है।

टीवी के सीरियल लक्ष्मी निवास में आज राज सभी घर वालों के लिए लेकर आया है यमी यमी नाश्ता। ऐसे में लक्ष्मी, श्रीनिवास और बाकी के सभी घर वाले एकजुट हो गए हैं नाश्ता करने के लिए। ऐसे में वहाँ पर भूमिका भी है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब आ जाता है राजू लेकर भूमिका की पसंदीदा चीजें, और राज का लाया नाश्ता छोड़ भूमिका राजू की लाई चीजें खाने लगती है। ऐसे में इन दोनों की बॉन्डिंग और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, लेकिन ये नजारा राज को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। हालांकि फैमिली वालों के सामने राज ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, लेकिन भूमिका और राजू को देखकर वो अंदर ही अंदर गुस्सा हो रहा है, और अब वो राजू को सबक जरूर सिखाएगा।

0: मौका नहीं ढूंढती है मेरा दिल जलाने के लिए। अब तो मुझे लगता है कि मैं गुनहगार नहीं हूँ, पापी ये है।
1: अरे क्यों?
0: क्योंकि ये बार बार ऐसा कुछ किया जा रही है कि मुझे जलन हो, मैं ऐसा कुछ करूं, तो इसमें कौन हुआ? मैं तो गुनहगार हूँ, लेकिन पापी कौन हुआ? इनको जानते हुए पहचानते हुए कि ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर भी सुधरने का नाम नहीं।
1: लेकिन आप जल क्यों रहे हो?
0: हाँ, क्यों नहीं जलूं? मेरी बीवी को कोई ऐसे ऐसे भाव में ले?
1: मेरा भाई है।
0: नहीं, मुझे कोई नहीं चाहिए। अभी का प्लान तो राजू को थोड़ा सा टॉर्चर किया जाएगा, इसके बाद और भूमिका जी से वार्तालाप होंगी, फिर से महफिल जमेगी जिसमें राज बैठा होगा और भूमिका जी सामने होंगी।
1: मतलब बाद में कुछ होने वाला है और अभी इतना मक्खन लगाया जा रहा है, कचौड़ियां आ रही हैं।
0: जेंटली आया था कि चलो घर में एक माहौल है टेंशन का, आज इनको सबको बढ़िया ब्रेकफास्ट करवाता हूँ, कचौड़ियाँ, तुम्हारी फेवरेट जलेबी और तुम्हारी फेवरेट मटर पूरी लेके आया था, लेकिन नहीं, इन्होंने मेरी मटर पूरी, मेरी जलेबी, मेरी कचौड़ी साइड रोक के उसके चूरन अनारदाना खा रही है। हैं, बताओ,
1: सारी लड़कियों को पसंद होता है वो, है कि नहीं?
0: अरे तो मुझे बता दिया, अनारदाना भी लिया था साथ में। चूरन चाट रही है। तो गुस्सा आएगा, जनरली नहीं आएगा?
1: मैं नहीं आएगा, क्योंकि वो मेरे बचपन की यादें हैं और वो मेरे भाई को पता है।
0: बड़ी होगी, तुम शादी होगी तुम्हारी।
2: रीत, यहाँ तो आप हैं राघव की जिंदगी की सनशाइन, लेकिन फिर भी आप दोनों के बीच कंफ्यूजन हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ जाती हैं, आप दोनों हो जाते हैं एक दूसरे से अलग। देखिए, जहाँ होता है ना प्यार, वहाँ होता है विश्वास। तो चलिए फिर पता कर आते हैं इस कहानी का अपडेट, क्या कुछ हो रहा है रीत और राघव की जिंदगी में। आज लेकर चलते हैं आप सबको जाने अनजाने हम मिले के सेट पर।
3: एक बार शादी के बंधन में बंधे उन्नति और ध्रुव,

0: रस्मों में विक्रांत ने लगाया ट्विस्ट का तड़का। जी टीवी के सीरियल जाने अनजाने हम मिले में विक्रांत से परेशान हो चुकी थी उन्नति। ऐसे में रीत ने लिया था फैसला कि उन्नति और ध्रुव की शादी हो, और इनकी शादी हो भी गई है। सभी परिवार वाले काफी खुश हैं और अब उन्नति ध्रुव के घर जाएगी। ऐसे में आज मौजूद है पूरा परिवार और देखिए कैसे खुशी खुशी सभी लोग उन्नति को विदा कर रहे हैं सारे रीति रिवाजों के साथ, और उन्नति और ध्रुव भी काफी खुश है। हालांकि रीत थोड़ी परेशान है क्योंकि राघव फोन नहीं उठा रहे हैं और राघव इन रस्मों में शामिल भी नहीं हुए हैं। लेकिन मौका खुशियों का है क्योंकि उन्नति फिर एक बार ध्रुव के साथ खुश है।
1: वैसे राघव जी जो जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, अगर वो पूरा हो गया तो आप लोग इंडिया की रिचेस्ट फैमिली से एक बन जाएंगे।

0: लेकिन जल्द ही इन खुशियों पर ब्रेक लग जाता है जब आ जाता है विक्रांत। और विक्रांत उन्नति को ध्रुव के साथ देखकर गुस्से में लाल पीला हो चुका है और देखिए कैसे वो उन्नति का हाथ पकड़ उसे ले जा रहा है। ऐसे में यहाँ ध्रुव उन्नति को बचा रहा है तो वहीं विक्रांत उसे ले जाना चाह रहा है। इसी बात पर दोनों की हाथापाई हो जाती है, लेकिन इससे पहले कि विक्रांत ध्रुव को मार डालता उन्नति बीच में आ गई और उसने ध्रुव को बचा लिया।
1: नहीं छोड़ूंगा हाथ, बस छुड़ा के देखा। छोड़ो,

0: 찍어 남대가 내려봐 찍어 남대가 내려봐 찍어 남대가
1: 이거 뭐야 내가 내려봐 이거
2: 갑
0: 어이 내가 내려봐 찍어 남았나
2: 저한테
0: 언니한테 열죠 저한테 말해봐 찍었어 말해 박치고 세이프가
1: 누구 살려
0: 저 어리세
2: 그냥 쳐라
1: 이 범인도
0: 이겨 근데 나는 가르쳐
2: 쳐라
0: 마하지 않은 거면 이제
3: भाई फिलहाल तो ध्रुव बच गया है लेकिन विक्रांत के सर पर खून सवार है। अब देखना होगा कि ये रिश्तों की उलझने कहानी में कौन सा ट्विस्ट लाती है। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
4: हमारी जगदात्री तो आज हमसे कह रहे हैं कि जब भी वो हो जाती हैं बहुत परेशान हो जाती हैं स्ट्रेस्ड तो कुछ देर जाकर बैठती हैं वो सुबह सुबह नेचर के बीच जैसे ही सूर्योदय होता है ना बस उस वक्त और इमीडिएटली हो जाती हैं वो रिफ्रेश और सूरज की किरणें कर देती हैं उन्हें रिचार्ज और वो हो जाती हैं अपने दिन के लिए एकदम तैयार। एक्चुअली आपको एक बात बताऊं मैं भी इसी तरह करती हूं अपने दिन की शुरुआत। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको जगदात्री के पास।
3: शिवाय को जगदात्री की फिक्र
5: कब तक तुम ये सब टॉलरेट करती रहो जब जिसका मन चाहा आया अपनी बात सुना के चला गया जिसका जो मन किया उसने वो किया और चला गया।
3: जगदात्री को समझाता शिवाय देखिए रिश्तों की उलझने टीवी के सीरियल जगदात्री में शिवाय को पता है कि जगदात्री के घर वाले स्पेशली उसकी माँ जगदात्री पर कितने जुल्म करती है। ऐसे में आज किचन में देखिए कैसे शिवाय जगदात्री को समझाने की कोशिश कर रहा है कि उसे इन जुल्मों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। भाई मिशन में तो वो शेरनी होती है लेकिन जब बात घर की आती है तो जगदात्री चुप हो जाती है और यही बात शिवाय जगदात्री को समझाने की कोशिश कर रहा है लेकिन जगदात्री तो अपने उसूलों पर अड़ी है। उसे अपने परिवार और आई के खिलाफ कोई भी बात नहीं सुननी। उसे लगता है कि जो वो कर रही है सब कुछ सही है। इसी बात को लेकर दोनों में छिड़ गई है बहस।
5: और तुम्हारी आई ने जो सबके सामने किया है ना उसके बाद तुम ठीक हो भी नहीं सकती। कब तक तुम ये सब टॉलरेट करती रहो जब जिसका जो मन हुआ आया बोल के चला गया जिसका जो मन किया उसने वो किया और चला गया और तुम्हें कुछ बोलना नहीं है।
6: वो मेरी आई है।
5: आई ने तो क्या हरकतें तो गलत है ना उनकी। अगर किसी और की आई उसके साथ ऐसे बिहेव करेंगे तो ये सेम एटीट्यूड रहेगा ना तुम्हारा।
7: सॉरी बॉस तुम्हें कह रहा सुन से जुल्म करने की जितना ही पड़ा तो क्यों सह रही तुम्हें आखिर कब तक खुद को अंधेरे में रखने का इरादा था क्योंकि तुम बहुत अच्छे से जानते कि वो लोग उतने अच्छे नहीं है जितना तुम उन्हें जितना उन्हें अच्छे होने का क्रेडिट देते बॉस वो लोग गलत उन्हें सुधारने के लिए इन्हीं की भाषा में जवाब देना होगा। बॉस मुझे ना कभी कभी समझ में नहीं मिशन में तो तुम एकदम शेरनी की तरह शिकार कर लेती लेकिन बात जब अपने घर में आती तो वहाँ पे भीगी बिल्ली बन के बैठ जाती प्लीज बॉस। अरे कुछ नहीं तो कम से कम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए तो आवाज उठा सकती हूँ ना कुछ तो बोल सकती हूँ ना। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कब तक बस ये सहती रहोगी कुछ नहीं बोलूंगी चुप रहोगी।
6: तुम ना गलत प्रोफेशन में आ गए तुम्हें तो रिलेशनशिप काउंसलर होना चाहिए।
5: तुम हर बार की तरह फिर से बात को घुमा लो।
6: बात घुमा नहीं रही तुम्हारी बात से सहमत हूँ मैं। कुछ रिश्ते ऐसे ही होते हैं जिन्हें जवाब देकर नहीं प्यार देकर जीता जाता है। मुझे पता है मैं क्या कर रही
3: वहीं दूसरी तरफ गुंजन की चोट अब धीरे धीरे खुश हो रही है। ऐसे में माया भी पहुंच गई है किचन में अपनी बिटिया रानी गुंजन के लिए टेस्टी टेस्टी ब्रेकफास्ट बनाने के लिए साथ है जगदात्री भी। तभी वहां पर पहुंचती है गुंजन जो अपनी माँ के साथ देखिए टाइम स्पेंड कर रही है और ऐसा करने के लिए जगदात्री ने ही उसे कहा है। तभी तो वो जगदात्री को इशारा भी कर देती है यानी कि धीरे धीरे अब रिश्ते कहीं उलझ रहे हैं तो कहीं सुलझ रहे हैं।
6: उसे किसी और के हाथ का खाना पसंद ही नहीं है तभी पसंद आता है जब मैं बनाती हूँ या फिर जब जगदात्री बनाती हूँ। ये फ्रूट्स कट कर दो प्लीज, और याद रहे फाइनली चॉप होने चाहिए एकदम छोटे छोटे, क्योंकि सीरियल में अगर गुंजन को फ्रूट दे के ना तो वो खाएगी।
8: जी मैम।
6: गुड।

0: तो भाई जगधात्री पूरी कोशिश करती है कि रिश्ते बने रहे और इनमें दरार ना आए। अब देखना होगा कि कहानी में और रिश्तों में कौन सा नया ट्विस्ट आता है। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
1: प्रावधान और प्रथम, अगर आपकी जिंदगी में भी आ रहे हैं बहुत सारे चैलेंजेस, इतने सारे उतार चढ़ाव, देखिए ये जो 2026 है ना, ये तो सूर्य देवता का साल है। और ऐसा कहते हैं कि अगर सुबह सुबह आप सूर्य देव की पूजा आराधना करेंगे, उन्हें जल देंगे, तो बस सूर्य देव आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे। ऐसे हम तो चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में जल्दी से हो जाए सब कुछ ठीक। लेकर चलते हैं आप सबको मन अति सुंदर के सेट पर।

दंगल टीवी के सीरियल मन अति सुंदर में घर में रखी गई है पार्टी। आने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्लाइंट्स और ऐसे में इस पार्टी में राध्या भी शामिल हुई है। और देखिए कैसे पार्टी में चार चांद लगाने के लिए राध्या और प्रथम का डांस शुरू हो गया।

0: आई थिंक बहुत टाइम बाद सब कुछ सही हुआ है घर में. निहारिका चली गई है तो मित्तल्स को लगा कि उनका जो ऑरा माइनस हो गया था उसको प्लस में करने के लिए उन्होंने पार्टी होस्ट की है. पर दादी अभी भी चाह रही हैं कि राध्या कहीं ना कहीं से घर से चली जाए, उनकी बेइज्जती हो जाए. तो बहुत सारे NRI क्लाइंट्स आए हैं, फॉरेनर्स आए हैं. राध्या को उतनी अच्छे से इंग्लिश बोलनी नहीं आती है, उन्हें कॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल डिशेज़ के नाम नहीं पता है, बॉल डांस कैसे करते वो नहीं आता है. तो बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट हो रही हैं क्योंकि किसी से बात नहीं कर पा रही हैं, बॉल डांस करने जाती हैं तो वो नहीं कर पाती हैं. पर प्रथम हर टाइम उनका साथ दे रहे हैं, वो उन्हें डांस भी करवाते हैं बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा डांस भी होता है उनका. और जब एक दूसरे के बारे में इंग्लिश में बोलने की बात आती है तो राध्या बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है कि अब मैं कैसे बोलूँगी, सब देखेंगे, प्रथम सर की बेइज्जती हो जाएगी. पर प्रथम तब हिंदी में बात करते हैं और वो उनका ऐसा कहना है कि फीलिंग्स को किसी लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं होती, अगर आप दिल से बात करो तो सामने वाले तक पहुंच जाती है. तो राध्या फ़िलहाल बहुत खुश हैं क्योंकि प्रथम ने बहुत ज़्यादा साथ दिया है उनका, बहुत प्यार से डांस करवाया है, पूरी फैमिली के सामने बोला है कि आई फील लाइक कि बेस्ट डिसीजन मेरी लाइफ का राध्या है.
1: सितारे, सितारे,
2: तो भाई डांस हुआ पूरा और पार्टी में राध्या की बेइज्जती भी नहीं हुई, उल्टा प्रथम ने उसकी तारीफ की, इसीलिए राध्या काफी खुश है. तभी तो देखिए कैसे अपने कमरे में आकर वो झूम कर नाच रही है. लेकिन राध्या की खुशी पर ब्रेक तब लगता है जब दादी आ जाती है और देखिए कैसे वो उसे खरी खोटी सुना रही है, उसके पहनावे पे, उसके लुक पर और उसके इंग्लिश बोलने पर. ऐसे में राध्या चुप खड़ी सब कुछ सुन रही है.
3: नीचे डांस करने के लिए कहा तो कदम लड़का है, दूसरों के ऊपर गिर पड़ रही थी और यहाँ ताता ठैया कर रही है. प्रथम ने अपनी और अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए तुम्हारे लिए दो शब्द क्या बोल दिए, तुम तो खुशी से नाचने लगे.

0: फिर ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकलो और सच्चाई के आईने में खुद को देखो। आज तो प्रथम ने तुम्हारी इज्जत बचा ली, लेकिन कब तक बचाता रहेगा? ये मित्तल परिवार की कोई आखिरी पार्टी नहीं है, आगे और भी बहुत पार्टी होंगी, तो क्या हमेशा तुम्हारी ख्याल बना रहेगा? अरे कब तक उसकी गंदों का सहारा लेंगे? एक पार्टी में वो तुम्हारा साथ देगा, दूसरी पार्टी में सहारा बन जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या भुगता रहेगा? तुम्हारी पहरेदारी करना और लोगों से बेइज्जती से बचाना ही उसका काम है जिंदगी भर, और कोई काम ही उसे पसंद नहीं। इतनी भारी अकल से पैदल बड़े लोगों के सामने बात करना तो दूर, उठने बैठने की तक का शऊर नहीं है। तुमसे अच्छी इंग्लिश तो वेटर बोल रहा था, और तो और वो 7 साल की बच्ची बुलबुल वो तो तुम्हारे आगे बीएससी पास है।
1: भाई दादी ने दे दिया है राध्या को एक टास्क कि अब उसे इंग्लिश भी सीखनी होगी और अपने रहन सहन पर भी बदलाव करने होंगे, जिस बात के लिए अब राध्या एग्री हो चुकी है।
2: दादी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि सब खराब हो जाए, तो वो राध्या को डीमोटिवेट करने के लिए आती है कि तुम्हें इंग्लिश बोलनी नहीं आती है, तुम प्रथम के लायक नहीं हो, कैसे करोगी चीज़ें, इन फ्यूचर पार्टी होगी तो क्या करोगी, ये वाली पार्टी तो संभल गई, तो उसके ऊपर पानी वानी फेंक दिया है, पर उसको एक बुक ला के दी है, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स दिया है, तो अब बस देखते हैं राध्या कितना प्रोग्रेस करेंगी और शायद कहीं ना कहीं वो इस चक्कर में ही बोलने भी लग जाए।
1: हालांकि वहां पर प्रथम भी आते हैं, लेकिन राध्या ये सारी बातें छुपा लेती है, तो भाई अब देखना होगा कि क्या राध्या प्रथम के लिए इंग्लिश सीखेगी और कैसे वो खुद में बदलाव लाएगी। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
3: हमारे सूर्यदेव हैं हम सबके लिए बहुत ही जरूरी, और देखिए सूरज की किरणें देती हैं हमें मच नीडेड विटामिन डी, जी हाँ, अगर आप इन्हें लें अर्ली मॉर्निंग, और ये होती है बहुत ही रॉकिंग। लेकिन ऐसा ही अगर आप करेंगे 12 बजे के बाद, तो सूर्य की किरणें होती हैं सुपर स्ट्रॉन्ग और होती हैं यूवी रेस से भरपूर, तो हो जाएगा आपकी ही हेल्थ के लिए शॉकिंग। कुछ ऐसी ही रॉकिंग, कुछ ऐसी ही शॉकिंग है हमारे पास ये सारी खबरें, जिन्हें लेकर हाजिर हैं हम आपके लिए अगले सेगमेंट में, जो है रॉकिंग एंड शॉकिंग न्यूज।
4: पेश है बॉलीवुड, ओटीटी और टेलीविजन की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें। रॉकिंग और शॉकिंग खबरों में बात करते हैं आप सबकी प्यारी अनुपमा यानी कि रूपाली गांगुली, जो पहुंच गई हैं अपने पुराने साथीदारों के साथ। जी हाँ, आइकॉनिक जोड़ी सारा भाई वर्सेस सारा भाई की गैंग एक साथ नजर आ रही है, और देखिए इनकी धमाल मस्ती। नजर डालते हैं रुबीना दिलैक के इस पोस्ट पर, जहां वो औरी अविका गौर और फरहाना भट्ट के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करती हुई नजर आ रही है केप टाउन में। भाई बहुत जल्द शुरू होने वाली है खतरों के खिलाड़ी की शूटिंग।

0: स्कॉट लेटेंट के सेकेंड सीजन से सामने आई है अल्फा। कलाकारों की ये तस्वीरें यानी कि आलिया भट्ट, शर्वरी वाघ साथ साथ नजर आ रहे हैं इस मंच पर। देख लीजिए नागिन 7 का ये प्रोमो, जहां अपरा के रूप में आहना को देखकर हैरान रह गई है राधिका।
1: आप सब प्लीज पीछे हो जाइए, आग लगी हुई है।
2: इसे तुम संभाल के रखो।

0: देख लीजिए बरेली के बच्चन का ये प्रोमो, जहां बरेली के बच्चन मचाते हैं बवाल। सबसे गजब है संगम का ससुराल।
1: भाभी किचन में मत जाइए, खाना बन गया।
2: घर की है ऐसी तैसी, मच गई
3: है। थोड़ा चिल करो, फ्रिज का फाटक बदला लेंगे।
2: इस नरक के आगे का करे उपाय, अरे लाइफ का उड़ गया।
3: मोटर फूक गई है, नया टुल्लू लगवा लेंगे।
4: सीरियसली इट्स रिडिक्युलस, हिंदी में समझाते हैं। इका छींचा लेदर मचा रखा है, पूरे घर का मरम्मत कराओ तत्काल में।
5: या ससुराल में मचा है छींचा लेदर, कैसे रहेगी संगम बरेली वाले बच्चन के घर।
0: खबरें आ रही थी कि अमिताभ बच्चन हॉस्पिटलाइज्ड है, लेकिन अब खबरों की माने तो वो सिर्फ रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल गए थे और उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है।

0: स्टार प्लस के मोस्ट एंटिसिपेटेड शो सैराब में लीड भूमिका निभाती हुई नजर आएंगी मदिराक्षी मुडले। इसके पहले खबरें थी कि जेनिफर विंगेट इस रोल में नजर आ सकती हैं। रवि दुबे और सरगुन मेहता पहुंच गए हैं बेंगलुरु के द आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में, जहां उन्होंने मुलाकात की श्री श्री रविशंकर से।
1: How incredibly fortunate I am to be here at the ashram, and this is my first visit to the ashram. Every leaf here, every grain of sand has the life force of Gurudev, and you can feel it. It's very, very palpable.
0: देख लीजिए दो दुनिया एक दिल का ये प्रोमो, जहां इतिहास लिखा जाएगा क्योंकि पहली बार एक ससुर अपने दामाद के घर रहने आएगा।
2: इतिहास में पहली बार ससुर आए रहने, शादी से पहले दामाद के घर।
3: स्वागत नहीं करोगे अपने होने वाले ससुर जी का?
0: डालते हैं आप सबकी फेवरेट जोड़ी अनु और आर्या के इस रील पर, जो तुम से तुम तक के सेट से है। भाई इन दिनों ये ट्रेंड काफी वायरल हो रहा है। देख लीजिए लाफ्टर शेफ का ये प्रोमो, जहां निया के सवालों ने कर दिया है अमाल को बेहाल।
4: तुम्हें आटा बनाना आता है? अचारी फिलिंग कैसे बनेगी?
5: ये हम क्या कर रहे
4: हैं? तुम्हें सोते करना आता है?
5: सोते का है इसमें? भाई इसके साथ काम करके आज चार मौतें होने वाली है मेरी। मुझे भगवान की आशीर्वाद चाहिए।
0: मिशकत वर्मा और आस्था शर्मा बहुत जल्द नजर आएंगे सी टीवी के नए शो में। अब देखना होगा कि आखिर कैसी होगी ये कहानी। रूपल त्यागी अपने हस्बैंड नोमेश भारद्वाज संग पहुंच गई हैं यूएस, जहां उन्होंने अटेंड किया लकी अली का कॉन्सर्ट।

जयदीप अलाहवत, अपूर्वा अरोरा, यशपाल शर्मा, ईशा संधीर और कई सारे कलाकार पहुँचे बीती शाम हुए फिल्म मोटर माचिस और कटर के ट्रेलर लॉन्च पर।

चलते आने वाली है शर्वरी वाघ और वेदांग रायना के फिल्म मैं वापस आऊंगा, जिसमें आपको नजर आएंगे नसीरुद्दीन शाह और एआर रहमान का म्यूजिक। इसके अलावा इस फिल्म को डायरेक्ट किया है इम्तियाज अली ने। ऐसे में बीती शाम हुआ इसका ट्रेलर लॉन्च। आइए डालते हैं ट्रेलर लॉन्च के ये सभी खास पल पर एक नजर।

खबरों की माने तो बहुत जल्द सीरियल मन्नत में होगी अविनाश रेखी की एंट्री, जो युवी के पिता का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। ऐसे में अब सीरियल में और कितने ट्विस्ट आएंगे, ये देखना दिलचस्प रहेगा। भाई अब धर्मा प्रोडक्शन, जिसे करण जौहर लीड करते हैं, वो गुजराती सिनेमा में ले रहा है एंट्री अपनी आने वाली फिल्म जिंदगी वंस मोर के साथ, जिसमें नजर आएंगे सिद्धार्थ रंदेरिया,

अरे ट्विस्ट सिर्फ हमारी कहानियों में नहीं आते, सूरज की जिंदगी में भी आते हैं। बताइए कैसे? जब चांद आ जाता है सूरज और धरती के बीच और डाल देता है सूरज पर अपनी परछाई। ओ माय गॉड, अब देखिए सूर्यदेव की जिंदगी में भी आ गया ना ग्रहण। तो चलिए लेकर चलते हैं अब आपको उन तमाम ट्विस्ट की ओर जो मचा रहे हैं यहाँ पर एंटरटेनमेंट का शोर, और पता कर आते हैं आज कौन सी कहानी में आप पहुंचा है कौन सा एंटरटेनिंग ट्विस्ट।

0: टीवी के सीरियल शहर में आखिरकार माहित के सामने धीरे धीरे अपने घर वालों की सच्चाई आ ही रही है। ऐसे में देखिए कैसे चाचा और भतीजा दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं।
1: वो दरवाजा नहीं खुलेगा, कहीं नहीं जा पाओगे आप। कैम कॉर्डर हमें दीजिए।
2: और ये कैम कॉर्डर हम आपको क्यों दें?
1: क्योंकि हमें पूरा यकीन है कि इसमें हमारी अम्मी की मौत से जुड़ा हुआ सबूत है।

0: असल में अपनी अम्मी की चिट्ठी पढ़ने के बाद माहिद को ये एहसास हो गया है कि वो कितना गलत अपनी अम्मी के बारे में सोचते थे। तभी तो उन्होंने पूरी तरीके से छानबीन शुरू कर दी है अपने अम्मी के गुनाहगारों को सामने लाने की।
1: शादी यही थी, बिल्ली की नहीं थी।
2: तो जो कल आवाज थी वो मेज के गिरने की थी, मगर आधी रात गए कोई मेज को क्यों फेंकेगा? अच्छी भली मेज के टुकड़े टुकड़े कर दिए, किसी मुलाजिम को भेज के हटवा देंगे।

0: Ülke. Ya Allah. Yazı menzil mi ऐसे कितने राज छिपे? एक ड्रॉर के अंदर दूसरा खुफिया ड्रॉर.
1: सफेद कपड़ा, कल रात तो सबने सफेद पहन रखा था. मतलब कोई ड्रॉर से कुछ निकालना चाह रहा था और निकालने के बाद शायद इस मेज को यहीं फेंक दिया.
2: ऐसे में इस काम में सहर बन गई है उनकी हम सफर. और माहिद के साथ मिलकर उसने पूरे घर में कैमरास लगा दिए हैं. और ये कैमरास भी देखिए कैसे इन गुलदस्तों के रूप में है, जिसके चलते माहिद और सहर को पता चल जाएगा कि आखिर कौन नियाजी मंजिल में उनका दुश्मन है.
1: वक्त आ गया उस शख्स को बेनकाब करने का जिसने हमारी अम्मी को छीन कर हमारी जिंदगी नासूर बना दी.

0: अनुपमा
1: उसके बाद राघव।
2: स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में भाई अनुपमा हर बार किसी न किसी नई मुसीबत में फंसकर अपनों से दूर हो जाती है, इसीलिए तो उसने अब फैसला किया है कि वो अपनी खुद की दुनिया बसाएगी।
3: हवा ने नहीं खोला, किस्मत ने खोला है, और जो दरवाजा एक बार किस्मत खोल देना सर, उसे बंद नहीं होने देना चाहिए। इस घर के बाहर मेरा नाम लिखा और इस घर की इच्छा भी सिर्फ और सिर्फ मेरे पास हो। दुनिया में एक कोना ऐसा जो इस अनुपमा का।
2: असल में आज प्रेम और राही ने अनुपमा की खूब बेइज्जती की, अपने रेस्टोरेंट बुलाकर उन्हें नीचा दिखाया। ऐसे में आज दिग्विजय यहाँ पहुँच कर अनुपमा का साथ दे रहे हैं।

0: फिर जान बचाने के बाद थैंक यू बोलना काफी नहीं। कौन है यहाँ जो ये अनूठे मैनर्स सिखा रहा है? आप मिसेस कोठारी?
1: इन्हें सब मोटी बा कहते हैं।
2: मैं भी कह देता
0: मैं भी मोटी बा, मगर डर है कि उनसे रिश्ता जुड़ जाएगा, और रिश्तों का आप लोग क्या हासिल करते हैं वो तो मैंने देख लिया। इसलिए मिसेस कोठारी ही ठीक है। और तुम बताओ मिस्टर प्रेम कोठारी, तुम जवाब दो, तुमने अनुपमा जी को यहाँ इंसल्ट करने के लिए क्यों बुलाया था?
1: मैं आपको इस बात का कोई जवाब नहीं देना चाहता।
0: या इस बात का जवाब तुम्हारे पास है ही नहीं, तुम जवाब दे सकते ही नहीं, क्योंकि तुम्हें मानने में बहुत तकलीफ हो रही है कि तुम्हारा अहंकार तुम्हारे संस्कारों पर भारी पड़ गया। पहले मुझे लगता था कि कुछ बाहर वाले हैं जो तुम्हें बहका रहे हैं, तुम्हें गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं, मगर अब मुझे समझ आया कि जिस इंसान ने अपनी आंखों पर नफरत की पट्टी बांध रखी हो वो कभी सही रास्ते पर चलेगा कैसे?
3: तुम देना

0: स्टार प्लस के सीरियल ओ हम नवा तुम देना साथ मेरा में प्रिया प्राजिता फिर एक बार मुश्किलों में फंस गई है और आज वो मदद मांगने और किसी के पास नहीं बल्कि खुद रक्षित के पास पहुंची है। और देखिए तो जरा भाई इन दोनों की ये नोकझोंक कहीं न कहीं दोस्ती की शुरुआत है।
1: What's going on, यहाँ मुझे लगा हम दोस्त है, फिर भी सॉकर मोड से बाहर नहीं आ रही तुम। भाई नो आई एम गुड लुकिंग हैंडसम इररेसिस्टिबल पर कंट्रोल नाम की चीज होती है कि नहीं होती। कम ऑन,
2: ऑफ है क्या? शीशे में शक्ल देखिए, मेरा बॉक्स जल गया।
1: शीशे में शक्ल देखिए, बॉक्स जल गया, कनेक्शन क्या है?
2: वो कंपटीशन में जो बॉक्स दिया था ना मटेरियल का, वो जल गया है।
1: दैट्स रियली सैड। कैसे?
2: आप सवाल क्यों कर रहे? सवाल करने से कुछ नहीं होगा, आपने कहा था ना कुछ करने से कुछ होगा।
1: इट्स अगेंस्ट द रूल्स, मैं चाहकर भी तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, मेरे हाथ जो है वो बंधे हुए हैं। आई एम सॉरी, प्लीज प्लीज अंडरस्टैंड, आई जस्ट कांट। ये फटुका तो रुक गई। ओ, फटुका रिवर्स गियर में आ रही है, मतलब फटने वाली है।
2: राजा दशरथ और कैकी की कहानी याद है?
1: वो कहानी तो मैंने तुम्हें सुनाई थी, तुम्हें याद है?
2: मुझे बिल्कुल याद है, लेकिन आप भूल गए।
1: मैं नहीं, राजा दशरथ कह गए रानी कैकई से कि जिंदगी में एक बार जो भी मांगोगी वो मिलेगा। ठीक वैसे ही तुम्हारा ये उधार मुझ पर चढ़ा रहे।
3: हम तो यही चाहते हैं कि हमेशा जगमग रहे आपकी जिंदगी में भी खुशियों वाला सूरज। अब तो वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का, तो मुलाकात होगी आपसे कल, जहां फिर लेकर आएंगे हम आपके लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से हर अपडेट। और आप तो जानते ही हैं कि एंटरटेनमेंट के 24/7 अपडेट के लिए आपको क्या करना है। आप हमें फॉलो कीजिए ऑन इंस्टाग्राम, लाइक कीजिए ऑन फेसबुक एंड सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल सास बहू और पेटीएम। प्लीज रखें अपना अच्छे से ख्याल। नमस्कार।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: free on TuneIn.
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
4: सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 का मेघालय के उमरोई में शुभारंभ। 12 मित्र देश कर रहे हैं भागीदारी, सैन्य टुकड़ियों को भारत आगमन पर गर्मजोशी से स्वागत। कोची के नौसैनिक अड्डे पर INS सुनैना का ध्वजारोहण के साथ हुआ स्वागत। इंडियन ओशन शिप सागर पहल के तहत तैनाती का दूसरा संस्करण सफलतापूर्वक संपन्न कर लौटा शिप। श्री गंगानगर के युवा ऑलराउंडर मानव सुथार का टीम इंडिया में हुआ चयन। घर में जश्न का माहौल, बधाई देने वालों का तांता। तकनीकी खराबी के चलते बद्रीनाथ से लौट रहे हेलीकॉप्टर की चंबा आराकूट क्षेत्र में इमरजेंसी लैंडिंग। पायलट समेत हेलीकॉप्टर में सवार सभी 6 यात्री पूरी तरीके से सुरक्षित। राजस्थान के अलवर में भीषण गर्मी के चलते ट्रैफिक सिग्नल पर लगाए गए टेंट। राज्य में पारा 46 डिग्री के पार, रात में भी चलती हैं गर्म हवाएं। इटली दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जॉर्जिया मेलोनी को गिफ्ट में दी चॉकलेट। मेलोनी ने कहा धन्यवाद। कल प्रधानमंत्री ने मेलोनी के साथ किया था डिनर, आज द्विपक्षीय वार्ता।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
4: इटली की राजधानी रोम में प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मिले। मेलोनी ने प्रधानमंत्री को दिया डिनर। इटली दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ने जॉर्जिया मेलोनी को गिफ्ट दिया टॉफी का पैकेट। मेलोनी ने कहा धन्यवाद। इटली के होटल में लगे मोदी मोदी के नारे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने को उमड़े भारतीय समुदाय के लोग। प्रधानमंत्री ने लोगों से हाथ मिलाकर अभिवादन स्वीकार किया। बच्चों ने प्रधानमंत्री मोदी की ड्रॉइंग पर ऑटोग्राफ किया। प्रधानमंत्री मोदी के आगमन पर इटली की धरती पर देखा भारतीय सभ्यता का स्वागत। कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। देशी कथक का डांसर्स ने पेश की कई तरह के नृत्य। प्रधानमंत्री ने भी ताली बजाकर बढ़ाया कलाकारों का हौसला।
5: और
4: देशी कलाकारों ने पेश किया शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। सुरीले वाद्य यंत्रों से गुंजायमान हुआ वातावरण। तबले की थाम, सितार और बांसुरी वादन का लुत्फ लेते नजर आए प्रधानमंत्री। कलाकारों का अभिनंदन स्वीकार। इटली में दिखी काशी की भी झलक। इटालियन पेंटर ने काशी की तस्वीर प्रधानमंत्री को खींच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूरोप दौरे का ये आखिरी पड़ाव है, आज रात दिल्ली के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री। दिल्ली समेत उत्तर भारत में जल्द गर्मी से मिलेगी राहत। केरलम में 22 मई से 30 मई तक मानसून की दस्तक। मई के आखिरी और जून के पहले सप्ताह में तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा और आंध्र प्रदेश मानसून पहुंचने की उम्मीद। 5 से 15 जून तक महाराष्ट्र, ओडिशा, छत्तीसगढ़ पहुंच सकता है मानसून। जून के आखिरी हफ्ते में दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत में मानसून की संभावना। उत्तर प्रदेश में 15 जून को मानसून देगा दस्तक। बिहार में 20 जून तक मानसून आने की संभावना है। तमिलनाडु के रानीपेट में मानसून की तैयारियों को लेकर जुटा प्रशासन। केरल में 240 NDRF कर्मियों की हुई तैनाती। गर्मी से तप रही राजधानी दिल्ली, कई इलाकों में 45 डिग्री के पार पहुंच गया तापमान। 25 मई तक लू का अलर्ट। साल 2024 के बाद 19 मई को दर्ज हुआ दिल्ली का ऐसा महीने का सबसे गर्म दिन। दिल्ली के रिज इलाके में रहा सबसे अधिक 40.5 डिग्री तापमान। उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं बढ़ा रही हैं दिल्ली की गर्मी है। अगले एक हफ्ते तक दिल्ली एनसीआर में लू के थपेड़। हिमाचल में भी गर्मी ने तोड़ दिया रिकॉर्ड्स। मौसम विभाग ने कांगड़ा, किन्नौर और सोलन में 3 दिन के लिए हीट वेव जारी किया। भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग ने हिमाचल के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश की भी जताई उम्मीद। 22 मई को कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश। पाली में बेजुबानों को गर्मी से बचाने के लिए अच्छी पहल। लोगों ने भोजना जल कुंड में भरा पानी। पाली में भीषण गर्मी, छत पर महिला ने बिना चूल्हे के बनाया चीला। झांसी में 40 डिग्री के पार पहुंच गया तापमान। सड़कों पर पसरा सन्नाटा। झांसी में भगवान को गर्मी से बचाने के लिए लगाए गए एसी। खान पान में भी बदलाव। उधमपुर में भीषण गर्मी से शंकर फूलों को पहुंचा नुकसान। अलवर में 40 डिग्री के पार पहुंच गया तापमान। धूप से बचते नजर आए लोग। अलवर में लोगों को गर्मी से बचाने के लिए पुलिस की अच्छी पहल। ट्रैफिक सिग्नल पर लगाए गए हैं टेंट्स। अकोला में भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। गर्मी के चलते कई इलाकों में पानी की कमी है। औरैया में भी बढ़ा तापमान। गर्मी से बचने के लिए कई जगहों पर पानी की व्यवस्था। रांची में लगातार बढ़ रहा है तापमान। कई इलाकों में चल रही है लू। मैदानों में बढ़ती गर्मी के बीच सैलानियों से गुलजार हुआ श्रीनगर। बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं सैलानी। श्रीनगर में शिकारा का आनंद ले रहे हैं सैलानी। भीड़ को देखते हुए बढ़ाई गई सुरक्षा। उत्तर प्रदेश के चंदौली में 44 डिग्री के पार पहुंच गया तापमान। सड़कों पर पसरा सन्नाटा। भीषण गर्मी को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से अपील की, कहा बिना वजह घर से बाहर न निकले। तकनीकी खराबी के चलते बद्रीनाथ से लौट रहे हेलीकॉप्टर को चंबा आराकोट क्षेत्र में इमरजेंसी लैंडिंग करानी हुई। 6 यात्री पूरी तरीके से सुरक्षित। लखनऊ में बेजुबानों को गर्मी से बचाने के लिए शानदार पहल। चिड़ियाघर प्रशासन ने वन्य जीवन के लिए विशेष व्यवस्थाएं की। जानवरों के बाड़े में लगाए गए हैं वाटर स्प्रिंकलर्स। तालाब क्लीन मैट और छांव की व्यवस्था। इसके अलावा हर बाड़े में पानी की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। खान पान पर भी खास जोर। रुद्रप्रयाग में जमकर हुई बारिश ने सोनप्रयाग गौरीकुंड हाईवे पर टूटा पहाड़। कई श्रद्धालु फंसे। एसडीआरएफ की टीम ने सभी श्रद्धालुओं का रेस्क्यू किया। सड़क से हटाया जा रहा है मलबा। चारधाम यात्रा में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। 32 दिनों में करीब 17 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। केदारनाथ में कल 30,000 से ज्यादा भक्तों ने दर्शन पूजन किए। अब तक 7 लाख का आंकड़ा पार। बद्रीनाथ में 21,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पूजा पाठ किया। अब तक 4 लाख का आंकड़ा पार हो चुका है। यमुनोत्री और गंगोत्री में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। दोनों जगहों पर 5.5 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए। चारधाम यात्रा के दौरान अब तक 1,56,000 से ज्यादा वाहनों की आवाजाही हुई है। उज्जैन में बाबा महाकाल की उतारी गई भस्म आरती। श्रद्धालुओं ने लगाए हर हर महादेव के।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबर।

0: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. TuneIn has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
3: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
4: खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रविगिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रविगिरी है, मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूं, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाई और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है। और सबसे ज्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है, बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए। और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूं गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयां खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी, और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था, और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ, और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस, इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर, और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है बादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है? तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना। जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है, उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो दो तीन बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती, और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है, रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा। ये कोई मामूली, लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाइयों और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाइयों और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूर्णकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हरड़ है, औषधीय गुणों से भरपूर है। हड़के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणुरोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हरड़। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं, ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो, इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लेटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च, जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक, चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है। यह एक नेचुरल लैक्सेटिव है जो लेटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूरन कंद, यह है सूरन कंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और ये है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये। इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास, अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में, और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालू, लज्जालू पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो सब पर यह काम करता है। इसके बाद में है कचनार, कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है, वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में। ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में यह है इंद्रायन, यह है इंद्रायन की जड़, इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ, ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।

0: कौन सा अहंकार करने पे जीवन में अपयश मिलने लगता है, कौन सा अहंकार करने से धन की बड़ी हानि हो जाती है, और कौन सा अहंकार करने से करियर में दिक्कतें आ जाती हैं, अहंकार का आपके जीवन पर कैसा पड़ता है प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
2: Jack FM is now streaming commercial-free on TuneIn Premium.
3: Jack, come home. It's supper time.
2: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
4: Could you play that one song with the words?
2: Jack FM, playing what we want.
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
6: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। Join SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट srmup.in।
7: सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 का मेघालय के उमरोई में शुभारंभ। 12 मित्र देश कर रहे हैं भागीदारी, सैन्य टुकड़ियों का भारत आगमन पर गर्मजोशी से स्वागत। कोच्चि के नौसैनिक अड्डे पर INS सुनयना का ध्वजारोहण के साथ हुआ स्वागत। इंडियन ओशन शिप सागर पहल के तहत तैनाती के दूसरा संस्करण सफलतापूर्वक संपन्न कर लौटा शिप। गंगानगर के युवा ऑलराउंडर मानव सुधार का टीम इंडिया में हुआ चयन, घर में जश्न का माहौल, बधाई देने वालों का तामना। तकनीकी खराबी के चलते बद्रीनाथ से लौट रहे हेलीकॉप्टर की चंबा आराकूट क्षेत्र में इमरजेंसी लैंडिंग, पायलट समेत हेलीकॉप्टर में सवार सभी 6 यात्री पूरी तरीके से सुरक्षित। राजस्थान के अलवर में भीषण गर्मी के चलते ट्रैफिक का सिग्नल पर लगाए गए टेंट, राज्य में पारा 40 डिग्री के पार, रात में भी चलती है गर्म हवाएं। इटली दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जॉर्जिया मेलोनी को गिफ्ट में दिया टॉफी का पैकेट। मेलोनी ने कहा धन्यवाद, कल प्रधानमंत्री ने मेलोनी के साथ किया था डिनर, आज द्विपक्षीय वार्ता।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
8: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे रत्न की जिसका संबंध सीधे तौर पर आपकी जिंदगी की खुशियों से है, मन की शांति से है, और वो जुड़ा है आपकी माँ की खुशियों से। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाशक्तिशाली रत्न मोती की। मोती को क्यों इतना महत्वपूर्ण माना जाता है, मोती कैसे आपकी जिंदगी खुशहाल बना सकता है, हमारी आज की खास पेशकश में जानेंगे क्यों ज्योतिष का महत्वपूर्ण रत्न है मोती। तो चलिए करते हैं शुरुआत।

0: मोती करें धारण तो होगा चंद्रमा की बाधाओं का निवारण। मोती पहनने से बढ़ते सावधानी, नहीं तो हो सकती है हानि। मोती का शुभ प्रभाव आपको बना सकता है धनवान। तनाव डिप्रेशन होगा दूर, चेहरे पर आएगी मुस्कान। ज्योतिष शास्त्र में मोती को चंद्रमा का प्रमुख रत्न माना गया है। माना जाता है कि मोती मन की शांति, स्थिरता और भावनाओं को संतुलित करने के लिए धारण किया जाता है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत ना हो तो कोई भी ग्रह अपना पूरा शुभ फल नहीं दे पाता। इसीलिए जीवन में किसी भी तरह के सुख के लिए कुंडली के चंद्रमा का शुभ फलदायी होना जरूरी है। इसलिए आज हम आपको मोती रत्न के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे धारण करके आप जीवन की तमाम समस्याओं से जल्दी छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं मोती धारण करने से किस तरह से मजबूत कर सकते हैं कुंडली का चंद्रमा। खास है मोती रत्न। मोती एक जैविक संरचना है जो मुख्य रूप से चंद्रमा का रत्न है। चंद्रमा की तरह उसका रत्न भी शांत, सुंदर और शीतल है। मोती का प्रभाव सीधा मन और शरीर के रसायनों पर पड़ता है। मोती का प्रभाव कभी तेज नहीं होता, वह धीरे धीरे और हल्का सा डालता है। इसलिए लोगों को लगता है कि मोती कभी नुकसान नहीं कर सकता। कभी कभी विशेष औषधि के रूप में भी इसका प्रयोग होता है।
1: मोती जो है चंद्रमा का रत्न है। अगर व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा मजबूत है तो आप मोती धारण कर सकते हैं। मोती धारण करने के जो फायदे हैं, आपको माता से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, माता का प्रेम मिलेगा, और चंद्रमा मन का कारक ग्रह है तो आपकी मानसिक स्थिति काफ़ी अच्छी होगी, और आपका डिसीजन लेने में, जो हम मन से चीज़ें अपने लाइफ में करते हैं, आपका डिसीजन सही होगा, डिसीजन अच्छे लेंगे आप, और भूमि भवन वाहन का भी आपको लाभ होगा।
0: ज्योतिष के जानकारों की माने तो जिन लोगों को जल्दी गुस्सा आता है उन्हें मोती पहनने से विशेष लाभ मिलता है, क्योंकि मोती का प्रभाव आपके मन और मस्तिष्क पर असर डालता है। तो आइए जानते हैं कि मोती पहनने से क्या क्या लाभ हो सकते हैं। मोती धारण करने के लाभ। मोती मन को शांत करता है और तनाव को कम कर देता है। डर और वहम दूर करके अच्छी नींद देता है मोती। मोती पहनने से शरीर के हार्मोन संतुलित रहते हैं। कभी कभी आर्थिक पक्ष को भी बहुत अच्छा कर देता है मोती। ज्योतिष के जानकारों की माने तो मोती एक ऐसा रत्न है, इसे सही तरीके से पहनने पर इंसान की बुद्धि स्थिर होती है। ऐसा इंसान अपनी मेहनत और लगन से मान सम्मान और धन कमाता है। तो चलिए अब आपको बताते हैं मोती धारण करने का सबसे सटीक तरीका क्या है।
1: मोती धारण करने का जो नियम है, अगर आपको मोती पहनना है तो कब सोमवार का दिन होना चाहिए, और मोती को दूध से स्नान कराने के बाद, गंगा जल से स्नान कराने के बाद अपने दाएं हाथ में ले लीजिए उसको, और ओम सोम सोमाय नमः 27 बार बोल के ओम नमः शिवाय का नाम लेके आप मोती को धारण कर लीजिए, और मोती आपके लिटिल फिंगर में, जो कनिष्ठा उंगली होती है, उसमें धारण करना होता है।
0: मोती धारण करने के नियम। मोती को चांदी की अंगूठी में पहनना चाहिए। मोती को कनिष्ठा अंगुली में शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को पहने। मोती को पूर्णिमा को भी धारण कर सकते हैं। मोती धारण करने से पहले इसे गंगा जल से धोए, फिर मोती को शिवजी को अर्पित करें। मोती के साथ पीला पुखराज और मूंगा ही पहन सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि मोती हमेशा आपको फायदा ही पहुंचाए, इसलिए मोती पहनने से पहले विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। तो चलिए, अगर मोती आपके जीवन में अनुकूल प्रभाव ना डाल रहा हो तब आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं।
1: अगर हम ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से इसके बारे में बताना चाहें तो बहुत से ज्योतिषी क्या करते हैं कि चंद्रमा का निगेटिव होता है कुंडली में, चंद्रमा पाप ग्रह से दृष्टिगत होता है, दृष्टिगत से युति होता है, या फिर 6, 8, 12 भाव में चंद्रमा होता है, तो ज्योतिषी लोग क्या करते हैं, उसको चंद्रमा का रत्न पहना देते हैं। लेकिन अगर कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है, निगेटिव है, अगर उसको हम पहनाएंगे तो उसकी निगेटिविटी बढ़ जाएगी, जिससे इसकी वजह से चंद्रमा मन का कारक ग्रह है, व्यक्ति मेंटली बहुत परेशान होने लगेगा, उसको बहुत सारी मेंटली समस्याएं आने लगेंगी। और जिसका कुंडली में चंद्रमा अच्छा है, चंद्रमा की स्थिति अच्छी है, चंद्रमा शुभ ग्रह के साथ युति हुआ है, केंद्र में धर्म त्रिकोण में है, कर्क लग्न का कुंडली जिसका है, और चंद्रमा की शुभ स्थिति हो, चंद्रमा को मोती धारण करवाएंगे तो उसको उसका बेनिफिट प्रॉपर तरीके से मिलेगा।
0: मोती पहनने के नुकसान। मोती अनुकूल ना हो तो मोती पहनने में सावधानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि मोती मानसिक स्थिति को धीरे धीरे प्रभावित करता है। अगर अनुकूल ना हो तो मोती गंभीर अवसाद और तनाव की समस्या दे सकता है। घबराहट, बेचैनी और चिड़चिड़ापन भी बढ़ा सकता है मोती। इसके कारण हार्मोन्स का संतुलन बिगड़ सकता है। कहते हैं मोती और चांदी दोनों ही चंद्रमा से संबंध रखते हैं, इसलिए मोती को चांदी में ही धारण करना शुभ होता है। तो आप भी अपनी कुंडली की स्थिति के अनुसार ही मोती पहनिए, ताकि आप भीतर से शांत, शालीन और सहज महसूस कर पाए, जिससे आपका जीवन चंद्रमा के समान शांत, शीतल और सुंदर हो जाए। आगे हम आपको बताएंगे कि किस राशि वालों को मोती धारण करना चाहिए और किन राशि वालों को मोती पहनने से बचना चाहिए। तब तक आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। ज्योतिष में रत्नों के प्रभाव को बहुत शक्तिशाली माना जाता है, तभी ज्यादातर ज्योतिषी रत्नों के प्रयोग पर जोर देते हैं। ऐसे में कभी कभी गलत रत्न आपकी जिंदगी को तबाह भी कर सकते हैं। मोती पहनने के लाभ क्या है ये भी आपको जानना चाहिए, पर मोती किन्हें पहनना चाहिए और किन्हें नहीं ये भी जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए जानते हैं आपके लिए कितना खास है और जरूरी है मोती रत्न।

0: मोदी पहुंचा सकता है आपको नुकसान। मोती ना हो अनुकूल तो करता है परेशान। ज्योतिष शास्त्र में दैनिक जीवन की समस्याओं को दूर करने के कई प्रयोग किए जाते हैं और उन्हीं में से खास है रत्नों का प्रयोग। और ज्योतिषी मानते हैं कि रत्नों का प्रयोग सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है क्योंकि ये सीधे सीधे आपके शरीर और जीवन को प्रभावित करते हैं।
1: चंद्रमा को दशा का भी कारक ग्रह कहा गया है। अगर किसी की खराब ग्रह की दशा चल रही कुंडली में, अगर व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान है, अगर वो मोती धारण करता है तो उसके बुरे ग्रह की दशा का भी फल पॉजिटिव होने लगता है। चंद्रमा का बहुत बड़ा रहस्य है। और अगर माता जी की स्वास्थ्य में दिक्कत आ रहा है, चंद्रमा अगर आपका मजबूत होगा तो आपके माता जी के स्वास्थ्य में भी अच्छा लाभ पाया जाएगा, उनका स्वास्थ्य ठीक होगा। और चंद्रमा को अच्छा होने पे ही पहनना है तो आपके जो डिसीजन होंगे वो अच्छे होने लगेंगे।
0: ज्योतिष के जानकारों की माने तो हर लग्न के लोगों के लिए शुभ नहीं होता मोती। ये जान लीजिए कि मोती रत्न अलग अलग लग्नों और तत्वों के मुताबिक पहनना शुभ होता है, इसीलिए बिना कुंडली दिखाए या बिना सलाह लिए मोती नहीं पहनना चाहिए। तो देखिए किन लोगों के लिए मोती पहनना शुभ फलदायी होगा और किन्हें मोती से दूर रहना चाहिए। मोती कौन धारण कर सकता है, लग्न और तत्व के अनुसार ही मोती पहनना शुभ होता है। मेष, कर्क, वृश्चिक और मीन लग्न के लिए मोती धारण करना उत्तम है। सिंह, तुला और धनु लग्न में विशेष दशाओं में मोती धारण कर सकते हैं। वृष, मिथुन, कन्या, मकर और कुंभ लग्न के लिए मोती धारण करने से बचना चाहिए। यदि कुंडली में चंद्रमा राहु या केतु के साथ हो, विशेषज्ञ की सलाह के बिना इसे धारण नहीं करना चाहिए। बहुत ज्यादा भावुक लोगों को मोती नहीं पहनना चाहिए। ज्योतिष के जानकार ये दावा करते हैं कि मोती को पहनने से पहले अपनी कुंडली में ये जरूर पता कर लें कि आप किस लग्न से ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप मोती धारण कर लें और वो आपको नुकसान पहुंचाने लगे। एक बात और ध्यान देने वाली है कि आप मोती ज्योतिषों के बताए अनुसार ही धारण करें। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि शिव की जटाओं में चंद्रमा का वास होता है, इसलिए माना जाता है कि मोतियों की माला को धारण करते समय चंद्रदेव के मंत्रों को 108 बार उसका जप कर लें। ऐसा माना जाता है कि मंत्रों का जप करके माला पहनने से मोती का प्रभाव हमेशा सकारात्मक फल देने वाला होता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि किन मंत्रों के जाप के साथ आपको मोतियों की माला धारण करनी चाहिए। चंद्रदेव का शक्तिशाली बीज मंत्र ओम श्राम श्रीम स्रो सह चंद्रमस्य नमः, ओम सोम सोमाय नमः, ओम नमः शिवाय। इसके अलावा भी मोती धारण करने वाले साधक को कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जानकार बताते हैं कि मोती का रखें खास ध्यान। मोती टूट गया हो या उसकी चमक खत्म हो गई हो तो ऐसे में मोती को बदल लें। माना जाता है कि खंडित मोती पहनने से नकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है, जिससे कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मोती को साफ करने के लिए बेकिंग सोडा या गर्म पानी का प्रयोग ना करें। मोती बहुत नर्म होता है, इसलिए इसे किसी अन्य रत्न के साथ ना पहनें। इससे मोती पर खरोच आ सकती है। तो आप भी चंद्रमा का ये रत्न पहनने से पहले किसी जानकार की सलाह लेना ना भूलें, क्योंकि ये भूल आपको बहुत महंगी पड़ सकती है। और लाभकारी रत्न मोती कर सकता है नुकसान, तो चाहते हैं अगर मोती से आप लाभ तो कीजिए थोड़े प्रयास और नियम अनुसार पहनिए अपना लकी स्टोन, जिससे होगा आपका कल्याण। ज्योतिष शास्त्र में हर ग्रह के लिए खास रत्न का जिक्र किया गया है जो कि व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता है। उन्हीं रत्नों में से एक है रत्न पन्ना। ज्योतिष का विज्ञान कहता है कि कोई भी रत्न उसके ग्रह नक्षत्र और राशि के अनुसार ही पहनने चाहिए, नहीं तो इसके नकारात्मक प्रभाव भी सामने आ सकते हैं। चलिए जानते हैं कि बुध के रत्न की महिमा क्या है।

0: एक हरा रत्न जिसे धारण करने से मीठी होगी जुबान। व्यक्तित्व में आएगा निखार, समाज में बढ़ेगा सम्मान। जी हाँ, पन्ना वो बेमिसाल रत्न है जो कुंडली के बुध की शुद्धि कर सकता है। ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि बुध अगर मजबूत हो तो इंसान को वाणी, बुद्धि और व्यक्तित्व से प्रभावशाली बनाता है। मजबूत बुध आपकी कई समस्याओं का समाधान कर सकता है। मजबूत बुध आपको तीव्र बुद्धि, अच्छी त्वचा, सौंदर्य और एकाग्रता का वरदान दे सकता है। लेकिन अगर कुंडली में बुध कमजोर हो तो क्या मुश्किलें आती हैं? आइए जानते हैं। कमजोर बुध के नुकसान। व्यक्ति को त्वचा की समस्या होती है, चेहरे पर जल्दी झुर्रियां पड़ने लगती हैं। व्यक्ति तुरंत सर्दी, जुकाम, एलर्जी की चपेट में आ जाता है। चीजों को समझने में काफी समय लगता है। व्यक्ति बार बार चीजें भूलने लगता है। धन को लेकर उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। धोखा, छल या फरेब व्यक्ति का स्वभाव बन जाता है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो कुंडली के बुध को मजबूत करने का सबसे उत्तम उपाय है बुध का रत्न पन्ना धारण करना। रत्न शास्त्र में पन्ना को एक बेशकीमती और बहुमूल्य रत्न माना गया है। बुध का रत्न पन्ना बुद्धि बढ़ाने वाला माना जाता है और इस रत्न को धारण करने वाला सौभाग्यशाली होता है। तो चलिए जानते हैं कि बुध के ग्रह पन्ना में कौन कौन से गुण छिपे हुए हैं। पन्ना की विशेषताएं। पन्ना नवरत्नों में एक असरदार और कोमल प्रभाव का रत्न है। वह बेरूज वर्ग का रत्न है और एल्यूमिनियम और बेरिलियम का सिलिकेट है। कुछ मात्रा में इसमें ऑक्सीजन और जल पाया जाता है। पन्ना कभी भी मिले यह षटकोणीय ही होता है। सामान्यतः पन्ना बिना जाल के नहीं हो सकता। बिना दोष के पन्ना मिल पाना काफी कठिन होता है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो रत्नों में ग्रहों की ऊर्जा आकर्षित करने की अद्भुत क्षमता होती है। अगर आपकी कुंडली का कमजोर बुध आपकी समस्याएं बढ़ा रहा है तो बुध का ये दिव्य प्रभाव वाला रत्न आपकी तमाम परेशानियां दूर कर सकता है। पन्ना को हीलिंग स्टोन भी माना जाता है। कहते हैं कि पन्ना को धारण करने वाले व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कर पाता है। पन्ना पहनने से नौकरी और व्यापार में भी उन्नति होती है, साथ ही पन्ना आर्थिक संकट भी दूर करने में कारगर है। लाभकारी भी है पन्ना। पन्ना बुद्धि को प्रखर और एकाग्र कर देता है। यह मन की चिंताओं को दूर करता है। इसको धारण करने से वाणी की शक्ति बढ़ जाती है। आमतौर पर कारोबार और आर्थिक स्थिति में लाभ पहुंचाता है। इससे व्यक्तित्व चमकदार और प्रभावशाली हो जाता है। यह त्वचा के रोगों में भी खूब लाभ देता है। माना जाता है कि पन्ना धारण करने से पहले ज्योतिष के जानकारों की सलाह जरूर लेनी चाहिए। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार बुध का रत्न पन्ना तभी धारण करना चाहिए जब कुंडली में बुध शुभ भाव का स्वामी हो, क्योंकि बुध की अशुभ स्थिति में पन्ना धारण करना जीवन में अशुभ प्रभाव बढ़ाने लगता है। तो आइए जानते हैं कि पन्ना रत्न कब और कैसे नुकसान पहुंचाता है। पन्ना धारण करने के नुकसान। ये बुद्धि को भ्रमित और मन को परेशान कर सकता है। इसके कारण आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। पन्ना त्वचा में समस्याएं दे सकता है और पन्ना आत्मविश्वास को गड़बड़ भी कर सकता है। ज्योतिष के जानकारों के मुताबिक हर राशि और लग्न के लोगों के लिए शुभ नहीं है बुध का ये रत्न। तो चलिए अब जान लेते हैं कि किन राशि वालों को पन्ना धारण करना चाहिए और किन्हें पन्ना से दूर रहना चाहिए। लाभकारी भी है और कष्टकारी भी है। वृष, मिथुन, कन्या, तुला, मकर, कुंभ लग्न वालों के लिए पन्ना लाभकारी होता है। सिंह, धनु और मीन लग्न में विशेष दशाओं में पन्ना पहन सकते हैं। मेष, कर्क, वृश्चिक लग्न में पन्ना भूलकर भी धारण ना करें। जो लोग वाणी संबंधी कार्य में हैं, उन्हें पन्ना धारण करना चाहिए। आर्थिक क्षेत्र के लोगों के लिए भी पन्ना धारण करना अनुकूल होगा। पन्ना शुभ परिणाम देने पर न सिर्फ दौलत और शोहरत दिलवाता है बल्कि आपको समाज में सम्मान भी हासिल होता है। तो आप भी पन्ना को सही तरीके से धारण करें, जिससे न सिर्फ आपका बुध मजबूत होगा बल्कि आपकी सारी बाधाओं का भी अंत होगा।
1: प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
3: Fill your day with podcasts on TuneIn. Whether you're passing the time on your commute, catching up on your workouts, or just tuning in while hanging out, all your favorite podcasts are all here on TuneIn. The Daily.
4: From the New York Times, I'm Michael Barbaro. This is The Daily.
3: Smartless.
5: Hey guys, I got a mouthful of English muffin with a glass full of
3: Marketplace.
6: Big three on the program today, or, you know, the big three of the...
3: And more. Just search podcasts or tell your device to play your favorite podcast on TuneIn.
7: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
8: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
1: मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
12: चमोली गढ़वाल की समृद्ध लोक संस्कृति और प्राचीन परंपराओं का जीवंत प्रतीक आदिबदरी धाम का 3 दिनों से चल रहा नौठा कौथी लठमार मेले का भव्य समापन हो गया। लाठी डंडों के प्रतीकात्मक युद्ध, लोकगीतों की महफिल, पारंपरिक नृत्यों और नए अन्न के भोग अर्पण के साथ ये मेला स्थानीय लोगों के साथ साथ दूर दूर से आए श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए यादगार बन गया।
13: प्राचीन परंपरा का जीवंत रूप है चमोली की लठमार परंपरा का वाहक ये नौठा कौथिग मेला। यहाँ लठमार परंपरा एक प्रतीकात्मक युद्ध की प्रतीक है, जिसके लिए पहले खेती के मालगुजार के नेतृत्व में गाजे बाजे देव डोली और लाठी डंडों के साथ नौठा नृत्य दल मंदिर पहुँचता है। इसके बाद दोनों दलों के बीच लाठी डंडों का प्रतीकात्मक युद्ध शुरू होता है। युद्ध के बाद ढोल दमाओं की थाप पर दोनों दल अपने नृत्य का प्रदर्शन करते हैं और फिर अंत में लठमार योद्धा आपस में गले मिलकर एकता का संदेश देते हैं।

0: यहाँ भगवान आदि बद्रीनाथ जी को नए गेहूं जौ का अन्न चढ़ाया जाता है। इस दौरान शिवखली इलाके की महिलाओं ने चौफुला, चाचरी और झुमेलो जैसे परंपरागत नृत्य प्रस्तुत किए।
1: ये पुरातत्व महत्व से भी बहुत मंदिर जो है, ये बहुत पुरातत्व महत्व की जो मंदिर है हमारे, इसकी जो है होना, जिसके संरक्षण के कार्य भी होने चाहिए, गेस्ट हाउस भी यहाँ पर तैयार होने चाहिए, यहाँ पर जो है पार्किंग की व्यवस्था की समस्या वो होनी चाहिए।
0: तीन दिन के इस मेले में भारी भीड़ उमड़ रही है। स्थानीय लोगों का मानना है कि इन मंदिरों का भी प्रचार प्रसार के साथ यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए, वरना लोग यहाँ रुक नहीं पाते हैं।
2: इसमें हमारे 27 गांव ग्रामीण और ठाकरों के 27 गांव हैं इस पूरी इलाके में, मल्ला चांदपुर में। उन गांवों की तमाम दर्शक जो आते हैं मेले में और खेलने के लिए, नाचने के लिए, वो सब लोग यहाँ पर आए भी थे। सारे लोग बाजे गाजे के साथ आते हैं और अभी प्रतीकात्मक जो डंडे आपने देखे वो प्रतीकात्मक यहाँ पर आते हैं, और केवल वो शो के लिए मेले में आके वो एक सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए वो किया जा रहा है।
0: आदि बद्री धाम सप्तबद्री की यात्रा का प्रथम स्थल है। यहाँ भगवान विष्णु के प्राचीन मंदिर है, जिन्हें आदि शंकराचार्य से भी जोड़ा जाता है। बर्फबारी के चलते बद्रीनाथ बंद रहने पर यहाँ विशेष पूजा अर्चना होती है। नौठा कोतिक लठमार मेला इस धार्मिक स्थल को लोक संस्कृति से जोड़ने का अनुपम माध्यम बन गया है। ये मेला गढ़वाल की जड़ों को मजबूत करने का महत्वपूर्ण माध्यम साबित हो रहा है। स्थानीय लोग इसे अपनी सांस्कृतिक पहचान का उत्सव मानते हैं। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, कुलश्री।
3: चलिए अब आपको दिखाते हैं सोशल मीडिया के वायरल वीडियोस। कुछ वीडियोस आपको हंसाएंगे तो कुछ वीडियोस आपको इमोशनल कर देंगे।
4: ट्रेन के अंदर एक महिला के वट सावित्री व्रत की पूजा का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसपे देखा जा सकता है कि महिला ट्रेन कोच के फर्श पर एक

0: अभिनंदन के इस वीडियो को उसी ट्रेंड से जोड़कर देखा जा रहा है, जहां भारतीय फूड कल्चर की लोकप्रियता दुनिया भर में फैलती दिख रही है। सोशल मीडिया पर एक भावुक कर देने वाला वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग इंसानियत और मासूमियत दोनों की तारीफ कर रहे हैं। वीडियो में एक बच्चा सड़क किनारे महात्मा गांधी की तरह शांत और स्थिर खड़ा नजर आता है, जिसका पूरा शरीर सिल्वर पेंट से ढका हुआ है। वो एक स्टैचू की तरह खड़ा दिखाई देता है, लेकिन भीड़ में मौजूद लोग उसे नजरअंदाज कर आगे बढ़ जाते हैं। तभी एक छोटी बच्ची वहां आती है और बच्चे को ध्यान से देखकर समझ जाती है कि वो भूखा है। बिना किसी हिचकिचाहट के वो अपने हाथ में रखा खाना उसके साथ साझा कर देती है। इसके बाद दोनों बच्चे मिलकर सादगी और प्यार के साथ खाना खाते नजर आते हैं, जो देखने वालों का दिल छू लेता है। लखनऊ से सामने आया एक मजेदार वीडियो इन दिनों जमकर सुर्खियां बटोर रहा है, जिसे देखकर लोग ठहाके लगाने पर मजबूर हो जा रहे हैं। वीडियो में एक शख्स अपनी डॉगी को टहलाने निकला है, लेकिन खास बात यह है कि वो खुद पैदल नहीं बल्कि स्कूटी पर बैठा हुआ नजर आता है। वही डॉगी सड़क पर दौड़ता हुआ उसके साथ साथ वॉक कर रहा है और मालिक स्कूटी चलाते हुए उसकी रस्सी पकड़े हुए है। ये अनोखा नजारा देखकर लोग हैरान भी हैं और खूब एंटरटेन भी हो रहे हैं। वीडियो रिकॉर्ड करने वाला शख्स भी मजेदार कमेंट्री करता सुनाई देता है। देखो अंकल, स्कूटी से डॉगी घुमा रहे हैं, खुद नहीं चल रहे हैं, लेकिन डॉगी को जरूर टहला रहे हैं।
1: स्कूटी से कुत्ता टहला रहे हैं, तभी ऐसी हालत है। अगर देख लो, मैं इसकी स्कूटी से कुत्ता टहला रहे हैं। चलो कम से कम कुत्ता तो टहला रहे हैं, खुद नहीं टहल।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: कौन सा अहंकार करने पे जीवन में अपयश मिलने लगता है? कौन सा अहंकार करने से धन की बड़ी हानि हो जाती है? और कौन सा अहंकार करने से करियर में दिक्कतें आ जाती हैं? अहंकार का आपके जीवन पर कैसा पड़ता है प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।

0: Grab some friends and an ice-cold Mountain Dew today.
1: Mountain Dew!
2: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. This guitar about as hard as a cane. To top 40 hits you just can't get enough of. Thank God I get to. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
6: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
7: इटली दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रोम में दोनों देशों में स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर चर्चा। इटली की पीएम मेलोनी को प्रधानमंत्री मोदी ने गिफ्ट की।

यूपी के 11 शहरों में लू और गर्मी का रेड अलर्ट और एम पावर हाउस में लगाए गए कूलर। अमृतसर के गोल्डन टेंपल में श्रद्धालु के लिए विशेष इंतजाम। मेघालय के उमरोई में सैन्य अभ्यास प्रगति का शुभारंभ। 12 मित्र देश कर रहे हैं भागीदारी। सैन्य टुकड़ियों का जोरदार स्वागत। कोची में INS सुनैना का भव्य स्वागत। इंडियन ओशन शिप सागर पहल के तहत तैनाती के दूसरे संस्थान

पूर्वक संपन्न कर लौटा शिप। श्रीगंगानगर के युवा ऑलराउंडर मानव सुथार का टीम इंडिया में चयन, घर में जश्न का माहौल, बधाई देने वालों का लगातार।

0: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। डिजिटल पूजा पर आज हम करेंगे बड़ी चर्चा। दरअसल देखिए, डिजिटल दौर है, हर जगह पर डिजिटलाइजेशन है, हर कोई डिजिटल दुनिया में ही है और ऐसे में पूजा पाठ भी डिजिटल तरीके से हो रहे हैं। लेकिन ये कितना सही है, कितना गलत है, इस पर आज चर्चा करेंगे। मामला कहां से उठा है पहले वो बता देते हैं। बद्रीनाथ के ब्रह्म कपाल में तीर्थ पुरोहितों ने ऑनलाइन ठगी और अवैध रूप से किए जा रहे श्राद्ध तर्पण पिंड कार्यों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हाल ही में तीर्थ पुरोहितों ने काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जताया। आरोप ये लगाया कि ब्रह्म कपाल में पिंडदान और तर्पण के नाम पर एआई से भी वीडियो का इस्तेमाल कर ऑनलाइन पूजा के नाम पर पैसे वसूले जाते हैं। तो ऐसे में तीर्थ पुरोहित महापंचायत ने इसका विरोध किया है। तो क्या पुरोहितों के कार्यक्षेत्र में हो रहा है अतिक्रमण? डिजिटल पूजा कितनी सही कितनी नहीं, इसी को लेकर आज हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ देश के जाने माने धर्मगुरु और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के सदस्य भी मौजूद रहेंगे। तो डिजिटल पिंडदान पर विवाद क्यों हो रहा है? दरअसल बद्रीनाथ में ब्रह्म कपाल पुरोहितों के इस विरोध के पीछे तर्क क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। चलिए आपको बताते हैं। दरअसल हुआ ये कि स्थानीय पुरोहित समाज ने यहाँ ऑनलाइन पूजा का विरोध किया। बद्रीनाथ में तीर्थ पुरोहितों ने ये मामला उठाया और इस दौरान तीर्थ पुरोहितों ने प्रदर्शन भी किया, काली पट्टी बांधकर। पुरोहितों ने काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जताया और उन्होंने ऑनलाइन पूजा के नाम पूजा का विरोध किया। बद्रीनाथ में तीर्थ पुरोहितों ने ये मामला उठाया और इस दौरान तीर्थ पुरोहितों ने प्रदर्शन भी किया, काली पट्टी बांधकर। पुरोहितों ने काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जताया और उन्होंने ऑनलाइन पूजा के नाम पर हो रही ठगी के आरोप लगाए। पुरोहितों का आरोप है कि एआई वीडियो के जरिए ऑनलाइन पूजा करवाई जा रही है, जबकि परंपरा के तहत ब्रह्म कपाल में पिंडदान होते हैं और साथ ही पुरोहितों ने बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी है। पुरोहितों ने पुलिस अधिकारियों से भी इसकी शिकायत की है। इतना ही नहीं, तप्त कुंड में भी अवैध रूप से कर्मकांड करवाने के आरोप लगाए गए हैं, लेकिन उनका कहना है कि ऑनलाइन पिंडदान शास्त्र सम्मत नहीं है। पुरोहितों ने इसके पीछे सदियों पुरानी परंपरा का हवाला देते हुए कहा कि वो प्रभावित हो रही है। वैसे मान्यता यह है कि ब्रह्म कपाल में पिंडदान से पितृदोष का प्रभाव कम हो जाता है और इसीलिए लोग वहां जाते भी हैं पिंडदान कराने के लिए। बहरहाल, स्थानीय पुरोहितों का कहना है कि श्रद्धालुओं को गुमराह किया जाता है, ऑनलाइन पूजा के नाम पर उन्हें ठगा जा रहा है और इस मामले में सख्त कार्रवाई की जरूरत है।
1: हम लोग अपने एक मुद्दे पर यहाँ पर एक छोटी सी बात सभी जो है समाज से और सरकार से रखना चाहते हैं। हम लोग आज जितने भी तीर्थ पुरोहित हैं यहाँ पे, हमने एक फैसला लिया है कि हम लोग काली पट्टी बांधकर कुछ विरोध कर रहे हैं, जिसमें हमारी मांग यह है कि अभी ब्रह्म कपाल तीर्थ पुरोहित में कई लोग, कई असामाजिक तत्व जो बाहर से पिंडनाथ के नाम पर कई फ्रॉड जानकारियाँ, फ्रॉड वेबसाइट आदि बनाकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं और हमने वहाँ आने वाले तीर्थयात्री या श्रद्धालुओं को गुमराह किया जा रहा है, जिस पर हम ब्रह्म कपाल तीर्थ पुरोहित और हमारे माननीय हमारे चारों तीर्थों के अध्यक्ष उमानंद सही जी, उन्होंने यह फैसला लिया है हम सब लोगों ने मिलकर कि हम इसका घोर विरोध करेंगे और आगे भी हम लोगों ने यह निश्चय किया है अगर इस चीज पर कार्रवाई नहीं होगी तो आगे हमारा घोर विरोध होगा। हम लोग इसमें आगे उग्री जो है हड़ताल करेंगे, सभी लोग मिलकर।
0: तो चलिए आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हेमंत द्विवेदी, चेयरमैन है श्री बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमेटी से। हमारे साथ इस वक्त राज मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, एस्ट्रोलॉजर, वान्यारा जी एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हेमंत जी, शुरुआत में आप ही से करूंगी, पूरा मामला क्या है, आखिर विरोध किस बात को लेकर हो रहा है?
2: जी नमस्कार
0: जी सर,
2: ये बात सही है कि डिजिटलाइजेशन का जमाना है, लेकिन जो हमारे ये तीर्थ स्थल है, जो ब्रह्म कपाल के जो हमारे तीर्थ पुरोहित हैं जिन्होंने इसका विरोध भी किया है, और ये बात मैं मानता हूँ कि उनका विरोध बिल्कुल जायज है क्योंकि ये शास्त्र सम्मत भी नहीं है और इन स्थानों की एक अपनी मान्यता है, ये अपनी परंपराएं हैं और भारत की जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति और भारत की जो हमारे इस प्रकार के जो हमारे तीर्थ स्थल है उन सब की एक अपनी महत्ता है। मैं समझता हूँ कि जिस तरह से ये ऑनलाइन और ये डिजिटलाइजेशन का एक वो लेकर कि हम आज इसके माध्यम से एआई के माध्यम से भी पिंडदान कर रहे हैं, वहां पर ऑनलाइन से पिंडदान कर रहे हैं, तो निश्चित ही ये मैं समझता हूँ शायद परंपराओं के खिलाफ है। और इस पर इसका कुछ लोगों ने इसके द्वारा फ्रॉड तरीके से फर्जी वेबसाइट भी बनाई हुई है और देश के अंदर 140-120 करोड़ सनातन धर्मी हैं पूरे भारत के अंदर, तमाम पूरी देश दुनिया से लोग यहाँ पर बद्रीनाथ की स्थल को मानते हैं। तो उसके कारण मैं समझता हूँ कि ये कहीं ना कहीं परंपराओं के साथ जो है कि ये खिलवाड़ हो रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑनलाइन पिंडदान की कोई मान्यता नहीं है। जो उस स्थल पर आकर, जो वहां पर उस स्थान पर आकर जो पूजाएं हैं, जो परंपराएं हैं, वो स्थापित जो होती हैं, उनको उसी स्थल पर आकर ही उनकी एक मान्यता है। तो ये बात सही है कि इसका इस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जो इस तरह से कुछ फर्जी वेबसाइट के द्वारा और कुछ इस तरह से अपने जो है अपने सनातन धर्म और अपने जो इन स्थलों की जो मान्यता है उनको लेकर भी कहीं ना कहीं जो है गुमराह कर रहे हैं और उसका संदेश भी जो है समाज के बीच में गलत जा रहा है, क्योंकि फिर इन स्थलों की एक महत्ता भी समाप्त हो जाएगी। धीरे धीरे लोग यहाँ आएंगे क्यों फिर, जब सब कुछ आप ऑनलाइन ही कर देंगे तो फिर इन स्थलों में आने का कोई महत्व नहीं रहेगा।
0: बिल्कुल नहीं। हेमंत जी आप आगे बढ़ो क्योंकि मेरे सहयोगी वहां से सीधा जुड़ेंगे। अभी हमारे साथ हम जुड़ चुके हैं कमल नयन सिलोनी, हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। कमल, आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि मामला देखिए काली पट्टी बांध के विरोध किया है, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जरा हमें विस्तार से बताइए वहां एक्चुअली होता क्या है। अगर हम भ्रम कपाल की बात करें, लोग वहां तक क्या पहुंच पाते हैं या उससे पहले ही उनको डाइवर्ट कर दिया जाता है, गुमराह किया जाता है, किस तरीके से ये पूरी ठगी का मामला चल रहा है वहां?
3: नवजोत, ये ब्रह्म कपाल जो है वो बद्रीनाथ यात्रा का मुख्य है और यहाँ पे जो पितरों का पिंडदान होता है, खासकर बद्रीनाथ मोक्ष का धाम है, ऐसे में यहीं पे पिंडदान के लिए जो श्रद्धालु होते हैं देश के कोने कोने से अपने पितरों की मोक्ष की कामना करने के लिए यहाँ पे पहुंचते हैं, ऐसे में ब्रह्म कपाल पहुंच रहे हैं श्रद्धालु यहाँ पे तो पहुंचते हैं। लेकिन जो ये काली पट्टी का मामला है ये विशेष तौर पे उसलिए है क्योंकि ऑनलाइन माध्यम से खासकर सोशल मीडिया पे इन दिनों कई पंडित बन चुके हैं जो बद्रीनाथ की पूजा ऑनलाइन माध्यम से रील बनाकर वीडियो बनाकर फेसबुक पे डालते हैं और लोग इनके बहकावे में आके इन लोगों को पूजा की जो अमाउंट होती है ऑनलाइन माध्यम से अपनी पूजा कराने का वो दे देते हैं, इस तरह से ठगी का शिकार हो जाते हैं। जबकि ब्रह्म कपाल की पूजा या बद्रीनाथ की पूजा, जब आप बद्रीनाथ जाओगे या फिर बद्रीनाथ की जो ऑनलाइन पूजाएं हैं वो मंदिर समिति बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की ऑनलाइन होटल पे ही बुक होती है, जो कल की होंगी परसों की होंगी जैसे भी जो होती है। लेकिन ऐसे इस तरह से कोई पंडित इस तरह की पूजाएं यहाँ पे करता नहीं है, बद्रीनाथ के बद्रीनाथ धाम से भी नहीं करता है। बद्रीनाथ की पूजाएं बद्रीनाथ में आने के बाद ही होता है। ब्रह्म कपाल का जो पिंड तर्पण है वो भी ब्रह्म कपाल आने के बाद ही यहाँ पे श्रद्धालुओं द्वारा दी जाती है।
0: ठीक है कमल, एक चीज बताइए, क्या लोग वहां तक पहुंचते, क्योंकि खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि बीच रास्ते में उनको गुमराह कर दिया जाता है कि आप दूसरी जगह जाइए, वहां हम जाके आपकी पूजा करा देते हैं, क्या ये भी मामला है या फिर उनका आरोप सीधे तौर पर यह है कि फर्जी पंडित ऑनलाइन ठगी कर रहे हैं ब्रह्म कपाल में पूजा के नाम पर?
3: जी, अभी का जो मामला है ये यही है कि जो ऑनलाइन माध्यम से, क्योंकि ब्रह्म कपाल जो बद्रीनाथ आएगा वो ब्रह्म कपाल जाता है,
0: ठीक है,
3: ऑनलाइन पे के नाम पे जो ब्रह्म कपाल के नाम पे ऑनलाइन जो वीडियो डाल रहे हैं, जो पूजा अर्चना कर रहे हैं ऑनलाइन, पता नहीं कहाँ ये मंदिर है, कहाँ ये ब्रह्म कपाल बनाते हैं, वहीं पे पूजा करते हैं और इसमें कई लोग ठग जाते हैं, जो खासकर जो गरीब होते हैं जो बद्रीनाथ की यात्रा पे नहीं आ पाते हैं वो लोग ठगे महसूस करते हैं। ऐसे में इन जो पंडा समाज है, तो तीर्थ पुरोहित है ब्रह्म कपाल का, इन लोगों ने यहाँ पे काली पट्टी बांध के इनके खिलाफ एक नया वो शुरू किया है, विरोध प्रदर्शन शुरू किया है ताकि जल्द से जल्द इन पे एक्शन हो, जितने भी वीडियो हैं, जितने भी ये लोग हैं इनको पकड़ा जाए ताकि लोग ठगी का शिकार ना हो सके कह के।
0: बिल्कुल, अभी तक मामला कहाँ पहुंचा है, क्या इसमें किसी की कोई गिरफ्तारी हुई है, क्या एक्शन हुआ है इसमें कोई?
3: जी, अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन ये लोग रोजाना विरोध कर रहे हैं काली पट्टी बांध के ही। इन लोगों का ये है कि जब तक कार्रवाई नहीं होती, आगे इन्होंने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है, देखते हैं क्या होता है।
0: बिल्कुल, चले कमल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। हेमंत जी अब मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए ये एक तरीके से एक मंदिर की एक अपनी परंपरा होती है और उस तरीके से जब हम जाते हैं, जाहिर सी बात है कि जो बद्रीनाथ धाम जा रहा है वो बहुत कठिन यात्रा भी है ये, और वहां पर पहुंचता है और ऐसे लोग जो कि लोगों को गुमराह करते हैं ऑनलाइन के नाम पर, क्या कुछ इन पर कार्रवाई के बारे में सोच रही है सरकार?
2: लेकिन यारिका जी, मैं जरूर आपका, क्योंकि आज तक एक देश का बड़ा चैनल है और बहुत सारे लोग देखते हैं, और यहाँ पर ये जानकारी जरूर सबके सामने आनी चाहिए कि श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति 1939 में ये टेंपल एक्ट बना था, टेंपल कमेटी बनी थी, और 47 टेंपल हमारे अधीन है, जिसमें श्री केदारनाथ जी और श्री बद्रीनाथ जी तो दो बड़े अधिष्ठान हैं। उसके साथ साथ हमारे पास 45 मंदिर और 45 हमारे टेम्पल हैं जो अधीनस्थ मंदिर समिति चलाती है। ये बात सही है कि धीरे धीरे डिजिटलाइजेशन के बहाने लगातार जिस तरह से फ्रॉड के वो हो रहे हैं, क्योंकि बद्रीनाथ और केदारनाथ जी में कोई भी ऑनलाइन पूजा, कोई भी ऐसा वो नहीं। हमारी जो अधिकृत वेबसाइट है, बद्री केदार टेम्पल कमेटी की वेबसाइट है, उसी के द्वारा ऑनलाइन पूजाएं जो हमारी हैं, या जितनी भी हमारी जो मंदिर से संबंधित जितनी पूजाएं होती हैं, वो सब कुछ हमारी इन्फॉर्मेशन हमारी वेबसाइट पर होती है। लेकिन ऐसा कहीं कोई व्यवस्था नहीं है कि आप ऑनलाइन पूजा कराइए,
0: ठीक है,
2: या ऑनलाइन जो है ब्रह्म कपाल का जो इनका पितृ तर्पण वाला जो हमारे ब्रह्म कपाल के तीर्थ पुरोहित हैं उनका एक वो है, वहां पर कई तरह के हमारे सारे जितने भी हमारे लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, भगवान बद्रीनाथ जी का टेम्पल है, हमारा नरसिंह मंदिर है, वहां पर केदारनाथ जी, हमारे केदारनाथ जी टेम्पल भी हमारे पास में है, हमारी मंदिर समिति उसका संचालन करती है। लेकिन लगातार कई दिनों से ये देखने में आ रहा है, और हमारे पास भी कई शिकायतें आ रही है, और हमने साइबर क्राइम को बहुत सारी शिकायतें यहाँ से भेजी है कि ये ऑनलाइन के माध्यम से लोगों के साथ ठगी कर रहे हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से जरूर ये कहना चाहूंगा कि वहां पर कोई भी, चाहे बद्रीनाथ जी हो और केदारनाथ जी हो, चाहे हमारे अधीनस्थ 45 मंदिर है, पंच केदार है, पंच बद्री है, नरसिंह मंदिर है, जितने भी जय भविष्य बद्री, हमारे जितने भी टेम्पल्स हैं, कहीं पर भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि ऑनलाइन पूजा के माध्यम या ऑनलाइन से हम कोई पूजा कराते हो,
0: ठीक है।
2: क्योंकि इन तीर्थ स्थलों का महत्व ये है कि जो यहाँ तक पहुंचता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो हमारा बद्रीनाथ जी और केदारनाथ जी हमारी बहुत कठिन यात्रा करके जो है कि यहाँ पर देश दुनिया से लोग तीर्थयात्री यहाँ पर पहुंचते हैं, और आज लाखों की संख्या में आप देखेंगे लोगों की आस्था, ये सनातन धर्म की आस्था के केंद्र है, ये सनातन धर्म की प्राण वायु है, और लोग जो देश दुनिया के सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं उनकी सबकी बड़ी आस्था इन पर रहती है, और इस स्थल पे आने का ही एक अपने आप में महत्व है, और वो लोग यहाँ तक पहुंचते हैं। लेकिन इसका कोई, जिस तरह का आज की तारीख में ये वेबसाइट, ये ऑनलाइन और ये इस तरह से सब चल रहे हैं, इसमें कई फ्रॉड चल रहे हैं, प्रसाद भी ऑनलाइन मंगा दे रहे हैं, जबकि प्रसाद ऑनलाइन देने की कोई व्यवस्था नहीं है, कहीं पूजा कोई ऑनलाइन हम पूजा नहीं कराते हैं, ऑनलाइन हमारे यहाँ कोई भी चीजें नहीं है,
0: जल प्रसाद तमाम चीजें ऑनलाइन होती है। बिल्कुल, चलिए मैं अब इसी पर आती हूँ। हेमंत जी आप रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि इस पर और आगे चर्चा करेंगे। अब जरा हम दर्शकों को समझा देते हैं। सबसे पहले राज मिश्रा जी आपके पास आऊंगी, बद्रीनाथ धाम में जब जाते हैं एक ये मुद्दा है, लेकिन उससे पहले हम आगे बढ़े, बताइए जरा ब्रह्म कपाल का महत्व क्या है, एक बार हमारे दर्शकों के लिए बता दीजिए।
4: देखिए, ब्रह्म कपाल एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है यहाँ पर, क्योंकि भगवान शंकर को जब ब्रह्म हत्या का पाप लगा था, वो भगवान ब्रह्मा का जो पांचवा सिर था, जहां उनको अहंकार उत्पन्न हुआ और भगवान शिव ने उस सिर का छेदन किया था, तो उस सिर उनके हाथ में क्योंकि चिपक जाता है, और यही वो स्थान था जहां पर भगवान शंकर को भी ब्रह्म हत्या से मुक्ति की प्राप्ति हुई थी। ब्रह्म हत्या से जो उनका दोष था वो यहाँ पर खत्म हुआ था, इसीलिए क्योंकि वो ब्रह्मा जी का जो सर था वो यहाँ पर भगवान शिव के हाथ से अलग हुआ, इसलिए इस जगह का नाम रखा गया ब्रह्म कपाल। उसके बाद भी अगर देखा जाए, जब अगर हम बात करें कौरव और पांडव के युद्ध को लेकर के, जहां पर पांडव के अपने सहोदरों का, अपने गुरु इत्यादि की हत्या का जो दोष था, वो दोष जाकर के वहां पर लगता है, तो वहां जाकर के जो तर्पण था, जो वहां जो जब स्वर्ग की जो यात्रा प्रारंभ करते हैं पांडव, उस यात्रा के प्रारंभ से पहले यही वो स्थान है जो बद्रिका आश्रम का, जो ये बद्रीनाथ धाम का ये स्थान है, यहाँ पर वो अपने सहोदरों की मोक्ष के लिए, सहोदरों की मुक्ति के लिए यहाँ पर उनका तर्पण करते हैं, यहाँ पर उनके लिए पूजन इत्यादि करते हैं, यहाँ पर उनके मोक्ष के लिए, उनकी मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, और यहाँ से वो अपनी यात्रा को प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले क्योंकि भगवान शंकर को जो ब्रह्म हत्या का पाप था उससे यहाँ छुटकारा प्राप्त हुआ, जो ब्रह्मा जी का जो सर था, जो एक पांचवा सर था, वो यहाँ पर छूटा, इसलिए उसको ब्रह्म कपाल स्थान नाम दिया गया। उसके बाद पांडवों ने यहाँ पर अपने पितरों के लिए किया वो स्थान हुआ, और शास्त्र ऐसा बार बार वर्णन करता है कि जिनको गया श्राद्ध करने पर भी जिनके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, जिनके पितरों को सद्गति प्राप्त नहीं होती है, अगर वो बद्रिका आश्रम में आकर के अपने पितरों के निमित्त ब्रह्म कपाल में श्रद्धा पूर्वक अगर श्राद्ध करते हैं, उनके मोक्ष का उपाय करते हैं, तो निश्चित रूप से उसका पूर्ण फल उनको प्राप्त होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये क्षेत्र कोई साधारण क्षेत्र नहीं है जहां पर जिसके नाम पर इस प्रकार की प्रक्रियाएं की जाए, ये क्षेत्र एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहां उसका एक विशेष महत्व है, जहां पहुंच करके अगर श्रद्धापूर्वक तर्पण इत्यादि किया जाए तो उसका लाभ होता है।
0: बिल्कुल, एक बार अब वान्या जी आपके पास आते हो, देखिए इसका महत्व तो हमने राजमिश्रा जी से जान लिया। जब इस तरह की पूजा होती है, स्पेशली अगर हम पिंडदान की बात करें, हम किसी और पूजा की भी बात करें, एआई का जमाना है, ऑनलाइन का जमाना है, अभी हेमंत जी बड़े अच्छे से बता भी रहे थे कि आजकल तो ऑनलाइन आपको प्रसाद मिल जाता है, गंगा जल चाहिए तो आप ऑर्डर कर दीजिए, सब कुछ मिल जाता है, क्या इसका कोई लाभ होता है? क्या वाकई एक तो वो है कि आप सच्चे मन से, सच्चे भाव से, श्रद्धा भावना के साथ जा रहे हैं, वहां उस पूजा में शामिल हो रहे हैं, खुद मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, खुद वहां पर तमाम तरह की जो विधियां हैं उसको निभा रहे हैं, और एक ऑनलाइन या फिर एआई के माध्यम से, इसका कितना पुण्य मिलता है और ये कितना सही है?
5: देखिए जेएनटी के माध्यम से आप सभी को मेरा नमस्कार। नवजोत जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल अग्री करती हूँ। कोई भी टेक्नोलॉजी आती है तो टेक्नोलॉजी का यूज भी होता है और वही टेक्नोलॉजी का मिसयूज भी होता है। आज की डेट में आपके चैनल से ही हमने कई बार कहा था कि एआई का मिसयूज बहुत ज्यादा पीक पर होगा। ये कंप्लीट जो केस है, यहाँ पर जो है भोले भाले जो श्रद्धालु हैं, जो शरणार्थी हैं, वो फंसते हैं इस ऑनलाइन के चक्रों में, और कहीं ना कहीं जो वेबसाइट्स हैं, मुझे ऐसा लगता है जो भी एंड यूजर है, अगर आप नहीं देख पाते तो एटलीस्ट उन वेबसाइट्स की ऑथेंटिसिटी जो है आप चेक कराएं। अगर आपको कुछ गलत लगता है आप साइबर क्राइम को रिपोर्ट करें। आप कहीं भी पैसे दे रहे हैं तो एटलीस्ट आप एक बार चेक तो कर लीजिए कि आप कहाँ पैसे दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, उस ऑनलाइन की कितनी रेलिवेंस है। आज इतने सारे वेबसाइट्स चल रहे हैं,
0: सवाल यहाँ पर ये है ना कि क्या पूजा पाठ ऑनलाइन हो सकते हैं? आप पितरों का तर्पण ऑनलाइन कर सकते हैं?
5: देखिए आप नहीं कर
0: उससे पुण्य कितना मिलेगा, आप जो या फिर ये बस खाना पूर्ति हो रही कि ठीक है हमने करना है, हमने कर दिया, चलिए काम खत्म।
5: ये कोई फॉर्मेलिटी या रजिस्टर में कोई अटेंडेंस नहीं है जो एक इंसान को लगानी है। डेफिनेटली एक बंदा एक तीर्थ स्थल पे जाता है, इतने कष्ट लेके जाता है, और उस जो स्थल की ऊर्जा होती है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। कहते हैं किसी भी धार्मिक स्थल पे जाते हैं तो वहां पर जो है आप एक दो दिन जरूर रहकर आओ। आप सारी चीजें कैसे ऑनलाइन कर सकते हैं, आप कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं कि वो जो सामान है वो आएगा नहीं आएगा, वो पूजा कितनी रेलिवेंस होगी? सी कोरोना के टाइम पे बहुत सारी चीजें ऑनलाइन आई थी, लेकिन अभी जो है टचवुड ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग अपने जो लाइफस्टाइल है उससे आप थोड़ा सा टाइम निकाल कर अगर आप जाते हैं तो डेफिनेटली उसका फल बिल्कुल अलग है। आप कैसे संकल्प लेंगे ऑनलाइन में, कैसे आपका फिजिक, और शास्त्रों में भी इस चीज की मान्यता नहीं है, और जो एक आपकी फिजिकल प्रेजेंस है उसकी मान्यता, और एक ऑनलाइन डिजिटल से किसी की बहुत ज्यादा मजबूरी है वो एक एक्सेप्शनल केस है। लेकिन जहां पर एक्सेप्शन नहीं है, जहां आप जा सकते हो, आप कहीं भी बैठे हो इंडिया में या दूर दराज आप किसी विदेश में बैठे हो, तो भी आप लीव्स लेके जब भी आप आ सकते हो, मुझे ऐसा लगता है कि वो फल और जो आपकी आंखों का सेटिस्फेक्शन जो आप अपने हाथों से करते हो, जो आप पिंडदान अपने हाथों से करते हो ऑनलाइन, आपके बिहाफ पे हर चीज हो रही है। तो अब बिहाफ पे देखिए, जहां वही मैं कह रही हूँ कि जहां कोई मजबूरी है, सपोज कोई बच्चा है उसका जाप वो नहीं कर सकता तो उसके पेरेंट्स को बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर अगर कोई मजबूरी नहीं है तो ऑनलाइन आपके पैसे भी जा रहे हैं, आपको पता भी नहीं है कि वो चीज हो रही है नहीं हो रही है, और उसका आपको क्या ही फल मिलेगा जहाँ पर
0: इतनी
5: सिर्फ एक मॉनेटरी कॉन्ट्रीब्यूशन है।
0: बिल्कुल, तो आपने कहा कि इसकी बुकिंग ऑनलाइन होती है, ठीक है, दो चीजें होती है यहाँ पर, एक तो डिजिटली हमें थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा, लोगों को भी थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा कि क्या वाकई जहां पर वो बुकिंग करा रहे हैं या फिर अगर वो ऑनलाइन भी कुछ करवा रहे हैं पूजा, वो सही है नहीं। दूसरी बात, जब ऑनलाइन बुकिंग होती है, सर थोड़ा सा दर्शकों के लिए बताते जाइए, उनको इन्फॉर्मेशन भी दीजिए, वो लोग जो कि क्योंकि अभी तो यात्रा बहुत लंबी चलनी है, बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचेंगे, लाखों के करीब भक्त वहां पर पहुंच रहे हैं, जरा उन्हें बताइए अगर वो वहां पर जाके पिंडदान करना चाहते हैं ब्रह्म कपाल में तो प्रक्रिया क्या है? हेमंत जी,
2: जी जो वहां पर हमारा ब्रह्म कपाल तीर्थ पुरोहितों का एक समाज है, जो पूरे ब्रह्म कपाल पर वहां पर उनकी एक एसोसिएशन है, वहां पर हमारे सारे तीर्थ पुरोहित रहते हैं, और वो आज से नहीं, मैंने जैसे कहा कि पूरी सनातन धर्म की जब से उत्पत्ति हुई है और सनातन धर्म को जो लोग मानने वाले हैं और पूरी देश दुनिया से जो लोग वहां पर पितृ तर्पण के लिए आते हैं, पितृ दोष के निवारण के लिए वहां पर पहुंचते हैं, तो वहां पर उनका एक पूरा एसोसिएशन है, उन सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाती है, और सारी तकनीकी माध्यमों, चाहे आप डिजिटल माध्यम की बात करें या न्यूज़पेपर प्रिंट मीडिया की बात करें, हर माध्यम से हर किसी को हमारे जो जो हमारे धर्म ग्रंथ भी हैं, जो हमारे धर्माधिकारी भी हैं, जो हमारे इस कार्य को संचालित करते हैं, उन सबके द्वारा समय समय पर यह बताया जाता है और सबको ये बात पता होती है। तो वहां पर जो आते हैं तो वहां पर सारी व्यवस्थाएं हैं उनकी, मैंने जैसे कहा कि पूरी एसोसिएशन है, और वहां पर हमारा ब्रह्म कपाल के नाम से जो जितने भी हमारे तीर्थ पुरोहित हैं, तीर्थ पुरोहित समाज के वहां पर बहुत सारे हमारे तीर्थ
0: नहीं, मैं जो हेमंत जी जानना चाह रही हूँ इसके लिए क्या ऑनलाइन बुकिंग होती है, क्या लोग ऑनलाइन इसको
2: नहीं बुक... कोई ऑनलाइन, मैंने पहले ही आपसे कहा है कि बद्रीनाथ जी केदारनाथ जी के लिए कोई ऑनलाइन ऐसी व्यवस्था नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से मैं फिर कहना चाहता हूँ देश दुनिया के लाखों दर्शकों को जो सुन रहे होंगे, जो देख रहे होंगे, कि हमारे यहाँ कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं। इन तीर्थ स्थलों की अपनी एक मान्यता है, यहाँ पर आने का ही एक अपना महत्व है। ये कठिन यात्राएं जो आने के बाद में इस स्थल पर जो व्यक्ति पहुंचते हैं तो उसके बाद उसकी यात्रा जो संपन्न होती है, जिस मकसद के लिए उस यात्रा को करते हैं, उसका ऑनलाइन और ये कोई एआई के माध्यम से या वेबसाइट के माध्यम से ऐसा कोई भी प्रावधान हमारे यहाँ मंदिर समिति इस पर नहीं।
0: चलिए ये चीजें आप क्लियर करते जा रहे हैं। एक बार राज मिश्रा जी, शास्त्र क्या कहते हैं स्पेशली, अगर अभी देखिए वाणी जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि आपको आइडियली तो फिजिकली प्रेजेंट होना चाहिए, कोविड काल में चीजें ऑनलाइन हुई हैं, लेकिन अब वो समय नहीं है जब यात्रा सुचारू रूप से चल रही है, तो क्या जब भी आपको समय मिले आप तब जा सकते हैं? शास्त्रों में क्या बताया गया है, क्या ऑनलाइन की हुई पूजा आपको उतना ही फल देती है या नहीं, या फिर ये हम कहें कि एक ठगी का जरिया बना हुआ, जैसे कि यहां पर विरोध भी हो रहा है?
4: बिल्कुल, मैं उस दोनों विषय पे आता हूँ। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक शब्द कहा था कि कालिमा लग्न से धर्म सब लुप्त भये सदग्रंथ और दम्भिन निज मति कल्प कर प्रगट किए बहुपन। आज की परिस्थिति इस प्रकार से हो गई है कि एक्चुअल में जो धर्म की वास्तविक परिभाषा थी, जो धर्म का वास्तविक जो स्वरूप था, उस स्वरूप को कहीं ना कहीं लोग भूल करके जल्दबाजी में बहुत कुछ प्राप्त करने के लिए या जो कुछ समाज में भ्रमित किया जा रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं लोग भ्रमित हो रहे हैं, लोग भाग रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब सबसे बड़ी बात ऑनलाइन ठगी वाला विषय है। अभी शायद कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा नवजोत जी कि एक ऑपरेशन कालनेमी चलाया था उत्तराखंड सरकार ने, और उसके अंदर इवन आप अन्य धर्म से जुड़े हुए लोग, अन्य पंथ से जुड़े हुए बहुत सारे लोगों को अपने साधु बने हुए, संत बने हुए, हरिद्वार के अंदर पूजा कराते हुए, रुद्राक्ष बेचते हुए, जिनका कोई लेना देना ही नहीं था, वो लोग जाकर के मिले हैं। सबसे बड़ा विषय जो है वो ठगी का विषय है। अगर किसी तीर्थ क्षेत्र के अंतर्गत आप मौजूद होते हैं तो आप आत्मिक रूप से वहां प्रेजेंट होते हैं। अगर आप जब आप पूजन कर रहे होते हैं तो आपकी आत्मा जुड़ी होती है, और शास्त्र कहता है कि शरीर से पूजन कर
6: में आपका लाभप्रद होता है, वो आत्मा आपकी जो है वो परमात्मा से
4: जुड़ी है। अगर आत्मा आपकी परमात्मा से जुड़ी हुई है तो आपको उस पूजन का लाभ प्राप्त होगा। तो ये कह देना कि क्या ऑनलाइन पूजा और फिजिकल पूजा दोनों एक जैसी है, मुझे लगता है बिल्कुल भी नहीं है। ऑनलाइन पूजा फिजिकल पूजा की जैसी नहीं हो सकती है। फिजिकल पूजा में हम वहां परमात्मा का ध्यान करते हैं, आत्मिक रूप से उसको महसूस करते हैं और उस जगह पर रह करके अपने आप को परमात्मा से कनेक्ट कर पाते हैं। जहां तक संभव वहां तक फिजिकल पूजन ही होना चाहिए। लेकिन हाँ, ये एक भी एक विषय है कि यदि वो मंदिर का जो प्रांगण, यदि मंदिर की कमेटी है, मंदिर की संस्था है, मंदिर के लोग हैं, यदि कोई इस प्रकार का पूजन इत्यादि करते हैं, क्योंकि ये भी शास्त्र कहता है कि कहीं भी कोई आपके लिए प्रार्थना कर सकता है, करने में दो राय नहीं है, करने में दोष नहीं है, लेकिन क्या वो मंदिर का जो एक्चुअल ऑथराइज जो लोग हैं, जो एक्चुअल करने वाले हैं, वो कर रहे हैं, या बीच में कोई और कालनेमी है जो आपको न तो ब्रह्म कपाल से उसका कोई लेना देना है, ना उसका धर्म से कोई लेना देना है, वो सिर्फ आपके पैसे की ठगी कर रहा है। तो मेन विषय यहां पर जो है नवजोत जी, वो ठगी का है। शास्त्र सबसे बेहतर मानता है आपके फिजिकल पूजन को। कोई बहुत बड़ी प्रक्रिया है कि आप चलने में असमर्थ हैं या कोई और विषय है, तो अगर वहां का कोई व्यक्ति है जो एक्चुअल उस मंदिर को, ऐसे मुझे लगता है कि ये जिनसे हम अभी चर्चा में जुड़े हुए हैं, जो ये मंदिर कमेटी को निकालना चाहिए इस प्रकार का विरोध के बजाय।
0: हेमंत द्विवेदी जी चेयरमैन है बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमेटी के, उनसे आगे क्योंकि एक्शन क्या हुआ है जानूंगी। लेकिन राज मिश्रा जी एक बात और बताइए मुझे बिल्कुल क्लियरली। देखिए बहुत सारे ऐसे पंडित एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं जो बताते हैं कि भाई आपको फलाकाल सर्प दोष है या फिर आपको इस तरह की पूजा करानी चाहिए, हम पूजा कर देंगे। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि आज की तारीख में भी, हम यहाँ सिर्फ बद्रीनाथ की बात नहीं कर रहे हैं, वहां तो उनके कार्यक्षेत्र में अतिक्रमण हुआ, तो फिर उसके बाद मामला उठा क्योंकि उन्होंने काली पट्टी बांधी। लेकिन ऐसे बहुत सी ऐसी हमारे तीर्थ स्थल हैं जहां पर इस तरह की पूजा होती है, ऑनलाइन पूजा होती है, ये कह के कि हम आपके फला दोष की पूजा कर देंगे, आपको यहां पहुंचने की जरूरत नहीं है, आप फोन पे भी अवेलेबल रहेंगे तो भी चलेगा, एआई के जरिए पूजा हो रही है, वीडियो कॉल के जरिए पूजा हो रही है, ये कितना सही है सर?
4: शास्त्र ने एक बात कहा है नवजोत जी, उसमें एआई और वीडियो कॉल का मुझे लगता है रोल नहीं है, लेकिन अगर हम गरुड़ पुराण इत्यादि को पढ़ते हैं तो वहां पर इस चीज का जरूर वर्णन है, जिसे मान लिया जाए 1% एक उस विषय पर चर्चा आती है जब गरुड़ पुराण इत्यादि का अध्ययन किया जाता है कि आखिर किसी का अगर पुत्र नहीं है तो उसका श्राद्ध कौन करे, या उसके परिवार में कोई नहीं है तो आखिर उसका श्राद्ध कौन करे। तो ये सब वर्णन आता है कि मित्र श्राद्ध कर सकता है, पुरोहित श्राद्ध कर सकता है, जो उस व्यक्ति का मित्र इत्यादि है वो उसका श्राद्ध कर सकता है, वो उसका तर्पण कर सकता है, कर सकती है, वो उसका पिंडदान कर सकता है, कर सकती है, किसी का पुत्र नहीं है तो पुत्री पिंडदान कर सकती है। इस प्रकार के कुछ वर्णन आते हैं जहां पर ये मिलता है कि किसी के बिहाव पर कोई कर सकता है, लेकिन यदि वो उसका गुरु है या उसका मित्र है या उसका रिलेटिव है या कोई, अगर वो करने के योग्य है तब। तो इस प्रकार की परिस्थिति में गरुड़ पुराण इत्यादि के अंतर्गत चर्चा आई है कि उसको किया जा सकता है, लेकिन यहां पर तो वो वाला विषय है ना कि जब कोई वहां पर होगा, ब्रह्म कपाल में होगा, तब तो वो आपके लिए करेगा। जो उस जगह का पुरोहित है वो तो आपके लिए कर सकता है। अगर पुरोहित आपका लिए संकल्प लेकर के करता है कि ये मेरा यजमान है, इस यजमान के कल्याण हेतु मैं इस पूजन को करने जा रहा हूं, तब तो वो पॉसिबल है ना। यहां तो विषय ही अलग है, यहां लगता है मुझे कि ऑनलाइन पूजा का विषय नहीं है बल्कि सीधे सीधे फ्रॉड का विषय है, सीधे सीधे ठगी का विषय है कि जहां पर ना उस स्थान से वो जुड़े हैं ना कोई लेना देना है, सिर्फ वो बीच में पैसा कमाने का एक रास्ता, और ये शायद सभी तीर्थों में हो रहा है। और
0: वही सवाल कर रही थी ना राज जी, क्योंकि लोग डर जाते हैं, आप बता देते कि फला पूजा, अब लोगों के पास इतना समय नहीं है, वो इंतजार, वो लोग कहते कि ठीक है कब हमें वक्त मिलेगा ये पूजा कराने का, इससे अच्छा ये है कि हम ऑनलाइन ही करा लेते हैं। वाणी जी, इस पर आप क्या कहेंगे?
5: जी नवजोत जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और यहाँ पर मैं ऐसा बोलती हूँ कि ये फियर मॉन्गरिंग जो है, ये जो डर से जो है पैसे निकलवाना, और इसमें अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी जहां पर जो है बद्रीनाथ धाम में 550 फेक वेबसाइट्स जो हैं वो बनी हैं, जो किस चीज का दावा करती हैं, ऑन द स्पॉट एडवांस बुकिंग का और होटल बुकिंग का और हेलीकॉप्टर टिकट्स का जो है फेक दावा, ऑन द स्पॉट अवेलेबिलिटी का फेक दावा। हम लोगों को ये चीज चेक करनी पड़ेगी कि जहां पर भी हम बुकिंग्स कर रहे हैं वो ऑथेंटिक वेबसाइट्स होनी चाहिए, वो यूआरएल फेक नहीं होने चाहिए। वो जो है कस्टमर्स को प्रेशराइज करते हैं कि आप इमीडिएट पेमेंट करें और अपनी ही यूपीआई आईडी के थ्रू करें। यहाँ पर जो है आईडीज भी बहुत ज्यादा हैक हो रही हैं, तो एंड यूजर को भी ये चीज थोड़ी सी समझनी पड़ेगी कि आप कोई भी चीज जल्दबाजी में ना करें और आप कोई भी चीज डर के उससे ना करें कि आप ये नहीं करेंगे तो आपके साथ ये हो जाएगा। मैं ऐसा आपके चैनल से जीएनटी से बहुत क्लियर बोलना चाहती हूँ कि आप लोग अपना भी ब्रेन अप्लाई करें साथ में कि आप कहाँ पर क्या पेमेंट कर रहे हैं, वो कहाँ जा रही है, वो किसके पास जा रही है। आप उसके वेबसाइट के हाइपरलिंक्स चेक करें, वो वेबसाइट चल भी रही है, वो कितनी ऑथेंटिक है, क्या वो गवर्नमेंट वेबसाइट है। और ये चीज जो है मैं बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम की जो अथॉरिटीज है मैं उनको भी बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों की जो भी ऑथेंटिक और वेबसाइट्स है वो पब्लिकली जितना ज्यादा पब्लिसाइज हो कि आप लोग सिर्फ इन्हीं वेबसाइट्स को जो है यूज करें। और अगर किसी को कोई फ्रॉड वेबसाइट दिखती है तो आप साइबर क्राइम में जो है इस चीज को रिपोर्ट करो ताकि किसी और का भी जो है भला हो। पर रही बात डरने की, आप डर से जो है आप जो भी बुकिंग्स कर रहे हैं या डर से आप जो भी पूजा जो करते हैं या आप डर से कुछ भी ऐसा करते हैं तो अपने मन से सबसे पहले इस डर को निकालिए। ईश्वर कभी ये नहीं कहता कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपके साथ ये बुरा होगा, ऐसा नहीं है। और जब भी आपको समय मिले, जो आपकी अवेलेबिलिटी हो, आप उस टाइम पर वहां पर खुद जाएं, जो आप वो एनर्जी लेके आएंगे, जो ऑरा लेके आएंगे, जो अपने पितरों का आशीर्वाद लेके आएंगे, और ऑथेंटिक लोगों से अगर वो आप पूजा कराते हैं।
0: चंद्रांशु जी महाराज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत अहम विषय है चंद्रांशु जी, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लूंगी, तुरंत से आपके पास लौटूंगी, रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, जल्दी लौटेंगे, आप रहिए हमारे साथ।
7: At Byers Volkswagen, shop online, customize your deal, and finalize everything from home.
8: Drive home a new 2026 Volkswagen Tiguan S for $212 for 24 months with $49.99 due at signing.
7: Byers Auto, driving the next generation of buyers.
9: See dealer for details. Offer ends 6/30/26.
10: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow?
11: It's your boy,
10: just
11: Jay-Z.
10: Search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.

0: ऊर्जा को लेकर चर्चा हो रही है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हैं, चंद्रांशु जी महाराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रांशु जी स्वागत है आपका। देखिए चर्चा जो शुरू हुई थी वो हुई है बद्रीनाथ के जो पुरोहित हैं उन्होंने काली पट्टी बांध के विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि ऑनलाइन जिस तरीके से पिंडदान हो रहा है, पूजा हो रही है, वो बिल्कुल गलत है। एक तरीके से उनके कार्यक्षेत्र में अतिक्रमण की बात सामने आ रही है। अब सर सवाल यहाँ पर ये है कि जो आजकल पूजा होती है या विशेष पूजा होती है जो ऑनलाइन कर दी जाती है, ये कितना सही है?
1: बहुत बहुत धन्यवाद नवजोत जी। हमारे यहाँ की मान्यता है कि भावो ही विद्यते देवा भावग्राही जनार्दना। भगवान भाव में बसते हैं और भाव को श्रद्धा को ग्रहण करते हैं। भगवान मार्केटिंग के विषय नहीं है, भगवान श्रद्धा के विषय हैं। और उनके द्वारा किया हुआ उनके प्रति जो कार्य है वो श्रद्धा युक्त होकर के व्यक्ति करता है, उसको स्वीकार करते हैं। जहां तक मार्केटिंग युग की बात है, AI के द्वारा आजकल जो भी लोग कर रहे हैं, हम जहां तक जानते हैं, जितना जानते हैं, उसमें इस तरह की कोई बात नहीं है। लोग करते तो हैं पर वास्तविक में क्या कर रहे हैं वो एक प्रश्न खड़ा हुआ है। तो ये बिल्कुल जो भी आपत्ति वो एक उनके बिजनेस पर, उनके काम पर, ये बातें नहीं है। ये बात तो होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि मार्केटिंग पूजा पाठ करवाने लोगों का कोई बिजनेस व्यापार नहीं है। और जो लोग यजमान भी पूजा पाठ करवाने के बदले में 500 मजदूरों को देते हैं तो 500 पंडित को भी देना चाहिए, 1000 पंडित को भी देना चाहिए। इस भावना के साथ जो देते हैं, न उस पंडित का कल्याण है न उस यजमान का ही कल्याण है। पूजा में दी हुई सामग्री अगर ऐसा इसी भावना के साथ किसी ने दिया हुआ है, ऐसी सोच के साथ देता है कि पूजा में लगना तो कुछ भी चलेगा, तो जैसा पूजा वैसे देवता आशीर्वाद भी देते हैं, वैसे वरदान भी देते हैं, तो बिल्कुल जिन्होंने विरोध किया, हाँ विरोध उनका बिल्कुल ठीक है कि आजकल डिजिटल मार्केट के नाम से होता कुछ नहीं है। एक दुकान केवल चल रही है, ये रुकना चाहिए, क्योंकि इसमें आडंबर पाखंडबाज जैसी बातें हैं, इसमें वास्तविकता से बहुत ज्यादा दूरी बनी हुई है। तो इन चीजों से विरोध का होना चाहिए। और जो लोग जिनको श्रद्धा से कोई मतलब नहीं है, केवल दुकान चला रहे हैं, हमारे धर्म के साथ में, आस्था के साथ में, लोगों की भावनाओं के साथ में जो खिलवाड़ कर रहे हैं, ये रुकना चाहिए दुकानदारी। ये बिल्कुल सत्य है, उनका हम समर्थन करते हैं इस बात।
0: बिल्कुल, लेकिन ये सिर्फ यहाँ की बात नहीं है। अब यहाँ पर क्योंकि पुरोहितों ने काली पट्टी बांधी तो ये मामला आया, वो पुलिस के पास गए हैं, प्रशासन के पास, सरकार के पास भी ये मामला पहुंचा है। अगर कहीं ऑनलाइन ठगी का मामला है तो उसको लेकर अब जांच होगी। जैसा कि अभी आपसे कुछ देर पहले हमारे साथ सरकार की तरफ से भी नुमाइंदे हेमंत द्विवेदी जी मौजूद थे, उन्होंने कहा कि हमारे संज्ञान में है। लेकिन सर बड़ी बात यह है, यहाँ केवल हम बद्रीनाथ की बात नहीं करें, यही चर्चा वन्य जी और राज मिश्रा जी से हो रही थी। सवाल आपसे है चंद्रांशु जी महाराज, केवल एक मंदिर की बात नहीं है। देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि लोग अगर किसी पंडित से पूछते हैं या एस्ट्रोलॉजर से पूछते हैं तो वो कुछ ऐसे दोष आपकी कुंडली में बता देते हैं कि आपको तुरंत से पूजा करानी है और इसी दिन पूजा करानी है, और अगर आप अवेलेबल नहीं है तो हम कर देंगे पूजा, और वो AI के माध्यम से हो रही है। किसी ने अगर काल सर्पदोष की पूजा करानी, वो दक्षिण में बैठा हुआ है तो वहां पर उज्जैन में जाके उसकी पूजा हो रही है, या फिर महाकाल में वहां पर पूजा कर दे रहे हैं। ऐसे बहुत सी पूजाएं जो किसी विशेष स्थान पर होती है लेकिन वहां पर अगर कोई नहीं पहुंच पा रहा है तो पंडित कहते हैं कि हम आपकी पूजा कर देंगे। सर ये कितना से इसका पुण्य कितना मिलता है लोगों को?
1: अभी दूसरे जगह की बात क्यों, हम श्रीधाम अयोध्या में हैं। हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ पूर्णतः भगवान के गर्भगृह में या ऊपर की जो दरबार है कहीं पर भी मोबाइल अलाउ ही नहीं है। तो फिर भगवान का जो भोग लगता है, जो कुछ भी होता है, उसका कहीं प्रसारण होने का तो कोई मतलब भी नहीं है। पर थोड़े दिन पहले एक फ्रॉड तमाम लोग पकड़े गए थे जो दूर दूर तक भक्तों को लेना लेना देना नहीं, बेचारे कोई अमेरिका में बैठा है, कोई कनाडा में बैठा है, कोई बॉम्बे में बैठा है, तमाम जगह पर लोग बैठे हैं और वो सभी जगह लोगों पर बैठ करके यहाँ अयोध्या से राम मंदिर का प्रसाद भोग लगवा करके भेजवा रहे हैं। तो ये पूरे देश के अंदर चल रहा है, ये केवल अयोध्या काशी मथुरा की ही बात नहीं है, केवल बद्रीनाथ जगन्नाथपुरी अन्य जगह की बात नहीं है, ये पूरे देश भर में एक रैकेट चल रहा है, सिंडिकेट बना करके लोगों ने रखा हुआ, और यही काम कर रहे हैं। प्रशासन को भी इस बात को ध्यान लेना चाहिए और जो संबंधित ट्रस्ट हैं मंदिरों के उनको भी इस बात को ध्यान देना चाहिए और वहां के प्रशासन को ध्यान करके ऐसे लोगों को चिन्हित करके जो बेचे ही बेच धर्म दुई नहीं, जो धर्म को बेच रहे हैं, धर्म के नाम पर आडंबर कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर सख्त सख्त कार्यवाही करके किसी की आस्था के साथ में, किसी की भावना के साथ में खिलवाड़ ना हो, उसके लिए सभी को प्रयास करना चाहिए एक साथ में। और सशक्त नागरिकों को जो भक्त लोग हैं उनसे भी अपेक्षा है कि चाहे काल्प सर्प दोष हो और चाहे अन्य पूजा हो, राज जी बैठे हुए हैं, ऐसे तमाम हमारे अच्छे अच्छे विद्वान हैं, अच्छे अच्छे लोग हैं जो लगातार धार्मिक अनुष्ठान वैदिक परंपरा के अनुसार, चाहे काल्प दर्श हो, चाहे मंगली कुंडली हो, चाहे जो कुछ भी उसको करते हैं। पर सबसे बड़ा नुकसान आजकल ये हुआ है कि आजकल ज्योतिष के नाम पर लोगों ने केवल कुंडली को ही जान लिया है, और आजकल कुंडली भी एक व्यापार का माध्यम बनती जा रही है, लोगों का कार्डों का एक बहुत बड़ा जकीरा इकट्ठा होता जा रहा, तो जो वास्तविक लोग हैं उन तक तो लोग पहुंचते नहीं, और ये नकली दुकानदारी वाले लोग समय के अभाव में उनको कहीं ना कहीं गुमराह कर रहे हैं। मेरी ऐसे भक्तों से भी, आपके दर्शक जितने भी हैं उन सब के माध्यम से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा इस बात को मेरी शेयर करें, और इन आडंबरवाद पाखंडवाद के चक्कर में लोग न पड़े, अपने आस्था के अनुसार उचित आचार्य के पास में जाकर के उनसे सलाह लेकर के और उचित पूजा ही करवाएं, ये ज्यादा श्रेष्ठ होगा। जिस तरह
0: बिल्कुल
1: से दुकानदारी के लिए लोग आज आगे बढ़ रहे हैं, भगवान के नाम पर डरा करके, धमका करके, देवी देवताओं के नाम पर, ग्रहों के नाम पर डरा धमका करके जिस तरह लूट कर रहे हैं, जिस तरह आडंबर को बढ़ावा दे रहे हैं, ये अब रुकना चाहिए। जब हम लोग मंगल ग्रह तक हैं, इतनी जागृति हम सब में आनी ही चाहिए, ये बहुत जरूरी है।
0: ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है चंद्रांशु जी महाराज, क्योंकि धर्म को आपको प्रैक्टिकली भी समझने की जरूरत है, केवल कर्म कांड और डिजिटली पूजा करवा देना नहीं। आप कितना खुद भगवान के साथ जुड़े, भावनाएं आपकी कैसी, ये बहुत जरूरी होता है। शास्त्रों में क्या लिखा है उसको पढ़ना ज्यादा जरूरी है। एक बार राजमिश्रा जी आपके पास आना चाहूंगी। एक विरोध ये भी हो रहा है क्योंकि वहां पर बद्रीनाथ में ही खासतौर पर अलग तरह के कुंड है, जरा उसका मत भी हमें बताते चलिए। और ये भी कहा जा रहा है लोगों को कि हम फला कुंड में आपकी पूजा करवा देंगे, आप आइए। केवल वहां पर पिंडदान तक ये बात सीमित नहीं है, वहां पर हर जगह पर अलग अलग पूजा होती है, जो एक तो उसका मत बताते चलिए, और लोगों को कहा जा रहा है कि आपको कौन सी पूजा करानी है हमें बताइए।
2: देखिए ये एक गलत विषय है। श्रीराम चरित मानस में भी गोस्वामी जी ने नवजोत जी एक शब्द कहा था कि झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ सवेना। कुछ लोगों ने धर्म को सिर्फ पैसा कमाने के लिए ही प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया है, और ये गलत है। हर जगह पर करप्शन था, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जब धर्म को करप्शन के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगे इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ भी नहीं है। जो लोग इस प्रकार की चर्चा करें, जैसे है अलग अलग कुंड, तप्त कुंड की बात की जाती है बद्रिका आश्रम के अंतर्गत, क्यों ये कुंड क्यों इतना महत्वपूर्ण है? क्योंकि अग्निदेव ने यहां पर बैठकर के स्वयं तप किया था, स्वयं यहां बैठकर प्रार्थना की थी। जब भगवान विष्णु वहां पर आराधना के लिए जाते हैं, वहां पर प्रार्थना के लिए जाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में अग्निदेव ने वहां पर स्वयं प्रकट होकर के उस जल को गर्म किया, ऐसा शास्त्रोक्त मान्यता है। इस कारण से वहां की एक डिफरेंट एनर्जी है, एक वहां की पॉजिटिव एनर्जी है। तो जब उस स्थान पर ही आप पहुंचेंगे तो आप उस एनर्जी को महसूस कर पाएंगे, उस एनर्जी को स्वीकार कर पाएंगे। हाँ ठीक है, अगर कोई व्यक्ति आपके लिए प्रार्थना, ठीक है, माता पिता प्रार्थना कर सकते हैं, मैं दोबारा इस विषय को आता हूं, उस प्रार्थना का थोड़ा बहुत प्रभाव आप पर पड़ सकता है। लेकिन कोई अरे अनियंत्र व्यक्ति जिसको आप जानते नहीं है, जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है, वो पूजन जानता भी है या नहीं जानता है, जानती भी है या नहीं जानती, उसका धर्म से कोई लेना देना है भी या नहीं है, फिर वो कह रहा है कि नहीं जी मैं तो भद्रिका आश्रम में बैठ करके आपका पूजन कर दूंगा, जो कि वहां पॉसिबल ही नहीं है। अभी जैसे हम चंद्रांशु जी बता रहे थे कि अयोध्या में पॉसिबल ही नहीं कि गर्भगृह में आप जाकर के कुछ कर पाए, और ये कहा जा रहा है कि जब हम आपका भोग लगवा देंगे, आपका पूजन करवा देंगे। उसके साथ साथ सप्तकुंड, क्योंकि वहां पर अग्निदेव की अपनी महत्वता है भाई, अग्निदेव ने वहां पर तप किया है, तो अगर वहां पर आप पूजन इत्यादि करते हैं तो उसका एक बहुत सात्विक फल आपको प्राप्त होता है, बहुत पॉजिटिव फल आपको प्राप्त होता है। आपके एक्चुअल में जीवन में जो उत्पन्न दोष आए वो दूर होते हैं, लेकिन वो तभी दूर होना संभव है जब वहां पर फिजिकली आप महसूस, फिजिकली आप प्रेजेंट होते हैं, जब वहां पर आप होकर के पूजन करते हैं, तो वो जो स्थान है उसकी जो ऊर्जा है वो आपके आत्मा को पवित्र करती है, आपके आत्मा को स्वच्छ करती है, और उसके बाद आपको उस पूजन का वास्तविकता में फल प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार से बद्रिकाश्रम में कई सारे ऐसे स्थान है, क्योंकि बद्रीनाथ जो धाम है वो साधारण स्थान नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बद्रीनाथ धाम वो स्थान है जहां पर वेदव्यास जी भाई स्वयं बैठ करके वहां पर उन्होंने पुराणों की संरचना की है, भागवत इत्यादि की स्वयं संरचना। जहां पर नारद जी ने जाकर के वेद व्यास जी को भागवत का जो ज्ञान है वो प्रदान किया है, भागवत के जो श्लोक है वो प्रदान किए हैं। तो बद्रिका आश्रम कोई साधारण स्थान थोड़ी ना है कि आप वहां दूर बैठे हुए हैं और बद्रिका आश्रम का आपको फल प्राप्त हो जाएगा। इट इज नॉट पॉसिबल, वो संभव ही नहीं है। अगर बद्रिका आश्रम का आपको फल प्राप्त करना है, बद्रीनाथ धाम का अगर आपको फल प्राप्त करना है, तो एक्चुअल में वहां तक आपको पहुंचना पड़ेगा, वहां जाकर के महसूस करना पड़ेगा चीजों को, तो ही आपको फल प्राप्त हो रहा है। लेकिन मैं बार बार एक शब्द को कहता हूं नवजोत जी, इसमें दोषी सिर्फ वो नहीं है जो ठगी कर रहे हैं,
0: हाँ।
2: वो दोषी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम लोग क्यों नहीं अवेयर हो रहे हैं भाई इस बात को लेकर के, जो ट्रस्ट है, जो तीर्थ स्थल है, वो क्यों नहीं इसको लेकर के अवेयरनेस फैला रहे हैं? उनको कुछ ऐसी चीजें आज ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई यूएस में बैठा है, सनातन के प्रति लोगों की जागृति बढ़ रही है, उसके लिए पॉजिटिव नहीं है, उसके लिए पॉसिबल नहीं कि यात्रा के दौरान यहां तक पहुंच पाए, लेकिन उसकी इच्छा है कि मेरी तरफ से भगवान को कुछ भोग लगे। तो इसलिए जो वहां का ऑथराइज ट्रस्ट है उसको कुछ इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए और उसका प्रसारण बाकायदा ऑनलाइन होना चाहिए।
0: एक बार चंद्रांशु जी महाराज आपकी राय जानना चाहूंगी। देखिए ये बात तो हम सभी जानते हैं कि ऐसे बहुत से ऑनलाइन फ्रॉड इसमें होने लग गए, और आप खुद कह रहे हैं कि एक तरीके से पैरेलल सिस्टम खड़ा कर दिया गया जो पूरी तरह से फेक है, जिनको शायद नॉलेज भी नहीं होगी धर्म की। और राज्य की बात भी सही है, जो दूर कहीं विदेश में बैठा है वो अगर नहीं भी आ सकता है तो भी पहली बात उसको कैसे सुनिश्चित किया जाए, और दूसरी बात ऐसे लोगों पर किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, किस एंड से होनी चाहिए।
1: बिल्कुल आप एक बात सही कह रही हैं, परंतु रियलिटी अगर देखिए, कभी समाज को गुमराह व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, और जब गुमराह नहीं करते तो निश्चित तौर पर आज के समय में जब इतना व्यस्त समय है तो किसने किसके पास इतना टाइम है तो परोपकार परमार्थ के लिए सब काम करेगा। तो अगर वास्तविक में जितने भी ट्रस्ट हैं उन ट्रस्टों के द्वारा लगातार कहीं ना कहीं भगवान के सुबह चाहे आरती, चाहे वैष्णो देवी हो, चाहे राम मंदिर हो, सभी के आरती दर्शन की सबको ऑनलाइन व्यवस्था कर ही देना चाहिए, जो जहां बैठा वहां से भगवान का दर्शन कर सके। और या कि पूजा भी चल रही है तो पूजा भी कैमरा के सामने हो, लगातार वो कैमरा के सामने हो, जब तक पूजा चले तब तक यजमान परिवार को भी जहां भी बैठे हैं उनके नाम का व्यक्तिगत संकल्प हो, और संकल्प करके जब से पूजा चालू हो तब से लगातार दिखता रहे। ये भी ना हो कि लगातार एक व्यक्ति का संकल्प हो गया, 10-7 में अनुष्ठान है, एक समय में आचार्य लोग अगर 7 ब्राह्मण है महामृत्युंजय का अनुष्ठान कर रहे हैं, सवा लाख तो 7 दिन तक केवल 7 आचार्य ही कर सकते हैं, बाकी तो नहीं करेंगे। तो 10 लोगों का एक साथ संकल्प ले लिया, कैमरे दिख रहा, ये आडंबर बात रुकना चाहिए। जो सत्य है उसका तो हम समर्थन करते ही है, उसमें किसी प्रकार का कोई दो राय नहीं है। भगवान का दर्शन करने का किसी माध्यम से जो नहीं पहुंच सकते हैं, पूजा पाठ का अन्य किसी का जो भी है, अगर वास्तविकता दिख के धरातल पर है तो स्वागत करने योग्य है, पर उसमें कहीं से भी फ्रॉड है, चीटिंग है, लूटपाट है, ऐसे काम का विरोध होना चाहिए, हर किसी को विरोध करना चाहिए, सजग होकर के मुखर होकर के करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा धर्म, इससे हमारी संस्कृति, हमारी भावना सब कुछ नष्ट होती है, सब कुछ आहत होता है। ऐसे काम को रोकना चाहिए, जिससे हमारा धर्म पुष्ट हो, परिपक्व हो, ऐसा काम को करना चाहिए। लोगों को, समाज को धर्म के अनुसार आगे बढ़ना है तो आप पाखंडवाद से, आडंबरवाद से नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए सत्य के राह पर चल करके, सत्य का मार्गदर्शन करके ही हम लोग आगे बढ़ा सकते समाज का, इस बात को हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए।
0: ठीक है, क्या आप वान्य जी केवल विरोध तक ही रहे या इस पर किसी को स्वतः संज्ञान भी लेना चाहिए, धार्मिक संस्थाओं को या गवर्नमेंट की तरफ से?
3: मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए एक प्रॉपर कमेटी बैठनी चाहिए कि जो भी चीजें हैं, मैं ऑनलाइन के अगेंस्ट नहीं हूँ, कंसल्टेशंस ऑनलाइन हो सकती हैं, पूजाएं भी अगर ऑनलाइन हो रही है तो वो प्रॉपर ऑथेंटिक उसके स्टेप्स होने चाहिए, बिकॉज आज के डेट में प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि हर बंदा वहां पर आएगा। तो मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं ऑनलाइन फ्रॉड्स के बहुत अगेंस्ट हूँ। तो जितने भी आपके ऑनलाइन दर्शन है वो एक प्रॉपर ऑथेंटिक पोर्टल हो, वो जो वेबसाइट है उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस हो, उसके प्रॉपर बंदे हों, वो जो कम्युनिकेशन है वो डिजिटली पूरे अक्रॉस द ग्लोब प्रॉपरली कम्युनिकेट होना चाहिए कि इतने से इतने बजे में दर्शन होंगे, या फिर जो भी प्रोसेस आप पिंड दान करा रहे हैं या जो भी आप करा रहे हैं उसके स्टेप्स, उसके प्रॉपर वीडियो कॉल्स, और वो भी ऑथेंटिक पर्सोनल के थ्रू, अगर ऑथेंटिक स्पॉक्स के थ्रू, उन्हें मंदिर की पर्टिकुलर वेबसाइट रजिस्ट्रेशन के थ्रू होता है, तो फिर भी टू एन एक्सटेंट इट इज ओके। बट फिर भी इसको मैं टू एन एक्सटेंट बोलूंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं ऑनलाइन के कंप्लीटली अगेंस्ट नहीं हूँ,
0: बट हाँ।
3: ऑनलाइन फ्रॉड के बहुत अगेंस्ट हूँ
0: वन है
3: और
0: जी।
3: साइबर अथॉरिटी को
0: वक्त
3: डेफिनेटली
0: अभी
3: इसके अगेंस्ट
0: बिल्कुल
3: एक्शन लेना
0: हाँ।
3: चाहिए।
0: वक्त अभी इतना ही, आप तमाम खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो डिजिटल पूजा कितनी सही है इसको लेकर हम बड़ी चर्चा कर रहे थे। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए हमारे साथ।

0: कौन सा अहंकार करने पे जीवन में अपयश मिलने लगता है, कौन सा अहंकार करने से धन की बड़ी हानि हो जाती है, और कौन सा अहंकार करने से करियर में दिक्कतें आ जाती हैं, अहंकार का आपके जीवन पर कैसा पड़ता है प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: From the biggest names in sports talk to the biggest moments in sports, this is NBC Sports Radio. Get your daily football fix with Mike Florio. Spend your mornings with Dan Patrick and the Danettes, and dive deep with Dan Le Batard. Live, unfiltered, and always on, Monday through Friday. Then when the games are on, we've got you covered with live events from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn. Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: पंच केदारों में से एक द्वितीय केदार भगवान महामहेश्वर के कपाट खोलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। भगवान की डोली अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर उखीमठ से धाम के लिए रवाना हो गई है। कल डोली के धाम पहुंचने पर मंदिर के कपाट खोल दिए जाएंगे।
9: संस्कृति, परंपरा और आस्था का अनूठा संगम। आगे आगे भगवान की डोली, पीछे पीछे भक्तों की डोली। ढोल दमाव की थाप है, रंग है, राग है, आस्था परंपार है। भगवान मध्य महेश्वर अपने धाम चले हैं। अपने धाम यानी मध्य महेश्वर मंदिर। महिलाओं ने भजन गाकर अपने आराध्य को विदाई दी, तो वहीं डोली के साथ साथ चल रहे भक्त महादेव का जयकारा लगाते पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ते रहे। ओंकारेश्वर मंदिर में भगवान शीतकालीन प्रवास पर थे। प्रवास पूरा होते ही मध्य महेश्वर की चल उत्सव विग्रह डोली अपने धाम के लिए रवाना हो गई। मंगलवार को उखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर से रवाना हुई डोली आज गोंडार गाँव पहुँचेगी और 21 मई को मध्य महेश्वर मंदिर। डोली के धाम पहुंचने पर वैदिक मंत्रोच्चार और पूरे विधि विधान के साथ मंदिर के कपाट खोल दिए जाएंगे और अगले 6 महीने तक भगवान अपने भक्तों को यहीं दर्शन देंगे।
6: रांसी गांव से रुद्रप्रयाग जनपद के सीमांत गांव गोंडार में भगवान मद्महेश्वर की डोली द्वितीय रात्रि प्रवास करेगी। 21 मई सुबह डोली गोंडार गांव से धाम के लिए प्रस्थान करेगी और धाम पहुंचने पर लगभग 11 बजे द्वितीय केदार भगवान मद्महेश्वर के कपाट आगामी 6 माह के लिए खुलेंगे। आपको बता दें कि भगवान मद्महेश्वर की मद्महेश्वर धाम में मध्य भाग की पूजा होती है और इसके अलावा केदार घाटी में भगवान मद्महेश्वर को न्याय के देवता के रूप में भी पूजा जाता है।
9: उत्तराखंड के पंच केदार में भगवान शिव के 5 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। केदारनाथ में बैल रूपी शिव के कुबड़ की, तुंगनाथ में भुजाओं की, रुद्रनाथ में मस्तक की, मध्य महेश्वर में नाभि की और कल्पेश्वर में जटाओं की पूजा होती है। पंच केदार में मध्य महेश्वर को दूसरे केदार के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि इस मंदिर को महाभारत काल में पांडवों द्वारा बनवाया गया था। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सिंहवाल, गुड न्यूज टुडे।
3: देश के मैदानी इलाकों में लगातार पारा चढ़ता जा रहा है और यही वजह है कि लोग अब जम्मू कश्मीर का रुख कर रहे हैं। गुरेज घाटी में सैलानी अच्छी खासी तादाद में वहां पर पहुंचे हुए और गर्मी से राहत पाने के लिए लोग अब पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, वहां की वादियों को एंजॉय कर रहे हैं।
9: महीना मई का है, सूरज का पारा चढ़ा हुआ है, चुपती जलती गर्मी से लोग परेशान हैं, तमाम इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं, सड़क पर बिना मुंह ढके चलना मुहाल है। ऐसे में जिसे मौका मिल रहा है पहाड़ों का रुख कर रहा है, खासकर जम्मू कश्मीर का, जहां हर मौसम कुछ कहता है। इस साल उत्तरी कश्मीर की गुरेज घाटी सैर के लिए लोगों की पहली पसंद है। ऐसे में यहां पर्यटन कारोबार में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। अपनी मनमोहक पर्वत श्रृंखलाओं, हरे भरे मैदानों, कलकल बहती नदियों और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध ये घाटी सैलानियों को खूब लुभा रही है।
10: उत्तरी कश्मीर की गुरेज घाटी नियंत्रण रेखा से सटी हुई है। कुछ ही साल पहले गुरेज घाटी को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया था, लेकिन पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नियंत्रण रेखा से सटे होने के कारण पर्यटकों पर पूरी तरह से साल भर पाबंदी रही। लेकिन अब की बार कश्मीर में जिस अंदाज से पर्यटकों की तादाद बढ़ रही है और गर्मी से बचने के लिए जिस अंदाज से पर्यटक पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, गुरेज घाटी भी पर्यटकों से गुलजार है। गुरेज में कुदरती खूबसूरती के साथ साथ पर्यटकों को ट्रैकिंग के लिए कई सारे इलाके यहां पर मिलते हैं। यही कारण है कि कश्मीर आने वाले अधिकतर पर्यटक अब गुरेज घाटी जा रहे हैं।
9: गुरेज में भारतीय सेना का श्रीना सांस्कृतिक केंद्र भी सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। यहाँ गुरेज की समृद्ध श्रीना संस्कृति और परंपराओं को खूबसूरती से प्रदर्शित किया गया है।
11: गुरेज वैली इज अमेजिंग, बहुत अच्छी लग रही है यहाँ पे। यहाँ की वादियाँ बहुत सुंदर है, आज तक हमने ऐसे कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था, इतना खूबसूरत लग रहा है यहाँ। राजनाथ टॉप वॉज अमेजिंग, ऐसी बर्फ और ऐसी जगह हमने आज तक नहीं देखी थी, इट वॉज अमेजिंग, बहुत ही सुंदर लगा। बहुत सारे देश विदेश हम घूमे हैं, बट यहाँ की बात ही कुछ और है, बहुत ही

0: TuneIn has got all your favorite audio in one spot, so you can enjoy listening to anything, anywhere, from breaking news.
1: You know, the breaking news is this started long before he even announced for president. It was
0: to live sports action.
2: To the near side corner, to wrap around, he scores!
0: And your favorite music. TuneIn has got it all. Discover new stations in the app or ask your device to play TuneIn.
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
6: नमस्कार, मैं हूं नवजोत सिंधवा, स्वागत है आपका चाय पर चर्चा में। देखिए आज हम बात सबसे पहले डिप्लोमेसी की करेंगे, जिसे दुनिया अब मेलोडी के नाम से जान रही है। दरअसल प्रधानमंत्री और मेलोनी की एक तस्वीर वायरल हुई, जिसमें प्रधानमंत्री उनको मेलोडी ट्रॉफी देते हुए नजर आ रहे, तो आज उसी को लेकर हम चर्चा करेंगे।
7: देखिए उस टॉपिक का तो जिक्र हम करेंगे, क्योंकि हमने भी बचपन में खाया है। क्यों, आपने खाया है? टेस्ट कैसा था, याद है?
8: बहुत टेस्टी है।
7: पहली बार चॉकलेट में अगर हमने टेस्ट किया था तो कॉफी का जो टेस्ट था वो उसी में था।
8: अच्छा, एक चीज आप में से कोई मुझे बता देना, कितने की आती थी, मान जाऊंगी।
7: कितने की तो नहीं, मुझे यही याद है, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। एक उसका ये था,
8: मैं पूरा पैकेट अभी भी बता सकती हूँ आपको, अभी भी वो 50 रुपए तक का पैकेट पूरा मिल जाएगा।
9: अभी मिलेगा ना, तब कितने की आती थी?
8: 50 पैसे की टॉफी होगी।
7: अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, इस पर हम बात करेंगे क्योंकि बहुत सी पुरानी यादें भी हमारी हैं, तो उसका भी हम जिक्र करेंगे। लेकिन इसके साथ बात होगी गर्मी की, जिससे सभी बेहाल हैं। लोगों की कड़ी परीक्षा ये ले रहा है। दिल्ली में पारा 45 डिग्री के पार जाता नजर आ रहा है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के बांदा से जो खबर आई है 48 डिग्री तक तापमान पहुंच चुका है। तो इस गर्मी से कैसा चल रहा है देश का युद्ध, इसकी हम आगे चर्चा करेंगे।
6: नमस्कार, मैं हूं गुप्ता, स्वागत है आप सभी का चाय पर चर्चा में। बात उस मॉनसून की करेंगे, जिसका इंतजार पूरा देश बेसब्री से कर रहा है। समंदर से नम हवाओं ने रफ्तार पकड़ ली है, इस बार मॉनसून तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। तो वो कौन सी 5 वजहें हैं जिससे मिल रहे हैं जल्द मॉनसून आने के संकेत, बताएंगे आप।
10: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव। तो देखिए मौसम के बारे में बात होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेलोडी डिप्लोमेसी के बारे में बात होगी, और साथ ही में बात होगी सलमान खान की, जो अपने गुस्से की वजह से चर्चा में बने हुए हैं। तो क्यों पेपराजी पर बार बार भड़क रहे हैं सलमान खान, इसकी भी आगे विस्तार से चर्चा होगी।
6: नमस्कार, मैं हूं खुशी गुप्ता, बात वैभव सूर्यवंशी की भी करेंगे। आईपीएल में जिसके तूफान ने तहलका मचा रखा है, तो कैसे आईपीएल की रन मशीन बन चुके हैं वैभव सूर्यवंशी, इस

0: पर बात होगी, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
2: इटली दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रोम में दोनों देशों में स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप पर चर्चा। इटली की पीएम मेलानी को पीएम मोदी ने गिफ्ट की ट्रॉफी। यूपी के 11 शहरों में लू और गर्मी का रेड अलर्ट। औरैया में पावर हाउस में लगाए गए कूलर। अमृतसर के गोल्डन टेंपल में श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम। मेघालय के उमरोई में सैन्य अभ्यास प्रगति का शुभारंभ। 12 मित्र देश कर रहे हैं भागीदारी। सैन्य टुकड़ियों का जोरदार स्वागत। कोची में आईएनएस सुनैना का भव्य स्वागत। इंडियन ओशन शिप सागर पहल के तहत तैनाती का दूसरा संस्करण सफलतापूर्वक संपन्न कर लौटा शिप। श्रीगंगानगर के युवा ऑलराउंडर मानव सुथार का टीम इंडिया में चयन। घर में जश्न का माहौल। बधाई देने वालों का लगातार।
3: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: चलिए चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं, और ये चर्चा की शुरुआत यहाँ भी मिठास के साथ होगी। अगर पता होता तो हम भी यहाँ पे मेलोडी लेके आते।
4: नहीं, आपको पता है आज क्या हुआ? जैसे ही ये खबर आई, बहुत लोगों ने ऑर्डर किया ऑनलाइन और ऑनलाइन स्टॉक खत्म है।
5: उसमें से एक मुझे नहीं मिली। मैंने सोचा था कि हम आज अपना मुंह मीठा करेंगे।
2: एग्जैक्टली, लेकिन इस खबर के बाद हम कर सकते हैं, क्योंकि पूरा देश ही नहीं बल्कि विश्व में इस डिप्लोमेसी, जिसे कि मेलोडी डिप्लोमेसी कहा जा रहा है, उसकी चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि हमारे प्रधानमंत्री इस वक्त इटली में हैं, जहां उनके गिफ्ट ने इटली के गलियारों में चल रही कूटनीति को थोड़ा मीठा कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरे में अपने साथ ऐसा तोहफा ले गए जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है, और ये तोहफा था पार्ले की मशहूर मेलोडी टॉफी। और ये देखिए इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रधानमंत्री का ये वीडियो जब उन्होंने गिफ्ट किया। मुझे याद है कि अभी भी बचपन की अगर बातें जब हम शेयर कर रहे थे अभी, तो चलिए एक बार पहले ये वीडियो आप देख लीजिए, फिर आप चर्चा करते हैं।
6: प्राइम मिनिस्टर मोदी ब्रॉट अस अ गिफ्ट, अ वेरी वेरी गुड टॉफी। प्राइम मिनिस्टर मोदी ब्रॉट अस अ गिफ्ट, अ वेरी वेरी गुड टॉफी।
2: अध्यक्ष उनके बीच जो इस तरह की इनफॉर्मल बातचीत हो रही है, बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि अक्सर गंभीर मुद्दों पर हम इनको चर्चा करते हुए सुनते हैं, बात करते हुए सुनते हैं, लेकिन देखिए जब ये इस तरह से मिलते हैं, डिप्लोमेसी कई चीजों को लेकर द्विपक्षीय बातचीत यहाँ हो रही है, रणनीति बन रही है, लेकिन ये प्यारा सा इस बीच जो वीडियो है वो बहुत ही चर्चा का विषय इस वक्त बना हुआ है।
5: बिल्कुल, बहुत ही क्यूट वीडियो है। देखिए हुआ ये कि जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोम पहुंचे, मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को तोहफे में पार्ले कंपनी की मेलोडी टॉफी दी, जो इस वक्त आप उनके हाथ में देख सकते हैं। ये तस्वीर सुबह से ही सोशल मीडिया पर हर जगह पर वायरल है। तस्वीरें आपने देखी होंगी, इसका वीडियो खुद इटली के पीएम ने ही शेयर किया है। टॉफी लेने के बाद मेलोनी काफी खुश नजर आ रही है। प्रधानमंत्री के इस तोहफे की सोशल मीडिया पर भी जमकर चर्चा है, और पिछले कुछ सालों से प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी की दोस्ती ने इटली और भारत के रिश्तों को एक नई ऊर्जा दी। दोस्ती के इस गर्मजोशी को प्रधानमंत्री ने तोहफे ने एक तरह से एक नया टर्म भी दे दिया है। देखिए दरअसल इस मेलोडी डिप्लोमेसी की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। 2 साल पहले नरेंद्र मोदी G7 सम्मेलन में जॉर्जिया मेलोनी से मिले थे। तब जॉर्जिया मेलोनी ने मोदी के साथ एक वीडियो बनाई थी। उस वीडियो में मेलोनी ने मेलोडी टीम का जिक्र किया था। उसी को आगे बढ़ाते हुए पीएम ने मेलोनी को मेलोडी चॉकलेट गिफ्ट की। मेलोडी शब्द प्रधानमंत्री मोदी और मेलोनी की दोस्ती का एक नया नाम बन गया है। 5 देशों के अपने दौरे के आखिरी चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली जाकर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान भारत और इटली के बीच स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एक्शन प्लान पर चर्चा की गई। बायलेटरल टॉक्स के दौरान भारत और इटली के बीच किस तरह से व्यापार को बढ़ाया जाए, जो व्यापार इस वक्त लगभग 14 बिलियन यूरो का है, उसे 2019 तक 20 बिलियन यूरो तक पहुँचाने पर बातचीत की गई। कृषि हो या फिर रक्षा,
7: इनोवेशंस हो या फिर तकनीक, हर एक क्षेत्र में कैसे भारत और इटली मिलकर आपस में अपने संबंधों को बेहतर बना सकते हैं और एक दूसरे के लिए एक बेहतरीन पार्टनर्स बन सकते हैं, इसको लेकर भी बातचीत की गई। इस दौरे के दौरान भारत के प्रधानमंत्री और इटली के प्रधानमंत्री के बीच एक अच्छी केमिस्ट्री दिखाई दी। हमेशा की तरह ये दोनों नेता जब मिले तो तमाम फोटोज और वीडियोज वायरल हुए और उसमें से एक वीडियो जो जॉर्जिया मेलेनी ने पोस्ट किया, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको मेलेडी चॉकलेट दे रहे थे, इसको लेकर भी काफी चर्चा रही। लेकिन इन एक्सचेंजेस के बीच, भारत और इटली के बीच इन रणनीतिक संबंधों को और ज्यादा मजबूत बनाने पर जोर रहा। कैमरा पर्सन संजीव कुमार के साथ शिवानी शर्मा, गुड न्यूज टुडे के लिए दिल्ली से।
4: चलिए आगे बढ़ते बात मौसम की, क्योंकि फिलहाल तो देश के ज्यादातर राज्य इस वक्त 40 और 45 डिग्री वाला टॉर्चर झेल रहे हैं, क्योंकि उत्तर भारत हो या मध्य भारत हो, हालांकि दक्षिण भारत में बारिश जरूर हो रही है, लेकिन उत्तर और मध्य भारत की अगर बात की जाए, जिसमें हम जम्मू कश्मीर उत्तराखंड को छोड़ दें, तो हर जगह पर 45 से 46 डिग्री तक पारा पहुंचा हुआ है और 48 तक पहुंचने का अनुमान भी है।
8: बिल्कुल, देखिए इसी दौरान मौसम विभाग की ओर से राहत की भी खबरें मिल रही हैं और वो ये है कि इस बार तय वक्त से पहले मॉनसून आ रहा है, तो ये गुड न्यूज भी है। देखिए आने वाले रविवार को केरल में मॉनसून के दाखिल होने के संकेत मिल रहे हैं, यानी मॉनसून पहले ही आ रहा है। फिलहाल तो दक्षिण भारत में प्री मॉनसून फुहारें पड़ रही हैं, तो मॉनसून की आहट को देखते हुए एनडीआरएफ भी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं।

0: देखिए, भले ही दक्षिण भारत में उतना तापमान नहीं बढ़ा हुआ है जितना उत्तर भारत में आसमान से आग उगल रही है, ऐसे में राजधानी दिल्ली में जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। यहां तक कि पारा 47 डिग्री तक पहुंचा है और ऐसा अंदाजा जताया जा रहा है कि मानसून जल्द आएगा।
1: बिल्कुल, देखिए उत्तर भारत के कई शहरों में हीटवेव का रेड अलर्ट भी दिया गया है, यानी मानसून भले ही तय समय से पहले आने का संकेत दे रहा है, लेकिन उत्तर भारत को मानसून का इंतजार करना होगा।

0: गर्मी से जीवन का महायुद्ध 47 डिग्री तापमान की धुरी तक आ पहुंचेगा, इसकी कल्पना शायद ही किसी को रही होगी। फिलहाल तो उत्तर भारत में आसमान से आग बरस रही है। गर्मी इतनी है कि इंसान तो इंसान, गर्मी से परिंदे तक परेशान हैं। दिल्ली में पारा 47 डिग्री तक पहुंचने का अंदेशा जताया जा रहा है, तो वहीं उत्तर भारत के तमाम शहरों में हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया गया है।
1: दिल्ली और NCR पूरी तरह से हीट वेव की चपेट में है। आज दिल्ली में अधिकतम तापमान 45 से 47 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है, तो वहीं न्यूनतम तापमान भी लगभग 30 डिग्री के आंकड़े को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। असल में मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों के लिए दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है, यानी कि हीट वेव कंडीशंस दिल्ली और NCR के इलाके में बने रहेंगे।
0: लगातार चढ़ते पारे के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, गर्मी उससे कहीं ज्यादा महसूस हो रही है। मौसम विभाग का कहना है कि मई में जीवन की अग्नि परीक्षा तो अभी शुरू हुई है। अगले 7 दिन मौसम लोगों का कड़ा इम्तिहान लेने जा रहा है। मतलब गर्मी आने वाले इन 7 दिनों में क्या कुछ कर गुजरने वाली है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है।
2: प्लेस की बात करें, स्टार्टिंग फ्रॉम पंजाब, हरियाणा, इवन NCR दिल्ली, उत्तर प्रदेश और सेंट्रल इंडिया, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन सारी जगहों में हीट वेव टू सीवियर हीट वेव कंडीशंस आने वाले ऑलमोस्ट 7 दिन बने रहेगी। और स्पेसिफिकली अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें, तो आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में हमने यहाँ रेड अलर्ट दिया हुआ है, वो 3 दिन के लिए हमारा रेड अलर्ट है। वहाँ इवन कुछ जगहों में जो टेम्परेचर हैं वो 47 से ज़्यादा भी क्रॉस कर चुका है।
0: उत्तर प्रदेश में गर्मी का सितम कहां जाकर ठहरेगा, इस प्रश्न का उत्तर फिलहाल किसी के पास नहीं है। सबसे ज्यादा चर्चा यूपी के बांदा की हो रही है, जहां कथित तौर पर पारा 48 डिग्री तक जा पहुंचा है। राज्य के 11 जिलों में रेड अलर्ट है। यूपी के लोगों से आज और कल सतर्क रहने को कहा गया है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद यूपी सरकार ने अपना समर प्लान ऑन कर दिया है।
3: उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने भयंकर गर्मी और लू की 8 से 10 दिन की चेतावनी जारी की है। आने वाले 8-10 दिनों में भयंकर गर्मी का प्रकोप उत्तर प्रदेश में होने वाला है। मैं उत्तर प्रदेश के सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को, मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों को और सभी मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्यों को हमने निर्देश दिए हैं कि आवश्यक इंतजाम तत्काल करें, जैसे बेड्स आरक्षित करें, शुद्ध पेयजल, शीतल पेयजल के इंतजाम करें, और गर्मी के प्रकोप से यदि कोई मरीज पीड़ित होकर के आता है, तत्काल उसकी चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित करें।
0: आसमान से बरसती आग से बचने का युद्ध केवल इंसानों का नहीं है, बल्कि चिंता जानवरों की भी है। ये लखनऊ का चिड़ियाघर है, जहां गर्मी के बाद जानवरों की बेचैनी को साफ पढ़ा जा सकता है। बेजुबानों की जिंदगी भी इस गर्मी में जिंदाबाद रहे, इसके लिए जू प्रशासन ने सारी ताकत झोंक दी है। ताजा फलों और सब्जियों के साथ जानवरों के लिए नया डाइट प्लान तैयार किया गया है। अगर आपको लग रहा है कि गर्मी का मसला केवल मैदानों का है, तो जरा इस वक्त हिमाचल घुमाइए, यहाँ का पारा भी हाई है। धर्मशाला से लेकर कांगड़ा और सोलन तक अगले कुछ दिन लू का महा अलर्ट है। यही नहीं, अगले कुछ दिनों में पारे के 5 डिग्री तक बढ़ने का अंदेशा भी जताया जा रहा है। हालांकि अच्छी बात यह है कि कल परसों राज्य में आंधी बारिश से पारा थोड़ा डाउन रह सकता है। आसमान से आग बरसाने के जो योग बने हैं, वो यही इशारा कर रहे हैं कि अगले 7 दिन जीवन की अग्नि परीक्षा के हैं, लिहाजा हमें संभल कर रहना है। गर्मी से ये युद्ध भले ही आसान न हो, लेकिन ये जंग इतनी मुश्किल भी नहीं है। बस हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, शरीर को ढककर बाहर निकलना है, पानी पीते रहना है और सबसे ज्यादा बच्चों और बुजुर्गों का ख्याल रखना है। दिल्ली से अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: और चलिए अब आपको हम विस्तार से बताते हैं कि इस रिकॉर्ड तोड़ गर्मी से हमें बचना कैसे है और वो कौन से 10 ब्रह्मास्त्र हैं जो हमें आपको हीट वेव के खतरों से बचा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें, जब तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच जाता है, तब सिर्फ पंखा शरीर को ठंडक देने में ज्यादा कारगर साबित नहीं होता, क्योंकि वो गर्म हवा ही घुमाता रहता है। बेहद गर्म और उमस भरे मौसम में शरीर को सुरक्षित रखने के लिए AC या फिर कूलर का इस्तेमाल ज्यादा प्रभावी माना जाता है, क्योंकि ये तापमान को कम करने में मदद करते हैं।
5: देखिए, अगर एसी को 27 डिग्री पर चलाकर उसके साथ पंखा भी इस्तेमाल किया जाए तो कमरे में ठंडक बेहतर तरीके से फैलती है और इसके साथ ही बिजली की बचत भी होती है। गर्मी के इस मौसम में कसरत या वॉक सुबह के समय करना ज्यादा सुरक्षित माना जाता है क्योंकि उस वक्त तापमान अपेक्षाकृत कम होता है और शरीर पर दबाव कम पड़ता है।
6: तेज धूप में बाहर निकलते समय शरीर को पूरी तरह से ढकना बहुत जरूरी है ताकि लू या फिर सनबर्न या डिहाइड्रेशन जैसी समस्याओं से आप बच सकें। तो गर्मी में सिर्फ प्यास लगने का इंतजार नहीं करना बल्कि शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए हर घंटे कम से कम एक गिलास पानी आप जरूर पीते रहें।
7: बिल्कुल, देखिए पूरे दिन में करीब 2 से 3 लीटर पानी पीना शरीर के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है, इसीलिए खुद को हाइड्रेटेड रखें क्योंकि शरीर में पानी की कमी नहीं होती है इससे और जो ऊर्जा होती है यानी बॉडी में एनर्जी बनी रहती है।
8: दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच धूप और गर्म हवाएं सबसे ज्यादा खतरनाक होती हैं, इसीलिए इस समय बिना जरूरत बाहर ना निकला जाए। बच्चों और बुजुर्गों का इस मौसम में विशेष ध्यान रखना बेहद जरूरी है क्योंकि तेज गर्मी का असर उनकी सेहत पर जल्दी पड़ सकता है। अगर चक्कर आना, कमजोरी, सिरदर्द, उल्टी या ज्यादा थकान जैसी परेशानी महसूस हो तो उसे नजरअंदाज ना करें और तुरंत डॉक्टर से सलाह लें।
5: जी हाँ, चलिए देखिए, जब गर्मी बेतहाशा होती है तो उसके साइड इफेक्ट्स भी कम नहीं होते। ऐसे में डॉक्टर्स क्या सलाह दे रहे हैं, कैसे आपको अपनी डेली रूटीन रखनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, चलिए एक्सपर्ट से ही जान लेते हैं।
9: जब ये गर्मी ज्यादा होती है सबसे पहले तो आपको किसी तरीके से गर्मी से बचना है। तो जब आजकल हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, जो लोग काम पे जाते हैं उनको पीक ऑफ हीट में नहीं निकलना है या पीक ऑफ ह्यूमिडिटी से बच के रहना है। तो अगर एक्सरसाइज करना भी है तो एकदम सुबह का टाइम या शाम के टाइम, जब दोपहर के टाइम में जब पीक ऑफ हीट होता है उस टाइम में एक्सरसाइज ना करें, और अगर एक्सरसाइज करें भी तो थोड़े शेडेड एरिया में करें, अपने आप को हाइड्रेट अच्छे से करें जिससे कि जो साइड इफेक्ट ऑफ एक्सट्रीम हीट वो कम हो। बट पहला तो एडवाइस यही है कि पीक ऑफ हीट में आपको एक्सरसाइज दोपहर के टाइम में नहीं करना है। जो सबसे ज्यादा इफेक्ट होते हैं वो होता है एक्सट्रीम्स ऑफ एज, मतलब जो 5 साल से कम बच्चे हैं या 65 साल से ज्यादा उम्र वाले लोग हैं उनमें ये ज्यादा इफेक्ट कर सकता है। दूसरे जिनको बीमारियां हैं, कोमॉर्बिडिटी कंडीशन जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसमें कि हो गया आपको हार्ट की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, लिवर की बीमारी है, डायबिटीज है, इन लोगों को भी ये बीमारियां ज्यादा इफेक्ट करती हैं और इन लोगों में ज्यादा सीरियस हो सकता है। तो इसलिए इन लोगों को ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। दूसरी चीजें हैं हल्का रंग का, हल्का कपड़ा, लूज कपड़े पहनिए, हल्के रंग के कपड़े पहनिए, जिससे क्योंकि जितना डार्क कलर क्लोज पहनेंगे उतना ही ज्यादा हीट एब्जॉर्प्शन होता है और आपकी बॉडी नहीं डिसिपेट कर पाती है। इसलिए लूज क्लोथिंग, कॉटन क्लोथिंग, लाइट कलर्ड क्लोथ्स। अगला होता है अपने आपको हाइड्रेट अच्छे से करिए, अच्छे से आपका जैसे पानी की मात्रा अच्छे से पिए, एंड कभी कभी जब आपको स्वेटिंग बहुत ज्यादा हो रही है सिर्फ पानी उसको काम नहीं कर पाता है तो जैसे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस होते हैं वो ज्यादा अच्छा काम करती है। तो इसलिए सिर्फ पानी भी कई बार एडिक्वेट नहीं होता है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस ज्यादा बेहतर मानी जाती है। पर एक इसमें वार्निंग है, एक इसमें रिमार्क है, किसी का किडनी की बीमारी है, जिसको हार्ट की बीमारी है, वो आंख बंद करके सिर्फ पानी नहीं पिए जा सकता क्योंकि हो सकता है उसके किडनी में या हार्ट में उतनी क्षमता नहीं है कि वो पानी को निकाल पाए। तो उन लोगों को अंडर गाइडेंस ऑफ द ट्रीटिंग डॉक्टर, जो उनके ट्रीटिंग डॉक्टर है उनके गाइडेंस में रह के उतनी ही मात्रा ऑफ पानी या इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लेना चाहिए।
6: चलिए अब आपको मॉनसून वाली गुड न्यूज दे देते हैं। दरअसल नॉर्मली अगर देखा जाए तो हर साल 1 जून को मॉनसून केरल के तट पर दस्तक देता है, लेकिन इस बार अच्छी खबर और गुड न्यूज ये है कि 5 दिन पहले मॉनसून दस्तक दे रहा है, जिस वजह से कहा यह जा रहा है कि उत्तर भारत में भी मॉनसून की रफ्तार ठीक ठाक रहेगी। हालांकि अभी मौसम विभाग का यह कहना है कि मॉनसून दस्तक भले ही 5 दिन पहले दे रहा हो लेकिन इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करने की जरूरत है।
8: लेकिन क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि आखिर मॉनसून जल्दी क्यों आ रहा है? दक्षिण भारत में प्री मॉनसून की बारिश हो रही है जो बता रहा है कि मॉनसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे कई और कारण हैं जो संकेत दे रहे हैं कि मॉनसून की गति और दिशा बिल्कुल सही है।

0: हीट वेव और लू के थपेड़ों के बीच उत्तर भारत की अग्नि परीक्षा जारी है। कई शहरों का पारा 47 डिग्री को पार कर चुका है। जब पूरा उत्तर भारत लू की चपेट में तप रहा है, ठीक उसी वक्त दक्षिण भारत के आकाश में एक अलग ही हलचल शुरू हो चुकी है। समुद्र से उठती नम हवाएं, गरजते बादल बता रहे हैं कि मॉनसून दस्तक देने वाला है। रविवार तक मॉनसून के केरल में एंट्री होने की उम्मीद है, वो भी तय वक्त से 5 दिन पहले। इससे पहले ही दक्षिण भारत में प्री मॉनसून की बारिश हो रही है। मॉनसून की आहट मिलते ही एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाल लिया है। तमिलनाडु में रानीपेट में एनडीआरएफ की टीमें एक्टिव हो चुकी हैं। एनडीआरएफ के जवानों को मुश्किल हालात से निपटना और लोगों की जान बचाने का हुनर पता है। इस काम में इनकी मदद खोजी कुत्ते करते हैं जो कि पूरी तरह से ट्रेंड है। मॉनसून के बादल जब बरसते हैं तो कई कई दिनों तक थमते नहीं, ऐसे में कई बार हालात चुनौतीपूर्ण बन जाते हैं। तब काम आती है इन जवानों की तैयारी। ये जवान अपने साथ कटर, लाइफ सेविंग जैकेट और बोट समेत हर वो जरूरी चीज लेकर गए हैं जिनकी इन्हें जरूरत पड़ सकती है। इस बीच मॉनसून का बेसब्री से इंतजार हो रहा है और इस बार मॉनसून के जल्दी आने की कई बड़ी वजह भी बताई जा रही है, जैसे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में लगातार नमी बने रहना। समुद्र से उठ रही तेज नमी युक्त हवाएं मॉनसून को तेजी से उत्तर की ओर बढ़ा रही हैं। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में लगातार हो रही भारी बारिश मॉनसून की बढ़ती सक्रियता का स्पष्ट संकेत है। इसके अलावा अरब सागर और हिंद महासागर का तापमान सामान्य से अधिक रहने से मॉनसून प्रणाली को एक्स्ट्रा एनर्जी मिल रही है। मॉनसून सामान्य समय से पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक पहुंचना भी इसका एक बड़ा संकेत है। समय से पहले आ रहा मॉनसून उम्मीद की नई किरण भी लेके आ रहा है। सही तैयारी के साथ ये बारिश वरदान बनेगी, जल संकट कम होगा और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: देखिए, हमारे देश का कोस्टल एरिया हो, रेतीली धरती या फिर पहाड़ हो, ये सारी जगहें प्राकृतिक सुंदरता से भरी हुई हैं, जिसे लाइफ में एक बार एक्सप्लोर करना तो देखिए बनता है। वहीं इस बीच क्योंकि युद्ध की वजह से दुनिया संकट के दौर से लगातार गुजर रही है, ऐसे में कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से विदेश यात्रा से बचने और अपने ही देश में घूमने की अपील की थी, जिसके बाद GNT ने भी अपने दर्शकों से ये अपील की है कि वो अपने आसपास की खूबसूरत जगहों की तस्वीर हमें भेजें। और एक ऐसी ही खूबसूरत वीडियो उत्तराखंड में यमुनोत्री धाम के पुजारी आशीष उनियाल ने हमें भेजी है, तो चलिए सुनवाते हैं कि कौन सी ये वीडियो है, उन्हीं की जुबानी क्या है यमुनोत्री धाम और उसके आसपास की ये खास जगह है।

देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी संपूर्ण भारत वर्ष से ये आह्वान कर रहे हैं कि आप आए हमारे इस उत्तराखंड की तपोभूमि में। जैसे हमारे पास यहाँ चारों धाम है, यमुनोत्री धाम है, और यमुनोत्री धाम से यहाँ पर जो ये सुंदर बृहगम कालिंदी पर्वत का दृश्य है, हमारे पास यहाँ पर हिरण्यबाहु और यमुना जी का संगम स्थल है।

0: हमारे पास यहाँ पर हरित भरित पहाड़ियां हैं, पर्वत है, जो कि विभिन्न जड़ी बूटियां औषधीय वृक्षों से सुशोभित है। हमारे पास यहाँ पर उत्तरकाशी है, उत्तरकाशी में हरसिल जैसी घाटियां हैं। हरसिल के साथ साथ तीर्थाटन के रूप में माँ गंगा का पवित्र धाम गंगोत्री धाम है। और मैं पुनः आप सबसे आह्वान करूंगा, अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप आए और यहाँ पर पर्यटन के साथ साथ में तीर्थाटन का आनंद लें और यहाँ की तपोभूमि का तपोभूमि के इन सुंदर दृश्यों का भरपूर आनंद उठाएं।
1: अब देखिए, वैश्विक संकट के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की है कि लोग विदेशी दौरों से बचें, अपने ही देश में घूमें। आप भी संकल्प के भागीदार बन सकते हैं। आपको करना बस इतना है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह है या फिर आपके शहर में आने की खास वजह है तो बनाए अपने कैमरा निकालिए और व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दीजिए। हमें 7303409922 नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम उसे GNT पर जरूर दिखाएंगे।
2: चलिए बात करते हैं क्रिकेट के मैदान की। इस बार के IPL सीजन में ऐसे शानदार रिकॉर्ड बने हैं जिन्हें सालों तक भुलाया नहीं जा सकता। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में मंगलवार को लखनऊ और राजस्थान के बीच मुकाबला हुआ तो यहां 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 38 गेंदों में 93 रन ठोक डाले। उनकी इसी पारी ने कई बड़े रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। इसी के साथ 53 छक्कों के साथ वो एक सीजन में 50 से ज्यादा सिक्सेस लगाने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं।
1: तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो 15 साल के वैभव सूर्यवंशी रन मशीन ही बन गए हैं। अब उनके रिकॉर्ड्स क्या हैं, चलिए जल्दी से हम उस पर भी नजर डाल लेते हैं। IPL में 7 प्लेयर्स को पछाड़कर वैभव सूर्यवंशी ने ऑरेंज कैप पर कब्जा किया। उन्होंने लखनऊ के खिलाड़ी 38 गेंदों में 93 रन की पारी उन्होंने खेली है। वैसे इस बार के IPL में वैभव ने अभी तक 53 सिक्सेस लगाए हैं। तो फिलहाल क्रिस गेल के 59 सिक्सेस के रिकॉर्ड से वो 7 छक्कों की दूरी पर हैं और वैभव का IPL टूर्नामेंट में 589 रन, 53 छक्के और 236 का स्ट्राइक रेट है।
3: लखनऊ ने राजस्थान रॉयल्स को 220 रन का लक्ष्य दिया था पीछा करने के लिए, लेकिन ये स्कोर राजस्थान के लिए छोटा साबित हुआ। क्यों? क्योंकि यहां पर है वैभव सूर्यवंशी। 38 गेंद की ये शानदार आतिशी पारी जिसने 93 रन बनाए, जिसमें 10 छक्के और 7 चौके शामिल थे, यही वजह थी कि इस पारी की वजह से राजस्थान रॉयल्स इस जीत के साथ अब नंबर 4 पर पहुंच गए। एक जीत और उसके बाद इनकी जगह क्वालिफिकेशन में पक्की। अब वैभव सूर्यवंशी इस सीजन इस वक्त सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उनके जो टोटल रन है वह है 589, यानी कि लगभग उन्होंने 600 का आंकड़ा वो इस सीजन के खत्म होते होते छू देंगे और इसी के साथ उनके पास वो ऑरेंज कैप भी है। इसी फहरिस्त में एक और चीज जुड़ती है, वो है सबसे ज्यादा एक सीजन में छक्के लगाने का। क्रिस गेल के 59 और अब वैभव 53 छक्के लगाकर उनसे अब थोड़े ही पीछे रह गए। हो सकता है सीजन खत्म होते होते ये कारनामा भी वो पूरा कर ले।
1: चलिए आज एक ऐसी लड़की की मेहनत की कहानी सुनाते हैं जो इंस्पायरिंग है।
4: कि वैभव सूर्यवंशी की परफॉर्मेंस के बारे में आप क्या कहेंगे?
1: बहुत बढ़िया। सोशल मीडिया पर कोई भी सेकंड स्टोरी चेक करेंगे तो वैभव सूर्यवंशी इंस्पायर कर रहे हैं।
5: Exactly. बताइए खुशी, आपसे भी हम कुछ डिटेल जानना चाहेंगे, लेकिन आप ये बताइए कि वाकई वैभव जैसे, मुझे तो लगता है कि आजकल तो इनको हम बच्चे ही बोलेंगे, कि इतने कम एज में जो मुकाम इन्होंने इतनी जल्दी हासिल किया है वो वाकई काबिल
6: तारीफ है। 15 साल की उम्र है और उसमें जिस तरीके का प्रदर्शन उन्होंने किया है श्वेता, वाकई में आने वाले टाइम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी के तौर पर वो उभरेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है।
1: और ये जनरेशन जो है, आई थिंक वैभव उनके लिए एक इंस्पिरेशन तो बनी गए हैं क्योंकि सबको इंस्पायर कर रहे हैं।
5: बिल्कुल, चलिए हम बढ़ेंगे आगे। आपको बता दें आज एक ऐसी, अब हम लड़की की मेहनत की कहानी, आपको मेहनत और जुनून की कहानी दिखाते हैं जिसने अपने दम पर पढ़ाई के साथ बिजनेस, सोशल मीडिया मैनेजमेंट और समाज सेवा में सक्रिय जाह्नवी की कहानी आज लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई है। लेकिन खास बात यह है कि जाह्नवी को 3 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप भी मिली है।
7: गाजियाबाद की 17 साल की इस बेटी ने ऐसा मुकाम हासिल किया है जिसने पूरे शहर का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। इस बेटी को दरअसल अमेरिका की प्रतिष्ठित डेनिसन यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला है। लेकिन खास बात यहाँ ये है कि जाह्नवी को 3 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप भी मिली है।
8: अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? मेहनत, समर्पण, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है सटीक स्ट्रेटजी। और इसी स्ट्रेटजी के सहारे गाजियाबाद की एक बेटी ने अमेरिका की डेनिसन यूनिवर्सिटी में एडमिशन हासिल किया है, और सिर्फ एडमिशन नहीं बल्कि उसे 3 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप भी मिली है। अगर पेरेंट्स को इसी यूनिवर्सिटी में बच्चे की फीस भरनी पड़ती तो लगभग 3.5 करोड़ रुपए उन्हें अपनी जेब से खर्च करने पड़ते, लेकिन अब इस बच्ची ने 3.5 करोड़ में से 3 करोड़ का इंतजाम खुद ही कर लिया है।
7: जाह्नवी ने अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर ये बड़ी उपलब्धि हासिल की। अब वो डेनिसन यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक एंड ग्लोबल कॉमर्स की पढ़ाई करेगी। 3 करोड़ की स्कॉलरशिप की बड़ी उपलब्धि तक पहुंचने के लिए जाह्नवी ने काफी पहले से तैयारियां शुरू कर दी थी।
9: आपके 9th से 12th तक के पूरे नंबर लगते हैं, तो 9th में ऑफ कोर्स मैंने सारी तैयारियां शुरू कर दी थी, अपने मार्क्स को इम्प्रूव करा और एक्स्ट्रा करिकुलर्स पे फोकस किया। जैसे आज के दिन मैं मिडिल स्कूल के बच्चों को ट्यूशन्स प्रोवाइड कराती हूँ और मैं एक प्रोफेशनल सोशल मीडिया मैनेजर भी हूँ। ऐसे ही मैंने काफ़ी एक्स्ट्रा करिकुलर्स में पार्ट लिया, मैं अपने स्कूल की स्टूडेंट काउंसिल का भी पार्ट रही हूँ।
7: ऐसे में उनकी पर्सटाइल पर्सनालिटी और पढ़ाई में उनकी अच्छी परफॉर्मेंस को देखते हुए ही उन्हें ये स्कॉलरशिप हासिल हुई। यानी केवल US की सिटीजनशिप इस स्कॉलरशिप के लिए मायने नहीं रखती।
9: वो देखते हैं कि लाइक आपने स्टडीज को कैसे मैनेज किया, लाइक 90% से ऊपर मार्क्स को अच्छा माना जाता है वहाँ पे, और एक्स्ट्रा करिकुलर में जो भी आप अपनी तरफ से करें बेसिकली कंसिस्टेंसी देखते हैं कि वो आपने लाइक शुरू से लाइक कितने साल से, ये नहीं कि आपने 1-2 महीने करा और उसे छोड़ दिया। आपको उसे कंसिस्टेंटली करना पड़ता है 1-2 साल तक, तभी उसे उसका कोई मायना है उसमें।
7: जाह्नवी बताती हैं कि बचपन से ही उनका सपना US में पढ़ाई करने का था, और साथ ही माता पिता भी उनकी मेहनत के बूते ही अमेरिका गए, इसलिए जाह्नवी ने भी अमेरिका जाने के लिए अपनी सटीक स्ट्रेटेजी बनाए रखी।
9: मेरा सपना बना कि मुझे भी US जाना है अपने खुद के दम पे और वहाँ पे अच्छे से पढ़ाई करके सेटल होना है।
7: जाह्नवी के पिता मानते हैं कि अगर स्कॉलरशिप नहीं मिलती तो उनके लिए जाह्नवी को US भेजना नामुमकिन होता, लेकिन बेटी ने उनका बोझ काफी कम कर दिया है।
10: शायद हम US भेजने की सोच नहीं पाते अगर यह स्कॉलरशिप नहीं होती। स्कॉलरशिप होने से ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा हो गया कि जो इसकी पूरी ट्यूशन फ़ी है, हॉस्टल फ़ी है, एवरीथिंग इज़ कवर्ड इन दैट, और हम लोगों को सिर्फ जो करना है वो थोड़ा मील्स या फिर बुक्स के लिए वी हैव टू सपोर्ट हर एंड शी विल हैव अदर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द ऑन कैंपस जॉब आल्सो। तो जॉब कैंपस में भी वो कुछ अपने कुछ इस तरह की जॉब्स होती हैं वेयर शी कैन अर्न सम मनी फॉर हरसेल्फ, तो वो से आई थिंक वी विल बी एबल टू बैलेंस इट आउट एंड टेक केयर ऑफ दीज एक्सपेंसेस।
7: वहीं जाह्नवी की माँ बताती हैं कि उनकी बिटिया ने हमेशा पढ़ाई को ही प्राथमिकता दी। हालांकि बचपन में वो जाह्नवी को कथक सिखाना चाहती थी, लेकिन जाह्नवी ने पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगाने का फैसला किया और सेल्फ स्टडी पर ज्यादा जोर दिया।
11: पढ़ाई उसके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होती थी हमेशा, तो चाहे कुछ भी हो जाए पर वो पढ़ाई कभी नहीं छोड़ती थी, डेली बेसिस पे उसकी पढ़ाई रहती थी। डांस भी बहुत अच्छा करती थी, तो मैंने उसको बोला कि कथक मैं प्रोफेशनल तुम्हें स्टार्ट करा देती हूँ, तो उसने बोला कि नहीं मम्मी वो 6 साल का कोर्स है और अगर मैं 6 साल उसको करूँगी तो मेरी पढ़ाई पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा, इसलिए मैं कथक नहीं करूँगी।
7: कुल मिलाकर सेल्फ स्टडी के दम पर पढ़ाई करने वाली जाह्नवी की सतत मेहनत, आत्मविश्वास की एक कामयाब उड़ान जारी है। जाह्नवी की सफलता उन छात्रों के लिए निसंदेह प्रेरणा है जो बड़े सपने देखते हैं। कम उम्र में पढ़ाई, बिजनेस, सोशल वर्क और अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप हासिल कर जाह्नवी ने साबित कर दिया कि आत्मविश्वास के साथ पढ़ाई में कंसिस्टेंसी कठिन से कठिन मंजिल तक पहुंचा सकती है। गाजियाबाद से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: एक छोटी से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे आखिर किस बात पर भड़क गए सलमान खान।
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
13: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive Soul Groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
14: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
12: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: एक बार फिर से स्वागत है आप सबका चाय पर चर्चा में। इससे पहले आगे बढ़े, नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।
15: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
16: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
1: इटली दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोम में, दोनों देशों में स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर चर्चा। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी को प्रधानमंत्री मोदी ने गिफ्ट की टॉफी। यूपी के 11 शहरों में लू और गर्मी का रेड अलर्ट। औरैया में पावर हाउस में लगाए गए कूलर। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में श्रद्धालुओं के लिए खास इंतजाम। मैदानों पर बढ़ती गर्मी के बीच में पहाड़ बने सैलानियों की पहली पसंद। कश्मीर की वादियों का आनंद दे रहे सैलानी, बांदीपोरा पहुंचे पर्यटक। दिल्ली में आज से शुरू हुआ वर्क फ्रॉम होम। रेखा सरकार और MCD के कर्मचारी घर से कर रहे काम। हर हफ्ते बुधवार शनिवार को होगा वर्क फ्रॉम होम। कल खुलेंगे मध्य महेश्वर धाम के कपाट। रात्रि विश्राम के लिए गोंडार गांव पहुंची डोली यात्रा। श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह।
4: देखिए, सलमान खान लगातार चर्चा में रहते हैं और इस बार भी चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है और खबरें आ रही हैं कि उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ लिख दिया। हालांकि वो पपराजी से थोड़ा सा नाराज थे,
6: भड़ास निकाली है उन्होंने इनफैक्ट अपनी। ये पैप्स हटते भी तो नहीं है ना। आप देखिए कि बंदा कहां पर पहुंचा है। आप इतनी इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी अगर कर देंगे तो मुझे लगता है कि फ्रस्ट्रेशन तो कोई भी इंसान निकालेगा ना। आप देखिए कि वो बंदा गया कहां पर है।
5: बिल्कुल, और मुझे लगता है कि हर किसी की इंडिविजुअलिटी और फिर उनकी जो अपनी पर्सनल लाइफ है उसमें थोड़ा स्पेस देना चाहिए। वो स्टार है और हमेशा वो बहुत ही पोलाइट भी रहे हैं और अच्छे भी रहे हैं पैप्स के थ्रू के लिए। लेकिन अब जैसे हॉस्पिटल जैसी जगह है, अब कोई करीबी है अगर वो एडमिट है और वहां वो जा रहे हैं तो ऑब्वियसली क्या माइंडसेट किसी का भी होता है हॉस्पिटल में, ये समझना चाहिए।
6: संवेदनशील होना तो मुझे लगता है जरूरी है, क्योंकि सलमान खान वैसे बहुत ही पोलाइट रहते हैं मीडिया के साथ, बट हम सभी जानते हैं कि डिप्लोमेटिक होना तो उन्हें नहीं आता है। जब वो गुस्सा है तो फिर वो गुस्सा है और उनके कैप्शन से बात साफ समझ आती है।
5: एग्जैक्टली।
2: पर आप देखिए ना, कब से चर्चा चल रही है सलमान खान, क्योंकि पहले सबसे पहले एक तस्वीर आती है उनकी शर्टलेस, जहाँ पे वो थोड़ा अकेलापन को लेकर कुछ लिखते हैं, फिर आकर उस पर सफाई देते हैं। अब एक और ये वीडियो आ गया तो सलमान खान,
4: मुझे लग रहा है दोनों को साथ नहीं जोड़ना चाहिए। यहाँ पर कोई भी होता, जैसे आप लोग बोल ही रहे हैं कि कोई भी होता उसका रिएक्शन शायद ऐसा ही होता। चलिए आपको दिखाते हैं क्यों सलमान को गुस्सा आया।
17: I told him, was not, not practice or anyway.
18: इस वीडियो को गौर से देखिए। सलमान खान का चेहरा और एक्सप्रेशन साफ बता रहा है कि वो गुस्से में है। वीडियो में कुछ आवाजें भी सुनाई दे रही हैं। एक तो सलमान खान की जो गुस्से से भरी है। दूसरी जो उनके सामने खड़े हैं लेकिन वीडियो में दिखाई नहीं दे रहे, ये पेपराजी है जो भाई भाई सॉरी भाई कहकर सलमान से माफी मांग रहे हैं। वीडियो से साफ पता चल रहा है कि पेपराजी की किसी बात ने सलमान खान को गुस्सा कर दिया है, जिससे सलमान को उन्हें डांटने फटकारने पर मजबूर होना पड़ा। इन तस्वीरों से यहाँ तक की बात तो समझ में आती है, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्या कि सलमान को उन्हें डांटने फटकारने की नौबत आई। तो चलिए आपको बताते हैं आखिर माजरा है क्या। बीती रात सलमान खान अपने किसी करीबी को देखने मुंबई के हिंदुजा अस्पताल पहुंचे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पेपराजी ने सलमान को तब देखा जब उनकी गाड़ी एक ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी और बाद में अस्पताल तक उनका पीछा किया। जैसे ही सलमान अस्पताल से बाहर निकले, कुछ फोटोग्राफर्स ने उनका ध्यान खींचने के लिए भाई भाई चिल्लाना शुरू कर दिया। सलमान खान ने तब उन्हें अस्पताल के पास चुप रहने को कहा और उनसे पूछा कि अगर उनके परिवार का कोई अस्पताल में भर्ती होता तो क्या वो ऐसे ही रिएक्ट करते। सलमान खान की नाराजगी यही खत्म नहीं हुई। पेपराजी के इस गैर जिम्मेदाराना व्यवहार ने उन्हें जहनी तौर पर इतना व्यथित किया कि अस्पताल से घर पहुंचने के बाद रात के करीब 3 बजे उनका गुस्सा एक बार फिर फूट पड़ा। सलमान ने इंस्टाग्राम पर कई सेल्फी पोस्ट की, साथ ही पेपराजी को एक बार फिर नसीहत दे डाली। जिस प्रेस के लिए मैं खड़ा हूँ, जिनसे बातचीत की है, जिनकी देखभाल की है, ये सुनिश्चित किया कि वे भी अपनी रोजी रोटी कमा सके, लेकिन अगर वो मेरे नुकसान से पैसा कमाना चाहते हैं तो चुप रहें, मजा ना लें। सलमान ने इशारों इशारों में ये भी कहा कि अगर कोई उनकी निजी जिंदगी या मुश्किल वक्त का मजाक बनाने की कोशिश करेगा तो वो चुप नहीं बैठेंगे। सलमान ने आगे लिखा, 60 साल का हो गया हूँ लेकिन लड़ना नहीं भूला, ये याद रख लेना, जेल में डालोगे, हा हा हा। बेशक सलमान ने अपने गुस्से को जब्त करते हुए कुछ बातें मजाक में कही होंगी, लेकिन पेपराजी के व्यवहार से आहत सलमान के शब्दों में तलखी साफ झलक रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: चलिए अब बात कर लेते हैं इम्तियाज अली की अपकमिंग फिल्म मैं वापस आऊंगा की। मंगलवार को इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया।
19: बिल्कुल, देखिए फिल्म में दिलजीत दोसांझ ने एक लोकप्रिय यूट्यूबर की भूमिका निभाई है, साथ ही नसीरुद्दीन शाह आपको नजर आएंगे। फिल्म 2 जून को सिनेमाघर में दस्तक देगी।
20: अडॉल्फ हिटलर जी,
21: वो भी मार्स का है, मार्शल।
22: बेहतरीन डायलॉग्स,
23: एक्चुअली दादाजी डेथ बेड पे पता नहीं बार बार उठ जाते हैं और कहते हैं मुझे सरगोधा जाना, और आप सबको पता है कि सरगोधा तो है
24: मॉडर्न के उस साइड।
22: शानदार डायरेक्शन, और दर्शकों को बांधे रखने वाली फिल्म की दिलचस्प कहानी।
25: मैच है, अच्छा मून पे है, ठीक है।
21: मून
25: मैं नहीं, वो जेफ बेजोस और एलन मस्क कर रहे हैं ट्राई, बेचारों को एंट्री नहीं दे रहे।
22: कुछ ऐसे ही कंप्लीट पैकेज के साथ आने वाली है इम्तियाज अली की फिल्म मैं वापस आऊंगा।
26: डिटेक्ट तो नहीं हो रहा था।
22: मंगलवार को इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। ट्रेलर देखकर फिल्म के लिए दर्शकों की बेसब्री और भी बढ़ गई है।
26: फिर भी नहीं करेंगे ऐसा।
27: हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, हमन जब साथ
25: जिया। मैं नहीं जाऊंगा, वादा है मेरा जिया।
22: इस फिल्म में पंजाबी फिल्मों के सुपरस्टार और बॉलीवुड में अपनी धमाकेदार एक्टिंग से पहचान बना चुके दिलजीत दोसांझ ने एक लोकप्रिय यूट्यूबर की भूमिका निभाई है।
28: भीड़ काम है,
25: यहाँ से मैं नहीं जा रहा, कर लो जो करना है। मैंने कहा था बंटवारा करो, और ये जगह हिंदुस्तान में है, नए मुल्क में कैसे बता।
22: फिल्म 1947 के विभाजन के पृष्ठभूमि पर आधारित है और पूरी फिल्म की कहानी इसी ऐतिहासिक घटना के इर्द गिर्द घूमती है।
25: पुरानी बात फंसी है उनके दिल में, वो बता भी रहे हमें, लेकिन हमें उनकी बातें समझ नहीं आ रही।
28: समझ में कैसे आएंगे, ये उनकी तकलीफ है और उनके साथ।
22: फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के मौके पर नसीरुद्दीन शाह ने इम्तियाज अली के बेहतरीन डायरेक्शन की जमकर तारीफ की है।
25: ये हो सकता है, अपने दिल के अंदर एक लड़की को रखना जिसे 78 ईयर से देखा तक नहीं है।
29: किसी एक्टर की कामयाबी का पूरा सहरा जो है वो लेखक और निर्देशक के सर जाता है। अगर लिखाई सही ना हो तो दुनिया का सबसे बेहतरीन एक्टर भी कुछ नहीं कर सकता। और मतलब मैं उसकी जिंदा मिसाल हूँ। मैं कई फिल्मों में बहुत बुरा काम भी किया है। जो मेरे बेटे रात के 3 बजे YouTube पर देख के मुझे जगाते हैं कि बाबा आपकी एक फिल्म चल रही है तो यही हुआ इस फिल्म में कि इम्तियाज ने बहुत ही बेहतरीन स्क्रिप्ट लिखी है जिसमें डायलॉग बहुत खूबसूरत है, सिचुएशंस बहुत ही पावरफुल हैं और उनकी पिछली बनाई हुई फिल्में मैंने देखी हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगी और बहुत ही मोहब्बत के साथ और एहतियात के साथ उन्होंने एक्टरों के साथ काम किया है। कम ही डायरेक्टर्स ऐसे मिले हैं जो एक्टर की परफॉर्मेंस की वजह से रीटेक लेते हैं।
0: ये प्यार जहर की तरह होता है पता है, इसकी एक भी बूंद अंदर रह गई ना तो ये आखिरी समय में चैन से मरने भी नहीं
29: देता।
22: परसों बाद इस फिल्म के साथ नसीरुद्दीन शाह भी बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं। नसीर दिलजीत दोसांझ के दादाजी की भूमिका में है। ट्रेलर देखकर अंदाजा लग रहा है कि फिल्म में बंटवारे के दर्द को प्रेम के गहरे एहसास के साथ बुनकर सजाया गया है। फिल्म में बुजुर्ग नसीरुद्दीन शाह अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर है। बंटवारे की वजह से वो अपनी प्रेमिका से 78 साल से नहीं मिल पाए।
0: चांद पे मैच है। अच्छा मून पे है, ठीक है।
29: मून
0: मैं नहीं, वो जेफ बेजोस और एलन मस्क कर रहे हैं ट्राई, बेचारों को एंट्री नहीं दे रहे।
22: जिंदगी के आखिरी दिनों में वो अपनी प्रेमिका से एक बार फिर मिलने की चाह रखते हैं। ट्रेलर देखकर ऐसा लग रहा है कि उनकी अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए दिलजीत उस लड़की को तलाश करने पाकिस्तान जाते हैं।
25: कर लो जो करना है, मैंने कहा था बंटवारा करो।
22: क्या दिलजीत की कोशिश से नसीर अपनी प्रेमिका से मिल पाते हैं? वो प्रेमिका जीवित है भी या नहीं? अगर वो प्रेमिका जीवित है तो नसीर के प्रेम पर उसका क्या रिएक्शन आता है? इसी के इर्द गिर्द पूरी कहानी का ताना बाना बुना गया है। फिल्म में इम्तियाज अली के बेहतरीन डायरेक्शन की झलक मिल रही है।
28: ये उनकी तकलीफ है और उनके साथ चिता में जाएगी।
22: A.R. रहमान ने फिल्म को अपने संगीत से सजाया है। इरशाद कामिल ने इसके गाने लिखे हैं। फिल्म में शर्वरी वाघ वेदांग नारंग भी अहम भूमिका में है। ये खूबसूरत रोमांटिक ड्रामा 12 जून को सिनेमा घर में दस्तक देने को तैयार है।
1: देखिए अमूमन हम चांदी के तोहफे देते हैं, लेते भी हैं, लेकिन एक ससुर ने अपने दामाद को ऐसा तोहफा दिया है जिसके चर्चे हर और हो रहे हैं क्योंकि दामाद उसे इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और अगर गलती से कहीं इस्तेमाल कर लिया तो भाई उसकी कीमत कम हो जाएगी। क्या है तोहफा शगुफ्ता, बताइए जरा।
3: चांदी की चप्पलें, जहां तक मैं समझ पाई हूँ यही है। मतलब कहा यह जा रहा है कि उसकी चमक भी फीकी पड़ सकती है अगर वो इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आखिर क्या है वो कीमती चांदी का तोहफा, किसने बनाया है ये तोहफा और क्या है इसकी खासियत।

0: चमड़े की ये पारंपरिक कोल्हापुरी चप्पल अपनी पहचान के लिए कितनी मशहूर है, ये बात हर कोई जानता है। वहीं अब इसी विरासत को मिला है चांदी का शाही अंदाज, 1.5 किलो वजन, लाखों की कीमत और बारीकी ऐसी कि देखने वाला बस देखता ही रह जाए। एक कारीगर ने अपनी कल्पना, मेहनत और हुनर से परंपरा को ऐसा रूप दिया जो अब देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक चर्चा का विषय बन चुका है। कोल्हापुर की गलियों से ही निकली एक और अनोखी कला इन दिनों लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। ये कोई साधारण चप्पल नहीं बल्कि पूरी तरह चांदी से तैयार की गई खास कोल्हापुरी सैंडल है। महावीर नगर में रहने वाले शिल्पकार विक्रांत माली ने इसे अपने हाथों से तैयार किया। साल 1994 से चांदी के काम से जुड़े विक्रांत पहले भी कई धार्मिक और सजावटी वस्तुएं बना चुके हैं, लेकिन इस बार उन्होंने परंपरा को शाही अंदाज में ढाल दिया। दरअसल महाराष्ट्र के सांगली में एक कारोबारी ने अपने दामाद के लिए खास उपहार बनाने की इच्छा जताई, जिसके बाद शुरू हुआ मेहनत, धैर्य और बारीक कारीगरी का सफर। कारीगर ने पहले कोल्हापुरी पारंपरिक डिजाइन को गहराई से समझा, फिर चांदी को उसी आकार में ढालने का काम शुरू कर दिया। करीब 10 दिनों की लगातार मेहनत के बाद 10 इंच लंबी और लगभग 1.5 किलो वजनी ये खास चप्पल तैयार हुई। इस अद्भुत निर्माण में महीन नक्काशी की गई है, हर हिस्सा हाथों से तराशा गया है, जिससे इसका आकर्षण और भी बढ़ गया है। बताया जा रहा है कि इस अनोखी जोड़ी की कीमत करीब 4.5 लाख रुपए है, जबकि मेहनताना लगभग 25,000 रुपए रखा गया है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि कोल्हापुरी का ये सिल्वर नुमा लुक अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नई चमक बिखेर रहा है। सोशल मीडिया पर इस पारंपरिक कोल्हापुरी चप्पल की तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं। लोग इस अनूठी कलाकारी को महाराष्ट्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक शान का शानदार मेल बता रहे हैं। कोल्हापुर से दीपक सूर्यवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: तो चलिए फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि अकोला में ट्रैक्टर पर दूल्हा दुल्हन की एंट्री की हो रही है इतनी चर्चा, बने रहिए हमारे साथ, फौरन हाजिर होंगे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
4: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.
5: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. Country roads. So thank God I get to wake and everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
6: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel good country songs to bring summer vibes all year long. This guitar about as hard as a cane. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
7: सच्ची खबर, सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
10: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
11: और दुर्भाग्य कहता है
12: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
1: चलिए अब आपको तमिलनाडु लिए चलते हैं, जहां के थुतुकुडी में खास विदेशी मेहमान पहुंचे हुए हैं। ये है फ्लेमिंगो, जिनके यहां आते ही आकर्षक नजारा बन गया है। तस्वीरें बेहद खूबसूरत लग रही हैं। समंदर किनारे फ्लेमिंगो सैर करते हुए प्रकृति का लुत्फ उठाते हुए यहां आपको नजर आ जाएंगे।
2: चलिए फिलहाल रुकेंगे यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी चाय पर चर्चा लगातार जारी है, देखते रहिए जीएनपी।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: Hot Mics with Billy Bush streaming on TuneIn, your front row seat to the American zeitgeist. Get engaged on sports, politics, entertainment, tech, pop culture, hosted by yours truly. It's funny, it's honest, provocative, unfiltered takes, and real talk, no fluff, with guests like Megyn Kelly and Dr. Phil, Candace Owens, Jack Osborne, Will Arnett, Charlie Sheen, all engaging personalities who actually say what everyone else is afraid to. On the go, catch the show live or on demand on the TuneIn app. At home and want to listen on your connected device, just say, play Hot Mics with Billy Bush on TuneIn. If you missed the live show or want to catch up, listen on demand with the Hot Mics with Billy Bush podcast, available whenever you want.
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: देखिए आजकल शादियों में कोई हेलीकॉप्टर से एंट्री ले रहा है तो कोई लग्जरी गाड़ियों के काफिले के साथ, लेकिन महाराष्ट्र के अकोला में एक अनोखी शादी हुई है और सबका ध्यान इसने अपनी ओर खींचा है। यहाँ दूल्हा दुल्हन न तो घोड़ी पर आए न किसी चमचमाती कार पर, बल्कि सीधे ट्रैक्टर पर सवार होकर पहुंचे।
4: बिल्कुल, अकोला जिले के एक गांव में हुआ इस विवाह समारोह की तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। किसान परिवार से जुड़े दूल्हा ओम प्रकाश ने अपनी दुल्हन अनुश्री के साथ जिस अंदाज में एंट्री ली, उसने हर किसी का दिल जीत लिया। फूलों और सजावट से सजे ट्रैक्टर पर बैठकर दोनों शादी स्थल पर पहुंचे तो वहां मौजूद मेहमान भी हैरान रह गए।
2: चाय पर चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही, रखिए ख्याल, कल फिर मिलेंगे शाम 5 बजे चाय पर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
5: ऐसा अहंकार करने पे जीवन में अपयश मिलने लगता है। कौन सा अहंकार करने से धन की बड़ी हानि हो जाती है और कौन सा अहंकार करने से करियर में दिक्कतें आ जाती हैं? अहंकार का आपके जीवन पर कैसा पड़ता है प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
6: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। Sage University, transforming your passion into profession.
2: इटली दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रोम में दोनों देशों में स्पेशल स्ट्रेटेजिक

0: मुंबई में समुद्री प्रदूषण कम करने की दिशा में बीएमसी की सराहनीय पहल। गेटवे ऑफ इंडिया और बटवाड़ पार्क के पास मानव रहित इलेक्ट्रिक बोट की तैनाती। हर दिन 80 से 90 किलो कचरे का हो रहा सफाया। मैदानों पर बढ़ती गर्मी के बीच पहाड़ बने सैलानियों की पहली पसंद। कश्मीर की वादियों का आनंद ले रहे सैलानी, बांदीपुरा पहुंच रहे पर्यटक। कल खुलेंगे मध्य महेश्वर धाम के कपाट। रात्रि विश्राम के लिए गोंडार गांव पहुंची डोली यात्रा। श्रद्धालु में जबरदस्त उत्साह।
1: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिलदेव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात होगी देश में चल रहे मंगल उत्सव की। इस समय देश के अलग अलग छोर, अलग अलग किनारों पर कई उत्सव, कई लोक पर्व मनाए जा रहे हैं। भारत की संस्कृति में यूं भी परंपराओं के धागों से जाने कितने ही तीज त्योहार और उत्सव बुने गए हैं। कुछ उत्सवों की कहानी पौराणिक आधार से निकली तो कुछ उत्सव हमारे देश की समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत की धरोहर हैं। ऐसा ही एक उत्सव यूपी के झांसी में मनाया गया। एक ऐसा उत्सव जो किसी देवी देवता के सम्मान में नहीं मनाया जाता, बल्कि हर साल झांसी ये उत्सव मनाती है उस महान वीरांगना की याद में जिनके साहस और शौर्य ने अंग्रेजों की नींद उड़ा दी थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और राजा गंगाधर राव के विवाह की 184वीं सालगिरह धूमधाम से मनाई गई। झांसी के लिए ये दिन इसीलिए भी खास है क्योंकि इसी दिन वाराणसी की मणिकर्णिका झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई बनकर इस नगर में आई थी।

वैभव के साथ सगाई झांसी में। क्या हुआ रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में। सुभट बुंदेलों की विरुदावली सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। जब दुल्हन बनकर झांसी आई झांसी वाली रानी थी। आज से 184 साल पहले घटी इस घटना के हर दृश्य को कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने कोई 96 साल पहले अपनी कलम से जीवंत कर दिया था। झांसी उस दिन को आज फिर से जी रही है। वो शुभ घड़ी जब झांसी की धरती पर पांव पड़े थे उस वीरांगना के जो दुनिया में झांसी की पहचान का हस्ताक्षर बन गई। साल 1842 में यही वो दिन था जब रानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी नरेश राजा गंगाधर राव के साथ धूमधाम से संपन्न हुआ था और काशी की लाडली मनु अपनी

0: कच्ची ढाल कृपाण कटारी सखियों समेत झांसी की महारानी बनकर इस नगर में पधारी थी। मंगलवार को झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और महाराजा गंगाधर राव के विवाह की 184वीं वर्षगांठ बेहद धूमधाम से मनाई गई। एनसीसी बैंड की धुन, ढोल नगाड़ों की गूंज, पारंपरिक मराठी वेशभूषा में सजे बच्चे, ऐतिहासिक पात्रों की झलक और देशभक्ति से सराबोर माहौल ने पूरे शहर को उत्सव के रंग में रंग दिया। कार्यक्रम की शुरुआत हुई शहर के प्रसिद्ध लक्ष्मी व्यायाम मंदिर से, जहां से महाराज गंगाधर राव की प्रतीकात्मक शाही बारात और शोभा यात्रा सजकर निकली।
1: ये आज झांसी नरेश महाराज गंगाधर राव और महारानी लक्ष्मीबाई के विवाह की 184वीं वर्षगांठ है। ये हम लोग महाराज गणेश मंदिर कमेटी संपूर्ण झांसी के साथ मना रही है। आज ये शोभा यात्रा जो बरात की शोभा यात्रा है, ये लक्ष्मीबाई मंदिर से प्रारंभ होकर कोतवाली, मानिक चौक, सराफा बाजार, मरिया बाजार होते हुए गणेश मंदिर पर संपन्न होगी, जहाँ पर प्रतीकात्मक रूप से राजा रानी का विवाह होगा।
0: यात्रा के दौरान जगह जगह लोगों ने फूलों की बारिश कर बारात का स्वागत किया। सारा शहर झांसी की रानी अमर रहे के जयकारों से गूंज उठा। शोभा यात्रा में एनसीसी कैडेट्स, घोष दल, स्कूली छात्र छात्राएं, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और हजारों शहरवासी शामिल हुए। झांसी नरेश की बारात की भव्यता को कई गुना बढ़ा दिया इन छोटी छोटी बच्चियों ने, जो महारानी लक्ष्मीबाई का रूप धर शोभा यात्रा में पहुंची थी।
1: सिपाही के रूप में एनसीसी की छात्राएं हैं, स्कूल विद्यालयों के घोष है, स्कूल की छोटी छोटी छात्राएं जिस तरह से बारात में सजते हैं, दुल्हन वेश में रानी उस तरह से सजी हुई हैं, स्कूल की अध्यापिकाएं और झांसी का जनजन, सभी लोग एकत्रित आपको देख रहे हो, ये इस आकर्षण का केंद्र है। और सभी इसमें हमारे राजनीतिक, सभी हमारे प्रतिनिधि लोग मौजूद हैं, प्रशासन मौजूद है।
0: और रानी लक्ष्मीबाई ही क्यों, कई बच्चों ने महाराज गंगाधर राव, तात्या टोपे, झलकारी बाई, मोरोपन, सुंदर मुंदर और रानी की दुर्गा महिला सेना के किरदार निभाकर लोगों का मन मोह लिया। वहीं झांसी की महिलाएं पारंपरिक मराठी परिधान में नजर आई।
2: आज हम सभी लोग महारानी लक्ष्मीबाई और महाराजा गंगाधर राव की 184वीं शादी की वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं और ये बारात निकल रही है। आप देख ही रहे होंगे कितने जोर शोर के साथ, इसमें हमारे 50 एनसीसी कैडेट्स हैं और इसमें करीब 60 हमारे घोष दल जो होता है वो है, बाकी स्कूल के स्टूडेंट हैं, सभी पूरा स्टाफ है और बहुत ही हम लोग इस फंक्शन को एंजॉय करते हैं हर साल।
3: हर्ष और उल्लास के साथ हम लोग ये अपना पर्व उनकी वर्षगांठ बहुत धूमधाम से मनाते हैं झांसी में।
0: आपको बता दें कि साल 1842 में 19 मई के दिन महाराज गंगाधर राव और मणिकर्णिका का विवाह संपन्न हुआ था। विवाह के बाद ही मणिकर्णिका को लक्ष्मीबाई नाम मिला और आगे चलकर उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष कर भारतीय इतिहास में अमिट स्थान बनाया। उसी गौरवशाली इतिहास को जीवंत रखने के उद्देश्य से हर साल झांसी में ये आयोजन किया जाता है। अब की बार भी शहर के प्रमुख रास्तों से गुजरती हुई बारात ऐतिहासिक गणेश मंदिर पहुंची। गणेश मंदिर पहुंचने पर वैदिक मंत्रोच्चार और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ महाराजा गंगाधर राव और महारानी लक्ष्मीबाई का प्रतीकात्मक विवाह संपन्न करवाया गया। इस दौरान मंदिर परिसर जय भवानी और महारानी लक्ष्मीबाई अमर रहे के नारों से गूंज उठा। झांसी के लोगों के दिलों में महारानी लक्ष्मीबाई साहस, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति का अमिट प्रतीक है। तभी तो झांसी के लिए ये सिर्फ एक उत्सव नहीं बल्कि झांसी के लिए इस उत्सव का एक भावनात्मक महत्व है। ये उत्सव झांसी के गौरवशाली इतिहास को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का एक माध्यम है। झांसी से अजय झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: अब बात रामनगरी अयोध्या की। अयोध्या जल्द ही एक और उत्सव की साक्षी बनने जा रही है और ये उत्सव होगा 26 नवंबर यानी गंगा दशहरा के दिन। गंगा दशहरा के पावन अवसर पर रामनगरी अयोध्या एक बार फिर से भक्ति, आस्था और वैदिक परंपराओं के रंग में रंगने जा रही है। मंदिर परिसर में विशेष पूजा अर्चना, वैदिक मंत्रोच्चार अनुष्ठान और भगवान को विशेष भोग अर्पित किए जाएंगे। इस अवसर पर अयोध्या में सरयू स्नान के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ेगी। मठ मंदिरों में विशेष धार्मिक आयोजन होंगे। तिथि के हिसाब से गंगा दशहरा के दिन ही राम जन्मभूमि मंदिर में स्थापित राम दरबार की प्रथम वर्षगांठ भी है। पिछले वर्ष इसी पावन तिथि पर राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में राम दरबार समेत 6 उपमंदिरों की विधिवत स्थापना की गई थी। इस वर्षगांठ को लेकर भी अयोध्या में तैयारियां तेज हो गई हैं। देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं ताकि भक्त इस ऐतिहासिक और आध्यात्मिक आयोजन का सहजता के साथ हिस्सा बन पाए। रामनगरी अयोध्या में गंगा दशहरा को लेकर भक्तों में भी खासा उत्साह नजर आ रहा है। अब अयोध्या से चलते हैं उत्तराखंड और आपको दिखाते हैं गढ़वाल का वो उत्सव जिसे देखकर आपको ब्रज की होली याद आ जाएगी। चमोली के आदि बद्री धाम में नौठा कौथी लठमार मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में लाठी डंडों के प्रतीकात्मक युद्ध लड़ने की परंपरा होती है। आखिर क्यों मनाया जाता है ये उत्सव और क्या है यहाँ निभाई जाने वाली लठमार परंपरा की पूरी कहानी, चलिए आपको बताते हैं।

0: लाठियां प्रेम में पगी भी हो सकती हैं। लाठियों की मार में ढेर सारा प्यार और मीठी मनुहार भी होती है। ये दुनिया ने जाना जब जब देखी कृष्ण कन्हैया के ब्रज की होरी। लेकिन उसी प्रेम, उसी आस्था और उसी परंपरा का एक रंग दिखता है मथुरा के मैदानों से कोई 600 किलोमीटर दूर उत्तराखंड में चमोली के पहाड़ों पर। वो लाठी जो दुनिया के लिए कभी शक्ति, कभी नियंत्रण, कभी आत्मरक्षा तो कभी सहारे का प्रतीक है, उसका भावार्थ अक्षरशः बदल जाता है देवों की इस भूमि पर और ढल जाता है आस्था के उस सांचे में जो पहचान है देवताओं की भूमि कहलाने वाले इस राज्य की। एक सदियों पुरानी परंपरा का रूप है चमोली में हर साल लगने वाला नौठा कौथीग मेला, जहां भगवान आदि बद्रीनाथ के धाम में बरसों से लठमार युद्ध की ये परंपरा पूरी आस्था और विश्वास के साथ निभाई जा रही है। चमोली का नौठा कौथीग यानी लठमार मेला मुख्य रूप से नई फसल के आगमन का त्योहार है। और इसी त्योहार से जुड़ा है चमोली का ये लठमार युद्ध। बताया जाता है कि पुराने समय में यहाँ के गांवों के बीच इस बात पर लाठियों से असली युद्ध होता था कि सबसे पहले कौन सा गांव भगवान को नया अन्न अर्पित करेगा। जीतने वाले गांव को ये सम्मान और सौभाग्य हासिल होता था। समय के साथ युद्ध प्रतीकात्मक रूप में बदल गया। अब ये युद्ध महज परंपरा निभाने भर के लिए होता है, लेकिन स्थानीय ग्रामीणों के बीच इस युद्ध से जुड़ी शौर्य, प्रतिष्ठा और संघर्ष की भावना आज भी वही है और चमोली के 27 गांव आज भी पूरे उत्साह से इस परंपरा को निभाते हैं।
1: इसमें हमारे 27 गांव ब्राह्मण और ठाकुरों के 27 गांव है इस पूरे इलाके में मल्ला चांद पौना, उन गांवों के तमाम दर्शक आते हैं मिलने और खेलने के लिए, नाचने के लिए, तो वो सब लोग यहाँ पर आए भी थे। सारे लोग बाजी गाजे के साथ आते हैं और अभी प्रतीकात्मक जो डंडे आपने देखे वो प्रतीकात्मक यहाँ पर आते हैं और केवल वो शो के लिए मेले में आके वो एक सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए वो किया जा रहा है।
0: लठमार युद्ध के लिए पहले खेती के मालगुजार के नेतृत्व में गाजे बाजे, देव डोली और लाठी डंडों के साथ नौठा नृत्य दल आदि बद्री मंदिर पहुंचता है। इसके बाद दोनों दलों के बीच लाठी डंडों का प्रतीकात्मक युद्ध शुरू होता है। युद्ध के बाद ढोल दमाऊ की थाप पर दोनों दल अपने अपने नृत्य का प्रदर्शन करते हैं और फिर अंत में लठमार योद्धा आपस में गले मिलकर एकता का संदेश देते हैं।
2: तीसरी बार आ रही हूँ, पिछले साल भी मैं यहाँ पर आई थी। जो हमारी पुरानी परंपरा है उसको जैसे बचा रहे हैं लोग, उसको दिखाने के लिए कि जो हमारी युवा पीढ़ी है उसको देखें कि पहले जमाने में कैसे हुआ करता था सभी चीजें। तो यहाँ पर खेती गाँव से लोग आते हैं, जो अनाज होता है वो चढ़ाने के लिए आते हैं और उसके बाद पहले क्या होता था, जो पिंड वाली गाँव है और खेती गाँव है उन दोनों में लड़ाई होती थी कहते हैं ऐसा। तो उसके बाद जो पिंड वाली है उन्होंने हार मान ली थी, तो पूरा जो मंदिर है इस पर पूरा वो कब्जा बोलते हैं जिसको, जो अनाज फर्स्ट यहाँ पर चढ़ाते हैं वो खेती वाले चढ़ाते हैं क्योंकि वो जीत गए थे। तो यही इंटरेस्टिंग होता है यहाँ पर। तो लोग पहले जो वो चीज पहले हुई थी उसको थोड़ा दिखावा करते हैं, परंपरा को बचाने के लिए लट्ठी से लड़ाई करते हैं, अभी भी करते हैं पर एक रियल नहीं है वो, एकदम से रियल नहीं है, नॉर्मल है वो, उसमें कोई किसी को चोट नहीं पहुंचाता है।
0: इसके बाद आखिर में भगवान आदि बद्रीनाथ को नए गेहूं और जौ का अन्न अर्पित किया जाता है। नई फसल की खुशी मनाने के लिए स्थानीय महिलाएं चोपुला, चाचरी और झुमेलो जैसे परंपरागत नृत्य करती हैं। हर साल की तरह इस बार भी नौठा कौथीग मेले में हिस्सा लेने बड़ी संख्या में श्रद्धालु आदि बद्री धाम पहुंचे हैं। आपको बता दें, आदि बद्री धाम सप्त बद्री की यात्रा का प्रथम स्थल है। यहाँ भगवान विष्णु के प्राचीन मंदिर हैं, जिन्हें आदि शंकराचार्य से जोड़ा जाता है। बर्फबारी के चलते जब सर्दियों में बद्रीनाथ धाम के कपाट 6 महीने बंद रहते हैं, तब यहाँ विशेष पूजा अर्चना होती है। गुजरते समय के साथ नौठा कौथी लठमार मेला इस देवस्थल को गढ़वाल की संस्कृति और लोक परंपराओं की जड़ों से जोड़ने का अनुपम माध्यम बन गया है। स्थानीय लोग इसे अपनी सांस्कृतिक पहचान का उत्सव मानते हैं। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: चमोली से अब आपको लेकर चलते हैं टिहरी और दिखाते हैं घनसाली का भव्य हनुमान मेला। टिहरी के घनसाली में मौजूद हनुमान धाम में ज्येष्ठ महीने के तीसरे बड़े मंगलवार को हनुमान मेले का आयोजन हुआ। इस मेले में भगवान बजरंग बली के दर्शन के लिए 500 से ज्यादा गांव के हजारों लोग पहुंचे। देवभूमि उत्तराखंड अपनी धार्मिक परंपराओं, मेलों, संस्कृति और लोक आस्था के लिए देश भर में प्रसिद्ध है। यहाँ के चार धामों के साथ साथ पारंपरिक मेले और त्यौहार भी लोगों की आस्था और सामाजिक एकता के प्रतीक माने जाते हैं। घनसाली का ये मेला भी एक ऐसा ही आयोजन है। बात एक ऐसे उत्सव और परंपरा की करते हैं जिसे मनाया ही जाता है कुदरत को सहेजने के लिए। कश्मीर के काजीकुंड इलाके के एक ऐसे उत्सव को आपको दिखाते हैं जहां झरनों और नदियों को साफ करने की परंपरा निभाई जाती है। जरा सोचिए, जल और पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से कितना अहम होता है ये उत्सव। खास बात यह है कि लोग अपने स्तर पर खुद ही सालों से इस परंपरा को निभाते आ रहे हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट।

0: कश्मीर की खूबसूरत वादियाँ, बर्फ से ढके ऊंचे पहाड़, कल कल बहती नदियाँ यहाँ आने वालों को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। यहाँ का अनंतनाग जिला भी प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। यहाँ की दिव्य छटाएं पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। यहाँ फूलों की मखमली वादियों से लेकर प्राचीन मीठे पानी के झरनों का एक मनमोहक संगम है। ये तस्वीरें अनंतनाग जिले के काजीगुंड इलाके के पंचत नाग की है, जहाँ लोग बड़ी संख्या में पानी के अंदर नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे ये सभी पानी में कुछ तलाश रहे हों। इस दौरान हाथ में मछली के आने की खुशी लोगों के चेहरे पर साफ देखी जा सकती है। दरअसल पारंपरिक टोकरियों के साथ मौजूद ये सभी लोग सिर्फ मछली पकड़ने के रोमांच को लेकर पानी के अंदर नहीं है, बल्कि ये उस सालाना परंपरा का हिस्सा है जिसे पंचत नाग उत्सव के रूप में जाना जाता है।
1: हर साल वहाँ पंचत नाग यानी कि स्प्रिंग है उस इलाके का, ऐसा पानी का स्रोत जिसमें कई सारे स्प्रिंग आके मर्ज होते हैं और उस पूरे इलाके बल्कि कई सारे गांव हैं जिनके पीने के पानी की ज़रूरत से लेके जो इरिगेशन के लिए पानी चाहिए और बाकी ज़रूरतें भी जो हैं इसी स्प्रिंग से पूरी होती हैं। और हर साल ये गांव जो है सभी बूढ़े बच्चे जवान मिलके एक छुट्टी का दिन सिलेक्ट करते हैं और उस नाग की सफाई करते हैं। हालांकि इसको एक फिशिंग फेस्टिवल की तरीके से मनाया जाता है, लेकिन पीछे जो आइडियोलॉजी है, जो इसके पीछे मकसद है, वो है स्प्रिंग को साफ रखना, उस वाटर बॉडी को साफ रखना।
0: जल स्रोतों और पर्यावरण संरक्षण के मकसद से कई पीढ़ियों से यहाँ मई के महीने में ये उत्सव मनाया जाता है, जिसमें पंचत गांव के निवासी मीठे पानी के झरनों के एक समूह के आसपास जुटते हैं और सदियों पुरानी सामुदायिक परंपरा के तहत पानी से खरपतवार और कचरा साफ करते हैं। पंचत नाग झरनों की सफाई करने के साथ ही इस दिन मछली पकड़ने की भी इजाजत दी जाती है। इस आयोजन में पंचत के अलावा कई दूसरे गांव के लोग भी पूरे उत्साह के साथ शामिल होते हैं, जिनमें से कई गांव पीने के पानी और सिंचाई के लिए इन झरनों पर निर्भर हैं। ग्रीष्म ऋतु के अंत में जब जल स्तर घट जाता है तो जलीय खरपतवार तेजी से झरने में फैल जाते हैं, जिससे जल प्रवाह बाधित होता है। सामूहिक सफाई का ये प्रयास हाथ से झरने के बहाव को बहाल करता है, जो आसपास के 45 गांवों को पीने और सिंचाई का पानी मुहैया कराता है। साफ है कि ये वो उत्सव है जिसमें मछली पकड़ना नहीं बल्कि झरने को साफ करना अहम मकसद है, ताकि लोगों को पीने और सिंचाई के लिए पानी मिलता रहे। अपने प्राकृतिक संसाधनों की पूरी जिम्मेदारी लेकर पंचत में लोग जिस तरह का उदाहरण पेश कर रहे हैं, उसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात में भी सराहना कर चुके हैं।
1: तारीफ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की थी 2023 में एक मन की बात प्रोग्राम में। उन्होंने कहा था कि किस तरीके से अगर लोग चाहें तो खुद ऐसा एफर्ट कर सकते हैं जिससे प्रकृति को बचाया जा सकता है, अलग अलग तरीके से जो स्वच्छता है उसमें कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, ताकि जो आसपास की जगहें हैं साफ रहे, जो प्रकृति है, माहौल है, साफ रहे। तो पंचत नाग जो है आज एक मिसाल है कि कैसे खुद लोग जो हैं अगर चाहें, अगर एकजुट हो जाएं तो बहुत कुछ हो सकता है, और खासकर जो पोल्यूशन है उसके खिलाफ एक डिसाइसिव लड़ाई हो सकती है।
0: लोगों को उम्मीद है कि सरकार इस दिशा में जरूर कोई ना कोई ठोस कदम उठाएगी, जिससे एक दिन कश्मीर के पर्यटन मानचित्र पर पंचत का नाम शामिल होगा। श्रीनगर से मीर फरीद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: अब बात आस्था के उस मंगल उत्सव की, जो देवभूमि उत्तराखंड में जारी है। पिछले कई दिनों से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा चल रही है। अब के साल हर रोज चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या का नया रिकॉर्ड बनता जा रहा है। पिछले एक महीने में चारधाम यात्रा में अब तक 17.5 लाख से ज्यादा लोग दर्शन कर चुके हैं। ये अभूतपूर्व रिकॉर्ड है। कल यानी 19 मई तक कुल 17,26,393 लोग चारधाम में दर्शन कर चुके हैं। इनमें से केदारनाथ धाम में अब तक 6,94,000 से ज्यादा लोगों ने दर्शन किए, जबकि बद्री विशाल के धाम बद्रीनाथ में अब तक 4,51,000 से ज्यादा लोग दर्शन कर चुके हैं। इसी क्रम में मां यमुना के धाम यमुनोत्री पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 2,92,000 को पार कर चुकी है, जबकि मां गंगा के धाम गंगोत्री में 19 मई तक 2,88,000 से ज्यादा श्रद्धालु हाजिरी लगा चुके हैं। अब देखिए शिव भक्तों के लिए चारधाम यात्रा में केदारनाथ का बहुत महत्व है। आपको बता दें केदारनाथ धाम देवभूमि में मौजूद पंच केदार में शामिल है। मान्यता है कि पांच जगहों पर पांडवों को भगवान शिव के अलग अलग अंगों के दर्शन हुए थे। केदारनाथ में पीठ के दर्शन हुए, मध्य महेश्वर में भगवान के मध्य भाग यानी नाभि के। 21 मई को मध्य महेश्वर धाम के कपाट खुलने जा रहे हैं, जिसके लिए धूमधाम से भगवान की डोली अपने शीतकालीन आवास उखीमठ से कल रवाना हुई थी। कल सुबह भगवान मध्य महेश्वर की उत्सव डोली अपने धाम में पहुंच जाएगी।
3: संस्कृति, परंपरा और आस्था का अनूठा संगम। आगे आगे भगवान की डोली, पीछे पीछे भक्तों की डोली। ढोल दमाऊ की थाप है, रंग है, राग है, आस्था परंपार है। भगवान मध्य महेश्वर अपने धाम चले हैं। अपने धाम यानी मध्य महेश्वर मंदिर। महिलाओं ने भजन गाकर अपने आराध्य को विदाई दी तो वहीं डोली के साथ साथ चल रहे भक्त महादेव का जयकारा लगाते पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ते रहे। ओंकारेश्वर मंदिर में भगवान शीतकालीन प्रवास पर थे। प्रवास पूरा होते ही मध्य महेश्वर की चल उत्सव विग्रह डोली अपने धाम के लिए रवाना हो गई। मंगलवार को उखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर से रवाना हुई डोली आज गोंडार गांव पहुंचेगी और 21 मई को मध्य महेश्वर मंदिर। डोली के धाम पहुंचने पर वैदिक मंत्रोच्चार और पूरे विधि विधान के साथ मंदिर के कपाट खोल दिए जाएंगे और अगले 6 महीने तक भगवान अपने भक्तों को यहीं दर्शन देंगे।
4: रांसी गांव से रुद्रप्रयाग जनपद के सीमांत गांव गोंडार में भगवान मध्यमेश्वर की डोली द्वितीय रात्रि प्रवास करेगी। 21 मई सुबह डोली गोंडार गांव से धाम के लिए प्रस्थान करेगी और धाम पहुंचने पर लगभग 11 बजे द्वितीय केदार भगवान मध्यमेश्वर के कपाट आगामी 6 माह के लिए खुलेंगे। आपको बता दें कि भगवान मध्यमेश्वर की मध्यमेश्वर धाम में मध्य भाग की पूजा होती है और इसके अलावा केदार घाटी में भगवान मध्यमेश्वर को न्याय के देवता के रूप में भी पूजा जाता है।
3: उत्तराखंड के पंच केदार में भगवान शिव के 5 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। केदारनाथ में बैल रूपी शिव के कुबड़ की, तुंगनाथ में भुजाओं की, रुद्रनाथ में मस्तक की, मध्य महेश्वर में नाभि की और कल्पेश्वर में जटाओं की पूजा होती है। पंच केदार में मध्य महेश्वर को दूसरे केदार के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि इस मंदिर को महाभारत काल में पांडवों द्वारा बनवाया गया था। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सिंहवाल, गुड न्यूज टुडे।
2: चलिए इसी के साथ जीएनटी स्पेशल की आज की हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की पॉजिटिव खबरें दिन भर जारी हैं, आप देखते रहिए।

0: कौन सा अहंकार करने पे जीवन में अपयश मिलने लगता है, कौन सा अहंकार करने से धन की बड़ी हानि हो जाती है, और कौन सा अहंकार करने से करियर में दिक्कतें आ जाती हैं, अहंकार का आपके जीवन पर कैसा पड़ता है प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads.
2: Thank God I get to wait.
1: And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
3: Sit back and relax with the smoothest hits with Coffeehouse Station on TuneIn, a carefully brewed mix of soft acoustic tracks made for slow moments and quiet focus, featuring artists like James Bay, Norah Jones, and Daniel Caesar, plus more of your Coffeehouse favorites. Perfect for getting lost in a good book or easing into your workday. Just search Coffee House or ask your device to play Coffee House on TuneIn.
4: किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर रात सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: The weather in Central Ohio just got better, so why shouldn't your loan rate? CME Federal Credit Union wants to try to beat your current loan rate by 2% on autos and toys. Plus, enjoy no payments for 90 days on car loans and no payments for 60 days on motorcycles, boats, and more. With car rates as low as 4.99% APR and toy rates starting at 6.5% APR, it's the perfect time to save. Apply today at CMEFCU.org.
1: Terms apply. Minimum floor rates 4.99% APR cars, 6.50% APR other vehicles. Federally insured by NCUA.
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads.
3: Thank God I get to wake
2: and everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: प्रिंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
6: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
7: देवभूमि उत्तराखंड में धूमधाम से जारी है चारधाम यात्रा। बद्रीनाथ में 4.5 लाख से अधिक भक्तों ने किए दर्शन। केदारनाथ धाम पहुंचे करीब 7.25 लाख भक्त। जम्मू के कटरा में गर्मी पर भारी दिखी आस्था, बढ़ती गर्मी ने भी वैष्णो देवी मंदिर भक्तों का मेला, जय माता दी के जयकारों से गूंजा दरबार। इटली दौरे पर पीएम मोदी, रोम में दोनों देशों में स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर चर्चा। इटली की पीएम मेलोनी को पीएम मोदी ने गिफ्ट की ट्रॉफी। दिल्ली में आज से शुरू हुआ वर्क फ्रॉम होम। रेखा सरकार और एमसीडी के कर्मचारी घर से कर रहे काम। हर हफ्ते बुधवार शनिवार को होगा वर्क फ्रॉम होम। मुंबई में समुद्री प्रदूषण कम करने की दिशा में बीएमसी की सराहनीय पहल। गेटवे ऑफ इंडिया और वडवार पार्क के पास मानव रहित इलेक्ट्रिक बोट की तैनाती। हर दिन 80 से 90 किलो कचरे का हो रहा सफाया।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
7: कल सुबह 11 बजे खुलेंगे द्वितीय केदार भगवान मधमहेश्वर के कपाट। भगवान मधमहेश्वर की डोली गुंडार गांव पहुंची। अंतिम रात्रि प्रवास गुंडार में होगा संपन्न। भक्तों की भारी भीड़ भगवान मधमहेश्वर की डोली यात्रा में शामिल। रुद्रप्रयाग में धार्मिक उत्साह चरम पर। डोली ने ओमकारेश्वर से शुरू की थी यात्रा, कल सुबह धाम के लिए रवाना होगी डोली। कल मध्यमहेश्वर धाम में गूंजेगी पूजा की घंटियां। भक्तों में भारी श्रद्धा और उत्साह, ओंकारेश्वर से धाम तक भक्ति का सफर। हिमालयी रास्तों में गूंज रहा जयकारा, भक्तों ने डोली पर बरसाए फूल। कपाट खुलते ही शुरू होगा पूजा अर्चना का दौर। चारधाम यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब। 32 दिनों में करीब 17 लाख से अधिक भक्तों ने की चारधाम यात्रा। केदारनाथ में कल 30,000 से अधिक भक्तों ने किए दर्शन पूजन। अब तक 7 लाख के पार श्रद्धालुओं ने केदारनाथ धाम में लगाई हाजिरी। बद्रीनाथ धाम में 21,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने की पूजा पाठ। अब तक करीब 4.5 लाख से अधिक भक्तों ने किए बाबा बद्रीनाथ के दर्शन। यमुनोत्री और गंगोत्री में उमड़ा आस्था का सैलाब। दोनों जगहों पर 5.5 लाख से अधिक भक्तों ने किए दर्शन पूजन। चारधाम यात्रा के दौरान अब तक 1,56,041 वाहनों की आवाजाही की दर्ज की गई। सबसे अधिक 54,832 वाहन पहुंचे बद्रीनाथ धाम। उज्जैन में महाकाल की उतारी गई भस्म आरती, श्रद्धालुओं ने लगाए हर हर महादेव के जयकारे। भगवान महाकाल का अभिषेक के बाद किया गया भव्य दिव्य श्रृंगार, बड़ी संख्या भक्त बने साक्षी। महाकाल को शीर्ष नाग का रजत मुकुट, रजत मुंडमाला, रुद्राक्ष की माला और पुष्पों की मालाएं धारण कराई गई। ड्राई फ्रूट फल मिठाई का लगाया गया भोग। भस्म आरती में बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु, महानिर्वाणी अखाड़े ने अर्पित की भस्म आरती। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर पहुंचे क्रिकेटर कुलदीप यादव, पत्नी के साथ किए ठाकुर जी के दर्शन। दिल्ली समेत उत्तर भारत में जल्द गर्मी से मिलेगी राहत, केरल में 22 मई से 30 मई तक मानसून की एंट्री की संभावना। मई के आखिरी या जून के पहले सप्ताह में तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा और आंध्र प्रदेश मानसून पहुंचने का अनुमान। मार्च से 15 जून तक महाराष्ट्र, ओडिशा, छत्तीसगढ़ पहुंच सकता है मानसून। जून के आखिरी हफ्ते में दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में मानसून आने की संभावना। उत्तर प्रदेश में 15 जून को मानसून देगा दस्तक, बिहार में 20 जून तक मानसून आने की संभावना। तमिलनाडु के रानीपेट में मानसून की तैयारी को लेकर जुटा प्रशासन, केरल में 240 एनडीआरएफ कर्मियों की हुई तैनाती। एमपी में बुंदेलखंड के 5 जिलों में भीषण लू का रेड अलर्ट, दिन के समय सड़कों पर पसरा सन्नाटा, ठंडक के लिए गन्ने का जूस पी रहे लोग। एमपी का छतरपुर प्रदेश का सबसे गर्म जिला, तापमान 47 डिग्री के पार पहुंचा, आने वाले दिनों में 50 डिग्री तक जा सकता है तापमान। यूपी के बांदा में तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस, 11 जिलों में 2 दिन भीषण गर्मी का रेड अलर्ट, शीतल पेय पदार्थों की बढ़ी बिक्री। भीषण गर्मी को लेकर प्रशासन अलर्ट, जगह जगह बनाए गए कूलिंग सेंटर, ठंडे पानी की व्यवस्था, सभी सीएचसी और पीएचसी को रखा गया एक्टिव। यूपी के 15 जिले भीषण गर्मी से प्रभावित, अयोध्या में पारा 41 डिग्री के पार, गर्मी ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। यूपी के इटावा में भी गर्मी से लोगों का जीना बेहाल, 45.5 डिग्री तापमान दर्ज, लस्सी, गन्ने का जूस, नारियल पानी, बेल रस का सहारा। एमपी के रतलाम में पानी की भारी किल्लत, सूखे सभी जलाशय, वाटर लेवल भी हुआ कम, पानी के लिए कई किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। झारखंड के रामगढ़ में पानी के एक एक बूंद को तरसे लोग, 1 लाख आबादी जल संकट से परेशान, प्रशासन ने शुरू की टैंकर से जलापूर्ति। रायपुर के रीवा गांव में 40 साल से जल संकट, 45 डिग्री गर्मी में पानी के लिए संघर्ष, महिलाएं रोज 10 घंटे पानी लाने में मजबूर। झारखंड के गढ़वा में 43 डिग्री से जनजीवन बेहाल, इंसान ही नहीं बल्कि जानवर परेशान, बंदरों के लिए खाने पीने की व्यवस्था। पाली में बेजुबानों को गर्मी से बचाने के लिए अच्छी पहल, लोगों ने ओझना कुंड में भरा पानी। पाली में भीषण गर्मी, छत पर महिला ने बिना चूल्हे के बनाया चीला। झांसी में 46 डिग्री के पार पहुंचा तापमान, सड़कों पर पसरा सन्नाटा। झांसी में भगवान को गर्मी से बचाने के लगाए गए एसी, खानपान में भी किया गया बदलाव। उधमपुर में भीषण गर्मी से संकट, फूलों को पहुंचा नुकसान, फूलों को बचाने में जुटे लोग। अलवर में 46 डिग्री के पार पहुंचा तापमान, धूप से बचते दिखे लोग। अलवर में लोगों को गर्मी से बचाने के लिए पुलिस की अच्छी पहल, ट्रैफिक सिग्नल पर लगाए गए टेंट। अकोला में भी भीषण गर्मी का प्रकोप जारी, गर्मी के चलते कई इलाकों में पानी की कमी। औरैया में भी बढ़ा तापमान, गर्मी से बचने के लिए कई जगहों पर की गई पानी की व्यवस्था। रांची में लगातार बढ़ रहा तापमान, कई इलाकों में चल रही लू। मैदानों में बढ़ती गर्मी के बीच सैलानियों से गुलजार हुआ श्रीनगर, बड़ी संख्या में पहुंच रहे सैलानी। श्रीनगर में शिकारा का आनंद ले रहे सैलानी, भीड़ को देखते हुए बढ़ाई गई सुरक्षा। यूपी के चंदौली में 44 डिग्री के पार पहुंचा तापमान, सड़कों पर पसरा सन्नाटा। भीषण गर्मी को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से की अपील, कहा बिना वजह घर के बाहर ना निकले। तकनीकी खराबी के चलते बद्रीनाथ से लौट रहे हेलीकॉप्टर की चंबा आराकोट क्षेत्र में इमरजेंसी लैंडिंग, पायलट समेत हेलीकॉप्टर में सवार सभी 6 यात्री सुरक्षित। लखनऊ में बेजुबानों को गर्मी से बचाने के लिए शानदार पहल, चिड़ियाघर प्रशासन ने वन्य जीवों के लिए की विशेष व्यवस्था। जानवरों के बाड़े में लगाए गए वाटर स्प्रिंकलर, तालाब, ग्रीन मैट और छांव के लिए किए गए इंतजाम। इसके अलावा हर बाड़े में पानी की पर्याप्त व्यवस्था की गई, खान पान पर भी रखा जा रहा विशेष ध्यान। रुद्रप्रयाग में जमकर हुई बारिश से सोनप्रयाग गौरीकुंड हाईवे पर टूटा पहाड़, कई श्रद्धालु फंसे। एसडीआरएफ की टीम ने सभी फंसे श्रद्धालुओं का किया रेस्क्यू, सड़क से हटाया जा रहा मलबा। मेघालय के उमरोई मिलिट्री स्टेशन पर बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 का शुभारंभ, 12 मित्र देशों की सेनाएं अभ्यास में ले रही हिस्सा। भूटान से लेकर वियतनाम तक एशियाई देशों की सैनिक जुटता दिखी, संयुक्त युद्ध कौशल और सामरिक तालमेल पर रहेगा फोकस। आतंकवाद रोधी ऑपरेशन और आधुनिक युद्ध तकनीक पर होगा प्रशिक्षण, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रक्षा साझेदारी को मिलेगी मजबूती। बगहा में 227 नए बिहार पुलिस जवान पास आउट, जवानों का दमदार मार्च पास्ट, परेड ग्राउंड में पूजा गूंजा, जवानों का जोश। हथियार संचालन और ड्रिल का शानदार प्रदर्शन, आईजी अनुसुईया रण सिंह साहू ने बढ़ाया जवानों का हौसला, माता पिता की आंखों में दिखा गर्व। कोची में आईओएस सागर पर फहराया गया झंडा, समंदर की निगरानी करेगा आईओएस सागर, वाइस एडमिरल समीर सक्सेना रहे मौजूद। आईओएस सागर ने बढ़ाया समुद्री गौरव, कोची में सैन्य अनुशासन का शानदार नजारा, हिंद महासागर क्षेत्र में मजबूत मौजूद। पंजाब गवर्नर गुलाब सिंह कटारिया ने की ई बस यात्रा, लोगों से की पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अपील, ईंधन बचाने की पीएम की अपील का समर्थन। रांची एयरपोर्ट को मिली नई सुविधाओं की सौगात, केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू ने किया उद्घाटन, यात्रियों के लिए उड़ान यात्री कैफे शुरू। अवसर सेंटर में मिलेगा स्थानीय उत्पादों को मंच, रांची एयरपोर्ट पर खुली नई लाइब्रेरी, बच्चों के लिए बना किड्स प्ले जोन। अमृतसर में गर्मी के बीच एसजीपीसी के खास इंतजाम, श्री हरमंदिर साहिब में बढ़ाई गई छबील सेवा, परिक्रमा में पंखों की व्यवस्था की गई। श्रद्धालुओं के लिए बिछाए गए विशेष मैट, फर्श पर दिन भर किया जा रहा है पानी का छिड़काव, 40 डिग्री गर्मी में भी भक्तों की नहीं टूटी श्रद्धा। गोल्डन टेम्पल के गुरु घर में उमड़ रहे श्रद्धालु, सरोवर में डुबकी लगाकर पा रहे राहत, पंखों के नीचे श्रद्धालु सुन रहे गुरबानी। औरैया में भीषण गर्मी से बढ़ा बिजली बोझ, ट्रांसफार्मरों को ठंडा रखने के लिए लगाए गए कूलर, लाइनमैन लगातार कर रहे निगरानी। पावर हाउस में कूलिंग सिस्टम किया गया मजबूत, ट्रांसफार्मर गर्म ना हो इसलिए खास इंतजाम, बिजली खपत बढ़ने से विभाग अलर्ट। श्रीगंगानगर के मानव सुधार का भारतीय नेशनल क्रिकेट टीम में चयन, घर में जश्न का माहौल। तमिलनाडु के नागापट्टिनम टीवीके की शानदार जीत पर गेराल्ड मिल्टन ने घुटने के बल चलकर अपनी मन्नत पूरी की, भगवान की पूजा कर लिया आशीर्वाद। दक्षिण कोरिया के मंत्री के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बैठक, रक्षा मंत्री ने अधिग्रहण को लेकर की चर्चा। अकोला में अनोखी शादी, दुल्हन ने ट्रैक्टर से ली एंट्री। किसानों को समर्थन देने के लिए दूल्हा दुल्हन डीआरडीओ ने हासिल किया एक और उपलब्धि, एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर मोड में अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स से लॉन्च होने वाली प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल V3 के डेवलपमेंट ट्रायल किए पूरे। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल के पास स्थित डीआरडीओ टेस्ट रेंज में UULP GM V3 मिसाइल के सफल ट्रायल किए गए, हल्के वजन वाली स्वदेशी मिसाइल बिना मानव रहित ड्रोन से लक्ष्य भेदने में सक्षम। परीक्षणों के दौरान अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम किया गया इस्तेमाल, जो संभालता है मिसाइल सिस्टम की कमांड और कंट्रोल क्षमता। UULP GM V3 मिसाइल वायुसेना और सेना के बेड़े में शामिल लड़ाकू ड्रोनों से किया जाएगा इंटीग्रेटेड, इससे बिना किसी मानवीय जोखिम के दुश्मन की हर हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने मिलेगी मदद। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की छवि हुई और मजबूत, पूरी तरह भारतीय तकनीक से तैयार है UULP GM V3, जिसमें बड़ी संख्या में MSMEs और घरेलू उद्योगों की भागीदारी। भारतीय रक्षा बलों के लिए एक बड़ी उपलब्धि, सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम का NIB ने किया सफल परीक्षण। ओडिशा के चांदीपुर स्थित ITR में 150 किलोमीटर और 300 किलोमीटर भारी क्षमता वाले सूर्यास्त्र रॉकेटों का किया गया सफल परीक्षण। रॉकेट की सबसे बड़ी खासियत इसकी अचूक मारक क्षमता है, यह रॉकेट दुश्मन के बंकरों, कमांड सेंटरों और सैन्य ठिकानों को पिन पॉइंट सटीकता के साथ पूरी तरह कर सकता है नष्ट। सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम सिर्फ रॉकेट ही नहीं बल्कि ड्रोन से भी हमला करने में सक्षम। सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर, जो अलग अलग रेंज और क्षमता के रॉकेट दाग सकता है। झांसी में नरेश महाराज श्रीमंत गंगाधर राव और वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की 84वीं वर्षगांठ पर जश्न का माहौल। चौरासी वर्षगांठ पर शहर में निकाली गई शाही बारात और भव्य शोभा यात्रा, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। पारंपरिक मराठी वेशभूषा में दिखे कलाकार, ढोल नगाड़ों से की गूंज से बदला शहर का माहौल। गाजीपुर पुलिस की अच्छी पहल, 4 महीने में 1323 परिवारों को टूटने से बचाया। जनवरी 2026 से 15 मई 2026 तक गाजीपुर पुलिस ने पति पत्नी विवाद के 1323 मामलों का कराया समझौता। एसपी सिटी बोले, महिला सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता। प्रवासी फ्लेमिंगो से गुलजार हुआ थूथुकुड़ी, बड़ी संख्या में पक्षियों को देखने के लिए पहुंच रहे लोग। अफ्रीका, दक्षिण एशिया, मध्य पूर्व और दक्षिणी ध्रुव के यूरोप के विभिन्न हिस्सों से थूथुकुड़ी में पहुंचे फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो के गुलाबी पंख बने आकर्षण का केंद्र, हर साल सर्दियों में भारत आते हैं फ्लेमिंगो। की समाज सेविका की अच्छी पहल, वंचित लड़कियों की स्कूल फीस का करती है भुगतान। वंचित लड़कियों को फीस के साथ स्कूल संबंधित जरूरत के सामान भी कराती है उपलब्ध, हर साल सैकड़ों बच्चों को सहायता कराती है मुहैया। जूनियर एनटीआर की फिल्म ड्रैगन का धमाकेदार टीजर रिलीज, इस धमाकेदार झलक ने कई गुना बढ़ी फैंस की एक्साइटमेंट। इक्कीस मई को रिलीज होगा बाबू देओल स्टार बंदर का धमाकेदार ट्रेलर, अनुराग कश्यप निर्देशन बनी फिल्म का जबरदस्त बज। ओटीटी पर डेब्यू करने जा रहे हैं राजकुमार हिरानी, 3 जुलाई को ओटीटी प्लेटफॉर्म जी हॉट स्टार पर रिलीज होगी उनकी वेब सीरीज प्रीतम और पेड्रो। स्वतंत्रता दिवस पर रिलीज हो सकती है सुपरस्टार यश की टॉक्सिक, ऐसा होने पर सनी देओल की बंटवारा 1947 और इमरान हाशमी की आवारापन 2 से होगा महाक्लेश। जल्द ही निर्देशक कुशांड मुखर्जी की आने वाली फिल्म में दिखाई देंगी कृतिका कामरा, अभी डंबेल रखा गया है फिल्म का वर्किंग टाइटल, जून में भी शुरू हो जाएगी शूटिंग। इम्तियाज अली निर्देशित फिल्म दिलजीत दोसांझ स्टार फिल्म में वापस आऊंगा का ट्रेलर रिलीज, 12 जून को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। एआर रहमान ने दिया है फिल्म का संगीत।
8: बॉर्डर के उस साइड
7: दिग्गज फिल्म डायरेक्टर इंद्र कुमार के बेटे अमन फिल्म में तेरा यार हूं में करने से जा रहे हैं एक्टिंग डेब्यू, 31 जुलाई को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। जिंटा 8 साल बाद फिल्म वाइब से बड़े पर्दे पर कर रही वापसी, 18 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म। उन्नीस साल बाद फिर साथ आएंगे अजय देवगन और अनुभव सिन्हा, एक्शन थ्रिलर फिल्म को लेकर चर्चाएं तेज। पांच फिल्मों में नजर आएंगे नवजुन सिद्दीकी, फिल्म एक्सन 108, नुरानी चेहरा, संगीन, तुम्बा 2, द ग्रेट एस्केप, फरार में करेंगे अहम रोल।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. Country roads.
3: Thank God I get to wake
2: and everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
9: Sit back and relax with the smoothest hits with Coffee House Station on TuneIn. A carefully brewed mix of soft acoustic tracks made for slow moments and quiet focus. Featuring artists like James Bay, Nora Jones, and Daniel Caesar. Plus more of your coffee house favorites. Perfect for getting lost in a good book or easing into your workday. Just search Coffee House or ask your device to play Coffee House on TuneIn.
10: खबरों को परख कर परोसना, हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
11: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
10: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
12: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम
7: कान फिल्म फेस्टिवल के रेड कारपेट पर हर साल फैशन के नए रंग देखने को मिलते हैं, लेकिन इस बार जयपुर की बेटी और एक्ट्रेस रुचि गुर्जर ने अपने अंदाज से सिर्फ फैशन नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति को दुनिया के सामने रखा। रुचि जब पारंपरिक राजस्थानी घूंघट ओढ़कर रेड कारपेट पहुंची तो हर किसी की निगाहें उन पर टिक गई।
10: कांस के रेड कार्पेट पर घूंघट में रुचि गुर्जर की एंट्री ने फैशन के इस मंच को महिलाओं की आजादी, पहचान और सामाजिक बदलाव की आवाज बना दिया। जिस बेबाकी और बेफिक्री से रुचि ने वहां मौजूद मीडिया के सामने पोज दिए और रेड कार्पेट पर वॉक किया, उसकी धमक दूर दूर तक सुनाई दी। राजस्थान की समृद्ध विरासत और संस्कृति से प्रेरित रुचि का ये खूबसूरत गुलाबी घूंघट लुक किसी फैशन स्टेटमेंट के लिए पहना गया महज एक आउटफिट नहीं था, बल्कि महिलाओं के हक और सम्मान में उठी एक आवाज थी। ये घूंघट उन सामाजिक बंधनों पर एक सवाल था, जिसकी वजह से आज भी कई महिलाओं को अपनी पहचान छिपा कर जीना पड़ता है। कान के मंच पर रुचि गुर्जर ने सदियों पुरानी जबरन घूंघट प्रथा के खिलाफ एक साहसी और प्रतीकात्मक संदेश दिया। कान्स में रुचि गुर्जर ने कहा, मैंने घूंघट चुप रहने के लिए नहीं पहना, मैंने इसे विरोध के रूप में पहना है। महिला का सम्मान उसकी बराबरी, आत्मविश्वास और आजादी से होना चाहिए, उसकी पहचान छिपाने से नहीं। अगर मेरी ये वॉक किसी एक महिला के लिए भी बातचीत की शुरुआत बनती है, तो ये फैशन से कहीं बड़ा उद्देश्य है। रुचि गुर्जर की इस पहल की तुलना उन अंतर्राष्ट्रीय सितारों से भी की जा रही है, जिन्होंने बड़े मंचों का इस्तेमाल सामाजिक मुद्दों को उठाने के लिए किया। फिर चाहे वो केट ब्लैंकेट हो, जिन्होंने शरणार्थियों और पर्यावरण के मुद्दे पर अपनी आवाज उठाई, या फिर एमा वॉटसन, जिन्होंने जेंडर इक्वालिटी और एथिकल फैशन को समर्थन दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: और अब बात सलमान खान की। पिछले कुछ दिनों से सलमान खान लगातार चर्चा में बने हुए हैं। पहले सलमान की एक शर्टलेस तस्वीर के साथ उनकी तन्हाई की खबरें सुर्खियों बनी, जिसके लिए सलमान को खुद सफाई देनी पड़ी, और अब आधी रात को सलमान के एंग्री यंग मैन बनने की वजह चर्चा में है। देखिए रिपोर्ट।
13: इस वीडियो को गौर से देखिए। सलमान खान का चेहरा और एक्सप्रेशन साफ बता रहा है कि वो गुस्से में है। वीडियो में कुछ आवाजें भी सुनाई दे रही हैं, एक तो सलमान खान की जो गुस्से से भरी है। दूसरी जो उनके सामने खड़े हैं, लेकिन वीडियो में दिखाई नहीं दे रहे, ये पेपराजी है। जो भाई भाई सॉरी भाई कहकर सलमान से माफी मांग रहे हैं। वीडियो से साफ पता चल रहा है कि पेपराजी की किसी बात ने सलमान खान को गुस्सा कर दिया है, जिससे सलमान को उन्हें डांटने फटकारने पर मजबूर होना पड़ा। इन तस्वीरों से यहाँ तक की बात तो समझ में आती है, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्या कि सलमान को उन्हें डांटने फटकारने की नौबत आई। तो चलिए आपको बताते हैं आखिर माजरा है क्या। बीती रात सलमान खान अपने किसी करीबी को देखने मुंबई के हिंदुजा अस्पताल पहुंचे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पेपराजी ने सलमान को तब देखा जब उनकी गाड़ी एक ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी और बाद में अस्पताल तक उनका पीछा किया। जैसे ही सलमान अस्पताल से बाहर निकले, कुछ फोटोग्राफर्स ने उनका ध्यान खींचने के लिए भाई भाई चिल्लाना शुरू कर दिया। सलमान खान ने तब उन्हें अस्पताल के पास चुप रहने को कहा और उनसे पूछा कि अगर उनके परिवार का कोई अस्पताल में भर्ती होता तो क्या वो ऐसे ही रिएक्ट करते। सलमान खान की नाराजगी यही खत्म नहीं हुई। पेपराजी के इस गैर जिम्मेदाराना व्यवहार ने उन्हें जहनी तौर पर इतना व्यथित किया कि अस्पताल से घर पहुंचने के बाद रात के करीब 3 बजे उनका गुस्सा एक बार फिर फूट पड़ा। सलमान ने इंस्टाग्राम पर कई सेल्फी पोस्ट की, साथ ही पेपराजी को एक बार फिर नसीहत दे डाली। जिस प्रेस के लिए मैं खड़ा हूँ, जिनसे बातचीत की है, जिनकी देखभाल की है, ये सुनिश्चित किया कि वे भी अपनी रोजी रोटी कमा सके, लेकिन अगर वो मेरे नुकसान से पैसा कमाना चाहते हैं तो चुप रहें, मजा ना लें। सलमान ने इशारों इशारों में ये भी कहा कि अगर कोई उनकी निजी जिंदगी या मुश्किल वक्त का मजाक बनाने की कोशिश करेगा तो वो चुप नहीं बैठेंगे। सलमान ने आगे लिखा, 60 साल का हो गया हूँ लेकिन लड़ना नहीं भूला, ये याद रख लेना, जेल में डालोगे, हा हा हा। बेशक सलमान ने अपने गुस्से को जब्त करते हुए कुछ बातें मजाक में कही होंगी, लेकिन पेपराजी के व्यवहार से आहत सलमान के शब्दों में तलखी साफ झलक रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
14: बंगाल में नई सरकार की आते ही एक्शन शुरू। बंगाल में चल पड़ा बुलडोजर, घबराए लोग। मंच पर महिला सांसद का डांस वीडियो वायरल। -40 डिग्री की ठंड में हरे कृष्णा और हर हर महादेव की गूंज। वायरल खबरों की पूरी और पक्की पड़ताल देखिए नवजोत रंधावा के साथ फैक्ट चेक शाम 7:34 पर।
15: Hop on board and settle in for an easygoing cruise with sailing on TuneIn. Let the breeze roll in and the rhythm carry you along. Enjoy yacht rock classics from artists like Hall & Oates, oh, yeah, you make my dreams come. Steely Dan, Loggins and Messina, and much more. Only smooth sailing ahead with songs that help you get away. Just search Sailing. Tell your device to play Sailing on TuneIn.
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.

0: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
1: अहंकार करने पे जीवन में अपयश मिलने लगता है। कौन सा अहंकार करने से धन की बड़ी हानि हो जाती है और कौन सा अहंकार करने से करियर में दिक्कतें आ जाती हैं? अहंकार का आपके जीवन पर कैसा पड़ता है प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
5: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
6: देवभूमि उत्तराखंड में धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा, बद्रीनाथ में 4.5 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन, केदारनाथ धाम पहुंचे करीब 7.75 लाख श्रद्धालु। जम्मू के कटरा में गर्मी पर भारी दिखी आस्था, बढ़ती गर्मी में भी वैष्णो देवी मंदिर में भक्तों का मेला, जय माता दी के जयकारों से गूंजा दरबार। रोम में भारत इटली की द्विपक्षीय वार्ता, सोशल मीडिया पर जमकर देखा कर जा रहा प्रधानमंत्री मोदी और मेलोनी का ट्रॉफी वाला वीडियो, कुछ ही घंटों में 10 करोड़ के पार व्यूज। दिल्ली में आज से शुरू हुआ वर्क फ्रॉम होम, रेखा सरकार और एमसीडी के कर्मचारी घर से कर रहे काम, हर हफ्ते बुधवार शनिवार को होगा वर्क फ्रॉम होम। मुंबई में समुद्री प्रदूषण कम करने की दिशा में बीएमसी की सराहनीय पहल, गेटवे ऑफ इंडिया और बडवार पार्क के पास मानव रहित इलेक्ट्रिक बोट की तैनाती, हर दिन 80 से 90 किलो कचरे का हो रहा सफाया।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है इसके पढ़ने।
6: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। हम आपको आज की 7 गुड न्यूज के बारे में बताएंगे और सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 5 देशों के दौरे के अंतिम पड़ाव पर इटली की राजधानी रोम पहुंच गए हैं, जहां इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस मौके पर दोनों नेताओं के बीच शानदार केमिस्ट्री देखने को मिली। ऐसे में आज की हमारी जो पहली गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी हुई है, भारत इटली के बीच मेलोडी डिप्लोमेसी। जी हाँ, आपको बता दें, इटली दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को मेलोडी टॉफी गिफ्ट की है। इस बात की जानकारी मेलोनी ने सोशल मीडिया पर देते हुए इस गिफ्ट के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी के बीच शानदार केमिस्ट्री है और सोशल मीडिया पर दोनों की दोस्ती के लिए मेलोडी टर्म फेमस है। अब पीएम मोदी ने इसी सोशल मीडिया ट्रेंड को अपनी डिप्लोमेसी का आधार बनाया है। दिसंबर 2023 में पहली बार दुबई में COP28 के दौरान पहली सेल्फी पोस्ट में मोदी और मेलोनी को मेलोडी नाम दिया गया था और इसके बाद जून 2024 में इटली में हुए G7 शिखर सम्मेलन के दौरान मेलोनी ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने हंसते हुए कहा था, हेलो फ्रेंड्स फ्रॉम द मेलोडी टीम। ये गिफ्ट दोनों नेताओं की दोस्ती और भारत इटली रिश्तों की गर्मजोशी को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त अपने 5 देशों के दौरे के आखिरी चरण में इटली पहुंचे हैं, जहां दोनों नेताओं के बीच व्यापार, रक्षा और रणनीतिक सहयोग जैसे मुद्दों पर बातचीत होने की उम्मीद है।
7: 5 देशों के अपने दौरे के आखिरी चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली जाकर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान भारत और इटली के बीच स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एक्शन प्लान पर चर्चा की गई। बायलेटरल टॉक्स के दौरान भारत और इटली के बीच किस

0: तरह से व्यापार को बढ़ाया जाए। जो व्यापार इस वक्त लगभग 14 बिलियन यूरो का है, उसे 2019 तक 20 बिलियन यूरो तक पहुंचाने पर बातचीत की गई। कृषि हो या फिर रक्षा, इनोवेशंस हो या फिर तकनीक, हर एक क्षेत्र में कैसे भारत और इटली मिलकर आपस में अपने संबंधों को बेहतर बना सकते हैं और एक दूसरे के लिए एक बेहतरीन पार्टनर्स बन सकते हैं, इसको लेकर भी बातचीत की गई। इस दौरे के दौरान भारत के प्रधानमंत्री और इटली के प्रधानमंत्री के बीच एक अच्छी केमिस्ट्री दिखाई दी। हमेशा की तरह ये दोनों नेता जब मिले तो तमाम फोटोज और वीडियोज वायरल हुए और उसमें से एक वीडियो जो जॉर्जिया मेलेनी ने पोस्ट किया, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको मेलेडी चॉकलेट दे रहे थे, इसको लेकर भी काफी चर्चा रही। लेकिन इन एक्सचेंजेस के बीच, भारत और इटली के बीच इन रणनीतिक संबंधों को और ज्यादा मजबूत बनाने पर जोर रहा।
1: पंजाब के जालंधर शहर की महज 8 साल की मासूम बेटी हरनाज कौर ने एक अनोखा कीर्तिमान बनाया है। हरनाज ने इतनी छोटी सी उम्र में हुला हूप में अपना नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज कराया है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो दूसरी गुड न्यूज है वो है 8 साल की हरनाज कौर का हुला हूप में रिकॉर्ड। देखिए, आपको बता दें कि हरनाज ने लटके हुए महज 25 सेकेंड में 50 बार हुला हूप करके नया रिकॉर्ड बनाया है। हरनाज का अब अगला लक्ष्य गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराना है।

0: जालंधर की रहने वाली हरनाज कौर कोहली ने एक नया कारनामा किया है। महज 8 साल की हरनाज ने अपनी मेहनत और हुनर से बड़ा मुकाम हासिल किया है। हरनाज ने रॉड के साथ हवा में लटककर महज 25 सेकंड में 50 बार हुला हुप घुमाने का कीर्तिमान बनाया है। हरनाज ने रिकॉर्ड बनाकर अपने शहर और राज्य का नाम रोशन किया है। हरनाज की इस उपलब्धि पर उनका नाम इंडिया बुक रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। हरनाज की उम्र में भारत या दुनिया में किसी अन्य बच्चे ने यह उपलब्धि हासिल नहीं की है।
1: बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सुबह 6 बजे उठ जाती थी प्रैक्टिस करने के लिए।
2: तो कितनी देर प्रैक्टिस करते थे?
1: 2-3 घंटा।
2: तो ये जो आपका इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम आया है, तो कितना स्प्लिट किया आपने?
1: मतलब मैंने 25 सेकंड्स में 50 हुला हूप्स को मारी। ये फास्टेस्ट।
0: हरनाज ने अपनी इस अनूठी गेम को खुद ही विकसित किया है, जिसमें लटकने और हुला हुप करने दोनों को एक साथ जोड़ा गया है। रोजाना घंटों की कड़ी मेहनत, सुबह सुबह हर रोज प्रैक्टिस और लगातार जुनून ने हरनाज को इस मुकाम तक पहुंचाया है। हरनाज की सफलता से पूरे परिवार में खुशी और गर्व का माहौल है। रिश्तेदार, पड़ोसी और शहर के कई लोग लगातार फोन और सोशल मीडिया के जरिए परिवार को बधाइयां दे रहे हैं।
3: बहुत बढ़िया लग रहा है सर, बच्ची की मेहनत सफल हुई है। आज इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मेरी उनसे बात चल रही थी तो मुझे नहीं लग रहा कि पंजाब में किसी बच्चे का, आज तक इतने छोटे बच्चे का इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम आया है। स्कूल वाले भी बहुत खुश हैं, बच्चे की मेहनत भी बहुत ज्यादा थी। अगर आप देखो तो इसके हाथ में हैंग कर करके चाले पड़ जाते हैं, बट फिर भी बच्चा करता रहता था, है ना। तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है।
0: हरनाज बचपन से प्रतिभाशाली रही है और उन्होंने ये उपलब्धि अपने कड़ी मेहनत और लगन से हासिल की है। हरनाज केवल हुला हुप नहीं बल्कि स्केटिंग में भी अपना कमाल दिखा चुकी है और अब तक 12 गोल्ड समेत 18 मेडल जीत चुकी है। हरनाज के परिवार का मानना है कि हरनाज की सफलता समाज के दूसरे बच्चों के लिए भी एक बड़ी प्रेरणा बनेगी,
4: क्योंकि इसमें खुद में ही एक जुनून है कि मैंने कुछ करना है। तो ये मतलब हमें पुश नहीं करना पड़ता किसी चीज के लिए, ये अपने आप अपना पाथ ढूंढ लेती है और चल पड़ती है। नहीं, ये पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है। 80% ये अपना वर्क स्कूल में जैसे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, ये अच्छे से वहाँ पे समझ के पढ़ के ही आती है कि मतलब ये शरारते वगैरह कम करके जब मैम पढ़ा रहे हैं तो इसका फोकस पढ़ाई पे होता है। घर आके भी अपनी पढ़ाई कम्प्लीट करके फिर उसके बाद ये अपना कुछ ना कुछ करते।
0: इस उपलब्धि के बाद हरनाज का अगला सपना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड और एशियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में देश का नाम रोशन करना है। हरनाज की सफलता ये बताती है कि अगर मन में आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत करने का जज्बा हो तो उम्र मायने नहीं रखती और किसी भी उम्र में बड़ी उपलब्धियां हासिल की जा सकती हैं। देवेंद्र कुमार, जालंधर, गुड न्यूज टुडे।
5: महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक कारीगर ने चांदी की चप्पल बनाई है। 10 इंच लंबी और 1.5 किलो वजन वाली इस चप्पल की कीमत करीब 4 लाख रुपए है और इसे बनवाया है सांगली के एक कारोबारी ने, जिसने इस चप्पल को अपने दामाद को गिफ्ट किया है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो तीसरी गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है। कोल्हापुर में दामाद को मिली चांदी की चप्पल। ये ऑर्डर सांगली से कोल्हापुर के महावीर नगर में एक चांदी के कारीगर विक्रांत माली के पास आया, जिन्होंने करीब 10 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद इसे तैयार किया।

0: चमड़े की ये पारंपरिक कोल्हापुरी चप्पल अपनी पहचान के लिए कितनी मशहूर है, ये बात हर कोई जानता है। वही अब इसी विरासत को मिला है चांदी का शाही अंदाज, 1.5 किलो वजन, लाखों की कीमत और बारीकी ऐसी कि देखने वाला बस देखता ही रह जाए। एक कारीगर ने अपनी कल्पना, मेहनत और हुनर से परंपरा को ऐसा रूप दिया जो अब देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक चर्चा का विषय बन चुका है। कोल्हापुर की गलियों से ही निकली एक और अनोखी कला इन दिनों लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। ये कोई साधारण चप्पल नहीं बल्कि पूरी तरह चांदी से तैयार की गई खास कोल्हापुरी सैंडल है। महावीर नगर में रहने वाले शिल्पकार विक्रांत माली ने इसे अपने हाथों से तैयार किया। साल 1994 से चांदी के काम से जुड़े विक्रांत पहले भी कई धार्मिक और सजावटी वस्तुएं बना चुके हैं, लेकिन इस बार उन्होंने परंपरा को शाही अंदाज में ढाल दिया। दरअसल महाराष्ट्र के सांगली में एक कारोबारी ने अपने दामाद के लिए खास उपहार बनाने की इच्छा जताई, जिसके बाद शुरू हुआ मेहनत, धैर्य और बारीक कारीगरी का सफर। कारीगर ने पहले कोल्हापुरी पारंपरिक डिजाइन को गहराई से समझा, फिर चांदी को उसी आकार में ढालने का काम शुरू कर दिया। करीब 10 दिनों की लगातार मेहनत के बाद 10 इंच लंबी और लगभग 1.5 किलो वजनी ये खास चप्पल तैयार हुई। इस अद्भुत निर्माण में महीन नक्काशी की गई है, हर हिस्सा हाथों से तराशा गया है, जिससे इसका आकर्षण और भी बढ़ गया है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि कोल्हापुरी का ये सिल्वर नुमा लुक अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नई चमक बिखेर रहा है। सोशल मीडिया पर इस पारंपरिक कोल्हापुरी चप्पल की तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं। लोग इस अनूठी कलाकारी को महाराष्ट्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक शान का शानदार मेल बता रहे हैं। कोल्हापुर से दीपक सूर्यवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: नीट परीक्षा की दोबारा तारीखों के ऐलान के बाद कोटा में फिर रौनक बढ़ गई है। यहां बड़ी संख्या में छात्र पहुंच रहे हैं और उनके लिए निशुल्क एकेडमिक सपोर्ट शुरू किया गया है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो चौथी गुड न्यूज है वो है नीट परीक्षा को लेकर कोटा में जोरों पर तैयारी। आपको बता दें 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा की घोषणा के बाद देश की सबसे बड़ी एजुकेशन सिटी कोटा एक बार फिर विद्यार्थियों के लिए उम्मीद का केंद्र बनकर उभरा है। यहां कोचिंग संस्थान, हॉस्टल, संचालक और पूरा स्टूडेंट इकोसिस्टम विद्यार्थियों को राहत देने और उन्हें मानसिक रूप से दोबारा तैयार करने में जुटा है। शहर के हॉस्टल, लाइब्रेरी, कोचिंग सेंटर और स्टूडेंट हब फिर से सक्रिय नजर आने लगे हैं। लैंडमार्क सिटी कोरल पार्क और जवाहर नगर जैसे प्रमुख छात्र इलाकों में एक बार फिर से पढ़ाई का माहौल लौट आया है। यहां कई विद्यार्थी सिर्फ एक महीने की फोकस तैयारी और रिवीजन के लिए दोबारा कोटा पहुंचे हैं। री नीट की तैयारी के लिए लौटने वाले विद्यार्थियों में से केवल उतने दिनों का ही किराया लिया जा रहा है जितने दिन वे यहां रहेंगे। वहीं एलन करियर इंस्टीट्यूट ने देश भर के री नीट देने वाले करीब 23 लाख विद्यार्थियों के लिए निशुल्क एकेडमिक सपोर्ट शुरू किया है। संस्थान की ओर से सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक स्कोर बूस्टर क्लासेस, दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक नीट पैटर्न टेस्ट और शाम 5:30 बजे से YouTube पर छात्रों के लिए एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा पेपर एनालिसिस कराया जा रहा है।
2: हम सभी लोगों ने मिलकर ये एक अपील करी है जारी कि जितने भी कोटा में हॉस्टल है वो सब उन बच्चों से जो दोबारा कोटा में कोचिंग करने आना चाहते हैं री नीट के लिए वो पर डे के हिसाब से किराया ले उसके, ताकि उन बच्चों पे कोई ऐसा अतिरिक्त भार ना पड़े और वो आराम से अपना री नीट की तैयारी करने कोटा आ जाए, ताकि हम उनको एक बहुत इकोनॉमिक पैकेज के अंदर उन बच्चों को अपने हॉस्टलों में रखकर और उनके साथ में हमेशा 24 घंटे खड़े हैं और उन सभी बच्चों को हम लोग मोटिवेट भी करना चाहते हैं जो बच्चे कोटा में री नीट के लिए आना चाहते हैं।
3: एलन, जिन बच्चों का स्कोर काफी कट ऑफ के नजदीक है या बहुत अच्छे से क्लियर हो गए थे उन बच्चों के लिए चैप्टर वाइज अगर वीकनेस है तो उनके लिए डेली क्लास लगा रहा है मॉर्निंग में, और अगर बच्चा टेस्ट के अंदर थोड़ा और प्रैक्टिस करना चाहता है तो डेली टेस्ट एलन उनको प्रोवाइड कर रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, और इवनिंग में इसी टेस्ट का डिस्कशन भी किया जा रहा है। ये जो प्रोग्राम एलन की तरफ से चल रहे हैं ये उन बच्चों के लिए बेनिफिशियल है जो वास्तव में कट ऑफ के नियर थोड़ा बहुत रुक गए थे या फिर जिनका कि सिलेक्शन हो जाना कन्फर्म भी था लेकिन री नीट के कारण उनको दोबारा देना पड़ रहा है। और दूसरी बात, जो बच्चे इस साल तैयारी नहीं किए थे या जिनका एग्जाम कट ऑफ से काफी दूर रहा है उन बच्चों के लिए अगले साल के बैचेस भी चालू कर दिए गए हैं। हाँ,
1: गर्मी और आम का कनेक्शन ही कुछ अलग है। जी हाँ, तपती धूप, गर्म हवाएं और मौसम की मार के बीच अगर आम का स्वाद मिल जाए तो मानो गर्मी भी खास बन जाती है। गुजरात के अहमदाबाद में एक ही जगह कई तरह के आम की पेशकश की गई है, जहां ऑर्गेनिक आम लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि पांचवी गुड न्यूज इसी से जुड़ी है, और वो है अहमदाबाद के आम उत्सव में केसर का स्वाद। आपको बता दें कि गुजरात के केसर आम फेस्टिवल में आम की कई प्रीमियम किस्मों ने लोगों का ध्यान खींचा है। वहीं किसानों और बागवानों ने भी अपने उत्पादों को प्रदर्शित कर लोगों को आम की खेती और उसकी गुणवत्ता के बारे में जानकारी दी।

0: गर्मी आते ही बाजारों में आम की बहार छा जाती है, कहीं दशहरी की मिठास लोगों को लुभाती है, तो कहीं लंगड़ा और चौसा का स्वाद हर किसी को दीवाना बना देता है। यही वजह है कि आम को फलों का राजा कहा जाता है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई गर्मियों में आम का बेसब्री से इंतजार करता है। कोई आम रस का आनंद लेता है तो कोई ठंडे मैंगो शेक से गर्मी को मात देता है। आम एक ऐसा फल है जो गर्मी का मौसम आते ही बाजारों में छा जाता है। कहीं तरह तरह के आम की प्रदर्शनी लगती है तो कहीं स्पेशल आम फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। अब गुजरात में केसर मैंगो फेस्टिवल 2026 का आगाज हुआ है। यहाँ किसान ऑर्गेनिक तरीके से उगाए गए आमों को लेकर पहुँचे हैं।
1: सर, इस बार तो लोगों का रिस्पांस बहुत ज्यादा आ रहा है हमें, क्योंकि इस बार क्या है, एक्सपोर्ट अभी हमारा बंद है, क्योंकि ये युद्ध की वजह से अभी हमारा जो माल है वो एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, और उसकी वजह से यहाँ पे इंडिया में, गुजरात में कस्टमर को अच्छी वाली क्वालिटी हम दे पा रहे हैं। 100% ऑर्गेनिक हमारी केरी आती है, और आप देख सकते हैं कि फल भी कितना बड़ा है इस बार। ये सब कैरी ना हर साल लंदन, कनाडा सब वहाँ पे चली जाती है, पर इस बार यहाँ पे इसलिए आई है क्योंकि एक्सपोर्ट अभी हमारा बंद है।
0: केसर आम फेस्टिवल में वलसाड, गिर और कच्छ के प्रसिद्ध आम लोगों के सामने पेश किए गए। अपनी खास मिठास, खुशबू और स्वाद के लिए मशहूर केसर आम को देखने और खरीदने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं।
2: हर साल हम तो इधर से ही लेते, पहले ये एक महीने के लिए आता है तो जैसे जाहिरत होती है गवर्नमेंट की ओर से, तो हम लोग इधर आ जाते, इधर से ही लेते हैं। पैसा बहुत अलग बात है, लेकिन क्वालिटी अच्छी मिलती है। वो डायरेक्ट बीच में क्या होता है, जो बीच वाले होते हैं तो क्या हम गड़बड़ कर देते हैं, और ये अपना धंधा नहीं है हम लोगों का, कस्टमर का, तो वो तो विश्वास पे ले जाता है, तो किसान पे, लोग पे थोड़ा ये भरोसा कर सकते हैं कि भाई डायरेक्ट आता है, उनका ही ये माल आता है, तो थोड़ा अच्छा रहता है और क्वालिटी अच्छी मिलती है।
0: गर्मी के मौसम में आम प्रेमियों के लिए ये फेस्टिवल किसी उत्सव से कम नहीं है। यहाँ स्वाद, खुशबू और रंगों से भरे केसर आम ने हर किसी को आकर्षित किया हुआ है।
3: 1200 का बॉक्स अभी बेचते हैं तो कस्टमर को ज्यादा मुनाफा होता है, उसको सस्ता दाम में पड़ता है, बीच वाला जो कमीशन लेता है वो कमीशन नहीं देना पड़ता है, इसलिए हमको भी फायदा होता है और कस्टमर को भी फायदा होता है। हम काम कच्छ से आता है और वो सब ऑर्गेनिक प्राकृतिक खेती है। आम आते, खारेक आती है, पपीता आते, सब आता है।
0: जाहिर है ऑर्गेनिक तरीके से तैयार किए गए आमों की मांग इन दिनों तेजी से बढ़ रही है। लोग बिना केमिकल और प्राकृतिक तरीके से उगाए गए फलों को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। यही वजह है कि ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसानों को बाजार में बेहतर दाम भी मिल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। दिन के समय चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं ने लोगों का घरों से निकलना मुश्किल कर दिया। तापमान लगातार नए रिकॉर्ड छू रहा है, ऐसे में लोग राहत की तलाश में अब पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। ऐसे में हमारी आज की अगली यानी कि जो छठी गुड न्यूज है वो है प्रचंड गर्मी से बचने के लिए पहाड़ों की ओर। आपको बता दें कि उत्तर भारत में पड़ रही भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए बड़ी संख्या में लोग अब कश्मीर का रुख कर रहे हैं। गर्म हवाओं और बढ़ते तापमान से परेशान पर्यटक ठंडी वादियों का आनंद लेने के लिए श्रीनगर पहुंच रहे हैं। यहां की खूबसूरत झीलें, बर्फ से ढकी पहाड़ियां और सुहावना मौसम पर्यटकों को लुभा रहा है।
5: धरती का स्वर्ग कहे जाने वाला कश्मीर इन दिनों सैलानियों से गुलजार है। श्रीनगर की डल झील में शिकारे पर्यटकों से भरे हैं। ठंडी हवाएं और खूबसूरत नज़ारे लोगों को सुकून का एहसास करा रहे हैं। दूर दूर से लोग इन खूबसूरत वादियों का एहसास करने के लिए पहुंच रहे हैं।
6: इंडिया में जो गर्मी है, मतलब 45 जा रहा है किसी किसी जगह से, हमारे यहाँ 22 तक चल रहा है अभी दिन में, तो माशाल्लाह अभी उसकी वजह से अभी टूरिस्ट भी आने लगे हैं, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ बहुत अच्छा है। चाहे गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग कहीं पर भी जाए या श्रीनगर सिटी में, वेदर इज परफेक्ट हियर। इफ एनीबॉडी वांट टू कम हियर, मोस्ट वेलकम, एवरीथिंग इज ओके हियर।
5: दरअसल पहाड़ों की ठंडी वादियां लोगों को अपनी ओर खींच रही हैं। मैदानी इलाकों में सूरज ने कहर बरपाया हुआ है, गर्म हवाएं लोगों का जीना मुश्किल कर रही हैं। दोपहर होते ही सड़कें सूनी पड़ जाती हैं, लेकिन इसी तपिश के बीच लोगों को राहत दे रही हैं कश्मीर की ठंडी और खूबसूरत वादियां, जहां इन दिनों सैलानियों की भारी भीड़ उमड़ रही है।
7: और गर्मी से बचने के लिए जिस अंदाज से पर्यटक पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, गुरेज घाटी भी पर्यटकों से गुलजार है। गुरेज में कुदरती खूबसूरती के साथ साथ पर्यटकों को ट्रैकिंग के लिए कई सारे इलाके यहाँ पर मिलते हैं। यही कारण है कि कश्मीर आने वाले अधिकतर पर्यटक अब गुरेज घाटी जा रहे हैं।
5: कश्मीर की गुरेज घाटी में ऊंचे ऊंचे पहाड़, बर्फ से ढकी चोटियाँ, कल कल बहती किशनगंगा नदी और हरे भरे मैदान पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। गर्मियों के मौसम में गुरेज घाटी का नजारा किसी जन्नत से कम नहीं दिखता। पर्यटक यहाँ प्राकृतिक सुंदरता के साथ स्थानीय संस्कृति और खान पान का भी लुत्फ उठा रहे हैं।
8: यहाँ घूमने आए हूँ, गुरेज वैली इज अमेजिंग, बहुत अच्छी लग रही है यहाँ पे। यहाँ की वादियाँ बहुत सुंदर है, आज तक हमने ऐसे कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था, इतना खूबसूरत लग रहा है यहाँ, बहुत ही अच्छा।
5: कश्मीर ही नहीं, हिमाचल से लेकर उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में पर्यटकों की भरमार है। शहरों में तपन और झुलसती गर्मी से राहत के लिए लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। सरोवर नगरी नैनीताल में बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। यहां आम दिनों के मुकाबले काफी ज्यादा भीड़ है। दिन के वक्त तो नैनीताल में अच्छी खासी धूप है, मगर सुबह और शाम के वक्त ठंडी हवा चलती है जो सैलानियों को खूब लुभा रही है।
9: और यहां पे जैसे ही आ रहे हैं हम, एकदम ठंडी ठंडी हवा आ रही है तो बहुत अच्छा लग रहा है। यहां पे मंदिर घूमने में, लेक के पास घूमने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मेनली मौसम ऐसा है कि हर जगह पे गर्मी है पर यहाँ पे इतनी ठंड है, तो इसीलिए बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं इस टाइम पे और सब बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं।
5: पहाड़ों पर होम स्टे और छोटे होटल पर्यटकों से भरे हुए हैं, जिससे स्थानीय लोगों की आमदनी में भी इजाफा हो रहा है। टैक्सी कारोबार, हाउस बोट, हस्तशिल्प और खान पान से जुड़े लोगों के चेहरों पर भी रौनक लौट आई है।
10: बीच में तो बहुत ज्यादा खाली खाली था, ऐसा लग रहा था इस बार मई चलेगा नहीं चलेगा, पर आज की स्थिति देख के क्या है, थोड़ा बहुत क्राउड वगैरह दिखने लगा है तो अच्छा, मतलब लग रहा है कि भाई 22 तारीख का ये वाला संडे सैटरडे आता है, इसी के बाद पता चलेगा कैसा नैनीताल। धानी क्षेत्र में जब गर्मी होगी तो नैनीताल में काफी अच्छा क्राउड, काफी अच्छी भीड़ आती है, मान के चलेगा। यहाँ पे भी इतना तो, यहाँ तो यहाँ पे भी पहुंच जाता है 25 का आसपास क्राउड पहुंच जाता, तो फिर यहाँ पे दिन में अच्छा मौसम हो जाता, सुबह शाम में तो ठंड पड़ी रही है।
5: स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि आने वाले समय में, यानी गर्मियों के पूरे सीजन में, पर्यटकों की संख्या और बढ़ेगी, जिससे पर्यटन कारोबार को नई रफ्तार मिलेगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: भीषण गर्मी और लगातार बढ़ते तापमान के बीच बेजुबानों के लिए भी गर्मी से बचाव के पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं। लखनऊ में चिड़ियाघर प्रशासन ने वन्य जीवों को राहत देने के लिए खास इंतजाम किए हैं। जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए उनके बाड़ों में कूलर, स्प्रिंकलर और पानी की विशेष व्यवस्था की गई है। इसी से जुड़ी हमारी अगली यानी कि सातवीं और आखिरी गुड न्यूज है, और वो है लखनऊ में बेजुबानों को गर्मी से राहत के इंतजाम। आपको बता दें कि भीषण गर्मी और लगातार बढ़ते तापमान का असर केवल इंसानों पर ही नहीं बल्कि वन्य जीवों पर भी पड़ता है, लिहाजा उनके लिए तेज धूप और गर्म हवाओं से बचने का भी पूरा इंतजाम किया जाता है। लखनऊ में चिड़ियाघर प्रशासन ने जानवरों को राहत पहुंचाते हुए खास इंतजाम किए हुए हैं ताकि भीषण गर्मी में भी वन्य जीव सुरक्षित और स्वस्थ रह सके। चिड़ियाघरों में जानवरों के बाड़ों के आसपास स्प्रिंकलर और फॉगिंग सिस्टम लगाए गए हैं जिससे वातावरण में ठंडक बनी रहे। कई जगहों पर कूलर और बड़े पंखों का भी इंतजाम किया गया है। वहीं जानवरों को समय समय पर ठंडे पानी से नहलाया जाता है ताकि उन्हें गर्मी से राहत मिल सके। इसके अलावा जानवरों के खान पान में भी बदलाव किया गया है, उन्हें पानी से भरपूर फल और ठंडी तासीर वाला भोजन दिया जाता है जिसमें तरबूज, खरबूज, खीरा और जूस शामिल है। चिड़ियाघर प्रशासन का कहना है कि गर्मी के इस मौसम में डॉक्टरों और कर्मचारियों की टीम लगातार जानवरों की सेहत पर नजर बनाए हुए है, किसी भी तरह की परेशानी होने पर तुरंत इलाज की व्यवस्था भी की गई है। इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार
12: धाड़। A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
13: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry, TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
14: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive Soul Groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
15: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
16: खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
17: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
18: और दुर्भाग्य कहता है
17: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
16: अविश्वास में विश्वास बसता है,
17: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
19: गुड न्यूज टुडे।
17: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
19: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
17: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
1: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive Soul Groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
2: The wide world of sports comes alive on TuneIn with top stations, game-changing podcasts, and even live play-by-play. It's your playbook for every league. MLB.
3: Gone! Home run!
2: NHL. College basketball.
4: He shoots it immediately.
5: He makes it in.
2: Tennis. Golf. And even top motorsports like NASCAR.
6: One lap to go.
2: And IndyCar. No matter what gets your heart racing and fuels your fandom, hear it here on TuneIn.
7: वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें. Good news today. अच्छी खबर, सच्ची खबर.
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
11: और दुर्भाग्य कहता है
12: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
2: गुड न्यूज टुडे.
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.IN।
2: देवभूमि उत्तराखंड में धूमधाम से जारी चार धाम यात्रा, बद्रीनाथ में 4.5 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए, केदारनाथ धाम पहुंचे करीब 7.25 लाख श्रद्धालु। जम्मू के कटरा में गर्मी पर भारी दिखी आस्था, बढ़ती गर्मी में भी वैष्णो देवी मंदिर में भक्तों का मेला, जय माता दी के जयकारों से गूंजा दरबार। रोम में भारत इटली की द्विपक्षीय वार्ता, सोशल मीडिया पर जमकर देखा जा रहा प्रधानमंत्री मोदी का मेलोनी को टॉफी वाला गिफ्ट का वीडियो, कुछ ही घंटों में 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
2: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाई और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, तो कभी पुरानी तस्वीरों को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है, और लोग बिना सोचे समझे, बिना परखे इन्हें सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब सिर्फ अखबार के पन्नों या टीवी की स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहां हर किसी के हाथ में कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकेंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोस दी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। नतीजा ये होता है कि लोग बिना सोचे, बिना समझे, बिना परखे ने सच मानकर शेयर कर देते हैं, और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं, जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल, और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। तो फैक्ट चेक में सबसे पहले बात सोशल मीडिया पर छाए उस वीडियो की, जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में बुलडोजर की कार्रवाई के बाद महिला रोने लगी। क्या है इस वायरल वीडियो की सच्चाई, आगे बताएंगे आपको। हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी है, जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि मंच पर डांस करती ये महिला टीएमसी की सांसद सरणी घोष है। क्या है इस वीडियो की सच्चाई, करेंगे पड़ताल। शुरुआत करते फैक्ट चेक की।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला।
2: फिलहाल में पश्चिम बंगाल से जोड़ते हुए सोशल मीडिया पर कई तरह की वीडियोस, तस्वीरें, पोस्ट वायरल हो रहे हैं जो हमारी पड़ताल में गलत साबित हुए हैं। अब इसी कड़ी में एक और वीडियो वायरल हुआ है, जिसे बंगाल में बुलडोजर कार्रवाई का बताकर शेयर किया जा रहा है। वीडियो में काफी भीड़ नजर आ रही है, इस भीड़ में बुर्का पहनी एक महिला रोती हुई नजर आ रही है। यूजर्स दावा यह कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में बुलडोजर की कार्रवाई के बाद ये महिला रो पड़ी। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती हमारी रिपोर्ट।
3: कोलकाता में इलीगल बिल्डिंग टूटना चालू हो गया, ये देखो, बहुत बोल रहे थे ना टीएमसी जीतने के बाद, अब बताओ कौन किस, कौन घर से बाहर जा रहा, कौन घर के अंदर है।
4: पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद कई वीडियो बुलडोजर कार्रवाई का बताकर शेयर किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल है जहां महिलाओं की भीड़ देखी जा सकती है। इसी भीड़ में बुर्का पहनी एक महिला रोती हुई नजर आ रही है। यूजर्स दावा कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में बुलडोजर की कार्रवाई के बाद यह महिला रो रही है। इस वीडियो को शेयर करते हुए एक यूजर ने लिखा कि बंगाल में बुलडोजर एक्शन शुरू, ये सब अल्लाह की मर्जी से हो रहा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए एक और यूजर ने लिखा, कोलकाता में अवैध निर्माण पर सरकार बनते ही ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया। ऐसे ही एक एक्शन के शिकार कुनबे की तस्वीर आपको देखकर शायद लगे कि उम्र के उतार पर मौजूद एक बूढ़ी खातून का घर तोड़ा गया है, बेचारी सर पकड़ कर रो रही है। तो थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं, ये वही खातून है जिनका एक वीडियो वायरल था जिसमें हिंदू औरतों को धमकाई थी। वीडियो का
3: कोलकाता में इलीगल बिल्डिंग टूटना चालू हो गया, ये देखो, बहुत बोल रहे थे ना टीएमसी जीतने के बाद।
2: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, और वीडियो में मोहल्ले की एक सड़क पर लोगों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है, और इसी भीड़ में शामिल एक महिला को रोते हुए देखा जा सकता है। वीडियो को शेयर करते हुए कुछ यूजर्स ये दावा कर रहे हैं कि वीडियो पश्चिम बंगाल का है, जहां पर बुलडोजर का एक्शन देखने को मिला और सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की कि क्या वाकई ये हाल फिलहाल में पश्चिम बंगाल का वीडियो है या नहीं, क्योंकि इसको उसी से जोड़कर देखा जा रहा है। इस तरह के तमाम वीडियोज और फोटोज लगातार शेयर भी किए जा रहे हैं, तो फैक्ट चेक टीम ने इन सभी का को चेक किया। हमारी पड़ताल में ये दावे गलत साबित हुए थे। अब इसी कड़ी में ये वीडियो वायरल हुआ। फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के फ्रेम को गौर से देखा। पश्चिम बंगाल में बुलडोजर कार्रवाई का ये वीडियो बताया जा रहा है, लेकिन पूरे वीडियो में कहीं भी बुलडोजर नजर नहीं आता और वीडियो में जो गली नजर आ रही है काफी संकरी नजर आ रही है। ऊपर तारों का जाल भी देखने को मिल रहा है। इससे यह भी इशारा मिलता है कि इतनी संकरी गली में बुलडोजर को घुसने में जाहिर सी बात है कि काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा होगा, तो ऐसे में हमें दावे पर शक हुआ। इसके अलावा वीडियो में जो महिला सर पकड़े बाहर निकलते हुए नजर आ रही है, ऐसा लग रहा है कि उसके सर में चोट लगी है जिसके कारण वो रोने लगी। एक महिला उसे सहारा देकर कहीं बिठाने जा रही है। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट भी नहीं मिली जिससे कि वायरल दावे की पुष्टि हो सके, क्योंकि वाकई अगर ऐसा हुआ होता तो ये सुर्खियां बनती, खबर कहीं ना कहीं किसी मीडिया आउटलेट में जरूर होती है। लिहाजा हमें इसने सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल हमारा यही कि अगर दावा सच्चा है तो फिर वायरल हो रहा वीडियो पश्चिम बंगाल के किस हिस्से का है। दूसरा सवाल ये कि कहीं किसी और घटना से संबंधित वीडियो को जानबूझकर पश्चिम बंगाल के साथ जोड़ के अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही। अब देखिए सच और झूठ क्या है।
4: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो के तहकीकात में जुटी। सर्च करने पर हमें यह वीडियो एक फेसबुक यूजर के अकाउंट पर 29 अप्रैल 2026 को पोस्ट मिला। इस पोस्ट में जानकारी दी गई है कि बाबरपुर गैस एजेंसी पर एक आंटी सिलेंडर के लिए खड़ी थी, तभी किसी ने सिर पर बोतल फेंक कर मार दिया। वहीं हमने आगे की जांच में पाया कि यूजर ने वीडियो वायरल होने के बाद इसकी सच्चाई बताते हुए एक और पोस्ट किया है। उन्होंने अपने पोस्ट में बताया है कि उनके वीडियो का गलत इस्तेमाल कर उस पर वॉइस ओवर डालकर फैलाया जा रहा है। उन्होंने अपने पोस्ट में स्पष्ट किया है कि वायरल वीडियो कोलकाता का नहीं बल्कि ये दिल्ली का है। साफ है सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो पश्चिम बंगाल का नहीं है, यह वीडियो दिल्ली के बाबरपुर गैस एजेंसी का है। दूसरी बात की है वीडियो पश्चिम बंगाल चुनाव नतीजों से पहले का है, जिसे एक फेसबुक यूजर ने 29 अप्रैल को पोस्ट किया था। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
2: बंगाल चुनाव के दौरान टीएमसी सांसद सयनी घोष काफी चर्चा में रही हैं और अलग अलग मंचों पर गाना गाते हुए कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुए हैं। अब सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर मंच पर डांस करती एक महिला का वीडियो तेजी से वायरल किया जा रहा है और इसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि यह महिला तृणमूल कांग्रेस की सांसद सयनी घोष है। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती ये रिपोर्ट।
5: बंगाल चुनाव में एक नाम खूब सुनाई दिया, मीडिया और सोशल मीडिया में उसके नाम की खूब चर्चा हुई। तृणमूल कांग्रेस की 33 वर्षीय सांसद सयनी घोष ने खूब सुर्खियां बटोरी। हालांकि सयनी की पार्टी टीएमसी को बंगाल में बीजेपी के हाथों करारी मात जरूर मिली, लेकिन सयनी घोष बंगाल की राजनीति में एक बड़े चेहरे के रूप में सामने आई। अब सयनी घोष से जोड़ते ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक मंच पर किसी महिला को नाचते हुए देखा जा रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि लाल बॉर्डर वाली सफेद साड़ी में डांस करती है महिला सयनी घोष है। कुछ तो यह भी कह रहे हैं कि एक सांसद का इस तरह से नाचना शोभा नहीं देता है। सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए एक यूजर ने लिखा कि एक सांसद को ऐसी हरकत करना ठीक नहीं, हम विरोध और निंदा करते हैं। लोग बोल रहे हैं ये सांसद बनने के लिए सब कुछ किया, तो हम टीएमसी की सयनी घोष को बोलते कृपया सांसद की गरिमा को ना गिरने दे, अगर यही करना था तो नौटंकी में जाती, हम देशहित और राष्ट्रहित की बात करेंगे।
2: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में किसी मंच पर एक महिला को डांस करते हुए देखा जा सकता है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है और यूजर्स इस वीडियो के जरिए ये दावा कर रहे हैं कि यह वीडियो तृणमूल कांग्रेस की सांसद सयनी घोष का है। तो ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की जांच शुरू की। फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा और इस दौरान ये नजर आया कि पीछे से शूट किए गए इस हिस्से को वायरल किया गया है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में सिर्फ मंच पर नाचती हुई महिला का एक हिस्सा ही नजर आ रहा है। जब हमने जूम करके देखा तो ये इशारा मिलता है कि मंच पर जो महिला डांस कर रही है वो सायोनी घोष नहीं है। हाँ, ये बात सच है कि बंगाल चुनाव के दौरान सायोनी घोष काफी चर्चा में जरूर रही थी, अलग अलग मंचों पर गाना गाते हुए भी हमने उन्हें देखा था और ये वीडियोस भी वायरल हुए थे, लेकिन इस दौरान कहीं पर भी उन्होंने डांस नहीं किया, यानी ऐसा कोई वीडियो सामने नहीं आया। हमने सायोनी घोष के सोशल मीडिया अकाउंट को भी खंगाला, लेकिन वहां पर भी हमें इस दावे की पुष्टि करती कोई भी पोस्ट नजर नहीं आई। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट भी नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें पहला सवाल ये कि मंच पर डांस कर रही ये महिला कौन थी। हमारा दूसरा सवाल ये कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए भ्रम फैलाने की कोशिश तो नहीं हो रही है। अब देखिए सच और झूठ क्या है।
5: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल हो रहे वीडियो की जांच में जुटी। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे इंटरनेट पर खंगाला। सर्च के दौरान हमें ये वीडियो एक यूट्यूब चैनल पर मिला। यहाँ इसे 30 अप्रैल को अपलोड किया गया था। इस चैनल पर इससे मिलते जुलते और भी कई वीडियो मौजूद है। यहाँ दी गई जानकारी के मुताबिक डांस कर रही यह महिला मेघा क्वीन है। इस जानकारी के साथ सर्च करने पर हमें मेघा क्वीन का फेसबुक अकाउंट मिला। यहाँ भी इस इवेंट के कई वीडियोस मौजूद है। प्रोफाइल के मुताबिक मेघा बांग्लादेश की रहने वाली हैं और एक डांसर हैं। एक यूजर ने मन से ही रिकॉर्ड करके इस प्रोग्राम के कई वीडियो अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट किए हैं। इस जानकारी के साथ सर्च करने पर हमें मेघा क्वीन का फेसबुक अकाउंट मिला। कुछ वीडियोस में मंच पर मौजूद बैनर देखे जा सकते हैं। बैनर पर बांग्लादेशी प्रधानमंत्री तारिक रहमान की तस्वीर नजर आती है। बैनर पर बांग्ला में लिखे टेक्स्ट के मुताबिक ये बैसाखी मेला कार्यक्रम का वीडियो है। बांग्लादेश में मेला हर साल बंगाली कैलेंडर के पहले दिन यानी 14 अप्रैल को आयोजित किया जाता है। साफ वीडियो में नजर आ रही महिला टीएमसी नेता सायोनी घोष नहीं बल्कि बांग्लादेश की रहने वाली एक डांसर है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
2: फैक्ट चेक में फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल वर्ल्ड में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
6: Whatever you're in the mood for, tune in has the music to match. From today's hits,
7: somebody save me,
6: to timeless favorites,
7: and life is like a song,
6: and new discoveries.
7: So much more than a history. Wake up!
6: It's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
8: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
9: तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर, खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है, खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
2: वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का, जहां हम आपको दिखाएंगे तमाम ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं, इन्हें खूब पसंद किया जा रहा है।
12: नमस्कार, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
13: कृष्णा जी की पेंटिंग थी यहाँ पे, गणेशा,
12: ये प्यारी सी घंटी,
14: चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर, हाड़ कपा देने वाली ठंड और तापमान -40 डिग्री। लेकिन इस कड़ाके की सर्दी के बीच अगर आपको हरे कृष्णा और शिव आरती की गूंज सुनाई दे तो शायद आपको अपने कानों पर यकीन ना हो, लेकिन यह हकीकत है। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसे देखकर हर कोई हैरान है। यह नज़ारा भारत के किसी बर्फीले पहाड़ी इलाके का नहीं बल्कि रूस के सुदूर और बेहद ठंडे क्षेत्र साइबेरिया का है। इंटरनेट पर इस जगह को रूस का हिंदू गांव और मिनी इंडिया कहा जा रहा है। इस अनोखे गांव का नाम ओकुनेवो है जो रूस के ओमस्क क्षेत्र में स्थित है। यह इलाका पश्चिमी साइबेरिया के अंतर्गत आता है और अपनी भीषण ठंड के लिए जाना जाता है। वीडियो में देखा जा सकता है कि चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, लेकिन गड़गड़ाती ठंड में भी स्थानीय और सैलानी पूरी श्रद्धा के साथ भक्ति में लीन है। इस वीडियो क्लिप को देखने के बाद हर भारतीय यूजर गर्व महसूस कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि साइबेरिया के इस छोटे से गांव में एक कृष्ण मंदिर है जो इस्कॉन से जुड़ा है। इसके साथ ही यहां भगवान शिव की भी पूजा की जाती है। -40 डिग्री टेम्परेचर के बावजूद लोग यहां सुबह शाम इकट्ठा होते हैं और पूजा करते हैं।
12: ग्राम पुजारी इस सेवा, ओम नमः शिवाय।
14: एक छोटे बच्चे का वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें वो अपने टीचर से शिकायत करते हुए नजर आ रहा है।
15: सर, एक बात बताओ, जब हम बाल कटवा के नहाएंगे तो मम्मा मारता हूँ। अब जब लड़की इनके बाल इतने बड़े होते हैं तो तुम ना मारता हूँ।
14: वीडियो में नजर आता है कि बच्चा अपनी टीचर से शिकायत करता है। वो बोलता है, सर एक बात बताओ, जब हम बाल कटवा कर नहीं आते हैं तो आप हमें मारते हो, और जब लड़कियों के बाल इतने बड़े हो गए हैं तो नहीं मारते हो। अब यह शिकायत सुनकर टीचर कहता है, वो तो लड़कियां हैं, मगर तुरंत बाद बच्चा बोलता है कि लड़की से हम क्या कम हैं। अब यह सुनते ही टीचर भी हंसने लगता है।
15: सर, एक बात बताओ, जब हम बाल कटवा के नहाएंगे तो तुम हमें मारते हो। अब जब लड़की इनके बाल इतने बड़े होते हैं तो तुम ना मारते
16: हो। ये तो लड़की है,
15: लड़की से तो हम कम आए।
14: यूजर्स इस वीडियो पर जमकर अपना प्यार लुटा रहे हैं, बच्चे के सवाल जवाब पर जमकर कमेंट्स कर रहे हैं।
15: अब जब लड़की इनके बाल इतने बड़े होते हैं तो तुम ना मारो।
16: ये तो लड़की है,
15: लड़की से तो हम कम आए।
14: सोशल मीडिया पर यह दिल छूने वाला वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक माँ की अथक मेहनत और ममता को देखकर हर कोई हैरान और भावुक हो रहा है। वीडियो में एक महिला अपने छोटे बच्चे को पीठ पर लपेटे हुए, सिर पर सब्जियों की भारी भारी टोकरियां संतुलित करते हुए ट्रक पर सामान लाती दिख रही है। बिना थके बिना रुके वह लगातार काम करती जा रही है। बताया जा रहा है कि महिला रोजाना बाजार आती है, सुबह से शाम तक वह न सिर्फ अपना काम संभालती है बल्कि अपने छोटे बच्चे की देखभाल भी करती है। बच्चा पीठ पर बंधा रहता है और माँ का काम चलता रहता है। वीडियो में दिख रहा है कि भारी टोकरियां सिर पर रखकर वह ट्रक की ऊंचाई तक चढ़ रही है। उसके चेहरे पर थकान तो है लेकिन आत्मविश्वास और ममता भी साफ दिख रही है। सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसी वीडियो सामने आते हैं जो दिल को छू जाते हैं। हाल ही में देश के जाने माने बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा ने अपने एक्स हैंडल से एक ऐसा ही बेहद प्यारा वीडियो शेयर किया है जिसने इंटरनेट की पब्लिक का दिल जीत लिया है। वायरल क्लिप में एक दादा पोते की जोड़ी पारंपरिक लोक नृत्य पर धड़कती नजर आ रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि पारंपरिक सफेद केडीयू और धोती पहने एक बुजुर्ग व्यक्ति पूरे जोश के साथ थिरक रहे हैं। उनके साथ उनका छोटा पोता भी खड़ा है, जो कदम से कदम मिलाकर अपने दादाजी को कड़ी टक्कर दे रहा है। दोनों की जुगलबंदी और एनर्जी देखने लायक है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र की एक पारंपरिक और सांस्कृतिक लोक कला डायरा का है।

सोशल मीडिया पर इन दिनों इस बच्ची के डांस का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। आलम यह है कि वीडियो को महज कुछ ही दिनों में लाखों व्यूज मिल चुके हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि पीले कलर के सूट और सलवार में बच्ची दिल खोलकर डांस कर रही है। बच्ची के शानदार परफॉर्मेंस पर टीचर के एक्सप्रेशन भी देखने लायक रहे। वो खुद भी बच्ची के धांसू स्टेप और एक्सप्रेशन देख दंग नजर आए। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया है। आमतौर पर जिम में भारी वजन उठाते हुए युवा ही नजर आते हैं, लेकिन इस बार एक दादी ने ऐसा कारनामा कर दिखाया कि लोगों के होश उड़ गए। करीब 60 किलो वजन की इस बुजुर्ग महिला ने जिम में 110 किलो वजन उठाकर सभी को चौंका दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि दादी पूरी तैयारी के साथ जिम में मौजूद हैं और बिना किसी झिझक के भारी वजन उठाने के लिए तैयार हो जाती हैं। आसपास खड़े लोग भी पहले तो उन्हें देखकर थोड़ा हैरान होते हैं, लेकिन जैसे ही वे आत्मविश्वास के साथ 110 किलो वजन उठाती है, वहां मौजूद सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। उनकी ताकत, संतुलन और फोकस देखकर यह साफ समझ आता है कि उम्र सिर्फ एक संख्या है, अगर इरादा मजबूत हो तो कुछ भी संभव है।

0: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो खूब देखा जा रहा है। वीडियो में नजर आता है कि एक डिलीवरी बॉय कुछ सामान देने के लिए एक घर के सामने खड़ा है। कुछ देर बाद दरवाजा खुलता है और वो सामान उन्हें पकड़ा देता है। इसके बाद वो वापस जा रहा होता है, तभी उसे एक जगह पर बैट रखा हुआ नजर आता है। अब उस बैट को देखते ही उसके अंदर का क्रिकेटर जाग जाता है और वो बैट पकड़कर कुछ शॉट प्रैक्टिस करता दिखता है। अब उसके इसी काम के कारण वीडियो वायरल हो रहा है।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों
2: कौन सा अहंकार करने पे जीवन में अपयश मिलने लगता है, कौन सा अहंकार करने से धन की बड़ी हानि हो जाती है और कौन सा अहंकार करने से करियर में दिक्कतें आ जाती हैं, अहंकार का आपके जीवन पर कैसा पड़ता है प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn. Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan this on this station. Up. Ready to find your flow?
4: It's your boy,
3: just
4: Jay-Z.
3: Search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
5: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
6: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. TuneIn has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
1: वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। Good news today. अच्छी खबर, सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
2: अहंकार कर

0: खबर में किंतु की गुंजाइश न रह जाए और बुरी खबर से परंतु सच्चाई ढूंढकर लाए, ऐसी अच्छी और सच्ची खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं नवजोत सिंधवा। एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर हम आपको आसान शब्दों में पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे, यानी बड़ी खबर का सच्चा और अच्छा विश्लेषण। धधकती गर्मी से बचने का फुल प्रूफ प्लान, GNT पर लू और गर्मी से बचने के घरेलू उपाय क्या है जानिए आज। प्रतिभा के दम पर अमेरिका तक उड़ान, भारत की बेटी को 3 करोड़ की स्कॉलरशिप और नीट की कठिन डगर पर कोटा का भरोसा, कोचिंग संस्थानों ने नीट छात्रों को फ्री कोर्सेस का ऑफर किया। शुरुआत हेडलाइंस के साथ।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
0: रोम में प्रधानमंत्री मोदी और मेलोनी ने लगाया पौधा, मेलोनी को दिया गया भारत आने का न्योता, सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा है। पीएम मोदी और मेलोनी को टॉफी वाले गिफ्ट का वीडियो, अब तक 12 करोड़ पार यूजर। अयोध्या राम मंदिर में त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू, AI कैमरों से हो रही निगरानी, नई सुरक्षा दीवार और वॉच टावर का भी निर्माण। चित्तौड़गढ़ में के सावलिया सेठ के भक्तों की अनोखी भेंट, भगवान को अर्पित किया 197 ग्राम चांदी से बना हार, सफल बाईपास ऑपरेशन के लिए मांगी थी मन्नत। देवभूमि उत्तराखंड में धूमधाम से जारी 4 धाम यात्रा, बद्रीनाथ धाम में 4.5 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए, केदारनाथ धाम में पहुंचे करीब 7.25 लाख श्रद्धालु। मुंबई में समुद्री प्रदूषण कम करने की दिशा में BMC की सराहनीय पहल, गेटवे ऑफ इंडिया और बडवार पार्क के पास मानव रहित इलेक्ट्रिक बोट की तैनाती, हर दिन 80 से 90 किलो कचरे का हो रहा है सफाया। आइए शुरुआत करते हैं अच्छी और सच्ची खबरों की बात, सबसे पहले मौसम की ही करेंगे क्योंकि इन दिनों देश के ज्यादातर हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ रही है, हर किसी को मॉनसून का बेसब्री से इंतजार है। भले ही इस साल दक्षिण पश्चिम मॉनसून वक्त से पहले केरलम पहुंच रहा है, लेकिन उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में मॉनसून के आने में अभी काफी वक्त है। ऐसे में भीषण गर्मी के इन दिनों में लोग अपना ख्याल कैसे रखें और डॉक्टर्स की कौन कौन सी सलाह है जिस पर अमल करके ही स्ट्रोक से बचा जा सकता है, इसी पर हमारी रिपोर्ट देखिए।
3: हीट वेव तो काफी ज्यादा है,
4: बहुत भयानक गर्मी है भैया।
5: ऐसी गर्मी में बिना छाते के तो चल नहीं सकते। साथ में पानी की बोतल के छाते वगैरह लेके चलना पड़ रहा है।
6: दिन में यहाँ पे बहुत गर्मी हो जाती है,
7: बहुत ज्यादा भैया गर्मी यहाँ पर है, कम से कम 45 डिग्री सेल्सियस चल रहा है।
8: मई का चौथा हफ्ता और इस चौथे हफ्ते में देश के कई राज्य इन दिनों भीषण गर्मी की जद में हैं। उत्तर भारत हो या पश्चिम भारत या फिर पूर्वी भारत, गर्मी नए रिकॉर्ड बना रही है। 8 राज्यों की इन तस्वीरों को देखकर मौसम के मौजूदा मिजाज का अंदाजा लगाया जा सकता है। ज्यादातर जगहों पर पारा 40 पार कर चुका है और कुछ जगहों पर तो तापमान 45 डिग्री को भी पार कर गया है। हालत यह है कि इस भीषण गर्मी में लोगों का घरों से बाहर निकलना दूभर हो गया है। जैसे जैसे दिन चढ़ता है आसमान में सूरज की तपिश बढ़ती जाती है। नौबत यह है कि इन दिनों दिन ही नहीं रातें भी तप रही हैं। ऐसे में इस भीषण गर्मी से बचने के लिए लोग गन्ने का जूस, बेल का जूस, नारियल पानी, लस्सी, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक और आम पन्ना जैसे ठंडे पेय पदार्थों का सेवन करके खुद को हाइड्रेट रख रहे हैं।
9: उत्तर प्रदेश में गर्मी का कहर प्रचंड है। लखनऊ रायबरेली का तापमान 43 तो बांदा का पार कर चुका है 45। हालत ये है कि दिन में लू के थपेड़े और साथ में गर्मी इतनी कि अगर आप पानी ना पिए तो बेहोश हो जाएं।
10: हीट से और धूप से बचने के लिए हाइड्रेशन मेंटेन रहना बहुत ही जरूरी है, इसलिए नींबू पानी, ठंडा पानी कंटिन्यू पीते रहिए। खाना खाए या ना खाए लेकिन हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए लिक्विड डाइट बहुत इम्पोर्टेंट है।

0: दिन ब दिन बढ़ती गर्मी को देखते हुए सरकार और प्रशासन की ओर से भी तरह तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं। ऐसा ही एक इंतजाम जयपुर के एक चौराहे पर देखने को मिला। वहां वाटर स्प्रिंकलर लगातार पानी का छिड़काव करते नजर आए। इस दौरान वहां से गुजरते राहगीर गर्मी से बचने के लिए पानी की फुहारों से भीगते दिखाई दिए। इसी तरह राजस्थान के पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के कलेक्टर कार्यालय परिसर में सोलर एनर्जी से चलने वाली खास इनोवेटिव बेंच लगाई गई है, जो लोगों को गर्मी में ठंडक का एहसास करा रही है।
1: जो लोग बाहर निकले भी हैं, वो खुद को गर्मी से बचाने की जुगाड़ करते हुए यहाँ पे साफ तौर पे देखे जा सकते हैं। जो लोग बाहर निकल रहे हैं वो या तो ठंडा पानी पी रहे हैं, शिकंजी पी रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं। कोशिश बस यही है कि इस तेज गर्मी में खुद को बचा सके। तो भोपाल में भी तापमान जो है वो करीब 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। इस तरीके से गर्मी से अपने आप को बचा रहे हैं।
2: गर्मी इन द सेंस देख ही रहे, मेरे हाथ में आइसक्रीम है, क्योंकि गर्मी हाथ में आप क्या ही कर सकते हैं, आइसक्रीम खा सकते हैं या फिर खुद को ठंडे चीज से ही बचा सकते हैं आप।
3: पब्लिक प्लेसेस पर इस प्रकार के एक इनोवेटिव बेंच बनाई गई है, जिस बेंच पर ऊपर से फैन लगा होता है और मिस्ट स्प्रे होता है, और इससे जो आदमी उसमें बैठता है उसको एक अच्छा मतलब शीतल एहसास होता है। तो अभी आज उसको पायलट के रूप में कलेक्टेड परिसर में उसको स्थापना की गई है। ये अगर ये सफल प्रयोग रहेगा तो इसको हम लोग अन्य जो पब्लिक प्लेसेस है वहां भी इस तरह का रेप्लिकेट करने का प्रयास करेंगे।
0: भले ही इस साल मानसून वक्त से 4-5 दिन पहले केरलम पहुंचने वाला है, लेकिन उत्तर, मध्य, पूर्व और पश्चिम भारत में मानसून के आने में अभी काफी वक्त है। मौसम विभाग का भी साफ कहना है कि अभी इस प्रचंड गर्मी से लोगों को राहत मिलने के कोई आसार नहीं है।
4: अगर हम स्टार्ट करें हिमालय से, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में भी आने वाले 2-3 दिन हीट वेव कंडीशंस बना रहेगा। उसके बाद वहाँ एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से थोड़ा कमी आ जाएगी, तो हीट वेव नहीं है। लेकिन अगर प्लेन्स की बात करें, स्टार्टिंग फ्रॉम पंजाब, हरियाणा, इवन NCR, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और सेंट्रल इंडिया, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन सारी जगहों में हीट वेव टू सीवियर हीट वेव कंडीशंस आने वाले ऑलमोस्ट 7 दिन बने रहेगी। और स्पेसिफिकली अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में हमने यहाँ रेड अलर्ट दिया हुआ है, वो 3 दिन के लिए हमारा रेड अलर्ट है। वहाँ इवन कुछ जगहों में जो टेम्परेचर्स हैं वो 47 से ज़्यादा भी क्रॉस कर चुका है।
0: मौसम विभाग की ओर से अगले 7 दिनों के लिए जो अलर्ट जारी किया गया है उसे देखते हुए लोगों को अपना खास ख्याल रखने की सलाह दी जा रही है। डॉक्टरों की सलाह है इन दिनों खूब पानी पिए, खीरा, ककड़ी, तरबूज जैसे पानी की मात्रा वाले फल खाएं, हल्के कपड़े पहने, दोपहर के वक्त घर से बाहर ना निकले, लेकिन अगर निकलना जरूरी हो तो छाता, टोपी या गमछे का इस्तेमाल करें। हीट स्ट्रोक का शिकार होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।
5: जो भी वनरेबल पॉपुलेशन है, जो बच्चे हैं, बड़े हैं, जिनको कोई डिजीज़ है, जो किसी भी बीमारी से सफ़र कर रहे हैं या जिनकी उम्र ज़्यादा है, उनको गर्मी तेज हो तो उसमें नहीं निकलना चाहिए। यदि तेज़ गर्मी में निकलना भी पड़े तो आप पूरी वहाँ के कपड़े पहन के निकलें, छाता लेके निकलें, जिससे स्किन पर टाइम जो है कम से कम धूप पड़े। पानी खूब पिए, हाइड्रेशन के लिए प्लेन वाटर, नींबू पानी, सॉल्टेड वाटर, नारियल पानी जो भी पी सकते हैं पिए, और जब पीक गर्मी हो उसमें बाहर निकलना, एक्सर्शन अवॉइड करें।
6: जितना फ्रूट अब जूसेस लोगे, हल्का फ्रूट लोगे जिसमें अच्छा पानी की मात्रा होती है, जैसे तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, ऐसे टाइप के लोगे, संतरा हो गया, इन सब चीज़ों को लोगे जिसमें कि पानी की मात्रा ज़्यादा है, तो आप में ये डिहाइड्रेशन वाला एलिमेंट कम हो जाता है। फ्राइड फूड कम, स्पाइसी फूड कम, हल्का खाना खाइए, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। तो अगर आप छोटे छोटे प्रिकॉशंस लें, हीट से अपने आप को बच सकें, एंड और एक चीज़ है, एक्लिमेटाइज करें। जैसे हम ऑफिस में काम करें और मेरे को बाहर जाना है, और हो सकता है कि मेरे को बाइक में जाना है, तो आप एक काम के लिए अपने AC, आजकल तो मोस्ट ऑफ द ऑफिस जो है उसमें एयर कंडीशन है, तो आप वहां से निकले, एक शेडेड एरिया में 5-10 मिनट खड़े रहिए, जिससे कि आपकी बॉडी थोड़ी और एक्लिमेटाइज हो जाए, जिसको हम एक्लिमेटाइजेशन बोलते हैं हीट से, एंड उसके बाद जाके आप अपने बाइक में जाइए या कुछ जाइए, और अपने आप ऑफिस से उसके पहले हाइड्रेट कर लीजिए।
0: कुल मिलाकर गर्मी के इन दिनों में हर किसी के लिए सावधानी बहुत जरूरी है, खासकर बुजुर्गों, बच्चों और बीमार व्यक्तियों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दिल्ली से अनमोल बाली, जयपुर से रिदम जैन, भोपाल से रवीश पाल सिंह और रायबरेली से शमश श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
7: अगली अच्छी खबर है यूपी के गाजियाबाद से, जहां की रहने वाली छात्रा जानवी गोयल ने अमेरिका की प्रतिष्ठित डेनिसन यूनिवर्सिटी में प्रवेश हासिल करके न सिर्फ अपने माता पिता का नाम रोशन किया बल्कि शहर और प्रदेश का नाम भी रोशन किया है। और सबसे बड़ी और खास बात यह है कि उन्हें इकोनॉमिक्स एंड ग्लोबल कॉमर्स के डबल मेजर प्रोग्राम के लिए करीब 3 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप मिली है।

0: गाजियाबाद की जाह्नवी गोयल ने 10वीं के बोर्ड एग्जाम में 99% अंक हासिल किए। इसके बाद कड़ी मेहनत से 12वीं में 96% अंक लेकर आईं। और फिर जाह्नवी ने न सिर्फ अमेरिका की प्रतिष्ठित डेनिसन यूनिवर्सिटी में प्रवेश हासिल किया, बल्कि इन्हें इकोनॉमिक्स एंड ग्लोबल कॉमर्स में डबल मेजर कोर्स के लिए करीब 3 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप भी मिली है। महज 17 साल की जाह्नवी हैं और अपनी मेहनत प्रतिभा के दम पर ये मुकाम उन्होंने हासिल किया है, जिस पर आज घरवाले ही नहीं बल्कि पूरा शहर गर्व महसूस कर रहा है।
1: क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होनी चाहिए, इसका कुछ भी क्राइटेरिया होता है?
2: क्राइटेरिया तो नहीं, पर हाँ वो देखते हैं कि लाइक आपने स्टडीज को कैसे मैनेज किया। लाइक 90% से ऊपर मार्क्स को अच्छा माना जाता है वहाँ पे, और एक्स्ट्रा करिकुलर में जो भी आप अपनी तरफ से करें बेसिकली कंसिस्टेंसी देखते हैं कि वो आपने लाइक शुरू से लाइक कितने साल से, ये नहीं कि आपने 1-2 महीने करा और उसे छोड़ दिया। आपको उसे कंसिस्टेंटली करना पड़ता है 1-2 साल तक, तभी उसे उसका कोई मायना है उसमें। 9th में मेरे 95% थे और 10th में 99% और 11th में मेरे अराउंड 93% थे और 12th में मेरे 96.2% रहे।
1: तो इस परसेंटेज को मेंटेन करने के लिए कितना डेडिकेशन आपको देना पड़ा, कितने घंटे की पढ़ाई होती थी?
2: जी, मेरे दिन में 5 से 6 घंटे पढ़ाई रहती थी, और लाइक ये था कि मैथ्स जैसे सब्जेक्ट जो जिनमें कंसिस्टेंसी की बहुत ज़रूरत होती है उन्हें मैं रोज़ पढ़ती थी बाकी सब्जेक्ट्स के साथ।
0: गुड न्यूज टुडे से बातचीत में जाह्नवी ने बताया कि विदेश में पढ़ाई करना उनका सपना रहा, जिसके लिए उन्होंने काफी पहले से तैयारी शुरू कर दी थी। पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने कम्युनिकेशन स्किल्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पर भी ध्यान दिया। साथ ही जाह्नवी ने बताया कि उन्होंने अमेरिका की 20 नामी यूनिवर्सिटीज में आवेदन किया था, जिनमें 19 यूनिवर्सिटीज ने उन्हें स्कॉलरशिप के साथ एडमिशन का ऑफर किया, लेकिन उन्हें डेनिसन यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप और कोर्स प्रोफाइल बेहतर लगी, इसलिए उन्होंने वहीं एडमिशन लेने का फैसला लिया।
1: जाह्नवी का बचपन का सपना था कि वो यूएस जाकर अपनी पढ़ाई करेगी। अब इसके लिए तैयारी आप ये नहीं कह सकते कि 6 महीने पहले शुरू हुई, 1 साल पहले शुरू हुई, ये तैयारी तो असल में बचपन से ही शुरू हो गई थी। जाह्नवी मेरे साथ में है। जाह्नवी, बहुत बधाई आपको, और आज सब प्राउड हैं कि आपने इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल किया। हालांकि अभी बहुत आगे जाना है, लेकिन इसके लिए भी कैसी तैयारी रही? लोग पूछते हैं कि क्या करना पड़ता है, कितने घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है, क्योंकि सुनने में लगता है इम्पॉसिबल सी चीज़ है, लेकिन आपने पॉसिबल करके दिखाया है। प्रोसेस क्या रहा, कैसे तैयारी करते थे?
2: जी, जैसा आपने कहा कि लाइक काफ़ी पहले से ही तैयारी शुरू कर दी थी इसमें, क्योंकि आपके 9th से 12th तक के पूरे नंबर लगते हैं, तो 9th में ऑफ कोर्स मैंने सारी तैयारियां शुरू कर दी थी, अपने मार्क्स को इम्प्रूव करा और एक्स्ट्रा करिकुलर्स पे फोकस किया। जैसे आज के दिन में मिडिल स्कूल के बच्चों को ट्यूशन्स प्रोवाइड कराती हूँ और मैं एक प्रोफेशनल सोशल मीडिया मैनेजर भी हूँ। ऐसे ही मैंने काफ़ी एक्स्ट्रा करिकुलर्स में पार्ट लिया, मैं अपने स्कूल की स्टूडेंट काउंसिल का भी पार्ट रही हूँ। तो ये सारे फैक्टर्स को अगर हम देखें तो ये मिलके मेरे इस अचीवमेंट का पार्ट हैं। मैंने 20 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था, जिसमें मुझे 19 यूनिवर्सिटीज़ में अच्छी स्कॉलरशिप्स के साथ ऑफ़र आया। पर डेनिसन में एक वो बात थी, लाइक जब मैंने उसके बारे में रिसर्च कर रही थी, मैंने उसका कैंपस देखा तो मुझे लगा कि हाँ यही वो जगह है जहाँ पे मैं अपने नेक्स्ट 4 साल बिताना चाहूँगी।
0: जाह्नवी पढ़ाई के साथ ही कई कंपनियों के लिए सोशल मीडिया मैनेजर के तौर पर भी काम कर चुकी हैं, और समाज सेवा में रुचि रखने के कारण वो एक एनजीओ के साथ भी काम कर चुकी हैं। जाह्नवी की माँ कहती हैं कि वो चाहती थी कि बेटी कथक की पढ़ाई करे, लेकिन जाह्नवी ने हमेशा पढ़ाई को ही प्राथमिकता दी।
3: सबसे बड़ा फैक्टर उसका डेडिकेशन ही है, जो उसने पढ़ाई को कभी भी पीछे नहीं रखा। मतलब पढ़ाई उसके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होती थी हमेशा, तो चाहे कुछ भी हो जाए पर वो पढ़ाई कभी नहीं छोड़ती थी, डेली बेसिस पे उसकी पढ़ाई रहती थी। डांस भी बहुत अच्छा करती थी, तो मैंने उसको बोला कि कथक मैं प्रोफेशनल तुम्हें स्टार्ट करा देती हूँ, तो उसने बोला कि नहीं मम्मी, वो 6 साल का कोर्स है और अगर मैं 6 साल उसको करूँगी तो मेरी पढ़ाई पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा, इसलिए मैं कथक नहीं करूँगी। तो पढ़ाई उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी रही हमेशा।
0: जाह्नवी बताती हैं कि उनकी इस उपलब्धि में माता पिता और स्कूल वालों का अहम योगदान रहा है। जाह्नवी की इस कामयाबी से परिवार में खुशी का माहौल है, उनके दोस्त और शिक्षक इस उपलब्धि को लेकर उत्साहित हैं। जाह्नवी के पिता मनोज गोयल बताते हैं कि अगर स्कॉलरशिप नहीं मिलती तो उनके लिए जाह्नवी को अमेरिका भेजना नामुमकिन रहता।
4: शायद हम लोग उसको अफोर्ड ही नहीं कर पाते, 3.5 करोड़ रुपए किसी के लिए भी 3.5 करोड़ रुपए अरेंज करना एक आम इंसान के लिए इतना पॉसिबल नहीं है. सो शायद हम यूएस भेजने की सोच नहीं पाते अगर यह स्कॉलरशिप नहीं होती. स्कॉलरशिप होने से ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा कि जो इसकी पूरी ट्यूशन फ़ी है, हॉस्टल फ़ी है, एवरीथिंग इज़ कवर्ड इन दैट. और हम लोगों को सिर्फ जो करना है वो थोड़ा मील्स या फिर बुक्स के लिए वी हैव टू सपोर्ट हर एंड शी विल हैव अदर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द ऑन कैंपस जॉब आल्सो. तो जॉब कैंपस में भी वो कुछ अपने कुछ इस तरह की जॉब्स होती हैं वेयर शी कैन अर्न सम मनी फॉर हरसेल्फ. तो वो से आई थिंक वी विल बी एबल टू बैलेंस इट आउट.
0: दिलचस्प बात यह है कि जानवी का जन्म अमेरिका में हुआ था और उनके पास यूएस सिटीजनशिप भी है. जानवी अगले हफ्ते अमेरिका रवाना होंगी जबकि उनकी क्लासेस अगस्त में शुरू होंगी. जानवी की उपलब्धि अब गाजियाबाद के कई छात्रों के लिए प्रेरणा बन गई है. गाजियाबाद से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे.
5: बात करेंगे नीट यूजी की तैयारी कर रहे उन छात्रों की जिन्हें 21 जून को दोबारा री एग्जाम देना है. नीट यूजी का पेपर लीक होने के बाद एनटीए करीब एक महीने बाद दोबारा परीक्षा आयोजित करवाने की तैयारी में है जिसकी वजह से हजारों की संख्या में छात्र एक बार फिर से कोटा का रुख कर रहे हैं जिन्होंने वहां एक साल रहकर नीट परीक्षा की तैयारी की थी. दोबारा परीक्षा कराने से छात्रों और उनके परिवारों को परेशानी हो रही है. ऐसे में तनावग्रस्त छात्रों को राहत देने के लिए कोचिंग संस्थानों ने फ्री कोर्सेज का ऑफर किया है. हॉस्टल एसोसिएशन ने भी एक कदम आगे बढ़ाते हुए दिन के हिसाब से किराए की नीति अपना ली है जो नीट की कठिन डगर पर लाखों छात्रों के लिए कोटा शहर की तरफ से भरोसे की तरह ही है ताकि वो बिना किसी तनाव या फिर बाधा के मेडिकल करियर के लिए जरूरी नीट यूजी एग्जाम की तैयारियों में जुटे रहें.

0: आमतौर पर कोटा की सड़कों और गलियों में नीट यूजी की परीक्षा के बाद छात्रों की भीड़ भाड़ कम हो जाती थी। इस साल 3 मई के बाद कुछ ऐसा ही होना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वजह है नीट पेपर लीक मामला, जिसके बाद नीट यूजी परीक्षा दोबारा करवाने की घोषणा की गई और कोटा शहर फिर छात्रों से आबाद होने लगा। कोटा को एक शहर की तरह नहीं देखा जाता है, बल्कि उसकी पहचान 12वीं की परीक्षा के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता की गारंटी की तरह है। कोटा में खुद को गला काट प्रतिस्पर्धा के बाद इंजीनियरिंग या मेडिकल कोर्स में दाखिले की गारंटी के तौर पर पेश करता है। करीब 2 दशक से ज्यादा वक्त से ये शहर हर साल हजारों लाखों बच्चों का स्टडी डेस्टिनेशन बन चुका है। आम धारणा बन चुकी है कि कोटा गए बगैर इंजीनियर या डॉक्टर बनना मुमकिन नहीं है। ऐसे में जब नीट यूजी परीक्षा रद्द हुई तो यहाँ तैयारी कर चुके बच्चों ने दोबारा इस शहर का रुख किया, ताकि 21 जून को री एग्जाम के दौरान उनसे कोई चूक ना हो जाए, एक साल की कड़ी मेहनत बर्बाद होने से बच जाए। उसी दबाव की वजह से हजारों लाखों मेडिकल छात्रों ने कोटा शहर वापस ही जाना मुनासिब समझा। दोबारा तैयारी के दबाव के बीच कोटा वापस पहुंचे कई छात्र राहत महसूस कर रहे हैं। आमतौर ऐसे मौके पर शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोग आपदा में अवसर तलाश लेते हैं। हालांकि कोटा दोबारा पहुंचे छात्रों का अनुभव बिल्कुल अलग रहा है। अगले 1 महीने तक हॉस्टल या पेइंग गेस्ट के किराए में किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं मिली।
1: किराया तो ठीक ही है, पहले जितना था लगभग उतना ही है, और ज्यादा नहीं है। ठीक है, हॉस्टल भी अच्छा, खाना सब अच्छा है, और अंकल भी अच्छे हैं, पूछते रहते हैं कैसा चल रहा है, क्या है, ये सब अच्छा है। मतलब ऐसा नहीं लगता कि कोई है ही नहीं जो पूछता ही नहीं है, ऐसा लगता कि कोई तो है जो पूछ रहा है, पहचान रहा है, तो अच्छा लगता है यहाँ पे माहौल।
2: 24 आवर्स अच्छे से खाना पीना रहने के लिए सारा ध्यान दिया जा रहा है। मतलब भैया हमेशा मतलब ये सोचते हैं कि हमें कुछ प्रॉब्लम ना हो, हमारे माइंड फ्री रहे ये सब चीज़ से, और वो हमें अच्छे से हमेशा मोटिवेट भी करते रहते हैं और हमसे पूछते भी रहते हैं सुबह शाम कि तुम ठीक हो, मेंटली तुम अच्छे से कर रही हो, अच्छे से पढ़ाई हो रहा है, ये अच्छे से ध्यान देते हैं।
3: किराया तो नॉर्मल जो कोटा में चलता है वही जाता है। यदि बाई चांस पैसे की कभी प्रॉब्लम भी होती है तो हमने तो 1-2 दिन पहले ही बात किया तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, इन सब का टेंशन मत लो, ये है कि मददगार मिलती है इन सब उसे।
0: 21 जून को नीट री एग्जाम की वजह से उन छात्रों को सुनहरा मौका मिल गया जिनसे 3 मई को हुई परीक्षा में कोई कसर रह गई, पूरी एग्जाम को दूसरे मौके के तौर पर देख रहे हैं।
4: पढ़ाई
5: बहुत अच्छी चल रही है।
4: माहौल कैसा है
5: यहाँ का? माहौल एकदम ठीक है, फैमिली जैसा माहौल है, ऐसा लग रहा है कि सेकंड चांस मिला है। उसके अकॉर्डिंग हम ज्यादा पढ़ रहे हैं, ज्यादा एफर्ट्स ट्राई कर रहे हैं, जो गलतियाँ पिछली बार की थी वो इस बार नहीं करनी है, और जो वीक टॉपिक्स है उनको सुधार करना है, ये सब सोच के पढ़ रहे हैं।
0: कोटा हॉस्टल एसोसिएशन ने शहर भर के हॉस्टल संचालकों से छात्रों को मानवता के आधार पर सहयोग करने की अपील की। इसमें स्टूडेंट से पूरे महीने का किराया नहीं लेने की बात शामिल है, यानी जितने दिन रहेंगे उतने ही दिन का किराया देना होगा। सिक्योरिटी मनी से भी छूट देने की बात कही गई है।
6: देखिए, जितने भी बच्चे पहले जो कोटा से पढ़कर गए थे यहाँ से, वो वापिस नीट के लिए जो आ रहे हैं बच्चे, जिसका जो एग्जाम 21 जून को है, उसके लिए तमाम तरह की सुविधा जो है हॉस्टल वालों ने कर रखी है पहले, और हम सभी लोगों ने मिलकर ये एक अपील करी है जारी की जितने भी कोटा में हॉस्टल है वो सब उन बच्चों से जो दोबारा कोटा में कोचिंग करने आना चाहते हैं नीट के लिए, वो पर डे के हिसाब से किराया लें उसके, ताकि उन बच्चों पे कोई ऐसा अतिरिक्त भार ना पड़े और वो आराम से अपना री नीट की तैयारी करने कोटा आ जाए, ताकि हम उनको एक बहुत इकोनॉमिक पैकेज के अंदर उन बच्चों को अपने हॉस्टल में रखकर और उनके साथ में हमेशा 24 घंटे खड़े हैं, और उन सभी बच्चों को हम लोग मोटिवेट भी करना चाहते हैं जो बच्चे कोटा में री नीट के लिए आना चाहते हैं।
0: हॉस्टल संचालकों की तरह कोटा के कोचिंग संस्थानों ने भी फ्री कोचिंग की घोषणा की है। ज्यादातर बड़े कोचिंग संस्थान केवल 1 महीने की तैयारी के लिए किसी तरह का कोई शुल्क नहीं ले रहे हैं। सुबह शाम फ्री क्लासेस, मुफ्त प्रैक्टिस टेस्ट के अलावा टेस्ट सीरीज की तैयारी भी फ्री करवा रहे हैं।
7: जिन बच्चों का स्कोर काफी कट ऑफ के नजदीक है या बहुत अच्छे से क्लियर हो गए थे, उन बच्चों के लिए चैप्टर वाइज अगर वीकनेस है तो उनके लिए डेली क्लास अगर मॉर्निंग में, और अगर बच्चा टेस्ट के अंदर थोड़ा और प्रैक्टिस करना चाहता है तो डेली टेस्ट एलएन उनको प्रोवाइड कर रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, और इवनिंग में इसी टेस्ट का डिस्कशन भी किया जा रहा है। ये जो प्रोग्राम सेलिंग की तरफ से चल रहे हैं ये उन बच्चों के लिए बेनिफिशियल है जो वास्तव में कट ऑफ के नियर थोड़ा बहुत रुक गए थे, या फिर जिनका कि सिलेक्शन हो जाना कन्फर्म भी था लेकिन री नीट के कारण उनको दोबारा देना पड़ रहा है।
0: नीट पेपर लीक के बाद देश भर में मेडिकल करियर की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के बीच असमंजस और तनाव का माहौल बना हुआ है। हालांकि कोटा के कोचिंग संस्थानों और हॉस्टल संचालकों के रवैये ने वापस लौटे छात्रों को कुछ राहत महसूस करवाई है।
1: कोचिंग की तरफ से हमें और प्लेस कोर्स भी बहुत सारे हैं, अभी प्लेस कोर्स भी स्टार्ट हो गए हैं फ्री। और उसके अलावा जैसे अगर कोई बच्चे ऑनलाइन जा रहे हो, जैसे यहाँ नहीं आ पा रहे हो दोबारा, तो उनके लिए यूट्यूब पर भी है। और अभी ना जैसे जो PYQs है उनके लिए ना मतलब जैसे एग्जाम सोल्यूशन के वीडियोज भी चल रहे हैं अभी, और तो बस काफ़ी सही है।
3: सर ने बोला सर अच्छा से बस तैयारी करो, पहले से जो पढ़ा हुआ सब वही सब ज़्यादातर आता है। और सर ने बोला कि ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको गाइड करते रहेंगे, बस आप अपना पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, बाकी MCQ वगैरह ये सब और मॉड्यूल वगैरह PYQ ये सब सॉल्व करते रहिए।
0: कोटा ने एक बार फिर यह साबित करने की कोशिश की है कि वो सिर्फ करियर बनाने वाला शहर नहीं है बल्कि छात्रों के कठिन समय में उनके साथ खड़ा रहने वाला केयरिंग सिटी भी है। कोटा से चेतन गुर्जर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
8: खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत संधावा साइनिंग ऑफ, आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
10: पेप्सी प्रीबायोटिक कोला इन ओरिजिनल एंड चेरी वनीला, That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
11: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive Soul Groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
12: Hot Mics with Billy Bush streaming on TuneIn, your front row seat to the American zeitgeist. Get engaged on sports, politics, entertainment, tech, pop culture, hosted by yours truly. It's funny, it's honest, provocative, unfiltered takes, and real talk, no fluff, with guests like Megyn Kelly and Dr. Phil, Candace Owens, Jack Osborne, Will Arnett, Charlie Sheen, all engaging personalities who actually say what everyone else is afraid to. On the go, catch the show live or on demand on the TuneIn app. At home and want to listen on your connected device, just say, play Hot Mics with Billy Bush on TuneIn. If you missed the live show or want to catch up, listen on demand with the Hot Mics with Billy Bush podcast, available whenever you want.
13: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
14: विकास की तस्वीर। खबरें, किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
15: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
16: और दुर्भाग्य कहता है
15: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
14: अविश्वास में विश्वास बसता है,
15: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
17: गुड न्यूज टुडे।
15: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे
8: देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
17: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
14: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
0: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
14: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
17: गुड न्यूज टुडे,
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
18: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। गुणों की वजह से, योग्यता की वजह से व्यक्ति के अंदर अहंकार आ सकता है और आ जाता है, लेकिन अगर आप किसी चीज का अहंकार करते हैं तो वो आपके जीवन पर क्या असर डालता है, आज इस विषय में बात करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक विशेष उपाय। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 21 मई 2026 दिन बृहस्पतिवार, तिथि है अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, प्रातः 8:26 तक, नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र, चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक, दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं अहंकार के बारे में, घमंड के बारे में। कौन से ग्रह अहंकार पैदा करते हैं, ज्योतिष इस बारे में क्या कहता है? देखिए, अहंकार जो है ये मन से जुड़ा हुआ मामला है। सबसे पहले व्यक्ति के मन में, उसकी सोच में अहंकार पैदा होता है और मन से आगे बढ़कर ये व्यवहार तक पहुंच जाता है। हर ग्रह मजबूत होने पर, ताकतवर होने पर अपनी तरह का अहंकार पैदा करता है। लेकिन अहंकार में सबसे बड़ी भूमिका जो देखी गई है वो बृहस्पति और चंद्रमा की होती है। बृहस्पति कुंडली में ज्यादा लीड करे तो व्यक्ति को परम अहंकारी बना देता है और अन्य ग्रहों के साथ मिल करके ये विभिन्न प्रकार के अहंकार पैदा करता है। लेकिन जैसा हम सब जानते हैं कि अहंकार तो नुकसान करता है, इसीलिए किसी भी तरह का अहंकार हो वो जीवन में समस्या पैदा करेगा। हर तरह का अहंकार विशेष तरह की समस्या पैदा कर देता है। मेष राशि, स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें, परिवार में शांति रखें, करियर में लापरवाही ना करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा, स्थान परिवर्तन हो सकता है, संतान की चिंता हो सकती है। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, मानसिक तनाव आपका कम होता दिखाई दे रहा है, करियर में सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि सूर्य किस तरह का अहंकार देता है और ये अहंकार आपको कहां नुकसान पहुंचाता है। सूर्य वैभवशाली परंपरा का और खानदान का अहंकार पैदा करता है। मेरे पिताजी ये थे, मेरे दादा वो थे, मेरा खानदान ऐसा है, ये अहंकार सूर्य देता है। कुंडली में सूर्य ज्यादा मजबूत हो जाए तो खानदान और परंपरा का अहंकार पैदा होता है। आम तौर पर मेष, सिंह और धनु राशि वालों को ये अहंकार ज्यादा होता है और अगर आप इस तरह का अहंकार करते हैं तो संतान को लेकर, संतान पक्ष को लेकर जीवन में समस्या पैदा हो जाती है। देखिए, वैसे तो हर तरह के अहंकार के पीछे चंद्रमा होता ही है, लेकिन चंद्रमा एक अलग तरह का अहंकार भी देता है। क्या करता है? चंद्रमा गुणों का अहंकार पैदा करता है। मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, मैं बहुत अच्छा पेंटिंग करता हूँ, मैं बहुत सुंदर तरीके से काम करती हूँ, मेरी आवाज़ बड़ी अच्छी है, ये जो गुण हैं आपके, इसको लेकर के चंद्रमा वालों को अहंकार होता है। इसके अलावा कभी कभी क्लास का अहंकार भी हो जाता है कि मेरे कपड़े, मेरे जूते, मेरे बात करने का तरीका, मेरे खाना खाने का तरीका बड़ा क्लासी है। क्लास का अहंकार भी चंद्रमा वालों को होता है। कर्क, वृश्चिक और मीन वालों को इस तरह का अहंकार ज्यादा होता है और ये अहंकार बड़ा खतरनाक है, क्योंकि गुण आता है ईश्वर की कृपा से और गुण होने के बावजूद अगर आप ये अहंकार पालते हैं तो आपकी किस्मत बिल्कुल उल्टी हो जाती है, आपके गुण धीरे धीरे आपसे वापस ले लिए जाते हैं। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, धन के खर्चे बढ़े रहेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, कारोबार की स्थिति ठीक रहेगी, करियर में लाभ होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, लाभकारी यात्रा आपकी हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, यात्रा हो सकती है, स्वास्थ्य में सुधार होगा, परिवार में व्यस्तता रहेगी। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब मंगल किस तरह का अहंकार देता है, किस तरह का दंभ देता है? मंगल जो है वो शक्ति और ताकत का अहंकार पैदा करता है। आप आर्मी में बड़े अफसर हो गए, आप पुलिस में चले गए, आप कोई ऐसा पद पा गए जीवन में जो बड़ा ताकतवर पद है, तो शक्ति और ताकत का अहंकार मंगल आपके अंदर पैदा कर देता है। और मंगल वाले अहंकार में लोग अहंकार में आके अपनी ताकत का, अपनी शक्ति का दुरुपयोग भी करते हैं। वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि में ताकत का अहंकार जल्दी आ जाता है। अगर आप अपनी ताकत का, अपनी शक्ति का, अपने पावर का अहंकार करते हैं, उसका दुरुपयोग करते हैं, तो जीवन में आपके रिश्ते टूटेंगे, आपके परिवार के लोग आपसे लगातार दूर होते चले जाएंगे। बुध किस तरह का अहंकार देता है और उसका नुकसान क्या है? देखिए, बुध अपनी बुद्धि और अपनी योग्यता का अहंकार देता है। बुध वाले जो होते हैं ना, वो बड़े इंटेलिजेंट, बड़े शार्प ब्रेन के, अच्छा बोलते हैं, अच्छा लिखते हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत होता है, मुश्किल से मुश्किल समस्या को हल कर लेते हैं। ये जो गुण है बुध का, इसका अहंकार इनको बहुत होता है कि मुझसे ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं है। ये किसी और को अपनी बुद्धि के आगे, अपनी चालाकी के आगे कुछ नहीं समझते। मिथुन, कन्या और मकर वालों के अंदर अपनी बुद्धि का, अपने ब्रेन का अहंकार बहुत होता है। अब इनकी मुश्किल क्या है? अगर आपके अंदर अपनी बुद्धि का, अपनी योग्यता का ज्यादा अहंकार है ना, तो जीवन में कई कई बार आपको धन का बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए कृपा करके इस तरह का अहंकार मत पालिए। सबसे ज्यादा जो ग्रह आदमी को दंभी और अहंकारी बनाता है वो है बृहस्पति। क्या कनेक्शन है अहंकार से? बृहस्पति वाले अपने ज्ञान को लेकर, मैं बड़ी पूजा पाठ करता हूं, मुझे बड़े मंत्र याद हैं, मुझे बड़े श्लोक याद हैं, अपने ज्ञान को लेकर अहंकारी होते हैं। मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि, मेरे दादाजी बहुत बड़े पुजारी थे, बहुत बड़े महंत थे, ज्ञान का, पारिवारिक पृष्ठभूमि का बहुत अहंकार होता है। इस अहंकार के कारण होता क्या है कि ये बड़बोले हो जाते हैं, इनका वाणी पर कंट्रोल नहीं रहता, किसी को कुछ भी कभी भी बोल देते हैं, अक्सर लोगों को अपने ज्ञान से परेशान करते हैं, लोगों को उलझा देते हैं। कोई आदमी सही काम कर रहा है उसको कहेंगे अरे फला जगह तो ऐसा लिखा था कि ऐसा नहीं करना चाहिए, अब वो परेशान हो गया, तो अपने ज्ञान से दूसरों को परेशान भी करते रहते हैं। वृषभ कन्या धनु मकर और मीन वालों में अपने ज्ञान अपनी विद्वता का अहंकार बहुत होता है। और होता क्या है कि ये जो जितने ये अपने ज्ञान से अहंकारी होते हैं ना, उतना ही इनको जीवन में बदनामी का अपयश का सामना करना पड़ता है। धनु राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, निर्णयों में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, करियर में आपको सफलता मिलेगी, परिवार में शुभ कार्य आपके होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य और तनाव के मामले में सुधार होगा, धन की समस्याएं दूर होंगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, करियर में नए अवसर मिलेंगे, मानसिक तनाव समाप्त होगा, काम की अधिकता रहेगी। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुक्र भी आदमी के अंदर अहंकार पैदा करता है। कैसा अहंकार? शुक्र वाले बड़े ग्लैमरस होते हैं, आमतौर पे दिखते भी अच्छे हैं, रूप सौंदर्य अच्छा होता है, बड़े ग्लैमरस, बड़ा लग्जीरियस लाइफ जीते हैं। तो शुक्र वालों को अपने रूप सौंदर्य का, अपने शानो शौकत का, अपने झाम ताम का बड़ा अहंकार होता है। मैंने ये घड़ी 10 लाख की खरीदी, तुरंत फोटो सोशल मीडिया पे डाल देंगे, ठीक है ना, मतलब मेरे पास क्या है, वो दिखावे की टेंडेंसी, वो अहंकार शुक्र से आता है। और ये लोग इस अहंकार के कारण अक्सर मूर्ख बनते हैं, लोग उनको मूर्ख बनाते हैं और धन की बर्बादी होती है इनकी। मिथुन तुला और कुंभ राशि वालों में ये अहंकार जल्दी आ जाता है अगर उनका शुक्र डोमिनेटिंग हो तो। इस अहंकार के कारण इनको जीवन में आकस्मिक धन की हानि होती है और लोग इनकी प्रशंसा करके इनसे खूब पैसे खर्च करवाते हैं और ये दिखावे के मामले में बड़ी मुश्किल में हमेशा पड़े रहते हैं, लेकिन फिर भी नहीं मानते। दिखावा करना, अहंकार करना, चीजों को शो ऑफ करना, ये इनके अंदर बहुत होता है। शनि वैसे तो देखिए अहंकारी नहीं है, लेकिन शनि भी कभी कभी आदमी को अहंकार देता है। कैसा अहंकार? शनि वालों को काम करने की योग्यता का अहंकार होता है। जितना मैं काम कर सकता हूं उतना तुम नहीं कर पाओगे, मैं सुबह से रात तक काम करता हूं, मैं दिन रात काम करता हूं, मैं एक ही दिन में ये भी कर दिया वो भी कर दिया, मैं सब संभाल लेता हूं या सब संभाल लेती हूं, ये योग्यता, काम करने की योग्यता का अहंकार इनके अंदर आता है। और ये लोग किसी और के काम को अपनी मेहनत के आगे, अपने काम के आगे कुछ नहीं समझते। अगला कितनी भी मेहनत करे इनको लगता है मेरे से ज्यादा मेहनत थोड़ा ना कर रहा है, इसलिए मैं ज्यादा बेहतर हूं। तो इनको अपने काम करने का, मेहनत का अहंकार होता है। वृषभ सिंह कन्या और मकर वालों के अंदर ये अहंकार आ जाता है अगर शनि प्रबल हो जाए। और होता क्या है, अपनी मेहनत और काम का अहंकार अगर आप करेंगे ना, तो करियर में उतार चढ़ाव का सामना आपको जीवन में करना पड़ेगा। अगर आपको अपने रिश्तों की समस्या दूर करनी है तो हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाइए, हनुमान जी को लाल फूल और तुलसी दल ये आप अर्पित करके प्रार्थना करिए। जिस रिश्ते में समस्या है उस रिश्ते की मुश्किल दूर हो जाएगी। कि अगर आपका मन पूजा उपासना में नहीं लगता हो तो क्या उपाय करेंगे, पूजा का स्थान और पूजा करने का समय एक रखिएगा। रोज शाम को पूजा करते हैं 7 बजे, तो 7 बजे ही करिए, और जहां बैठ के करते हैं वहीं बैठ के करिए। पूजा करने के पहले हाथ जोड़कर भगवान से पूजा में मन लगाने की प्रार्थना करिएगा, और पूजा समाप्त करने के बाद अपने कर्मों को और अपनी चिंताओं को भगवान को समर्पित कर दीजिएगा। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
19: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
20: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
21: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
22: Some people say that TalkSport is possessed by the Premier League, but that's just not cricket. We're also charmed by the Champions League, fanatical about the FA Cup, and rampantly rabid about rugby, Formula One, and boxing. TalkSport's the brashiest, boldest, best soccer and sports opinion anywhere in the known universe. Live from London on TuneIn.
23: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
24: गुड न्यूज टुडे।
15: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
17: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
23: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
23: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
16: और दुर्भाग्य कहता है
23: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
23: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
17: गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
23: बात सलमान खान की, पिछले कुछ दिनों से सलमान खान लगातार चर्चा में बने हुए हैं। पहले सलमान खान की एक शर्टलेस तस्वीर के साथ उनकी तन्हाई की खबरें सुर्खियां बनी, जिसके बाद सलमान खान को खुद सफाई देनी पड़ी, और अब आधी रात को सलमान खान के एंग्री यंग मैन बनने की वजह चर्चा में है। क्या है वजह, देखिए रिपोर्ट।
4: इस वीडियो को गौर से देखिए, सलमान खान का चेहरा और एक्सप्रेशन साफ बता रहा है कि वो गुस्से में है। वीडियो में कुछ आवाजें भी सुनाई दे रही हैं, एक तो सलमान खान की जो गुस्से से भरी है, दूसरी जो उनके सामने खड़े हैं लेकिन वीडियो में दिखाई नहीं दे रहे, ये पेपराजी है जो भाई भाई सॉरी भाई कहकर सलमान से माफी मांग रहे हैं। वीडियो से साफ पता चल रहा है कि पेपराजी की किसी बात ने सलमान खान को गुस्सा कर दिया है, जिससे सलमान को उन्हें डांटने फटकारने पर मजबूर होना पड़ा। इन तस्वीरों से यहाँ तक की बात तो समझ में आती है, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्या कि सलमान को उन्हें डांटने फटकारने की नौबत आई। तो चलिए आपको बताते हैं आखिर माजरा है क्या। बीती रात सलमान खान अपने किसी करीबी को देखने मुंबई के हिंदुजा अस्पताल पहुंचे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पेपराजी ने सलमान को तब देखा जब उनकी गाड़ी एक ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी और बाद में अस्पताल तक उनका पीछा किया। जैसे ही सलमान अस्पताल से बाहर निकले, कुछ फोटोग्राफर्स ने उनका ध्यान खींचने के लिए भाई भाई चिल्लाना शुरू कर दिया। सलमान खान ने तब उन्हें अस्पताल के पास चुप रहने को कहा और उनसे पूछा कि अगर उनके परिवार का कोई अस्पताल में भर्ती होता तो क्या वो ऐसे ही रिएक्ट करते। सलमान खान की नाराजगी यही खत्म नहीं हुई, पेपराजी के इस गैर जिम्मेदाराना व्यवहार ने उन्हें जहनी तौर पर इतना व्यथित किया कि अस्पताल से घर पहुंचने के बाद रात के करीब 3 बजे उनका गुस्सा एक बार फिर फूट पड़ा। सलमान ने इंस्टाग्राम पर कई सेल्फी पोस्ट की, साथ ही पेपराजी को एक बार फिर नसीहत दे डाली। जिस प्रेस के लिए मैं खड़ा हूँ, जिनसे बातचीत की है, जिनकी देखभाल की है, ये सुनिश्चित किया कि वे भी अपनी रोजी रोटी कमा सके, लेकिन अगर वो मेरे नुकसान से पैसा कमाना चाहते हैं तो चुप रहें, मजा ना लें। सलमान ने इशारों इशारों में ये भी कहा कि अगर कोई उनकी निजी जिंदगी या मुश्किल वक्त का मजाक बनाने की कोशिश करेगा तो वो चुप नहीं बैठेंगे। सलमान ने आगे लिखा, 60 साल का हो गया हूँ लेकिन लड़ना नहीं भूला, ये याद रख लेना, जेल में डालोगे, हा हा हा। बेशक सलमान ने अपने गुस्से को जब्त करते हुए कुछ बातें मजाक में कही होंगी, लेकिन पेपराजी के व्यवहार से आहत सलमान के शब्दों में तलखी साफ झलक रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
18: कौन सा अहंकार करने से धन का बड़ा नुकसान होता है? कौन सा अहंकार करने से सद्गुण वापस चले जाते हैं? और कौन सा अहंकार करने से जीवन में अपयश मिलता है? क्या है अहंकार का जीवन पर प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
17: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट।
1: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ श्वेता झा, स्वागत है आपका न्यूज पत्नी। राह जिंदगी की हो या खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होती है, कई पड़ाव होते हैं। देश और दुनिया से जुड़ी पॉजिटिव खबरों के साथ आपको लिए चलेंगे न्यूज पथ पर, लेकिन सबसे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
6: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।

0: के पास मानव रहित इलेक्ट्रिक बोट की तैनाती, हर दिन 80 से 90 किलो कचरे का हो रहा सफाई। आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा रामनगरी में होने वाले एक और भक्ति उत्सव की भी है।
1: रामनगरी अयोध्या में एक बार फिर से विशेष आयोजन की तैयारी चल रही है। यहाँ राम जन्मभूमि मंदिर में स्थापित राम दरबार की पहली वर्षगांठ के अवसर पर भक्ति, आस्था और वैदिक परंपरा की दिव्य छटा बिखरेगी। 26 मई को गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर मंदिर परिसर में विशेष पूजा अर्चना, वैदिक मंत्रोच्चार अनुष्ठान और भगवान को विशेष भोग अर्पित किए जाएंगे। पिछले वर्ष इसी पावन तिथि पर राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में राम दरबार सहित 6 उप मंदिरों की विधिवत स्थापना की गई थी, जिसके एक वर्ष पूर्ण होने के बाद इस बार आयोजन को और अधिक भव्य और दिव्य रूप देने की तैयारी चल रही है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इस विशेष आयोजन को लेकर भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या हर दिन बढ़ रही है। हजारों की संख्या में भक्त धाम पहुंचकर बाबा केदार के दर्शन कर रहे हैं। 29 दिनों की यात्रा में यहां अब तक 7 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचकर दर्शन कर चुके हैं। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को खराब मौसम का सामना भी करना पड़ा, लेकिन यात्रियों की आस्था उस पर भारी पड़ रही है। हर दिन 25,000 से अधिक श्रद्धालु कठिन चढ़ाई को पार करके धाम तक पहुंच रहे हैं। रुद्रप्रयाग जिले के सोनप्रयाग गौरीकुंड मार्ग पर मुनकटिया क्षेत्र में अचानक भूस्खलन से केदारनाथ यात्रा मार्ग बाधित होने से हजारों श्रद्धालु बीच रास्ते में फंस गए, लेकिन एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम की मुस्तैदी से 10,000 से ज्यादा श्रद्धालु को सुरक्षित रूप से मार्ग पार करवाया गया। इस सफल रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद जेसीबी मशीनों से मलबा हटाकर सड़क मार्ग पर दोबारा आवाजाही शुरू की गई। देश के ज्यादातर हिस्से जहां भीषण गर्मी की चपेट में है, वहीं कश्मीर का मौसम पर्यटकों को खूब रास आ रहा है और यही वजह है कि यहां पर इन दोनों पर्यटकों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। श्रीनगर के सुहावने मौसम का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहां आने वाले पर्यटकों में कई लोग स्वेटर और जैकेट पहने नजर आए। श्रीनगर में खासतौर पर पर्यटक शिकारा पर सवार होकर डल झील की सैर करते हुए यहाँ के खूबसूरत नजारों का दीदार करते नजर आ रहे हैं। यहाँ के मौसम में इस तरह का लुत्फ उठाने की खुशी पर्यटकों के चेहरे पर साफ झलकती है। ये तस्वीर महाराष्ट्र के अकोला की है, जहाँ की हुई एक शादी खूब चर्चा में है और जिसकी वजह है दूल्हा दुल्हन की एंट्री। अकोला जिले के टिटवा गांव में हुई इस शादी की खास बात दूल्हा दुल्हन की इस तरह से ट्रैक्टर से हुई एंट्री ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इस तरह से विवाह स्थल पर पहुंचकर दूल्हा दुल्हन ने खेती संस्कृति को सम्मान दिया। किसान परिवार से आने वाले दूल्हा ओम प्रकाश का दुल्हन अनुश्री के साथ इस अंदाज में विवाह स्थल पर पहुंचने का मकसद आधुनिकता के इस दौर में भी गांव, खेती और मिट्टी से जुड़ी जड़ों को नहीं भूलने का संदेश देना रहा। महज 8 साल की इस बच्ची ने अपनी इसी हुला हूप स्पिन की प्रतिभा से अपना नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज करवा लिया। पंजाब के जालंधर की रहने वाली हरनाज कौर ने इसी तरह आर्म रॉड से लटक कर महज 25 सेकंड में 50 हुला हूप स्पिन का प्रदर्शन कर एक रिकॉर्ड बनाया। हरनाज का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज होने से परिवार में खुशी का माहौल है। माता पिता अपनी लाडली पर फख्र महसूस कर रहे हैं। रिश्तेदार, पड़ोसी से लेकर शहर भर से बधाइयों का सिलसिला लगातार जारी है। हरनाज का अगला लक्ष्य अब एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाना है।
0: और अब बात करते हैं 47 डिग्री वाली गर्मी से दिल्ली एनसीआर से लेकर राजस्थान तक लोग कैसे हो रहे हैं परेशान। इन दिनों देश के ज्यादातर हिस्सों में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। उत्तर भारत के कई शहर इन दिनों भीषण गर्मी और बिजली संकट की दोहरी मार झेल रहे हैं। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली एनसीआर और हरियाणा में तापमान 47 डिग्री

सेल्सियस तक पहुंच गया है। दिन की तपिश तो सहन करना मुश्किल है, तो रातें भी उमस भरी हो रही है। ऐसे में भीषण गर्मी में लोग अपना ख्याल कैसे रखें, इसी पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट।

0: मई की गर्मी में पारे का कहर 48 डिग्री तक जा पहुंचेगा, इसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की होगी। यानी गर्मी का सितम अब और बढ़ने वाला है। फिलहाल दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत में आसमान से आग बरस रही है। गर्मी इतनी है कि इंसान ही नहीं बल्कि परिंदे तक परेशान हैं। दिल्ली में पारा 47 डिग्री तक पहुंचने का अंदेशा जताया जा रहा है, तो वहीं उत्तर भारत के तमाम शहरों में हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया गया है।
1: दिल्ली और NCR पूरी तरह से हीट वेव की चपेट में है। आज दिल्ली में अधिकतम तापमान 45 से 47 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है, तो वहीं न्यूनतम तापमान भी लगभग 30 डिग्री के आंकड़े को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। असल में मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों के लिए दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है, यानी कि हीट वेव कंडीशंस दिल्ली और NCR के इलाके में बने रहेंगे।
0: मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार को दिल्ली का तापमान 45.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। दिल्ली NCR समेत देश के कई हिस्सों में आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ सकता है। भीषण गर्मी और लू को देखते हुए केंद्र सरकार पहले ही हीट वेव एडवाइजरी जारी कर चुकी है, लिहाजा राहत के आसार फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं।
2: देखिए, इस समय अगर आप जो मैप देखेंगे, ऑलमोस्ट पूरा नॉर्थ वेस्ट, सेंट्रल एंड ज्वाइनिंग ईस्ट इंडिया सभी जगह में आप देख सकते हैं कि हीट वेव कंडीशंस प्रिवेल कर रही हैं, और ऑलमोस्ट आने वाले 7 दिनों में ऐसा ही सिनेरियो बना रहेगा। अगर हम स्टार्ट करें हिमालय से, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में भी आने वाले 2 से 3 दिन हीट वेव कंडीशंस बना रहेगा। उसके बाद वहाँ एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से थोड़ा कमी आ जाएगी, तो हीट वेव नहीं है। लेकिन अगर प्लेन्स की बात करें, स्टार्टिंग फ्रॉम पंजाब, हरियाणा, इवन NCR दिल्ली, उत्तर प्रदेश और सेंट्रल इंडिया, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन सारी जगहों में हीट वेव टू सीवियर हीट वेव कंडीशंस आने वाले ऑलमोस्ट 7 दिन बने रहेगी।
0: दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में तापमान लगातार बढ़ रहा है और गर्म हवाओं ने लोगों का घर से निकलना मुश्किल कर दिया है। सुबह से ही तेज धूप और दोपहर में चल रही लू ने आम जनजीवन पर बड़ा असर डाला है।
3: हीट वेव तो काफी ज्यादा है, यहाँ का टेम्परेचर पुणे के कंपेरिजन में तो काफी ज्यादा है, लेकिन फिर भी हम दिल्ली घूमेंगे क्योंकि हम घूमने आए।
4: ये धूप से बचाव के लिए क्या करूँ?
3: धूप से बचाव के लिए ठंडा पानी पी रहे और नींबू पानी पी रहे कंटिन्यूसली, ताकि अपना हाइड्रेशन बना रहे।
5: हेलो दिल्ली, यहाँ पे हीट बहुत ही ज्यादा है एज कम्पेयर टू पुणे। हीट से और धूप से बचने के लिए हाइड्रेशन मेंटेन रहना बहुत ही जरूरी है, इसलिए नींबू पानी, ठंडा पानी कंटिन्यू पीते रहिए। खाना खाए या ना खाए, लेकिन हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए लिक्विड डाइट बहुत इम्पोर्टेंट है।
0: दिल्ली के अलावा राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई हिस्से भी गर्मी की चपेट में हैं। कई शहरों में तापमान 45 डिग्री से ऊपर पहुंच चुका है। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के कलेक्टर कार्यालय परिसर में सोलर एनर्जी से चलने वाली खास इनोवेटिव बेंच लगाई गई है, जो लोगों को गर्मी में ठंडक का एहसास करा रही है।
6: जो लोग बाहर निकले भी हैं, वो खुद को गर्मी से बचाने की जुगाड़ करते हुए यहाँ पे साफ तौर पे देखे जा सकते हैं। जो लोग बाहर निकल रहे हैं, वो या तो ठंडा पानी पी रहे हैं, शिकंजी पी रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं। कोशिश बस यही है कि इस तेज गर्मी में खुद को बचा सकें। तो भोपाल में भी तापमान जो है वो करीब 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच चुका है। इस तरीके से गर्मी से अपने आप को बचा रहे हैं।
7: गर्मी इन द सेंस देख ही रहे, मेरे हाथ में आइसक्रीम ही है, क्योंकि गर्मी हाथ में आप क्या ही कर सकते हैं, आइसक्रीम ही खा सकते हैं या फिर खुद को ठंडे चीज से ही बचा सकते हैं आप।
8: पब्लिक प्लेसेस पर इस प्रकार के एक इनोवेटिव बेंच बनाई गई है, जिस बेंच पर ऊपर से फैन लगा होता है और मिस्ट स्प्रे होता है, और इससे जो आदमी उस पर बैठता है उनको एक अच्छा मतलब शीतल एहसास होता है। तो अभी आज इसको पायलट के रूप में कलेक्ट्रेट परिसर में इसको स्थापना की गई है। ये अगर ये सफल प्रयोग रहेगा तो इसको हम लोग अन्य जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ भी इस तरह का रेप्लिकेट करने का प्रयास करेंगे।
0: उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में मंगलवार को तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। जो इस सीजन के सबसे ज्यादा तापमान में शामिल है। वहीं राज्य के 11 जिलों में रेड अलर्ट है। ऐसे में इस भीषण गर्मी से बचने के लिए लोग गन्ने का जूस, बेल का जूस, नारियल पानी, लस्सी, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक और आम पन्ना जैसे ठंडे पेय पदार्थों का सेवन करके खुद को हाइड्रेट रख रहे हैं।
9: उत्तर प्रदेश में गर्मी का कहर प्रचंड है। लखनऊ रायबरेली का तापमान 43 तो बांदा का पार कर चुका है 45। हालत ये है कि दिन में लू के थपेड़े और साथ में गर्मी इतनी कि अगर आप पानी ना पिए तो बेहोश हो जाएं। इस तरह की गर्मी।
0: आसमान से बरसती आग से बचने का युद्ध केवल इंसानों तक ही नहीं है बल्कि ये चिंता जानवरों को लेकर भी है। लखनऊ के चिड़ियाघर में तपती गर्मी के बाद जानवरों की बेचैनी को साफ देखा जा सकता है। बेजुबानों की जिंदगी बचाने के लिए जू प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी है। ताजा फलों और सब्जियों के साथ जानवरों के लिए नया डाइट प्लान तैयार किया गया है। वहीं गुरुग्राम में भीषण गर्मी और हीट वेव के चलते आसमान में उड़ने वाले पक्षी जमीन पर गिर रहे हैं। हालात ये है कि गुरुग्राम के चैरिटी पक्षी अस्पताल में बीमार पक्षियों की तादाद अचानक बढ़ गई है। यहाँ न सिर्फ देसी बल्कि विदेशी प्रजातियों के पक्षी भी गर्मी की मार झेलकर इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। हैरानी की बात ये है कि इस गर्मी की चपेट में सिर्फ स्थानीय पक्षी ही नहीं बल्कि दर्जनों विदेशी प्रजातियों के पक्षी भी इलाज के लिए यहां आ चुके हैं। इस वक्त अस्पताल में लव बर्ड, अफ्रीकन और ऑस्ट्रेलियन ब्रीड के कई रंग बिरंगे पक्षी भी यहां इलाज के लिए लाए गए हैं। अस्पताल में सबसे ज्यादा संख्या कबूतरों की है जो हीट स्ट्रोक के कारण पैरालिसिस का शिकार हो रहे हैं। गर्मी से बेहाल तो राजस्थान भी है। राजस्थान में ज्यादातर जिलों में पारा 42 से 46 डिग्री के बीच चल रहा है। फतेहपुर शेखावटी के पारे के तल्ख तेवर से तापमान 45.5 डिग्री तक पहुंच गया। वहीं जो जिले राजस्थान के उत्तर पश्चिम में हैं, वो इस वक्त भयानक गर्मी की चपेट में हैं। दिनों दिन रातें भी तप रही हैं। अगर आपको लग रहा है कि गर्मी का मसला केवल मैदानों का है तो जरा इस वक्त हिमाचल घूम आइए। यहाँ का पारा भी हाई है। धर्मशाला से लेकर कांगड़ा और सोलन तक में अगले कुछ दिनों तक लू का अलर्ट है। यही नहीं, अगले कुछ दिनों में पारे के 5 डिग्री तक बढ़ने का अंदेशा भी जताया जा रहा है। हालांकि अच्छी बात ये है कि गुरुवार और शुक्रवार को राज्य में आंधी और बारिश से पारा थोड़ा नीचे गिर सकता है। गर्मी का असर सिर्फ तापमान तक सीमित नहीं है बल्कि इसका असर लोगों की सेहत पर भी पड़ रहा है। अस्पतालों में डिहाइड्रेशन, चक्कर और हीट स्ट्रोक के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। डॉक्टर्स ने बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है क्योंकि अगले कुछ दिन बेहद चुनौतीपूर्ण साबित हो सकते हैं। लगातार बढ़ती गर्मी और हीट वेव को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी सतर्क हो गया है। डॉक्टर्स ने लोगों को दोपहर के समय घर से बाहर कम निकलने, ज्यादा पानी पीने और शरीर को हाइड्रेट रखने की सलाह दी है। वहीं बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतने के लिए कहा गया है क्योंकि तेज गर्मी का असर उन पर जल्दी पड़ता है।
10: जो सबसे ज्यादा इफेक्ट होते हैं वो होता है एक्सट्रीम्स ऑफ एज, मतलब जो 5 साल से कम बच्चे हैं या 65 साल से ज्यादा उम्र वाले लोग हैं उनमें यह ज्यादा इफेक्ट कर सकता है। दूसरे जिनको बीमारियां हैं, कोमॉर्बिडिटी कंडीशन जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसमें कि हो गया आपको हार्ट की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, लिवर की बीमारी है, डायबिटीज है, ये लोगों को भी ये बीमारियां ज्यादा इफेक्ट करती हैं और इन लोगों में ज्यादा सीरियस हो सकता है। तो इसलिए इन लोगों को ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। दूसरी चीज है हल्का रंग का, हल्का कपड़ा, लूज कपड़े पहनिए, हल्के रंग के कपड़े पहनिए, जिससे क्योंकि जितना डार्क कलर क्लोथ पहनेंगे उतना ही ज्यादा हीट एब्जॉर्प्शन होता है और आपकी बॉडी नहीं डिसिपेट कर पाती है। इसलिए लूज क्लोथिंग, कॉटन क्लोथिंग, लाइट कलर्ड क्लोथ। अगला होता है अपने आपको हाइड्रेट अच्छे से करिए, अच्छे से आपका जैसे पानी की मात्रा अच्छे से पिए। एंड कभी कभी जब आपको स्वेटिंग बहुत ज्यादा हो रही है, सिर्फ पानी उसको काम नहीं कर पाता है, तो जैसे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस होते हैं वो ज्यादा अच्छा काम करती हैं।
0: राजधानी दिल्ली में तेज धूप के साथ सूखी हवाओं ने हालात और खराब कर दिए हैं। मौसम विभाग ने 25 मई तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग का कहना है कि फिलहाल दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में गर्मी से तुरंत राहत मिलने की संभावना कम है और आने वाले कुछ दिन लोगों के लिए और चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। जयपुर से रिदम जैन, दिल्ली से अनमोल बाली, भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ रायबरेली से समर्थ श्रीवास्तव, गुड न्यूज टुडे। रांची एयरपोर्ट पर यात्रियों को मिली नई सुविधाएं। आए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट में यात्रियों को अब कई नई आधुनिक सुविधाओं की सौगात मिलेगी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू खंजरपुर ने एयरपोर्ट परिसर में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके साथ ही उड़ान यात्री कैफे, अवसर सेंटर, किड्स प्ले जोन और लाइब्रेरी सहित कई सुविधाओं का भी उद्घाटन किया। मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर के हवाई अड्डों को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है। उड़ान यात्री कैफे में यात्रियों को किफायती दरों पर खाद्य सामग्री उपलब्ध होगी, जबकि अवसर सेंटर के जरिए झारखंड के लोकल उत्पादों और हस्तशिल्प को नया बाजार मिलेगा। उत्तराखंड में टिहरी जनपद के चंबा आराकोट क्षेत्र में बुधवार सुबह एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। ट्रांस भारत एविएशन कंपनी के एक हेलीकॉप्टर को तकनीकी खराबी के चलते खेतों में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। हेलीकॉप्टर में पायलट सहित कुल 6 लोग सवार थे और सभी सुरक्षित बचाए गए। जानकारी के अनुसार हेलीकॉप्टर बद्रीनाथ धाम से देहरादून की ओर जा रहा था। उड़ान के दौरान हेलीकॉप्टर हाई टेंशन पावर लाइन के संपर्क में आ गया, जिससे उसके पिछले हिस्से को नुकसान पहुंचा। स्थिति को भांपते हुए पायलट ने सूझबूझ का परिचय देते हुए सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग कराई, जिससे बड़ा हादसा टल गया। उत्तर प्रदेश में गाजीपुर पुलिस ने सैकड़ों परिवारों को टूटने से बचाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। एसपी सिटी राकेश कुमार मिश्र ने बताया कि इस साल 15 मई तक जनपद पुलिस ने पति पत्नी के बीच मतभेद से जुड़े कुल 1323 मामलों में सुलह कराई। इससे 1323 परिवारों को बिखरने से बचाया जा सका। उन्होंने बताया कि जनपद मुख्यालय पर स्थापित पुलिस परिवार परामर्श केंद्र पर पति पत्नी विवाद और घरेलू हिंसा से संबंधित कुल 274 मामले सामने आए, जिनमें काउंसलर के सहयोग से 108 मामलों में सफल समझौता कराकर परिवारों का पुनर्मिलन कराया गया। उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा और सम्मान को लेकर पुलिस पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है और आगे भी ये अभियान जारी रहेगा। और अब बात रानी लक्ष्मीबाई के विवाह की 184वीं वर्षगांठ की। जी हाँ, बुंदेलखंड में कहावत है कि जो मोर धरे गंगाधर राजा, बनी दुलैया रानी जो। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और महाराजा गंगाधर राव की शादी की 184वीं वर्षगांठ धूमधाम से मनाई गई। लोगों में इसको लेकर काफी उत्साह नजर आया। छात्राएं महारानी के वेश में पहुंची थी। गाजे बाजे और बुंदेली वाद्यों के साथ निकली बारात में गाते नाचते लोगों का हुजूम शामिल।
11: सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता झांसी की रानी की ये पंक्तियाँ आज बरबस ही याद आ रही हैं। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी लक्ष्मीबाई की याद में उन्हीं की धरती पर निकली ये शोभा यात्रा दर्शकों का मन मोह रही है। दुंदुभी की गूंज के बीच रानी लक्ष्मीबाई और उनके पति झांसी नरेश महाराज श्रीमद गंगाधर राव की आरती की जा रही है। ये वो पावन अवसर है जब महारानी लक्ष्मीबाई और गंगाधर राव की 184वीं वैवाहिक वर्षगांठ को धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। गाजे बाजे और बुंदेली वाद्यों के साथ निकली बारात में गाते नाचते लोगों का हुजूम शामिल था। ढोल नगाड़ों और बैंड की गूंज, पारंपरिक मराठी वेशभूषा, ऐतिहासिक पात्रों की झलक और देशभक्ति से सराबोर माहौल ने पूरे शहर को उत्सव में बदल दिया। शहर की सड़कों पर निकली शाही बारात और भव्य शोभा यात्रा ने लोगों को 1842 के उस ऐतिहासिक पल की याद दिला दी जब विवाह के बाद उनके बचपन के नाम मणिकर्णिका को बदलकर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई रखा गया था। इस शोभा यात्रा की शुरुआत शहर के प्रसिद्ध लक्ष्मी व्यायाम मंदिर से हुई, जहां से महाराज गंगाधर राव की प्रतीकात्मक शाही बारात निकाली गई। ये शोभा यात्रा नरिया बाजार, सराफा बाजार, मानिक चौक, कोतवाली और शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरती हुई ऐतिहासिक गणेश मंदिर पहुंची। यात्रा के दौरान जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा कर बारात का स्वागत किया और झांसी की रानी अमर रहे के जयकारों से वातावरण गूंज उठा।
12: झांसी नरेश महाराज गंगाधर राव और महारानी लक्ष्मीबाई के विवाह की 184वीं वर्षगांठ है। जो हम लोग महाराज गणेश मंदिर कमेटी संपूर्ण झांसी के साथ मना रही है। ये शोभा यात्रा जो बारात की शोभा यात्रा है, ये लक्ष्मीबाई मंदिर से प्रारंभ होकर कोतवाली, मानिक चौक, सराफा बाजार, नरिया बाजार होते हुए गणेश मंदिर पर संपन्न होगी, जहाँ पर प्रतीकात्मक रूप से राजा रानी का विवाह होया। सिपाही के रूप में NCC की छात्राएं हैं, स्कूल विद्यालयों के घोष है, स्कूल की छोटी छोटी छात्राएं जिस तरह से बारात में सस्ते हैं, दुल्हन वेश में रानी उस तरह से सजी हुई हैं, स्कूल की अध्यापिकाएं और झांसी का जन जन सभी लोग एकत्रित आपको देख रहे हो, ये इस आकर्षण का केंद्र है।
11: इस शोभा यात्रा में NCC कैडेट्स, घोष दल, छात्र छात्राएं और सामाजिक संगठनों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इस शोभा यात्रा की विशेष आकर्षण छोटी बच्चियां रही, जो हाथों में कृपाण लेकर महारानी लक्ष्मीबाई की वेशभूषा में सजी दिखाई दी और कई बच्चों ने महाराज गंगाधर राव, तात्या टोपे और झलकारी बाई जैसे किरदारों की भूमिका निभाकर लोगों का मन मोह लिया। वहीं महिलाएं पारंपरिक मराठी परिधान में नजर आईं, जिन्होंने ढोल और पारंपरिक गीतों के साथ पूरे उत्साह से कार्यक्रम में भाग लिया। बारात के दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और नृत्य ने माहौल को जीवंत बना दिया और लोग मोबाइल कैमरों में इस ऐतिहासिक आयोजन को कैद करते नजर आए।
13: हम सभी लोग महारानी लक्ष्मीबाई और महाराजा गंगाधर राव की 184वीं शादी की वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं और ये बारात निकल रही है। आप देख ही रहे होंगे कितने जोर शोर के साथ, इसमें हमारे 50 NCC कैडेट्स हैं और इसमें करीब 60 हमारे घोष दल जो होता है वो है, बाकी स्कूल के स्टूडेंट है, सभी पूरा स्टाफ है और बहुत ही हम लोग इस फंक्शन को एंजॉय करते हैं हर साल।
11: गणेश मंदिर पहुंचने पर वैदिक मंत्रोच्चार और पारंपरिक रीति रिवाज के साथ महाराज गंगाधर राव और महारानी लक्ष्मीबाई का प्रतीकात्मक विवाह संपन्न कराया गया। दोनों ने एक दूसरे को फूलों का हार पहनाकर इस उत्सव को यादगार बना दिया। इस दौरान मंदिर परिसर जय भवानी और महारानी लक्ष्मीबाई अमर रहे के नारों से गूंज उठा। इस आयोजन में आम लोगों की मौजूदगी ने यह साबित कर दिया कि झांसी आज भी अपनी वीरांगना रानी और उनके गौरवशाली इतिहास को दिल में संजोए हुए है। झांसी से अजय झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
14: न्यूज पत्र आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार।
15: कारोबारी हफ्ते के तीसरे दिन भारतीय शेयर बाजार में बढ़त दर्ज की गई। बुधवार को 30 शेयर वाला BSE सेंसेक्स 117 अंकों की बढ़त के साथ 75,318 पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयरों वाला NSE निफ्टी 41 अंक चढ़कर 23,659 पर बंद हुआ। बुधवार को गोल्ड की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली। ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के मुताबिक 99.9% शुद्धता वाले 10 ग्राम सोने की कीमत 1,300 रुपए बढ़कर 1,64,900 रुपए पर पहुंच गई। वहीं चांदी की कीमतों में गिरावट देखी गई। 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 5,000 रुपए घटकर 2,66,000 पर पहुंच गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और वैश्विक संकट के कारण अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत बुधवार को और नीचे चली गई। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 13 पैसे की गिरावट के साथ 96.83 के रिकॉर्ड निम्न स्तर पर बंद हुआ।
14: न्यूज पत्र में हम खबरों के सफर को आगे बढ़ाएं, इससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस पत्र की हेडलाइंस।
16: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
17: ज्वाइन SRM ISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
14: प्रधानमंत्री मोदी और मेलनी ने लगाया पौधा। मेलनी को दिया भारत आने का न्योता। सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा प्रधानमंत्री मोदी का मेलनी को टॉफी वाले गिफ्ट का वीडियो। अब तक 12 करोड़ पार व्यूज। अयोध्या राम मंदिर में त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू। एआई कैमरों से हो रही निगरानी। नई सुरक्षा दीवार और वॉच टावर का भी निर्माण। चित्तौड़गढ़ के सावलिया सेठ को भक्त की अनोखी भेंट। भगवान को अर्पित किया 157 ग्राम चांदी से बना हार। सफल बाईपास ऑपरेशन के लिए मांगी थी मन। देवभूमि उत्तराखंड में धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा। बद्रीनाथ में 4.5 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन। केदारनाथ धाम पहुंचे करीब 7.25 लाख श्रद्धालु। मुंबई में समुद्री प्रदूषण कम करने की दिशा में बीएमसी की सराहनीय पहल। गेटवे ऑफ इंडिया और बटवार पार्क के पास मानव रहित इलेक्ट्रिक बोट की तैनाती। हर दिन 80 से 90 किलो कचरे का हो रहा सफाया। न्यूज पथ में खबरों के सफर को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ, यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोस को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं। इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको हैरान कर देंगे और कुछ आपको हंसने पर मजबूर।
18: इंटरनेट पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो छाया हुआ है जिसने देखने वालों के होश उड़ा दिए हैं और लोग इसे बार बार देख कर भी यकीन नहीं कर पा रहे। इस वीडियो में एक शख्स अपनी गर्दन से करीब 9000 किलो वजन की बस को खींचता नजर आता है, जिसे देखकर लोग उसे ह्यूमन क्रेन कह रहे हैं। ये कारनामा अरूबा के रहने वाले एडमंड मोलिना ने किया है, जिन्होंने करीब 20 मीटर तक इस भारी बस को अपनी गर्दन के सहारे खींचकर एक अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। उनके इस हैरान कर देने वाले स्टंट ने पुराने रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है और अब उनका नाम दुनिया के सबसे ताकतवर इंसानों में गिना जा रहा है।
19: मोदी जी, आप टेंशन मत लो, हम आपके साथ हैं और हम कोई फॉरेन ट्रिप नहीं जाते, हम तो सिर्फ नानी घर जाते
18: हैं। नन्ही बच्ची का ये वीडियो इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है, जिसने अपनी मासूमियत से नेटिजन्स को लोटपोट कर दिया है।
19: मोदी जी, आप टेंशन मत लो, हम आपके साथ हैं और हम कोई फॉरेन ट्रिप नहीं जाते, हम तो सिर्फ नानी घर जाते हैं।
18: देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देशवासियों से कुछ खास अपीलें की थी, ताकि देश का पैसा देश में ही रहे और घरेलू पर्यटन को बढ़ावा मिले। इस गंभीर मुद्दे पर जहां बड़े बड़े दिग्गज चर्चा कर रहे हैं, वहीं एक मासूम बच्ची ने इस पर ऐसा रिएक्शन दिया है कि लोग उसे बार बार देख रहे हैं।
19: हमारा नानी घर तो फॉरेन ट्रिप जैसा है, आप टेंशन मत लो, हम आपके साथ।
18: इसके बाद वो हंसते हुए जो वजह बताती है, उसने इंटरनेट की पब्लिक को लोटपोट कर दिया है।
19: मोदी जी, आप टेंशन मत लो, हम आपके साथ हैं और हम कोई फॉरेन ट्रिप नहीं जाते, हम तो सिर्फ नानी घर ही जाते। हमारा नानी घर तो फॉरेन ट्रिप जैसा है, आप टेंशन मत लो, हम आपके साथ हैं।
18: अमेरिका से एक ऐसा ही चौंकाने वाला वीडियो सामने आया, जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। यहाँ एक महिला ने अपने पालतू एक्सोलोटल के साथ टिक टैक टो खेला और नतीजे ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। वीडियो में दिख रहा है कि कैसे महिला ने अपने एक्वेरियम के शीशे को ही गेमिंग बोर्ड बना दिया। महिला ने मार्कर से शीशे पर ग्रिड बनाई और खेल शुरू किया। महिला ने सबसे पहले एक्स बनाया, लेकिन असली मजा तब आया जब एक्वेरियम के अंदर बैठा नन्हा एक्सोलोटल भी एक्शन मोड में आ गया। जैसे ही महिला अपनी चाल चलती, एक्सोलोटल तैर कर ग्रिड के किसी खास खाने के पास जाकर अपना चेहरा टिका देता।

0: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक छोटे बच्चे का मजेदार वीडियो देखकर लोग मुस्कुरा भी रहे हैं और उसकी बात से सहमत भी हो रहे हैं। वीडियो में बच्चा भीषण गर्मी में स्कूल जाने को लेकर अपनी नाराजगी मजाकिया अंदाज में जाहिर करता नजर आता है।
1: 40 डिग्री गर्मी में, कड़कती धूप में, पसीने से लथपथ हम बच्चे रोज स्कूल जाते हैं। अरे यार, हम बच्चों में दया करो।
0: वो मासूमियत से कहता है कि अगर वो कभी प्रधानमंत्री बना तो पूरी गर्मी के दौरान स्कूल बंद कर देगा और बच्चों पर थोड़ी दया करेगा।
1: हम बच्चों की तबीयत खराब हो जाएगी। जब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा ना, गर्मियों में स्कूल जाना बैन कर दूंगा। यू आर बेटर अंडरस्टैंड।
0: उसकी ये बेबाक बात और कॉन्फिडेंस लोगों को खूब पसंद आ रहा है। बच्चा जिस ईमानदारी और सादगी से अपनी बात रखता है वो इंटरनेट यूजर्स को काफी क्यूट लग रही है।
1: दया करो, हम बच्चों की तबीयत खराब हो जाएगी। जब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा ना, गर्मियों में स्कूल जाना बैन कर दूंगा।
2: न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी दिल्ली सरकार की नई पहल की, जो कि भगवान की खंडित मूर्तियों को ध्यान में रखकर की जा रही है। आपको बता दें कि दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने भगवान की खंडित मूर्तियों के लिए जगह जगह कलेक्शन सेंटर बनाने की घोषणा की। पुरानी और खंडित मूर्तियों के सम्मानजनक विसर्जन और रिसाइकलिंग के लिए पूरी पॉलिसी बनाई जाएगी। सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली वालों से कलेक्शन सेंटर खोलने के लिए जगह को लेकर सोशल मीडिया पर ही कमेंट में सुझाव मांगे। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा है कि लोग खंडित हो जाने के बाद अक्सर भगवान की मूर्तियों को पीपल के पेड़ के नीचे, नदी किनारे या फिर पार्कों और सड़कों पर छोड़ देते हैं। खंडित मूर्तियों को कहीं भी छोड़ने से न केवल धार्मिक भावनाएं आहत होती है, बल्कि स्वच्छता और पर्यावरण के लिए भी चिंता की बात है। इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ऐसी खंडित मूर्तियों के लिए कलेक्शन सेंटर स्थापित करेगी, जहां लोग उन मूर्तियों को सम्मानपूर्वक जमा कर सकेंगे। कलेक्शन सेंटर में जमा होने के बाद इन मूर्तियों को वैज्ञानिक तरीके से रिसाइकल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का प्रयास है कि आस्था का सम्मान भी बना रहे और पर्यावरण की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो। इसके लिए दिल्ली सरकार एक बड़ा वर्क प्लान तैयार कर रही है और नागरिकों से सुझाव भी मांग रही है। लोग अपने सुझावों में कलेक्शन सेंटर के लिए जगह और बेहतर करने के लिए क्या क्या कदम उठा सकते हैं, इस बारे में बता सकते हैं। जाहिर है भगवान की पुरानी और खंडित मूर्तियों के निस्तारण को लेकर दिल्ली सरकार की पहल बड़ी कारगर साबित हो सकती है और दिल्ली के तर्ज पर ये पहल दूसरे राज्यों में भी अपनाई जा सकती है। इस पहल को लेकर हमने दिल्ली के लोगों से बात की और उनकी राय जानी, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं कि सीएम रेखा गुप्ता का इस पहल को लेकर वीडियो संदेश।
3: वर्षों जिन मूर्तियों को हम अपने पूजा घर में भगवान के रूप में पूजते हैं, संभालते हैं, जब वो खंडित हो जाती है तो छोड़ आते हैं। कहीं पीपल के नीचे रखाते हैं तो कभी नदी में फेंकाते हैं, कभी सड़क किनारे, कभी पार्क के किनारे। कितना खराब लगता है, क्या करना चाहिए। दिल्ली सरकार की ओर से मैं करने जा रही हूँ इन खंडित मूर्तियों का कलेक्शन सेंटर। अलग अलग जगह पे ऐसे सेंटर बनाए जाएंगे जहाँ पे हमारी खंडित मूर्तियों को हम दे सकें, बाद में जिन्हें रिसाइकिल करके फिर से उनको किसी यूटिलिटी की चीज में कन्वर्ट किया जाए। आपको ये आइडिया कैसा लगा, कहाँ कहाँ ये सेंटर होने चाहिए और इसमें क्या कर सकते हैं, आप अपने सुझाव मुझे कमेंट करके बताइए। दिल्ली सरकार इसके ऊपर एक विस्तृत योजना बना करके हमारे इष्ट देव, हमारे भगवानों का ये जो अपमान होता है, इसको बंद करना चाहते
4: हैं। भी हम लोग जो हमारा पार्क होता है या गमले होते हैं घर में, हाँ, उन्हीं में डाल लेते हैं।
5: लेकिन अब दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि आप लोग जगह बताएं, सजेशन मंगाएं, ऐसा जगह बना दिया जाएगा जहाँ भी खंडित मूर्तियाँ होंगी उसको डाल सके।
4: उसके लिए कोई ऐप ऐसी बने ना, जो डोर टू डोर इलाके वाइज आए और वहाँ से सामान को एकत्रित करे।
6: जो जितनी मूर्ति ले रहे हो खंडित, उन्हें एक मतलब एक जगह होनी चाहिए जिनकी उनके लिए जहाँ पर रख सके। ये तो बहुत अच्छा कदम है, इससे खंडित मूर्ति पामो में नहीं जाएंगी, नहीं गलत सलत जगह पहुँचेंगी। और हर गलत गंदी गंदी जगह घेर देते हैं, नाले में घेर देते हैं मूर्तियों को, खंडित मूर्तियों को। तो इससे बढ़िया चीज है, कदम उठाया, अच्छा कदम उठाया सरकार से, अच्छा कदम है।
7: मूर्ति रखने में तो बहुत परेशानी होती है।
5: कहाँ आप लोग डालते
7: हैं? हम तो यमुना नदी में डालते हैं।
5: तो क्या इसके लिए जगह होना चाहिए, आपका क्या कहना है?
7: होनी चाहिए जगह तो इसकी।
5: तो दिक्कत होती है आप लोगों को खंडित मूर्ति
7: इधर उधर डालते तो दिक्कत ही होती है।
8: जगह बनानी चाहिए, पर लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि जिनकी पहले घर पे लाके आप इतनी कदर कर रहे हो, ऐसे लोगों को भी उस पर सोचना चाहिए कि उनको इस तरह खंडित नहीं करनी चाहिए।
5: तो सरकार अगर जगह बनाती है तो कैसा कदम रहेगा?
8: नहीं, कदम अच्छा है, पर उस जहाँ पे फिर वो रखे जाए तो वहाँ जगह पे भी सरकार को करना पड़ेगा कि वहाँ भी संभाल अच्छे से हो।
7: वो दिक्कत है कि जगह ही नहीं है, कहीं पे भी लोग
1: कहीं पे भी छोड़ देते हैं और पेड़ों के नीचे रख देते हैं, हर जगह छोड़ देते हैं पार्क वगैरह में, और वहाँ पे फिर वेस्ट ही होती है, लोग बाग मतलब गलत तरीके से भी यूज करते हैं पार्क वगैरह।
5: तो आप अगर सरकार ने जो कहा उसके लिए जगह बनाएंगे तो इस पर कैसा कदम है, क्या करिएगा?
1: बहुत अच्छी बात है, अच्छा ही रहेगा, लोग मतलब साफ सुथरा भी रहेगा और जगह जगह जो मूर्ति होती है सेफ, मतलब क्योंकि भगवान का अपमान कर रहे हो तुम जगह जगह फेंक के मूर्तियाँ, तो उसके लिए एक जगह बनाई जाएगी तो बहुत अच्छी बात है।
2: हॉरर फिल्म खेती का फर्स्ट लुक आया सामने। इसके साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चले फिल्मी मोड पर।
9: जैकी श्रॉफ और शरद केलकर स्टारर फिल्म खेती का फर्स्ट लुक सामने आ गया है। इस हॉरर फिल्म के पोस्टर में एक खेत को दिखाया गया है जिसके पीछे एक डरावना और रहस्यमय व्यक्ति की झलक नजर आ रही है। इस मोशन पोस्टर के बैकग्राउंड में एक डरावनी और रहस्यमय साउंड भी है। हारिस इम्तियाज खान लिखित और निर्देशित इस फिल्म में जैकी श्रॉफ और शरद केलकर के अलावा नेहा सरगम, वीरेंद्र सक्सेना और शादी चौधरी भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। साउथ के सुपरस्टार जूनियर एनटीआर के 43वें जन्मदिन के मौके पर उनकी अपकमिंग फिल्म ड्रैगन के मेकर्स ने इसकी झलक शेयर की है। फिल्म ड्रैगन के फर्स्ट ग्लिम्स में दिखाया गया है कि अंग्रेज भारत में आए तो मसालों और स्टील का कारोबार करने थे, लेकिन यहाँ उन्होंने अफीम और फिर हेरोइन की खेती शुरू कर दी। यहाँ हेरोइन उगाकर वो पूरी दुनिया में इसका कारोबार करते थे और जब वो यहाँ से गए तो उसके बाद यहाँ हेरोइन के कारोबार के लिए संघर्ष होता रहा। फर्स्ट ग्लिम्स में जूनियर एनटीआर एक विलन के रूप में नजर आ रहे हैं। ड्रैगन एक पैन इंडिया फिल्म है। एक्शन से भरपूर होने वाली इस फिल्म का निर्देशन प्रशांत नील कर रहे हैं। ये फिल्म अगले साल यानी 2027 में 11 जून को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। कुणाल खेमू एक्टिंग के अलावा डायरेक्शन की दुनिया में भी कदम रख चुके हैं। उनकी निर्देशित फिल्म वाइब की रिलीज डेट सामने आ चुकी है। फिल्म को लेकर शेयर किए गए पोस्टर में इसकी रिलीज डेट भी लिखी हुई है, जिसके मुताबिक ये फिल्म 18 सितंबर को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। इस फिल्म से प्रीति जिंटा बड़े पर्दे पर वापसी कर रही हैं। फिल्म में कुणाल खेमू और प्रीति जिंटा के अलावा वंशिका धीर और स्पर्श श्रीवास्तव भी नजर आएंगे। शाहिद कपूर और कृति सनन स्टारर फिल्म कॉकटेल 2 का नया गाना माशूका रिलीज हो चुका है, जिसमें दोनों की मजेदार और रोमांटिक केमिस्ट्री देखने को मिल रही है। मस्ती भरी केमिस्ट्री के अलावा डांस मूव्स भी इस गाने को खास बना रहे हैं। इस गाने को अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखा है और कंपोज प्रीतम ने किया है। राघव चैतन्य, महमूद और रुआ के ने गीत को अपनी आवाज दी है। 2012 में आई फिल्म कॉकटेल के सीक्वल कॉकटेल 2 19 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
2: और अब रुख करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती हैं। आज बात दिल्ली से सटे गाजियाबाद की एक प्रतिभावान बेटी की, जिसका अमेरिका की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में न सिर्फ पढ़ने का मौका मिला है बल्कि उसे बड़ी स्कॉलरशिप भी मिली। खास बात यह है कि इस लड़की का जन्म अमेरिका में ही हुआ था लेकिन पढ़ाई लिखाई भारत में हुई और अब एक बार फिर उसे अमेरिका में रहने का मौका मिला है, जो उसकी प्रतिभा और मेहनत का नतीजा है।

0: गाजियाबाद की जाह्नवी गोयल ने 10वीं के बोर्ड एग्जाम में 99% अंक हासिल किए। इसके बाद कड़ी मेहनत से 12वीं में 96% अंक लेकर आईं। और फिर जाह्नवी ने न सिर्फ अमेरिका की प्रतिष्ठित डेनिसन यूनिवर्सिटी में प्रवेश हासिल किया, बल्कि इन्हें इकोनॉमिक्स एंड ग्लोबल कॉमर्स में डबल मेजर कोर्स के लिए करीब 3 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप भी मिली है। महज 17 साल की जाह्नवी हैं और अपनी मेहनत प्रतिभा के दम पर ये मुकाम उन्होंने हासिल किया है, जिस पर आज घर वाले ही नहीं बल्कि पूरा शहर गर्व महसूस कर रहा है।
1: क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होनी चाहिए, इसका कुछ भी क्राइटेरिया होता है?
2: क्राइटेरिया तो नहीं, पर हाँ वो देखते हैं कि लाइक आपने स्टडीज को कैसे मैनेज किया, लाइक 90% से ऊपर मार्क्स को अच्छा माना जाता है वहाँ पे। और एक्स्ट्रा करिकुलर में जो भी आप अपनी तरफ से करें, बेसिकली कंसिस्टेंसी देखते हैं कि वो आपने लाइक शुरू से लाइक कितने साल से, ये नहीं कि आपने 1-2 महीने करा और उसे छोड़ दिया। आपको उसे कंसिस्टेंटली करना पड़ता है 1-2 साल तक, तभी उसे उसका कोई मायना है उसमें। 9th में मेरे 95% थे और 10th में 99% और 11th में मेरे अराउंड 93% थे और 12th में मेरे 96.2% रहे।
1: तो इस परसेंटेज को मेंटेन करने के लिए कितना डेडिकेशन आपको देना पड़ा, कितने घंटे की पढ़ाई होती थी?
2: जी, मेरे दिन में 5-6 घंटे पढ़ाई रहती थी। और लाइक ये था कि मैथ्स जैसे सब्जेक्ट जो जिनमें कंसिस्टेंसी की बहुत ज़रूरत होती है, उन्हें मैं रोज़ पढ़ती ही थी बाकी सब्जेक्ट्स के साथ।
0: गुड न्यूज टुडे से बातचीत में जाह्नवी ने बताया कि विदेश में पढ़ाई करना उनका सपना रहा, जिसके लिए उन्होंने काफी पहले से तैयारी शुरू कर दी थी। पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने कम्युनिकेशन स्किल्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पर भी ध्यान दिया। साथ ही जाह्नवी ने बताया कि उन्होंने अमेरिका की 20 नामी यूनिवर्सिटीज में आवेदन किया था, जिनमें 19 यूनिवर्सिटीज ने उन्हें स्कॉलरशिप के साथ एडमिशन का ऑफर किया, लेकिन उन्हें डेनिसन यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप और कोर्स प्रोफाइल बेहतर लगी, इसलिए उन्होंने वहीं एडमिशन लेने का फैसला लिया।
1: जाह्नवी का बचपन का सपना था कि वो US जाकर अपनी पढ़ाई करेगी। अब इसके लिए तैयारी आप ये नहीं कह सकते कि 6 महीने पहले शुरू हुई, 1 साल पहले शुरू हुई। ये तैयारी तो असल में बचपन से ही शुरू हो गई थी। जाह्नवी मेरे साथ में है। जाह्नवी, बहुत बधाई आपको, और आज सब प्राउड हैं कि आपने इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल किया। हालांकि अभी बहुत आगे जाना है, लेकिन इसके लिए भी कैसी तैयारी रही? लोग पूछते हैं कि क्या करना पड़ता है, कितने घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है, क्योंकि सुनने में लगता है इम्पॉसिबल सी चीज़ है, लेकिन आपने पॉसिबल करके दिखाया है। प्रोसेस क्या रहा, कैसे तैयारी करते थे?
2: जी, जैसा आपने कहा कि लाइक काफ़ी पहले से ही तैयारी शुरू कर दी थी इसमें, क्योंकि आपके 9th से 12th तक के पूरे नंबर लगते हैं, तो 9th में ऑफ कोर्स मैंने सारी तैयारियां शुरू कर दी थी, अपने मार्क्स को इम्प्रूव करा और एक्स्ट्रा करिकुलर्स पे फोकस किया। जैसे आज के दिन में मिडिल स्कूल के बच्चों को ट्यूशन्स प्रोवाइड कराती हूँ और मैं एक प्रोफेशनल सोशल मीडिया मैनेजर भी हूँ। ऐसे ही मैंने काफ़ी एक्स्ट्रा करिकुलर्स में पार्ट लिया, मैं अपने स्कूल की स्टूडेंट काउंसिल का भी पार्ट रही हूँ। तो ये सारे फैक्टर्स को अगर हम देखें तो ये मिलके मेरे इस अचीवमेंट का पार्ट हैं। मैंने 20 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था, जिसमें मुझे 19 यूनिवर्सिटीज़ में अच्छी स्कॉलरशिप्स के साथ ऑफ़र आया। पर डेनिसन में एक वो बात थी, लाइक जब मैंने उसके बारे में रिसर्च कर रही थी, मैंने उसका कैंपस देखा, तो मुझे लगा कि हाँ यही वो जगह है जहाँ पे मैं अपने नेक्स्ट 4 साल बिताना चाहूँगी।
0: जाह्नवी पढ़ाई के साथ ही कई कंपनियों के लिए सोशल मीडिया मैनेजर के तौर पर भी काम कर चुकी हैं और समाज सेवा में रुचि रखने के कारण वो एक NGO के साथ भी काम कर चुकी हैं। जाह्नवी की माँ कहती हैं कि वो चाहती थी कि बेटी कथक की पढ़ाई करे, लेकिन जाह्नवी ने हमेशा पढ़ाई को ही प्राथमिकता दी।
3: सबसे बड़ा फैक्टर उसका डेडिकेशन ही है, जो उसने पढ़ाई को कभी भी पीछे नहीं रखा। मतलब पढ़ाई उसके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होती थी हमेशा, तो चाहे कुछ भी हो जाए पर वो पढ़ाई कभी नहीं छोड़ती थी, डेली बेसिस पे उसकी पढ़ाई रहती थी। डांस भी बहुत अच्छा करती थी, तो मैंने उसको बोला कि कथक मैं प्रोफेशनल तुम्हें स्टार्ट करा देती हूँ, तो उसने बोला कि नहीं मम्मी, वो 6 साल का कोर्स है और अगर मैं 6 साल उसको करूँगी तो मेरी पढ़ाई पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा, इसलिए मैं कथक नहीं करूँगी। तो पढ़ाई उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी रही हमेशा।
0: जाह्नवी बताती हैं कि उनकी इस उपलब्धि में माता पिता और स्कूल वालों का अहम योगदान रहा है। जाह्नवी की इस कामयाबी से परिवार में खुशी का माहौल है, उनके दोस्त और शिक्षक इस उपलब्धि को लेकर उत्साहित हैं। जाह्नवी के पिता मनोज गोयल बताते हैं कि अगर स्कॉलरशिप नहीं मिलती तो उनके लिए जाह्नवी को अमेरिका भेजना नामुमकिन रहता।
4: शायद हम लोग उसको अफोर्ड ही नहीं कर पाते, 3.5 करोड़ रुपए किसी के लिए भी 3.5 करोड़ रुपए अरेंज करना एक आम इंसान के लिए इतना पॉसिबल नहीं है. सो शायद हम यूएस भेजने की सोच नहीं पाते अगर यह स्कॉलरशिप नहीं होती. स्कॉलरशिप होने से ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा कि जो इसकी पूरी ट्यूशन फ़ी है, हॉस्टल फ़ी है, एवरीथिंग इज़ कवर्ड इन दैट. और हम लोगों को सिर्फ जो करना है वो थोड़ा मील्स या फिर बुक्स के लिए वी हैव टू सपोर्ट हर एंड शी विल हैव अदर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द ऑन कैंपस जॉब आल्सो. तो जॉब कैंपस में भी वो कुछ अपने कुछ इस तरह की जॉब्स होती हैं वेयर शी कैन अर्न सम मनी फॉर हरसेल्फ. तो वो से आई थिंक वी विल बी एबल टू बैलेंस इट आउट.
0: दिलचस्प बात यह है कि जानवी का जन्म अमेरिका में हुआ था और उनके पास यूएस सिटीजनशिप भी है. जानवी अगले हफ्ते अमेरिका रवाना होंगी जबकि उनकी क्लासेस अगस्त में शुरू होंगी. जानवी की उपलब्धि अब गाजियाबाद के कई छात्रों के लिए प्रेरणा बन गई है. गाजियाबाद से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे.
5: ब्रेक प्लाजा पर हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपको ही मजा आएगा. ब्रेक के बाद लिए चलेंगे खेल चक्कर.
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी.
7: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
8: Turn it up with today's hits on TuneIn. We're bringing you the songs everyone's talking about, all in one place. Hear the biggest tracks right now from today's top artists. Day or night, today's hits keeps the energy going. Start listening now. Just search today's hits or ask your device to play today's hits on TuneIn.
9: तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
11: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
5: अविश्वास में विश्वास बसता है
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
10: गुड न्यूज टुडे.
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
12: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच।
13: गेल के छक्कों का रिकॉर्ड तोड़ने को लेकर कुंबले का वैभव सूर्यवंशी पर भरोसा। खेल जगत से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चले खेल चक्कर।
14: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान अनिल कुंबले का मानना है कि 15 साल के विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी में क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ने की काबिलियत है। IPL के एक सीजन में सबसे ज्यादा 59 छक्के लगाने का रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम है। गेल ने 2012 के सीजन में ये रिकॉर्ड बनाया था, जबकि वैभव मौजूदा IPL सीजन यानी 2026 में अब तक 53 छक्के जड़ चुके हैं और अब गेल के रिकॉर्ड से सिर्फ 6 छक्कों से ही पीछे हैं। कुंबले ने इसी रिकॉर्ड का जिक्र करते हुए कहा है कि राजस्थान रॉयल्स का अभी एक और लीग मैच बाकी है, उसके बाद प्लेऑफ होंगे। अगर राजस्थान रॉयल्स जीतती है तो और मौके मिलेंगे। कुंबले ने आगे कहा कि उन्हें लगता है कि वैभव सूर्यवंशी गेल का रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास रचेंगे। IPL 2026 के 65वें मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मैच है। कोलकाता की ईडन गार्डन्स में KKR ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए यह मुकाबला KKR के लिए करो या मरो जैसा है, जबकि मुंबई इंडियंस की टीम पहले ही प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में मानव सुधार के भारत के क्रिकेट टीम में चुने जाने को लेकर जश्न का माहौल है। मानव सुधार का चयन अफगानिस्तान के खिलाफ चुनी गई भारतीय टीम में हुआ है। पहली बार भारत की राष्ट्रीय टीम में जगह मिलने को लेकर उनके घर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। लोग एक दूसरे को रंग लगाकर जश्न मनाते नजर आए। मानव सुधार की टीम में चुने जाने को लेकर परिवार से लेकर कोच और श्रीगंगानगर जिला क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से बेहद खुशी जताई गई है।
13: इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देख रहे हैं गुड न्यूज।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ। एक
15: कौन सा अहंकार करने से धन का बड़ा नुकसान होता है, कौन सा अहंकार करने से सद्गुण वापस चले जाते हैं, और कौन सा अहंकार करने से जीवन में अपयश मिलता है? क्या है अहंकार का जीवन पर प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
16: Hot Mics now streaming on TuneIn, your go-to show for explosive sports showdowns, bare-knuckle politics, raw Hollywood gossip, tech power plays, and pop culture chaos, hosted by yours truly, Billy Bush. Want to catch the latest episodes on your connected device? It's easy. One, set a reminder with your smart speaker by saying, remind me to listen to Hot Mics, Monday through Thursday at 12 p.m. Eastern, 9 a.m. Pacific. Two, when it's time, just say, play Hot Mics on TuneIn.
17: and you're in. For unfiltered takes, A-list guests, and the stories everyone else is too scared to touch.
18: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
7: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
5: विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
11: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
19: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. Thank God I get to wait. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
1: Hop on board. We're going for a cruise with some easy listening. Feel the wind in your hair and bounce to the beat of the waves with Yacht Rock Classics from artists like Hall & Oates, Steely Dan, Loggins & Messina, and more. Only smooth sailing ahead with songs that help you get away. Just search Sailing or tell your device to play Sailing on TuneIn.
2: News today. Achhi khabar, sachi khabar.
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं,

0: अहंकार करने से धन का बड़ा नुकसान होता है? कौन सा अहंकार करने से सद्गुण वापस चले जाते हैं? और कौन सा अहंकार करने से जीवन में अपयश मिलता है? क्या है अहंकार का जीवन पर प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
4: रोम में पीएम मोदी और मेलोनी लगाया पौधा, मेलोनी को दिया भारत आने का न्योता। सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा पीएम मोदी और मेलोनी का टॉफी वाले गिफ्ट का वीडियो, अब तक 12 करोड़ पार व्यूज। पीएम मोदी के नाम एक और सर्वोच्च सम्मान, रोम में कृषि संगठन ने किया सम्मानित, संयुक्त राष्ट्र की FAO ने एग्रीकोला मेडल से नवाजा। अयोध्या राम मंदिर में त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू, AI कैमरों से हो रही निगरानी, नई सुरक्षा दीवार और वॉच टावर का भी निर्माण। चित्तौड़गढ़ के सावलिया सेठ को भक्त की अनोखी भेंट, भगवान को अर्पित किया 197 ग्राम चांदी से बना हार्ट, सफल बाईपास ऑपरेशन के लिए मांगी थी मन्नत। देवभूमि उत्तराखंड में धूमधाम से जारी चार धाम यात्रा, बद्रीनाथ में 4.5 लाख से अधिक भक्तों ने किए दर्शन, केदारनाथ धाम पहुंचे करीब 7.25 लाख श्रद्धालु।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबर।

नमस्कार, मैं हूं शुभम सिंह। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां आज हम बात कर रहे हैं हीट वेव की। मई में मौसम ने तीखे तेवर अपनाए और जल्द ही यह हाल है कि लगभग पूरा उत्तर भारत हीट वेव की चपेट में है। दिल्ली एनसीआर में पारा 45 डिग्री के आसपास जा चुका है और यूपी में कुछ एक जगहों पर तापमान हाफ सेंचुरी की तैयारी में है। दोपहर तो छोड़िए, सुबह भी घर से निकलना सदा से कम नहीं है। मुश्किल यह है कि गर्मी के इस प्रचंड रूप से फिलहाल निजात भी नहीं मिलने वाली। आने वाले दिन भी अग्नि परीक्षा के हैं, यानी हीट वेव से सावधान रहना होगा। आज आपको दिल्ली समेत यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दूसरे इलाकों का हाल दिखाएंगे। साथ ही साथ लेकर चलेंगे कश्मीर, जहां ऊपरी इलाकों में बर्फ की चादर बिछी है और इसीलिए मैदानी इलाकों से सैलानी वादी का रुख कर रहे हैं। झुलसाने वाली गर्मी के साथ कश्मीर की दिलकश तस्वीरें भी आज आपको दिखाएंगे। शुरुआत करते हैं दिल्ली एनसीआर से, जो इस वक्त भीषण गर्मी की चपेट में है। सुबह से ही तेज धूप और गर्म हवाएं लोगों को बेहाल कर रही हैं। जेठ का महीना अपने प्रचंड रूप में है। राजधानी में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच गया है। आने वाले दिनों में भी हालात नहीं बदलने वाले, क्योंकि 20 से 26 मई तक हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट है। क्या है गर्मी का असर और हीट वेव से बचने के लिए क्या करना चाहिए, आइए समझते हैं इस रिपोर्ट में।

0: दिल्ली में सूरज निकलते ही सड़कों पर तपिश का ऐसा कहर है मानो आसमान से अंगारे बरस रहे हो। हवा है मगर उसका एहसास आग जैसा है। घर में रहना दूभर है, घर से बाहर निकलना तो सजा से कम नहीं। उत्तर भारत के साथ राजधानी और NCR इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है। सुबह के वक्त ही तेज धूप लोगों को बेहाल कर रही है, जबकि दोपहर तक हालात और भयावह हैं।
1: मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों के लिए दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है, यानी कि हीट वेव कंडीशंस दिल्ली

0: अस्पताल हैं और मेडिकल कॉलेज में भी यही व्यवस्था सुनिश्चित रहेगी।
1: आसमान से बरसती आग से इंसान ही परेशान नहीं, चिंता जानवरों की भी है। जब पारा 40 पार हो तो लखनऊ के चिड़ियाघर में बेजुबानों की बेचैनी देखी समझी जा सकती है। इनको राहत मिले इसलिए जू प्रशासन ने अपनी सारी ताकत झोंक दी है। ताज़ा फलों और सब्जियों के साथ जानवरों के लिए नया डाइट प्लान तैयार किया गया है। यूपी हो या एमपी, मई की इस प्रचंड गर्मी में पूरा उत्तर भारत तप रहा है। इंदौर में भी गर्म हवा है और आग उगलता आसमां। लोगों को कुछ राहत मिले इसलिए कलेक्टर कार्यालय परिसर में सोलर एनर्जी से चलने वाली खास इनोवेटिव बेंच लगाई गई है। प्रचंड गर्मी में ये छोटा प्रयोग बड़ी राहत दे रहा है।
2: जो लोग बाहर निकले भी हैं वो खुद को गर्मी से बचाने की जुगाड़ करते हुए यहाँ पे साफ तौर पे देखे जा सकते हैं। जो लोग बाहर निकल रहे हैं वो या तो ठंडा पानी पी रहे हैं, शिकंजी पी रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं। कोशिश बस यही है कि इस तेज गर्मी में खुद को बचा सकें। तो भोपाल में भी तापमान जो है वो करीब 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच चुका है। इस तरीके से गर्मी से अपने आप को बचा रहे हैं।
3: गर्मी इन द सेंस देख ही रहे, मेरे हाथ में आइसक्रीम ही है, क्योंकि गर्मी हाथ में आप क्या ही कर सकते हैं, आइसक्रीम ही खा सकते हैं या फिर खुद को ठंडे चीज से ही बचा सकते हैं आप।
4: ऐसे पब्लिक प्लेसेस पर इस प्रकार के एक इनोवेटिव बेंच बनाई गई है, जिस बेंच पर ऊपर से फैन लगा होता है और मिस्ट स्प्रे होता है और इससे जो आदमी उस पर बैठता है उनको एक अच्छा मतलब शीतल एहसास होता है। वो अभी आज उसको पायलट के रूप में कलेक्ट्रेट परिसर में उसको स्थापना की गई है। ये अगर ये सफल प्रयोग रहेगा तो इसको हम लोग अन्य जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ भी इस तरह का रेप्लिकेट करने का प्रयास करेंगे।
1: इस वक्त राहत की खबर यह है कि मॉनसून वक्त से 4-5 दिन पहले केरलम पहुंचने वाला है, लेकिन उत्तर, मध्य, पूर्व और पश्चिम भारत में तो बादलों की एंट्री में अभी देर है। मौसम विभाग का मानना है कि अगले 7 दिन उत्तर भारत में अग्नि परीक्षा की तरह है।
5: अगर हम स्टार्ट करें हिमालय से, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में भी आने वाले 2-3 दिन हीट वेव कंडीशंस बना रहेगा। उसके बाद वहाँ एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से थोड़ा कमी आ जाएगी तो हीट वेव नहीं है। लेकिन अगर प्लेन्स की बात करें, स्टार्टिंग फ्रॉम पंजाब, हरियाणा, इवन NCR, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और सेंट्रल इंडिया, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन सारी जगहों में हीट वेव टू सीवियर हीट वेव कंडीशंस आने वाले ऑलमोस्ट 7 दिन बने रहेगी। और स्पेसिफिकली अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में हमने यहाँ रेड अलर्ट दिया हुआ है, वो 3 दिन के लिए हमारा रेड अलर्ट है। वहाँ इवन कुछ जगहों में जो टेम्परेचर्स हैं वो 47 से ज़्यादा भी क्रॉस कर चुका है।
1: मई में गर्मी ने जिस तरह रौद्र रूप दिखाया है, अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में क्या हाल रहने वाला है। इस दौरान हीट वेव से बचने का बस एक ही उपाय है कि सावधानी बरती जाए, खूब पानी पिएं, खीरा, ककड़ी, तरबूज जैसे फल खाएं। जब तक मौसम मेहरबान नहीं होता, दोपहर के वक्त घर से बाहर निकलना मुनासिब नहीं। हाँ, अगर जरूरी हो तो छाता, टोपी या गमछे का इस्तेमाल करें। राजस्थान से रिदम जैन, रायबरेली से समर्थ श्रीवास्तव और भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: मैदानी इलाकों में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच लोग राहत के लिए पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। कश्मीर के ऊपरी इलाके बांदीपुरा में बर्फ जमी है, जहां दिल्ली, राजस्थान और यूपी से पहुंचे सैलानी सुकून महसूस कर रहे हैं। दूसरी तरफ उत्तराखंड के चमोली में बारिश और ओलावृष्टि से तापमान गिरा है। हालांकि हिमाचल प्रदेश में हालात अलग हैं, शिमला, धर्मशाला और सोलन जैसे शहरों में असामान्य गर्मी दर्ज की जा रही है। देखिए रिपोर्ट।

जब गर्मी सताती है तो पहाड़ याद आते हैं और सुकून के लिए सैलानी खींचे चले आते हैं। मैदान में तो मई आग बरसा रही है, पर वादी में बर्फ बिछी है। 40 डिग्री वाले टॉर्चर से जो निकलकर आए हैं, उनके लिए ये नजारा वाकई जन्नत से कम नहीं। बर्फ पर सो गए, बर्फ ओढ़ लिया। कभी खेला, कभी फुर्सत से बैठ गए।

0: राजस्थान, दिल्ली, यूपी और दूसरे इलाकों से लोग कश्मीर के बांदीपुरा चले आए हैं, जहां बर्फ से ढके पहाड़, ठंडी हवाएं और मनमोहक नजारे लोगों को राहत का एहसास करा रहे हैं। वैसे तो कश्मीर हमेशा से अपनी खूबसूरती, झीलों और बर्फीली चोटियों के लिए मशहूर रहा है, लेकिन इस बार हालात कुछ अलग है। बढ़ती गर्मी ने पर्यटन का रुख बदल दिया है। अब लोग सिर्फ मशहूर जगहों तक सीमित नहीं, बल्कि सीमावर्ती और कम चर्चित इलाकों की तरफ भी पहुंच रहे हैं। बांदीपुरा का रजदान पास इन दिनों खास आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। करीब 12,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद इस क्षेत्र में मई महीने में भी बर्फ जमी हुई है, और यही वजह है कि दिल्ली, जयपुर और चंडीगढ़ जैसे शहरों से आने वाले पर्यटक यहां पहुंचकर राहत महसूस कर रहे हैं।
1: देश में बढ़ रही गर्मी से नजात पाने के लिए लोग अब कश्मीर का रुख कर रहे हैं। पिछले साल पहलगाम आतंकी हमले के बाद कश्मीर में सबसे ज्यादा प्रभावित यहां का पर्यटन उद्योग हुआ था, लेकिन अब की बार पर्यटन उद्योग बूम पर है। कश्मीर के हर पर्यटन स्थल पर हजारों की तादाद में देश के अलग अलग हिस्सों से पर्यटक पहुंच रहे हैं और कश्मीर के सुहाने मौसम का मजा ले रहे हैं।
0: राजस्थान से आए हैं, करीब 45 डिग्री तापमान झेल कर आए हैं। हैरत की बात नहीं कि ये माहौल, ऐसा मौसम उन्हें सुकून दे रहा है। कश्मीर के ऊंचे इलाकों में बर्फ है तो उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बारिश हो रही है। ये तस्वीर चमोली की है, जहां इस वक्त चार धाम यात्रा चल रही है, और मौसम का मिजाज देखिए, झमाझम बरसात देखिए, जैसे पूरा इलाका पानी से सराबोर है। बारिश की बूंदों के साथ ओले भी गिरे और पारा लुढ़क गया। हालांकि सभी पहाड़ी राज्यों में एक जैसे हालात नहीं। कश्मीर में जहां मौसम ठंडा है, तो वहीं हिमाचल प्रदेश में गर्मी ने लोगों को हैरान कर दिया है। आमतौर पर ठंडे रहने वाले पहाड़ी शहरों में इस बार मई महीने में असामान्य तापमान दर्ज किया जा रहा है। शिमला, मनाली, धर्मशाला और सोलन जैसे इलाकों में दिन के साथ रातें भी गर्म महसूस हो रही है। शिमला में हालात सबसे ज्यादा चौंकाने वाले हैं। यहाँ न्यूनतम तापमान 20.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो शिमला के हिसाब से बहुत ज्यादा है। धर्मशाला, कांगड़ा और सोलन में लू का 3 दिन का येलो अलर्ट है। एक तरफ कश्मीर की बर्फीली वादियां लोगों को राहत दे रही हैं, तो दूसरी ओर हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य भी गर्मी की मार झेल रहे हैं। चमोली से कमल नयन सिलोड़े के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: भीषण गर्मी पर हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे, क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार।
3: Whatever you're in the mood for, TuneIn has the music to match. From today's hits,
4: somebody save me,
3: to timeless favorites,
4: and life is like a song,
3: and new discoveries,
4: so much more than a history. Wake up!
3: It's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
5: Music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits.
6: Yeah, I tried to.
5: But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
6: सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
1: Hi, I'm Kingston Bagpues. Some people say Talk Sports is possessed by the Premier League, but that's just not cricket. We're also charmed by the Champions League, fanatical about the FA Cup, and rampantly rabid about rugby, Formula One, and boxing. Talk Sports, the brashest, boldest, best soccer and sports opinion anywhere in the known universe. Live from London, England, Europe on TuneIn.
2: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
5: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
6: रोम में पीएम मोदी और मेलोनी ने लगाया पौधा। मेलोनी को दिया भारत आने का न्योता। सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा पीएम मोदी और मेलोनी का ट्रॉफी वाले गिफ्ट का वीडियो, अब तक 12 करोड़ व्यूज पार। पीएम मोदी के नाम एक और सर्वोच्च सम्मान, रोम में कृषि संगठन ने किया सम्मानित। संयुक्त राष्ट्र की FAO ने एग्रीकोला मेडल से किया सम्मानित। अयोध्या में राम मंदिर में त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू, AI कैमरों से होगी निगरानी, नई सुरक्षा दीवार और वॉच टावर का भी निर्माण। चित्तौड़गढ़ के सावलिया सेठ को भक्त की अनोखी भेंट, भगवान को अर्पित किया 197 ग्राम चांदी से बना हार्ट, सफल बाईपास ऑपरेशन के लिए मांगी थी मन्नत। देवभूमि उत्तराखंड में धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा, बद्रीनाथ में 4.5 लाख से अधिक भक्तों ने किए दर्शन, केदारनाथ धाम पहुंचे करीब 7.25 लाख श्रद्धालु।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
6: कल सुबह 11 बजे खुलेंगे द्वितीय केदार, भगवान मध्य महेश्वर के कपाट, भगवान मध्य महेश्वर की डोली गोंडार गांव पहुंची। अंतिम रात्रि प्रवास गोंडार में होगा संपन्न, भक्तों की भारी भीड़, भगवान मध्य महेश्वर की डोली यात्रा में शामिल। रुद्रप्रयाग में धार्मिक उत्साह चरम पर, डोली ने ओमकारेश्वर से शुरू की थी यात्रा, कल सुबह धाम के लिए रवाना होगी डोली। कल मध्य महेश्वर धाम में गूंजेगी पूजा की घंटियां, भक्तों में भारी श्रद्धा और उत्साह, ओंकारेश्वर से धाम तक भक्ति का सफर। हिमालयी रास्तों में गूंज रहा जयकारा, भक्तों ने डोली पर बरसाए फूल, कपाट खुलते ही शुरू होगा पूजा अर्चना का दौर। चारधाम यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब, 32 दिनों में करीब 17 लाख से अधिक भक्तों ने की चारधाम यात्रा। केदारनाथ में कल 30,000 से अधिक भक्तों ने किए दर्शन पूजन, अब तक 7 लाख के पार श्रद्धालुओं ने केदारनाथ धाम में लगाई हाजिरी। बद्रीनाथ धाम में 21,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने की पूजा पाठ, अब तक करीब 4.5 लाख से अधिक भक्तों ने किए बाबा बद्रीनाथ के दर्शन। यमुनोत्री और गंगोत्री में उमड़ा आस्था का सैलाब, दोनों जगहों पर 5.5 लाख से अधिक भक्तों ने किए दर्शन पूजन। चारधाम यात्रा के दौरान अब तक 1,56,041 वाहनों की आवाजाही की गई दर्ज, सबसे अधिक 54,832 वाहन पहुंचे बद्रीनाथ धाम। उज्जैन में बाबा महाकाल की उतारी गई भस्म आरती, श्रद्धालुओं ने लगाए हर हर महादेव के जयकारे। बाद महाकाल का अभिषेक के बाद किया गया भव्य दिव्य श्रृंगार, बड़ी संख्या में भक्त बने साक्षी। महाकाल को शेषनाग का रजत मुकुट, रजत कुंडमाला, रुद्राक्ष की माला और पुष्पों की मालाएं धारण कराई गई। ड्राई फ्रूट, फल, मिठाई का लगाया गया भोग। भस्म आरती में बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु, महानिर्वाणी अखाड़े ने अर्पित की भस्म आरती। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर पहुंचे क्रिकेटर कुलदीप यादव, पत्नी के साथ किए ठाकुर जी के दर्शन। दिल्ली समेत उत्तर भारत में जल्द गर्मी से मिलेगी राहत, केरल में 22 मई से 30 मई तक मानसून की एंट्री की संभावना। मई के आखिरी या जून के पहले सप्ताह में तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा और आंध्र प्रदेश में मानसून पहुंचने की संभावना। 5 से 15 जून तक महाराष्ट्र, ओडिशा, छत्तीसगढ़ पहुंच सकता है मानसून। जून के आखिरी हफ्ते में दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में मानसून की संभावना। यूपी में 15 जून को मानसून देगा दस्तक, बिहार में 20 जून तक मानसून आने की संभावना। तमिलनाडु के रानीपेट में मानसून की तैयारी को लेकर जुटा प्रशासन, केरल में 240 एनडीआरएफ कर्मियों की हुई तैनाती। भीषण गर्मी में भी मां वैष्णो देवी के भक्तों का जोश हाई, तपती दोपहर में जय माता दी के जयकारों से गूंज रहा दरबार। कटरा में पारा 38 डिग्री के पार पहुंचा, त्रिकुटा के पहाड़ों पर भक्तों में आस्था का जुनून, मां के दर्शन के लिए उमड़ रही भक्तों की भीड़। जम्मू के कई इलाकों में हीट वेव, जम्मू में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस, गर्मी की वजह से आम जनजीवन प्रभावित। जम्मू कश्मीर में लू की वजह से बदला पर्यटन का रुख, बांदीपोरा की घाटियों में पर्यटकों की आवाजाही बढ़ी। अहमदाबाद में गर्मी से राहत के लिए स्नो पार्क में उमड़ी भीड़, परिवार और बच्चे ले रहे बर्फीले माहौल का आनंद, भीषण गर्मी में मिनी कश्मीर बने स्नो पार्क। नौतपा से पहले अयोध्या में तैयारियां तेज, श्रद्धालुओं के लिए बढ़ाई जा रही पानी की व्यवस्था, धूप से बचाव के लिए छांव के इंतजाम। दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी, पारा 44 डिग्री के पार पहुंचा, कई इलाकों में 45 डिग्री से ज्यादा तापमान। दिल्ली में चिलचिलाती धूप में जारी है निर्माण कार्य, तुगलकाबाद में मजदूर कर रहे हैं दिन भर काम, भीषण गर्मी के बीच भी नहीं थमा कामकाज। दिल्ली सरकार के मोबाइल हीट रिलीफ यूनिट्स सड़कों पर सक्रिय, कश्मीरी गेट, आईएसबीटी पर लगी राहत यूनिट में भारी भीड़, यात्रियों को मिल रहा ठंडा पानी और ओआरएस घोल। दिल्ली वर्क फ्रॉम होम शुरू, रेखा सरकार और एमसीडी के कर्मचारी घर से कर रहे काम, हर हफ्ते बुधवार शनिवार को होगा वर्क फ्रॉम होम। यूपी के ददतपुर में हीट वेव, पारा 43 डिग्री के पार पहुंचा, भीषण गर्मी की वजह से आम जनता प्रभावित। ओडिशा के 21 जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार, प्रदेश में सबसे अधिक तापमान झारसुगुड़ा में 44.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पालघर के कातकरी पाड़ों में गंभीर जल संकट, करोड़ों खर्च के बाद भी सूखे पड़े नल, आदिवासी परिवार बूंद बूंद पानी को तरसे। जालना में भीषण गर्मी से सूखने लगे फल बागान, मौसम्बी और नींबू की फसल पर बड़ा संकट, किसान टैंकर के पानी से बचा रहे बाग। भरतपुर में पानी संकट पर महिलाओं का फूटा गुस्सा, वाटर सप्लाई ऑफिस में मटके फोड़कर महिलाओं ने जताया विरोध। झांसी के ढिमरापुरा में गहराया जल संकट, पीने के पानी के लिए गर्मी में 1.5 किलोमीटर दूर जंगल तक जाना पड़ता है। फरीदकोट में पारा 45 डिग्री के पार, भीषण गर्मी और हीटवेव को लेकर येलो अलर्ट जारी, शिकंजी और नींबू पानी से गर्मी से राहत। प्रयागराज में नौतपा से पहले रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, तापमान 46 डिग्री के करीब पहुंचा, गर्म हवाओं और धूप से लोग बेहाल। सोनीपत सिविल अस्पताल में हीटवेव का असर, ओपीडी में बंद मिले पंखे, मरीज बेहाल, बुजुर्ग महिलाएं और बच्चे सबसे अधिक प्रभावित। अलवर में गहराया पानी का संकट, लोग बेहाल, भीषण गर्मी, बूंद बूंद पानी को तरसे लोग, पूरा अलवर जिला डार्क जोन घोषित। मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड के 5 जिलों में भीषण लू का रेड अलर्ट, दिन के समय सड़कों में पसरा सन्नाटा, ठंडक के लिए गन्ने का जूस पी रहे लोग। यूपी का छतरपुर प्रदेश का सबसे गर्म जिला, तापमान 47 डिग्री के पार पहुंचा। आने वाले दिनों में 50 डिग्री तक जा सकता है तापमान। यूपी के बांदा में तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस। 11 जिलों में दो दिन भीषण गर्मी का रेड अलर्ट। शीतल पेय पदार्थों की बढ़ी बिक्री। भीषण गर्मी को लेकर प्रशासन अलर्ट। जगह जगह बनाए गए कूलिंग सेंटर। ठंडे पानी की व्यवस्था। सभी सीएचसी और पीएचसी को रखा गया एक्टिव। यूपी के 15 जिले भीषण गर्मी से प्रभावित। अयोध्या में पारा 41 डिग्री के पार। गर्मी ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। यूपी के इटावा में भी गर्मी से लोगों का जीना बेहाल। 45.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज। लस्सी, गन्ने का जूस, नारियल पानी, बेल रस का सहारा। एमपी के रतलाम में पानी की भारी किल्लत। सूखे सभी जलाशय। वाटर लेवल भी हुआ कम। पानी के लिए कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। झारखंड के रामगढ़ में पानी की एक एक बूंद को तरसे लोग। 1 लाख आबादी जल संकट से परेशान। प्रशासन ने शुरू की टैंकर से जलापूर्ति। रायपुर के रीवा गांव में 40 साल से जल संकट। 45 डिग्री गर्मी। पानी के लिए संघर्ष। महिलाएं रोज 10 घंटे पानी लाने में मजबूर। झारखंड के गढ़वा में 43 डिग्री गर्मी से जनजीवन बेहाल। इंसानी नहीं जानवर भी परेशान। बंदरों के लिए खाने पीने की व्यवस्था। पाली में बेजुबानों को गर्मी से बचाने के लिए अच्छी पहल। लोगों ने ओजना जल कुंड में भरा पानी। पाली में भीषण गर्मी। छत पर महिला ने बिना चूल्हे के बनाया चीला। झांसी में 40 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। सड़कों पर पसरा सन्नाटा। झांसी में भगवान को गर्मी से बचाने के लिए लगाए गए एसी। खान पान में भी किया गया बदलाव। उधमपुर में भीषण गर्मी से संकर फूलों को पहुंचा नुकसान। फूलों को बचाने में जुटे लोग। अलवर में 40 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। धूप से बचते दिखे लोग। अलवर में लोगों को गर्मी से बचाने के लिए पुलिस की अच्छी पहल। ट्रैफिक सिग्नल पर लगाए गए टेंट। अकोला में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी। गर्मी के चलते कई इलाकों में पानी की कमी। औरैया में भी बड़ा तापमान। गर्मी से बचने के लिए कई जगहों पर की गई पानी की व्यवस्था। रांची में लगातार बढ़ रहा है तापमान। कई इलाकों में चल रही लू। मैदानों में बढ़ती गर्मी के बीच सैलानियों से गुलजार हुआ श्रीनगर। बड़ी संख्या में पहुंच रहे सैलानी। श्रीनगर में शिकारा का आनंद ले रहे सैलानी। भीड़ को देखते हुए बढ़ाई गई सुरक्षा। यूपी के चंदौली में 44 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। सड़कों पर पसरा सन्नाटा। भीषण गर्मी को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से की अपील। कहा बिना वजह घर से बाहर ना निकलें। तकनीकी खराबी के चलते बद्रीनाथ से लौट रहे हेलीकॉप्टर की चंबा आराकोट क्षेत्र में इमरजेंसी लैंडिंग। पायलट समेत हेलीकॉप्टर में सवार सभी 6 यात्री पूरी तरह सुरक्षित। लखनऊ में बेजुबानों को गर्मी से बचाने के लिए शानदार पहल। चिड़ियाघर प्रशासन ने वन्यजीवों के लिए की विशेष व्यवस्था। जानवरों के बाड़े में लगाए गए वाटर स्प्रिंकलर। तालाब, ग्रीन मैट और छांव के लिए किए गए इंतजाम। इसके अलावा हर बाड़े में पानी की पर्याप्त व्यवस्था। खान पान पर भी रखा जा रहा विशेष ध्यान। रुद्रप्रयाग में जमकर हुई बारिश से सोनप्रयाग गौरीकुंड हाईवे पर टूटा पहाड़। कई श्रद्धालु फंसे। एसडीआरएफ की टीम ने सभी फंसे श्रद्धालुओं का किया रेस्क्यू। सड़क से हटाया जा रहा है मलबा। मेघालय के उमरोई मिलिट्री स्टेशन पर बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 का शुभारंभ। 12 मित्र देशों की सेनाएं अभ्यास में ले रही हिस्सा। भूटान से लेकर वियतनाम तक एशियाई देशों की सैनिक जुटता दिखी। संयुक्त युद्ध कौशल और सामरिक तालमेल पर रहेगा फोकस। आतंकवाद रोधी ऑपरेशन और आधुनिक युद्ध तकनीक पर होगा प्रशिक्षण। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रक्षा साझेदारी को मिलेगी मजबूती। बगहा में 227 नए बिहार पुलिस जवान पास आउट। जवानों का दमदार मार्च पास्ट। परेड ग्राउंड में गूंजा जवानों का जोश। हथियार संचालन और ड्रिल का शानदार प्रदर्शन। आईजी अनुसुईया रणसिंह साहू ने बढ़ाया जवानों का हौसला। माता पिता की आंखों में दिखा गर्व। कोची में आईओएस सागर पर फहराया गया झंडा। समंदर की निगरानी करेगा आईओएस सागर। वाइस एडमिरल समीर सक्सेना रहे मौजूद। आईओएस सागर ने बढ़ाया समुद्री गौरव। कोची में सैन्य शासन का शानदार नजारा। हिंद महासागर क्षेत्र में मजबूत मौजूदगी। पंजाब गवर्नर गुलाब चंद कटारिया ने की बस की यात्रा, लोगों से भी की पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल करने की अपील, ईंधन बचाने के लिए पीएम की अपील का समर्थन। रांची एयरपोर्ट को मिली नई सुविधाओं की स्वागत, केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू ने किया उद्घाटन, यात्रियों के लिए उड़ान कैफे यात्री शुरू। ऑफिसर सेंटर में मिलेगा स्थानीय उत्पादों को मंच, रांची एयरपोर्ट पर खुली नई लाइब्रेरी, बच्चों के लिए बना किड्स प्ले जोन। अमृतसर में गर्मी के बीच एसजीपीसी के खास इंतजाम, श्री हरमंदिर साहिब में बढ़ाई गई छबील सेवा, परिक्रमा में पंखों की संख्या बढ़ाई गई। श्रद्धालुओं के लिए किए गए बिछाए गए विशेष मैट, फर्श पर दिनभर किया जा रहा पानी का छिड़काव, 40 डिग्री गर्मी में भी भक्तों की नहीं टूटी श्रद्धा। गोल्डन टेम्पल के गुरु घर में उमड़ रहे श्रद्धालु, सरोवर में डुबकी लगाकर पा रहे राहत, पंखों के नीचे श्रद्धालु सुन रहे गुरबानी। औरे में भीषण गर्मी से बढ़ा बिजली बोझ, ट्रांसफार्मरों को ठंडा रखने के लिए लगाया गया कूलर, लाइनमैन लगातार रख रहे निगरानी। पावर हाउस में कूलिंग सिस्टम किया गया मजबूत, ट्रांसफार्मर गर्म ना हो इसके लिए खास इंतजाम, बिजली खपत बढ़ने से विभाग अलर्ट। श्रीगंगानगर के मानव सुथार का भारतीय नेशनल क्रिकेट टीम में चयन, घर में जश्न का माहौल। तमिलनाडु के नागापट्टिनम टीवीके की शानदार जीत पर गेराल्ड मिल्टन ने घुटने के बल चलकर अपनी मन्नत पूरी की, भगवान की पूजा कर लिया आशीर्वाद। दक्षिण कोरिया के मंत्री के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की बैठक, रक्षा अधिग्रहण को लेकर हुई चर्चा। अकोला में अनोखी शादी, दूल्हा दुल्हन ने ट्रैक्टर से की एंट्री। किसानों को समर्थन देने के लिए दूल्हा दुल्हन खेती संस्कृति को दिया गया सम्मान, गांव के लोगों ने भव्य किया स्वागत। भारतीय रक्षा बलों के लिए एक बड़ी उपलब्धि, सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम का एनआईबी ने किया सफल परीक्षण। ओडिशा के चांदीपुर स्थित आईटीआर में 150 किलोमीटर और 300 किलोमीटर वाली क्षमता वाले सूर्यास्त्र रॉकेटों का किया गया सफल परीक्षण।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
7: TuneIn has the music.
0: Take a vacation with poolside hits on TuneIn.
8: TuneIn Poolside has the music I love.
0: Vibe out in your poolside cabana with hits from iconic artists like Calvin Harris, Avicii, Bloom, and more. Listen to the best blend of house, techno, trance, and more from the hottest DJs. And get your pool party started. Just search Poolside or ask your device to play Poolside on TuneIn.
9: You can stream all the podcasts you already love right on TuneIn. Available on your smartphone, on your tablet, and even on your connected devices. There's so much to explore, like mind-blowing facts about your world.
10: So they were disallowed from speaking their language.
9: In-depth conversations with A-list celebrities.
11: No, I was ready to go. You know, after I wanted to fulfill my contract.
9: True crime podcasts you just can't stop listening to.
12: Others escape justice to live and die in infamy. These
9: plus the news and sports content you crave in podcast form.
13: Couldn't run in a straight line very quickly and didn't have much of an arm. His arm is stronger now.
9: So whether you want to save your go-to shows for later by subscribing and listening offline, or you want to discover a whole slate of new podcasts to be obsessed with, TuneIn is your destination. True crime, sports, lifestyle, culture, news, and so much more. TuneIn is Podcast Central. Hear them all here.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: अमूमन हम चांदी के तोहफे देते भी हैं, लेते भी हैं, लेकिन एक ससुर ने अपने दामाद को ऐसा तोहफा दिया है जो उसके चर्चे तो बहुत हो रहे हैं पर दामाद उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। और अगर गलती से यूज कर लिया तो उसकी कीमत कम होती जाएगी, उसकी चमक भी फीकी पड़ सकती है। तो चलिए देखते हैं आखिर क्या है वो कीमती चांदी का तोहफा, किसने बनाया तोहफा और क्या है इसकी खासियत इस रिपोर्ट में।

0: चमड़े की ये पारंपरिक कोल्हापुरी चप्पल अपनी पहचान के लिए कितनी मशहूर है ये बात हर कोई जानता है। वहीं अब इसी विरासत को मिला है चांदी का शाही अंदाज। 1.5 किलो वजन, लाखों की कीमत और बारीकी ऐसी कि देखने वाला बस देखता ही रह जाए। एक कारीगर ने अपनी कल्पना, मेहनत और हुनर से परंपरा को ऐसा रूप दिया जो अब देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक चर्चा का विषय बन चुका है। कोल्हापुर की गलियों से ही निकली एक और अनोखी कला इन दिनों लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। ये कोई साधारण चप्पल नहीं बल्कि पूरी तरह चांदी से तैयार की गई खास कोल्हापुरी सैंडल है। महावीर नगर में रहने वाले शिल्पकार विक्रांत माली ने इसे अपने हाथों से तैयार किया। साल 1994 से चांदी के काम से जुड़े विक्रांत पहले भी कई धार्मिक और सजावटी वस्तुएं बना चुके हैं, लेकिन इस बार उन्होंने परंपरा को शाही अंदाज में ढाल दिया। दरअसल महाराष्ट्र के सांगली में एक कारोबारी ने अपने दामाद के लिए खास उपहार बनाने की इच्छा जताई, जिसके बाद शुरू हुआ मेहनत, धैर्य और बारीक कारीगरी का सफर। कारीगर ने पहले कोल्हापुरी पारंपरिक डिजाइन को गहराई से समझा, फिर चांदी को उसी आकार में ढालने का काम शुरू कर दिया। करीब 10 दिनों की लगातार मेहनत के बाद 10 इंच लंबी और लगभग 1.5 किलो वजनी ये खास चप्पल तैयार हुई। इस अद्भुत निर्माण में महीन नक्काशी की गई है, हर हिस्सा हाथों से तराशा गया है जिससे इसका आकर्षण और भी बढ़ गया है। बताया जा रहा है कि इस अनोखी जोड़ी की कीमत करीब 4.5 लाख रुपए है, जबकि मेहनताना लगभग 25,000 रुपए रखा गया है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि कोल्हापुरी का ये सिल्वर नुमा लुक अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नई चमक बिखेर रहा है। सोशल मीडिया पर इस पारंपरिक कोल्हापुरी चप्पल की तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं। लोग इस अनूठी कलाकारी को महाराष्ट्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक शान का शानदार मेल बता रहे हैं। कोल्हापुर से दीपक सूर्यवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
3: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's classic rock hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search classic rock hits or ask your smart device to play classic rock hits on TuneIn.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
6: रोम में पीएम मोदी और मेलोनी लगाया पौधा, मेलोनी को दिया भारत आने का न्योता। सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा पीएम मोदी और मेलोनी का टॉफी वाले गिफ्ट का वीडियो, अब तक 12 करोड़ पार व्यूज। पीएम मोदी के नाम एक और सर्वोच्च सम्मान, रोम में कृषि संगठन ने किया सम्मानित, संयुक्त राष्ट्र की FAO ने एग्रीकोला मेडल से नवाजा। अयोध्या राम मंदिर में त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू, AI कैमरों से हो रही निगरानी, नई सुरक्षा दीवार और वॉच टावर का भी निर्माण। चित्तौड़गढ़ के सावलिया सेठ को भक्त की अनोखी भेंट, भगवान को अर्पित किया 197 ग्राम चांदी से बना हार्ट, सफल बाईपास ऑपरेशन के लिए मांगी थी मन्नत। देवभूमि उत्तराखंड में धूमधाम से जारी चार धाम यात्रा, बद्रीनाथ में 4.5 लाख से अधिक भक्तों ने किए दर्शन, केदारनाथ धाम पहुंचे करीब 7.25 लाख श्रद्धालु।

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में।
1: नमस्कार।
0: देखिए, कहते हैं अहंकार यानी कि जो ईगो होते हैं ना, वो इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। किस तरीके से अहंकार के कारण आपकी किस्मत, आपके भाग्य जो है वो बदल सकता है, खराब हो सकती है आपकी किस्मत, उसके बारे में जानेंगे। लेकिन फिलहाल पंडित जी से जान लेते हैं आज का गुड लक मंत्र क्या है।
1: अगर आपको अपने रिश्तों की समस्या दूर करनी है तो हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाइए। हनुमान जी को लाल फूल और तुलसी दल ये आप अर्पित करके प्रार्थना करिए। जिस रिश्ते में समस्या है उस रिश्ते की मुश्किल दूर हो जाएगी।
0: तो चलिए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं 21 मई 2026 यानी बृहस्पतिवार का पंचांग क्या है।
1: दिनांक 21 मई 2026 दिन बृहस्पतिवार, तिथि है अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, प्रातः 8:26 तक। नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र, चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
0: तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और पंडित जी से जानते हैं कि आखिरकार वो कौन से ग्रह हैं जो आपको अहंकारी बनाते हैं और ज्योतिष और अहंकार का क्या संबंध है। आइए पंडित जी से ही जान लेते हैं।
1: जी देखिए, आज हम बात कर रहे हैं अहंकार के बारे में, घमंड के बारे में। कौन से ग्रह अहंकार पैदा करते हैं, ज्योतिष इस बारे में क्या कहता है। देखिए, अहंकार जो है ये मन से जुड़ा हुआ मामला है। सबसे पहले व्यक्ति के मन में, उसकी सोच में अहंकार पैदा होता है और मन से आगे बढ़कर ये व्यवहार तक पहुंच जाता है। हर ग्रह मजबूत होने पर, ताकतवर होने पर अपनी तरह का अहंकार पैदा करता है। लेकिन अहंकार में सबसे बड़ी भूमिका जो देखी गई है वो बृहस्पति और चंद्रमा की होती है। बृहस्पति कुंडली में ज्यादा लीड करे तो व्यक्ति को परम अहंकारी बना देता है और अन्य ग्रहों के साथ मिल करके ये विभिन्न प्रकार के अहंकार पैदा करता है। लेकिन जैसा हम सब जानते हैं कि अहंकार तो नुकसान करता है, इसीलिए किसी भी तरह का अहंकार हो वो जीवन में समस्या पैदा करेगा। हर तरह का अहंकार विशेष तरह की समस्या पैदा कर देता है।
0: तो चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल क्या कुछ कहता है।
1: मेष राशि, स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें, परिवार में शांति रखें, करियर में लापरवाही ना करें, किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा, स्थान परिवर्तन हो सकता है, संतान की चिंता हो सकती है, भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं सूर्य और अहंकार का आखिर क्या कनेक्शन है।
1: अब ये जानते हैं कि सूर्य किस तरह का अहंकार देता है और ये अहंकार आपको कहां नुकसान पहुंचाता है। सूर्य वैभवशाली परंपरा का और खानदान का अहंकार पैदा करता है। मेरे पिताजी ये थे, मेरे दादा वो थे, मेरा खानदान ऐसा है, ये अहंकार सूर्य देता है। कुंडली में सूर्य ज्यादा मजबूत हो जाए तो खानदान और परंपरा का अहंकार पैदा होता है। आम तौर पर मेष, सिंह और धनु राशि वालों को ये अहंकार ज्यादा होता है और अगर आप इस तरह का अहंकार करते हैं तो संतान को लेकर, संतान पक्ष को लेकर जीवन में समस्या पैदा हो जाती है।
0: तो चलिए इसी क्रम में अब बात कर लेते हैं चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा और अहंकार का क्या कनेक्शन है, आइए पंडित जी से जान लेते हैं।
1: देखिए, वैसे तो हर तरह के अहंकार के पीछे चंद्रमा होता ही है, लेकिन चंद्रमा एक अलग तरह का अहंकार भी देता है। क्या करता है चंद्रमा? गुणों का अहंकार पैदा करता है। मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, मैं बहुत अच्छा पेंटिंग करता हूँ, मैं बहुत सुंदर तरीके से काम करती हूँ, मेरी आवाज़ बड़ी अच्छी है, ये जो गुण हैं आपके, इसको लेकर के चंद्रमा वालों को अहंकार होता है। इसके अलावा कभी कभी क्लास का अहंकार भी हो जाता है कि मेरे कपड़े, मेरे जूते, मेरे बात करने का तरीका, मेरे खाना खाने का तरीका बड़ा क्लासी है। क्लास का अहंकार भी चंद्रमा वालों को होता है। कर्क, वृश्चिक और मीन वालों को इस तरह का अहंकार ज्यादा होता है और ये अहंकार बड़ा खतरनाक है, क्योंकि गुण आता है ईश्वर की कृपा से और गुण होने के बावजूद अगर आप ये अहंकार पालते हैं तो आपकी किस्मत बिल्कुल उल्टी हो जाती है। आपके गुण धीरे धीरे आपसे वापस ले लिए जाते हैं।
0: तो बातचीत का यह सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल पंडित जी से जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
1: कर्क राशि, मानसिक तनाव आपका कम होता दिखाई दे रहा है, करियर में सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, खाने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, धन के खर्चे बढ़े रहेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, कारोबार की स्थिति ठीक रहेगी, करियर में लाभ होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब समय हो गया है आपका सवाल लेने का, तो बिना देर किए पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आज का पहला सवाल वो किस व्यूअर का ले रही हैं।
1: जी, आज का पहला प्रश्न रीता जी ने हमें लिखा है और रीता जी हमें मेल लिखती हैं वाराणसी उत्तर प्रदेश से। इनकी जन्म की तारीख है 19 अक्टूबर 1989, जन्म का समय शाम के 6 बजे, जन्म का स्थान है गाजीपुर उत्तर प्रदेश। रीता जी कह रही हैं कि मैं अभी एक जगह नौकरी कर रही हूं, लेकिन मेरे नौकरी में उतार चढ़ाव बहुत है और मैं नौकरी बदलना चाहती हूं और चाहती हूं कि वाराणसी के आसपास ही कोई नौकरी मिल जाए मुझे, तो मुझे बेहतर नौकरी कब तक मिल सकती है या मुझे कोई व्यापार करना चाहिए। रीता जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आप नौकरी के चक्कर में ज्यादा मत पड़िए, आपके लिए अच्छा होगा कि आप शिक्षा क्षेत्र का, स्टेशनरी का, मेडिकल का, दवाइयों का कोई व्यापार करें, उसमें आपको सफलता मिलेगी। और इसी समय जून से अक्टूबर के बीच में अगर आप व्यापार शुरू कर दें, छोटे लेवल पर ही शुरू कर दें, तो भी आगे आपको तरक्की बहुत मिलेगी। आपका आने वाला समय बहुत ही अच्छा है, उसमें आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप व्यापार में जाइएगा। एक पन्ना बनवा के पहनिए, 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना धारण करें। सुबह और शाम दोनों समय ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करिए, आपको लाभ होगा।
0: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का दूसरा सवाल भी ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को याद दिला दूं कि पंडित जी से अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हमारी ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है, इस ईमेल आईडी पर आप हमें अपने प्रश्न लिख करके भेज सकते हैं। तो चलिए पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का दूसरा सवाल जिसका आप इंतजार करते हैं वो किस व्यूअर का ले रहे हैं।
1: जी, अगला प्रश्न सुरेंद्र वर्मा जी ने हमें लिखा है और सुरेंद्र वर्मा जी हमें आगरा से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 28 मार्च 1973, जन्म का समय रात में 9 बजे, जन्म का स्थान है शिकोहाबाद, मेल लिखते हैं आगरा से। ये लिख रहे हैं कि मेरे स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी नहीं चल रही है, 2 बार मेरी सर्जरी ऑलरेडी हो चुकी है, तो आगे मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा और बेहतर स्वास्थ्य के लिए मुझे कौन से उपाय करने चाहिए। देखिए, आपकी जो कुंडली बनती है उसमें आगे कोई बहुत बड़ी स्वास्थ्य की समस्या नहीं है, लेकिन मानसिक तनाव बहुत है, चिंताएं बहुत हैं, स्ट्रेस बहुत है, जिसकी वजह से आपकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। तो आप ऐसा करिए, एक तो रोज सुबह शाम एक एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए, एक बार सुबह एक बार शाम को। नहीं पढ़ पाते हैं तो मोबाइल पर लगा करके सुन लीजिएगा। एक पन्ना बनवा के पहनिए, 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनिए, राम रक्षा स्तोत्र पढ़िए, चीजें बेहतर हो जाएंगी।
0: अब बात करते हैं मंगल ग्रह के बारे में। तो आखिरकार मंगल और अहंकार, इन दोनों का क्या कनेक्शन है, आइए जानते हैं।
1: अब मंगल किस तरह का अहंकार देता है, किस तरह का दंभ देता है? मंगल जो है वो शक्ति और ताकत का अहंकार पैदा करता है। आप आर्मी में बड़े अफसर हो गए, आप पुलिस में चले गए, आप कोई ऐसा पद पा गए जीवन में जो बड़ा ताकतवर पद है, तो शक्ति और ताकत का अहंकार मंगल आपके अंदर पैदा कर देता है। और मंगल वाले अहंकार में लोग अहंकार में आके अपनी ताकत का, अपनी शक्ति का दुरुपयोग भी करते हैं। वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि में ताकत का अहंकार जल्दी आ जाता है। अगर आप अपनी ताकत का, अपनी शक्ति का, अपने पावर का अहंकार करते हैं, उसका दुरुपयोग करते हैं, तो जीवन में आपके रिश्ते टूटेंगे, आपके परिवार के लोग आपसे लगातार दूर होते चले जाएंगे।
0: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी क्रम में बात कर लेते हैं बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह और अहंकार का क्या कनेक्शन है, आइए पंडित जी से ही जानते हैं।
1: बुध किस तरह का अहंकार देता है और उसका नुकसान क्या है? देखिए, बुध अपनी बुद्धि और अपनी योग्यता का अहंकार देता है। बुद्ध वाले जो होते हैं ना, वो बड़े इंटेलिजेंट, बड़े शार्प ब्रेन के, अच्छा बोलते हैं, अच्छा लिखते हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत होता है, मुश्किल से मुश्किल समस्या को हल कर लेते हैं। ये जो गुण है बुद्ध का, इसका अहंकार इनको बहुत होता है कि मुझसे ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं है। ये किसी और को अपनी बुद्धि के आगे, अपनी चालाकी के आगे कुछ नहीं समझते। मिथुन, कन्या और मकर वालों के अंदर अपनी बुद्धि का, अपने ब्रेन का अहंकार बहुत होता है। अब इनकी मुश्किल क्या है? अगर आपके अंदर अपनी बुद्धि का, अपनी योग्यता का ज्यादा अहंकार है ना, तो जीवन में कई कई बार आपको धन का बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए कृपा करके इस तरह का अहंकार मत पालिए।
0: तो चलिए अब बात कर लेते हैं बृहस्पति और अहंकार के कनेक्शन के बारे में। इन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है, आइए पंडित जी से जानते हैं।
1: सबसे ज्यादा जो ग्रह आदमी को दंभी और अहंकारी बनाता है वो है बृहस्पति। क्या कनेक्शन है अहंकार से? बृहस्पति वाले अपने ज्ञान को लेकर, मैं बड़ी पूजा पाठ करता हूं, मुझे बड़े मंत्र याद हैं, मुझे बड़े श्लोक याद हैं, अपने ज्ञान को लेकर अहंकारी होते हैं। मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि, मेरे दादाजी बहुत बड़े पुजारी थे, बहुत बड़े महंत थे, ज्ञान का, पारिवारिक पृष्ठभूमि का बहुत अहंकार होता है। इस अहंकार के कारण होता क्या है कि ये बड़बोले हो जाते हैं, इनका वाणी पर कंट्रोल नहीं रहता, किसी को कुछ भी कभी भी बोल देते हैं। अक्सर लोगों को अपने ज्ञान से परेशान करते हैं, लोगों को उलझा देते हैं। कोई आदमी सही काम कर रहा है, उसको कहेंगे अरे फला जगह तो ऐसा लिखा था कि ऐसा नहीं करना चाहिए, अब वो परेशान हो गया। तो अपने ज्ञान से दूसरों को परेशान भी करते रहते हैं। वृषभ, कन्या, धनु, मकर और मीन वालों में अपने ज्ञान, अपनी विद्वता का अहंकार बहुत होता है। और होता क्या है कि ये जो जितने ये अपने ज्ञान से अहंकारी होते हैं ना, उतना ही इनको जीवन में बदनामी का, अपयश का सामना करना पड़ता है।
0: बातचीत का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
1: तुला राशि, स्वास्थ्य की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं।

निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, यात्रा हो सकती है, स्वास्थ्य में सुधार होगा, परिवार में व्यस्तता रहेगी। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।

0: चिंता हो सकती है। लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, निर्णयों में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर और आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा।
1: तो चलिए बात कर लेते हैं शुक्र ग्रह के बारे में। तो क्या आखिर शुक्र और अहंकार का भी कोई कनेक्शन है? आइए जानते हैं।
0: शुक्र भी आदमी के अंदर अहंकार पैदा करता है। कैसा अहंकार? शुक्र वाले बड़े ग्लैमरस होते हैं, आमतौर पे दिखते भी अच्छे हैं, रूप सौंदर्य अच्छा होता है, बड़े ग्लैमरस, बड़ा लग्जीरियस लाइफ जीते हैं। तो शुक्र वालों को अपने रूप सौंदर्य का, अपने शानो शौकत का, अपने झाम ताम का बड़ा अहंकार होता है। मैंने ये घड़ी 10 लाख की खरीदी, तुरंत फोटो सोशल मीडिया पे डाल देंगे, ठीक है ना। मतलब मेरे पास क्या है, वो दिखावे की टेंडेंसी, वो अहंकार शुक्र से आता है। और ये लोग इस अहंकार के कारण अक्सर मूर्ख बनते हैं, लोग उनको मूर्ख बनाते हैं और धन की बर्बादी होती है इनकी। मिथुन, तुला और कुंभ राशि वालों में ये अहंकार जल्दी आ जाता है अगर उनका शुक्र डोमिनेटिंग हो तो। इस अहंकार के कारण इनको जीवन में आकस्मिक धन की हानि होती है और लोग इनकी प्रशंसा करके इनसे खूब पैसे खर्च करवाते हैं और ये दिखावे के मामले में बड़ी मुश्किल में हमेशा पड़े रहते हैं, लेकिन फिर भी नहीं मानते। दिखावा करना, अहंकार करना, चीजों को शो ऑफ करना, ये इनके अंदर बहुत होता है।
1: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब पंडित जी से जान लेते हैं कि शनि और अहंकार का आखिर एक दूसरे से क्या कनेक्शन है।
0: शनि वैसे तो देखिए अहंकारी नहीं है, लेकिन शनि भी कभी कभी आदमी को अहंकार देता है। कैसा अहंकार? शनि वालों को काम करने की योग्यता का अहंकार होता है। जितना मैं काम कर सकता हूं उतना तुम नहीं कर पाओगे। मैं सुबह से रात तक काम करता हूं, मैं दिन रात काम करता हूं, मैं एक ही दिन में ये भी कर दिया, वो भी कर दिया, मैं सब संभाल लेता हूं या सब संभाल लेती हूं। ये योग्यता, काम करने की योग्यता का अहंकार इनके अंदर आता है और ये लोग किसी और के काम को अपनी मेहनत के आगे, अपने काम के आगे कुछ नहीं समझते। अगला कितनी भी मेहनत करे इनको लगता है मेरे से ज्यादा मेहनत थोड़ा ना कर रहा है, इसलिए मैं ज्यादा बेहतर हूं। तो इनको अपने काम करने का, मेहनत का अहंकार होता है। वृषभ, सिंह, कन्या और मकर वालों के अंदर ये अहंकार आ जाता है अगर शनि प्रबल हो जाए। और होता क्या है, अपनी मेहनत और काम का अहंकार अगर

0: आप करेंगे ना तो करियर में उतार चढ़ाव का सामना आपको जीवन में करना पड़ेगा।
1: तो चलिए अब पंडित जी से जानते हैं कि अगर कोई बहुत अहंकारी है, बहुत ईगो है, उसे लगता है कि मेरे करके इस दुनिया में सब कुछ हो रहा है, तो आखिरकार उसके अहंकार को वो किस तरीके से समाप्त कर सकता है।
0: देखिए, वैसे तो अहंकारी व्यक्ति ये मानता ही नहीं है कि उसको अहंकार है, लेकिन अगर आपको लग रहा है, आपको ऐसा रियलाइजेशन हो रहा है कि मेरे अंदर अहंकार है, मेरे अंदर घमंड है, दंभ है, तो इसको कैसे समाप्त करें आप? रोज सुबह उठने के बाद अपने बड़ों के चरण स्पर्श करिए, उनके पैरों को छू करके आशीर्वाद लीजिए। झुकना सीखिए जीवन में, जब आप झुकना सीखेंगे तो ईश्वर आपको वैसे ही उठा देंगे, इसलिए झुकना सीखिए। रोज सवेरे सूर्य देव को जल चढ़ाइए और सूर्य देव के सामने खड़े होके या बैठ के कम से कम 27 बार गायत्री मंत्र का जप करिएगा। जिन लोगों के अंदर अहंकार की टेंडेंसी है, ऐसे लोगों को पन्ना और पुखराज पहनने से बचना चाहिए। पन्ना तो एक बार फिर भी चल जाएगा, पुखराज पहनने से बचना चाहिए। और सप्ताह में एक बार अन्न वस्त्र का दान जरूर करें, अपनी कमाई से जितना हो सके, जो सामर्थ्य है आपकी उस सामर्थ्य के अनुसार अन्न और वस्त्र का दान करें तो बहुत बेहतर होगा।
1: तो चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल क्या है।
0: मकर राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, करियर में आपको सफलता मिलेगी, परिवार में शुभ कार्य आपके होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य और तनाव के मामले में सुधार होगा, धन की समस्याएं दूर होंगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ।

0: करियर में नए अवसर मिलेंगे, मानसिक तनाव समाप्त होगा, काम की अधिकता रहेगी। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपका सवाल ले लेते हैं। तो पंडित जी, बिना देर के हमारे दर्शकों को बताएं कि आज का तीसरा सवाल आप किसका ले रहे हैं।
0: जी, अगला प्रश्न सीमा गुप्ता ने हमें लिखा है, कानपुर से लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 10 अप्रैल 1982। जन्म का समय दोपहर में 3:45। जन्म स्थान है कानपुर। ये कह रही हैं कि मैं अभी अपने पिताजी के साथ रहती हूँ, माता पिता के साथ मेरा विवाह नहीं हो पाया है, तो क्या कभी मेरा विवाह हो सकता है या मुझे अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए, विवाह के बारे में विचार नहीं करना चाहिए। सीमा जी, आपकी कुंडली में विवाह की संभावनाएं अभी भी बनती हैं और ऐसा लगता है कि साल 2027 में किसी डिवोर्सी व्यक्ति से या किसी विडोवर से आपकी शादी हो सकती है। ये संभावना 2027 के आरंभिक समय में बन रही है और आपका विवाह आपकी अपनी इच्छा से जाने पहचाने व्यक्ति के साथ होगा। रहेंगी तो आप कानपुर या कानपुर के आसपास ही, माता पिता की देखभाल कर पाएंगी, उसकी चिंता करने की आपको ज्यादा आवश्यकता नहीं है। आपका विवाह शीघ्र हो, बेहतर हो, इसके लिए हर रविवार को पार्वती मंगल का पाठ करिए, रविवार को दिन के समय में, और एक पीला पुखराज लगभग 5-6 रत्ती सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार की सवेरे अगर आप धारण करें तो आपको लाभ होगा।
1: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का अंतिम सवाल ले लेते हैं और पंडित जी से जानते हैं कि वो अगला सवाल किसका लेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को याद दिला दूं कि अगर आप हमारा ये कार्यक्रम हर रोज देखते हैं, पसंद करते हैं और पंडित जी से सवाल पूछना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हमारी ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है। इसी ईमेल आईडी पर आप हमें अपने प्रश्न लिख करके भेज सकते हैं। तो पंडित जी, अगला सवाल आप किसका ले रहे हैं उसके बारे में बताएं।
0: जी, अगला प्रश्न दीपिका जी ने हमें लिखा है और दीपिका जी हमें मेल लिखती हैं वाराणसी से। इनकी जन्म की तारीख है 21 जून 1980। जन्म का समय दोपहर में 2:50। जन्म स्थान है गुवाहाटी, आसाम। ये कह रही हैं कि मैं अभी टीचिंग की नौकरी करती हूं और मेरी नौकरी ठीक चल रही है, लेकिन मैं चाहती हूं कि मैं अपना स्वतंत्र इंडिपेंडेंट टीचिंग का काम करूं, अपना स्कूल खोल लूं या अपनी कोचिंग खोल लूं, क्या ऐसा रिस्क लेना मेरे लिए ठीक रहेगा। दीपिका जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको स्वतंत्र काम करना ही चाहिए। आप अपना विद्यालय खोलें, अपना कोचिंग सेंटर खोलें, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलें, ऐसा आप बिल्कुल कर सकती हैं, लेकिन ऐसा करने का जो सही समय है वो 2027 के अगस्त के बाद है। उसके बाद नौकरी छोड़ करके आप अपने शिक्षा के काम में जाइएगा, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। एक मोती बनवा के पहने, 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती बनवा के आप पहन लें। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ा के प्रार्थना करें, आपको लाभ होगा।
1: पंडित जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। अहंकार के बारे में बात हो रही है और अक्सर हम कहते हैं जो ईगो होती है, इंसान का अहंकार होता है, वो उसे ले डूबता है, वो गलत होता है, लेकिन क्या अहंकार अच्छा भी होता है उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं।
0: जी देखिए, वैसे तो अहंकार अच्छी चीज नहीं है और आप किसी भी चीज का अहंकार करेंगे वो चीज आपसे वापस ले ली जाएगी, लेकिन एक अहंकार सात्विक अहंकार माना जाता है और उसको अच्छा अहंकार मानते हैं, वो है भगवान की भक्ति का अहंकार। ये अहंकार नहीं कि मैं सबसे बड़ा भक्त हूं, ये अहंकार कि मेरे पिता स्वयं भगवान हैं, भगवान मेरे साथ हमेशा रहते हैं, मुझे जीवन में कोई दिक्कत नहीं हो सकती, भगवान मुझे हमेशा देखते हैं, भगवान की दृष्टि में मैं हमेशा रहता हूं। ये अहंकार सात्विक अहंकार है और जब साधक के अंदर ये अहंकार आता है, भगवान की अहेतुकी कृपा उसको जीवन में प्राप्त हो जाती है।
1: तो जिनका जन्मदिन 21 मई को है, आप सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो हमारी तरफ से, हैप्पी बर्थडे। आप सभी का आने वाला साल कैसा रहने वाला है, आइए इसके बारे में जानते हैं।
0: जिन लोगों का जन्मदिन 21 मई को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आर्थिक स्थिति बेहतर बनी रहेगी, करियर और स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, अविवाहितों के विवाह में अभी विलंब होगा, इस साल स्वास्थ्य में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव रह सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर शिव जी की अगर उपासना करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: तो चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है।
0: आज की जिज्ञासा है कि क्या किसी और की पूजा से या किसी और के मंत्र जप करने से आपको या किसी और को लाभ हो सकता है? किसी अन्य की पूजा से या जप से दूसरे व्यक्ति को, दूसरे व्यक्ति के लिए अगर किया जा रहा है तो लाभ हो सकता है, लेकिन जो व्यक्ति पूजा या जप कर रहा है, जिसके लिए कर रहा है, उस दूसरे व्यक्ति से भावनात्मक रूप से जुड़ा होना चाहिए। बिना भावना के पूजा करें या मंत्र जप किसी के लिए भी करें, उसको कोई विशेष लाभ नहीं होगा।
1: तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगर आप कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं तो पंडित जी से जान लेते हैं कि 21 मई 2026 यानी कि दिन बृहस्पतिवार का शुभ पहर आखिर कौन सा है।
0: दिनांक 21 मई 2026 दिन बृहस्पतिवार, शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान को पीले फूल अर्पित करिएगा, ऐसा करने से शिक्षा और संतान के मामलों में उन्नति होगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 21 मई बृहस्पतिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में।
1: चलिए अब कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं तो जल्दी से जान लेते हैं आज की गुड लक राशि, भाग्यशाली राशि कौन सी है।
0: आज की जो गुड लक राशि है वो है मीन राशि। इस समय हड्डियों और आंखों की समस्या का ध्यान दें, जीवनचर्या को, रूटीन को सुधारने का प्रयास करते रहिएगा।
1: तो चलिए कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर अब हम पंडित जी से जान लेते हैं कि आखिरकार आज का महा उपाय क्या है।
0: जी, आज के महा उपाय में आपको बताते हैं कि अगर आपका मन पूजा उपासना में नहीं लगता हो तो क्या उपाय करेंगे। पूजा का स्थान और पूजा करने का समय एक रखिएगा। रोज शाम को पूजा करते हैं 7 बजे, तो 7 बजे ही करिए और जहां बैठ के करते हैं वहीं बैठ के करिए। पूजा करने के पहले हाथ जोड़कर भगवान से पूजा में मन लगाने की प्रार्थना करिएगा और पूजा समाप्त करने के बाद अपने कर्मों को और अपनी चिंताओं को भगवान को समर्पित कर दीजिएगा।
1: पंडित जी, हमें तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
1: तो आज के लिए हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज़ टुडे के साथ।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिलदेव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात होगी देश में चल रहे मंगल उत्सव की। इस समय देश के अलग अलग छोर, अलग अलग किनारों पर कई उत्सव, कई लोक पर्व मनाए जा रहे हैं। भारत की संस्कृति में यूं भी परंपराओं के धागों से जाने कितने ही तीज त्योहार और उत्सव बुने गए हैं। कुछ उत्सवों की कहानी पौराणिक आधार से निकली तो कुछ उत्सव हमारे देश की समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत की धरोहर हैं। ऐसा ही एक उत्सव यूपी के झांसी में मनाया गया। एक ऐसा उत्सव जो किसी देवी देवता के सम्मान में नहीं मनाया जाता, बल्कि हर साल झांसी ये उत्सव मनाती है उस महान वीरांगना की याद में जिनके साहस और शौर्य ने अंग्रेजों की नींद उड़ा दी थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और राजा गंगाधर राव के विवाह की 184वीं सालगिरह धूमधाम से मनाई गई। झांसी के लिए ये दिन इसीलिए भी खास है क्योंकि इसी दिन वाराणसी की मणिकर्णिका झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई बनकर इस नगर में आई थी।

0: वैभव के साथ सगाई झांसी में। ब्याह हुआ रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में। सुभट बुंदेलों की विरुदावली सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। जब दुल्हन बनकर झांसी आई झांसी वाली रानी थी। आज से 184 साल पहले घटी इस घटना के हर दृश्य को कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने कोई 96 साल पहले अपनी कलम से जीवंत कर दिया था। झांसी उस दिन को आज फिर से जी रही है। वो शुभ घड़ी जब झांसी की धरती पर पांव पड़े थे उस वीरांगना के जो दुनिया में झांसी की पहचान का हस्ताक्षर बन गई। साल 1842 में यही वो दिन था जब रानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी नरेश राजा गंगाधर राव के साथ धूमधाम से संपन्न हुआ था और काशी की लाडली मनु अपनी बरछी ढाल कृपाण कटारी सखियों समेत झांसी की महारानी बनकर इस नगर में पधारी थी। मंगलवार को झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और महाराजा गंगाधर राव के विवाह की 184वीं वर्षगांठ बेहद धूमधाम से मनाई गई। एनसीसी बैंड की धुन ढोल नगाड़ों की गूंज पारंपरिक मराठी वेशभूषा में सजे बच्चे ऐतिहासिक पात्रों की झलक और देशभक्ति से सराबोर माहौल ने पूरे शहर को उत्सव के रंग में रंग दिया। कार्यक्रम की शुरुआत हुई शहर के प्रसिद्ध लक्ष्मी व्यायाम मंदिर से, जहां से महाराज गंगाधर राव की प्रतीकात्मक शाही बारात और शोभा यात्रा सजकर निकली।
1: ये आज झांसी नरेश महाराज गंगाधर राव और महारानी लक्ष्मीबाई के विवाह की 184वीं वर्षगांठ है। ये हम लोग महाराज गणेश मंदिर कमेटी संपूर्ण झांसी के साथ मना रही है। आज ये शोभा यात्रा जो बारात की शोभा यात्रा है, ये लक्ष्मीबाई मंदिर से प्रारंभ होकर कोतवाली मानिक चौक सराफा बाजार मरिया बाजार होते हुए गणेश मंदिर पर संपन्न होगी, जहाँ पर प्रतीकात्मक रूप से राजा रानी का विवाह होगा।
0: यात्रा के दौरान जगह जगह लोगों ने फूलों की बारिश कर बारात का स्वागत किया। सारा शहर झांसी की रानी अमर रहे के जयकारों से गूंज उठा। शोभा यात्रा में एनसीसी कैडेट्स, घोष दल, स्कूली छात्र छात्राएं, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और हजारों शहरवासी शामिल हुए। झांसी नरेश की बारात की भव्यता को कई गुना बढ़ा दिया इन छोटी छोटी बच्चियों ने, जो महारानी लक्ष्मीबाई का रूप धर शोभा यात्रा में पहुंची थी।
1: सिपाही के रूप में एनसीसी की छात्राएं हैं, स्कूल विद्यालयों के घोष है, स्कूल की छोटी छोटी छात्राएं जिस तरह से बारात में सजते हैं दुल्हन वेश में रानी, उस तरह से सजी हुई हैं स्कूल की अध्यापिकाएं और झांसी का जनजन, सभी लोग एकत्रित आपको देख रहे हो, ये इस आकर्षण का केंद्र है। और सभी इसमें हमारे राजनीतिक सभी हमारे प्रतिनिधि लोग मौजूद हैं, प्रशासन मौजूद है।
0: और रानी लक्ष्मीबाई ही क्यों, कई बच्चों ने महाराज गंगाधर राव, तात्या टोपे, झलकारी बाई, मोरोपन, सुंदर मुंदर और रानी की दुर्गा महिला सेना के किरदार निभाकर लोगों का मन मोह लिया। झांसी की महिलाएं पारंपरिक मराठी परिधान में नजर आई।
2: आज हम सभी लोग महारानी लक्ष्मीबाई और महाराजा गंगाधर राव की 184वीं शादी की वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं और ये बारात निकल रही है। आप देख ही रहे होंगे कितने जोर शोर के साथ। इसमें हमारे 50 एनसीसी कैडेट्स हैं और इसमें करीब 60 हमारे घोष दल जो होता है वो है, बाकी स्कूल के स्टूडेंट हैं, सभी पूरा स्टाफ है और बहुत ही हम लोग इस फंक्शन को एंजॉय करते हैं हर साल।
3: हर्ष और उल्लास के साथ हम लोग ये अपना पर्व उनकी वर्षगांठ बहुत धूमधाम से मनाते हैं झांसी में।
0: आपको बता दें कि साल 1842 में 19 मई के दिन महाराज गंगाधर राव और मणिकर्णिका का विवाह संपन्न हुआ था। विवाह के बाद ही मणिकर्णिका को लक्ष्मीबाई नाम मिला और आगे चलकर उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष कर भारतीय इतिहास में अमिट स्थान बनाया। उसी गौरवशाली इतिहास को जीवंत रखने के उद्देश्य से हर साल झांसी में ये आयोजन किया जाता है। अब की बार भी शहर के प्रमुख रास्तों से गुजरती हुई बारात ऐतिहासिक गणेश मंदिर पहुंची। गणेश मंदिर पहुंचने पर वैदिक मंत्रोच्चार और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ महाराजा गंगाधर राव और महारानी लक्ष्मीबाई का प्रतीकात्मक विवाह संपन्न करवाया गया। इस दौरान मंदिर परिसर जय भवानी और महारानी लक्ष्मीबाई अमर रहे के नारों से गूंज उठा। झांसी के लोगों के दिलों में महारानी लक्ष्मीबाई साहस, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति का अमिट प्रतीक है। तभी तो झांसी के लिए ये सिर्फ एक उत्सव नहीं बल्कि झांसी के लिए इस उत्सव का एक भावनात्मक महत्व है। ये उत्सव झांसी के गौरवशाली इतिहास को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का एक माध्यम है। झांसी से अजय झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: अब बात रामनगरी अयोध्या की। अयोध्या जल्द ही एक और उत्सव की साक्षी बनने जा रही है और ये उत्सव होगा 26 नवंबर यानी गंगा दशहरा के दिन। गंगा दशहरा के पावन अवसर पर रामनगरी अयोध्या एक बार फिर से भक्ति, आस्था और वैदिक परंपराओं के रंग में रंगने जा रही है। मंदिर परिसर में विशेष पूजा अर्चना, वैदिक मंत्रोच्चार अनुष्ठान और भगवान को विशेष भोग अर्पित किए जाएंगे। इस अवसर पर अयोध्या में सरयू स्नान के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ेगी। मठ मंदिरों में विशेष धार्मिक आयोजन होंगे। तिथि के हिसाब से गंगा दशहरा के दिन ही राम जन्मभूमि मंदिर में स्थापित राम दरबार की प्रथम वर्षगांठ भी है। पिछले वर्ष इसी पावन तिथि पर राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में राम दरबार समेत 6 उपमंदिरों की विधिवत स्थापना की गई थी। इस वर्षगांठ को लेकर भी अयोध्या में तैयारियां तेज हो गई हैं। देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं ताकि भक्त इस ऐतिहासिक और आध्यात्मिक आयोजन का सहजता के साथ हिस्सा बन पाए। रामनगरी अयोध्या में गंगा दशहरा को लेकर भक्तों में भी खासा उत्साह नजर आ रहा है। अब अयोध्या से चलते हैं उत्तराखंड और आपको दिखाते हैं गढ़वाल का वो उत्सव जिसे देखकर आपको ब्रज की होली याद आ जाएगी। चमोली के आदि बद्री धाम में नौठा कौथी लठमार मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में लाठी डंडों के प्रतीकात्मक युद्ध लड़ने की परंपरा होती है। आखिर क्यों मनाया जाता है ये उत्सव और क्या है यहाँ निभाई जाने वाली लठमार परंपरा की पूरी कहानी, चलिए आपको बताते हैं।

0: लाठियां प्रेम में पगी भी हो सकती हैं। लाठियों की मार में ढेर सारा प्यार और मीठी मनुहार भी होती है। ये दुनिया ने जाना जब जब देखी कृष्ण कन्हैया के ब्रज की होरी। लेकिन उसी प्रेम, उसी आस्था और उसी परंपरा का एक रंग दिखता है मथुरा के मैदानों से कोई 600 किलोमीटर दूर उत्तराखंड में चमोली के पहाड़ों पर। वो लाठी जो दुनिया के लिए कभी शक्ति, कभी नियंत्रण, कभी आत्मरक्षा तो कभी सहारे का प्रतीक है, उसका भावार्थ अक्षरशः बदल जाता है देवों की इस भूमि पर और ढल जाता है आस्था के उस सांचे में जो पहचान है देवताओं की भूमि कहलाने वाले इस राज्य की। एक सदियों पुरानी परंपरा का रूप है चमोली में हर साल लगने वाला नौठा कौथीग मेला, जहां भगवान आदि बद्रीनाथ के धाम में बरसों से लठमार युद्ध की ये परंपरा पूरी आस्था और विश्वास के साथ निभाई जा रही है। चमोली का नौठा कौथीग यानी लठमार मेला मुख्य रूप से नई फसल के आगमन का त्योहार है। और इसी त्योहार से जुड़ा है चमोली का ये लठमार युद्ध। बताया जाता है कि पुराने समय में यहाँ के गांवों के बीच इस बात पर लाठियों से असली युद्ध होता था कि सबसे पहले कौन सा गांव भगवान को नया अन्न अर्पित करेगा। जीतने वाले गांव को ये सम्मान और सौभाग्य हासिल होता था। समय के साथ युद्ध प्रतीकात्मक रूप में बदल गया। अब ये युद्ध महज परंपरा निभाने भर के लिए होता है, लेकिन स्थानीय ग्रामीणों के बीच इस युद्ध से जुड़ी शौर्य, प्रतिष्ठा और संघर्ष की भावना आज भी वही है और चमोली के 27 गांव आज भी पूरे उत्साह से इस परंपरा को निभाते हैं।
1: इसमें हमारे 27 गांव ब्राह्मण और ठाकुरों के 27 गांव है इस पूरे इलाके में, मतलब चांदपुर, उन गांवों के तमाम दर्शक आते हैं मेले में और खेलने के लिए, नाचने के लिए, तो वो सब लोग यहाँ पर आए भी थे। सारे लोग बाजी गाजी के साथ आते हैं और अभी प्रतीकात्मक जो डंडे आपने देखे वो प्रतीकात्मक यहाँ पर आते हैं और केवल वो शो के लिए मेले में आके वो एक सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए वो किया जा रहा है।
0: लठमार युद्ध के लिए पहले खेती के मालगुजार के नेतृत्व में गाजे बाजे, देव डोली और लाठी डंडों के साथ नौठा नृत्य दल आदि बद्री मंदिर पहुंचता है। इसके बाद दोनों दलों के बीच लाठी डंडों का प्रतीकात्मक युद्ध शुरू होता है। युद्ध के बाद ढोल दमाऊ की थाप पर दोनों दल अपने अपने नृत्य का प्रदर्शन करते हैं और फिर अंत में लठमार योद्धा आपस में गले मिलकर एकता का संदेश देते हैं।
2: मैं तीसरी बार आ रही हूँ, पिछले साल भी मैं यहाँ पर आई थी। जो हमारी पुरानी परंपरा है उसको जैसे बचा रहे हैं लोग, उसको दिखाने के लिए कि जो हमारी युवा पीढ़ी है उसको देखें कि पहले जमाने में कैसे हुआ करता था सभी चीजें। तो यहाँ पर खेती गाँव से लोग आते हैं, जो अनाज होता है वो चढ़ाने के लिए आते हैं और उसके बाद पहले क्या होता था, जो पिंड वाली गाँव है और खेती गाँव है उन दोनों में लड़ाई होती थी कहते हैं ऐसा। तो उसके बाद जो पिंड वाली है उन्होंने हार मान ली थी, तो पूरा जो मंदिर है इस पे पूरा वो कब्जा बोलते हैं जिसको, जो अनाज फर्स्ट यहाँ पर चढ़ाते हैं वो खेती वाले चढ़ाते हैं क्योंकि वो जीत गए थे। तो यही इंटरेस्टिंग होता है यहाँ पर। तो लोग पहले जो वो चीज पहले हुई थी उसको थोड़ा दिखावा करते हैं, परंपरा को बचाने के लिए लट्ठी से लड़ाई करते हैं, अभी भी करते हैं पर एक रियल नहीं है वो, एकदम से रियल नहीं है, नॉर्मल है वो, उसमें कोई किसी को चोट नहीं पहुंचाता है।
0: इसके बाद आखिर में भगवान आदि बद्रीनाथ को नए गेहूं और जौ का अन्न अर्पित किया जाता है। नई फसल की खुशी मनाने के लिए स्थानीय महिलाएं चोपुला, चाचरी और झुमेलो जैसे परंपरागत नृत्य करती हैं। हर साल की तरह इस बार भी नौठा कौथीग मेले में हिस्सा लेने बड़ी संख्या में श्रद्धालु आदि बद्री धाम पहुंचे हैं। आपको बता दें, आदि बद्री धाम सप्त बद्री की यात्रा का प्रथम स्थल है। यहाँ भगवान विष्णु के प्राचीन मंदिर हैं, जिन्हें आदि शंकराचार्य से जोड़ा जाता है। बर्फबारी के चलते जब सर्दियों में बद्रीनाथ धाम के कपाट 6 महीने बंद रहते हैं, तब यहाँ विशेष पूजा अर्चना होती है। गुजरते समय के साथ नौठा कौथीग लठमार मेला इस देवस्थल को गढ़वाल की संस्कृति और लोक परंपराओं की जड़ों से जोड़ने का अनुपम माध्यम बन गया है। स्थानीय लोग इसे अपनी सांस्कृतिक पहचान का उत्सव मानते हैं। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: बात एक ऐसे उत्सव और परंपरा की करते हैं जिसे मनाया ही जाता है कुदरत को सहेजने के लिए। कश्मीर के काजीकुंड इलाके के एक ऐसे उत्सव को आपको दिखाते हैं जहां झरनों और नदियों को साफ करने की परंपरा निभाई जाती है। जरा सोचिए, जल और पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से कितना अहम होता है ये उत्सव। खास बात यह है कि लोग अपने स्तर पर खुद ही सालों से इस परंपरा को निभाते आ रहे हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट।

0: बल्कि उस सालाना परंपरा का हिस्सा है जिसे पंचत नाग उत्सव के रूप में जाना जाता है।
1: इस साल वहाँ पंचत नाग यानी कि स्प्रिंग है उस इलाके का, ऐसा पानी का स्रोत जिसमें कई सारे स्प्रिंग आके मर्ज होते हैं और उस पूरे इलाके बल्कि कई सारे गांव हैं जिनके पीने के पानी की ज़रूरत से लेके जो इरिगेशन के लिए पानी चाहिए और बाकी ज़रूरतें भी जो हैं इसी स्प्रिंग से पूरी होती हैं। और हर साल ये गांव जो है सभी बूढ़े बच्चे जवान मिलके एक छुट्टी का दिन सिलेक्ट करते हैं और उस नाग की सफाई करते हैं। हालांकि इसको एक फिशिंग फेस्टिवल की तरीके से मनाया जाता है, लेकिन पीछे जो आइडियोलॉजी है, जो इसके पीछे मकसद है, वो है स्प्रिंग को साफ रखना, उस वाटर बॉडी को साफ रखना।
0: जल स्रोतों और पर्यावरण संरक्षण के मकसद से कई पीढ़ियों से यहाँ मई के महीने में ये उत्सव मनाया जाता है, जिसमें पंचत गांव के निवासी मीठे पानी के झरनों के एक समूह के आसपास जुटते हैं और सदियों पुरानी सामुदायिक परंपरा के तहत पानी से खरपतवार और कचरा साफ करते हैं। पंचत नाग झरनों की सफाई करने के साथ ही इस दिन मछली पकड़ने की भी इजाजत दी जाती है। इस आयोजन में पंचत के अलावा कई दूसरे गांव के लोग भी पूरे उत्साह के साथ शामिल होते हैं, जिनमें से कई गांव पीने के पानी और सिंचाई के लिए इन झरनों पर निर्भर हैं। ग्रीष्म ऋतु के अंत में जब जल स्तर घट जाता है तो जलीय खरपतवार तेजी से झरने में फैल जाते हैं, जिससे जल प्रवाह बाधित होता है। सामूहिक सफाई का ये प्रयास हाथ से झरने के बहाव को बहाल करता है, जो आसपास के 45 गांवों को पीने और सिंचाई का पानी मुहैया कराता है। साफ है कि ये वो उत्सव है जिसमें मछली पकड़ना नहीं बल्कि झरने को साफ करना अहम मकसद है, ताकि लोगों को पीने और सिंचाई के लिए पानी मिलता रहे। अपने प्राकृतिक संसाधनों की पूरी जिम्मेदारी लेकर पंचत में लोग जिस तरह का उदाहरण पेश कर रहे हैं, उसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात में भी सराहना कर चुके हैं।
1: तारीफ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की थी 2023 में एक मन की बात प्रोग्राम में। उन्होंने कहा था कि किस तरीके से अगर लोग चाहें तो खुद ऐसा एफर्ट कर सकते हैं जिससे प्रकृति को बचाया जा सकता है, अलग अलग तरीके से जो स्वच्छता है उसमें कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, ताकि जो आसपास की जगहें हैं साफ रहे, जो प्रकृति है, माहौल है, साफ रहे। तो पंचत नाग जो है आज एक मिसाल है कि कैसे खुद लोग जो है अगर चाहें, अगर एकजुट हो जाएं तो बहुत कुछ हो सकता है, और खासकर जो पोल्यूशन है उसके खिलाफ एक डिसाइसिव लड़ाई हो सकती है।
0: लोगों को उम्मीद है कि सरकार इस दिशा में जरूर कोई ना कोई ठोस कदम उठाएगी, जिससे एक दिन कश्मीर के पर्यटन मानचित्र पर पंचत का नाम शामिल होगा। श्रीनगर से मीर फरीद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: बात आस्था के उस मंगल उत्सव की जो देवभूमि उत्तराखंड में जारी है। पिछले कई दिनों से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा चल रही है। आपके साल हर रोज चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या का नया रिकॉर्ड बनता जा रहा है। पिछले एक महीने में चारधाम यात्रा में अब तक 17.5 लाख से ज्यादा लोग दर्शन कर चुके हैं। ये अभूतपूर्व रिकॉर्ड है। कल यानी 19 मई तक कुल 17,26,393 लोग चारधाम में दर्शन कर चुके हैं। इनमें से केदारनाथ धाम में अब तक 6,94,000 से ज्यादा लोगों ने दर्शन किए, जबकि बद्री विशाल के धाम बद्रीनाथ में अब तक 4,51,000 से ज्यादा लोग दर्शन कर चुके हैं। इसी क्रम में मां यमुना के धाम यमुनोत्री पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 2,92,000 को पार कर चुकी है, जबकि मां गंगा के धाम गंगोत्री में 19 मई तक 2,88,000 से ज्यादा श्रद्धालु हाजिरी लगा चुके हैं। अब देखिए, शिव भक्तों के लिए चारधाम यात्रा में केदारनाथ का बहुत महत्व है। आपको बता दें, केदारनाथ धाम देवभूमि में मौजूद पंच केदार में शामिल है। मान्यता है कि 5 जगहों पर पांडवों को भगवान शिव के अलग अलग अंगों के दर्शन हुए थे। केदारनाथ में पीठ के दर्शन हुए, मध्य महेश्वर में भगवान के मध्य भाग यानी नाभि के। 21 मई को मध्य महेश्वर धाम के कपाट खुलने जा रहे हैं, जिसके लिए धूमधाम से भगवान की डोली अपने शीतकालीन आवास ऊखीमठ से कल रवाना हुई थी। कल सुबह भगवान मध्य महेश्वर की उत्सव डोली अपने धाम में पहुंच जाएगी।

0: चले हैं अपने धाम यानी मध्य महेश्वर मंदिर। महिलाओं ने भजन गाकर अपने आराध्य को विदाई दी तो वहीं डोली के साथ साथ चल रहे भक्त महादेव का जयकारा लगाते पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ते रहे। ओंकारेश्वर मंदिर में भगवान शीतकालीन प्रवास पर थे। प्रवास पूरा होते ही मध्य महेश्वर की चल उत्सव विग्रह डोली अपने धाम के लिए रवाना हो गई। मंगलवार को खिमट के ओंकारेश्वर मंदिर से रवाना हुई डोली आज गोंडार गांव पहुंचेगी और 21 मई को मध्य महेश्वर मंदिर। डोली के धाम पहुंचने पर वैदिक मंत्रोच्चार और पूरे विधि विधान के साथ मंदिर के कपाट खोल दिए जाएंगे और अगले 6 महीने तक भगवान अपने भक्तों को यहीं दर्शन देंगे।
1: रांसी गांव से रुद्रप्रयाग जनपद के सीमांत गांव गोंडार में भगवान मध्यमेश्वर की डोली द्वितीय रात्रि प्रवास करेगी। 21 मई सुबह डोली गोंडार गांव से धाम के लिए प्रस्थान करेगी और धाम पहुंचने पर लगभग 11 बजे द्वितीय केदार भगवान मध्यमेश्वर के कपाट आगामी 6 माह के लिए खुलेंगे। आपको बता दें कि भगवान मध्यमेश्वर की मध्यमेश्वर धाम में मध्य भाग की पूजा होती है और इसके अलावा केदार घाटी में भगवान मध्यमेश्वर को न्याय के देवता के रूप में भी पूजा जाता है।
0: उत्तराखंड के पंच केदार में भगवान शिव के 5 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। केदारनाथ में बैल रूपी शिव के कुबड़ की, तुंगनाथ में भुजाओं की, रुद्रनाथ में मस्तक की, मध्य महेश्वर में नाभि की और कल्पेश्वर में जटाओं की पूजा होती है। पंच केदार में मध्य महेश्वर को दूसरे केदार के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि इस मंदिर को महाभारत काल में पांडवों द्वारा बनवाया गया था। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सिंहवाल, गुड न्यूज टुडे।

संस्कृति, परंपरा और आस्था का अनूठा संगम। आगे आगे भगवान की डोली, पीछे पीछे भक्तों की डोली। ढोल दमाव की थाप है, रंग है, राग है, आस्था परंपरा है। भगवान मध्य महेश्वर अपने धाम

0: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: कान फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर हर साल फैशन के नए रंग देखने को मिलते हैं, लेकिन इस बार जयपुर की बेटी और एक्ट्रेस रुचि गुर्जर ने अपने अंदाज से सिर्फ फैशन नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति को दुनिया के सामने रखा। रुचि जब पारंपरिक राजस्थानी घूंघट ओढ़कर रेड कार्पेट पहुंची तो हर किसी की निगाहें उन पर टिक गई।
3: कांस के रेड कार्पेट पर घूंघट में रुचि गुर्जर की एंट्री ने फैशन के इस मंच को महिलाओं की आजादी, पहचान और सामाजिक बदलाव की आवाज बना दिया। जिस बेबाकी और बेफिक्री से रुचि ने वहां मौजूद मीडिया के सामने पोज दिए और रेड कार्पेट पर वॉक किया, उसकी धमक दूर दूर तक सुनाई दी। राजस्थान की समृद्ध विरासत और संस्कृति से प्रेरित रुचि का ये खूबसूरत गुलाबी घूंघट लुक किसी फैशन स्टेटमेंट के लिए पहना गया महज एक आउटफिट नहीं था, बल्कि महिलाओं के हक और सम्मान में उठी एक आवाज थी। ये घूंघट उन सामाजिक बंधनों पर एक सवाल था जिसकी वजह से आज भी कई महिलाओं को अपनी पहचान छिपाकर जीना पड़ता है। कान के मंच पर रुचि गुर्जर ने सदियों पुरानी जबरन घूंघट प्रथा के खिलाफ एक साहसी और प्रतीकात्मक संदेश दिया। कान्स में रुचि गुर्जर ने कहा, मैंने घूंघट चुप रहने के लिए नहीं पहना, मैंने इसे विरोध के रूप में पहना है। महिला का सम्मान उसकी बराबरी, आत्मविश्वास और आजादी से होना चाहिए, उसकी पहचान छिपाने से नहीं। अगर मेरी ये वॉक किसी एक महिला के लिए भी बातचीत की शुरुआत बनती है तो ये फैशन से कहीं बड़ा उद्देश्य है। रुचि गुर्जर की इस पहल की तुलना उन अंतर्राष्ट्रीय सितारों से भी की जा रही है जिन्होंने बड़े मंचों का इस्तेमाल सामाजिक मुद्दों को उठाने के लिए किया, फिर चाहे वो केट ब्लैंकेट हो जिन्होंने शरणार्थियों और पर्यावरण के मुद्दे पर अपनी आवाज उठाई, या फिर एमा वॉटसन जिन्होंने जेंडर इक्वालिटी और एथिकल फैशन को समर्थन दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears. Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: रोम में पीएम मोदी और मेलोनी ने लगाया पौधा, मेलोनी को दिया भारत आने का न्योता। सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा पीएम मोदी और मेलोनी का टॉफी वाले गिफ्ट का वीडियो, अब तक 12 करोड़ पार व्यूज। पीएम मोदी के नाम एक और सर्वोच्च सम्मान, रोम में कृषि संगठन ने किया सम्मानित, संयुक्त राष्ट्र की एफएओ ने एग्रीकोला मेडल से नवाजा। अयोध्या राम मंदिर में त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू, एआई कैमरों से हो रही निगरानी, नई सुरक्षा दीवार और वॉच टावर का भी निर्माण। चित्तौड़गढ़ के सावलिया सेठ को भक्त की अनोखी भेंट, भगवान को अर्पित किया 197 ग्राम चांदी से बना हार्ट, सफल बाईपास ऑपरेशन के लिए मांगी थी मन्नत। देवभूमि उत्तराखंड में धूमधाम से जारी चार धाम यात्रा, बद्रीनाथ में 4.5 लाख से अधिक भक्तों ने किए दर्शन, केदारनाथ धाम पहुंचे करीब 7.25 लाख श्रद्धालु।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आ रहा।
3: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपिका पंत और आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे रत्न की जिसका संबंध सीधे तौर पर आपकी जिंदगी की खुशियों से है, मन की शांति से है और वो जुड़ा है आपकी माँ की खुशियों से। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाशक्तिशाली रत्न मोती की। मोती को क्यों इतना महत्वपूर्ण माना जाता है, मोती कैसे आपकी जिंदगी खुशहाल बना सकता है, हमारी आज की खास पेशकश में जानेंगे क्यों ज्योतिष का महत्वपूर्ण रत्न है मोती। तो चलिए करते हैं शुरुआत।

0: मोती करें धारण तो होगा चंद्रमा की बाधाओं का निवारण। मोती पहनने से बरते सावधानी, नहीं तो हो सकती है हानि। मोती का शुभ प्रभाव आपको बना सकता है धनवान। तनाव डिप्रेशन होगा दूर, चेहरे पर आएगी मुस्कान। ज्योतिष शास्त्र में मोती को चंद्रमा का प्रमुख रत्न माना गया है। माना जाता है कि मोती मन की शांति, स्थिरता और भावनाओं को संतुलित करने के लिए धारण किया जाता है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत ना हो तो कोई भी ग्रह अपना पूरा शुभ फल नहीं दे पाता। इसीलिए जीवन में किसी भी तरह के सुख के लिए कुंडली के चंद्रमा का शुभ फलदायी होना जरूरी है। इसलिए आज हम आपको मोती रत्न के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे धारण करके आप जीवन की तमाम समस्याओं से जल्दी छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं मोती धारण करने से किस तरह से मजबूत कर सकते हैं कुंडली का चंद्रमा। खास है मोती रत्न। मोती एक जैविक संरचना है जो मुख्य रूप से चंद्रमा का रत्न है। चंद्रमा की तरह उसका रत्न भी शांत, सुंदर और शीतल है। मोती का प्रभाव सीधा मन और शरीर के रसायनों पर पड़ता है। मोती का प्रभाव कभी तेज नहीं होता, वह धीरे धीरे और हल्का सा डालता है। इसलिए लोगों को लगता है कि मोती कभी नुकसान नहीं कर सकता। कभी कभी विशेष औषधि के रूप में भी इसका प्रयोग होता है।
1: मोती जो है चंद्रमा का रत्न है। अगर व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा मजबूत है तो आप मोती धारण कर सकते हैं। मोती धारण करने के जो फायदे हैं, आपको माता से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, माता का प्रेम मिलेगा, और चंद्रमा मन का कारक ग्रह है तो आपकी मानसिक स्थिति काफ़ी अच्छी होगी, और आपका डिसीजन लेने में, जो हम मन से चीज़ें अपने लाइफ में करते हैं, आपका डिसीजन सही होगा, डिसीजन अच्छे लेंगे आप, और भूमि भवन वाहन का भी आपको लाभ होगा।
0: ज्योतिष के जानकारों की माने तो जिन लोगों को जल्दी गुस्सा आता है उन्हें मोती पहनने से विशेष लाभ मिलता है, क्योंकि मोती का प्रभाव आपके मन और मस्तिष्क पर असर डालता है। तो आइए जानते हैं कि मोती पहनने से क्या क्या लाभ हो सकते हैं। मोती धारण करने के लाभ। मोती मन को शांत करता है और तनाव को कम कर देता है। डर और वहम दूर करके अच्छी नींद देता है मोती। मोती पहनने से शरीर के हार्मोन्स संतुलित रहते हैं। कभी कभी आर्थिक पक्ष को भी बहुत अच्छा कर देता है मोती। ज्योतिष के जानकारों की माने तो मोती एक ऐसा रत्न है, इसे सही तरीके से पहनने पर इंसान की बुद्धि स्थिर होती है। ऐसा इंसान अपनी मेहनत और लगन से मान सम्मान और धन कमाता है। तो चलिए अब आपको बताते हैं मोती धारण करने का सबसे सटीक तरीका क्या है।
1: मोती धारण करने का जो नियम है, अगर आपको मोती पहनना है तो कब सोमवार का दिन होना चाहिए, और मोती को दूध से स्नान कराने के बाद, गंगा जल से स्नान कराने के बाद अपने दाएं हाथ में ले लीजिए उसको, और ओम सोम सोमाय नमः 27 बार बोल के ओम नमः शिवाय का नाम लेके आप मोती को धारण कर लीजिए, और मोती आपके लिटिल फिंगर में, जो कनिष्ठा उंगली होती है, उसमें धारण करना होता है।
0: मोती धारण करने के नियम। मोती को चांदी की अंगूठी में पहनना चाहिए। मोती को कनिष्ठा अंगुली में शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को पहने। मोती को पूर्णिमा को भी धारण कर सकते हैं। मोती धारण करने से पहले इसे गंगा जल से धोएं, फिर मोती को शिवजी को अर्पित करें। मोती के साथ पीला पुखराज और मूंगा ही पहन सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि मोती हमेशा आपको फायदा ही पहुंचाए, इसलिए मोती पहनने से पहले विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। तो चलिए, अगर मोती आपके जीवन में अनुकूल प्रभाव ना डाल रहा हो तब आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं।
1: अगर हम ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से इसके बारे में बताना चाहें तो बहुत से ज्योतिषी क्या करते हैं कि चंद्रमा का निगेटिव होता है कुंडली में, चंद्रमा पाप ग्रह से दृष्टिगत होता है, दृष्टिगत से युति होता है, या फिर 6-8-12 भाव में चंद्रमा होता है, तो ज्योतिषी लोग क्या करते हैं, उसको चंद्रमा का रत्न पहना देते हैं। लेकिन अगर कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है, निगेटिव है, अगर उसको हम पहनाएंगे तो उसकी निगेटिविटी बढ़ जाएगी, जिससे इसकी वजह से चंद्रमा मन का कारक ग्रह, व्यक्ति मेंटली बहुत परेशान होने लगेगा, उसको बहुत सारी मेंटली समस्याएं आने लगेंगी। और जिसका कुंडली में चंद्रमा अच्छा है, चंद्रमा की स्थिति अच्छी है, चंद्रमा शुभ ग्रह के साथ युति हुआ है, केंद्र में धर्म त्रिकोण में है, कर्क लग्न का कुंडली जिसका है, और चंद्रमा की शुभ स्थिति हो, चंद्रमा को मोती धारण करवाएंगे तो उसको उसका बेनिफिट प्रॉपर तरीके से मिलेगा।
0: मोती पहनने के नुकसान। मोती अनुकूल ना हो तो मोती पहनने में सावधानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि मोती मानसिक स्थिति को धीरे धीरे प्रभावित करता है। अगर अनुकूल ना हो तो मोती गंभीर अवसाद और तनाव की समस्या दे सकता है। घबराहट, बेचैनी और चिड़चिड़ापन भी बढ़ा सकता है मोती। इसके कारण हार्मोन्स का संतुलन बिगड़ सकता है। कहते हैं मोती और चांदी दोनों ही चंद्रमा से संबंध रखते हैं, इसलिए मोती को चांदी में ही धारण करना शुभ होता है। तो आप भी अपनी कुंडली की स्थिति के अनुसार ही मोती पहनिए, ताकि आप भीतर से शांत, शालीन और सहज महसूस कर पाए, जिससे आपका जीवन चंद्रमा के समान शांत, शीतल और सुंदर हो जाए। आगे हम आपको बताएंगे कि किस राशि वालों को मोती धारण करना चाहिए और किन राशि वालों को मोती पहनने से बचना चाहिए। तब तक आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। ज्योतिष में रत्नों के प्रभाव को बहुत शक्तिशाली माना जाता है, तभी ज्यादातर ज्योतिषी रत्नों के प्रयोग पर जोर देते हैं। ऐसे में कभी कभी गलत रत्न आपकी जिंदगी को तबाह भी कर सकते हैं। मोती पहनने के लाभ क्या है ये भी आपको जानना चाहिए, पर मोती किन्हें पहनना चाहिए और किन्हें नहीं ये भी जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए जानते हैं आपके लिए कितना खास है और जरूरी है मोती रत्न।

0: मोती पहुंचा सकता है आपको नुकसान। मोती ना हो अनुकूल तो करता है परेशान। ज्योतिष शास्त्र में दैनिक जीवन की समस्याओं को दूर करने के कई प्रयोग किए जाते हैं और उन्हीं में से खास है रत्नों का प्रयोग। और ज्योतिषी मानते हैं कि रत्नों का प्रयोग सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है क्योंकि ये सीधे सीधे आपके शरीर और जीवन को प्रभावित करते हैं।
1: चंद्रमा को दशा का भी कारक ग्रह कहा गया है। अगर किसी की खराब ग्रह की दशा चल रही कुंडली में, अगर व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान है, अगर वो मोती धारण करता है तो उसके बुरे ग्रह की दशा का भी फल पॉजिटिव होने लगता है। चंद्रमा का बहुत बड़ा रहस्य है। और अगर माता जी की स्वास्थ्य में दिक्कत आ रहा है, चंद्रमा अगर आपका मजबूत होगा तो आपके माता जी के स्वास्थ्य में भी अच्छा लाभ पाया जाएगा, उनका स्वास्थ्य ठीक होगा। और चंद्रमा को अच्छा होने पे ही पहनना है तो आपके जो डिसीजन होंगे वो अच्छे होने लगेंगे।
0: ज्योतिष के जानकारों की माने तो हर लग्न के लोगों के लिए शुभ नहीं होता मोती। ये जान लीजिए कि मोती रत्न अलग अलग लग्नों और तत्वों के मुताबिक पहनना शुभ होता है, इसीलिए बिना कुंडली दिखाए या बिना सलाह लिए मोती नहीं पहनना चाहिए। तो देखिए किन लोगों के लिए मोती पहनना शुभ फलदायी होगा और किन्हें मोती से दूर रहना चाहिए। मोती कौन धारण कर सकता है, लग्न और तत्व के अनुसार ही मोती पहनना शुभ होता है। मेष, कर्क, वृश्चिक और मीन लग्न के लिए मोती धारण करना उत्तम है। सिंह, तुला और धनु लग्न में विशेष दशाओं में मोती धारण कर सकते हैं। वृष, मिथुन, कन्या, मकर और कुंभ लग्न के लिए मोती धारण करने से बचना चाहिए। यदि कुंडली में चंद्रमा, राहु या केतु के साथ हो, विशेषज्ञ की सलाह के बिना इसे धारण नहीं करना चाहिए। बहुत ज्यादा भावुक लोगों को मोती नहीं पहनना चाहिए। ज्योतिष के जानकार ये दावा करते हैं कि मोती को पहनने से पहले अपनी कुंडली में ये जरूर पता कर लें कि आप किस लग्न से ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप मोती धारण कर लें और वो आपको नुकसान पहुंचाने लगे। एक बात और ध्यान देने वाली है कि आप मोती ज्योतिषों के बताए अनुसार ही धारण करें। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि शिव की जटाओं में चंद्रमा का वास होता है, इसलिए माना जाता है कि मोतियों की माला को धारण करते समय चंद्रदेव के मंत्रों को 108 बार उसका जप कर लें। ऐसा माना जाता है कि मंत्रों का जप करके माला पहनने से मोती का प्रभाव हमेशा सकारात्मक फल देने वाला होता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि किन मंत्रों के जाप के साथ आपको मोतियों की माला धारण करनी चाहिए। चंद्रदेव का शक्तिशाली बीज मंत्र ओम श्राम श्रीम स्रो सह चंद्रमस्य नमः, ओम सोम सोमाय नमः, ओम नमः शिवाय। इसके अलावा भी मोती धारण करने वाले साधक को कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जानकार बताते हैं कि मोती का रखें खास ध्यान। मोती टूट गया हो या उसकी चमक खत्म हो गई हो तो ऐसे में मोती को बदल लें। माना जाता है कि खंडित मोती पहनने से नकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है, जिससे कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मोती को साफ करने के लिए बेकिंग सोडा या गर्म पानी का प्रयोग ना करें। मोती बहुत नर्म होता है, इसलिए इसे किसी अन्य रत्न के साथ ना पहने, इससे मोती पर खरोच आ सकती है। तो आप भी चंद्रमा का ये रत्न पहनने से पहले किसी जानकार की सलाह लेना ना भूलें, क्योंकि ये भूल आपको बहुत महंगी पड़ सकती है। और लाभकारी रत्न मोती कर सकता है नुकसान, तो चाहते हैं अगर मोती से आप लाभ तो कीजिए थोड़े प्रयास और नियम अनुसार पहनिए अपना लकी स्टोन, जिससे होगा आपका कल्याण। ज्योतिष शास्त्र में हर ग्रह के लिए खास रत्न का जिक्र किया गया है जो कि व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता है। उन्हीं रत्नों में से एक है रत्न पन्ना। ज्योतिष का विज्ञान कहता है कि कोई भी रत्न उसके ग्रह नक्षत्र और राशि के अनुसार ही पहनने चाहिए, नहीं तो इसके नकारात्मक प्रभाव भी सामने आ सकते हैं। चलिए जानते हैं कि बुध के रत्न की महिमा क्या है।

0: एक हरा रत्न जिसे धारण करने से मीठी होगी जुबान। व्यक्तित्व में आएगा निखार, समाज में बढ़ेगा सम्मान। जी हाँ, पन्ना वो बेमिसाल रत्न है जो कुंडली के बुध की शुद्धि कर सकता है। ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि बुध अगर मजबूत हो तो इंसान को वाणी, बुद्धि और व्यक्तित्व से प्रभावशाली बनाता है। मजबूत बुध आपकी कई समस्याओं का समाधान कर सकता है। मजबूत बुध आपको तीव्र बुद्धि, अच्छी त्वचा, सौंदर्य और एकाग्रता का वरदान दे सकता है। लेकिन अगर कुंडली में बुध कमजोर हो तो क्या मुश्किलें आती हैं? आइए जानते हैं। कमजोर बुध के नुकसान। व्यक्ति को त्वचा की समस्या होती है, चेहरे पर जल्दी झुर्रियां पड़ने लगती हैं। व्यक्ति तुरंत सर्दी, जुकाम, एलर्जी की चपेट में आ जाता है। चीजों को समझने में काफी समय लगता है। व्यक्ति बार बार चीजें भूलने लगता है। धन को लेकर उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। धोखा, छल या फरेब व्यक्ति का स्वभाव बन जाता है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो कुंडली के बुध को मजबूत करने का सबसे उत्तम उपाय है बुध का रत्न पन्ना धारण करना। रत्न शास्त्र में पन्ना को एक बेशकीमती और बहुमूल्य रत्न माना गया है। बुध का रत्न पन्ना बुद्धि बढ़ाने वाला माना जाता है और इस रत्न को धारण करने वाला सौभाग्यशाली होता है। तो चलिए जानते हैं कि बुध के ग्रह पन्ना में कौन कौन से गुण छिपे हुए हैं। पन्ना की विशेषताएं। पन्ना नवरत्नों में एक असरदार और कोमल प्रभाव का रत्न है। वह बैरूज वर्ग का रत्न है और एल्यूमिनियम और बेरिलियम का सिलिकेट है। कुछ मात्रा में इसमें ऑक्सीजन और जल पाया जाता है। पन्ना कभी भी मिले यह षटकोणीय ही होता है। सामान्यतः पन्ना बिना जाल के नहीं हो सकता। बिना दोष के पन्ना मिल पाना काफी कठिन होता है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो रत्नों में ग्रहों की ऊर्जा आकर्षित करने की अद्भुत क्षमता होती है। अगर आपकी कुंडली का कमजोर बुध आपकी समस्याएं बढ़ा रहा है तो बुध का ये दिव्य प्रभाव वाला रत्न आपकी तमाम परेशानियां दूर कर सकता है। पन्ना को हीलिंग स्टोन भी माना जाता है। कहते हैं कि पन्ना को धारण करने वाले व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कर पाता है। पन्ना पहनने से नौकरी और व्यापार में भी उन्नति होती है। साथ ही पन्ना आर्थिक संकट भी दूर करने में कारगर है। लाभकारी भी है पन्ना। पन्ना बुद्धि को प्रखर और एकाग्र कर देता है। यह मन की चिंताओं को दूर करता है। इसको धारण करने से वाणी की शक्ति बढ़ जाती है। आमतौर पर कारोबार और आर्थिक स्थिति में लाभ पहुंचाता है। इससे व्यक्तित्व चमकदार और प्रभावशाली हो जाता है। यह त्वचा के रोगों में भी खूब लाभ देता है। माना जाता है कि पन्ना धारण करने से पहले ज्योतिष के जानकारों की सलाह जरूर लेनी चाहिए। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार बुध का रत्न पन्ना तभी धारण करना चाहिए जब कुंडली में बुध शुभ भाव का स्वामी हो, क्योंकि बुध की अशुभ स्थिति में पन्ना धारण करना जीवन में अशुभ प्रभाव बढ़ाने लगता है। तो आइए जानते हैं कि पन्ना रत्न कब और कैसे नुकसान पहुंचाता है। पन्ना धारण करने के नुकसान। ये बुद्धि को भ्रमित और मन को परेशान कर सकता है। इसके कारण आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। पन्ना त्वचा में समस्याएं दे सकता है और पन्ना आत्मविश्वास को गड़बड़ भी कर सकता है। ज्योतिष के जानकारों के मुताबिक हर राशि और लग्न के लोगों के लिए शुभ नहीं है बुध का ये रत्न। तो चलिए अब जान लेते हैं कि किन राशि वालों को पन्ना धारण करना चाहिए और किन्हें पन्ना से दूर रहना चाहिए। लाभकारी भी है और कष्टकारी भी है। वृष, मिथुन, कन्या, तुला, मकर, कुंभ लग्न वालों के लिए पन्ना लाभकारी होता है। सिंह, धनु और मीन लग्न में विशेष दशाओं में पन्ना पहन सकते हैं। मेष, कर्क, वृश्चिक लग्न में पन्ना भूलकर भी धारण ना करें। जो लोग वाणी संबंधी कार्य में हैं उन्हें पन्ना धारण करना चाहिए। आर्थिक क्षेत्र के लोगों के लिए भी पन्ना धारण करना अनुकूल होगा। पन्ना शुभ परिणाम देने पर न सिर्फ दौलत और शोहरत दिलवाता है बल्कि आपको समाज में सम्मान भी हासिल होता है। तो आप भी पन्ना को सही तरीके से धारण करें जिससे न सिर्फ आपका बुध मजबूत होगा बल्कि आपकी सारी बाधाओं का भी अंत होगा। प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
2: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you non-stop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads.
4: Thank God I get to wait.
3: And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
0: वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का, जहां हम आपको दिखाएंगे तमाम ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं, इन्हें खूब पसंद किया जा रहा है।
5: नमस्कारम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
6: कृष्णा जी की पेंटिंग थी यहाँ पे, गणेशा,
5: ये प्यारी सी घंटी,
7: चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर, हाड़ कपा देने वाली ठंड और तापमान -40 डिग्री। लेकिन इस कड़ाके की सर्दी के बीच अगर आपको हरे कृष्णा और शिव आरती की गूंज सुनाई दे तो शायद आपको अपने कानों पर यकीन ना हो, लेकिन यह हकीकत है। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसे देखकर हर कोई हैरान है। यह नजारा भारत के किसी बर्फीले पहाड़ी इलाके का नहीं बल्कि रूस के सुदूर और बेहद ठंडे क्षेत्र साइबेरिया का है। इंटरनेट पर इस जगह को रूस का हिंदू गांव और मिनी इंडिया कहा जा रहा है। इस अनोखे गांव का नाम ओकुनेवो है, जो रूस के ओमस्क क्षेत्र में स्थित है। यह इलाका पश्चिमी साइबेरिया के अंतर्गत आता है और अपनी भीषण ठंड के लिए जाना जाता है। वीडियो में देखा जा सकता है कि चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, लेकिन कड़कड़ाती ठंड में भी स्थानीय और सैलानी पूरी श्रद्धा के साथ भक्ति में लीन है। इस वीडियो क्लिप को देखने के बाद हर भारतीय यूजर गर्व महसूस कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि साइबेरिया के इस छोटे से गांव में एक कृष्ण मंदिर है जो इस्कॉन से जुड़ा है। इसके साथ ही यहां भगवान शिव की भी पूजा की जाती है। -40 डिग्री टेम्परेचर के बावजूद लोग यहां सुबह शाम इकट्ठा होते हैं और पूजा करते हैं।
5: ग्राम पुजारी इस सेवा, ओम नमः शिवाय।
7: एक छोटे बच्चे का वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें वो अपने टीचर से शिकायत करते हुए नजर आ रहा है।
8: सर, एक बात बताओ, जब हम बाल कटवा के नहाएंगे तब तो मारता हूँ, अब जब लड़की इनके बाल इतने बड़े होते हैं तब तुम ना मारता हूँ।
7: वीडियो में नजर आता है कि बच्चा अपनी टीचर से शिकायत करता है। वो बोलता है, सर एक बात बताओ, जब हम बाल कटवा कर नहीं आते हैं तो आप हमें मारते हो, और जब लड़कियों के बाल इतने बड़े हो गए हैं तो नहीं मारते हो। अब यह शिकायत सुनकर टीचर कहता है, वो तो लड़कियां हैं, मगर तुरंत बाद बच्चा बोलता है कि लड़की से हम क्या कम हैं? अब यह सुनते ही टीचर भी हंसने लगता है।
8: सर, एक बात बताओ, जब हम बाल कटवा के नहाएंगे तो मैं मारता हूँ, अब जब लड़की इनके बाल इतने बड़े होते हैं तुम ना मारता हूँ।
9: ये तो लड़की है,
8: लड़की से तो हम कम आए।
7: यूजर्स इस वीडियो पर जमकर अपना प्यार लुटा रहे हैं, बच्चे के सवाल जवाब पर जमकर कमेंट्स कर रहे हैं।
8: अब जब लड़की इनके बाल इतने बड़े होते हैं तब तुम ना मारता।
9: ये तो लड़की है,
8: लड़की से तो हम कम आए।
7: सोशल मीडिया पर यह दिल छूने वाला वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक माँ की अथक मेहनत और ममता को देखकर हर कोई हैरान और भावुक हो रहा है। वीडियो में एक महिला अपने छोटे बच्चे को पीठ पर लपेटे हुए, सिर पर सब्जियों की भारी भारी टोकरियां संतुलित करते हुए ट्रक पर सामान लाती दिख रही है। बिना थके बिना रुके वह लगातार काम करती जा रही है। बताया जा रहा है कि महिला रोजाना बाजार आती है, सुबह से शाम तक वह न सिर्फ अपना काम संभालती है बल्कि अपने छोटे बच्चे की देखभाल भी करती है। बच्चा पीठ पर बंधा रहता है और माँ का काम चलता रहता है। वीडियो में दिख रहा है कि भारी टोकरियां सिर पर रखकर वह ट्रक की ऊंचाई तक चढ़ रही है। उसके चेहरे पर थकान तो है लेकिन आत्मविश्वास और ममता भी साफ दिख रही है। सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसी वीडियो सामने आते हैं जो दिल को छू जाते हैं। हाल ही में देश के जाने माने बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा ने अपने एक्स हैंडल से एक ऐसा ही बेहद प्यारा वीडियो शेयर किया है जिसने इंटरनेट की पब्लिक का दिल जीत लिया है। वायरल क्लिप में एक दादा पोते की जोड़ी पारंपरिक लोक नृत्य पर धड़कती नजर आ रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि पारंपरिक सफेद केडियू और धोती पहने एक बुजुर्ग व्यक्ति पूरे जोश के साथ थिरक रहे हैं। उनके साथ उनका छोटा पोता भी खड़ा है, जो कदम से कदम मिलाकर अपने दादाजी को कड़ी टक्कर दे रहा है। दोनों की जुगलबंदी और एनर्जी देखने लायक है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र की एक पारंपरिक और सांस्कृतिक लोक कला डायरा का है।

सोशल मीडिया पर इन दिनों इस बच्ची के डांस का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। आलम यह है कि वीडियो को महज कुछ ही दिनों में लाखों व्यूज मिल चुके हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि पीले कलर के सूट और सलवार में बच्ची दिल खोलकर डांस कर रही है। बच्ची के शानदार परफॉर्मेंस पर टीचर के एक्सप्रेशन भी देखने लायक रहे। वो खुद भी बच्ची के धांसू स्टेप और एक्सप्रेशन देख दंग नजर आए। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया है। आमतौर पर जिम में भारी वजन उठाते हुए युवा ही नजर आते हैं, लेकिन इस बार एक दादी ने ऐसा कारनामा कर दिखाया कि लोगों के होश उड़ गए। करीब 60 किलो वजन की इस बुजुर्ग महिला ने जिम में 110 किलो वजन उठाकर सभी को चौंका दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि दादी पूरी तैयारी के साथ जिम में मौजूद हैं और बिना किसी झिझक के भारी वजन उठाने के लिए तैयार हो जाती हैं। आसपास खड़े लोग भी पहले तो उन्हें देखकर थोड़ा हैरान होते हैं, लेकिन जैसे ही वे आत्मविश्वास के साथ 110 किलो वजन उठाती हैं, वहां मौजूद सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। उनकी ताकत, संतुलन और फोकस देखकर यह साफ समझ आता है कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। अगर इरादा मजबूत हो तो कुछ भी संभव है।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो खूब देखा जा रहा है। वीडियो में नजर आता है कि एक डिलीवरी बॉय कुछ सामान देने के लिए एक घर के सामने खड़ा है। कुछ देर बाद दरवाजा खुलता है और वो सामान उन्हें पकड़ा देता है। इसके बाद वो वापस जा रहा होता है, तभी उसे एक जगह पर बैट रखा हुआ नजर आता है। अब उस बैट को देखते ही उसके अंदर का क्रिकेटर जाग जाता है और वो बैट पकड़कर कुछ शॉट प्रैक्टिस करता दिखता है। अब उसके इसी काम के कारण वीडियो वायरल हो रहा है। बेल्जियम की एक युवती का भारतीय पान चखने वाला वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। भारत आने के बाद उसने पहली बार पान का स्वाद लिया और उसके चेहरे के भाव देखकर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं। किसी के लिए पान सिर्फ खाने की चीज होती है तो कुछ लोग इसे शौक और परंपरा से जोड़कर देखते हैं, लेकिन विदेश से आई इस लड़की के लिए यह अनुभव बिल्कुल नया और हैरान कर देने वाला था। यही वजह है कि इंटरनेट पर लोग इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं। वीडियो में पान बनाने की पूरी प्रोसेस भी दिखाई गई है। एलिस हर चीज को बड़ी दिलचस्पी से देखती हैं और बार बार सवाल पूछती रहती हैं। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी सारी चीजों को मिलाकर कोई कैसे खा सकता है। एक पल पर तो वह मजाकिया अंदाज में कहती है कि यह किसी खाने की चीज से ज्यादा किसी अजीब प्रयोग जैसा लग रहा है। हालांकि थोड़ी देर झिझक के बाद आखिरकार एलिस पान चखने के लिए तैयार हो जाती है। जैसे ही वह पहला निवाला खाती है, उसके चेहरे के बदलते भाव लोगों का ध्यान खींच लेते हैं। उसकी बड़ी होती आंखें साफ बता रही थी कि स्वाद उसके अनुमान से बिल्कुल अलग निकला। असम के मानस नेशनल पार्क का ये वीडियो है। बताया जा रहा है कि जंगल सफारी का लुत्फ उठा रहे पर्यटकों पर अचानक एक गैंडे ने हमला कर दिया। दरअसल पर्यटकों से भरी एक सफारी जीप जंगल की सैर पर निकली थी। लोग कैमरे में जंगली जानवरों को कैद करने में बिजी थे, तभी अचानक एक विशालकाय गैंडा भड़क गया और उसने सीधे पर्यटकों से भरी जीप पर हमला कर दिया। वीडियो में दिख रहा है कि गैंडे ने अपनी पूरी ताकत से जीप के किनारे पर सींग मारना शुरू कर दिया। वो गाड़ी को पलटने की जिद पर अड़ा हुआ था। आप देखेंगे कि सफारी जीप खिलौने के माफिक हिल रही थी। एक बार तो गैंडे ने अपनी सींग से गाड़ी उठा ही ली थी, लगा जैसे कि कोई बड़ी अनहोनी होकर रहेगी, लेकिन तभी ड्राइवर ने गजब का हौसला दिखाया। बिना घबराए उसने गाड़ी को रिवर्स लेना शुरू किया। वहीं आसपास मौजूद लोगों ने शोर मचाकर गैंडे का ध्यान भटकाने की कोशिश की। आखिरकार गैंडा पीछे हटा और किसी तरह पर्यटकों की जान में जान आई।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
1: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow?
2: It's your boy,
1: just
2: Jay-Z.
1: Search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
3: रोम में पीएम मोदी और मेदोनी लगाया पौधा, मेदोनी को दिया भारत आने का न्योता। सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा पीएम मोदी और मेदोनी का टॉफी वाले गिफ्ट का वीडियो, अब तक 12 करोड़ पार व्यूज। पीएम मोदी के नाम एक और सर्वोच्च सम्मान, रोम में कृषि संगठन ने किया सम्मानित। संयुक्त राष्ट्र की एफएओ ने एग्रीकोला मेडल से नवाजा। अयोध्या राम मंदिर में त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू, एआई कैमरों से हो रही निगरानी, नई सुरक्षा दीवार और वॉच टावर का भी निर्माण। चित्तौड़गढ़ के सावलिया सेठ को भक्त की अनोखी भेंट, भगवान को अर्पित किया 197 ग्राम चांदी से बना हार्ट, सफल बाईपास ऑपरेशन के लिए मांगी थी मन्नत। देवभूमि उत्तराखंड में धूमधाम से जारी चार धाम यात्रा, बद्रीनाथ में 4.5 लाख से अधिक भक्तों ने किए दर्शन, केदारनाथ धाम पहुंचे करीब 7.25 लाख श्रद्धालु।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात होगी देश में चल रहे मंगल उत्सव की। इस समय देश के अलग अलग छोर, अलग अलग किनारों पर कई उत्सव, कई लोक पर्व मनाए जा रहे हैं। भारत की संस्कृति में यूं भी परंपराओं के धागों से जाने कितने ही तीर्थ त्योहार और उत्सव बुने गए हैं। कुछ उत्सवों की कहानी पौराणिक आधार से निकली तो कुछ उत्सव हमारे देश की समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत की धरोहर हैं। ऐसा ही एक उत्सव यूपी के झांसी में मनाया गया। एक ऐसा उत्सव जो किसी देवी देवता के सम्मान में नहीं मनाया जाता, बल्कि हर साल झांसी ये उत्सव मनाती है उस महान वीरांगना की याद में जिनके साहस और शौर्य ने अंग्रेजों की नींद उड़ा दी थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और राजा गंगाधर राव के विवाह की 184वीं सालगिरह धूमधाम से मनाई गई। झांसी के लिए ये दिन इसीलिए भी खास है क्योंकि इसी दिन वाराणसी की मणिकर्णिका झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई बनकर इस नगर में आई थी।

0: राखी वैभव के साथ सगाई झांसी में। क्या हुआ रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में। सुभट बुंदेलों की विरुदावली सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। जब दुल्हन बनकर झांसी आई झांसी वाली रानी थी। आज से 184 साल पहले घटी इस घटना के हर दृश्य को कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने कोई 96 साल पहले अपनी कलम से जीवंत कर दिया था। झांसी उस दिन को आज फिर से जी रही है। वो शुभ घड़ी जब झांसी की धरती पर पांव पड़े थे उस वीरांगना के जो दुनिया में झांसी की पहचान का हस्ताक्षर बन गई। साल 1842 में यही वो दिन था जब रानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी नरेश राजा गंगाधर राव के साथ धूमधाम से संपन्न हुआ था और काशी की लाडली मनु अपनी बरछी ढाल कृपाण कटारी सखियों समेत झांसी की महारानी बनकर इस नगर में पधारी थी। मंगलवार को झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और महाराजा गंगाधर राव के विवाह की 184वीं वर्षगांठ बेहद धूमधाम से मनाई गई। एनसीसी बैंड की धुन ढोल नगाड़ों की गूंज पारंपरिक मराठी वेशभूषा में सजे बच्चे ऐतिहासिक पात्रों की झलक और देशभक्ति से सराबोर माहौल ने पूरे शहर को उत्सव के रंग में रंग दिया। कार्यक्रम की शुरुआत हुई शहर के प्रसिद्ध लक्ष्मी व्यायाम मंदिर से, जहां से महाराज गंगाधर राव की प्रतीकात्मक शाही बारात और शोभा यात्रा सजकर निकली।
1: ये आज झांसी नरेश महाराज गंगाधर राव और महारानी लक्ष्मीबाई के विवाह की 184वीं वर्षगांठ है। ये हम लोग महाराज गणेश मंदिर कमेटी संपूर्ण झांसी के साथ मना रही है। आज ये शोभा यात्रा जो बारात की शोभा यात्रा है ये लक्ष्मीबाई मंदिर से प्रारंभ होकर कोतवाली मानिक चौक सराफा बाजार मरिया बाजार होते हुए गणेश मंदिर पर संपन्न होगी, जहाँ पर प्रतीकात्मक रूप से राजा रानी का विवाह होगा।
0: यात्रा के दौरान जगह जगह लोगों ने फूलों की बारिश कर बारात का स्वागत किया। सारा शहर झांसी की रानी अमर रहे के जयकारों से गूंज उठा। शोभा यात्रा में एनसीसी कैडेट्स, घोष दल, स्कूली छात्र छात्राएं, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और हजारों शहरवासी शामिल हुए। झांसी नरेश की बारात की भव्यता को कई गुना बढ़ा दिया इन छोटी छोटी बच्चियों ने जो महारानी लक्ष्मीबाई का रूप धर शोभा यात्रा में पहुंची थी।
1: सिपाही के रूप में एनसीसी की छात्राएं हैं, स्कूल विद्यालयों के घोष है, स्कूल की छोटी छोटी छात्राएं जिस तरह से बारात में सजते हैं दुल्हन वेश में रानी, उस तरह से सजी हुई हैं स्कूल की अध्यापिकाएं और झांसी का जन जन, सभी लोग एकत्रित आप देख रहे हो, ये इस आकर्षण का केंद्र है। और सभी इसमें हमारे राजनीतिक सभी हमारे प्रतिनिधि लोग मौजूद हैं, प्रशासन मौजूद है।
0: और रानी लक्ष्मीबाई ही क्यों, कई बच्चों ने महाराज गंगाधर राव, तात्या टोपे, झलकारी बाई, मोरोपन, सुंदर मुंदर और रानी की दुर्गा महिला सेना के किरदार निभाकर लोगों का मन मोह लिया। झांसी की महिलाएं पारंपरिक मराठी परिधान में नजर आईं।
2: आज हम सभी लोग महारानी लक्ष्मीबाई और महाराजा गंगाधर राव की 184वीं शादी की वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं और ये बारात निकल रही है। आप देख ही रहे होंगे कितने जोर शोर के साथ। इसमें हमारे 50 एनसीसी कैडेट्स हैं और इसमें करीब 60 हमारे घोष दल जो होता है वो है, बाकी स्कूल के स्टूडेंट हैं, सभी पूरा स्टाफ है और बहुत ही हम लोग इस फंक्शन को एंजॉय करते हैं हर साल।
3: हर्ष और उल्लास के साथ हम लोग ये अपना पर्व उनकी वर्षगांठ बहुत धूमधाम से मनाते हैं झांसी में।
0: आपको बता दें कि साल 1842 में 19 मई के दिन महाराज गंगाधर राव और मणिकर्णिका का विवाह संपन्न हुआ था। विवाह के बाद ही मणिकर्णिका को लक्ष्मीबाई नाम मिला और आगे चलकर उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष कर भारतीय इतिहास में अमिट स्थान बनाया। उसी गौरवशाली इतिहास को जीवंत रखने के उद्देश्य से हर साल झांसी में ये आयोजन किया जाता है। अब की बार भी शहर के प्रमुख रास्तों से गुजरती हुई बारात ऐतिहासिक गणेश मंदिर पहुंची। गणेश मंदिर पहुंचने पर वैदिक मंत्रोच्चार और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ महाराजा गंगाधर राव और महारानी लक्ष्मीबाई का प्रतीकात्मक विवाह संपन्न करवाया गया। इस दौरान मंदिर परिसर जय भवानी और महारानी लक्ष्मीबाई अमर रहे के नारों से गूंज उठा। झांसी के लोगों के दिलों में महारानी लक्ष्मीबाई साहस, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति का अमिट प्रतीक है। तभी तो झांसी के लिए ये सिर्फ एक उत्सव नहीं बल्कि झांसी के लिए इस उत्सव का एक भावनात्मक महत्व है। ये उत्सव झांसी के गौरवशाली इतिहास को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का एक माध्यम है। झांसी से अजय झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: अब बात रामनगरी अयोध्या की। अयोध्या जल्द ही एक और उत्सव की साक्षी बनने जा रही है और ये उत्सव होगा 26 नवंबर यानी गंगा दशहरा के दिन। गंगा दशहरा के पावन अवसर पर रामनगरी अयोध्या एक बार फिर से भक्ति, आस्था और वैदिक परंपराओं के रंग में रंगने जा रही है। मंदिर परिसर में विशेष पूजा अर्चना, वैदिक मंत्रोच्चार अनुष्ठान और भगवान को विशेष भोग अर्पित किए जाएंगे। इस अवसर पर अयोध्या में सरयू स्नान के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ेगी। मठ मंदिरों में विशेष धार्मिक आयोजन होंगे। तिथि के हिसाब से गंगा दशहरा के दिन ही राम जन्मभूमि मंदिर में स्थापित राम दरबार की प्रथम वर्षगांठ भी है। पिछले वर्ष इसी पावन तिथि पर राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में राम दरबार समेत 6 उपमंदिरों की विधिवत स्थापना की गई थी। इस वर्षगांठ को लेकर भी अयोध्या में तैयारियां तेज हो गई हैं। देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं ताकि भक्त इस ऐतिहासिक और आध्यात्मिक आयोजन का सहजता के साथ हिस्सा बन पाए। रामनगरी अयोध्या में गंगा दशहरा को लेकर भक्तों में भी खासा उत्साह नजर आ रहा है। अब अयोध्या से चलते हैं उत्तराखंड और आपको दिखाते हैं गढ़वाल का वो उत्सव जिसे देखकर आपको ब्रज की होली याद आ जाएगी। चमोली के आदि बद्री धाम में नौठा कोथी लठमार मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में लाठी डंडों के प्रतीकात्मक युद्ध लड़ने की परंपरा होती है। आखिर क्यों मनाया जाता है ये उत्सव और क्या है यहाँ निभाई जाने वाली लठमार परंपरा की पूरी कहानी, चलिए आपको बताते हैं।

0: लाठियां प्रेम में पगी भी हो सकती हैं। लाठियों की मार में ढेर सारा प्यार और मीठी मनुहार भी होती है। ये दुनिया ने जाना जब जब देखी कृष्ण कन्हैया के ब्रज की होरी। लेकिन उसी प्रेम, उसी आस्था और उसी परंपरा का एक रंग दिखता है मथुरा के मैदानों से कोई 600 किलोमीटर दूर उत्तराखंड में चमोली के पहाड़ों पर। वो लाठी जो दुनिया के लिए कभी शक्ति, कभी नियंत्रण, कभी आत्मरक्षा तो कभी सहारे का प्रतीक है, उसका भावार्थ अक्षरशः बदल जाता है देवों की इस भूमि पर और ढल जाता है आस्था के उस सांचे में जो पहचान है देवताओं की भूमि कहलाने वाले इस राज्य की। एक सदियों पुरानी परंपरा का रूप है चमोली में हर साल लगने वाला नौठा कौथीग मेला, जहां भगवान आदि बद्रीनाथ के धाम में बरसों से लठमार युद्ध की ये परंपरा पूरी आस्था और विश्वास के साथ निभाई जा रही है। चमोली का नौठा कौथीग यानी लठमार मेला मुख्य रूप से नई फसल के आगमन का त्योहार है। और इसी त्योहार से जुड़ा है चमोली का ये लठमार युद्ध। बताया जाता है कि पुराने समय में यहाँ के गांवों के बीच इस बात पर लाठियों से असली युद्ध होता था कि सबसे पहले कौन सा गांव भगवान को नया अन्न अर्पित करेगा। जीतने वाले गांव को ये सम्मान और सौभाग्य हासिल होता था। समय के साथ युद्ध प्रतीकात्मक रूप में बदल गया। अब ये युद्ध महज परंपरा निभाने भर के लिए होता है, लेकिन स्थानीय ग्रामीणों के बीच इस युद्ध से जुड़ी शौर्य, प्रतिष्ठा और संघर्ष की भावना आज भी वही है और चमोली के 27 गांव आज भी पूरे उत्साह से इस परंपरा को निभाते हैं।
1: इसमें हमारे 27 गांव ब्राह्मण और ठाकुरों के 27 गांव है इस पूरे इलाके में, मल्ला चांदपुर में। उन गांवों के तमाम दर्शक आते हैं मेले में और खेलने के लिए, नाचने के लिए, तो वो सब लोग यहाँ पर आए भी थे। सारे लोग बाजी गाजे के साथ आते हैं और अभी प्रतीकात्मक जो डंडे आपने देखे वो प्रतीकात्मक यहाँ पर आते हैं और केवल वो शो के लिए मेले में आके वो एक सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए वो किया जा रहा है।
0: लठमार युद्ध के लिए पहले खेती के मालगुजार के नेतृत्व में गाजे बाजे, देव डोली और लाठी डंडों के साथ नौठा नृत्य दल आदि बद्री मंदिर पहुंचता है। इसके बाद दोनों दलों के बीच लाठी डंडों का प्रतीकात्मक युद्ध शुरू होता है। युद्ध के बाद ढोल दमाऊ की थाप पर दोनों दल अपने अपने नृत्य का प्रदर्शन करते हैं और फिर अंत में लठमार योद्धा आपस में गले मिलकर एकता का संदेश देते हैं।
2: तीसरी बार आ रही हूँ, पिछले साल भी मैं यहाँ पर आई थी। जो हमारी पुरानी परंपरा है उसको जैसे बचा रहे हैं लोग, उसको दिखाने के लिए कि जो हमारी युवा पीढ़ी है उसको देखें कि पहले जमाने में कैसे हुआ करता था सभी चीजें। तो यहाँ पर खेती गांव से लोग आते हैं, जो अनाज होता है वो चढ़ाने के लिए आते हैं और उसके बाद पहले क्या होता था, जो पिंड वाली गाँव है और खेती गाँव है उन दोनों में लड़ाई होती थी कहते हैं ऐसा। तो उसके बाद जो पिंड वाली है उन्होंने हार मान ली थी, तो पूरा जो मंदिर है इस पर पूरा वो कब्जा बोलते हैं, जिसको जो अनाज फर्स्ट यहाँ पर चढ़ाते हैं वो खेती वाले चढ़ाते हैं क्योंकि वो जीत गए थे। तो यही इंटरेस्टिंग होता है यहाँ पर। तो लोग पहले जो वो चीज पहले हुई थी उसको थोड़ा दिखावा करते हैं, परंपरा को बचाने के लिए तो लठी से लड़ाई करते हैं, अभी भी करते हैं पर एक रियल नहीं है वो, एकदम से रियल नहीं है, नॉर्मल है वो, उसमें कोई किसी को चोट नहीं पहुंचाता है।
0: इसके बाद आखिर में भगवान आदि बद्रीनाथ को नए गेहूं और जौ का अन्न अर्पित किया जाता है। नई फसल की खुशी मनाने के लिए स्थानीय महिलाएं चोपुला, चाचरी और झुमेलो जैसे परंपरागत नृत्य करती हैं। हर साल की तरह इस बार भी नौठा कौथीग मेले में हिस्सा लेने बड़ी संख्या में श्रद्धालु आदि बद्री धाम पहुंचे हैं। आपको बता दें, आदि बद्री धाम सप्त बद्री की यात्रा का प्रथम स्थल है। यहाँ भगवान विष्णु के प्राचीन मंदिर हैं, जिन्हें आदि शंकराचार्य से जोड़ा जाता है। बर्फबारी के चलते जब सर्दियों में बद्रीनाथ धाम के कपाट 6 महीने बंद रहते हैं, तब यहाँ विशेष पूजा अर्चना होती है। गुजरते समय के साथ नौठा कौथी लठमार मेला इस देवस्थल को गढ़वाल की संस्कृति और लोक परंपराओं की जड़ों से जोड़ने का अनुपम माध्यम बन गया है। स्थानीय लोग इसे अपनी सांस्कृतिक पहचान का उत्सव मानते हैं। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: बात एक ऐसे उत्सव और परंपरा की करते हैं जिसे मनाया ही जाता है कुदरत को सहेजने के लिए। कश्मीर के काजीकुंड इलाके के एक ऐसे उत्सव को आपको दिखाते हैं जहां झरनों और नदियों को साफ करने की परंपरा निभाई जाती है। जरा सोचिए, जल और पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से कितना अहम होता है ये उत्सव। खास बात यह है कि लोग अपने स्तर पर खुद ही सालों से इस परंपरा को निभाते आ रहे हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट।

0: कश्मीर की खूबसूरत वादियाँ, बर्फ से ढके ऊंचे पहाड़, कल कल बहती नदियाँ यहाँ आने वालों को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। यहाँ का अनंतनाग जिला भी प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। यहाँ की दिव्य छटाएं पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। यहाँ फूलों की मखमली वादियों से लेकर प्राचीन मीठे पानी के झरनों का एक मनमोहक संगम है। ये तस्वीरें अनंतनाग जिले के काजीकुंड इलाके के पंचतनाग की है, जहाँ लोग बड़ी संख्या में पानी के अंदर नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे ये सभी पानी में कुछ तलाश रहे हों। इस दौरान हाथ में मछली के आने की खुशी लोगों के चेहरे पर साफ देखी जा सकती है। दरअसल पारंपरिक टोकरियों के साथ मौजूद ये सभी लोग सिर्फ मछली पकड़ने के रोमांच को लेकर पानी के अंदर नहीं है, बल्कि ये उस सालाना परंपरा का हिस्सा है जिसे पंचतनाग उत्सव के रूप में जाना जाता है।
1: साल वहाँ पंचतनाग यानी कि स्प्रिंग है उस इलाके का, ऐसा पानी का स्रोत जिसमें कई सारे स्प्रिंग आके मर्ज होते हैं और उस पूरे इलाके बल्कि कई सारे गांव हैं जिनके पीने के पानी की ज़रूरत से लेके जो इरिगेशन के लिए पानी चाहिए और बाकी ज़रूरतें भी जो हैं इसी स्प्रिंग से पूरी होती हैं। और हर साल ये गांव जो है सभी बूढ़े बच्चे जवान मिलके एक छुट्टी का दिन सिलेक्ट करते हैं और उस नाग की सफाई करते हैं। हालांकि इसको एक फिशिंग फेस्टिवल की तरीके से मनाया जाता है, लेकिन पीछे जो आइडियोलॉजी है, जो इसके पीछे मकसद है, वो है स्प्रिंग को साफ रखना, उस वाटर बॉडी को साफ रखना।
0: जल स्रोतों और पर्यावरण संरक्षण के मकसद से कई पीढ़ियों से यहाँ मई के महीने में ये उत्सव मनाया जाता है, जिसमें पंचत गांव के निवासी मीठे पानी के झरनों के एक समूह के आसपास जुटते हैं और सदियों पुरानी सामुदायिक परंपरा के तहत पानी से खरपतवार और कचरा साफ करते हैं। पंचतनाग झरनों की सफाई करने के साथ ही इस दिन मछली पकड़ने की भी इजाजत दी जाती है। इस आयोजन में पंचत के अलावा कई दूसरे गांव के लोग भी पूरे उत्साह के साथ शामिल होते हैं, जिनमें से कई गांव पीने के पानी और सिंचाई के लिए इन झरनों पर निर्भर हैं। ग्रीष्म ऋतु के अंत में जब जल स्तर घट जाता है तो जलीय खरपतवार तेजी से झरने में फैल जाते हैं, जिससे जल प्रवाह बाधित होता है। सामूहिक सफाई का ये प्रयास हाथ से झरने के बहाव को बहाल करता है, जो आसपास के 45 गांवों को पीने और सिंचाई का पानी मुहैया कराता है। साफ है कि ये वो उत्सव है जिसमें मछली पकड़ना नहीं बल्कि झरने को साफ करना अहम मकसद है, ताकि लोगों को पीने और सिंचाई के लिए पानी मिलता रहे। अपने प्राकृतिक संसाधनों की पूरी जिम्मेदारी लेकर पंचत में लोग जिस तरह का उदाहरण पेश कर रहे हैं, उसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात में भी सराहना कर चुके हैं।
1: तारीफ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की थी 2023 में एक मन की बात प्रोग्राम में। उन्होंने कहा था कि किस तरीके से अगर लोग चाहें तो खुद ऐसा एफर्ट कर सकते हैं जिससे प्रकृति को बचाया जा सकता है, अलग अलग तरीके से जो स्वच्छता है उसमें कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, ताकि जो आसपास की जगहें हैं साफ रहे, जो प्रकृति है, माहौल है, साफ रहे। तो पंचतनाग जो है आज एक मिसाल है कि कैसे खुद लोग जो हैं अगर चाहें, अगर एकजुट हो जाएं तो बहुत कुछ हो सकता है, और खासकर जो पोल्यूशन है उसके खिलाफ एक डिसाइसिव लड़ाई हो सकती है।
0: लोगों को उम्मीद है कि सरकार इस दिशा में जरूर कोई ना कोई ठोस कदम उठाएगी, जिससे एक दिन कश्मीर के पर्यटन मानचित्र पर पंचत का नाम शामिल होगा। श्रीनगर से मीर फरीद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: आस्था के उस मंगल उत्सव की जो देवभूमि उत्तराखंड में जारी है। पिछले कई दिनों से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा चल रही है। आपके साल हर रोज चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या का नया रिकॉर्ड बनता जा रहा है। पिछले एक महीने में चारधाम यात्रा में अब तक 17.5 लाख से ज्यादा लोग दर्शन कर चुके हैं। ये अभूतपूर्व रिकॉर्ड है। कल यानी 19 मई तक कुल 17,26,393 लोग चारधाम में दर्शन कर चुके हैं। इनमें से केदारनाथ धाम में अब तक 6,94,000 से ज्यादा लोगों ने दर्शन किए, जबकि बद्री विशाल के धाम बद्रीनाथ में अब तक 4,51,000 से ज्यादा लोग दर्शन कर चुके हैं। इसी क्रम में मां यमुना के धाम यमुनोत्री पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 2,92,000 को पार कर चुकी है, जबकि मां गंगा के धाम गंगोत्री में 19 मई तक 2,88,000 से ज्यादा श्रद्धालु हाजिरी लगा चुके हैं। अब देखिए, शिव भक्तों के लिए चारधाम यात्रा में केदारनाथ का बहुत महत्व है। आपको बता दें, केदारनाथ धाम देवभूमि में मौजूद पंच केदार में शामिल है। मान्यता है कि 5 जगहों पर पांडवों को भगवान शिव के अलग अलग अंगों के दर्शन हुए थे। केदारनाथ

में पीठ के दर्शन हुए मध्य महेश्वर में भगवान के मध्य भाग यानी नाभि के। 21 मई को मध्य महेश्वर धाम के कपाट खुलने जा रहे हैं, जिसके लिए धूमधाम से भगवान की डोली अपने शीतकालीन आवास उखीमठ से कल रवाना हुई थी। कल सुबह भगवान मध्य महेश्वर की उत्सव डोली अपने धाम में पहुंच जाएगी।

0: संस्कृति, परंपरा और आस्था का अनूठा संगम। आगे आगे भगवान की डोली, पीछे पीछे भक्तों की डोली। ढोल दमाव की थाप है, रंग है, राग है, आस्था परंपार है। भगवान मध्य महेश्वर अपने धाम चले हैं। अपने धाम यानी मध्य महेश्वर मंदिर। महिलाओं ने भजन गाकर अपने आराध्य को विदाई दी तो वहीं डोली के साथ साथ चल रहे भक्त महादेव का जयकारा लगाते पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ते रहे। ओंकारेश्वर मंदिर में भगवान शीतकालीन प्रवास पर थे। प्रवास पूरा होते ही मध्य महेश्वर की चल उत्सव विग्रह डोली अपने धाम के लिए रवाना हो गई। मंगलवार को खीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर से रवाना हुई डोली आज गोंडार गांव पहुंचेगी और 21 मई को मध्य महेश्वर मंदिर। डोली के धाम पहुंचने पर वैदिक मंत्रोच्चार और पूरे विधि विधान के साथ मंदिर के कपाट खोल दिए जाएंगे और अगले 6 महीने तक भगवान अपने भक्तों को यहीं दर्शन देंगे।
1: रांसी गांव से रुद्रप्रयाग जनपद के सीमांत गांव गोंडार में भगवान मध्यमेश्वर की डोली द्वितीय रात्रि प्रवास करेगी। 21 मई सुबह डोली गोंडार गांव से धाम के लिए प्रस्थान करेगी और धाम पहुंचने पर लगभग 11 बजे द्वितीय केदार भगवान मध्यमेश्वर के कपाट आगामी 6 माह के लिए खुलेंगे। आपको बता दें कि भगवान मध्यमेश्वर की मध्यमेश्वर धाम में मध्य भाग की पूजा होती है और इसके अलावा केदार घाटी में भगवान मध्यमेश्वर को न्याय के देवता के रूप में भी पूजा जाता है।
0: उत्तराखंड के पंच केदार में भगवान शिव के 5 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। केदारनाथ में बैल रूपी शिव के कुबड़ की, तुंगनाथ में भुजाओं की, रुद्रनाथ में मस्तक की, मध्य महेश्वर में नाभि की और कल्पेश्वर में जटाओं की पूजा होती है। पंच केदार में मध्य महेश्वर को दूसरे केदार के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि इस मंदिर को महाभारत काल में पांडवों द्वारा बनवाया गया था। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सिंहवाल, गुड न्यूज टुडे।

0: something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow?
1: It's your boy,
0: just
1: Jay-Z.
0: Search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
3: कान फिल्म फेस्टिवल के रेड कारपेट पर हर साल फैशन के नए रंग देखने को मिलते हैं, लेकिन इस बार जयपुर की बेटी और एक्ट्रेस रुचि गुर्जर ने अपने अंदाज से सिर्फ फैशन नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति को दुनिया के सामने रखा। रुचि जब पारंपरिक राजस्थानी घूंघट ओढ़कर रेड कारपेट पहुंची तो हर किसी की निगाहें उन पर टिक गई।
4: कांस के रेड कार्पेट पर घूंघट में रुचि गुर्जर की एंट्री ने फैशन के इस मंच को महिलाओं की आजादी, पहचान और सामाजिक बदलाव की आवाज बना दिया। जिस बेबाकी और बेफिक्री से रुचि ने वहां मौजूद मीडिया के सामने पोज दिए और रेड कार्पेट पर वॉक किया, उसकी धमक दूर दूर तक सुनाई दी। राजस्थान की समृद्ध विरासत और संस्कृति से प्रेरित रुचि का ये खूबसूरत गुलाबी घूंघट लुक किसी फैशन स्टेटमेंट के लिए पहना गया महज एक आउटफिट नहीं था, बल्कि महिलाओं के हक और सम्मान में उठी एक आवाज थी। ये घूंघट उन सामाजिक बंधनों पर एक सवाल था जिसकी वजह से आज भी कई महिलाओं को अपनी पहचान छिपा कर जीना पड़ता है। कान के मंच पर रुचि गुर्जर ने सदियों पुरानी जबरन घूंघट प्रथा के खिलाफ एक साहसी और प्रतीकात्मक संदेश दिया। कान में रुचि गुर्जर ने कहा, मैंने घूंघट चुप रहने के लिए नहीं पहना, मैंने इसे विरोध के रूप में पहना है। महिला का सम्मान उसकी बराबरी, आत्मविश्वास और आजादी से होना चाहिए, उसकी पहचान छिपाने से नहीं। अगर मेरी ये वॉक किसी एक महिला के लिए भी बातचीत की शुरुआत बनती है तो ये फैशन से कहीं बड़ा उद्देश्य है। रुचि गुर्जर की इस पहल की तुलना उन अंतर्राष्ट्रीय सितारों से भी की जा रही है जिन्होंने बड़े मंचों का इस्तेमाल सामाजिक मुद्दों को उठाने के लिए किया। फिर चाहे वो केट ब्लैंकेट हो जिन्होंने शरणार्थियों और पर्यावरण के मुद्दे पर अपनी आवाज उठाई, या फिर एमा वॉटसन जिन्होंने जेंडर इक्वालिटी और एथिकल फैशन को समर्थन दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's classic rock hits, you'll find only the best in high octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
2: Good news today इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से
3: रोम में पीएम मोदी और मेलोनी लगाया पौधा, मेलोनी को दिया भारत आने का न्योता। सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा पीएम मोदी और मेलोनी का कॉफी वाले गिफ्ट का वीडियो, अब तक 12 करोड़ पार व्यूज। पीएम मोदी के नाम एक और सर्वोच्च सम्मान, रोम में कृषि संगठन ने किया सम्मानित, संयुक्त राष्ट्र की एफएओ ने एग्रीकोला मेडल से नवाजा। अयोध्या राम मंदिर में त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू, एआई कैमरों से हो रही निगरानी, नई सुरक्षा दीवार और वॉच टावर का भी निर्माण। चित्तौड़गढ़ के सावलिया सेठ को भक्त की अनोखी भेंट, भगवान को अर्पित किया 197 ग्राम चांदी से बना हार्ट, सफल बाईपास ऑपरेशन के लिए मांगी थी मन्नत। देवभूमि उत्तराखंड में धूमधाम से जारी चार धाम यात्रा, बद्रीनाथ में 4.5 लाख से अधिक भक्तों ने किए दर्शन, केदारनाथ धाम पहुंचे करीब 7.25 लाख श्रद्धालु।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को।
4: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे रत्न की जिसका संबंध सीधे तौर पर आपकी जिंदगी की खुशियों से है, मन की शांति से है और वो जुड़ा है आपकी माँ की खुशियों से। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाशक्तिशाली रत्न मोती की। मोती को क्यों इतना महत्वपूर्ण माना जाता है, मोती कैसे आपकी जिंदगी खुशहाल बना सकता है, हमारी आज की खास पेशकश में जानेंगे क्यों ज्योतिष का महत्वपूर्ण रत्न है मोती। तो चलिए करते हैं शुरुआत।

0: मोती करें धारण तो होगा चंद्रमा की बाधाओं का निवारण। मोती पहनने से बरते सावधानी, नहीं तो हो सकती है हानि। मोती का शुभ प्रभाव आपको बना सकता है धनवान। तनाव डिप्रेशन होगा दूर, चेहरे पर आएगी मुस्कान। ज्योतिष शास्त्र में मोती को चंद्रमा का प्रमुख रत्न माना गया है। माना जाता है कि मोती मन की शांति, स्थिरता और भावनाओं को संतुलित करने के लिए धारण किया जाता है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत ना हो तो कोई भी ग्रह अपना पूरा शुभ फल नहीं दे पाता। इसीलिए जीवन में किसी भी तरह के सुख के लिए कुंडली के चंद्रमा का शुभ फलदायी होना जरूरी है। इसलिए आज हम आपको मोती रत्न के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे धारण करके आप जीवन की तमाम समस्याओं से जल्दी छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं मोती धारण करने से किस तरह से मजबूत कर सकते हैं कुंडली का चंद्रमा। खास है मोती रत्न। मोती एक जैविक संरचना है जो मुख्य रूप से चंद्रमा का रत्न है। चंद्रमा की तरह उसका रत्न भी शांत, सुंदर और शीतल है। मोती का प्रभाव सीधा मन और शरीर के रसायनों पर पड़ता है। मोती का प्रभाव कभी तेज नहीं होता, वह धीरे धीरे और हल्का सा डालता है। इसलिए लोगों को लगता है कि मोती कभी नुकसान नहीं कर सकता। कभी कभी विशेष औषधि के रूप में भी इसका प्रयोग होता है।
1: मोती जो है चंद्रमा का रत्न है। अगर व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा मजबूत है तो आप मोती धारण कर सकते हैं। मोती धारण करने के जो फायदे हैं, आपको माता से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, माता का प्रेम मिलेगा, और चंद्रमा मन का कारक ग्रह है तो आपकी मानसिक स्थिति काफ़ी अच्छी होगी। और आपका डिसीजन लेने में, जो हम मन से चीज़ें अपने लाइफ में करते हैं, आपका डिसीजन सही होगा, डिसीजन अच्छे लेंगे आप, और भूमि भवन वाहन का भी आपको लाभ होगा।
0: ज्योतिष के जानकारों की माने तो जिन लोगों को जल्दी गुस्सा आता है उन्हें मोती पहनने से विशेष लाभ मिलता है, क्योंकि मोती का प्रभाव आपके मन और मस्तिष्क पर असर डालता है। तो आइए जानते हैं कि मोती पहनने से क्या क्या लाभ हो सकते हैं। मोती धारण करने के लाभ। मोती मन को शांत करता है और तनाव को कम कर देता है। डर और वहम दूर करके अच्छी नींद देता है मोती। मोती पहनने से शरीर के हार्मोन्स संतुलित रहते हैं। कभी कभी आर्थिक पक्ष को भी बहुत अच्छा कर देता है मोती। ज्योतिष के जानकारों की माने तो मोती एक ऐसा रत्न है, इसे सही तरीके से पहनने पर इंसान की बुद्धि स्थिर होती है। ऐसा इंसान अपनी मेहनत और लगन से मान सम्मान और धन कमाता है। तो चलिए अब आपको बताते हैं मोती धारण करने का सबसे सटीक तरीका क्या है।
1: मोती धारण करने का जो नियम है, अगर आपको मोती पहनना है तो कब सोमवार का दिन होना चाहिए, और मोती को दूध से स्नान कराने के बाद, गंगा जल से स्नान कराने के बाद अपने दाएं हाथ में ले लीजिए उसको, और ओम सोम सोमाय नमः 27 बार बोल के ओम नमः शिवाय का नाम लेके आप मोती को धारण कर लीजिए, और मोती आपके लिटिल फिंगर में, जो कनिष्ठा उंगली होती है, उसमें धारण करना होता है।
0: मोती धारण करने के नियम। मोती को चांदी की अंगूठी में पहनना चाहिए। मोती को कनिष्ठा अंगुली में शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को पहने। मोती को पूर्णिमा को भी धारण कर सकते हैं। मोती धारण करने से पहले इसे गंगा जल से धोएं, फिर मोती को शिवजी को अर्पित करें। मोती के साथ पीला पुखराज और मूंगा ही पहन सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि मोती हमेशा आपको फायदा ही पहुंचाए, इसलिए मोती पहनने से पहले विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। तो चलिए, अगर मोती आपके जीवन में अनुकूल प्रभाव ना डाल रहा हो तब आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं।
1: अगर हम ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से इसके बारे में बताना चाहें तो बहुत से ज्योतिषी क्या करते हैं कि चंद्रमा का निगेटिव होता है कुंडली में, चंद्रमा पाप ग्रह से दृष्टिगत होता है, दृष्टिगत से युति होता है, या फिर 6, 8, 12 भाव में चंद्रमा होता है, तो ज्योतिषी लोग क्या करते हैं, उसको चंद्रमा का रत्न पहना देते हैं। लेकिन अगर कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है, निगेटिव है, अगर उसको हम पहनाएंगे तो उसकी निगेटिविटी बढ़ जाएगी, जिससे इसकी वजह से चंद्रमा मन का कारक ग्रह, व्यक्ति मेंटली बहुत परेशान होने लगेगा, उसको बहुत सारी मेंटली समस्याएं आने लगेंगी। और जिसका कुंडली में चंद्रमा अच्छा है, चंद्रमा की स्थिति अच्छी है, चंद्रमा शुभ ग्रह के साथ युति हुआ है, केंद्र में धर्म त्रिकोण में है, कर्क लग्न का कुंडली जिसका है, और चंद्रमा की शुभ स्थिति हो, चंद्रमा को मोती धारण करवाएंगे तो उसको उसका बेनिफिट प्रॉपर तरीके से मिलेगा।
0: मोती पहनने के नुकसान। मोती अनुकूल ना हो तो मोती पहनने में सावधानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि मोती मानसिक स्थिति को धीरे धीरे प्रभावित करता है। अगर अनुकूल ना हो तो मोती गंभीर अवसाद और तनाव की समस्या दे सकता है। घबराहट, बेचैनी और चिड़चिड़ापन भी बढ़ा सकता है मोती। इसके कारण हार्मोन्स का संतुलन बिगड़ सकता है। कहते हैं मोती और चांदी दोनों ही चंद्रमा से संबंध रखते हैं, इसलिए मोती को चांदी में ही धारण करना शुभ होता है। तो आप भी अपनी कुंडली की स्थिति के अनुसार ही मोती पहनिए, ताकि आप भीतर से शांत, शालीन और सहज महसूस कर पाए, जिससे आपका जीवन चंद्रमा के समान शांत, शीतल और सुंदर हो जाए। आगे हम आपको बताएंगे कि किस राशि वालों को मोती धारण करना चाहिए और किन राशि वालों को मोती पहनने से बचना चाहिए। तब तक आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। ज्योतिष में रत्नों के प्रभाव को बहुत शक्तिशाली माना जाता है, तभी ज्यादातर ज्योतिषी रत्नों के प्रयोग पर जोर देते हैं। ऐसे में कभी कभी गलत रत्न आपकी जिंदगी को तबाह भी कर सकते हैं। मोती पहनने के लाभ क्या है ये भी आपको जानना चाहिए, पर मोती किन्हें पहनना चाहिए और किन्हें नहीं ये भी जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए जानते हैं आपके लिए कितना खास है और जरूरी है मोती रत्न।

0: मोदी पहुंचा सकता है आपको नुकसान। मोती ना हो अनुकूल तो करता है परेशान। ज्योतिष शास्त्र में दैनिक जीवन की समस्याओं को दूर करने के कई प्रयोग किए जाते हैं और उन्हीं में से खास है रत्नों का प्रयोग। और ज्योतिषी मानते हैं कि रत्नों का प्रयोग सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है क्योंकि ये सीधे सीधे आपके शरीर और जीवन को प्रभावित करते हैं।
1: चंद्रमा को दशा का भी कारक ग्रह कहा गया है। अगर किसी की खराब ग्रह की दशा चल रही कुंडली में, अगर व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान है, अगर वो मोती धारण करता है तो उसके बुरे ग्रह की दशा का भी फल पॉजिटिव होने लगता है। चंद्रमा का बहुत बड़ा रहस्य है। और अगर माता जी की स्वास्थ्य में दिक्कत आ रहा है, चंद्रमा अगर आपका मजबूत होगा तो आपके माता जी के स्वास्थ्य में भी अच्छा लाभ पाया जाएगा, उनका स्वास्थ्य ठीक होगा। और अगर चंद्रमा को अच्छा होने पे ही पहनना है तो आपके जो डिसीजन होंगे वो अच्छे होने लगेंगे।
0: ज्योतिष के जानकारों की माने तो हर लग्न के लोगों के लिए शुभ नहीं होता मोती। ये जान लीजिए कि मोती रत्न अलग अलग लग्नों और तत्वों के मुताबिक पहनना शुभ होता है, इसीलिए बिना कुंडली दिखाए या बिना सलाह लिए मोती नहीं पहनना चाहिए। तो देखिए किन लोगों के लिए मोती पहनना शुभ फलदायी होगा और किन्हें मोती से दूर रहना चाहिए। मोती कौन धारण कर सकता है, लग्न और तत्व के अनुसार ही मोती पहनना शुभ होता है। मेष, कर्क, वृश्चिक और मीन लग्न के लिए मोती धारण करना उत्तम है। सिंह, तुला और धनु लग्न में विशेष दशाओं में मोती धारण कर सकते हैं। वृष, मिथुन, कन्या, मकर और कुंभ लग्न के लिए मोती धारण करने से बचना चाहिए। यदि कुंडली में चंद्रमा, राहु या केतु के साथ हो, विशेषज्ञ की सलाह के बिना इसे धारण नहीं करना चाहिए। बहुत ज्यादा भावुक लोगों को मोती नहीं पहनना चाहिए। ज्योतिष के जानकार ये दावा करते हैं कि मोती को पहनने से पहले अपनी कुंडली में ये जरूर पता कर लें कि आप किस लग्न से ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप मोती धारण कर लें और वो आपको नुकसान पहुंचाने लगे। एक बात और ध्यान देने वाली है कि आप मोती ज्योतिषों के बताए अनुसार ही धारण करें। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि शिव की जटाओं में चंद्रमा का वास होता है, इसीलिए माना जाता है कि मोतियों की माला को धारण करते समय चंद्रदेव के मंत्रों को 108 बार उसका जप कर लें। ऐसा माना जाता है कि मंत्रों का जप करके माला पहनने से मोती का प्रभाव हमेशा सकारात्मक फल देने वाला होता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि किन मंत्रों के जाप के साथ आपको मोतियों की माला धारण करनी चाहिए। चंद्रदेव का शक्तिशाली बीज मंत्र ओम श्राम श्रीं स्रो सह चंद्रमस्य नमः, ओम सोम सोमाय नमः, ओम नमः शिवाय। इसके अलावा भी मोती धारण करने वाले साधक को कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जानकार बताते हैं कि मोती का रखें खास ध्यान। मोती टूट गया हो या उसकी चमक खत्म हो गई हो तो ऐसे में मोती को बदल लें। माना जाता है कि खंडित मोती पहनने से नकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है, जिससे कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मोती को साफ करने के लिए बेकिंग सोडा या गर्म पानी का प्रयोग ना करें। मोती बहुत नर्म होता है, इसलिए इसे किसी अन्य रत्न के साथ ना पहने, इससे मोती पर खरोच आ सकती है। तो आप भी चंद्रमा का ये रत्न पहनने से पहले किसी जानकार की सलाह लेना ना भूलें, क्योंकि ये भूल आपको बहुत महंगी पड़ सकती है। और लाभकारी रत्न मोती कर सकता है नुकसान, तो चाहते हैं अगर मोती से आप लाभ, तो कीजिए थोड़े प्रयास और नियम अनुसार पहनिए अपना लकी स्टोन, जिससे होगा आपका कल्याण। ज्योतिष शास्त्र में हर ग्रह के लिए खास रत्न का जिक्र किया गया है जो कि व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता है। उन्हीं रत्नों में से एक है रत्न पन्ना। ज्योतिष का विज्ञान कहता है कि कोई भी रत्न उसके ग्रह नक्षत्र और राशि के अनुसार ही पहनने चाहिए, नहीं तो इसके नकारात्मक प्रभाव भी सामने आ सकते हैं। चलिए जानते हैं कि बुध के रत्न की महिमा क्या है।

0: एक हरा रत्न जिसे धारण करने से मीठी होगी जुबान। व्यक्तित्व में आएगा निखार, समाज में बढ़ेगा सम्मान। जी हाँ, पन्ना वो बेमिसाल रत्न है जो कुंडली के बुध की शुद्धि कर सकता है। ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि बुध अगर मजबूत हो तो इंसान को वाणी, बुद्धि और व्यक्तित्व से प्रभावशाली बनाता है। मजबूत बुध आपकी कई समस्याओं का समाधान कर सकता है। मजबूत बुध आपको तीव्र बुद्धि, अच्छी त्वचा, सौंदर्य और एकाग्रता का वरदान दे सकता है। लेकिन अगर कुंडली में बुध कमजोर हो तो क्या मुश्किलें आती हैं? आइए जानते हैं। कमजोर बुध के नुकसान। व्यक्ति को त्वचा की समस्या होती है, चेहरे पर जल्दी झुर्रियां पड़ने लगती हैं। व्यक्ति तुरंत सर्दी, जुकाम, एलर्जी की चपेट में आ जाता है। चीजों को समझने में काफी समय लगता है। व्यक्ति बार बार चीजें भूलने लगता है। धन को लेकर उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। धोखा, छल या फरेब व्यक्ति का स्वभाव बन जाता है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो कुंडली के बुध को मजबूत करने का सबसे उत्तम उपाय है बुध का रत्न पन्ना धारण करना। रत्न शास्त्र में पन्ना को एक बेशकीमती और बहुमूल्य रत्न माना गया है। बुध का रत्न पन्ना बुद्धि बढ़ाने वाला माना जाता है और इस रत्न को धारण करने वाला सौभाग्यशाली होता है। तो चलिए जानते हैं कि बुध के ग्रह पन्ना में कौन कौन से गुण छिपे हुए हैं। पन्ना की विशेषताएं। पन्ना नवरत्नों में एक असरदार और कोमल प्रभाव का रत्न है। वह बैरूज वर्ग का रत्न है और एल्यूमिनियम और बेरिलियम का सिलिकेट है। कुछ मात्रा में इसमें ऑक्सीजन और जल पाया जाता है। पन्ना कभी भी मिले यह षटकोणीय ही होता है। सामान्यतः पन्ना बिना जाल के नहीं हो सकता। बिना दोष के पन्ना मिल पाना काफी कठिन होता है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो रत्नों में ग्रहों की ऊर्जा आकर्षित करने की अद्भुत क्षमता होती है। अगर आपकी कुंडली का कमजोर बुध आपकी समस्याएं बढ़ा रहा है तो बुध का ये दिव्य प्रभाव वाला रत्न आपकी तमाम परेशानियां दूर कर सकता है। पन्ना को हीलिंग स्टोन भी माना जाता है। कहते हैं कि पन्ना को धारण करने वाले व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कर पाता है। पन्ना पहनने से नौकरी और व्यापार में भी उन्नति होती है। साथ ही पन्ना आर्थिक संकट भी दूर करने में कारगर है। लाभकारी भी है पन्ना। पन्ना बुद्धि को प्रखर और एकाग्र कर देता है। यह मन की चिंताओं को दूर करता है। इसको धारण करने से वाणी की शक्ति बढ़ जाती है। आमतौर पर कारोबार और आर्थिक स्थिति में लाभ पहुंचाता है। इससे व्यक्तित्व चमकदार और प्रभावशाली हो जाता है। यह त्वचा के रोगों में भी खूब लाभ देता है। माना जाता है कि पन्ना धारण करने से पहले ज्योतिष के जानकारों की सलाह जरूर लेनी चाहिए। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार बुध का रत्न पन्ना तभी धारण करना चाहिए जब कुंडली में बुध शुभ भाव का स्वामी हो, क्योंकि बुध की अशुभ स्थिति में पन्ना धारण करना जीवन में अशुभ प्रभाव बढ़ाने लगता है। तो आइए जानते हैं कि पन्ना रत्न कब और कैसे नुकसान पहुंचाता है। पन्ना धारण करने के नुकसान। ये बुद्धि को भ्रमित और मन को परेशान कर सकता है। इसके कारण आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। पन्ना त्वचा में समस्याएं दे सकता है और पन्ना आत्मविश्वास को गड़बड़ भी कर सकता है। ज्योतिष के जानकारों के मुताबिक हर राशि और लग्न के लोगों के लिए शुभ नहीं है बुध का ये रत्न। तो चलिए अब जान लेते हैं कि किन राशि वालों को पन्ना धारण करना चाहिए और किन्हें पन्ना से दूर रहना चाहिए। लाभकारी भी है और कष्टकारी भी है। वृष, मिथुन, कन्या, तुला, मकर, कुंभ लग्न वालों के लिए पन्ना लाभकारी होता है। सिंह, धनु और मीन लग्न में विशेष दशाओं में पन्ना पहन सकते हैं। मेष, कर्क, वृश्चिक लग्न में पन्ना भूलकर भी धारण ना करें। जो लोग वाणी संबंधी कार्य में हैं, उन्हें पन्ना धारण करना चाहिए। आर्थिक क्षेत्र के लोगों के लिए भी पन्ना धारण करना अनुकूल होगा। पन्ना शुभ परिणाम देने पर न सिर्फ दौलत और शोहरत दिलवाता है बल्कि आपको समाज में सम्मान भी हासिल होता है। तो आप भी पन्ना को सही तरीके से धारण करें, जिससे न सिर्फ आपका बुध मजबूत होगा बल्कि आपकी सारी बाधाओं का भी अंत होगा। प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
2: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop Check fan this on this station. Out. Ready to find your flow?
3: It's your boy,
2: Just
3: Jay-Z.
2: Search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला
0: फैक्ट चेक की आखिरी सफर का, जहां हम आपको दिखाएंगे तमाम ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं, इन्हें खूब पसंद किया जा रहा है।
4: नमस्कार, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
5: कृष्णा जी की पेंटिंग थी यहाँ पे, गणेशा,
6: ये प्यारी सी घंटी,
7: चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर, हाड़ कपा देने वाली ठंड और तापमान -40 डिग्री। लेकिन इस कड़ाके की सर्दी के बीच अगर आपको हरे कृष्णा और शिव आरती की गूंज सुनाई दे तो शायद आपको अपने कानों पर यकीन ना हो, लेकिन यह हकीकत है। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसे देखकर हर कोई हैरान है। यह नजारा भारत के किसी बर्फीले पहाड़ी इलाके का नहीं बल्कि रूस के सुदूर और बेहद ठंडे क्षेत्र साइबेरिया का है। इंटरनेट पर इस जगह को रूस का हिंदू गांव और मिनी इंडिया कहा जा रहा है। इस अनोखे गांव का नाम ओकुनेवो है जो रूस के ओमस्क क्षेत्र में स्थित है। यह इलाका पश्चिमी साइबेरिया के अंतर्गत आता है और अपनी भीषण ठंड के लिए जाना जाता है। वीडियो में देखा जा सकता है कि चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, लेकिन गड़गड़ाती ठंड में भी स्थानीय और सैलानी पूरी श्रद्धा के साथ भक्ति में लीन है। इस वीडियो क्लिप को देखने के बाद हर भारतीय यूजर गर्व महसूस कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि साइबेरिया के इस छोटे से गांव में एक कृष्ण मंदिर है जो इस्कॉन से जुड़ा है। इसके साथ ही यहां भगवान शिव की भी पूजा की जाती है। -40 डिग्री टेम्परेचर के बावजूद लोग यहां सुबह शाम इकट्ठा होते हैं और पूजा करते हैं।
8: ग्राम पुजारी इस सेवा, ओम नमः शिवाय।
7: एक छोटे बच्चे का वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें वो अपने टीचर से शिकायत करते हुए नजर आ रहा है।
9: सर, एक बात बताओ, जब हम बाल कटवा के नहाएंगे तब हमें मारता हूँ, अब जब लड़की इनके बाल इतने बड़े होते हैं तब तुम ना मारता हूँ।
7: वीडियो में नजर आता है कि बच्चा अपनी टीचर से शिकायत करता है। वो बोलता है, सर एक बात बताओ, जब हम बाल कटवा कर नहीं आते हैं तो आप हमें मारते हो, और जब लड़कियों के बाल इतने बड़े हो गए हैं तो नहीं मारते हो। अब यह शिकायत सुनकर टीचर कहता है, वो तो लड़कियां हैं, मगर तुरंत बाद बच्चा बोलता है कि लड़की से हम क्या कम हैं? अब यह सुनते ही टीचर भी हंसने लगता है।
9: सर, एक बात बताओ, जब हम बाल कटवा के नहाएंगे तो हमें मारता हूँ, अब जब लड़की इनके बाल इतने बड़े होते हैं तुम ना मारता हूँ।
10: ये तो लड़की है,
9: लड़की से तो हम कम आए।
7: यूजर्स इस वीडियो पर जमकर अपना प्यार लुटा रहे हैं, बच्चे के सवाल जवाब पर जमकर कमेंट्स कर रहे हैं।
9: अब जब लड़की इनके बाल इतने बड़े होते हैं तब तुम ना मारता
10: हूँ। ये तो लड़की है,
9: लड़की से तो हम कम आए।
7: सोशल मीडिया पर यह दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक माँ की अथक मेहनत और ममता को देखकर हर कोई हैरान और भावुक हो रहा है। वीडियो में एक महिला अपने छोटे बच्चे को पीठ पर लपेटे हुए, सिर पर सब्जियों की भारी भारी टोकरियां संतुलित करते हुए ट्रक पर सामान लाती दिख रही है। बिना थके बिना रुके वह लगातार काम करती जा रही है। बताया जा रहा है कि महिला रोजाना बाजार आती है, सुबह से शाम तक वह न सिर्फ अपना काम संभालती है बल्कि अपने छोटे बच्चे की देखभाल भी करती है। बच्चा पीठ पर बंधा रहता है और माँ का काम चलता रहता है। वीडियो में दिख रहा है कि भारी टोकरियां सिर पर रखकर वह ट्रक की ऊंचाई तक चढ़ रही है। उसके चेहरे पर थकान तो है लेकिन आत्मविश्वास और ममता भी साफ दिख रही है। सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसी वीडियो सामने आते हैं जो दिल को छू जाते हैं। हाल ही में देश के जाने माने बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा ने अपने एक्स हैंडल से एक ऐसा ही बेहद प्यारा वीडियो शेयर किया है जिसने इंटरनेट की पब्लिक का दिल जीत लिया है। वायरल क्लिप में एक दादा पोते की जोड़ी पारंपरिक लोक नृत्य पर धड़कती नजर आ रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि पारंपरिक सफेद केडियो और धोती पहने एक बुजुर्ग व्यक्ति पूरे जोश के साथ थिरक रहे हैं। उनके साथ उनका छोटा पोता भी खड़ा है जो कदम से कदम मिलाकर अपने दादाजी को कड़ी टक्कर दे रहा है। दोनों की जुगलबंदी और एनर्जी देखने लायक है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र की एक पारंपरिक और सांस्कृतिक लोक कला डायरा का है।

सोशल मीडिया पर इन दिनों इस बच्ची के डांस का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। आलम यह है कि वीडियो को महज कुछ ही दिनों में लाखों व्यूज मिल चुके हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि पीले कलर के सूट और सलवार में बच्ची दिल खोलकर डांस कर रही है। बच्ची के शानदार परफॉर्मेंस पर टीचर के एक्सप्रेशन भी देखने लायक रहे। वो खुद भी बच्ची के धांसू स्टेप और एक्सप्रेशन देख दंग नजर आए। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया है। आमतौर पर जिम में भारी वजन उठाते हुए युवा ही नजर आते हैं, लेकिन इस बार एक दादी ने ऐसा कारनामा कर दिखाया कि लोगों के होश उड़ गए। करीब 60 किलो वजन की इस बुजुर्ग महिला ने जिम में 110 किलो वजन उठाकर सभी को चौंका दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि दादी पूरी तैयारी के साथ जिम में मौजूद हैं और बिना किसी झिझक के भारी वजन उठाने के लिए तैयार हो जाती हैं। आसपास खड़े लोग भी पहले तो उन्हें देखकर थोड़ा हैरान होते हैं, लेकिन जैसे ही वे आत्मविश्वास के साथ 110 किलो वजन उठाती हैं, वहां मौजूद सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। उनकी ताकत, संतुलन और फोकस देखकर यह साफ समझ आता है कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। अगर इरादा मजबूत हो तो कुछ भी संभव है।

पर वायरल वीडियो खूब देखा जा रहा है। वीडियो में नजर आता है कि एक डिलीवरी बॉय कुछ सामान देने के बाद वो वापस जा रहा होता है, तभी उसे एक जगह पर बैट रखा हुआ नजर आता है। अब उस बैट को देखते ही उसके अंदर का क्रिकेटर जाग जाता है और वो बैट पकड़कर कुछ शॉट प्रैक्टिस करता दिखता है। अब उसके इसी काम के कारण वीडियो वायरल हो रहा है। बेल्जियम के एक युवती का भारतीय पान चखने वाला वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। भारत आने के बाद उसने पहली बार पान का स्वाद लिया और उसके चेहरे के भाव देखकर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं। किसी के लिए पान सिर्फ खाने की चीज होती है तो कुछ लोग इसे शौक और परंपरा से जोड़कर देखते हैं, लेकिन विदेश से आई इस लड़की के लिए यह अनुभव बिल्कुल नया और हैरान कर देने वाला था। यही वजह है कि इंटरनेट पर लोग इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं। वीडियो में पान बनाने की पूरी प्रोसेस भी दिखाई गई है। एलिस हर चीज को बड़ी दिलचस्पी से देखती हैं और बार बार सवाल पूछती रहती हैं। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी सारी चीजों को मिलाकर कोई कैसे खा सकता है। एक पल पर तो वह मजाकिया अंदाज में कहती है कि यह किसी खाने की चीज से ज्यादा किसी अजीब प्रयोग जैसा लग रहा है। हालांकि थोड़ी देर झिझक के बाद आखिरकार एलिस पान चखने के लिए तैयार हो जाती है। जैसे ही वह पहला निवाला खाती है, उसके चेहरे के बदलते भाव लोगों का ध्यान खींच लेते हैं। उसकी बड़ी होती आंखें साफ बता रही थी कि स्वाद उसके अनुमान से बिल्कुल अलग निकला। असम के मानस नेशनल पार्क का ये वीडियो है। बताया जा रहा है कि जंगल सफारी का लुत्फ उठा रहे पर्यटकों पर अचानक एक गैंडे ने हमला कर दिया। दरअसल पर्यटकों से भरी एक सफारी जीप जंगल की सैर पर निकली थी। लोग कैमरे में जंगली जानवरों को कैद करने में बिजी थे, तभी अचानक एक विशालकाय गैंडा भड़क गया और उसने सीधे पर्यटकों से भरी जीप पर हमला कर दिया। वीडियो में दिख रहा है कि गैंडे ने अपनी पूरी ताकत से जीप के किनारे पर सींग मारना शुरू कर दिया। वो गाड़ी को पलटने की जिद पर अड़ा हुआ था। आप देखेंगे कि सफारी जीप खिलौने के माफिक हिल रही थी। एक बार तो गैंडे ने अपनी सींग से गाड़ी उठा ही ली थी, लगा जैसे कि कोई बड़ी अनहोनी होकर रहेगी, लेकिन तभी ड्राइवर ने गजब का हौसला दिखाया। बिना घबराए उसने गाड़ी को रिवर्स लेना शुरू किया। वहीं आसपास मौजूद लोगों ने शोर मचाकर गैंडे का ध्यान भटकाने की कोशिश की। आखिरकार गैंडा पीछे हटा और किसी तरह पर्यटकों की जान में जान आई।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
1: म्यूजिक फॉर एवरी मूड लिव्स ऑन TuneIn. Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations like today's hits, classic rock, coffee house, and more. Stream non-stop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: रोम में पीएम मोदी और मेलोनी लगाया पौधा, मेलोनी को दिया भारत आने का न्योता। सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा पीएम मोदी और मेलोनी का टॉफी वाले गिफ्ट का वीडियो, अब तक 12 करोड़ पार व्यूज। पीएम मोदी के नाम एक और सर्वोच्च सम्मान, रोम में कृषि संगठन ने किया सम्मानित, संयुक्त राष्ट्र की FAO ने एग्रीकोला मेडल से नवाजा। अयोध्या राम मंदिर में त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू, AI कैमरों से हो रही निगरानी, नई सुरक्षा दीवार और वॉच टावर का भी निर्माण। चित्तौड़गढ़ के सावलिया सेठ को भक्त की अनोखी भेंट, भगवान को अर्पित किया 197 ग्राम चांदी से बना हार्ट, सफल बाईपास ऑपरेशन के लिए मांगी थी मन्नत। देवभूमि उत्तराखंड में धूमधाम से जारी चार धाम यात्रा, बद्रीनाथ में 4.5 लाख से अधिक भक्तों ने किए दर्शन, केदारनाथ धाम पहुंचे करीब 7.25 लाख श्रद्धालु।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिलदेव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात होगी देश में चल रहे मंगल उत्सव की। इस समय देश के अलग अलग छोर, अलग अलग किनारों पर कई उत्सव, कई लोक पर्व मनाए जा रहे हैं। भारत की संस्कृति में यूं भी परंपराओं के धागों से जाने कितने ही तीज त्योहार और उत्सव बुने गए हैं। कुछ उत्सवों की कहानी पौराणिक आधार से निकली तो कुछ उत्सव हमारे देश की समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत की धरोहर हैं। ऐसा ही एक उत्सव यूपी के झांसी में मनाया गया। एक ऐसा उत्सव जो किसी देवी देवता के सम्मान में नहीं मनाया जाता, बल्कि हर साल झांसी ये उत्सव मनाती है उस महान वीरांगना की याद में जिनके साहस और शौर्य ने अंग्रेजों की नींद उड़ा दी थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और राजा गंगाधर राव के विवाह की 184वीं सालगिरह धूमधाम से मनाई गई। झांसी के लिए ये दिन इसीलिए भी खास है क्योंकि इसी दिन वाराणसी की मणिकर्णिका झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई बनकर इस नगर में आई थी।

0: ही वैभव के साथ सगाई झांसी में। क्या हुआ रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में। सुभट बुंदेलों की विरुदावली सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। जब दुल्हन बनकर झांसी आई झांसी वाली रानी थी। आज से 184 साल पहले घटी इस घटना के हर दृश्य को कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने कोई 96 साल पहले अपनी कलम से जीवंत कर दिया था। झांसी उस दिन को आज फिर से जी रही है। वो शुभ घड़ी जब झांसी की धरती पर पांव पड़े थे उस वीरांगना के जो दुनिया में झांसी की पहचान का हस्ताक्षर बन गई। साल 1842 में यही वो दिन था जब रानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी नरेश राजा गंगाधर राव के साथ धूमधाम से संपन्न हुआ था और काशी की लाडली मनु अपनी बरछी ढाल कृपाण कटारी सखियों समेत झांसी की महारानी बनकर इस नगर में पधारी थी। मंगलवार को झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और महाराजा गंगाधर राव के विवाह की 184वीं वर्षगांठ बेहद धूमधाम से मनाई गई। एनसीसी बैंड की धुन ढोल नगाड़ों की गूंज पारंपरिक मराठी वेशभूषा में सजे बच्चे ऐतिहासिक पात्रों की झलक और देशभक्ति से सराबोर माहौल ने पूरे शहर को उत्सव के रंग में रंग दिया। कार्यक्रम की शुरुआत हुई शहर के प्रसिद्ध लक्ष्मी व्यायाम मंदिर से, जहां से महाराज गंगाधर राव की प्रतीकात्मक शाही बारात और शोभा यात्रा सजकर निकली।
1: आज झांसी नरेश महाराज गंगाधर राव और महारानी लक्ष्मीबाई के विवाह की 184वीं वर्षगांठ है। ये हम लोग महाराज गणेश मंदिर कमेटी संपूर्ण झांसी के साथ मना रही है। आज ये शोभा यात्रा जो बारात की शोभा यात्रा है ये लक्ष्मीबाई मंदिर से प्रारंभ होकर कोतवाली मानिक चौक सराफा बाजार नरिया बाजार होते हुए गणेश मंदिर पर संपन्न होगी, जहाँ पर प्रतीकात्मक रूप से राजा रानी का विवाह होगा।
0: यात्रा के दौरान जगह जगह लोगों ने फूलों की बारिश कर बारात का स्वागत किया। सारा शहर झांसी की रानी अमर रहे के जयकारों से गूंज उठा। शोभा यात्रा में एनसीसी कैडेट्स घोष दल स्कूली छात्र छात्राएं सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और हजारों शहरवासी शामिल हुए। झांसी नरेश की बारात की भव्यता को कई गुना बढ़ा

0: यहाँ के गांवों के बीच इस बात पर लाठियों से असली युद्ध होता था कि सबसे पहले कौन सा गांव भगवान को नया अन्न अर्पित करेगा। जीतने वाले गांव को ये सम्मान और सौभाग्य हासिल होता था। समय के साथ युद्ध प्रतीकात्मक रूप में बदल गया। अब ये युद्ध महज परंपरा निभाने भर के लिए होता है, लेकिन स्थानीय ग्रामीणों के बीच इस युद्ध से जुड़ी शौर्य, प्रतिष्ठा और संघर्ष की भावना आज भी वही है। और चमोली के 27 गांव आज भी पूरे उत्साह से इस परंपरा को निभाते हैं।
1: इसमें हमारे 27 गांव ब्राह्मण और ठाकुरों के 27 गांव है इस पूरी इलाके में, मल्ला चांदपुर में। उन गांवों की तमाम दर्शक रोज आते हैं मेले में और खेलने के लिए, नाचने के लिए, तो वो सब लोग यहाँ पर आए भी थे। सारे लोग बाजी गाजे के साथ आते हैं और अभी प्रतीकात्मक जो डंडे आपने देखे वो प्रतीकात्मक यहाँ पर आते हैं और केवल वो शो के लिए मेले में आके वो एक सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए वो किया जा रहा है।
0: लठमार युद्ध के लिए पहले खेती के मालगुजार के नेतृत्व में गाजे बाजे, देव डोली और लाठी डंडों के साथ नौठा नृत्य दल आदि बद्री मंदिर पहुंचता है। इसके बाद दोनों दलों के बीच लाठी डंडों का प्रतीकात्मक युद्ध शुरू होता है। युद्ध के बाद ढोल दमाऊ की थाप पर दोनों दल अपने अपने नृत्य का प्रदर्शन करते हैं और फिर अंत में लठमार योद्धा आपस में गले मिलकर एकता का संदेश देते हैं।
2: तीसरी बार आ रही हूँ, पिछले साल भी मैं यहाँ पर आई थी। जो हमारी पुरानी परंपरा है उसको जैसे बचा रहे हैं लोग, उसको दिखाने के लिए कि जो हमारी युवा पीढ़ी है उसको देखें कि पहले जमाने में कैसे हुआ करता था सभी चीजें। तो यहाँ पर खेती गाँव से लोग आते हैं, जो अनाज होता है वो चढ़ाने के लिए आते हैं। और उसके बाद पहले क्या होता था, जो पिंड वाली गाँव है और खेती गाँव है उन दोनों में लड़ाई होती थी कहते हैं ऐसा। तो उसके बाद जो पिंड वाली है उन्होंने हार मान ली थी, तो पूरा जो मंदिर है इस पर पूरा वो कब्जा बोलते हैं जिसको, जो अनाज फर्स्ट यहाँ पर चढ़ाते हैं वो खेती वाले चढ़ाते हैं क्योंकि वो जीत गए थे। तो यही इंटरेस्टिंग होता है यहाँ पर। तो लोग पहले जो वो चीज पहले हुई थी उसको थोड़ा दिखावा करते हैं, परंपरा को बचाने के लिए लट्ठी से लड़ाई करते हैं, अभी भी करते हैं, पर एक रियल नहीं है वो, एकदम से रियल नहीं है, नॉर्मल है वो, उसमें कोई किसी को चोट नहीं पहुँचाता है।
0: इसके बाद आखिर में भगवान आदि बद्रीनाथ को नए गेहूं और जौ का अन्न अर्पित किया जाता है। नई फसल की खुशी मनाने के लिए स्थानीय महिलाएं चोपुला, चाचरी और झुमेलो जैसे परंपरागत नृत्य करती हैं। हर साल की तरह इस बार भी नौठा कौथिग मेले में हिस्सा लेने बड़ी संख्या में श्रद्धालु आदि बद्री धाम पहुंचे हैं। आपको बता दें, आदि बद्री धाम सप्त बद्री की यात्रा का प्रथम स्थल है। यहाँ भगवान विष्णु के प्राचीन मंदिर हैं, जिन्हें आदि शंकराचार्य से जोड़ा जाता है। बर्फबारी के चलते जब सर्दियों में बद्रीनाथ धाम के कपाट 6 महीने बंद रहते हैं तब यहाँ विशेष पूजा अर्चना होती है। गुजरते समय के साथ नौठा कौथिग लठमार मेला इस देवस्थल को गढ़वाल की संस्कृति और लोक परंपराओं की जड़ों से जोड़ने का अनुपम माध्यम बन गया है। स्थानीय लोग इसे अपनी सांस्कृतिक पहचान का उत्सव मानते हैं। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: बात एक ऐसे उत्सव और परंपरा की करते हैं जिसे मनाया ही जाता है कुदरत को सहेजने के लिए। कश्मीर के काजीकुंड इलाके के एक ऐसे उत्सव को आपको दिखाते हैं जहां झरनों और नदियों को साफ करने की परंपरा निभाई जाती है। जरा सोचिए, जल और पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से कितना अहम होता है ये उत्सव। खास बात यह है कि लोग अपने स्तर पर खुद ही सालों से इस परंपरा को निभाते आ रहे हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट।

0: देती हैं। यहाँ का अनंतनाग जिला भी प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। यहाँ की दिव्य छटाएं पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। यहाँ फूलों की मखमली वादियों से लेकर प्राचीन मीठे पानी के झरनों का एक मनमोहक संगम है। ये तस्वीरें अनंतनाग जिले के काजीकुंड इलाके के पंचतनाग की हैं, जहाँ लोग बड़ी संख्या में पानी के अंदर नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे ये सभी पानी में कुछ तलाश रहे हों। इस दौरान हाथ में मछली के आने की खुशी लोगों के चेहरे पर साफ देखी जा सकती है। दरअसल पारंपरिक टोकरियों के साथ मौजूद ये सभी लोग सिर्फ मछली पकड़ने के रोमांच को लेकर पानी के अंदर नहीं है, बल्कि ये उस सालाना परंपरा का हिस्सा है जिसे पंचतनाग उत्सव के रूप में जाना जाता है।
1: साल वहाँ पंचतनाग यानी कि स्प्रिंग है उस इलाके का, ऐसा पानी का स्रोत जिसमें कई सारे स्प्रिंग आके मर्ज होते हैं और उस पूरे इलाके बल्कि कई सारे गांव हैं जिनके पीने के पानी की ज़रूरत से लेके जो इरिगेशन के लिए पानी चाहिए और बाकी ज़रूरतें भी जो हैं इसी स्प्रिंग से पूरी होती हैं। और हर साल ये गांव जो है सभी बूढ़े बच्चे जवान मिलके एक छुट्टी का दिन सिलेक्ट करते हैं और उस नाग की सफाई करते हैं। हालांकि इसको एक फिशिंग फेस्टिवल की तरीके जो मनाया जाता है, लेकिन पीछे जो आइडियोलॉजी है, जो इसके पीछे मकसद है, वो है स्प्रिंग को साफ रखना, उस वाटर बॉडी को साफ रखना।
0: जल स्रोतों और पर्यावरण संरक्षण के मकसद से कई पीढ़ियों से यहाँ मई के महीने में ये उत्सव मनाया जाता है, जिसमें पंचत गांव के निवासी मीठे पानी के झरनों के एक समूह के आसपास जुटते हैं और सदियों पुरानी सामुदायिक परंपरा के तहत पानी से खरपतवार और कचरा साफ करते हैं। पंचतनाग झरनों की सफाई करने के साथ ही इस दिन मछली पकड़ने की भी इजाजत दी जाती है। इस आयोजन में पंचत के अलावा कई दूसरे गांव के लोग भी पूरे उत्साह के साथ शामिल होते हैं, जिनमें से कई गांव पीने के पानी और सिंचाई के लिए इन झरनों पर निर्भर हैं। ग्रीष्म ऋतु के अंत में जब जल स्तर घट जाता है तो जलीय खरपतवार तेजी से झरने में फैल जाते हैं, जिससे जल प्रवाह बाधित होता है। सामूहिक सफाई का ये प्रयास हाथ से झरने के बहाव को बहाल करता है, जो आसपास के 45 गांवों को पीने और सिंचाई का पानी मुहैया कराता है। साफ है कि ये वो उत्सव है जिसमें मछली पकड़ना नहीं बल्कि झरने को साफ करना अहम मकसद है, ताकि लोगों को पीने और सिंचाई के लिए पानी मिलता रहे। अपने प्राकृतिक संसाधनों की पूरी जिम्मेदारी लेकर पंचत में लोग जिस तरह का उदाहरण पेश कर रहे हैं, उसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात में भी सराहना कर चुके हैं।
1: तारीफ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की थी 2023 में एक मन की बात प्रोग्राम में। उन्होंने कहा था कि किस तरीके से अगर लोग चाहें तो खुद ऐसा एफर्ट कर सकते हैं जिससे प्रकृति को बचाया जा सकता है, अलग अलग तरीके से जो स्वच्छता है उसमें कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, ताकि जो आसपास की जगहें हैं साफ रहे, जो प्रकृति है, माहौल है, साफ रहे। तो पंचतनाग जो है आज एक मिसाल है कि कैसे खुद लोग जो हैं अगर चाहें, अगर एकजुट हो जाएं तो बहुत कुछ हो सकता है, और खासकर जो पोल्यूशन है उसके खिलाफ एक डिसाइसिव लड़ाई हो सकती है।
0: लोगों को उम्मीद है कि सरकार इस दिशा में जरूर कोई ना कोई ठोस कदम उठाएगी, जिससे एक दिन कश्मीर के पर्यटन मानचित्र पर पंचत का नाम शामिल होगा। श्रीनगर से मीर फरीद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: बात आस्था के उस मंगल उत्सव की जो देवभूमि उत्तराखंड में जारी है। पिछले कई दिनों से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा चल रही है। आपके साल हर रोज चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या का नया रिकॉर्ड बनता जा रहा है। पिछले एक महीने में चारधाम यात्रा में अब तक 17.5 लाख से ज्यादा लोग दर्शन कर चुके हैं। ये अभूतपूर्व रिकॉर्ड है। कल यानी 19 मई तक कुल 17,26,393 लोग चारधाम में दर्शन कर चुके हैं। इनमें से केदारनाथ धाम में अब तक 6,94,000 से ज्यादा लोगों ने दर्शन किए, जबकि बद्री विशाल के धाम बद्रीनाथ में अब तक 4,51,000 से ज्यादा लोग दर्शन कर चुके हैं। इसी क्रम में मां यमुना के धाम यमुनोत्री पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 2,92,000 को पार कर चुकी है, जबकि मां गंगा के धाम गंगोत्री में 19 मई तक 2,88,000 से ज्यादा श्रद्धालु हाजिरी लगा चुके हैं। अब देखिए शिव भक्तों के लिए चारधाम यात्रा में केदारनाथ का बहुत महत्व है। आपको बता दें केदारनाथ धाम देवभूमि में मौजूद पंच केदार में शामिल है। मान्यता है कि पांच जगहों पर पांडवों को भगवान शिव के अलग अलग अंगों के दर्शन हुए थे। केदारनाथ में पीठ के दर्शन हुए, मध्य महेश्वर में भगवान के मध्य भाग यानी नाभि के। 21 मई को मध्य महेश्वर धाम के कपाट खुलने जा रहे हैं, जिसके लिए धूमधाम से भगवान की डोली अपने शीतकालीन आवास ऊखीमठ से कल रवाना हुई थी। कल सुबह भगवान मध्य महेश्वर की उत्सव डोली अपने धाम में पहुंच जाएगी।

0: संस्कृति, परंपरा और आस्था का अनूठा संगम। आगे आगे भगवान की डोली, पीछे पीछे भक्तों की डोली। ढोल दमाव की थाप है, रंग है, राग है, आस्था परंपार है। भगवान मध्य महेश्वर अपने धाम चले हैं। अपने धाम यानी मध्य महेश्वर मंदिर। महिलाओं ने भजन गाकर अपने आराध्य को विदाई दी, तो वहीं डोली के साथ साथ चल रहे भक्त महादेव का जयकारा लगाते पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ते रहे। ओंकारेश्वर मंदिर में भगवान शीतकालीन प्रवास पर थे। प्रवास पूरा होते ही मध्य महेश्वर की चल उत्सव विग्रह डोली अपने धाम के लिए रवाना हो गई। मंगलवार को खिमठ के ओंकारेश्वर मंदिर से रवाना हुई डोली आज गोंडार गांव पहुंचेगी और 21 मई को मध्य महेश्वर मंदिर। डोली के धाम पहुंचने पर वैदिक मंत्रोच्चार और पूरे विधि विधान के साथ मंदिर के कपाट खोल दिए जाएंगे और अगले 6 महीने तक भगवान अपने भक्तों को यहीं दर्शन देंगे।
1: रांसी गांव से रुद्रप्रयाग जनपद के सीमांत गांव गोंडार में भगवान मध्यमेश्वर की डोली द्वितीय रात्रि प्रवास करेगी। 21 मई सुबह डोली गोंडार गांव से धाम के लिए प्रस्थान करेगी और धाम पहुंचने पर लगभग 11 बजे द्वितीय केदार भगवान मध्यमेश्वर के कपाट आगामी 6 माह के लिए खुलेंगे। आपको बता दें कि भगवान मध्यमेश्वर की मध्यमेश्वर धाम में मध्य भाग की पूजा होती है और इसके अलावा केदार घाटी में भगवान मध्यमेश्वर को न्याय के देवता के रूप में भी पूजा जाता है।
0: उत्तराखंड के पंच केदार में भगवान शिव के 5 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। केदारनाथ में बैल रूपी शिव के कुबड़ की, तुंगनाथ में भुजाओं की, रुद्रनाथ में मस्तक की, मध्य महेश्वर में नाभि की और कल्पेश्वर में जटाओं की पूजा होती है। पंच केदार में मध्य महेश्वर को दूसरे केदार के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि इस मंदिर को महाभारत काल में पांडवों द्वारा बनवाया गया था। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सिंहवाल, गुड न्यूज टुडे।

0: music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: कान फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर हर साल फैशन के नए रंग देखने को मिलते हैं, लेकिन इस बार जयपुर की बेटी और एक्ट्रेस रुचि गुर्जर ने अपने अंदाज से सिर्फ फैशन नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति को दुनिया के सामने रखा। रुचि जब पारंपरिक राजस्थानी घूंघट ओढ़कर रेड कार्पेट पहुंची तो हर किसी की निगाहें उन पर टिक गई।
3: कांस के रेड कार्पेट पर घूंघट में रुचि गुर्जर की एंट्री ने फैशन के इस मंच को महिलाओं की आजादी, पहचान और सामाजिक बदलाव की आवाज बना दिया। जिस बेबाकी और बेफिक्री से रुचि ने वहां मौजूद मीडिया के सामने पोज दिए और रेड कार्पेट पर वॉक किया, उसकी धमक दूर दूर तक सुनाई दी। राजस्थान की समृद्ध विरासत और संस्कृति से प्रेरित रुचि का ये खूबसूरत गुलाबी घूंघट लुक किसी फैशन स्टेटमेंट के लिए पहना गया महज एक आउटफिट नहीं था, बल्कि महिलाओं के हक और सम्मान में उठी एक आवाज थी। ये घूंघट उन सामाजिक बंधनों पर एक सवाल था, जिसकी वजह से आज भी कई महिलाओं को अपनी पहचान छिपा कर जीना पड़ता है। कान के मंच पर रुचि गुर्जर ने सदियों पुरानी जबरन घूंघट प्रथा के खिलाफ एक साहसी और प्रतीकात्मक संदेश दिया। कान्स में रुचि गुर्जर ने कहा, मैंने घूंघट चुप रहने के लिए नहीं पहना, मैंने इसे विरोध के रूप में पहना है। महिला का सम्मान उसकी बराबरी, आत्मविश्वास और आजादी से होना चाहिए, उसकी पहचान छिपाने से नहीं। अगर मेरी ये वॉक किसी एक महिला के लिए भी बातचीत की शुरुआत बनती है तो ये फैशन से कहीं बड़ा उद्देश्य है। रुचि गुर्जर की इस पहल की तुलना उन अंतर्राष्ट्रीय सितारों से भी की जा रही है जिन्होंने बड़े मंचों का इस्तेमाल सामाजिक मुद्दों को उठाने के लिए किया, फिर चाहे वो केट ब्लैंकेट हों जिन्होंने शरणार्थियों और पर्यावरण के मुद्दे पर अपनी आवाज उठाई, या फिर एमा वॉटसन जिन्होंने जेंडर इक्वालिटी और एथिकल फैशन को समर्थन दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. Country roads. Thank God I get to wake and everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: रोम में पीएम मोदी और मेलोनी ने लगाया पौधा, मेलोनी को दिया भारत आने का न्योता। सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा पीएम मोदी और मेलोनी का टॉफी वाले गिफ्ट का वीडियो, अब तक 12 करोड़ पार व्यूज। पीएम मोदी के नाम एक और सर्वोच्च सम्मान, रोम में कृषि संगठन ने किया सम्मानित, संयुक्त राष्ट्र की एफएओ ने एग्रीकोला मेडल से नवाजा। अयोध्या राम मंदिर में त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू, एआई कैमरों से हो रही निगरानी, नई सुरक्षा दीवार और वॉच टावर का भी निर्माण। चित्तौड़गढ़ के सावलिया सेठ को भक्त की अनोखी भेंट, भगवान को अर्पित किया 197 ग्राम चांदी से बना हार्ट, सफल बाईपास ऑपरेशन के लिए मांगी थी मन्नत। देवभूमि उत्तराखंड में धूमधाम से जारी चार धाम यात्रा, बद्रीनाथ में 4.5 लाख से अधिक भक्तों ने किए दर्शन, केदारनाथ धाम पहुंचे करीब 7.25 लाख श्रद्धालु।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
3: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपिका पंत और आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे रत्न की जिसका संबंध सीधे तौर पर आपकी जिंदगी की खुशियों से है, मन की शांति से है और वो जुड़ा है आपकी माँ की खुशियों से। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाशक्तिशाली रत्न मोती की। मोती को क्यों इतना महत्वपूर्ण माना जाता है, मोती कैसे आपकी जिंदगी खुशहाल बना सकता है, हमारी आज की खास पेशकश में जानेंगे क्यों ज्योतिष का महत्वपूर्ण रत्न है मोती। तो चलिए करते हैं शुरुआत।

0: मोती करें धारण तो होगा चंद्रमा की बाधाओं का निवारण। मोती पहनने से बरते सावधानी, नहीं तो हो सकती है हानि। मोती का शुभ प्रभाव आपको बना सकता है धनवान। तनाव डिप्रेशन होगा दूर, चेहरे पर आएगी मुस्कान। ज्योतिष शास्त्र में मोती को चंद्रमा का प्रमुख रत्न माना गया है। माना जाता है कि मोती मन की शांति, स्थिरता और भावनाओं को संतुलित करने के लिए धारण किया जाता है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत ना हो तो कोई भी ग्रह अपना पूरा शुभ फल नहीं दे पाता। इसीलिए जीवन में किसी भी तरह के सुख के लिए कुंडली के चंद्रमा का शुभ फलदायी होना जरूरी है। इसलिए आज हम आपको मोती रत्न के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे धारण करके आप जीवन की तमाम समस्याओं से जल्दी छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं मोती धारण करने से किस तरह से मजबूत कर सकते हैं कुंडली का चंद्रमा। खास है मोती रत्न। मोती एक जैविक संरचना है जो मुख्य रूप से चंद्रमा का रत्न है। चंद्रमा की तरह उसका रत्न भी शांत, सुंदर और शीतल है। मोती का प्रभाव सीधा मन और शरीर के रसायनों पर पड़ता है। मोती का प्रभाव कभी तेज नहीं होता, वह धीरे धीरे और हल्का सा डालता है। इसलिए लोगों को लगता है कि मोती कभी नुकसान नहीं कर सकता। कभी कभी विशेष औषधि के रूप में भी इसका प्रयोग होता है।
1: मोती जो है चंद्रमा का रत्न है। अगर व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा मजबूत है तो आप मोती धारण कर सकते हैं। मोती धारण करने के जो फायदे हैं, आपको माता से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, माता का प्रेम मिलेगा, और चंद्रमा मन का कारक ग्रह है तो आपकी मानसिक स्थिति काफ़ी अच्छी होगी, और आपका डिसीजन लेने में, जो हम मन से चीज़ें अपने लाइफ में करते हैं, आपका डिसीजन सही होगा, डिसीजन अच्छे लेंगे आप, और भूमि भवन वाहन का भी आपको लाभ होगा।
0: ज्योतिष के जानकारों की माने तो जिन लोगों को जल्दी गुस्सा आता है उन्हें मोती पहनने से विशेष लाभ मिलता है, क्योंकि मोती का प्रभाव आपके मन और मस्तिष्क पर असर डालता है। तो आइए जानते हैं कि मोती पहनने से क्या क्या लाभ हो सकते हैं। मोती धारण करने के लाभ। मोती मन को शांत करता है और तनाव को कम कर देता है। डर और वहम दूर करके अच्छी नींद देता है मोती। मोती पहनने से शरीर के हार्मोन्स संतुलित रहते हैं। कभी कभी आर्थिक पक्ष को भी बहुत अच्छा कर देता है मोती। ज्योतिष के जानकारों की माने तो मोती एक ऐसा रत्न है, इसे सही तरीके से पहनने पर इंसान की बुद्धि स्थिर होती है। ऐसा इंसान अपनी मेहनत और लगन से मान सम्मान और धन कमाता है। तो चलिए अब आपको बताते हैं मोती धारण करने का सबसे सटीक तरीका क्या है।
1: मोती धारण करने का जो नियम है, अगर आपको मोती पहनना है तो कब सोमवार का दिन होना चाहिए, और मोती को दूध से स्नान कराने के बाद, गंगा जल से स्नान कराने के बाद अपने दाएं हाथ में ले लीजिए उसको, और ओम सोम सोमाय नमः 27 बार बोल के ओम नमः शिवाय का नाम लेके आप मोती को धारण कर लीजिए, और मोती आपके लिटिल फिंगर में, जो कनिष्ठा उंगली होती है, उसमें धारण करना होता है।
0: मोती धारण करने के नियम। मोती को चांदी की अंगूठी में पहनना चाहिए। मोती को कनिष्ठा अंगुली में शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को पहनें। मोती को पूर्णिमा को भी धारण कर सकते हैं। मोती धारण करने से पहले इसे गंगा जल से धोएं, फिर मोती को शिवजी को अर्पित करें। मोती के साथ पीला पुखराज और मूंगा ही पहन सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि मोती हमेशा आपको फायदा ही पहुंचाए, इसलिए मोती पहनने से पहले विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। तो चलिए, अगर मोती आपके जीवन में अनुकूल प्रभाव ना डाल रहा हो तब आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं।
1: अगर हम ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से इसके बारे में बताना चाहें तो बहुत से ज्योतिषी क्या करते हैं कि चंद्रमा का निगेटिव होता है कुंडली में, चंद्रमा पाप ग्रह से दृष्टिगत होता है, दृष्टिगत से युति होता है, या फिर 6, 8, 12 भाव में चंद्रमा होता है, तो ज्योतिषी लोग क्या करते हैं, उसको चंद्रमा का रत्न पहना देते हैं। लेकिन अगर कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है, निगेटिव है, अगर उसको हम पहनाएंगे तो उसकी निगेटिविटी बढ़ जाएगी, जिससे इसकी वजह से चंद्रमा मन का कारक ग्रह, व्यक्ति मेंटली बहुत परेशान होने लगेगा, उसको बहुत सारी मेंटली समस्याएं आने लगेंगी। और जिसका कुंडली में चंद्रमा अच्छा है, चंद्रमा की स्थिति अच्छी है, चंद्रमा शुभ ग्रह के साथ युति हुआ है, केंद्र में धर्म त्रिकोण में है, कर्क लग्न का कुंडली जिसका है, और चंद्रमा की शुभ स्थिति हो, चंद्रमा को मोती धारण करवाएंगे तो उसको उसका बेनिफिट प्रॉपर तरीके से मिलेगा।
0: मोती पहनने के नुकसान। मोती अनुकूल ना हो तो मोती पहनने में सावधानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि मोती मानसिक स्थिति को धीरे धीरे प्रभावित करता है। अगर अनुकूल ना हो तो मोती गंभीर अवसाद और तनाव की समस्या दे सकता है। घबराहट, बेचैनी और चिड़चिड़ापन भी बढ़ा सकता है मोती। इसके कारण हार्मोन्स का संतुलन बिगड़ सकता है। कहते हैं मोती और चांदी दोनों ही चंद्रमा से संबंध रखते हैं, इसलिए मोती को चांदी में ही धारण करना शुभ होता है। तो आप भी अपनी कुंडली की स्थिति के अनुसार ही मोती पहनिए, ताकि आप भीतर से शांत, शालीन और सहज महसूस कर पाए, जिससे आपका जीवन चंद्रमा के समान शांत, शीतल और सुंदर हो जाए। आगे हम आपको बताएंगे कि किस राशि वालों को मोती धारण करना चाहिए और किन राशि वालों को मोती पहनने से बचना चाहिए। तब तक आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। ज्योतिष शास्त्र में हर ग्रह के लिए एक खास रत्न का जिक्र किया गया है, जो कि व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता है। उन्हीं रत्नों में से एक है रत्न पन्ना। ज्योतिष का विज्ञान कहता है कि कोई भी रत्न उसके ग्रह नक्षत्र और राशि के अनुसार ही पहनने चाहिए, नहीं तो इसके नकारात्मक प्रभाव भी सामने आ सकते हैं। चलिए जानते हैं कि बुध के रत्न की महिमा क्या है।

0: एक हरा रत्न जिसे धारण करने से मीठी होगी जुबान। व्यक्तित्व में आएगा निखार, समाज में बढ़ेगा सम्मान। जी हाँ, पन्ना वो बेमिसाल रत्न है जो कुंडली के बुध की शुद्धि कर सकता है। ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि बुध अगर मजबूत हो तो इंसान को वाणी, बुद्धि और व्यक्तित्व से प्रभावशाली बनाता है। मजबूत बुध आपकी कई समस्याओं का समाधान कर सकता है। मजबूत बुध आपको तीव्र बुद्धि, अच्छी त्वचा, सौंदर्य और एकाग्रता का वरदान दे सकता है। लेकिन अगर कुंडली में बुध कमजोर हो तो क्या मुश्किलें आती हैं? आइए जानते हैं। कमजोर बुध के नुकसान। व्यक्ति को त्वचा की समस्या होती है, चेहरे पर जल्दी झुर्रियां पड़ने लगती हैं। व्यक्ति तुरंत सर्दी, जुकाम, एलर्जी की चपेट में आ जाता है। चीजों को समझने में काफी समय लगता है। व्यक्ति बार बार चीजें भूलने लगता है। धन को लेकर उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। धोखा, छल या फरेब व्यक्ति का स्वभाव बन जाता है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो कुंडली के बुध को मजबूत करने का सबसे उत्तम उपाय है बुध का रत्न पन्ना धारण करना। रत्न शास्त्र में पन्ना को एक बेशकीमती और बहुमूल्य रत्न माना गया है। बुध का रत्न पन्ना बुद्धि बढ़ाने वाला माना जाता है और इस रत्न को धारण करने वाला सौभाग्यशाली होता है। तो चलिए जानते हैं कि बुध के ग्रह पन्ना में कौन कौन से गुण छिपे हुए हैं। पन्ना की विशेषताएं। पन्ना नवरत्नों में एक असरदार और कोमल प्रभाव का रत्न है। वह बैरूज वर्ग का रत्न है और एल्यूमिनियम और बेरिलियम का सिलिकेट है। कुछ मात्रा में इसमें ऑक्सीजन और जल पाया जाता है। पन्ना कभी भी मिले यह षटकोणीय ही होता है। सामान्यतः पन्ना बिना जाल के नहीं हो सकता। बिना दोष के पन्ना मिल पाना काफी कठिन होता है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो रत्नों में ग्रहों की ऊर्जा आकर्षित करने की अद्भुत क्षमता होती है। अगर आपकी कुंडली का कमजोर बुध आपकी समस्याएं बढ़ा रहा है तो बुध का यह दिव्य प्रभाव वाला रत्न आपकी तमाम परेशानियां दूर कर सकता है। पन्ना को हीलिंग स्टोन भी माना जाता है। कहते हैं कि पन्ना को धारण करने वाले व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कर पाता है। पन्ना पहनने से नौकरी और व्यापार में भी उन्नति होती है। साथ ही पन्ना आर्थिक संकट भी दूर करने में कारगर है। लाभकारी भी है पन्ना। पन्ना बुद्धि को प्रखर और एकाग्र कर देता है। यह मन की चिंताओं को दूर करता है। इसको धारण करने से वाणी की शक्ति बढ़ जाती है। आमतौर पर कारोबार और आर्थिक स्थिति में लाभ पहुंचाता है। इससे व्यक्तित्व चमकदार और प्रभावशाली हो जाता है। यह त्वचा के रोगों में भी खूब लाभ देता है। माना जाता है कि पन्ना धारण करने से पहले ज्योतिष के जानकारों की सलाह जरूर लेनी चाहिए। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार बुध का रत्न पन्ना तभी धारण करना चाहिए जब कुंडली में बुध शुभ भाव का स्वामी हो, क्योंकि बुध की अशुभ स्थिति में पन्ना धारण करना जीवन में अशुभ प्रभाव बढ़ाने लगता है। तो आइए जानते हैं कि पन्ना रत्न कब और कैसे नुकसान पहुंचाता है। पन्ना धारण करने के नुकसान। ये बुद्धि को भ्रमित और मन को परेशान कर सकता है। इसके कारण आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। पन्ना त्वचा में समस्याएं दे सकता है और पन्ना आत्मविश्वास को गड़बड़ भी कर सकता है। ज्योतिष के जानकारों के मुताबिक हर राशि और लग्न के लोगों के लिए शुभ नहीं है बुध का ये रत्न। तो चलिए अब जान लेते हैं कि किन राशि वालों को पन्ना धारण करना चाहिए और किन्हें पन्ना से दूर रहना चाहिए। लाभकारी भी है और कष्टकारी भी है। वृष, मिथुन, कन्या, तुला, मकर, कुंभ लग्न वालों के लिए पन्ना लाभकारी होता है। सिंह, धनु और मीन लग्न में विशेष दशाओं में पन्ना पहन सकते हैं। मेष, कर्क, वृश्चिक लग्न में पन्ना भूलकर भी धारण ना करें। जो लोग वाणी संबंधी कार्य में हैं उन्हें पन्ना धारण करना चाहिए। आर्थिक क्षेत्र के लोगों के लिए भी पन्ना धारण करना अनुकूल होगा। पन्ना शुभ परिणाम देने पर न सिर्फ दौलत और शोहरत दिलवाता है बल्कि आपको समाज में सम्मान भी हासिल होता है। तो आप भी पन्ना को सही तरीके से धारण करें जिससे न सिर्फ आपका बुध मजबूत होगा बल्कि आपकी सारी बाधाओं का भी अंत होगा। प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
2: Looking for an app to hear all of your favorite music, news, sports, and more? We've got all of your audio all in one place, right here on TuneIn. Play your favorite stations like K Buena, ESPN Radio.
3: How they looked after game one.
4: I mean, they were frustrated.
2: The Daily.
5: I'm Sabrina Tavernisi, and this is The Daily from inside the Democratic National Convention Hall.
2: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.
1: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला
5: फैक्ट चेक के आखिरी सफर का, जहां हम आपको दिखाएंगे तमाम ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं, इन्हें खूब पसंद किया जा रहा है।
6: नमस्कार, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
7: कृष्णा जी की पेंटिंग थी यहाँ पे, गणेशा,
6: ये प्यारी सी घंटी,
8: चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर, हाड़ कपा देने वाली ठंड और तापमान -40 डिग्री। लेकिन इस कड़ाके की सर्दी के बीच अगर आपको हरे कृष्णा और शिव आरती की गूंज सुनाई दे तो शायद आपको अपने कानों पर यकीन ना हो, लेकिन यह हकीकत है। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसे देखकर हर कोई हैरान है। यह नजारा भारत के किसी बर्फीले पहाड़ी इलाके का नहीं बल्कि रूस के सुदूर और बेहद ठंडे क्षेत्र साइबेरिया का है। इंटरनेट पर इस जगह को रूस का हिंदू गांव और मिनी इंडिया कहा जा रहा है। इस अनोखे गांव का नाम ओकुनेवो है जो रूस के ओमस्क क्षेत्र में स्थित है। यह इलाका पश्चिमी साइबेरिया के अंतर्गत आता है और अपनी भीषण ठंड के लिए जाना जाता है। वीडियो में देखा जा सकता है कि चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, लेकिन कड़कड़ाती ठंड में भी स्थानीय और सैलानी पूरी श्रद्धा के साथ भक्ति में लीन है। इस वीडियो क्लिप को देखने के बाद हर भारतीय यूजर गर्व महसूस कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि साइबेरिया के इस छोटे से गांव में एक कृष्ण मंदिर है जो इस्कॉन से जुड़ा है। इसके साथ ही यहां भगवान शिव की भी पूजा की जाती है। -40 डिग्री टेम्परेचर के बावजूद लोग यहां सुबह शाम इकट्ठा होते हैं और पूजा करते हैं।
9: ग्राम पुजारी इस सेवा, ओम नमः शिवाय।
8: एक छोटे बच्चे का वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें वो अपने टीचर से शिकायत करते हुए नजर आ रहा है।
10: सर, एक बात बताओ, जब हम बाल कटवा के नहाएंगे तो मम्मा मारता हूँ, अब जब लड़की इनके बाल इतने बड़े होता है तब तुम ना मारता हूँ।
8: वीडियो में नजर आता है कि बच्चा अपनी टीचर से शिकायत करता है। वो बोलता है, सर एक बात बताओ, जब हम बाल कटवा कर नहीं आते हैं तो आप हमें मारते हो, और जब लड़कियों के बाल इतने बड़े हो गए हैं तो नहीं मारते हो। अब यह शिकायत सुनकर टीचर कहता है, वो तो लड़कियां हैं, मगर तुरंत बाद बच्चा बोलता है कि लड़की से हम क्या कम हैं? अब यह सुनते ही टीचर भी हंसने लगता है।
10: सर, एक बात बताओ, जब हम बाल कटवा के नहाएंगे तो तुम हमें मारता हूँ, अब जब लड़की इनके बाल इतने बड़े होता है तो तुम ना मारता
11: हूँ। ये तो लड़की है,
10: लड़की से तो हम कम आए।
8: यूजर्स इस वीडियो पर जमकर अपना प्यार लुटा रहे हैं, बच्चे के सवाल जवाब पर जमकर कमेंट्स कर रहे हैं।
10: अब जब लड़की इनके बाल इतने बड़े होता है ता तुम ना मारता
11: हूँ। ये तो लड़की है,
10: लड़की से तो हम कम आए।
8: सोशल मीडिया पर यह दिल छूने वाला वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक माँ की अथक मेहनत और ममता को देखकर हर कोई हैरान और भावुक हो रहा है। वीडियो में एक महिला अपने छोटे बच्चे को पीठ पर लपेटे हुए, सिर पर सब्जियों की भारी भारी टोकरियां संतुलित करते हुए ट्रक पर सामान लाती दिख रही है। बिना थके बिना रुके वह लगातार काम करती जा रही है। बताया जा रहा है कि महिला रोजाना बाजार आती है, सुबह से शाम तक वह न सिर्फ अपना काम संभालती है बल्कि अपने छोटे बच्चे की देखभाल भी करती है। बच्चा पीठ पर बंधा रहता है और माँ का काम चलता रहता है। वीडियो में दिख रहा है कि भारी टोकरियां सिर पर रखकर वह ट्रक की ऊंचाई तक चढ़ रही है। उसके चेहरे पर थकान तो है लेकिन आत्मविश्वास और ममता भी साफ दिख रही है। सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसी वीडियो सामने आते हैं जो दिल को छू जाते हैं। हाल ही में देश के जाने माने बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा ने अपने एक्स हैंडल से एक ऐसा ही बेहद प्यारा वीडियो शेयर किया है जिसने इंटरनेट की पब्लिक का दिल जीत लिया है। वायरल क्लिप में एक दादा पोते की जोड़ी पारंपरिक लोक नृत्य पर धड़कती नजर आ रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि पारंपरिक सफेद केडियू और धोती पहने एक बुजुर्ग व्यक्ति पूरे जोश के साथ थिरक रहे हैं। उनके साथ उनका छोटा पोता भी खड़ा है, जो कदम से कदम मिलाकर अपने दादाजी को कड़ी टक्कर दे रहा है। दोनों की जुगलबंदी और एनर्जी देखने लायक है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र की एक पारंपरिक और सांस्कृतिक लोक कला डायरा का है।

सोशल मीडिया पर इन दिनों इस बच्ची के डांस का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। आलम यह है कि वीडियो को महज कुछ ही दिनों में लाखों व्यूज मिल चुके हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि पीले कलर के सूट और सलवार में बच्ची दिल खोलकर डांस कर रही है। बच्ची के शानदार परफॉर्मेंस पर टीचर के एक्सप्रेशन भी देखने लायक रहे। वो खुद भी बच्ची के धांसू स्टेप और एक्सप्रेशन देख दंग नजर आए। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया है। आमतौर पर जिम में भारी वजन उठाते हुए युवा ही नजर आते हैं, लेकिन इस बार एक दादी ने ऐसा कारनामा कर दिखाया कि लोगों के होश उड़ गए। करीब 60 किलो वजन की इस बुजुर्ग महिला ने जिम में 110 किलो वजन उठाकर सभी को चौंका दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि दादी पूरी तैयारी के साथ जिम में मौजूद हैं और बिना किसी झिझक के भारी वजन उठाने के लिए तैयार हो जाती हैं। आसपास खड़े लोग भी पहले तो उन्हें देखकर थोड़ा हैरान होते हैं, लेकिन जैसे ही वे आत्मविश्वास के साथ 110 किलो वजन उठाती हैं, वहां मौजूद सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। उनकी ताकत, संतुलन और फोकस देखकर यह साफ समझ आता है कि उम्र सिर्फ एक संख्या है, अगर इरादा मजबूत हो तो कुछ भी संभव है।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो खूब देखा जा रहा है। वीडियो में नजर आता है कि एक डिलीवरी बॉय कुछ सामान देने के लिए एक घर के सामने खड़ा है। कुछ देर बाद दरवाजा खुलता है और वो सामान उन्हें पकड़ा देता है। इसके बाद वो वापस जा रहा होता है, तभी उसे एक जगह पर बैट रखा हुआ नजर आता है। अब उस बैट को देखते ही उसके अंदर का क्रिकेटर जाग जाता है और वो बैट पकड़कर कुछ शॉट प्रैक्टिस करता दिखता है। अब उसके इसी काम के कारण वीडियो वायरल हो रहा है। बेल्जियम की एक युवती का भारतीय पान चखने वाला वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। भारत आने के बाद उसने पहली बार पान का स्वाद लिया और उसके चेहरे के भाव देखकर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं। किसी के लिए पान सिर्फ खाने की चीज होती है तो कुछ लोग इसे शौक और परंपरा से जोड़कर देखते हैं, लेकिन विदेश से आई इस लड़की के लिए यह अनुभव बिल्कुल नया और हैरान कर देने वाला था। यही वजह है कि इंटरनेट पर लोग इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं। वीडियो में पान बनाने की पूरी प्रोसेस भी दिखाई गई है। एलिस हर चीज को बड़ी दिलचस्पी से देखती हैं और बार बार सवाल पूछती रहती हैं। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी सारी चीजों को मिलाकर कोई कैसे खा सकता है। एक पल पर तो वह मजाकी अंदाज में कहती है कि यह किसी खाने की चीज से ज्यादा किसी अजीब प्रयोग जैसा लग रहा है। हालांकि थोड़ी देर झिझक के बाद आखिरकार एलिस पान चखने के लिए तैयार हो जाती है। जैसे ही वह पहला निवाला खाती है उसके चेहरे के बदलते भाव लोगों का ध्यान खींच लेते हैं। उसकी बड़ी होती आंखें साफ बता रही थी कि स्वाद उसके अनुमान से बिल्कुल अलग निकला। असम के मानस नेशनल पार्क का ये वीडियो है। बताया जा रहा है कि जंगल सफारी का लुत्फ उठा रहे पर्यटकों पर अचानक एक गैंडे ने हमला कर दिया। दरअसल पर्यटकों से भरी एक सफारी जीप जंगल की सैर पर निकली थी। लोग कैमरे में जंगली जानवरों को कैद करने में बिजी थे, तभी अचानक एक विशालकाय गैंडा भड़क गया और उसने सीधे पर्यटकों से भरी जीप पर हमला कर दिया। वीडियो में दिख रहा है कि गैंडे ने अपनी पूरी ताकत से जीप के किनारे पर सींग मारना शुरू कर दिया। वो गाड़ी को पलटने की जिद पर अड़ा हुआ था। आप देखेंगे कि सफारी जीप खिलौने के माफिक हिल रही थी। एक बार तो गैंडे ने अपनी सींग से गाड़ी उठा ही ली थी, लगा जैसे कि कोई बड़ी अनहोनी होकर रहेगी, लेकिन तभी ड्राइवर ने गजब का हौसला दिखाया। बिना घबराए उसने गाड़ी को रिवर्स लेना शुरू किया। वहीं आसपास मौजूद लोगों ने शोर मचाकर गैंडे का ध्यान भटकाने की कोशिश की। आखिरकार गैंडा पीछे हटा और किसी तरह पर्यटकों की जान में जान आई।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
1: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
2: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. Tune in has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
0: Good news today इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम
3: रोम में पीएम मोदी और मेलोनी लगाया पौधा, मेलोनी को दिया भारत आने का न्योता। सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा पीएम मोदी और मेलोनी का टॉफी वाले गिफ्ट का वीडियो, अब तक 12 करोड़ पार व्यूज। पीएम मोदी के नाम एक और सर्वोच्च सम्मान, रोम में कृषि संगठन ने किया सम्मानित। संयुक्त राष्ट्र की एफएओ ने एग्रीकोला मेडल से नवाजा। अयोध्या राम मंदिर में त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू, एआई कैमरों से हो रही निगरानी, नई सुरक्षा दीवार और वॉच टावर का भी निर्माण। चित्तौड़गढ़ के सावलिया सेठ को भक्त की अनोखी भेंट, भगवान को अर्पित किया 197 ग्राम चांदी से बना हार्ट, सफल बाईपास ऑपरेशन के लिए मांगी थी मन्नत। देवभूमि उत्तराखंड में धूमधाम से जारी चार धाम यात्रा, बद्रीनाथ में 4.5 लाख से अधिक भक्तों ने किए दर्शन, केदारनाथ धाम पहुंचे करीब 7.25 लाख श्रद्धालु।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिलदेव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात होगी देश में चल रहे मंगल उत्सव की। इस समय देश के अलग अलग छोर, अलग अलग किनारों पर कई उत्सव, कई लोक पर्व मनाए जा रहे हैं। भारत की संस्कृति में यूं भी परंपराओं के धागों से जाने कितने ही तीज त्योहार और उत्सव बुने गए हैं। कुछ उत्सवों की कहानी पौराणिक आधार से निकली तो कुछ उत्सव हमारे देश की समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत की धरोहर हैं। ऐसा ही एक उत्सव यूपी के झांसी में मनाया गया। एक ऐसा उत्सव जो किसी देवी देवता के सम्मान में नहीं मनाया जाता, बल्कि हर साल झांसी ये उत्सव मनाती है उस महान वीरांगना की याद में जिनके साहस और शौर्य ने अंग्रेजों की नींद उड़ा दी थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और राजा गंगाधर राव के विवाह की 184वीं सालगिरह धूमधाम से मनाई गई। झांसी के लिए ये दिन इसीलिए भी खास है क्योंकि इसी दिन वाराणसी की मणिकर्णिका झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई बनकर इस नगर में आई थी।

0: ही वैभव के साथ सगाई झांसी में। क्या हुआ रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में। सुभट बुंदेलों की विरुदावली सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। जब दुल्हन बनकर झांसी आई झांसी वाली रानी थी। आज से 184 साल पहले घटी इस घटना के हर दृश्य को कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने कोई 96 साल पहले अपनी कलम से जीवंत कर दिया था। झांसी उस दिन को आज फिर से जी रही है। वो शुभ घड़ी जब झांसी की धरती पर पांव पड़े थे उस वीरांगना के जो दुनिया में झांसी की पहचान का हस्ताक्षर बन गई। साल 1842 में यही वो दिन था जब रानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी नरेश राजा गंगाधर राव के साथ धूमधाम से संपन्न हुआ था और काशी की लाडली मनु अपनी बरछी ढाल कृपाण कटारी सखियों समेत झांसी की महारानी बनकर इस नगर में पधारी थी। मंगलवार को झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और महाराजा गंगाधर राव के विवाह की 184वीं वर्षगांठ बेहद धूमधाम से मनाई गई। एनसीसी बैंड की धुन ढोल नगाड़ों की गूंज पारंपरिक मराठी वेशभूषा में सजे बच्चे ऐतिहासिक पात्रों की झलक और देशभक्ति से सराबोर माहौल ने पूरे शहर को उत्सव के रंग में रंग दिया। कार्यक्रम की शुरुआत हुई शहर के प्रसिद्ध लक्ष्मी व्यायाम मंदिर से, जहां से महाराज गंगाधर राव की प्रतीकात्मक शाही बारात और शोभा यात्रा सजकर निकली।
1: आज झांसी नरेश महाराज गंगाधर राव और महारानी लक्ष्मीबाई के विवाह की 184वीं वर्षगांठ है। ये हम लोग महाराज गणेश मंदिर कमेटी संपूर्ण झांसी के साथ मना रही है। आज ये शोभा यात्रा जो बारात की शोभा यात्रा है ये लक्ष्मीबाई मंदिर से प्रारंभ होकर कोतवाली मानिक चौक सराफा बाजार नरिया बाजार होते हुए गणेश मंदिर पर संपन्न होगी, जहाँ पर प्रतीकात्मक रूप से राजा रानी का विवाह होगा।
0: यात्रा के दौरान जगह जगह लोगों ने फूलों की बारिश कर बारात का स्वागत किया। सारा शहर झांसी की रानी अमर रहे के जयकारों से गूंज उठा। शोभा यात्रा में एनसीसी कैडेट्स घोष दल स्कूली छात्र छात्राएं सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और हजारों शहरवासी शामिल हुए। झांसी नरेश की बारात की भव्यता को कई गुना बढ़ा दिया इन छोटी छोटी बच्चियों ने जो महारानी लक्ष्मीबाई का रूप धर शोभा यात्रा में पहुंची थी।
1: सिपाही के रूप में एनसीसी की छात्राएं हैं, स्कूल विद्यालयों के घोष है, स्कूल की छोटी छोटी छात्राएं जिस तरह से बारात में सजते हैं दुल्हन वेश में रानी उस तरह से सजी हुई हैं, स्कूल की अध्यापिकाएं और झांसी का जन जन सभी लोग एकत्रित आप देख रहे हो, ये इस आकर्षण का केंद्र है। और सभी इसमें हमारे राजनीतिक सभी हमारे प्रतिनिधि लोग मौजूद हैं, प्रशासन मौजूद है।
0: और रानी लक्ष्मीबाई ही क्यों, कई बच्चों ने महाराज गंगाधर राव तात्या टोपे झलकारी बाई मोरोपन सुंदर मुंदर और रानी की दुर्गा महिला सेना के किरदार निभाकर लोगों का मन मोह लिया। जहां झांसी की महिलाएं पारंपरिक मराठी परिधान में नजर आए।
2: आज हम सभी लोग महारानी लक्ष्मीबाई और महाराजा गंगाधर राव की 184वीं शादी की वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं और ये बारात निकल रही है। आप देख ही रहे होंगे कितने जोर शोर के साथ। इसमें हमारे 50 एनसीसी कैडेट्स हैं और इसमें करीब 60 हमारे घोष दल जो होता है वो है, बाकी स्कूल के स्टूडेंट हैं, सभी पूरा स्टाफ है और बहुत ही हम लोग इस फंक्शन को एंजॉय करते हैं। हर साल
3: हर्ष और उल्लास के साथ हम लोग ये अपना पर्व उनकी वर्षगांठ बहुत धूमधाम से मनाते हैं झांसी में।
0: आपको बता दें कि साल 1842 में 19 मई के दिन महाराज गंगाधर राव और मणिकर्णिका का विवाह संपन्न हुआ था। विवाह के बाद ही मणिकर्णिका को लक्ष्मीबाई नाम मिला और आगे चलकर उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष कर भारतीय इतिहास में अमिट स्थान बनाया। उसी गौरवशाली इतिहास को जीवंत रखने के उद्देश्य से हर साल झांसी में ये आयोजन किया जाता है। अब की बार भी शहर के प्रमुख रास्तों से गुजरती हुई बारात ऐतिहासिक गणेश मंदिर पहुंची। गणेश मंदिर पहुंचने पर वैदिक मंत्रोच्चार और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ महाराजा गंगाधर राव और महारानी लक्ष्मीबाई का प्रतीकात्मक विवाह संपन्न करवाया गया। इस दौरान मंदिर परिसर जय भवानी और महारानी लक्ष्मीबाई अमर रहे के नारों से गूंज उठा। झांसी के लोगों के दिलों में महारानी लक्ष्मीबाई साहस, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति का अमिट प्रतीक है। तभी तो झांसी के लिए ये सिर्फ एक उत्सव नहीं बल्कि झांसी के लिए इस उत्सव का एक भावनात्मक महत्व है। ये उत्सव झांसी के गौरवशाली इतिहास को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का एक माध्यम है। झांसी से अजय झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: अब बात रामनगरी अयोध्या की। अयोध्या जल्द ही एक और उत्सव की साक्षी बनने जा रही है और ये उत्सव होगा 26 नवंबर यानी गंगा दशहरा के दिन। गंगा दशहरा के पावन अवसर पर रामनगरी अयोध्या एक बार फिर से भक्ति, आस्था और वैदिक परंपराओं के रंग में रंगने जा रही है। मंदिर परिसर में विशेष पूजा अर्चना, वैदिक मंत्रोच्चार अनुष्ठान और भगवान को विशेष भोग अर्पित किए जाएंगे। इस अवसर पर अयोध्या में सरयू स्नान के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ेगी। मठ मंदिरों में विशेष धार्मिक आयोजन होंगे। तिथि के हिसाब से गंगा दशहरा के दिन ही राम जन्मभूमि मंदिर में स्थापित राम दरबार की प्रथम वर्षगांठ भी है। पिछले वर्ष इसी पावन तिथि पर राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में राम दरबार समेत 6 उपमंदिरों की विधिवत स्थापना की गई थी। इस वर्षगांठ को लेकर भी अयोध्या में तैयारियां तेज हो गई हैं। देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं ताकि भक्त इस ऐतिहासिक और आध्यात्मिक आयोजन का सहजता के साथ हिस्सा बन पाए। रामनगरी अयोध्या में गंगा दशहरा को लेकर भक्तों में भी खासा उत्साह नजर आ रहा है। अब अयोध्या से चलते हैं उत्तराखंड और आपको दिखाते हैं गढ़वाल का वो उत्सव जिसे देखकर आपको ब्रज की होली याद आ जाएगी। चमोली के आदि बद्री धाम में नौठा कोथी लठमार मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में लाठी डंडों के प्रतीकात्मक युद्ध लड़ने की परंपरा होती है। आखिर क्यों मनाया जाता है ये उत्सव और क्या है यहाँ निभाई जाने वाली लठमार परंपरा की पूरी कहानी, चलिए आपको बताते हैं।

0: लाठियां प्रेम में पगी भी हो सकती हैं। लाठियों की मार में ढेर सारा प्यार और मीठी मनुहार भी होती है। ये दुनिया ने जाना जब जब देखी कृष्ण कन्हैया के ब्रज की होरी। लेकिन उसी प्रेम, उसी आस्था और उसी परंपरा का एक रंग दिखता है मथुरा के मैदानों से कोई 600 किलोमीटर दूर उत्तराखंड में चमोली के पहाड़ों पर। वो लाठी जो दुनिया के लिए कभी शक्ति, कभी नियंत्रण, कभी आत्मरक्षा तो कभी सहारे का प्रतीक है, उसका भावार्थ अक्षरशः बदल जाता है देवों की इस भूमि पर और ढल जाता है आस्था के उस सांचे में जो पहचान है देवताओं की भूमि कहलाने वाले इस राज्य की। एक सदियों पुरानी परंपरा का रूप है चमोली में हर साल लगने वाला नौठा कौथीग मेला, जहां भगवान आदि बद्रीनाथ के धाम में बरसों से लठमार युद्ध की ये परंपरा पूरी आस्था और विश्वास के साथ निभाई जा रही है। चमोली का नौठा कौथीग यानी लठमार मेला मुख्य रूप से नई फसल के आगमन का त्योहार है। और इसी त्योहार से जुड़ा है चमोली का ये लठमार युद्ध। बताया जाता है कि पुराने समय में यहाँ के गांवों के बीच इस बात पर लाठियों से असली युद्ध होता था कि सबसे पहले कौन सा गांव भगवान को नया अन्न अर्पित करेगा। जीतने वाले गांव को ये सम्मान और सौभाग्य हासिल होता था। समय के साथ युद्ध प्रतीकात्मक रूप में बदल गया। अब ये युद्ध महज परंपरा निभाने भर के लिए होता है। लेकिन स्थानीय ग्रामीणों के बीच इस युद्ध से जुड़ी शौर्य, प्रतिष्ठा और संघर्ष की भावना आज भी वही है और चमोली के 27 गांव आज भी पूरे उत्साह से इस परंपरा को निभाते हैं।
1: इसमें हमारे 27 गांव ब्राह्मण और ठाकुरों के 27 गांव है इस पूरे इलाके में मल्ला चांदपुर में। उन गांवों के तमाम दर्शक आते हैं मेले में और खेलने के लिए, नाचने के लिए, तो वो सब लोग यहाँ पर आए भी थे। सारे लोग बाजी गाजी के साथ आते हैं और अभी प्रतीकात्मक जो डंडे आपने देखे वो प्रतीकात्मक यहाँ पर आते हैं और केवल वो शो के लिए मेले में आके वो एक सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए वो किया जा रहा है।
0: लठमार युद्ध के लिए पहले खेती के मालगुजार के नेतृत्व में गाजे बाजे, देव डोली और लाठी डंडों के साथ नौठा नृत्य दल आदि बद्री मंदिर पहुंचता है। इसके बाद दोनों दलों के बीच लाठी डंडों का प्रतीकात्मक युद्ध शुरू होता है। युद्ध के बाद ढोल दमाऊ की थाप पर दोनों दल अपने अपने नृत्य का प्रदर्शन करते हैं और फिर अंत में लठमार योद्धा आपस में गले मिलकर एकता का संदेश देते हैं।
2: तीसरी बार आ रही हूँ, पिछले साल भी मैं यहाँ पर आई थी। जो हमारी पुरानी परंपरा है उसको जैसे बचा रहे हैं लोग, उसको दिखाने के लिए कि जो हमारी युवा पीढ़ी है उसको देखें कि पहले जमाने में कैसे हुआ करता था सभी चीजें। तो यहाँ पर खेती गांव से लोग आते हैं, जो अनाज होता है वो चढ़ाने के लिए आते हैं और उसके बाद पहले क्या होता था, जो पिंड वाली गाँव है और खेती गाँव है उन दोनों में लड़ाई होती थी कहते हैं ऐसा। तो उसके बाद जो पिंड वाली है उन्होंने हार मान ली थी, तो पूरा जो मंदिर है इस पर पूरा वो कब्जा बोलते हैं जिसको, जो अनाज फर्स्ट यहाँ पर चढ़ाते हैं वो खेती वाले चढ़ाते हैं क्योंकि वो जीत गए थे। तो यही इंटरेस्टिंग होता है यहाँ पर। तो लोग पहले जो वो चीज पहले हुई थी उसको थोड़ा दिखावा करते हैं, परंपरा को बचाने के लिए तो लट्ठी से लड़ाई करते हैं, अभी भी करते हैं पर एक रियल नहीं है वो, एकदम से रियल नहीं है, नॉर्मल है वो, उसमें कोई किसी को चोट नहीं पहुंचाता है।
0: इसके बाद आखिर में भगवान आदि बद्रीनाथ को नए गेहूं और जौ का अन्न अर्पित किया जाता है। नई फसल की खुशी मनाने के लिए स्थानीय महिलाएं चोपुला, चाचरी और झुमेलो जैसे परंपरागत नृत्य करती हैं। हर साल की तरह इस बार भी नौठा कौथीग मेले में हिस्सा लेने बड़ी संख्या में श्रद्धालु आदि बद्री धाम पहुंचे हैं। आपको बता दें, आदि बद्री धाम सप्त बद्री की यात्रा का प्रथम स्थल है। यहाँ भगवान विष्णु के प्राचीन मंदिर हैं, जिन्हें आदि शंकराचार्य से जोड़ा जाता है। बर्फबारी के चलते जब सर्दियों में बद्रीनाथ धाम के कपाट 6 महीने बंद रहते हैं, तब यहाँ विशेष पूजा अर्चना होती है। गुजरते समय के साथ नौठा कौथिग लठमार मेला इस देवस्थल को गढ़वाल की संस्कृति और लोक परंपराओं की जड़ों से जोड़ने का अनुपम माध्यम बन गया है। स्थानीय लोग इसे अपनी सांस्कृतिक पहचान का उत्सव मानते हैं। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: बात एक ऐसे उत्सव

जाता है कुदरत को सहेजने के लिए। कश्मीर के काजीकुंड इलाके के एक ऐसे उत्सव को आपको दिखाते हैं जहां झरनों और नदियों को साफ करने की परंपरा निभाई जाती है। जरा सोचिए, जल और पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से कितना अहम होता है ये उत्सव। खास बात यह है कि लोग अपने स्तर पर खुद ही सालों से इस परंपरा को निभाते आ रहे हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट।

0: कश्मीर की खूबसूरत वादियाँ, बर्फ से ढके ऊंचे पहाड़, कल कल बहती नदियाँ यहाँ आने वालों को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। यहाँ का अनंतनाग जिला भी प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। यहाँ की दिव्य छटाएं पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। यहाँ फूलों की मखमली वादियों से लेकर प्राचीन मीठे पानी के झरनों का एक मनमोहक संगम है। ये तस्वीरें अनंतनाग जिले के काजीगुंड इलाके के पंचतनाग की है, जहाँ लोग बड़ी संख्या में पानी के अंदर नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे ये सभी पानी में कुछ तलाश रहे हों। इस दौरान हाथ में मछली के आने की खुशी लोगों के चेहरे पर साफ देखी जा सकती है। दरअसल पारंपरिक टोकरियों के साथ मौजूद ये सभी लोग सिर्फ मछली पकड़ने के रोमांच को लेकर पानी के अंदर नहीं है, बल्कि ये उस सालाना परंपरा का हिस्सा है जिसे पंचतनाग उत्सव के रूप में जाना जाता है।
1: इस साल वहाँ पंचतनाग यानी कि स्प्रिंग है उस इलाके का, ऐसा पानी का स्रोत जिसमें कई सारे स्प्रिंग आके मर्ज होते हैं और उस पूरे इलाके बल्कि कई सारे गांव हैं जिनके पीने के पानी की ज़रूरत से लेके जो इरिगेशन के लिए पानी चाहिए और बाकी ज़रूरतें भी जो हैं इसी स्प्रिंग से पूरी होती हैं। और हर साल ये गांव जो है सभी बूढ़े बच्चे जवान मिलके एक छुट्टी का दिन सिलेक्ट करते हैं और उस नाग की सफाई करते हैं। हालांकि इसको एक फिशिंग फेस्टिवल की तरीके से मनाया जाता है, लेकिन पीछे जो आइडियोलॉजी है, जो इसके पीछे मकसद है, वो है स्प्रिंग को साफ रखना, उस वाटर बॉडी को साफ रखना।
0: जल स्रोतों और पर्यावरण संरक्षण के मकसद से कई पीढ़ियों से यहाँ मई के महीने में ये उत्सव मनाया जाता है, जिसमें पंचत गांव के निवासी मीठे पानी के झरनों के एक समूह के आसपास जुटते हैं और सदियों पुरानी सामुदायिक परंपरा के तहत पानी से खरपतवार और कचरा साफ करते हैं। पंचतनाग झरनों की सफाई करने के साथ ही इस दिन मछली पकड़ने की भी इजाजत दी जाती है। इस आयोजन में पंचत के अलावा कई दूसरे गांव के लोग भी पूरे उत्साह के साथ शामिल होते हैं, जिनमें से कई गांव पीने के पानी और सिंचाई के लिए इन झरनों पर निर्भर हैं। ग्रीष्म ऋतु के अंत में जब जल स्तर घट जाता है तो जलीय खरपतवार तेजी से झरने में फैल जाते हैं, जिससे जल प्रवाह बाधित होता है। सामूहिक सफाई का ये प्रयास हाथ से झरने के बहाव को बहाल करता है, जो आसपास के 45 गांवों को पीने और सिंचाई का पानी मुहैया कराता है। साफ है कि ये वो उत्सव है जिसमें मछली पकड़ना नहीं बल्कि झरने को साफ करना अहम मकसद है, ताकि लोगों को पीने और सिंचाई के लिए पानी मिलता रहे। अपने प्राकृतिक संसाधनों की पूरी जिम्मेदारी लेकर पंचत में लोग जिस तरह का उदाहरण पेश कर रहे हैं, उसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात में भी सराहना कर चुके हैं।
1: तारीफ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की थी 2023 में एक मन की बात प्रोग्राम में। उन्होंने कहा था कि किस तरीके से अगर लोग चाहें तो खुद ऐसा एफर्ट कर सकते हैं जिससे प्रकृति को बचाया जा सकता है, अलग अलग तरीके से जो स्वच्छता है उसमें कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, ताकि जो आसपास की जगहें हैं साफ रहे, जो प्रकृति है, माहौल है, साफ रहे। तो पंचतनाग जो है आज एक मिसाल है कि कैसे खुद लोग जो हैं अगर चाहें, अगर एकजुट हो जाएं तो बहुत कुछ हो सकता है, और खासकर जो पोल्यूशन है उसके खिलाफ एक डिसाइसिव लड़ाई हो सकती है।
0: लोगों को उम्मीद है कि सरकार इस दिशा में जरूर कोई ना कोई ठोस कदम उठाएगी, जिससे एक दिन कश्मीर के पर्यटन मानचित्र पर पंचत का नाम शामिल होगा। श्रीनगर से मीर फरीद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: बात आस्था के उस मंगल उत्सव की जो देवभूमि उत्तराखंड में जारी है। पिछले कई दिनों से उत्तराखंड में चार धाम यात्रा चल रही है। आपके साल हर रोज चार धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या का नया रिकॉर्ड बनता जा रहा है। पिछले एक महीने में चार धाम यात्रा में अब तक 17.5 लाख से ज्यादा लोग दर्शन कर चुके हैं। ये अभूतपूर्व रिकॉर्ड है। कल यानी 19 मई तक कुल 17,26,393 लोग चार धाम में दर्शन कर चुके हैं। इनमें से केदारनाथ

धाम में अब तक 6,94,000 से ज्यादा लोगों ने दर्शन किए, जबकि बद्री विशाल के धाम बद्रीनाथ में अब तक 4,51,000 से ज्यादा लोग दर्शन कर चुके हैं। इसी क्रम में मां यमुना के धाम यमुनोत्री पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 2,92,000 को पार कर चुकी है, जबकि मां गंगा के धाम गंगोत्री में 19 मई तक 2,88,000 से ज्यादा श्रद्धालु हाजिरी लगा चुके हैं। अब देखिए, शिव भक्तों के लिए चार धाम यात्रा में केदारनाथ का बहुत महत्व है। आपको बता दें, केदारनाथ धाम देवभूमि में मौजूद पंच केदार में शामिल है। मान्यता है कि पांच जगहों पर पांडवों को भगवान शिव के अलग अलग अंगों के दर्शन हुए थे। केदारनाथ में पीठ के दर्शन हुए, मध्य महेश्वर में भगवान के मध्य भाग यानी नाभि के। 21 मई को मध्य महेश्वर धाम के कपाट खुलने जा रहे हैं, जिसके लिए धूमधाम से भगवान की डोली अपने शीतकालीन आवास ऊखीमठ से कल रवाना हुई थी। कल सुबह भगवान मध्य महेश्वर की उत्सव डोली अपने धाम में पहुंच जाएगी।

0: संस्कृति, परंपरा और आस्था का अनूठा संगम। आगे आगे भगवान की डोली, पीछे पीछे भक्तों की डोली। ढोल दमाव की थाप है, रंग है, राग है, आस्था परंपार है। भगवान मध्य महेश्वर अपने धाम चले हैं। अपने धाम यानी मध्य महेश्वर मंदिर। महिलाओं ने भजन गाकर अपने आराध्य को विदाई दी तो वहीं डोली के साथ साथ चल रहे भक्त महादेव का जयकारा लगाते पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ते रहे। ओंकारेश्वर मंदिर में भगवान शीतकालीन प्रवास पर थे। प्रवास पूरा होते ही मध्य महेश्वर की चल उत्सव विग्रह डोली अपने धाम के लिए रवाना हो गई। मंगलवार को खीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर से रवाना हुई डोली आज गोंडार गांव पहुंचेगी और 21 मई को मध्य महेश्वर मंदिर। डोली के धाम पहुंचने पर वैदिक मंत्रोच्चार और पूरे विधि विधान के साथ मंदिर के कपाट खोल दिए जाएंगे और अगले 6 महीने तक भगवान अपने भक्तों को यहीं दर्शन देंगे।
1: रांसी गांव से रुद्रप्रयाग जनपद के सीमांत गांव गोंडार में भगवान मध्यमेश्वर की डोली द्वितीय रात्रि प्रवास करेगी। 21 मई सुबह डोली गोंडार गांव से धाम के लिए प्रस्थान करेगी और धाम पहुंचने पर लगभग 11 बजे द्वितीय केदार भगवान मध्यमेश्वर के कपाट आगामी 6 माह के लिए खुलेंगे। आपको बता दें कि भगवान मध्यमेश्वर की मध्यमेश्वर धाम में मध्य भाग की पूजा होती है और इसके अलावा केदार घाटी में भगवान मध्यमेश्वर को न्याय के देवता के रूप में भी पूजा जाता है।
0: उत्तराखंड के पंच केदार में भगवान शिव के 5 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। केदारनाथ में बैल रूपी शिव के कुबड़ की, तुंगनाथ में भुजाओं की, रुद्रनाथ में मस्तक की, मध्य महेश्वर में नाभि की और कल्पेश्वर में जटाओं की पूजा होती है। पंच केदार में मध्य महेश्वर को दूसरे केदार के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि इस मंदिर को महाभारत काल में पांडवों द्वारा बनवाया गया था। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सिंहवाल, गुड न्यूज टुडे।

0: Music for every mood lives on TuneIn. Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations, like today's hits, classic rock, coffee house, and more. Stream nonstop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: कान फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर हर साल फैशन के नए रंग देखने को मिलते हैं, लेकिन इस बार जयपुर की बेटी और एक्ट्रेस रुचि गुर्जर ने अपने अंदाज से सिर्फ फैशन नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति को दुनिया के सामने रखा। रुचि जब पारंपरिक राजस्थानी घूंघट ओढ़कर रेड कार्पेट पहुंची तो हर किसी की निगाहें उन पर टिक गई।
3: कांस के रेड कार्पेट पर घूंघट में रुचि गुर्जर की एंट्री ने फैशन के इस मंच को महिलाओं की आजादी, पहचान और सामाजिक बदलाव की आवाज बना दिया। जिस बेबाकी और बेफिक्री से रुचि ने वहां मौजूद मीडिया के सामने पोज दिए और रेड कार्पेट पर वॉक किया, उसकी धमक दूर दूर तक सुनाई दी। राजस्थान की समृद्ध विरासत और संस्कृति से प्रेरित रुचि का ये खूबसूरत गुलाबी घूंघट लुक किसी फैशन स्टेटमेंट के लिए पहना गया महज एक आउटफिट नहीं था, बल्कि महिलाओं के हक और सम्मान में उठी एक आवाज थी। ये घूंघट उन सामाजिक बंधनों पर एक सवाल था, जिसकी वजह से आज भी कई महिलाओं को अपनी पहचान छिपाकर जीना पड़ता है। कान के मंच पर रुचि गुर्जर ने सदियों पुरानी जबरन घूंघट प्रथा के खिलाफ एक साहसी और प्रतीकात्मक संदेश दिया। कान्स में रुचि गुर्जर ने कहा, मैंने घूंघट चुप रहने के लिए नहीं पहना, मैंने इसे विरोध के रूप में पहना है। महिला का सम्मान उसकी बराबरी, आत्मविश्वास और आजादी से होना चाहिए, उसकी पहचान छिपाने से नहीं। अगर मेरी ये वॉक किसी एक महिला के लिए भी बातचीत की शुरुआत बनती है तो ये फैशन से कहीं बड़ा उद्देश्य है। रुचि गुर्जर की इस पहल की तुलना उन अंतर्राष्ट्रीय सितारों से भी की जा रही है, जिन्होंने बड़े मंचों का इस्तेमाल सामाजिक मुद्दों को उठाने के लिए किया। फिर चाहे वो केट ब्लैंकेट हो, जिन्होंने शरणार्थियों और पर्यावरण के मुद्दे पर अपनी आवाज उठाई, या फिर एमा वॉटसन, जिन्होंने जेंडर इक्वालिटी और एथिकल फैशन को समर्थन दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: रोम में पीएम मोदी और मेदोनी लगाया पौधा, मेदोनी को दिया भारत आने का न्योता। सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा पीएम मोदी और मेदोनी का टॉफी वाले गिफ्ट का वीडियो, अब तक 12 करोड़ पार व्यूज। पीएम मोदी के नाम एक और सर्वोच्च सम्मान, रोम में कृषि संगठन ने किया सम्मानित। संयुक्त राष्ट्र की एफएओ ने एग्रीकोला मेडल से नवाजा। अयोध्या राम मंदिर में त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू, एआई कैमरों से हो रही निगरानी, नई सुरक्षा दीवार और वॉच टावर का भी निर्माण। चित्तौड़गढ़ के सावलिया सेठ को भक्त की अनोखी भेंट, भगवान को अर्पित किया 197 ग्राम चांदी से बना हार्ट, सफल बाईपास ऑपरेशन के लिए मांगी थी मन्नत। देवभूमि उत्तराखंड में धूमधाम से जारी चार धाम यात्रा, बद्रीनाथ में 4.5 लाख से अधिक भक्तों ने किए दर्शन, केदारनाथ धाम पहुंचे करीब 7.25 लाख श्रद्धालु।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
3: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे रत्न की जिसका संबंध सीधे तौर पर आपकी जिंदगी की खुशियों से है, मन की शांति से है और वो जुड़ा है आपकी माँ की खुशियों से। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाशक्तिशाली रत्न मोती की। मोती को क्यों इतना महत्वपूर्ण माना जाता है, मोती कैसे आपकी जिंदगी खुशहाल बना सकता है, हमारी आज की खास पेशकश में जानेंगे क्यों ज्योतिष का महत्वपूर्ण रत्न है मोती। तो चलिए करते हैं शुरुआत।

0: मोती करें धारण तो होगा चंद्रमा की बाधाओं का निवारण। मोती पहनने से बरते सावधानी, नहीं तो हो सकती है हानि। मोती का शुभ प्रभाव आपको बना सकता है धनवान। तनाव डिप्रेशन होगा दूर, चेहरे पर आएगी मुस्कान। ज्योतिष शास्त्र में मोती को चंद्रमा का प्रमुख रत्न माना गया है। माना जाता है कि मोती मन की शांति, स्थिरता और भावनाओं को संतुलित करने के लिए धारण किया जाता है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत ना हो तो कोई भी ग्रह अपना पूरा शुभ फल नहीं दे पाता। इसीलिए जीवन में किसी भी तरह के सुख के लिए कुंडली के चंद्रमा का शुभ फलदायी होना जरूरी है। इसलिए आज हम आपको मोती रत्न के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे धारण करके आप जीवन की तमाम समस्याओं से जल्दी छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं मोती धारण करने से किस तरह से मजबूत कर सकते हैं कुंडली का चंद्रमा। खास है मोती रत्न। मोती एक जैविक संरचना है जो मुख्य रूप से चंद्रमा का रत्न है। चंद्रमा की तरह उसका रत्न भी शांत, सुंदर और शीतल है। मोती का प्रभाव सीधा मन और शरीर के रसायनों पर पड़ता है। मोती का प्रभाव कभी तेज नहीं होता, वह धीरे धीरे और हल्का सा डालता है। इसलिए लोगों को लगता है कि मोती कभी नुकसान नहीं कर सकता। कभी कभी विशेष औषधि के रूप में भी इसका प्रयोग होता है।
1: मोती जो है चंद्रमा का रत्न है। अगर व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा मजबूत है तो आप मोती धारण कर सकते हैं। मोती धारण करने के जो फायदे हैं, आपको माता से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, माता का प्रेम मिलेगा, और चंद्रमा मन का कारक ग्रह है तो आपकी मानसिक स्थिति काफ़ी अच्छी होगी, और आपका डिसीजन लेने में, जो हम मन से चीज़ें अपने लाइफ में करते हैं, आपका डिसीजन सही होगा, डिसीजन अच्छे लेंगे आप, और भूमि भवन वाहन का भी आपको लाभ होगा।
0: ज्योतिष के जानकारों की माने तो जिन लोगों को जल्दी गुस्सा आता है उन्हें मोती पहनने से विशेष लाभ मिलता है, क्योंकि मोती का प्रभाव आपके मन और मस्तिष्क पर असर डालता है। तो आइए जानते हैं कि मोती पहनने से क्या क्या लाभ हो सकते हैं। मोती धारण करने के लाभ। मोती मन को शांत करता है और तनाव को कम कर देता है। डर और वहम दूर करके अच्छी नींद देता है मोती। मोती पहनने से शरीर के हार्मोन्स संतुलित रहते हैं। कभी कभी आर्थिक पक्ष को भी बहुत अच्छा कर देता है मोती। ज्योतिष के जानकारों की माने तो मोती एक ऐसा रत्न है, इसे सही तरीके से पहनने पर इंसान की बुद्धि स्थिर होती है। ऐसा इंसान अपनी मेहनत और लगन से मान सम्मान और धन कमाता है। तो चलिए अब आपको बताते हैं मोती धारण करने का सबसे सटीक तरीका क्या है।
1: मोती धारण करने का जो नियम है, अगर आपको मोती पहनना है तो कब सोमवार का दिन होना चाहिए, और मोती को दूध से स्नान कराने के बाद, गंगा जल से स्नान कराने के बाद अपने दाएं हाथ में ले लीजिए उसको, और ओम सोम सोमाय नमः 27 बार बोल के ओम नमः शिवाय का नाम लेके आप मोती को धारण कर लीजिए, और मोती आपके लिटिल फिंगर में, जो कनिष्ठा उंगली होती है, उसमें धारण करना होता है।
0: मोती धारण करने के नियम। मोती को चांदी की अंगूठी में पहनना चाहिए। मोती को कनिष्ठा अंगुली में शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को पहने। मोती को पूर्णिमा को भी धारण कर सकते हैं। मोती धारण करने से पहले इसे गंगा जल से धोएं, फिर मोती को शिवजी को अर्पित करें। मोती के साथ पीला पुखराज और मूंगा ही पहन सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि मोती हमेशा आपको फायदा ही पहुंचाए, इसलिए मोती पहनने से पहले विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। तो चलिए, अगर मोती आपके जीवन में अनुकूल प्रभाव ना डाल रहा हो तब आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं।
1: अगर हम ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से इसके बारे में बताना चाहें तो बहुत से ज्योतिषी क्या करते हैं कि चंद्रमा का निगेटिव होता है कुंडली में, चंद्रमा पाप ग्रह से दृष्टिगत होता है, दृष्टिगत से युति होता है, या फिर 6, 8, 12 भाव में चंद्रमा होता है, तो ज्योतिषी लोग क्या करते हैं, उसको चंद्रमा का रत्न पहना देते हैं। लेकिन अगर कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है, निगेटिव है, अगर उसको हम पहनाएंगे तो उसकी निगेटिविटी बढ़ जाएगी, जिससे इसकी वजह से चंद्रमा मन का कारक ग्रह, व्यक्ति मेंटली बहुत परेशान होने लगेगा, उसको बहुत सारी मेंटली समस्याएं आने लगेंगी। और जिसका कुंडली में चंद्रमा अच्छा है, चंद्रमा की स्थिति अच्छी है, चंद्रमा शुभ ग्रह के साथ युति हुआ है, केंद्र में धर्म त्रिकोण में है, कर्क लग्न का कुंडली जिसका है, और चंद्रमा की शुभ स्थिति हो, चंद्रमा को मोती धारण करवाएंगे तो उसको उसका बेनिफिट प्रॉपर तरीके से मिलेगा।
0: मोती पहनने के नुकसान। मोती अनुकूल ना हो तो मोती पहनने में सावधानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि मोती मानसिक स्थिति को धीरे धीरे प्रभावित करता है। अगर अनुकूल ना हो तो मोती गंभीर अवसाद और तनाव की समस्या दे सकता है। घबराहट, बेचैनी और चिड़चिड़ापन भी बढ़ा सकता है मोती। इसके कारण हार्मोन्स का संतुलन बिगड़ सकता है। कहते हैं मोती और चांदी दोनों ही चंद्रमा से संबंध रखते हैं, इसलिए मोती को चांदी में ही धारण करना शुभ होता है। तो आप भी अपनी कुंडली की स्थिति के अनुसार ही मोती पहनिए, ताकि आप भीतर से शांत, शालीन और सहज महसूस कर पाए, जिससे आपका जीवन चंद्रमा के समान शांत, शीतल और सुंदर हो जाए। आगे हम आपको बताएंगे कि किस राशि वालों को मोती धारण करना चाहिए और किन राशि वालों को मोती पहनने से बचना चाहिए। तब तक आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। ज्योतिष में रत्नों के प्रभाव को बहुत शक्तिशाली माना जाता है, तभी ज्यादातर ज्योतिषी रत्नों के प्रयोग पर जोर देते हैं। ऐसे में कभी कभी गलत रत्न आपकी जिंदगी को तबाह भी कर सकते हैं। मोती पहनने के लाभ क्या है ये भी आपको जानना चाहिए, पर मोती किन्हें पहनना चाहिए और किन्हें नहीं ये भी जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए जानते हैं आपके लिए कितना खास है और जरूरी है मोती रत्न।

0: मोदी पहुंचा सकता है आपको नुकसान। मोती ना हो अनुकूल तो करता है परेशान। ज्योतिष शास्त्र में दैनिक जीवन की समस्याओं को दूर करने के कई प्रयोग किए जाते हैं और उन्हीं में से खास है रत्नों का प्रयोग। और ज्योतिषी मानते हैं कि रत्नों का प्रयोग सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है क्योंकि ये सीधे सीधे आपके शरीर और जीवन को प्रभावित करते हैं।
1: चंद्रमा को दशा का भी कारक ग्रह कहा गया है। अगर किसी की खराब ग्रह की दशा चल रही कुंडली में, अगर व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान है, अगर वो मोती धारण करता है तो उसके बुरे ग्रह की दशा का भी फल पॉजिटिव होने लगता है। चंद्रमा का बहुत बड़ा रहस्य है। और अगर माता जी के स्वास्थ्य में दिक्कत आ रहा है, चंद्रमा अगर आपका मजबूत होगा तो आपके माता जी के स्वास्थ्य में भी अच्छा लाभ पाया जाएगा, उनका स्वास्थ्य ठीक होगा। और चंद्रमा को अच्छा होने पे ही पहनना है तो आपके जो डिसीजन होंगे वो अच्छे होने लगेंगे।
0: ज्योतिष के जानकारों की माने तो हर लग्न के लोगों के लिए शुभ नहीं होता मोती। ये जान लीजिए कि मोती रत्न अलग अलग लग्नों और तत्वों के मुताबिक पहनना शुभ होता है, इसीलिए बिना कुंडली दिखाए या बिना सलाह लिए मोती नहीं पहनना चाहिए। तो देखिए किन लोगों के लिए मोती पहनना शुभ फलदायी होगा और किन्हें मोती से दूर रहना चाहिए। मोती कौन धारण कर सकता है, लग्न और तत्व के अनुसार ही मोती पहनना शुभ होता है। मेष, कर्क, वृश्चिक और मीन लग्न के लिए मोती धारण करना उत्तम है। सिंह, तुला और धनु लग्न में विशेष दशाओं में मोती धारण कर सकते हैं। वृष, मिथुन, कन्या, मकर और कुंभ लग्न के लिए मोती धारण करने से बचना चाहिए। यदि कुंडली में चंद्रमा राहु या केतु के साथ हो, विशेषज्ञ की सलाह के बिना इसे धारण नहीं करना चाहिए। बहुत ज्यादा भावुक लोगों को मोती नहीं पहनना चाहिए। ज्योतिष के जानकार ये दावा करते हैं कि मोती को पहनने से पहले अपनी कुंडली में ये जरूर पता कर लें कि आप किस लग्न से ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप मोती धारण कर लें और वो आपको नुकसान पहुंचाने लगे। एक बात और ध्यान देने वाली है कि आप मोती ज्योतिषों के बताए अनुसार ही धारण करें। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि शिव की जटाओं में चंद्रमा का वास होता है, इसलिए माना जाता है कि मोतियों की माला को धारण करते समय चंद्रदेव के मंत्रों को 108 बार उसका जप कर लें। ऐसा माना जाता है कि मंत्रों का जप करके माला पहनने से मोती का प्रभाव हमेशा सकारात्मक फल देने वाला होता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि किन मंत्रों के जाप के साथ आपको मोतियों की माला धारण करनी चाहिए। चंद्रदेव का शक्तिशाली बीज मंत्र ओम श्राम श्रीम स्रो सह चंद्रमस्य नमः, ओम सोम सोमाय नमः, ओम नमः शिवाय। इसके अलावा भी मोती धारण करने वाले साधक को कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जानकार बताते हैं कि मोती का रखें खास ध्यान। मोती टूट गया हो या उसकी चमक खत्म हो गई हो तो ऐसे में मोती को बदल लें। माना जाता है कि खंडित मोती पहनने से नकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है, जिससे कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मोती को साफ करने के लिए बेकिंग सोडा या गर्म पानी का प्रयोग ना करें। मोती बहुत नर्म होता है, इसलिए इसे किसी अन्य रत्न के साथ ना पहने, इससे मोती पर खरोच आ सकती है। तो आप भी चंद्रमा का ये रत्न पहनने से पहले किसी जानकार की सलाह लेना ना भूलें, क्योंकि ये भूल आपको बहुत महंगी पड़ सकती है। और लाभकारी रत्न मोती कर सकता है नुकसान, तो चाहते हैं अगर मोती से आप लाभ तो कीजिए थोड़े प्रयास और नियम अनुसार पहनिए अपना लकी स्टोन, जिससे होगा आपका कल्याण। ज्योतिष शास्त्र में हर ग्रह के लिए खास रत्न का जिक्र किया गया है जो कि व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता है। उन्हीं रत्नों में से एक है रत्न पन्ना। ज्योतिष का विज्ञान कहता है कि कोई भी रत्न उसके ग्रह नक्षत्र और राशि के अनुसार ही पहनने चाहिए, नहीं तो इसके नकारात्मक प्रभाव भी सामने आ सकते हैं। चलिए जानते हैं कि बुध के रत्न की महिमा क्या है।

0: एक हरा रत्न जिसे धारण करने से मीठी होगी जुबान। व्यक्तित्व में आएगा निखार, समाज में बढ़ेगा सम्मान। जी हाँ, पन्ना वो बेमिसाल रत्न है जो कुंडली के बुध की शुद्धि कर सकता है। ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि बुध अगर मजबूत हो तो इंसान को वाणी, बुद्धि और व्यक्तित्व से प्रभावशाली बनाता है। मजबूत बुध आपकी कई समस्याओं का समाधान कर सकता है। मजबूत बुध आपको तीव्र बुद्धि, अच्छी त्वचा, सौंदर्य और एकाग्रता का वरदान दे सकता है। लेकिन अगर कुंडली में बुध कमजोर हो तो क्या मुश्किलें आती हैं? आइए जानते हैं। कमजोर बुध के नुकसान। व्यक्ति को त्वचा की समस्या होती है, चेहरे पर जल्दी झुर्रियां पड़ने लगती हैं। व्यक्ति तुरंत सर्दी, जुकाम, एलर्जी की चपेट में आ जाता है। चीजों को समझने में काफी समय लगता है। व्यक्ति बार बार चीजें भूलने लगता है। धन को लेकर उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। धोखा, छल या फरेब व्यक्ति का स्वभाव बन जाता है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो कुंडली के बुध को मजबूत करने का सबसे उत्तम उपाय है बुध का रत्न पन्ना धारण करना। रत्न शास्त्र में पन्ना को एक बेशकीमती और बहुमूल्य रत्न माना गया है। बुध का रत्न पन्ना बुद्धि बढ़ाने वाला माना जाता है और इस रत्न को धारण करने वाला सौभाग्यशाली होता है। तो चलिए जानते हैं कि बुध के ग्रह पन्ना में कौन कौन से गुण छिपे हुए हैं। पन्ना की विशेषताएं। पन्ना नवरत्नों में एक असरदार और कोमल प्रभाव का रत्न है। वह बेरूज वर्ग का रत्न है और एल्यूमिनियम और बेरिलियम का सिलिकेट है। कुछ मात्रा में इसमें ऑक्सीजन और जल पाया जाता है। पन्ना कभी भी मिले यह षटकोणीय ही होता है। सामान्यतः पन्ना बिना जाल के नहीं हो सकता। बिना दोष के पन्ना मिल पाना काफी कठिन होता है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो रत्नों में ग्रहों की ऊर्जा आकर्षित करने की अद्भुत क्षमता होती है। अगर आपकी कुंडली का कमजोर बुध आपकी समस्याएं बढ़ा रहा है तो बुध का ये दिव्य प्रभाव वाला रत्न आपकी तमाम परेशानियां दूर कर सकता है। पन्ना को हीलिंग स्टोन भी माना जाता है। कहते हैं कि पन्ना को धारण करने वाले व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कर पाता है। पन्ना पहनने से नौकरी और व्यापार में भी उन्नति होती है। साथ ही पन्ना आर्थिक संकट भी दूर करने में कारगर है। लाभकारी भी है पन्ना। पन्ना बुद्धि को प्रखर और एकाग्र कर देता है। यह मन की चिंताओं को दूर करता है। इसको धारण करने से वाणी की शक्ति बढ़ जाती है। आमतौर पर कारोबार और आर्थिक स्थिति में लाभ पहुंचाता है। इससे व्यक्तित्व चमकदार और प्रभावशाली हो जाता है। यह त्वचा के रोगों में भी खूब लाभ देता है। माना जाता है कि पन्ना धारण करने से पहले ज्योतिष के जानकारों की सलाह जरूर लेनी चाहिए। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार बुध का रत्न पन्ना तभी धारण करना चाहिए जब कुंडली में बुध शुभ भाव का स्वामी हो, क्योंकि बुध की अशुभ स्थिति में पन्ना धारण करना जीवन में अशुभ प्रभाव बढ़ाने लगता है। तो आइए जानते हैं कि पन्ना रत्न कब और कैसे नुकसान पहुंचाता है। पन्ना धारण करने के नुकसान। ये बुद्धि को भ्रमित और मन को परेशान कर सकता है। इसके कारण आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। पन्ना त्वचा में समस्याएं दे सकता है और पन्ना आत्मविश्वास को गड़बड़ भी कर सकता है। ज्योतिष के जानकारों के मुताबिक हर राशि और लग्न के लोगों के लिए शुभ नहीं है बुध का ये रत्न। तो चलिए अब जान लेते हैं कि किन राशि वालों को पन्ना धारण करना चाहिए और किन्हें पन्ना से दूर रहना चाहिए। लाभकारी भी है और कष्टकारी भी है। वृष, मिथुन, कन्या, तुला, मकर, कुंभ लग्न वालों के लिए पन्ना लाभकारी होता है। सिंह, धनु और मीन लग्न में विशेष दशाओं में पन्ना पहन सकते हैं। मेष, कर्क, वृश्चिक लग्न में पन्ना भूलकर भी धारण न करें। जो लोग वाणी संबंधी कार्य में हैं उन्हें पन्ना धारण करना चाहिए। आर्थिक क्षेत्र के लोगों के लिए भी पन्ना धारण करना अनुकूल होगा। पन्ना शुभ परिणाम देने पर न सिर्फ दौलत और शोहरत दिलवाता है बल्कि आपको समाज में सम्मान भी हासिल होता है। तो आप भी पन्ना को सही तरीके से धारण करें जिससे न सिर्फ आपका बुध मजबूत होगा बल्कि आपकी सारी बाधाओं का भी अंत होगा। प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़।
0: वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का, जहां हम आपको दिखाएंगे तमाम ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं, इन्हें खूब पसंद किया जा रहा है।
3: नमस्कार, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
4: कृष्णा जी की पेंटिंग थी यहाँ पे, गणेशा,
5: ये प्यारी सी घंटी,
6: चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर, हाड़ कपा देने वाली ठंड और तापमान -40 डिग्री। लेकिन इस कड़ाके की सर्दी के बीच अगर आपको हरे कृष्णा और शिव आरती की गूंज सुनाई दे तो शायद आपको अपने कानों पर यकीन ना हो, लेकिन यह हकीकत है। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसे देखकर हर कोई हैरान है। यह नज़ारा भारत के किसी बर्फीले पहाड़ी इलाके का नहीं बल्कि रूस के सुदूर और बेहद ठंडे क्षेत्र साइबेरिया का है। इंटरनेट पर इस जगह को रूस का हिंदू गांव और मिनी इंडिया कहा जा रहा है। इस अनोखे गांव का नाम ओकुनेवो है जो रूस के ओमस्क क्षेत्र में स्थित है। यह इलाका पश्चिमी साइबेरिया के अंतर्गत आता है और अपनी भीषण ठंड के लिए जाना जाता है। वीडियो में देखा जा सकता है कि चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, लेकिन गड़गड़ाती ठंड में भी स्थानीय और सैलानी पूरी श्रद्धा के साथ भक्ति में लीन है। इस वीडियो क्लिप को देखने के बाद हर भारतीय यूजर गर्व महसूस कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि साइबेरिया के इस छोटे से गांव में एक कृष्ण मंदिर है जो इस्कॉन से जुड़ा है। इसके साथ ही यहां भगवान शिव की भी पूजा की जाती है। -40 डिग्री टेम्परेचर के बावजूद लोग यहां सुबह शाम इकट्ठा होते हैं और पूजा करते हैं।
7: ग्राम पुजारी इस सेवा, ओम नमः शिवाय।
6: एक छोटे बच्चे का वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें वो अपने टीचर से शिकायत करते हुए नजर आ रहा है।
8: सर, एक बात बताओ, जब हम बाल कटवा के नहाएंगे तब हमें मारता हूँ, अब जब लड़की इनके बाल इतने बड़े होते हैं तब तुम ना मारता हूँ।
6: वीडियो में नजर आता है कि बच्चा अपनी टीचर से शिकायत करता है। वो बोलता है, सर एक बात बताओ, जब हम बाल कटवा कर नहीं आते हैं तो आप हमें मारते हो, और जब लड़कियों के बाल इतने बड़े हो गए हैं तो नहीं मारते हो। अब यह शिकायत सुनकर टीचर कहता है, वो तो लड़कियां हैं, मगर तुरंत बाद बच्चा बोलता है कि लड़की से हम क्या कम हैं? अब यह सुनते ही टीचर भी हंसने लगता है।
8: सर, एक बात बताओ, जब हम बाल कटवा के नहाएंगे तब तुम हमें मारता हूँ, अब जब लड़की इनके बाल इतने बड़े होते हैं तब तुम ना मारता हूँ।
9: ये तो लड़की है,
8: लड़की से तो हम कम आए।
6: यूजर्स इस वीडियो पर जमकर अपना प्यार लुटा रहे हैं, बच्चे के सवाल जवाब पर जमकर कमेंट्स कर रहे हैं।
8: अब जब लड़की इनके बाल इतने बड़े होते हैं तब तुम ना मारता
9: हूँ। ये तो लड़की है,
8: लड़की से तो हम कम आए।
6: सोशल मीडिया पर यह दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक माँ की अथक मेहनत और ममता को देखकर हर कोई हैरान और भावुक हो रहा है। वीडियो में एक महिला अपने छोटे बच्चे को पीठ पर लपेटे हुए, सिर पर सब्जियों की भारी भारी टोकरियां संतुलित करते हुए ट्रक पर सामान लाती दिख रही है। बिना थके बिना रुके वह लगातार काम करती जा रही है। बताया जा रहा है कि महिला रोजाना बाजार आती है, सुबह से शाम तक वह न सिर्फ अपना काम संभालती है बल्कि अपने छोटे बच्चे की देखभाल भी करती है। बच्चा पीठ पर बंधा रहता है और माँ का काम चलता रहता है। वीडियो में दिख रहा है कि भारी टोकरियां सिर पर रखकर वह ट्रक की ऊंचाई तक चढ़ रही है। उसके चेहरे पर थकान तो है लेकिन आत्मविश्वास और ममता भी साफ दिख रही है। सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसी वीडियो सामने आते हैं जो दिल को छू जाते हैं। हाल ही में देश के जाने माने बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा ने अपने एक्स हैंडल से एक ऐसा ही बेहद प्यारा वीडियो शेयर किया है जिसने इंटरनेट की पब्लिक का दिल जीत लिया है। वायरल क्लिप में एक दादा पोते की जोड़ी पारंपरिक लोक नृत्य पर धड़कती नजर आ रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि पारंपरिक सफेद केडीयू और धोती पहने एक बुजुर्ग व्यक्ति पूरे जोश के साथ थिरक रहे हैं। उनके साथ उनका छोटा पोता भी खड़ा है, जो कदम से कदम मिलाकर अपने दादाजी को कड़ी टक्कर दे रहा है। दोनों की जुगलबंदी और एनर्जी देखने लायक है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र की एक पारंपरिक और सांस्कृतिक लोक कला डायरा का है।

0: सोशल मीडिया पर इन दिनों इस बच्ची के डांस का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। आलम यह है कि वीडियो को महज कुछ ही दिनों में लाखों व्यूज मिल चुके हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि पीले कलर के सूट और सलवार में बच्ची दिल खोलकर डांस कर रही है। बच्ची के शानदार परफॉर्मेंस पर टीचर के एक्सप्रेशन भी देखने लायक रहे। वो खुद भी बच्ची के धांसू स्टेप और एक्सप्रेशन देख दंग नजर आए। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया है। आमतौर पर जिम में भारी वजन उठाते हुए युवा ही नजर आते हैं, लेकिन इस बार एक दादी ने ऐसा कारनामा कर दिखाया कि लोगों के होश उड़ गए। करीब 60 किलो वजन की इस बुजुर्ग महिला ने जिम में 110 किलो वजन उठाकर सभी को चौंका दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि दादी पूरी तैयारी के साथ जिम में मौजूद हैं और बिना किसी झिझक के भारी वजन उठाने के लिए तैयार हो जाती हैं। आसपास खड़े लोग भी पहले तो उन्हें देखकर थोड़ा हैरान होते हैं, लेकिन जैसे ही वे आत्मविश्वास के साथ 110 किलो वजन उठाती हैं, वहां मौजूद सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। उनकी ताकत, संतुलन और फोकस देखकर यह साफ समझ आता है कि उम्र सिर्फ एक संख्या है, अगर इरादा मजबूत हो तो कुछ भी संभव है।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
2: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: Tune in is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads.
5: Thank God I get to wake
4: and everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: रोम में पीएम मोदी और मेलोनी लगाया पौधा, मेलोनी को दिया भारत आने का न्योता। सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा पीएम मोदी और मेलोनी का टॉफी वाले गिफ्ट का वीडियो, अब तक 12 करोड़ पार व्यूज। पीएम मोदी के नाम एक और सर्वोच्च सम्मान, रोम में कृषि संगठन ने किया सम्मानित, संयुक्त राष्ट्र की एफएओ ने एग्रीकोला मेडल से नवाजा। अयोध्या राम मंदिर में त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू, एआई कैमरों से हो रही निगरानी, नई सुरक्षा दीवार और वॉच टावर का भी निर्माण। चित्तौड़गढ़ के सावलिया सेठ को भक्त की अनोखी भेंट, भगवान को अर्पित किया 197 ग्राम चांदी से बना हार्ट, सफल बाईपास ऑपरेशन के लिए मांगी थी मन्नत। देवभूमि उत्तराखंड में धूमधाम से जारी चार धाम यात्रा, बद्रीनाथ में 4.5 लाख से अधिक भक्तों ने किए दर्शन, केदारनाथ धाम पहुंचे करीब 7.25 लाख श्रद्धालु।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिलदेव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात होगी देश में चल रहे मंगल उत्सव की। इस समय देश के अलग अलग छोर, अलग अलग किनारों पर कई उत्सव, कई लोक पर्व मनाए जा रहे हैं। भारत की संस्कृति में यूं भी परंपराओं के धागों से जाने कितने ही तीज त्योहार और उत्सव बुने गए हैं। कुछ उत्सवों की कहानी पौराणिक आधार से निकली तो कुछ उत्सव हमारे देश की समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत की धरोहर हैं। ऐसा ही एक उत्सव यूपी के झांसी में मनाया गया। एक ऐसा उत्सव जो किसी देवी देवता के सम्मान में नहीं मनाया जाता, बल्कि हर साल झांसी ये उत्सव मनाती है उस महान वीरांगना की याद में जिनके साहस और शौर्य ने अंग्रेजों की नींद उड़ा दी थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और राजा गंगाधर राव के विवाह की 184वीं सालगिरह धूमधाम से मनाई गई। झांसी के लिए ये दिन इसीलिए भी खास है क्योंकि इसी दिन वाराणसी की मणिकर्णिका झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई बनकर इस नगर में आई थी।

0: भक्ति वैभव के साथ सगाई झांसी में। ब्याह हुआ रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में। सुभट बुंदेलों की विरुदावली सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। जब दुल्हन बनकर झांसी आई झांसी वाली रानी थी। आज से 184 साल पहले घटी इस घटना के हर दृश्य को कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने कोई 96 साल पहले अपनी कलम से जीवंत कर दिया था। झांसी उस दिन को आज फिर से जी रही है। वो शुभ घड़ी जब झांसी की धरती पर पांव पड़े थे उस वीरांगना के जो दुनिया में झांसी की पहचान का हस्ताक्षर बन गई। साल 1842 में यही वो दिन था जब रानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी नरेश राजा गंगाधर राव के साथ धूमधाम से संपन्न हुआ था और काशी की लाडली मनु अपनी बरछी ढाल कृपाण कटारी सखियों समेत झांसी की महारानी बनकर इस नगर में पधारी थी। मंगलवार को झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और महाराजा गंगाधर राव के विवाह की 184वीं वर्षगांठ बेहद धूमधाम से मनाई गई। एनसीसी बैंड की धुन ढोल नगाड़ों की गूंज पारंपरिक मराठी वेशभूषा में सजे बच्चे ऐतिहासिक पात्रों की झलक और देशभक्ति से सराबोर माहौल ने पूरे शहर को उत्सव के रंग में रंग दिया। कार्यक्रम की शुरुआत हुई शहर के प्रसिद्ध लक्ष्मी व्यायाम मंदिर से, जहां से महाराज गंगाधर राव की प्रतीकात्मक शाही बारात और शोभा यात्रा सजकर निकली।
1: ये आज झांसी नरेश महाराज गंगाधर राव और महारानी लक्ष्मीबाई के विवाह की 184वीं वर्षगांठ है। ये हम लोग महाराज गणेश मंदिर कमेटी संपूर्ण झांसी के साथ मना रही है। आज ये शोभा यात्रा जो बारात की शोभा यात्रा है, ये लक्ष्मीबाई मंदिर से प्रारंभ होकर कोतवाली मानिक चौक सराफा बाजार नरिया बाजार होते हुए गणेश मंदिर पर संपन्न होगी, जहाँ पर प्रतीकात्मक रूप से राजा रानी का विवाह होगा।
0: यात्रा के दौरान जगह जगह लोगों ने फूलों की बारिश कर बारात का स्वागत किया। सारा शहर झांसी की रानी अमर रहे के जयकारों से गूंज उठा। शोभा यात्रा में एनसीसी कैडेट्स, घोष दल, स्कूली छात्र छात्राएं, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और हजारों शहरवासी शामिल हुए। झांसी नरेश की बारात की भव्यता को कई गुना बढ़ा दिया इन छोटी छोटी बच्चियों ने, जो महारानी लक्ष्मीबाई का रूप धर शोभा यात्रा में पहुंची थी।
1: सिपाही के रूप में एनसीसी की छात्राएं हैं, स्कूल विद्यालयों के घोष है, स्कूल की छोटी छोटी छात्राएं जिस तरह से बारात में सजते हैं दुल्हन वेश में रानी, उस तरह से सजी हुई हैं स्कूल की अध्यापिकाएं और झांसी का जनजन, सभी लोग एकत्रित आप देख रहे हो, ये इस आकर्षण का केंद्र है। और सभी इसमें हमारे राजनीतिक सभी हमारे प्रतिनिधि लोग मौजूद हैं, प्रशासन मौजूद है।
0: और रानी लक्ष्मीबाई ही क्यों, कई बच्चों ने महाराज गंगाधर राव, तात्या टोपे, झलकारी बाई, मोरोपन, सुंदर मुंदर और रानी की दुर्गा महिला सेना के किरदार निभाकर लोगों का मन मोह लिया। झांसी की महिलाएं पारंपरिक मराठी परिधान में नजर आई।
2: आज हम सभी लोग महारानी लक्ष्मीबाई और महाराजा गंगाधर राव की 184वीं शादी की वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं और ये बारात निकल रही है। आप देख ही रहे होंगे कितने जोर शोर के साथ। इसमें हमारे 50 एनसीसी कैडेट्स हैं और इसमें करीब 60 हमारे घोष दल जो होता है वो है, बाकी स्कूल के स्टूडेंट हैं, सभी पूरा स्टाफ है और बहुत ही हम लोग इस फंक्शन को एंजॉय करते हैं हर साल।
3: हर्ष और उल्लास के साथ हम लोग ये अपना पर्व उनकी वर्षगांठ बहुत धूमधाम से मनाते हैं झांसी में।
0: आपको बता दें कि साल 1842 में 19 मई के दिन महाराज गंगाधर राव और मणिकर्णिका का विवाह संपन्न हुआ था। विवाह के बाद ही मणिकर्णिका को लक्ष्मीबाई नाम मिला और आगे चलकर उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष कर भारतीय इतिहास में अमिट स्थान बनाया। उसी गौरवशाली इतिहास को जीवंत रखने के उद्देश्य से हर साल झांसी में ये आयोजन किया जाता है। अब की बार भी शहर के प्रमुख रास्तों से गुजरती हुई बारात ऐतिहासिक गणेश मंदिर पहुंची। गणेश मंदिर पहुंचने पर वैदिक मंत्रोच्चार और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ महाराजा गंगाधर राव और महारानी लक्ष्मीबाई का प्रतीकात्मक विवाह संपन्न करवाया गया। इस दौरान मंदिर परिसर जय भवानी और महारानी लक्ष्मीबाई अमर रहे के नारों से गूंज उठा। झांसी के लोगों के दिलों में महारानी लक्ष्मीबाई साहस, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति का अमिट प्रतीक है। तभी तो झांसी के लिए ये सिर्फ एक उत्सव नहीं बल्कि झांसी के लिए इस उत्सव का एक भावनात्मक महत्व है। ये उत्सव झांसी के गौरवशाली इतिहास को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का एक माध्यम है। झांसी से अजय झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: अब बात रामनगरी अयोध्या की। अयोध्या जल्द ही एक और उत्सव की साक्षी बनने जा रही है और ये उत्सव होगा 26 नवंबर यानी गंगा दशहरा के दिन। गंगा दशहरा के पावन अवसर पर रामनगरी अयोध्या एक बार फिर से भक्ति, आस्था और वैदिक परंपराओं के रंग में रंगने जा रही है। मंदिर परिसर में विशेष पूजा अर्चना, वैदिक मंत्रोच्चार अनुष्ठान और भगवान को विशेष भोग अर्पित किए जाएंगे। इस अवसर पर अयोध्या में सरयू स्नान के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ेगी। मठ मंदिरों में विशेष धार्मिक आयोजन होंगे। तिथि के हिसाब से गंगा दशहरा के दिन ही राम जन्मभूमि मंदिर में स्थापित राम दरबार की प्रथम वर्षगांठ भी है। पिछले वर्ष इसी पावन तिथि पर राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में राम दरबार समेत 6 उपमंदिरों की विधिवत स्थापना की गई थी। इस वर्षगांठ को लेकर भी अयोध्या में तैयारियां तेज हो गई हैं। देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं ताकि भक्त इस ऐतिहासिक और आध्यात्मिक आयोजन का सहजता के साथ हिस्सा बन पाए। रामनगरी अयोध्या में गंगा दशहरा को लेकर भक्तों में भी खासा उत्साह नजर आ रहा है। अब अयोध्या से चलते हैं उत्तराखंड और आपको दिखाते हैं गढ़वाल का वो उत्सव जिसे देखकर आपको ब्रज की होली याद आ जाएगी। चमोली के आदि बद्री धाम में नौठा कोथी लठमार मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में लाठी डंडों के प्रतीकात्मक युद्ध लड़ने की परंपरा होती है। आखिर क्यों मनाया जाता है ये उत्सव और क्या है यहाँ निभाई जाने वाली लठमार परंपरा की पूरी कहानी, चलिए आपको बताते हैं।

0: लाठियां प्रेम में पगी भी हो सकती हैं। लाठियों की मार में ढेर सारा प्यार और मीठी मनुहार भी होती है। ये दुनिया ने जाना जब जब देखी कृष्ण कन्हैया के ब्रज की होरी। लेकिन उसी प्रेम, उसी आस्था और उसी परंपरा का एक रंग दिखता है मथुरा के मैदानों से कोई 600 किलोमीटर दूर उत्तराखंड में चमोली के पहाड़ों पर। वो लाठी जो दुनिया के लिए कभी शक्ति, कभी नियंत्रण, कभी आत्मरक्षा तो कभी सहारे का प्रतीक है, उसका भावार्थ अक्षरशः बदल जाता है देवों की इस भूमि पर और ढल जाता है आस्था के उस सांचे में जो पहचान है देवताओं की भूमि कहलाने वाले इस राज्य की। एक सदियों पुरानी परंपरा का रूप है चमोली में हर साल लगने वाला नौठा कौथीग मेला, जहां भगवान आदि बद्रीनाथ के धाम में बरसों से लठमार युद्ध की ये परंपरा पूरी आस्था और विश्वास के साथ निभाई जा रही है। चमोली का नौठा कौथीग यानी लठमार मेला मुख्य रूप से नई फसल के आगमन का त्योहार है। और इसी त्योहार से जुड़ा है चमोली का ये लठमार युद्ध। बताया जाता है कि पुराने समय में यहाँ के गांवों के बीच इस बात पर लाठियों से असली युद्ध होता था कि सबसे पहले कौन सा गांव भगवान को नया अन्न अर्पित करेगा। जीतने वाले गांव को ये सम्मान और सौभाग्य हासिल होता था। समय के साथ युद्ध प्रतीकात्मक रूप में बदल गया। अब ये युद्ध महज परंपरा निभाने भर के लिए होता है, लेकिन स्थानीय ग्रामीणों के बीच इस युद्ध से जुड़ी शौर्य, प्रतिष्ठा और संघर्ष की भावना आज भी वही है और चमोली के 27 गांव आज भी पूरे उत्साह से इस परंपरा को निभाते हैं।
1: इसमें हमारे 27 गांव ब्राह्मण और ठाकुरों के 27 गांव है इस पूरे इलाके में, मतलब चांदपुर में। उन गांवों के तमाम दर्शक आते हैं मेले में और खेलने के लिए, नाचने के लिए, तो वो सब लोग यहाँ पर आयोजित है। सारे लोग बाजी गाजे के साथ आते हैं और अभी प्रतीकात्मक जो डंडे आपने देखे वो प्रतीकात्मक यहाँ पर आते हैं और केवल वो शो के लिए मेले में आके वो एक सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए वो किया जा रहा है।
0: लठमार युद्ध के लिए पहले खेती के मालगुजार के नेतृत्व में गाजे बाजे, देव डोली और लाठी डंडों के साथ नौठा नृत्य दल आदि बद्री मंदिर पहुंचता है। इसके बाद दोनों दलों के बीच लाठी डंडों का प्रतीकात्मक युद्ध शुरू होता है। युद्ध के बाद ढोल दमाऊ की थाप पर दोनों दल अपने अपने नृत्य का प्रदर्शन करते हैं और फिर अंत में लठमार योद्धा आपस में गले मिलकर एकता का संदेश देते हैं।
2: तीसरी बार आ रही हूँ, पिछले साल भी मैं यहाँ पर आई थी। जो हमारी पुरानी परंपरा है उसको जैसे बचा रहे हैं लोग, उसको दिखाने के लिए कि जो हमारी युवा पीढ़ी है उसको देखें कि पहले जमाने में कैसे हुआ करता था सभी चीजें। तो यहाँ पर खेती गांव से लोग आते हैं, जो अनाज होता है वो चढ़ाने के लिए आते हैं और उसके बाद पहले क्या होता था, जो पिंड वाली गाँव है और खेती गाँव है उन दोनों में लड़ाई होती थी कहते हैं ऐसा। तो उसके बाद जो पिंड वाली है उन्होंने हार मान ली थी तो पूरा जो मंदिर है इस पर पूरा वो कब्जा बोलते जिसको, जो अनाज फर्स्ट यहाँ पर चढ़ाते हैं वो खेती वाले चढ़ाते हैं क्योंकि वो जीत गए थे। तो यही इंटरेस्टिंग होता है यहाँ पर। तो लोग पहले जो वो चीज पहले हुई थी उसको थोड़ा दिखावा करते हैं, परंपरा को बचाने के लिए तो लठी से लड़ाई करते हैं, अभी भी करते हैं पर एक रियल नहीं है वो, एकदम से रियल नहीं है, नॉर्मल है वो, उसमें कोई किसी को चोट नहीं पहुंचाता है।
0: इसके बाद आखिर में भगवान आदि बद्रीनाथ को नए गेहूं और जौ का अन्न अर्पित किया जाता है। नई फसल की खुशी मनाने के लिए स्थानीय महिलाएं चोपुला, चाचरी और झुमेलो जैसे परंपरागत नृत्य करती हैं। हर साल की तरह इस बार भी नौठा कौथीग मेले में हिस्सा लेने बड़ी संख्या में श्रद्धालु आदि बद्री धाम पहुंचे हैं। आपको बता दें, आदि बद्री धाम सप्त बद्री की यात्रा का प्रथम स्थल है। यहाँ भगवान विष्णु के प्राचीन मंदिर हैं, जिन्हें आदि शंकराचार्य से जोड़ा जाता है। बर्फबारी के चलते जब सर्दियों में बद्रीनाथ धाम के कपाट 6 महीने बंद रहते हैं, तब यहाँ विशेष पूजा अर्चना होती है। गुजरते समय के साथ नौठा कौथीग लठमार मेला इस देवस्थल को गढ़वाल की संस्कृति और लोक परंपराओं की जड़ों से जोड़ने का अनुपम माध्यम बन गया है। स्थानीय लोग इसे अपनी सांस्कृतिक पहचान का उत्सव मानते हैं। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: बात एक ऐसे उत्सव और परंपरा की करते हैं जिसे मनाया ही जाता है कुदरत को सहेजने के लिए। कश्मीर के काजीकुंड इलाके के एक ऐसे उत्सव को आपको दिखाते हैं जहां झरनों और नदियों को साफ करने की परंपरा निभाई जाती है। जरा सोचिए, जल और पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से कितना अहम होता है ये उत्सव। खास बात यह है कि लोग अपने स्तर पर खुद ही सालों से इस परंपरा को निभाते आ रहे हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट।

0: कश्मीर की खूबसूरत वादियाँ, बर्फ से ढके ऊंचे पहाड़, कल कल बहती नदियाँ यहाँ आने वालों को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। यहाँ का अनंतनाग जिला भी प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। यहाँ की दिव्य छटाएं पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। यहाँ फूलों की मखमली वादियों से लेकर प्राचीन मीठे पानी के झरनों का एक मनमोहक संगम है। ये तस्वीरें अनंतनाग जिले के काजीकुंड इलाके के पंचतनाग की है, जहाँ लोग बड़ी संख्या में पानी के अंदर नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे ये सभी पानी में कुछ तलाश रहे हों। इस दौरान हाथ में मछली के आने की खुशी लोगों के चेहरे पर साफ देखी जा सकती है। दरअसल पारंपरिक टोकरियों के साथ मौजूद ये सभी लोग सिर्फ मछली पकड़ने के रोमांच को लेकर पानी के अंदर नहीं है, बल्कि उस सालाना परंपरा का हिस्सा है जिसे पंचतनाग उत्सव के रूप में जाना जाता है।
1: इस साल वहाँ पंचतनाग यानी कि स्प्रिंग है उस इलाके का, ऐसा पानी का स्रोत जिसमें कई सारे स्प्रिंग आके मर्ज होते हैं और उस पूरे इलाके बल्कि कई सारे गांव हैं जिनके पीने के पानी की जरूरत से लेके जो इरिगेशन के लिए पानी चाहिए और बाकी जरूरतें भी जो हैं इसी स्प्रिंग से पूरी होती हैं। और हर साल ये गांव जो है सभी बूढ़े बच्चे जवान मिलके एक छुट्टी का दिन सिलेक्ट करते हैं और उस नाग की सफाई करते हैं। हालांकि इसको एक फिशिंग फेस्टिवल की तरीके से मनाया जाता है, लेकिन पीछे जो आइडियोलॉजी है, जो इसके पीछे मकसद है, वो है स्प्रिंग को साफ रखना, उस वाटर बॉडी को साफ रखना।

0: की भी इजाजत दी जाती है। इस आयोजन में पंचत के अलावा कई दूसरे गाँव के लोग भी पूरे उत्साह के साथ शामिल होते हैं, जिनमें से कई गाँव पीने के पानी और सिंचाई के लिए इन झरनों पर निर्भर हैं। ग्रीष्म ऋतु के अंत में जब जल स्तर घट जाता है तो जलीय खरपतवार तेजी से झरने में फैल जाते हैं, जिससे जल प्रवाह बाधित होता है। सामूहिक सफाई का ये प्रयास हाथ से झरने के बहाव को बहाल करता है, जो आसपास के 45 गांवों को पीने और सिंचाई का पानी मुहैया कराता है। साफ है कि ये वो उत्सव है जिसमें मछली पकड़ना नहीं बल्कि झरने को साफ करना अहम मकसद है, ताकि लोगों को पीने और सिंचाई के लिए पानी मिलता रहे। अपने प्राकृतिक संसाधनों की पूरी जिम्मेदारी लेकर पंचत में लोग जिस तरह का उदाहरण पेश कर रहे हैं, उसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात में भी सराहना कर चुके हैं।
1: तारीफ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की थी 2023 में, एक मन की बात प्रोग्राम में उन्होंने कहा था कि किस तरीके से अगर लोग चाहें तो खुद ऐसा एफर्ट कर सकते हैं जिससे प्रकृति को बचाया जा सकता है, अलग अलग तरीके से जो स्वच्छता है उसमें कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, ताकि जो आसपास की जगहें हैं साफ रहे, जो प्रकृति है, माहौल है, साफ रहे। तो पांचत नाग जो है आज एक मिसाल है कि कैसे खुद लोग जो हैं अगर चाहें, अगर एकजुट हो जाएं तो बहुत कुछ हो सकता है, और खासकर जो पोल्यूशन है उसके खिलाफ एक डिसाइसिव लड़ाई हो सकती है।
0: लोगों को उम्मीद है कि सरकार इस दिशा में जरूर कोई ना कोई ठोस कदम उठाएगी, जिससे एक दिन कश्मीर के पर्यटन मानचित्र पर पंचत का नाम शामिल होगा। श्रीनगर से मीर फरीद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: बात आस्था के उस मंगल उत्सव की जो देवभूमि उत्तराखंड में जारी है। पिछले कई दिनों से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा चल रही है। आपके साल हर रोज चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या का नया रिकॉर्ड बनता जा रहा है। पिछले एक महीने में चारधाम यात्रा में अब तक 17.5 लाख से ज्यादा लोग दर्शन कर चुके हैं। ये अभूतपूर्व रिकॉर्ड है। कल यानी 19 मई तक कुल 17,26,393 लोग चारधाम में दर्शन कर चुके हैं। इनमें से केदारनाथ धाम में अब तक 6,94,000 से ज्यादा लोगों ने दर्शन किए, जबकि बद्री विशाल के धाम बद्रीनाथ में अब तक 4,51,000 से ज्यादा लोग दर्शन कर चुके हैं। इसी क्रम में मां यमुना के धाम यमुनोत्री पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 2,92,000 को पार कर चुकी है, जबकि मां गंगा के धाम गंगोत्री में 19 मई तक 2,88,000 से ज्यादा श्रद्धालु हाजिरी लगा चुके हैं। अब देखिए, शिव भक्तों के लिए चारधाम यात्रा में केदारनाथ का बहुत महत्व है। आपको बता दें, केदारनाथ धाम देवभूमि में मौजूद पंच केदार में शामिल है। मान्यता है कि 5 जगहों पर पांडवों को भगवान शिव के अलग अलग अंगों के दर्शन हुए थे। केदारनाथ में पीठ के दर्शन हुए, मध्य महेश्वर में भगवान के मध्य भाग यानी नाभि के। 21 मई को मध्य महेश्वर धाम के कपाट खुलने जा रहे हैं, जिसके लिए धूमधाम से भगवान की डोली अपने शीतकालीन आवास उखीमठ से कल रवाना हुई थी। कल सुबह भगवान मध्य महेश्वर की उत्सव डोली अपने धाम में पहुंच जाएगी।

0: संस्कृति, परंपरा और आस्था का अनूठा संगम। आगे आगे भगवान की डोली, पीछे पीछे भक्तों की डोली। ढोल दमाव की थाप है, रंग है, राग है, आस्था परंपार है। भगवान मध्य महेश्वर अपने धाम चले हैं। अपने धाम यानी मध्य महेश्वर मंदिर। महिलाओं ने भजन गाकर अपने आराध्य को विदाई दी तो वहीं डोली के साथ साथ चल रहे भक्त महादेव का जयकारा लगाते पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ते रहे। ओंकारेश्वर मंदिर में भगवान शीतकालीन प्रवास पर थे। प्रवास पूरा होते ही मध्य महेश्वर की चल उत्सव विग्रह डोली अपने धाम के लिए रवाना हो गई। मंगलवार को खिमट के ओंकारेश्वर मंदिर से रवाना हुई डोली आज गोंडार गांव पहुंचेगी और 21 मई को मध्य महेश्वर मंदिर। डोली के धाम पहुंचने पर वैदिक मंत्रोच्चार और पूरे विधि विधान के साथ मंदिर के कपाट खोल दिए जाएंगे और अगले 6 महीने तक भगवान अपने भक्तों को यहीं दर्शन देंगे।
1: रांसी गांव से रुद्रप्रयाग जनपद के सीमांत गांव गोंडार में भगवान मध्यमेश्वर की डोली द्वितीय रात्रि प्रवास करेगी। 21 मई सुबह डोली गोंडार गांव से धाम के लिए प्रस्थान करेगी और धाम पहुंचने पर लगभग 11 बजे द्वितीय केदार भगवान

0: मध्यस्थ के कपाट आगामी 6 माह के लिए खुलेंगे। आपको बता दें कि भगवान मध्यमेश्वर की मध्यमेश्वर धाम में मध्य भाग की पूजा होती है और इसके अलावा केदार घाटी में भगवान मध्यमेश्वर को न्याय के देवता के रूप में भी पूजा जाता है।
1: उत्तराखंड के पंच केदार में भगवान शिव के 5 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। केदारनाथ में बैल रूपी शिव के कुबड़ की, तुंगनाथ में भुजाओं की, रुद्रनाथ में मस्तक की, मध्य महेश्वर में नाभि की और कल्पेश्वर में जटाओं की पूजा होती है। पंच केदार में मध्य महेश्वर को दूसरे केदार के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि इस मंदिर को महाभारत काल में पांडवों द्वारा बनवाया गया था। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सिंहवाल, गुड न्यूज टुडे।

0: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive Soul Groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
1: रात 8 बजे, Good News Today पर.
2: Good News Today इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से
3: कान फिल्म फेस्टिवल के रेड कारपेट पर हर साल फैशन के नए रंग देखने को मिलते हैं, लेकिन इस बार जयपुर की बेटी और एक्ट्रेस रुचि गुर्जर ने अपने अंदाज से सिर्फ फैशन नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति को दुनिया के सामने रखा। रुचि जब पारंपरिक राजस्थानी घूंघट ओढ़कर रेड कारपेट पहुंची तो हर किसी की निगाहें उन पर टिक गई।
4: कांस के रेड कार्पेट पर घूंघट में रुचि गुर्जर की एंट्री ने फैशन के इस मंच को महिलाओं की आजादी, पहचान और सामाजिक बदलाव की आवाज बना दिया। जिस बेबाकी और बेफिक्री से रुचि ने वहां मौजूद मीडिया के सामने पोज दिए और रेड कार्पेट पर वॉक किया, उसकी धमक दूर दूर तक सुनाई दी। राजस्थान की समृद्ध विरासत और संस्कृति से प्रेरित रुचि का ये खूबसूरत गुलाबी घूंघट लुक किसी फैशन स्टेटमेंट के लिए पहना गया महज एक आउटफिट नहीं था, बल्कि महिलाओं के हक और सम्मान में उठी एक आवाज थी। ये घूंघट उन सामाजिक बंधनों पर एक सवाल था, जिसकी वजह से आज भी कई महिलाओं को अपनी पहचान छिपा कर जीना पड़ता है। कान के मंच पर रुचि गुर्जर ने सदियों पुरानी जबरन घूंघट प्रथा के खिलाफ एक साहसी और प्रतीकात्मक संदेश दिया। कान्स में रुचि गुर्जर ने कहा, मैंने घूंघट चुप रहने के लिए नहीं पहना, मैंने इसे विरोध के रूप में पहना है। महिला का सम्मान उसकी बराबरी, आत्मविश्वास और आजादी से होना चाहिए, उसकी पहचान छिपाने से नहीं। अगर मेरी ये वॉक किसी एक महिला के लिए भी बातचीत की शुरुआत बनती है तो ये फैशन से कहीं बड़ा उद्देश्य है। रुचि गुर्जर की इस पहल की तुलना उन अंतर्राष्ट्रीय सितारों से भी की जा रही है जिन्होंने बड़े मंचों का इस्तेमाल सामाजिक मुद्दों को उठाने के लिए किया, फिर चाहे वो केट ब्लैंकेट हो जिन्होंने शरणार्थियों और पर्यावरण के मुद्दे पर अपनी आवाज उठाई, या फिर एमा वॉटसन जिन्होंने जेंडर इक्वालिटी और एथिकल फैशन को समर्थन दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all of your favorite music, news, sports, and more all in one place. Hear all of the audio you love, whether you're a music lover, interested in what's going on around the world?
6: We know that Hamas has agreed to a deal at some point, and
5: or want to catch your team's live play-by-play. It's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
2: Good news today इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: रोम में पीएम मोदी और मेलोनी लगाया पौधा, मेलोनी को दिया भारत आने का न्योता। सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा पीएम मोदी और मेलोनी का टॉफी वाले गिफ्ट का वीडियो, अब तक 12 करोड़ पार व्यूज।